0: writing a contract. We don't have a contract. You'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now,
1: प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष ने अपने दिल की बात बताई। ट्रंप ने मोदी की वर्किंग स्टाइल की संपूर्ण व्याख्या की।
0: Very close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader.
1: जब पत्रकारों ने ट्रंप से दुनिया में भारत के दबदबे को लेकर सवाल पूछा तो ट्रंप ने दो टूक जवाब देते हुए यही कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा.
0: Plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role.
1: पीएम मोदी की मेजबानी को आज तक ट्रंप नहीं भूले हैं. ट्रंप ने यही कहा कि पीएम मोदी की मेजबानी में हुई मेहमान नवाजी आज भी याद है.
0: Well, we had a great visit last time in India. We opened up that new stadium and I think there were 300,000-400,000 people. It seated like about 150,000 and there were 250,000 outside and there were 100,000 on the grass. That was, I don't know if that record's ever been broken, but I had a great time in India.
2: भारत और अमेरिका के बीच तल्ख रिश्तों की बर्फ तो 16 महीने बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आमने सामने आने से पिघली. दोनों ने हाथ मिलाया क्योंकि इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें जमी थी. फिर पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने अपनी बातें रखी, चाहे ओमान की खाड़ी में 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा हो या फिर हॉर्मुज से दुनिया में आए संकट पर बात हो.
1: 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप की हो गई मुलाकात. फ्रांस में आमने सामने आए मोदी और ट्रंप. मोदी क्या बोले? तीन भारतीय नाविकों की मौत पर डोनाल्ड ट्रंप से क्या बोले मोदी? ईरान के साथ अमेरिका की डील, अब हॉर्मुज संकट पर सीधी बात. G7 में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले, मिट गए गिले शिकवे. प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर दुनिया की नजरें जमी थी और 16 महीने बाद जब ये दोनों नेता आमने सामने आए तो सारी शंकाएं सारे गिले शिकवे दूर हो गए. पीएम मोदी ने अपनी पिछली यानी फरवरी 2025 की मुलाकात को याद किया.
3: राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे, उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिलकर के आगे चल रहे हैं.
1: लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा ओमान की खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों की हो रही है. ऐसे में पीएम मोदी ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने ही भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठा दिया.
3: एक्सेलेंस, आप जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
1: क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने पीएम मोदी 3 भारतीय नाविकों की मौत पर कुछ कहेंगे, भारत की बात रखेंगे, तो पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा रख दिया.
3: एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी.
1: ईरान और अमेरिका के बीच डील हो चुकी है और अब 19 जून को इस डील पर स्विट्जरलैंड में साइन होने हैं. ऐसे में पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि हॉर्मुज खुला रहे.
3: एक्सेलेंसी आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है।
1: पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया में ट्रंप के शांति प्रयासों की तारीफ भी की। आपको बता दें कि इस मुलाकात से पहले G7 समिट के दौरान दोनों नेता कई बार आमने सामने आए। एवियन शहर में G7 नेताओं के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने के बाद ट्रंप मोदी का हाथ पकड़े।

0: में लंदन में हुई थी। मीटिंग से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कुर्सी से खड़े होकर पीएम मोदी से हाथ मिलाया। दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बात हुई। G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले। ये G7 समिट का प्लेनरी सेशन था जहां सभी आमंत्रित देशों के नेता पहुंचे थे। पीएम मोदी की सीटिंग मैक्रो और ट्रंप के ठीक बाद थी। इस बीच दोनों के बीच एक इंटरप्रेटर के जरिए बातचीत हुई। G7 समिट में इसके सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के नेता शामिल हुए। इसके अलावा यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। फ्रांस ने समिट में G7 देशों के अलावा कई अन्य देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यंग, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो भी शामिल हुए हैं। आज तक ब्यूरो।
1: जब 16 महीने बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मिले तो आज तक संवाददाता प्रणय उपाध्याय भी वहां पर मौजूद थे। प्रणय ने राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया। आज तक के सवाल पर ट्रंप का जवाब सुनिए।
2: You said many a times that India has a great friend in United States, in Washington, D.C., in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India, the leader of India?
3: As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man.
1: और आइए अब हम आपको दिखाएं कि फ्रांस के G7 समिट में आउटरीच सेशन के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाया तो पीएम मोदी ने क्या कहा।
0: फ्रांस के एवियन शहर में जहां G7 समिट के दौरान ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने वाली डील पर चर्चा खूब हुई तो इसी बीच में पीएम मोदी ने भी समुद्री रास्तों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री व्यापार में आई बाधा की वजह से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। इस संघर्ष में भारत के कई नागरिकों को जान गंवानी पड़ी है। सभी देशों के लिए आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा सामूहिक दायित्व है, इसलिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि नाविक बिना डरे काम कर सकें। आपको बता दें कि ओमान की खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों में से 2 के शव भारत लाए गए। मस्कट में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एमिटी सेटेबेलो जहाज पर हुए हमले में जान गंवाने वाले आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर भारत भेज दिए गए हैं। दूतावास ने उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी जताई। हालांकि तीसरे मृत भारतीय नाविक पतनाला सुरेश के शव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर अमेरिका की तरफ से हमले हुए। पहला हमला 8 जून को मेरीवैक्स नाम के जहाज पर हुआ जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटेबेलो नाम के जहाज पर हुआ जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला जलवीर नाम के जहाज पर हुआ जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए। 3 भारतीयों की मौत को मुद्दा बनाकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है जबकि सरकार की तरफ से भी इसका कड़ा विरोध किया गया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच इस पर तीखी बात भी हुई और मार्को रूबियो ने हेकड़ी दिखाते हुए कहा कि हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में पीएम मोदी ने G7 समिट में समुद्र में नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए दुनिया के देशों के बीच सहयोग की अपील की। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच 4 महीने को खत्म करने के लिए एक शांति समझौते पर सहमति बनाने की घोषणा की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जल्द ही हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, लेकिन पीएम मोदी ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हमले में मारे गए भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा G7 देशों के सामने रख दिया। आज तक ब्यूरो।

0: क्या नरेंद्र मोदी लोकसभा में 370 सांसदों के समर्थन तक पहुंच सकते हैं? फिलहाल एनडीए के पास खुद के 293 सांसद हैं, जिन्हें टीएमसी के 20 सांसदों का समर्थन मिलने के बाद यह संख्या 303 तक पहुंची, जिसमें अगर उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसद के शिंदे की पार्टी में जुड़ जाने से समर्थन मिला तो यह संख्या 319 तक होगी। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी में टूट तय है?
1: ममता बनर्जी के 20 और उद्धव के 6 बागी हो रहे हैं, लेकिन अब हलचल उत्तर प्रदेश को लेकर मची। क्या अखिलेश यादव के 37 में 25 सांसद टूट सकते हैं? इस सवाल की वजह उत्तर प्रदेश के दो नेता बनते हैं। पहला नाम है केशव प्रसाद मौर्य का, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है। दूसरा नाम ओम प्रकाश राजभर का, जो मंत्री है। पहले डिप्टी सीएम को सुनिए।
2: और समाजवादी पार्टी पूरी उम्मीद रखिए, जो हस्त टीएमसी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ है उससे बुरा हस्त।
1: यही सेम टू सेम बात ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं।
3: सब टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं, अब यहाँ नहीं रहेंगे, पेट भर गया है। ऐसे ममता के यहाँ पेट भर गए, सब चल दिए उधर, वैसे इधर से टूट के जाएंगे, टूट के जा रही है।
1: ममता के बागी सांसदों ने क्या किया ये सब देख चुके हैं। उद्धव के बागी सांसद आउट ऑफ रीच हो चुके हैं, तब क्या अखिलेश यादव के 37 सांसदों में से 2/3 सांसद टूट सकते हैं?
4: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे, हम तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
1: समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में 37 सांसद लोकसभा चुनाव में जीते, 2/3 नंबर इसका 25 सांसद का होता है, तो क्या इसीलिए 24 से 25 सांसद के संपर्क में होने की बात कही जाने लगी?
3: अपना जान बचाने के लिए जो उनके ऊपर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारा भविष्य नहीं है, आगे चुनाव हम हार जाएंगे, तो ये लोग मन बना लिए हैं कि अब चलो बड़ी संख्या में उधर। जो हश्र ममता के यहाँ टीएमसी का हुआ, उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो हो रहा है वहां से भी साथ चिल्ला रहे हैं ना, अब देखिएगा अभी यहाँ चिल्लाना शुरू करें कुछ ही दिन में।
4: जो पार्टियां टूट रही हैं उनको टूटने से बचाने का काम भाजपा का नहीं है। अगर कोई पार्टी टूट रही है तो उस पार्टी की कमी है। अगर परिवारवाद करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, गुंडागर्दी करोगे तो उनको जो उनके दलों में है उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है।
5: भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा, और लालच देकर के, डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है।
6: ये बताओ केशव मौर्य जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी ने इन्हें कितने बार हराया है, तो ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, और जब फिर लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी केशव मौर्य को फिर हराएगी।
1: फिलहाल समाजवादी पार्टी में कहीं कोई टूट तो अभी नहीं दिख रही, लेकिन फिर ये अटकलें शुरू कैसे हुई? इसकी वजह ये तस्वीर है जो अभी की नहीं है, दावा है पिछले साल की है। मार्च का महीना था पिछले साल, राम गोपाल यादव तब अमित शाह से संसद परिसर में मिले, एक कागज दिया, किसी को कुछ नहीं पता कागज में क्या है। लेकिन इसी वीडियो को याद दिलाकर ओम प्रकाश राजभर ने एक शगुफा छेड़ दिया।
3: राम गोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया और उन्होंने चिट्ठी लिया और हाथ जोड़ा, ये भी हाथ जोड़े, मुस्कुराए, अपना चल दिए राम गोपाल जी। तो चिट्ठी में क्या लिखा पता है?
7: क्या लिखा?
3: कि सीबीआई ने जो एफआईआर में खनन वाले में नाम अखिलेश जी का डाला है उसको बचाना है, और गुमती रिवर फ्रंट में जो परिवार का हमारे लड़के का और शिवपाल जी का नाम इन लोगों को बचाना है, और ये फला फला सांसद हैं इनको आपके साथ हम भेज देते हैं, हम लोगों का जान बचा रहे हैं।
1: ओम प्रकाश राजभर वो नेता है जो सियासी हवा देख पाला बदलते रहे हैं, सियासी कैंप बदलते रहे हैं, जो खुद लंबे वक्त तक नहीं जानते थे कि उत्तर प्रदेश में मंत्री पद कब पाएंगे, वो अब पिछले साल की चिट्ठी का कहते हैं मजमून तक जानते हैं।
3: समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही है, उन्होंने बताया कि इनसे इनसे संपर्क करा लीजिए, ये सब चले जाएंगे, बात हो गई है।
7: पार्टी अपने ही सांसद तोड़ने को तैयार है,
3: अपन जान बचाओ बदे। गोमती रिवर फ्रंट में रामगोपाल जी के बेटे का नाम है, शिवपाल जी का नाम है, जानत है ना सब लोग, इन लोगों का नाम है।
8: सवाल से हटाने के लिए राजभर साहब कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं, कल क्या करेंगे, वक्त का इंतजार करिए।
9: आज समाजवादी पार्टी के साथ कौन रहना चाहता है सब जानते हैं।
1: राजभर के बयान को राजनीति में ज्यादा संजीदगी से कोई नहीं लेता, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का बयान क्या इशारा करता है, दोनों नेता के बयान में एक फर्क है। ओम प्रकाश राजभर केवल समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने का दावा तक नहीं करते, बल्कि अपने बड़बोलेपन में बीजेपी पर ही सवाल उठा देते हैं कि बीजेपी केस दबाने के बदले सांसद तोड़ लेती है।
3: सीबीआई जो खनन का में जांच कर रही थी, सीबीआई अखिलेश यादव जी का नाम है, सीबीआई ने एफआईआर में अखिलेश जी का नाम, गोमती रिवर फ्रंट में अखिलेश जी के परिवार के तमाम, शिवपाल जी से लेके रामगोपाल के लड़के से लेके तमाम लोगों के नाम उसमें हैं, इनसे बचने के लिए ये लोग कभी गृह मंत्री जी से मिलते हैं तो कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, गुलदस्ता लेके अखिलेश जी कभी चले जाते हैं।
1: वहीं केशव प्रसाद मौर्य का बयान इस बात पर जोर देता है कि समाजवादी पार्टी में नाराजगी है, लेकिन बीजेपी उनके सांसदों को तोड़ नहीं रही।
4: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे, हम तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
1: ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तो मची है, लेकिन ऐसे दावों को फिलहाल जमीनी नहीं माना जा सकता, खासकर ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता के बयान को।
0: सभी की नजरें आज उद्धव ठाकरे के संसदीय दल की बैठक पर लगी है। क्या उद्धव के 9 सांसद आज की बैठक में पहुंचेंगे या फिर 6 सांसद उद्धव के शिंदे वाली पार्टी में शामिल होंगे?
10: पंद्रह करोड़ कल रात को दिया, बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं।
11: तो ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर,
10: पैसों का ही खेल होगा ना, उसको जाना है वो इस्तीफा दे।
12: ऑपरेशन टाइगर नहीं है, ऑपरेशन गीदड़ है।
1: उद्धव ठाकरे की पार्टी में बागियों की चलाचली वाली बेला चल रही है। सबूत 30 घंटे के भीतर संजय राउत के बदलते बयानों से पता चलता है। सोमवार को जो कहते थे कि ऑपरेशन टाइगर के खिलाफ ऑपरेशन भेड़िया चला देंगे,
10: ऑपरेशन वुल्फ करो ना, ऑपरेशन वुल्फ होता ना, टाइगर तो ऑपरेशन कसा करना तुम्ही मला सांगा। वाघ तुम्हाला हात लावू देईल काय? वाघाला तुम्हाला ती गुंगीत आणावं लागतं, ते लांबून इंजेक्शन, वाघाला घाबरतात, लांबून एक इंजेक्शन मारावं लागतं गुंगीचं, मग तो वाघ आहे का, डोळे उघडलेत का वगैरे बघून मग जाऊन त्याला त्याचे पाय बांधावे लागतात, ते शक्य नाही आमच्याकडे।
1: मंगलवार को राऊत कहने लगे, भगवान कसम सांसद खाए हैं कहीं नहीं जाएंगे।
13: आपको लग रहा है सभी सांसद इस वक्त शिवसेना के सब साथ में हैं आपके? जो
10: कसम तो खाई है, भगवान की कसम खाई है, साईं बाबा की कसम खाई है, बच्चों की कसम खाई है, माँ की कसम खाई है, विश्वास रखना चाहिए।
1: बुधवार तक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय राउत अपने ही दल के बागी सांसदों को गाली देने लगे और कहने लगे इसमें कट मत लगाना।
10: बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना, हा उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं, हे जे लोक कोण जात आहेत हे, नाही डोंट कट, हे कट मत करणार।
6: हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है।
1: इसकी नौबत इसलिए आ चुकी है क्योंकि महाराष्ट्र में पोस्टर चिपक गए कि ऑपरेशन टाइगर के लिए वेट एंड वॉच, तैयारी जारी है। 19 जून को शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है, मतलब कहकर सांसद लूंगा वाली राजनीति आ गई।
14: कल देर रात से ही ऑपरेशन टाइगर इन लोगों ने शुरू कर दिया। ताकत का ऐसा इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना, इन्होंने ऐसा समाज में एक माहौल कर दिया है कि अब कोई विपक्ष यहाँ पर जिंदा रह नहीं सकता। आप देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की, एकनाथ शिंदे के पास स्वयं 7 सांसद हैं, हमारे पास 9 थे, लेकिन उस 9 में से ये 6 तोड़ना चाहते हैं क्योंकि इनको अहंकार है, ये किसी और को जीने नहीं देना चाहते। धन बल का दुरुपयोग, 15-15 करोड़ रुपए, चार्टर्ड विमान का इस्तेमाल, यही सब चीज किसानों के लिए की जाती, गरीबों के लिए की जाती।
15: ऑपरेशन टाइगर हो रहा है, ऑपरेशन ऐसा हो रहा है, अरे आपके खासदारों को आपने संभालना ये जरूरी था, वो आप संभाल नहीं पाए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की।
1: उद्धव की पार्टी से जिन सांसदों के बागी होने की खबरें हैं, उनमें मुंबई नॉर्थ ईस्ट के संजय दीना पाटिल, यवतमाल के संजय देशमुख, हिंगोली के नागेश पाटिल, धाराशिव के ओम राजे नाइक निम्बालकर, परभणी के संजय जाधव और शिरडी के भाऊ साहब वागचौरे का नाम शामिल है। उद्धव गुट की हालत ये है, दावा है कि 2 बागी सांसद अब भी इन्हें कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं, लेकिन संजय राउत को भरोसा नहीं हो रहा।
5: हमारा एक सांसद है हिंगोली से, नागेश अष्टेकर, वो आज सुबह उद्धव जी से और हमसे बोल रहे थे कि मैं अभी भी मेरे चुनाव क्षेत्र में हूँ, यहाँ चुनाव चल रहा है, उसका बेटा चुनाव हमारे पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, तो कोई मेरा गलत सिग्नेचर कर सकता है। दूसरे हमारे संजय दीना पाटिल एक सांसद है, अभी अभी मेरी बातचीत हो गई, तो उसने
16: अभी बात हुई है, उनका भी नाम चल रहा है कि उन्होंने भी नाम दिया,
5: अभी अभी बात हो गई, उनका फोन आया था कि मेरा नाम चल रहा है, बहुत गलत नाम है चल रहा है, मैं नहीं हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ। अब जब तक ये सब लोग सामने नहीं आएंगे, हाँ, तब तक आपको या हमको पता नहीं चलेगा कौन किसके साथ है।
1: इसीलिए उद्धव की पार्टी ने संसदीय दल की बैठक गुरुवार को बुलाई, व्हिप तक जारी कर दिया। संजय राउत का आरोप तो ये है कि पुणे, नागपुर और नांदेड़ से चार्टर्ड फ्लाइट से उनके बागी सांसदों को दिल्ली बुलवा लिया गया। सूत्रों के मुताबिक कि नेताओं ने स्पीकर को चिट्ठी भी सौंप दी, इसीलिए उद्धव के नेता भी स्पीकर से मिलने गए, बोल कर आए कि सर देखिएगा, प्लीज उनको कोई अलग गुट की मान्यता मत दे दीजिएगा।
5: अगर कोई आता है शिवसेना यूपीडी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए, कोई गैरकानूनी है, हमसे बात करिए, हमारी बात समझ लीजिए, और नियम कानून और संविधान, 10th शेड्यूल और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसका पालन हो जाए।
17: क्या अपना पक्ष रखा?
18: स्पीकर साहब ने हमने एक निवेदन दे दिया है और कहा है कि जो कुछ हम सुन रहे हैं, अभी तो कानून सामने आकर तो नहीं कह रहा, तो उसके प्रावधान अगर संविधान में हमने आपने देखा कि हमारी वहाँ भी एक सुप्रीम कोर्ट में केस जारी है, तो उसी पे गुट को किसी को मान्यता दे दे।
1: लक्षण तो उद्धव गुट के नेताओं के यही बता रहे हैं कि बागी पंछी उड़ चुके हैं।
19: तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारी छोटी छोटी पार्टियां है, कि उन्होंने नेशनल पार्टियों में, रीजनल पार्टियां जो है उन्होंने नेशनल पार्टी में मर्ज होना चाहिए, ये संजय राउत का स्टेटमेंट है। हो सकता है कि इसका मतलब कि वो शिवसेना को भी कांग्रेस में मर्ज करने की उन्होंने सोचा होगा, तो ये संजय राउत की सोच थी, और ये सभी सांसद विधायकों को ये लगा होगा कि भाई संजय राउत उद्धव जी हम कांग्रेस को में ना लेके जाए, पार्टी ना उधर जाके मर्ज करे, इसीलिए ये लोगों में मुझे लगता है कि असंतोष होगा।
1: इसीलिए माना जा रहा है कि मिशन 360 नरेंद्र मोदी का मजबूती से चल रहा है, जहां 17 अप्रैल को लोकसभा में एनडीए को 298 सांसदों का समर्थन मिला, उसमें अब टीएमसी के 20 सांसद जोड़े तो ये संख्या 318 हो जाती है। अब शिवसेना यूबीटी के सांसद बागी हो चले हैं। उद्धव की पार्टी के लोकसभा में 9 सांसद हैं। एंटी डिफेक्शन न लागू होने देने के लिए 6 सांसद का टूटना जरूरी है, ये 6 सांसद टूटे तो संख्या एनडीए की 324 तक पहुंच जाती है।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
21: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work. cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
2: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
21: Learn more at emory.edu.
17: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
22: क्या आपके नाम में भी कोई रहस्य छिपा हुआ है? क्या आपका नाम आपके भाग्य पर असर डाल देता है? क्या नाम रखने में सावधानी का पालन करना चाहिए? क्या है नाम का रहस्य और क्या है नाम रखने के नियम? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र.
23: Summer's a gift. The gift of days that last a little longer. A brighter state of mind. So gift yourself a new Kia at the Kia Summer Sticker Sales Event. With specially tagged vehicles including the Sorento, Sportage, Carnival, as well as the Niro Hybrid. All backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. So the gift of summer can keep on giving for summers to come. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Event ends 7/6/26. See dealer for warranty details.
20: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
24: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
25: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
24: Smartless.
26: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
24: Marketplace.
27: The big three on the program today, or, you know, the big three of
24: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
20: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

फ्रांस में ट्रंप ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा हम ट्रेड डील के बेहद करीब। पीएम ने उठाया नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा, आज बिबटिक समिट में शिरकत का है प्लान। और शिवसेना का ऑपरेशन टाइगर पूरा हुआ, सूत्रों के हवाले से खबर। अज्ञात स्थान पर भेजे गए यूबीटी के बागी सांसद, 2 से 3 दिनों में औपचारिक ऐलान, यूबीटी ने जारी की है व्हिप। समाजवादी में बगावत को लेकर ओपी राजभर के दावे के बाद केशव मौर्य का बयान, कहा 25 सांसदों को टूटने को तैयार, अखिलेश का जवाब, डरा रही है बीजेपी। कोटा में छात्रों के साथ राहुल गांधी का संवाद, देश की शिक्षा व्यवस्था को बताया वसूली की मशीन, कहा सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन पर हो रहा है काम।

0: बड़ी कोशिश पूरी हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति समझौते पर मुहर लगा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के सबसे पहले बुलेटिन में आपका स्वागत है और शुरुआत करेंगे उस बड़ी खबर से जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। शुक्रवार को जिनेवा में होने वाली मुलाकात से पहले अमेरिका ईरान शांति समझौते पर औपचारिक मुहर लग गई है। पेरिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एमओयू पर दस्तखत कर दिए हैं। डील की शर्तों पर दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त कर दी है और जिनेवा में शुक्रवार को होने वाली मुलाकात जो है ना, वो उस मुलाकात के पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान मेमोरेंडम ऑफ स्टैंडिंग को फ्रांस में दस्तखत कर दिया और इसी के बाद अब जानकारी ये भी आ रही है कि ईरान की तरफ से पेजिस्टियन ने भी इस पर दस्तखत कर दिए हैं। ईरान के औपचारिक ऐलान का इंतजार है। तो आखिरकार यूएस ईरान में शांति बहाली पर अब औपचारिक मुहर लगी है। ये मुहर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाई। आपको बता दें इसके अलावा शुक्रवार को जिनेवा में भी मुलाकात होनी है और इसी के साथ साथ रास्ता खुल जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पूरी तरह खुलने का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां पर गतिविधियां रुकी हुई हैं, कई जहाज निशाना बनाए गए और पूरे देश के सामने ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया। तो पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया भर के देशों का जमावड़ा और उसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब लगातार कहा कि ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक है, पटरी पर है और उसी के बाद अब वो तस्वीर आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर दस्तखत करते दिखाई दे रहे हैं। तो इसी के साथ साथ वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ट्रंप ने उस समझौते पर दस्तखत किए हैं। ईरान के दस्तखत करने के बाद ये लागू कर दिया जाएगा। अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, आखिरकार जिस घड़ी का इंतजार था, 39 दिन की जंग, 115 दिनों का तनाव और 116वें दिन आखिरकार समझौते की शर्त पर अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप ने दस्तखत कर दिए हैं।
1: बिल्कुल आशुतोष, और इस पर अब पूरी तरह से मोहर लग गई है और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ईरान काफी निकला। उन्होंने प्रस्ताव किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पेजिस्टियान इस पर साइन करेंगे ताकि बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इस डील के खिलाफ भी थे और इस डील का जो है विरोध भी कर रहे थे और सीजफायर का वायलेशन भी कर रहे थे, उनको ये एक संदेश साफ तौर से, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये पहले ही दर्शाया था कि इसराइल का वर्चस्व अगर है वो मात्र अमेरिका के कारण है। तो जाहिर है कि ये अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो भी इस महत्वपूर्ण जगह पे जहां पर G7 का समिट हो, जहां पर दुनिया के सबसे उच्च नेता मौजूद हो, उनकी उपस्थिति और मौजूदगी में इस डील पर दस्तखत होना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब ये जंग पूरी तरह से समाप्त हुई है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो कि पहला इसलिए यूरोप करे, तो दो पहले दिन से जब से ये युद्ध शुरू हुआ था ईरान ने ये कहा था वो भाई हुकार क्रुक जो जंग से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका से करवाएगा। तो कहीं कहीं वो चीज भी जो है ईरान ने हासिल कर ली है, क्योंकि दुनिया के कानून में ये
0: राशि वाणी से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर आपको बता दें, पेरिस में डोनाल्ड ट्रंप नहीं, ये वो ऐतिहासिक तस्वीर है। देखिए, पेरिस में सम्मेलन के दौरान वर्साइल्स इलाके में जब ट्रंप ने ईरान के उस शांति समझौते पर मुहर लगाई, उसी के साथ वहां बैठे डेलीगेशन में पीटर हेक्सेथ भी दिखाई दे रहे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से वो हॉल गूंज उठा और इसी मेमोरेंडम की साइन कॉपी को ईरान को भी भेजा गया है। ये अब एक औपचारिक शांति समझौता है, हालांकि इसमें संभावनाएं भी जताई जा रही थी कि एक डिजिटल सिग्नेचर होगा, जिनेवा में ऑप्टिक्स होगा, लेकिन उसके ठीक पहले, और यह तस्वीरें खुद व्हाइट हाउस ने जारी की हैं जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान शांति समझौते की तमाम शर्तों पर सहमति दिखाते हुए उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। 39 दिनों तक चली ये जंग जिसमें नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं हुआ, जिसमें अमेरिका को नुकसान झेलना पड़ा, उसकी सैन्य क्षमताओं को नुकसान झेलना पड़ा और साथ ही उसके जो मित्र देश हैं बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, इन तमाम देशों पर भी ईरान का गुस्सा टूट

0: किया, मिसाइलों से हमले, ड्रोन से हमले, और उसके बाद पाकिस्तान टॉक्स शुरू होती हैं। और उस पाकिस्तान टॉक्स में जब बात नहीं बनी, तब लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे कि बातचीत अभी भी सकारात्मक है, पटरी पर है। और यहां तक कि कल भी उन्होंने ये कहा कि अगर बातचीत नहीं होती है, उन्हें शर्तें पसंद नहीं आती है, तो फिर से बॉम्बिंग शुरू कर देंगे ईरान पे। ये ट्रंप का अपना अंदाज। लेकिन आखिरकार वो दिन आया जिसके बारे में पिछले 115 दिनों से लगातार ये कहा जा रहा था, युद्ध विराम का ऐलान हुआ, तनाव लगातार बरकरार था, एक प्रॉक्सी वॉर चलता रहा, और उसी के बाद वो घड़ी आई है जब ईरान के साथ शांति समझौते पर औपचारिक मुहर लगी है। डोनाल्ड ट्रंप ने उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत कर दिए है। तो आखिर ये एमओयू होता क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, ये दोनों देशों पर बाध्य होगा या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि ईरान और अमेरिका अपने द्वारा तय की गई शर्तों पर कितने सहमत हैं। दरअसल एमओयू कैसे बना जाता है, देखिए ये वो तस्वीरें हैं, व्हाइट हाउस में वर्साइल में मुलाकात होती है, और उसी के साथ आपको देखे हैं कि कैसे उनके जो करीबी अफसर हैं वो लेकर के आते हैं, और ट्रंप ये ऐलान कर रहे हैं कि हाँ मैंने उस पर दस्तखत कर दिए। देखिए ये वो पेपर है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिस पर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हुई थी। इसमें वो शर्तें भी है जो पाकिस्तान में पहले दौर की बातचीत के दौरान भी थी, और उसके बाद ये वो ऐतिहासिक सिग्नेचर, यानी सिर्फ एक कागज पर दस्तखत, और उसके बाद सिर्फ पश्चिम एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तस्वीर बदल जाती है। इसीलिए ये कोई सामान्य बड़ी खबर नहीं है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये वो तस्वीर है जिसका असर अब से थोड़ी देर में आपको जापान के बाजार में दिखाई देगा, कोरिया के बाजार में दिखाई देगा, और लगभग 9:30 बजे आपको भारत के बाजार में भी इसका असर दिखाई देगा। ये कोई सामान्य दस्तखत या सामान्य घटना नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 14 वो शर्तें जिसकी बातचीत की शुरुआत पाकिस्तान में हुई, इस्लामाबाद टॉक्स में हुई, उसके बाद लगातार नेगोशिएशन टीम्स रही। सबसे पहली शर्त, ईरान के पास हथियार नहीं होंगे। दूसरी शर्त, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोला जाएगा, उस पर कोई टोल वसूला नहीं जाएगा। तीसरी शर्त, सभी मोर्चों पर युद्ध बंद होगा, लेबनन में भी फायरिंग नहीं होगी, वहां गोले नहीं गिराए जाएंगे, वहां पर एयर स्ट्राइक नहीं होंगी। उन समझौते में शामिल ये भी कि ईरान की जो संपत्तियां हैं उसको अमेरिका तुरंत रिलीज करेगा, $300 बिलियन। अब उन शर्तों में आगे क्या होता है क्या नहीं, हालांकि ईरान की ओर से अभी तक जो दूसरे दुनिया भर की एजेंसी और ईरानी मीडिया कह रहा है वो ये कि अराक्ची ने भी इस पर जो है दस्तखत कर दिए हैं। तो आज है गुरुवार, कल है शुक्रवार, शुक्रवार पर नजर बनी रहेगी, खासकर जिनेवा में जो मुलाकात होने वाली है, स्विट्जरलैंड के एक रिजॉर्ट में जहां पर मुलाकात होगी, वहां दोनों देशों के प्रतिनिधि एक दूसरे को दस्तखत किया हुआ एमओयू की जो कॉपी है वो सुपुर्द करेंगे। और संभवतः यह भी है कि यहां पर जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो कॉपी से दस्तखत किए हैं, आमतौर पर जब उस तरह की तस्वीरें बनेंगी जिसमें ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि हों, तो कोशिश ये होगी कि यही दस्तखत की गई वो कॉपी एक दूसरे को दी जाए, दुनिया के सामने यह संदेश। और उसी में शर्त ये भी कि इस एमओयू की जो बाई, देखिए ये वो ईरान की शर्त है, इसलिए आपको जूम की हुई तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहां डोनाल्ड ट्रंप की वो तस्वीर है और ये वो पूरा मेमोरेंडम की कॉपी है। ये देने के साथ साथ उसमें एक क्लॉज क्या ये है कि इसकी बाध्यता यूएन के मुताबिक, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काउंसिल के चार्टर के अनुरूप है कि दोनों देश इसे मानने के लिए बाध्य होंगे। आपको बता दें इसके पहले अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था, और अब्राहम अकॉर्ड साइन होने के बाद जिन देशों ने उस पर दस्तखत किए थे उन पर यह बाध्यता थी कि वो अब्राहम अकॉर्ड मानेंगे। लेकिन इस्लामाबाद टॉक्स के बाद अब ये जो ईरान अमेरिका एमओयू हुआ है, इस समझौते को मानने की बाध्यता दोनों देशों पर है। अशरफ वानी हमारे सहयोगी फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, ये जो दस्तखत है ये अब्राहम अकॉर्ड से भी बहुत बड़ी घटना नजर आती है, वो इसलिए क्योंकि अगर जो जिनेवा में हम देखने वाले हैं कि जहां पर ये एमओयू एक दूसरे को दिया जाएगा दस्तखत किया हुआ, इसकी बाध्यता किस पर कितनी होगी, इस पर एक सवाल जरूर होगा, क्योंकि यूएनएससी में इसको अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा नहीं, वो एक अलग घटना है। बाध्यता दोनों देशों पर कितनी होगी?
1: आशुतोष, दरअसल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये अभी तक देखा गया है कि अमेरिका की रुचि जिन अकॉर्ड्स में होती है, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी पर निर्भर है। जंग शुरू किया था अमेरिका ने, और अमेरिका ने ही इस जंग को जो है कहीं ना कहीं इस जंग से निकलना उसके लिए मजबूरी भी थी, वो निकलना भी चाहता था, वो निकल गया। वही हमने देखा कि 100 दिन से भी ज्यादा जो दोनों तरफ से इस, क्योंकि अमेरिका ने जब ये जंग शुरू की थी तो उनके कुछ गोल्स थे कि ये जंग जो है शायद शताब्द परिवर्तन वो अमेरिका में कर पाएंगे, अमेरिका की सैन्य शक्ति और उनके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म कर पाएंगे, नष्ट कर पाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। तो उस बीच जो 2015 में ओबामा की डील थी, न्यूक्लियर डील, उसमें भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन ये था कि अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये मामला था कि वो डील जो ओबामा की डील थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने खुद उसको समाप्त किया था। उसमें भी 2 साल लगे थे उस डील को करने में, यूरोपियन यूनियन भी उसमें शामिल था, अमेरिका भी शामिल था। उसी तरह जो है ये डील जो है ये कहीं ना कहीं एक कोशिश है अमेरिका की तरफ से, कि क्योंकि अभी तो फिलहाल न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोई मुद्दा इसमें है ही नहीं जिस पर ये युद्ध शुरू हुआ था। अब चूंकि इस डील में सबसे बड़ा मुद्दा जो इस युद्ध के दौरान सामने आया था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद हो जाने से, जो अब एक हथियार ईरान के सामने बन गया है, ईरान के पास है, और कहीं ना कहीं उसी के चलते जिस अंदाज से दुनिया भर में इस युद्ध का असर पड़ा, तो अमेरिका के साथ साथ खाड़ी के सभी देश जो कि मित्र देश हैं ईरान अमेरिका के, वो ये चाहते थे कि फिलहाल जो है इस युद्ध में, इस युद्ध से किसी भी तरह से जो निकले अमेरिका, और क्योंकि इसकी मार जो है पूरी तरह से खाड़ी के सभी देशों को पड़ रही थी। और
0: एक चीज और अशरफ, एक चीज जरा सा ये समझना, यहां पर शांति समझौते पे साइन हो गया, ये तो तय है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज निकल खोल दिया जाएगा, मैं भी लाइव ट्रैकर पर एक्टिविटी भी चेक कर रहा था, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। लेकिन इसमें एक बड़ा रोड़ा दिखाई देता है इसराइल की ओर से, इसराइल ने कहा है कि वो तो समझौते को नहीं मानेगा, उसके लिए उसकी सार्वभौमिकता बड़ी है। क्या वो लेबनन पर हमले रोकेगा? अगर वो नहीं रोकता है तो आगे क्या ईरान पलटवार करेगा या फिर ट्रंप मध्यस्थता करेंगे किसी तरह की? वो एक जो जिन 14 पॉइंट हैं एमओयू के, वहां पर अभी मुझे असमंजस की स्थिति दिखाई देती है।
1: नहीं, मजबूरी है इसराइल को आखिरकार, क्योंकि जिस अंदाज से इसराइल को पूरी तरह से आइसोलेट किया अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने इस एमओयू के ड्राफ्ट को बनाते हुए, क्योंकि उनसे ना ही कोई सलाह ली गई, ना ही उनकी कोई शर्त जो है जो वो चाहते थे वो मानी गई, तो कहीं ना कहीं अब इसराइल एक छोटा सा देश है, उनकी ये बहुत बड़ी मजबूरी है। अगर वो नहीं मानता है तो ये बेंजामिन नेतन्याहू के पॉलिटिकल कैरियर का अंत होगा। वो हम इसराइल में देख रहे हैं कि किस तरह से उनके ही जो राजनीतिक दल वहां पर हैं इस डील के विरोध में है। दूसरी तरफ बहुत बड़ा नुकसान जो है, भले ही उन्होंने सेंसरशिप इसराइल ने लगाई हो, लेकिन लेबनान में बहुत बड़ा नुकसान इसराइली सैनिक झेल रहे हैं। कल भी जो है, बीती रात जो है, 17 सैनिक इसराइली मीडिया ने माना है कि घायल हुए हैं, जिनमें कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। और एक घायल सैनिक को आप एक मुर्दा ही मानते हैं, क्योंकि वो फिर युद्ध लड़ने के लिए जो है कहीं ना कहीं कई काफी समय तक जो है वो उपलब्ध नहीं रहेगा। तो ये एक प्रेशर इसराइल पर है, लेकिन इसराइल को ये पता था कि अमेरिका के शय पे ही, अमेरिका के हथियार से ही, अमेरिका के धन से ही वो इस युद्ध को जो है आगे बढ़ाता रहेगा और आगे बढ़ा रहा था। लेकिन उस भी जो है कहीं ना कहीं जो मिड टर्म पोल्स अमेरिका में है और डोनाल्ड ट्रंप पे जिस अंदाज से दुनिया के अलग अलग देशों के साथ साथ, खाड़ी के देशों के साथ साथ, अपने देश में जो महंगाई की मार से लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा था, उस बीच उनके लिए ये बहुत मजबूरी बन गई थी कि वो इस युद्ध से निकले। और दूसरी महत्वपूर्ण बात,
0: ठीक है अशरफ, आपको रोकना चाहेंगे, एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है, अमेरिका के दस्तखत के बाद ईरान के ओर से भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हो चुके हैं। ईरान अमेरिका के बीच शांति समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजिस्टियन ने दस्तखत कर दिए हैं, ईरान की ओर से भी इस समझौते पर दस्तखत हो चुके हैं। यानी अब से 24 घंटे का समय, 24 से 30 घंटे के भीतर जब स्विट्जरलैंड में मुलाकात होगी, संभवतः यही दस्तखत जो कॉपी है वो एक दूसरे को सौंप दी जाएगी। तो बड़ी खबर, पश्चिम एशिया में शांति बहाली, स्थिरता की ओर से देखिए, वो तस्वीरें भी आ गई हैं। राष्ट्रपति पेजिस्टियन ने वो कॉपी साइन कर दी है और उसी की ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पहले अमेरिका, उसके बाद ईरान, और दोनों ने ही इस पर दस्तखत कर दिए हैं। और आखिरकार इसी के साथ शुरुआत होती है पश्चिम एशिया में स्थिरता की, शांति बहाली की, और अब दोनों देशों की ओर से इस एमओयू पर दस्तखत कर दिए गए हैं। 14 बिंदु ऐसे जिनको लेकर के शांति समझौता की बहाली, और उसी के साथ साथ अब आप देखिए, मेरे एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उस शांति समझौते पर दस्तखत करते हुए, दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति पेजिस्टियन, इन्होंने भी उस समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं, और उसी की तस्वीरें उन्होंने, देखिए उनके सिग्नेचर हैं, और उसी सिग्नेचर के साथ उसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। तो व्हाइट हाउस की ओर से जो तस्वीरें जारी की गई हैं कि कैसे पेरिस में जब वहां पर तालियां बजी हैं, यहां ईरान की ओर से भी, हालांकि इसमें जो हम देख रहे हैं ये सारे जो है फारसी भाषा में लिखी हुई है, और उसी के साथ साथ यहां पर ट्रंप ने, अब नजर होगी स्विट्जरलैंड में होने वाली उस मुलाकात पर, जहां दोनों देशों की ओर से जब उनके प्रतिनिधि वहां खड़े होंगे, अब देखना यह भी होगा कि अगर अमेरिका की ओर से जेडी वेंस जाते हैं तो ईरान की ओर से कौन होगा, क्या यह वही प्रतिनिधिमंडल होगा जो कि इस्लामाबाद टॉक्स में शामिल था, और वो दोनों जब एक दूसरे को कॉपी सौंपेंगे तो क्या उसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर की बाध्यता के तहत माना जाएगा। हालांकि दोनों देशों के बीच ये बाध्यता इसलिए होगी क्योंकि बहुत अशरफ मेरे पास इस समय हम स्क्रीन पर अपने तमाम दर्शकों को वो दो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसने इतिहास बनाया है, 115 दिनों का इंतजार, 39 दिनों का युद्ध, और इस समय ये जो हो रहा है, जो तस्वीरें अब सामने आई हैं, सबकी नजर इस बात पर होगी दोनों देश इसे मानेंगे, कब तक मानेंगे।
1: आशुतोष, उससे ज्यादा नजर इस बात पर होगी कि ड्राफ्ट इस एमओयू का क्या है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही ये साफ किया था कि वो इस ड्राफ्ट का एक एक शब्द जो है खुद पढ़ेंगे, अंग्रेजी में पढ़ेंगे ताकि दुनिया समझ पाएगा, क्योंकि पिछले दिनों काफी सारी चीजें जो हैं अखबारों में छप रही थी और उनमें से कई बातों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप नकार रहे थे, जबकि एक तरफ ईरान भी कई दावे कर रहा था ड्राफ्ट में, तीन बार जो है लेबनान का जिक्र है और लेबनान जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस ड्राफ्ट में लिया गया है, जबकि इसराइल ये बात कह रहा था कि लेबनान का इसमें जिक्र नहीं है। तो सबसे ज्यादा इसमें इसके ड्राफ्ट में नजर होगी, क्योंकि अब 10 हस्ताक्षर हो गए हैं अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से और ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से। अब पहली निगाह जो होगी दुनिया की इसी पर होगी कि ड्राफ्ट में क्या है, और ये ड्राफ्ट जो है वो कहीं ना कहीं इसराइल का फ्यूचर जो है इस युद्ध में वो तय करेगा कि क्या उन्हें जो लेबनान, दक्षिणी लेबनान है वहां पर कई गांवों में जो उनकी उपस्थिति है वो उनको क्या वहां से निकलना होगा, और अगर उनका निकलना होगा तो कहीं ना कहीं इसराइल के लिए ये बहुत बड़ा जो है एक हार भी होगी, एक फेलियर भी होगा। और दूसरी तरफ अमेरिका की जो पूरी तरह से दादागिरी पूरी विश्व में थे और खासतौर से खाड़े के देशों में, उनमें क्या रोल होगा, क्या
0: ठीक है। अशरफ, इस पूरी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, आप भी इस पर नजर बनाए रखें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
3: गाइडेड बाय अ शेयर्ड पर्पस एंड अ स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
4: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
3: Learn more at emory.edu.
5: May I have your attention, please?
6: AI is changing what tech jobs look like and what employers expect. Moving forward requires more than just knowing about AI. You need to know how to use it. At WGU, our online technology master's programs are built to help you gain job-ready skills for an AI-driven world. You'll focus on what actually matters in today's tech roles and learn in a way that fits around your life. If you're ready to build skills that keep pace with what's next, learn more at wgu.edu.
7: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
8: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।

जिस अयोध्या में राम नाम की गूंज थी, वहीं अब सवाल गूंज रहा है, क्या राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई, क्या राम के दान की लूट हुई, क्या चढ़ावे के वारे न्यारे हुए। करीब दो हफ्ते पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे और पवन पांडे ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के दान में गड़बड़ी हुई। इसके बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मसले को हवा दे दी, फिर तो राम मंदिर में चोरी का शोर लखनऊ से दिल्ली तक जा पहुंचा। मामला यही नहीं रुका, राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े बीजेपी नेता विनय कटियार ने भी सवाल खड़े कर दिए और एक कार सेवक तहरीर के साथ थाने पहुंच गया। इस तहरीर में वो तीन बड़े नाम हैं जिन पर राम मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी है। आरोप लगाने वालों का कहना है कि जब भक्तों ने श्रद्धा से दान दिया तो उसकी एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। संत समाज भी चाहता है कि सच सबके सामने आए। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट लगातार आरोपों को नकारता रहा, लेकिन इसके बाद एक शिकायत पीएम तक पहुंची और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी। मामला राम मंदिर का है तो सवाल विपक्ष से हैं। मसलन, उनका क्या राम मंदिर से लेना, उनका क्या राम से लेना, राम तो सिर्फ सत्ता पक्ष के हैं, विपक्ष कहाँ है। सियासत अपनी जगह है और सवाल अपनी जगह, लेकिन भगवान के दान में चोरी लूट के आरोप बेहद गंभीर हैं। ये ना सिर्फ आस्था के साथ खिलवाड़ है बल्कि उन करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ बेईमानी है, चोरी है। संतोष शर्मा के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

0: हम राम के लिए खून देने वाले मजनू हैं, राम के नाम पर मलाई खाने वाले तो नहीं है भैया।
1: जहां आस्था का सैलाब उमड़ता है, जहां राम नाम की धुन गूंजती है, जहां पुरुषोत्तम राम बसते हैं, वहां राम के दान की लूट हर किसी को हैरान कर रही है। यकीन नहीं हो रहा कि भगवान के घर में चोरी हो गई, अब चोर की तलाश है, चढ़ावा उड़ाने वालों की खोज है। आज SIT जांच का तीसरा दिन है, बस 12 दिन बाद SIT से रिपोर्ट तलब की गई है। जांच के घेरे में वो सब हैं जो व्यवस्था देखते हैं, वो सब हैं जो दान का हिसाब किताब रखते हैं, चढ़ावे की गिनती करते हैं। सूत्रों के मुताबिक SIT ने काउंटिंग रूम के सभी अहम DVR अपने कब्जे में लिए। अब इन रिकॉर्डिंग से ये पता लगाने की कोशिश होगी, क्या किसी ने चढ़ावे की रकम के साथ छेड़छाड़ की, या फिर आरोपों के पीछे कोई और कहानी है। जांच सिर्फ कैमरों तक सीमित नहीं है, मंदिर में रकम गिनने वाले SBI कर्मचारियों, सेवादारों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब तक 43 से ज्यादा लोगों से सवाल जवाब हो चुके हैं। अभी तक किसी को आरोपित घोषित नहीं किया गया, लेकिन जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सवाल उन सब पर उठ रहे हैं। पूछताछ में 9 कर्मचारी ऐसे मिले जिन्होंने महंगे मोबाइल लिए, कार खरीदी। घेरे में चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव भी हैं। आरोप है कि उसने हॉस्टल बनवाए, कार खरीदी। टिन्नू यादव की पत्नी ने भी अपने पति पर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि उनके पास जो है वो मंदिर बनने से पहले का है। SIT की नजर उन लोगों पर भी है जिनकी मंदिर की व्यवस्था और चढ़ावे की प्रक्रिया में सीधी भूमिका है। इनमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव का नाम है। जांच के दूसरे दिन कल ही SIT टीम मंदिर के अंदर पहुंची थी। इस टीम में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के IG किरण S और UP सरकार के वित्त विभाग के अफसर नील रतन भी शामिल हैं। कल तीनों अलग अलग कारों से पहुंचे थे। इसी बीच कार सेवक संतोष दुबे की शिकायत भी जांच का हिस्सा बन सकती है। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की मांग की। SIT तीन बड़े सवालों का जवाब तलाश रही है। पहला, क्या सच में चढ़ावे की रकम में कोई गड़बड़ी हुई? दूसरा, अगर हुई तो जिम्मेदार कौन है? और तीसरा, क्या सिस्टम में कोई ऐसी कमी थी जिसका फायदा उठाया गया? संतोष शर्मा के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.

0: दुनिया भर की अर्थव्यवस्था जब डगमगाने लगती है तब रईसों से लेकर आम आदमी तक को गोल्ड ही याद आता है। मुश्किल दौर में सोने की चमक फीकी पड़ने की जगह बढ़ जाती है। इसी भरोसे की वजह से सेंट्रल बैंकों का रुझान एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। दुनिया भर के 76 केंद्रीय बैंकों पर किए गए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सर्वे के मुताबिक 89% रिजर्व मैनेजर्स को 12 महीनों में ग्लोबल गोल्ड रिजर्व में भारी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वहीं 84% केंद्रीय बैंक 5 साल में ग्लोबल रिजर्व में सोने का हिस्सा बढ़ने की बात कह रहे हैं, जबकि रिकॉर्ड 45% सेंट्रल बैंकों ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में गोल्ड स्टॉक बढ़ाएंगे। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के मुताबिक वैश्विक भंडार में अमेरिकी डॉलर का दबदबा लगातार घट रहा है। ऐसे में 74% रिजर्व मैनेजर्स का अनुमान है कि 5 साल बाद दुनिया में डॉलर की हिस्सेदारी बेहद कम हो जाएगी। इस उठापटक की वजह से केंद्रीय बैंक डॉलर का मुंह छोड़कर सोने को अपनी तिजोरियों में भर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ये बदलाव आम खरीदारों की जेब पर सीधा असर डालेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लॉन्ग टर्म में सोने की कीमतों का नजरिया बहुत आक्रामक और तेज दिखाई दे रहा है और एक साल में ग्लोबल मार्केट में सोना 6100 से $6500 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। देश के भीतर भी देखें तो पिछले एक साल में कीमतों में करीब 40% की बढ़त दर्ज की गई है। इस तेजी की बड़ी वजह सेंट्रल बैंकों की तरफ से की जा रही रिकॉर्ड खरीदारी और डॉलर के मुकाबले रुपए में आई कमजोरी है। दुनिया के तमाम देश इस समय भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से कागजी मुद्रा या सरकारी बॉन्ड के मुकाबले सोने पर भरोसा सबसे ज्यादा मजबूत हुआ है। पिछले 4 साल में दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने औसतन 1000 टन सोना हर साल खरीदा है। सर्वे में शामिल 90% बैंकों ने माना कि संकट के समय गोल्ड का बेहतरीन परफॉर्मेंस ही उसे खरीदने की सबसे बड़ी वजह है। भारत के लिहाज से देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भी हाल के वर्षों में अपने गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ाया है। रिजर्व बैंक का कुल भंडार 822 टन से बढ़कर अब करीब 880 मीट्रिक टन के स्तर पर पहुंच गया है। इसी के साथ केंद्रीय बैंक सोना खरीदने के साथ ही उसे सुरक्षित रखने के लिए स्टोरेज लोकेशंस में भी बदलाव कर रहे हैं। तमाम देश अपने सोने को विदेशी बैंकों से निकालकर वापस अपने देश के भीतर सुरक्षित तिजोरियों में शिफ्ट कर रहे हैं। साफ है कि दुनिया कितनी भी आधुनिक हो जाए, लेकिन जब बात सबसे सुरक्षित संपत्ति की आती है तो सोने का कोई मुकाबला नहीं है। ग्लोबल मार्केट में सोने की बढ़ती ताकत और सेंट्रल बैंकों की इस महा खरीदारी से ये साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में गोल्ड के दाम आम आदमी को और चौंका सकते हैं। आदित्य केराड़ा, आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

अमेरिका ईरान शांति समझौते पर औपचारिक मोहर आखिरकार लग गई है। पेरिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एमओयू पर दस्तखत कर दिए हैं। डील की शर्तों पर दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त कर दी है। तो आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, 39 दिनों की जंग, 115 दिनों का इंतजार और उसके बाद आती है ये वो ऐतिहासिक तस्वीर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते पर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत कर दिए हैं। समझौते की शर्तों पर अब दोनों देशों की सहमति है। सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं बल्कि ईरान के राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने भी इस पर दस्तखत कर दिए हैं। और अब नजर होगी अब से 30 घंटे बाद स्विट्जरलैंड में होने वाली दोनों देशों के बीच की उस मुलाकात की। देखिए ये पेजिश्कियान की वो तस्वीरें हैं जब उन्होंने शांति समझौते पर दस्तखत किए और दोनों देशों ने अब इस पर औपचारिक मंजूरी दे दी है। 14 बिंदुओं से बना ये एमओयू जिसमें लेबनन समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म, दोनों देश एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये दूसरा 60 दिनों में अंतिम समझौते की कोशिश होगी जिसमें न्यूक्लियर मुद्दे पर भी चर्चा शामिल है। ये वो 14 बिंदु हैं। एमओयू पर साइन के बाद अमेरिकी नौसैनिकों की नाकेबंदी तुरंत हॉर्मुज से खत्म हो जाएगी। पांचवा बिंदु ये कि ईरान 30 दिनों के भीतर व्यापारिक जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित करेगा। ये वो 14 बिंदुओं में से कुछ हैं। ईरान के आर्थिक विकास के लिए 300 अरब डॉलर की फंडिंग भी की जाएगी यानी अमेरिका मदद भी करेगा और ईरान से सभी प्रतिबंध एक एक करके फेज में खत्म हो जाएंगे ताकि ईरान की अपनी अर्थव्यवस्था पटरी पर आए। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, इस पर अंतिम समझौता भी होगा जिस पर आगे 60 दिनों में बातचीत होगी। अमेरिका ईरान अंतिम समझौते तक यथास्थिति बनाए रखेंगे यानी अब कोई ड्रोन, मिसाइल, एयर स्ट्राइक नहीं होगी। ईरान को कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात की छूट

0: खासतौर से एशिया में, वो पहाड़ों के नीचे दबा हुआ है। उस पर जो है चीन की तरफ से भी ये कोशिश हो रही है कि अगर उसको तबाह करना है तो वो एक छोटा कार्यक्रम नहीं है, उसके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट चाहिए, तो जाहिर है कि उसके लिए जो है रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन ईरान ने पहले भी ये साफ किया था, अब भी ये वो साफ कर रहा है, और वो ईरान के राष्ट्रपति पेजिशकियान की तरफ से भी कहा गया है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं रखना चाहता है, वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना
1: और
0: चाहता है।
1: आखिरकार उस पर सहमति दिखाई दे रही है अशरफ, इसीलिए हम देख रहे हैं कि पेजेशकियान ने भी उस 14 बिंदु के जो एमओयू है उस पर दस्तखत कर दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी दस्तखत कर दिए हैं। इस पूरी खबर पर हमारी नजर लगातार बन रही है। बहुत शुक्रिया अशरफ वानी तमाम जानकारी के लिए। आखिरकार G7 दुनिया भर के लिए खुशखबरी लेकर के आया, इसका असर भारत पर भी सकारात्मक तरीके से होगा, भारत के लिए भी खुशखबरी है। लेकिन भारत की नजर से एक और घटनाक्रम G7 में हुआ, वो ये कि 16 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 1-to-1 मुलाकात हुई। इस मुलाकात में ट्रेड डील से लेकर रक्षा से लेकर सुरक्षा पर बातचीत हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद जब ट्रंप और मोदी मीडिया के सामने मुखातिब हुए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के साथ अपनी दोस्ती की संपूर्ण व्याख्या की।
2: सोलह महीने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई तो रिश्तों पर तनाव की बर्फ कुछ यूं पिघलती हुई नजर आई। एक बार नहीं, कई बार दोनों की पर्सनल केमिस्ट्री कैमरे में कैद हुई। भले ही लंबे वक्त के बाद मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई, लेकिन जब मीडिया के सवालों का जवाब देने ट्रंप आए तो मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। मोदी से दोस्ती से लेकर भारत से रिश्तों को लेकर अपने दिल की बात दिल से कही। बात दोस्ती से शुरू हुई और दोनों मुल्कों के रिश्तों तक पहुंची। ट्रंप ने दिल खोलकर तारीफ की।
3: India can do anything they want with us. We have the best relationship. We cannot be closer than we are. Would you say that, sir? I don't think we can be any closer. Both him and I and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer. Thank you.
2: भारत और अमेरिका के रिश्तों को ट्रंप ने पीएम मोदी से अपने रिश्तों के साथ जोड़ा। दुनिया के सामने डंके की चोट पर ऐलान किया कि मोदी के भारत पर कभी संकट आया तो ढाल बनकर अमेरिका खड़ा रहेगा।
4: And the United States, sorry, I'm speeding, I won't.
3: That's okay.
4: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
3: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now...
2: प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष ने अपने दिल की बात बताई। ट्रंप ने मोदी की वर्किंग स्टाइल की संपूर्ण व्याख्या की।
3: Very close. We've been there for a little while and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said, no, he's very tough. He's a tough trader.
2: जब पत्रकारों ने ट्रंप से दुनिया में भारत के दबदबे को लेकर सवाल पूछा तो ट्रंप ने दो टूक जवाब देते हुए यही कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा।
3: Plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role.
2: पीएम मोदी की मेजबानी को आज तक ट्रंप नहीं भूले हैं। ट्रंप ने यही कहा कि पीएम मोदी की मेजबानी में हुई मेहमान नवाजी आज भी याद है।
3: Well, we had a great visit last time in India. We opened up that new stadium and I think there were 300-400,000 people. It seated like about 150,000 and there were 250,000 outside and there were 100,000 on the grass. That was, I don't know if that record's ever been broken, but we had a great time in India.
1: भारत और अमेरिका के बीच तल्ख

0: रिश्तों की बर्फ 16 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने आए। दोनों ने हाथ मिलाया। इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें जमी थी। फिर पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने अपनी बात कही। ओमान की खाड़ी में तीन भारतीयों की नाविकों की मौत का मुद्दा हो या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया में आए संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने हर उस मुद्दे को अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने उठाया।
1: 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप की हो गई मुलाकात। फ्रांस में आमने सामने आए मोदी और ट्रंप। मोदी क्या बोले? तीन भारतीय नाविकों की मौत पर डोनाल्ड ट्रंप से क्या बोले मोदी? ईरान के साथ अमेरिका की डील, अब हॉर्मुज संकट पर सीधी बात। G7 में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले, मिट गए गिले शिकवे। ईरान के साथ अमेरिका की डील, अब हॉर्मुज संकट पर सीधी बात। G7 में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले, मिट गए गिले शिकवे। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर दुनिया की नजरें जमी थी और 16 महीने बाद जब ये दोनों नेता आमने सामने आए तो सारी शंकाएं, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। पीएम मोदी ने अपनी पिछली यानी फरवरी 2025 की मुलाकात को याद किया।
2: राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे, उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं।
1: लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा ओमान की खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में मारे गए तीन भारतीय नाविकों की हो रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने ही भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठा दिया।
2: एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
1: क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने पीएम मोदी तीन भारतीय नाविकों की मौत पर कुछ कहेंगे, भारत की बात रखेंगे, तो पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा रख दिया।
2: एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: ईरान और अमेरिका के बीच डील हो चुकी है और अब 19 जून को इस डील पर स्विट्जरलैंड में साइन होने हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि हॉर्मुज खुला रहे।
2: एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है।
0: रुक रहे ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।

0: सोमवार और मंगलवार को दो दिनों में 19 घंटे तक एसआईटी ने उस मामले की जांच की है, जिसे लेकर लगातार सियासी हमले तेज हैं।
1: आज उस चढ़ावे की आस्था को चीजों को आपने लूट लिया। कहाँ हैं आपके सारे लोग जो बड़ी बड़ी बात करने वाले।
2: एसआईटी के माध्यम से जो जांच होने जा रही है, एसआईटी की जांच कौन करेगा?
0: जिस एसआईटी पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, उस जांच टीम ने अयोध्या के राम मंदिर परिसर में तमाम सुराग तलाशे हैं, जानकारियां जुटाई है, जानने की कोशिश की है कि क्या चढ़ावे का पैसा सीधे दान पेटी से निकाला जा सकता है। जांच की है कि चढ़ावे के पैसे की गिनती से लेकर बैंक में जमा कराने की प्रक्रिया के बीच में कहां से चोरी की गई। चंदा चोरी के आरोपियों में एक नाम है चंपत राय के ड्राइवर रमाशंकर यादव का। एसआईटी की जांच के बीच वो अब सामने आया है और तमाम आरोपों को निराधार बता रहा है।
3: जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सब निराधार है, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है।
0: मंगलवार को एसआईटी ने मंदिर परिसर में करीब 11 घंटे तक जांच की। 15 जून को भी 8 घंटे की जांच चली थी। अब इस मामले को लेकर पूर्व कार सेवक संतोष दुबे ने पुलिस से शिकायत भी कर दी है। मयंक शुक्ला के साथ संतोष कुमार, अयोध्या आज तक।

0: दस लाख कैश, 40 लाख का प्लॉट, 1.5 करोड़ की जमीन, महंगी लग्जरी कार, 3 महंगे आईफोन, 2.98 करोड़ की नकदी, करोड़ों का सोना और न जाने क्या क्या। अफवाहें उड़ रही हैं कि संदिग्धों की कितनी संपत्ति का पता चल रहा है, लेकिन अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 2 दिनों की जांच के बाद अभी तक किन संदिग्धों पर शक बढ़ा है, किन आरोपियों की संपत्ति जांच के दायरे में है, इसका आधिकारिक बयान ना तो ट्रस्ट की ओर से आया है और ना जांच एजेंसियों की ओर से। फिर भी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर रहे चिन्नू यादव का ही नाम आखिर क्यों सबसे ऊपर लिया जा रहा है। आरोप है कि ऑटो चलाने वाले टिन्नू के पास 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, वो टिन्नू अपनी सफाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि जब राम मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावा चोरी मामले में संदिग्धों के अंदर बंसल है, मिश्रा है, दुबे है, पाठक है, तो सबसे ज्यादा चर्चा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की ही क्यों हो रही है। पूनम यादव रुआंसी होकर बताती है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जब बड़े बड़े चेहरे हैं तो सिर्फ टिन्नू यादव पर ही निशाना क्यों। टिन्नू की पत्नी कहती है कि ये कुछ नहीं, सिर्फ उनके पति को मंदिर से निकालने की साजिश हो रही है। मतलब मामला अब पीडीए वाली राजनीति की तरफ बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि जिस राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच को लेकर अखिलेश यादव जोर शोर से मांग कर रहे थे, वो अब एसआईटी गठन पर खुश नहीं है। लगे हाथ अखिलेश ये भी ऑफर करते हैं कि किसी भी जाति के पीड़ित अगर खुद को बीजेपी से जुड़कर अपमानित महसूस कर रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी में आ जाएं।
1: उसे कहिए कि क्यों नाराज हो, समाजवादी पार्टी में आइए।
0: टिन्नू यादव के परिवार का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में यादव जाति का होने की वजह से ही उनको अपमानित किया जा रहा है, जबकि पैसा चोरी करते पकड़े गए लड़कों का कोई जिक्र तक नहीं कर रहा। इस पूरे मामले में संदिग्ध तमाम है, नोट गिनने वालों से लेकर जमा करने वालों तक की तफ्तीश चल रही है। फिलहाल एसआईटी की जांच का 3रा दिन है और अगले 4 दिनों में अंतरिम रिपोर्ट आएगी तो संदिग्धों का पता चल जाएगा। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
5: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes. And dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.

बढ़ती महंगाई के इस दौर में पेट्रोल डीजल के प्राइस में आई हालिया तेजी पर अब ब्रेक लगने का यकीन बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में महज 4 दिनों के भीतर करीब 16% की भारी गिरावट आई है, जिसके बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब $77 प्रति बैरल पर आ चुकी है। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई इस गिरावट के पीछे एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक वजह सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट को राहत दी है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते के बाद दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से खुल गया है। दुनिया का करीब 20-30% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है, जो युद्ध की वजह से बंद होने की कागार पर था। होर्मुज जल डमरू मध्य के दोबारा खुलने से कच्चे तेल की सप्लाई चेन में आ रही रुकावटें पूरी तरह खत्म हो गई हैं। सप्लाई बहाल होने और कच्चे तेल के रास्ते होने के बाद सभी के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल कब और कितना सस्ता होने जा रहा है। एक्सपर्ट्स और मार्केट रिसर्च के मुताबिक अगर क्रूड ऑयल की कीमतें इसी तरह $80 प्रति बैरल के आसपास स्थिर रहती हैं, तो सरकारी तेल कंपनियां कीमतों में कटौती कर सकती हैं। अनुमान के मुताबिक भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में 5 रुपए से लेकर 7 रुपए प्रति लीटर तक की कमी की गुंजाइश हालात सामान्य होने के बाद बन सकती है। इतना ही नहीं, क्रूड सस्ता होने से आने वाले दिनों में LPG सिलेंडर के प्राइस में भी राहत मिलने के पूरे आसार बन रहे हैं। जाने ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अगर युद्ध के दौरान हुए नुकसान से जल्दी उबर जाती हैं, तो फिर वो आने वाले दिनों में होने वाले मुनाफे का सीधा फायदा आम ग्राहकों को ट्रांसफर कर सकती हैं। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि कंपनियां तुरंत दाम घटाने की जगह कुछ दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिरता को मॉनिटर करेंगी। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो मिडिल ईस्ट के शांत होने से भारतीय रसोई से लेकर सड़क पर चलने वाली गाड़ियों तक हर जगह बड़ी राहत मिलना तय माना जा रहा है। आदित्य के राणा आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

अमेरिका ईरान शांति समझौते पर औपचारिक मुहर लगी। ट्रंप और पिज़िश्कियान ने समझौते पर दस्तखत किए। एमओयू डील की शर्तों पर दोनों पक्षों की सहमति। फ्रांस में ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, हम ट्रेड डील के बेहद करीब। पीएम ने उठाया नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा। आज बीवरटेक समिट में शिरकत की है योजना। शिवसेना का ऑपरेशन टाइगर पूरा। सूत्रों के हवाले से खबर। अज्ञात स्थल पर भेजे गए यूबीटी के बागी सांसद। 2 से 3 दिनों में औपचारिक ऐलान। यूबीटी ने व्हिप जारी किया। समाजवादी में बगावत को लेकर ओपी राजभर के दावे के बाद केशव मौर्य का बयान। कहा, 25 सांसद टूटने को तैयार। अखिलेश का जवाब डरा रही है बीजेपी। कोटा में छात्रों के साथ राहुल गांधी का संवाद। देश की शिक्षा व्यवस्था को बताया वसूली की मशीन। कहा, सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन पर हो रहा है काम।

0: सबसे बड़ी सबसे शुभ खबर ये कि अमेरिका ईरान शांति समझौते पर औपचारिक मोहर लग गई है। पश्चिम एशिया का तनाव युद्ध की स्थिति अब खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि आखिरकार उस दस्तावेज पर दस्तखत हो गए जिसके बाद ईरान और अमेरिका युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने को तैयार हैं। पेरिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एमओयू पर दस्तखत कर दिए। डील की शर्तों पर दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की है, तो ट्रंप के साथ साथ ईरान के राष्ट्रपति पेजिशकियान ने भी उस पर दस्तखत कर दिए हैं। देख लीजिए इन दो तस्वीरों को। इन दो तस्वीरों के साथ ही दुनिया की स्थिति बदल जाती है। एक तरफ पश्चिम एशिया के वर्ल्ड ऑर्डर में ईरान की स्थिति बदलती है, तो दूसरी तरफ पश्चिम एशिया के साथ दुनिया के सामने खड़ा ऊर्जा संकट भी अब खत्म होने की उम्मीद।
1: इस पूरी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और आइए अब देखते हैं भाग्य चक्र।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जब भी घर में किसी नवजात का जन्म होता है, कोई बेटा आता है, कोई बेटी आती है, तो हम बड़े प्रेम से उसका नाम रखते हैं। बच्चे का नाम बड़ा महत्वपूर्ण होता है और नाम रखने में बड़ी सावधानियां रखनी चाहिए। तो आज हम ये जानेंगे कि ज्योतिष के हिसाब से किस प्रकार बच्चे का नाम रखना चाहिए। इसके अलावा आपको बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

20 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 6:58 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, प्रातः 11:32 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि जब आप अपने बच्चे का नाम रखते हैं तो उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि नाम का महत्व क्या है। देखिए, नाम किसी व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक संरचना को व्यक्त करते हैं, उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बताते हैं। केवल नाम से किसी व्यक्ति के जन्म जन्मांतर को जाना जा सकता है। नाम का अगर एनालिसिस किया जाए तो व्यक्ति का स्वभाव, आकार, रूप, रंग और गुण निर्धारित होता है। नाम काफी हद तक किसी व्यक्ति के भाग्य पर सीधा असर डालता है, यानी आपका जो नाम है वो दरअसल आपके भाग्य से जुड़ा हुआ होता है और आपके भाग्य की वजह से आपको जीवन में प्राप्त होता है। नाम पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले की सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें। केले का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, वाहन का सुख मिलेगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

शांति से बचें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आपको ऐसा लगता होगा कि किसी भी व्यक्ति का जो नाम है वो ऐसे ही संयोग से मिल जाता है। तो क्या किसी व्यक्ति का नाम केवल संयोग से मिलता है या नाम में कोई रहस्य है? देखिए, व्यक्ति का जो नाम होता है वो कोई संयोग नहीं है, वो व्यक्ति के कर्म और उसके संस्कारों की वजह से इस जीवन में वो नाम मिलता है। जिस नाम से आप दुनिया में जाने जाते हैं, आपको भले ही लगता हो कि ये नाम मैंने रखा है, लेकिन ये नाम आपकी किस्मत तय करती है, ये नाम आपकी किस्मत बताती है, कोई और नहीं बताता। जीवन में सारा आकर्षण, आपके सारे रिश्ते और उतार चढ़ाव आपके नाम के ऊपर निर्भर करते हैं। ईश्वर के किस स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण होगा, आप आध्यात्मिक होंगे या नहीं होंगे या मटीरियलिस्टिक होंगे, ये भी आपके नाम से पता चल जाता है। तो दरअसल जो नाम आपको मिलता है वो आपके प्रारब्ध के हिसाब से और आपके संस्कारों के हिसाब से इस जीवन में आता है और उसी नाम के हिसाब से जीवन में बहुत सारी चीजें डिसाइड होती हैं। नाम के ऊपर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर के मामले हल होंगे, कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें, कोई बड़ा निर्णय ना लें, इस समय संयम से काम लें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

लोग बन रहे हैं, नौकरी में बेहतरी होगी, कारोबार में बड़ी सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं

आज का पहला प्रश्न मोहिनी जैन ने हमें लिखा है और मोहिनी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। 25 अप्रैल 1980 का जन्म है। जन्म का समय है दोपहर में 4:10। जन्म का स्थान है आगरा, उत्तर प्रदेश। मोहिनी कह रही हैं कि मैं अभी नौकरी करती हूँ टीचिंग की और मैं अब अपना काम करना चाहती हूँ, तो क्या मैं अपना शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकती हूँ, सफलता मिलेगी? मोहिनी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको शिक्षा के क्षेत्र में अपना स्वतंत्र काम जरूर करना चाहिए और वो काम आपको अभी से शुरू कर लेना चाहिए। अगर अभी से आप ऐसा करें तो आपको जल्दी सफलता मिल पाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपका स्वतंत्र काम और आपका

ना चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार शाम को पन्ना पहने सुबह और शाम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो लाभ होगा। अब आपके घर में बेटा आया, बेटी आई, नवजात शिशु आया, तो बच्चे का नाम रखने में किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, सामान्यतः तीन तरीके के नाम प्रचलन में होते हैं, तीन तरीके के नाम लोगों के जाने जाते हैं, राशि का नाम, घर का नाम यानी निकनेम, और सामाजिक नाम, जिस नाम से आप जाने जाते हैं, जो नाम स्कूल में, कॉलेज में, नौकरी में चलता है। जिस अक्षर से राशि का नाम बनता हो उस अक्षर से कभी भी पुकारने का नाम नहीं रखना चाहिए। जिस नाम से बच्चा दुनिया में प्रसिद्ध होगा, जिस नाम से बच्चा दुनिया में जाना जाएगा, उस नाम को रखने में ही सावधानी रखनी चाहिए। बच्चे की जन्म कुंडली में जो ग्रह सर्वाधिक मजबूत हो या सर्वाधिक बेहतर हो, उसी ग्रह के अक्षर से बच्चे का नाम रखना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे को जीवन में ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। बच्चे का नाम सार्थक होना चाहिए, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। अर्थहीन या फैशनेबल नाम नहीं होना चाहिए। आजकल लोग राम जाने क्या क्या नाम रख लेते हैं, कियान, विवान, इवान, ऐसे ऐसे नाम जिनका अर्थ भगवान भी नहीं जानते होंगे। अर्थहीन फालतू के फैशनेबल नाम मत रखिए। आपके हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं जिनको नाम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बच्चे का नाम या तो जन्म के साथ ही रख देना चाहिए या शुभ मुहूर्त देख करके उस शुभ मुहूर्त में बच्चे का नामकरण होना चाहिए। तो बच्चे का नाम शुभ समय में शुभ तरीके से रखें, अर्थ वाला नाम रखें, कुंडली के मजबूत ग्रह का नाम रखें, तो बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। नाम पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

होंगे, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग

स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

दान हो सकता है। केले का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब ऐसा हो सकता है कि जाने अनजाने या जानकारी के अभाव में आपने बच्चे का नाम गलत रख लिया है। अगर बच्चे का नाम गलत रख लिया है तो क्या करेंगे? अगर संभव हो ऐसा आसानी से कर सकें तो बच्चे का नाम तुरंत बदल दीजिए, अन्यथा कोई अच्छा सा नाम रखिए एक और जो अच्छा सा नाम रखें उसी नाम से पुकारिएगा। अगर किसी देवी या देवता के नाम पर बच्चे का नाम रखा है तो नाम के उच्चारण में सावधानी रखिए। बच्चे का नाम रखा किशन और किशनवा कहते हैं, बच्चे का नाम रखा राम और रामू कहते हैं, तो वो उचित नहीं है। अगर देवी देवता के नाम पर बच्चे का नाम रखा है तो नाम के उच्चारण में सावधानी रखिएगा। बहुत जरूरत हो तब ही, अगर बहुत आवश्यकता हो तो बच्चे के नाम की स्पेलिंग आप बदल सकते हैं, लेकिन नाम की स्पेलिंग बदलना एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बड़ी आसानी से नहीं होती। सोच समझ करके नाम की स्पेलिंग बदलिए और जितना जल्दी नाम की स्पेलिंग बदलेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

दूंगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।

होगी, धन खर्च बढ़ा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। अगर हम दान देना चाहते हैं और कोई निर्धन व्यक्ति ना मिले तो किसको दान करना चाहिए? देखिए, अगर आप दान देना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होगा कि किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें। अगर निर्धन व्यक्ति ना मिले तो दान की चीज को मंदिर में ले जाकर देवी देवता के सामने रख आएं। अगर कोई खाने की चीज है, फल है, मिठाई है, गुड़ है, अनाज है, तो आप इसको गाय को भी खिला सकते हैं। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं।

नंबर दो, मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी। नंबर तीन, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर चार, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। नंबर पांच, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। नंबर छह, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर सात, निर्णयों में सावधानी रखें। नंबर आठ, किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। नंबर नौ, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाए।

हैं शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। शिक्षा के मामले में और संतान के मामलों में आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न कुंती देवी ने हमें लिखा है और कुंती देवी हमें बिहार से मेल लिखती हैं। अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी बेटी की जन्म तारीख है 4 मई 1995। जन्म का समय सुबह के 7:55। जन्म स्थान है पटना। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी का करियर और जीवन तो बहुत अच्छा है लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो मेरी बेटी का विवाह कब तक होगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा। कुंती जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से उनके विवाह का समय चल रहा है साल 2028 के मार्च से जून के बीच में या मार्च से जुलाई के बीच में 2027 में इनके विवाह की संभावना बनती है और इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ होगा। आप ऐसा करिए, रोज सुबह और रोज शाम अपनी बेटी के नाम से 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए और बेटी के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिए। हर बृहस्पतिवार को मंदिर में केले का दान करिए या गाय को केला खिलाइए, इससे आपकी पुत्री का विवाह जल्दी होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से निकलिएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रख लीजिएगा, आपको लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए या चिकित्सा के लिए जाना है तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई विशेष खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा तुला राशि के लिए, धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा मेष राशि के लोगों को, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। आज चतुर्थी तिथि है, रिक्तता तिथि है। आज कोई भी नया काम शुरू मत करिएगा, लेकिन आज थोड़ा सा समय निकाल कर किसी भी मंदिर चले जाएं, मंदिर जाकर के दर्शन करें तो

अमेरिका ईरान शांति समझौते पर औपचारिक मुहर, ट्रंप ने पेरिस में साइन किया एमओयू, डील की शर्तों पर दोनों पक्षों की सहमति। अमेरिका ईरान के बीच 14 सूत्रीय समझौता, ट्रंप और पेजिस्कियान ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इमैनुअल मैक्रों ने शेयर किया ट्रंप के हस्ताक्षर का वीडियो, कहा अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बाद कच्चे तेल के दाम में गिरावट लगातार जारी, ब्रेंट क्रूड $79 से

खान सर पर FIR के लिए रोशन आना ने डाला कदम को थाने पर डेरा, चार घंटे बाद मामला दर्ज होने पर भड़क। FIR दर्ज नहीं होने पर रोशन आनंद ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप, कहा जब तक केस दर्ज नहीं होगा तब तक थाने के बाहर धरना देंगे। रोशन आनंद ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस को प्रेशर है, खान सर की ओर से न्याय नहीं मिलता है तो हमको पटना पुलिस गोली मार दे। जमुई में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर चिराग पासवान ने जमकर किया वार, कहा राहुल गांधी भ्रम में जी रहे हैं और यही कारण है कि लगातार उनकी हार हो रही है। मेरठ से ऋषिकेश तक दौड़ लगाएगी हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन, उत्तराखंड और यूपी सरकार के बीच सहमति बन गई। बिहार के रेलवे स्टेशन में छात्रों का जन सैलाब उमड़ा, कटिहार में राजधानी ट्रेन में नहीं जाने दिया तो परीक्षार्थियों ने बवाल किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। परीक्षा खत्म होते कटिहार स्टेशन पर भीड़ उमड़ी, परीक्षार्थियों को नियंत्रित करने में पुलिस रेलवे के पसीने छूटे। बिहार पुलिस परीक्षा के बाद गया जंक्शन पर अभ्यर्थियों का सैलाब उमड़ा, सीटों के लिए मची जमकर मारामारी। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर भी परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ी, मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे प्रशासन अलर्ट। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर मोतिहारी बापूधाम स्टेशन पर छात्रों की भारी भीड़ देखने को मिली, खिड़की के सहारे ट्रेन में घुसते दिखे छात्र। द्वारका में मानसून की शुरुआत के साथ समंदर में 12 से 15 फीट ऊंची लहरें उठी, गोमती घाट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में मानसून सक्रिय हो गया है, मौसम विभाग का दावा है कि बिहार झारखंड की ओर अब मानसून बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन हल्की भारी बारिश की संभावना जताई, दक्षिण यूपी और एमपी में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी बारिश जारी रह सकती है। नई दिल्ली में 19 जून तक बारिश की संभावना, पहाड़ी राज्यों में 22 जून तक हो सकती है बारिश। देवभूमि में पूरी आस्था के साथ जारी है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। पवित्र देवताल भी श्रद्धालुओं और साधु संतों का पहुंचना जारी है, बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र स्थान। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, चंद्रकूट का यात्री निवास श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम, गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद पूरे मार्ग और सुविधा केंद्र और सुरक्षा चाक। हरियाणा के संदीप आर्य जांगड़ा के नाम अनोखा कीर्तिमान, लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। संदीप ने गुजरात के मोढ़ेरा में लगातार 37 घंटे 21 मिनट तक सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, पिछले 15 साल के अभ्यास से बनाया विश्व कीर्तिमान। सूरत के सिर्फ 1 साल 8 महीने के मासूम करण मिथुन भाई परमार की याददाश्त बनी चर्चा का विषय, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने IBR अचीवर के खिताब से नवाजा। नेदरलैंड्स के रोटरडम में भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का शानदार खेल, FIH प्रो लीग में भारत ने विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से दिमाग। मैच के 7वें मिनट में मनदीप सिंह ने गोल किया, फिर 13वें मिनट में शिलानंद लाकड़ा ने गोल किया तो नीलकांता शर्मा ने 35वें मिनट में गोल दागा। उत्तर प्रदेश के बलिया में भोजपुरी स्टार पवन सिंह और अभिनेता सांसद रवि किशन के कार्यक्रम के दौरान भीड़ बेकाबू हुई, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अमरोहा में चोरी के शक में जीजा साले को ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा, 3 ग्रामीणों को पुलिस ने हिरासत में लिया मुकदमा दर्ज, बाकी फरार ग्रामीणों की तलाश जारी। जम्मू विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्यवाही, रेलवे स्टेशन के पास 10 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया, 30 से अधिक अवैध ढांचे ध्वस्त किए गए। राजस्थान के अलवर में कार और बुलेट की टक्कर के बाद विवाद हो गया, घर पर पथराव और तोड़फोड़ का CCTV फुटेज वायरल हुआ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर इलाके में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, पुलिस ने राशिद हत्याकांड में शामिल 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नशे की हालत में ड्यूटी कर रहे बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों की लोगों ने जमकर पिटाई की, मामला शांत कराने पहुंचे पुलिस कर्मियों की भी साथ झड़प। बदायूं में भीषण सड़क हादसा हुआ, ई रिक्शा और ट्रैक्टर की टक्कर में 6 महिलाओं की मौत, 3 घायल। बिहार के समस्तीपुर में पीट पीट कर युवक की हत्या, गुस्साए लोगों ने NH-28 को जाम किया, टायर जलाकर आग जली। महाराष्ट्र के बुलढाणा में कर्ज माफी की मांग को लेकर किसान का जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ, DM ऑफिस के बाहर आत्मदाह की कोशिश की, दूसरे किसान ने फेंकी सब्जियां। धनबाद में चलती स्कॉर्पियो में भीषण आग लगी, कार में सवार लोग बाल बाल बचे। ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा हुआ, डंपर ट्रक की टक्कर के बाद आग लगी, 2 चालकों की जिंदा जलकर मौत। फिरोजाबाद में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर हादसा हुआ, गुजरात असम जा रही मालगाड़ी में आग लगी, 10 गाड़ियां जलकर खाक। महाराष्ट्र के जालना में बैंक में फंसी रकम दिलाने का झांसा देकर व्यापारी से 17 लाख रुपए की ठगी, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, पुलिस ने जांच शुरू की। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने हाईवे पर फायरिंग करने वाले 3 छात्र बदमाशों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। राजस्थान के अलवर में बेसमेंट की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ, मिट्टी धंसने से जनरेटर गिरा, दबने से मजदूर की मौत, विरोध में परिजनों का हंगामा।

0: Your sales event. The specially tagged vehicles, including the Sorento, Sportage, Carnival, as well as the Nero Hybrid. All backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. So the gift of summer can keep on giving for summers to come. Kia, movement that inspires.
1: Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Event ends 7/6/26. See dealer for warranty details.
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
5: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: आगे आगे करेक्ट करेक्ट
10: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता।
12: आग जलाए या तूफान झिंझोड़े,
13: मौसम बदले
14: फिर भी हर सपना खड़ा रहे,
15: क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो
16: आपका घर कभी नहीं हिलता।
17: रीजेंसी थर्मैक्स TMT बार्स,
18: आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।
19: इन एसोसिएशन विद
20: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
21: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
19: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
22: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
23: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
24: किस टूट की चर्चा कर रहे हैं जब 4 महीना रह गया चुनाव को,
25: है ना? अभी आपने देखा होगा कि राम गोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया और उन्होंने चिट्ठी लिया और हाथ जोड़ा, ये भी हाथ जोड़े, मुस्कुराए, अपना चल दिए राम गोपाल जी। तो चिट्ठी में क्या लिखा हो पता है?
24: क्या लिखा?
25: कि CBI ने जो FIR में खनन वाले में नाम अखिलेश जी का डाला है उसको बचाना है, और गुमती रिवर फंड में जो परिवार का, हमारे लड़के का है, और शिवपाल जी का नाम, इन लोगों को बचाना है, और ये फला फला सांसद हैं, इनको आपके साथ हम भेज देते हैं, हम लोगों का जान बचा रहे।
24: चिट्ठी आपने पढ़ ली क्या?
25: क्या लिखे बतावें राम गोपाल जी बतावें कि क्या लिख रहे हैं वो चिट्ठी में, वो क्यों नहीं खुलासा करते हैं? वो अपना बचे बदे गायत्री प्रजापति जेल में रही हैं, खनन वाले मंत्री जिनके खिलाफ FIR CBI ने किया, उसी में अखिलेश जी का FIR में नाम आई, जो तो राति के गुलदस्ता लेके भिड़ जाते हो योगी जी के, इनकी जान बचौले रहा मंचवा पर।
24: तो सांसद किस तरीके से मदद करने वाले हैं चिट्ठी में आप?
25: अरे सब टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं, अब यहाँ नहीं रहेंगे, पेट भर गया है। जैसे ममता के यहाँ पेट भर गया, सब चल दिए उधर, वैसे इधर से टूट के अब जाएंगे। आ रहा है बिल ने, महिला बिल पास होना है ना, समझ में आ रहा है बात ना?

0: जल्द ही गाड़ी में पेट्रोल भरवाते वक्त लोगों को पेट्रोल पंप पर खड़े होकर खुद तय करना होगा कि उनकी गाड़ी के लिए कौन सा पेट्रोल सही रहेगा। इसकी वजह है कि सरकार ऐसा सिस्टम लाने की तैयारी में है जहां पेट्रोल भी इंजन के हिसाब से चुना जाएगा। दरअसल देश में इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो गई है। इसके तहत पेट्रोल पंपों पर अलग अलग तरह के इथेनॉल मिक्स पेट्रोल मिल सकते हैं, जिससे लोग अपनी गाड़ी की जरूरत के हिसाब से विकल्प चुन सके। आने वाले समय में E20, E22, E25 और E30 जैसे फ्यूल ऑप्शन पेट्रोल पंप्स पर मिल सकते हैं। इनमें नाम के हिसाब से 20, 22, 25 और 30 फीसदी इथेनॉल जबकि बाकी पेट्रोल होता है। सरकार की कोशिश है कि पेट्रोल पर निर्भरता कम की जाए और देश में तैयार होने वाले इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। इसी कड़ी में पूरी तरह इथेनॉल से चलने वाले व्हीकल्स को लेकर भी तैयारी चल रही है, लेकिन पेट्रोल पंप्स पर कई तरह के फ्यूल आने की खबर के साथ लोगों के मन में सवाल भी बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी चिंता माइलेज को लेकर है, क्योंकि ज्यादा इथेनॉल मिक्स फ्यूल में माइलेज कम होने का डर रहता है। वहीं पुरानी गाड़ियों के इंजन पार्ट्स पर असर की आशंका बढ़ जाती है, जबकि रबर और प्लास्टिक पार्ट्स के भी जल्दी खराब होने की आशंका जताई गई है। इसकी वजह है कि इथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले अलग तरीके से जलता है। ऐसे में पुराने इंजन वाले व्हीकल्स में परफॉर्मेंस और पार्ट्स की लाइफ को लेकर लोगों में दुविधा बनी हुई है। यही वजह है कि सरकार पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों के हिसाब से जानकारी देने की तैयारी कर रही है, जिससे लोग सही फ्यूल चुन सकेंगे। इस पूरे प्लान में सबसे बड़ा रोल पेट्रोल पंप्स पर लगने वाली उस लिस्ट का होगा, जिसमें बताया जाएगा कि कौन सी गाड़ी के लिए कौन सा इथेनॉल ब्लेंड सही रहेगा। इससे लोगों को अंदाजा रहेगा कि उनकी बाइक, कार या स्कूटर किस फ्यूल के साथ बेहतर चलेगी, यानी पेट्रोल पंप्स पर व्हीकल कंपैटिबिलिटी लिस्ट लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं नई गाड़ियों को हाई इथेनॉल ब्लेंड के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है और पुराने व्हीकल्स के लिए लोअर ब्लेंड फ्यूल ऑप्शन रहने की संभावना है। सरकार की नजर फ्यूल इंपोर्ट बिल घटाने पर भी है, क्योंकि इथेनॉल का बड़ा हिस्सा देश में तैयार होता है। ऐसे में ज्यादा ब्लेंडिंग होने पर कच्चे तेल पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ किसानों के लिए भी इसे बड़े मौके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि गन्ने और दूसरी फसलों से बनने वाले इथेनॉल की डिमांड बढ़ सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बदलाव के साथ लोगों को सही जानकारी देना सबसे जरूरी होगा। इसकी वजह है कि गलत फ्यूल चुनने पर इंजन पर असर पड़ सकता है। फिलहाल तस्वीर यही है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल पंप का पूरा सिस्टम बदलता दिखाई दे सकता है। जहां पहले लोग पेट्रोल और डीजल में फर्क देखते थे, वहीं आगे चलकर फ्यूल का चुनाव इंजन की जरूरत देखकर किया जाएगा। ऐसे में गाड़ी मालिकों के लिए ये समझना जरूरी होगा कि उनकी जेब, माइलेज और इंजन तीनों के लिए कौन सा फ्यूल सबसे सही बैठता है। आदित्य के राणा आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
3: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
4: No ticket, no line, just Showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.

0: दस लाख कैश, 40 लाख का प्लॉट, 1.5 करोड़ की जमीन, महंगी लग्जरी कार, 3 महंगे आईफोन, 2.98 करोड़ की नकदी, करोड़ों का सोना और न जाने क्या क्या अफवाहें उड़ रही हैं कि संदिग्धों की कितनी संपत्ति का पता चल रहा है। लेकिन अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 2 दिनों की जांच के बाद अभी तक किन संदिग्धों पर शक बढ़ा है, किन आरोपियों की संपत्ति जांच के दायरे में है, इसका आधिकारिक बयान ना तो ट्रस्ट की ओर से आया है और ना जांच एजेंसियों की ओर से। फिर भी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर रहे चिन्नू यादव का ही नाम आखिर क्यों सबसे ऊपर लिया जा रहा है? आरोप है कि ऑटो चलाने वाले टिन्नू के पास 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, वो टिन्नू अपनी सफाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि जब राम मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावा चोरी मामले में संदिग्धों के अंदर बंसल है, मिश्रा है, दुबे हैं, पाठक हैं, तो सबसे ज्यादा चर्चा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की ही क्यों हो रही है? पूनम यादव रुआंसी होकर बताती है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जब बड़े बड़े चेहरे हैं तो सिर्फ टिन्नू यादव पर ही निशाना क्यों? टिन्नू की पत्नी कहती है कि ये कुछ नहीं, सिर्फ उनके पति को मंदिर से निकालने की साजिश हो रही है। मतलब मामला अब पीडीए वाली राजनीति की तरफ बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि जिस राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच को लेकर अखिलेश यादव जोर शोर से मांग कर रहे थे, वो अब एसआईटी गठन पर खुश नहीं है। लगे हाथ अखिलेश ये भी ऑफर करते हैं कि किसी भी जाति के पीड़ित अगर खुद को बीजेपी से जुड़कर अपमानित महसूस कर रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी में आ जाए।
1: उसे कहिए कि क्यों नाराज हो, समाजवादी पार्टी में आइए।
0: टिन्नू यादव के परिवार का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में यादव जाति का होने की वजह से ही उनको अपमानित किया जा रहा है, जबकि पैसा चोरी करते पकड़े गए लड़कों का कोई जिक्र तक नहीं कर रहा। इस पूरे मामले में संदिग्ध तमाम है, नोट गिनने वालों से लेकर जमा करने वालों तक की तफ्तीश चल रही है। फिलहाल एसआईटी की जांच का 3रा दिन है और अगले 4 दिनों में अंतरिम रिपोर्ट आएगी तो संदिग्धों का पता चल जाएगा। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: सोमवार और मंगलवार को 2 दिनों में 19 घंटे तक एसआईटी ने उस मामले की जांच की है जिसे लेकर लगातार सियासी हमले तेज हैं।
3: आज उस चढ़ावे की आस्था को चीजों को आपने लूट लिया, कहां हैं आपके सारे लोग जो बड़ी बड़ी बात करने वाले?
1: एसआईटी के माध्यम से जो जांच होने जा रही है, एसआईटी की जांच कौन करेगा?
2: जिस एसआईटी पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, उस जांच टीम ने अयोध्या के राम मंदिर परिसर में तमाम सुराग तलाशे हैं, जानकारियां जुटाई है, जानने की कोशिश की है कि क्या चढ़ावे का पैसा सीधे दान पेटी से निकाला जा सकता है। जांच की है कि चढ़ावे के पैसे की गिनती से लेकर बैंक में जमा कराने की प्रक्रिया के बीच में कहां से चोरी की गई। चंदा चोरी के आरोपियों में एक नाम है चंपत राय के ड्राइवर रमाशंकर यादव का। एसआईटी की जांच के बीच वो अब सामने आया है और तमाम आरोपों को निराधार बता रहा है।
4: जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार है, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है।
2: मंगलवार को एसआईटी ने मंदिर परिसर में करीब 11 घंटे तक जांच की। 15 जून को भी 8 घंटे की जांच चली थी। अब इस मामले को लेकर पूर्व कार सेवक संतोष दुबे ने पुलिस से शिकायत भी कर दी है। मयंक शुक्ला के साथ संतोष कुमार, अयोध्या आज तक।

बढ़ती महंगाई के इस दौर में पेट्रोल डीजल के प्राइस में आई हालिया तेजी पर अब ब्रेक लगने का यकीन बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में महज 4 दिनों के भीतर करीब 16% की भारी गिरावट आई है, जिसके बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब $77 प्रति बैरल पर आ चुकी है। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई इस गिरावट के पीछे एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक वजह सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट को राहत दी है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते के बाद दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से खुल गया है। दुनिया का करीब 20-30% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है, जो युद्ध की वजह से बंद होने की कागार पर था। होर्मुज जल डमरू मध्य के दोबारा खुलने से कच्चे तेल की सप्लाई चेन में आ रही रुकावटें पूरी तरह खत्म हो गई हैं। सप्लाई बहाल होने और कच्चे तेल के रास्ते होने के बाद सभी के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल कब और कितना सस्ता होने जा रहा है। एक्सपर्ट्स और मार्केट रिसर्च के मुताबिक अगर क्रूड ऑयल की कीमतें इसी तरह $80 प्रति बैरल के आसपास स्थिर रहती हैं, तो सरकारी तेल कंपनियां कीमतों में कटौती कर सकती हैं। अनुमान के मुताबिक भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में 5 रुपए से लेकर 7 रुपए प्रति लीटर तक की कमी की गुंजाइश हालात सामान्य होने के बाद बन सकती है। इतना ही नहीं, क्रूड सस्ता होने से आने वाले दिनों में LPG सिलेंडर के प्राइस में भी राहत मिलने के पूरे आसार बन रहे हैं। जाने ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अगर युद्ध के दौरान हुए नुकसान से जल्दी उबर जाती हैं, तो फिर वो आने वाले दिनों में होने वाले मुनाफे का सीधा फायदा आम ग्राहकों को ट्रांसफर कर सकती हैं। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि कंपनियां तुरंत दाम घटाने की जगह कुछ दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिरता को मॉनिटर करेंगी। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो मिडिल ईस्ट के शांत होने से भारतीय रसोई से लेकर सड़क पर चलने वाली गाड़ियों तक हर जगह बड़ी राहत मिलना तय माना जा रहा है। आदित्य केराड़ा आज तक।

बड़ी कामयाबी, शांति समझौते पर फाइनल सहमति। फ्रांस के वारसाय पैलेस में ट्रंप ने किए दस्तखत, ईरानी राष्ट्रपति ने भी लगाई मुहर। 14 सूत्री समझौते में सीज फायर पर रजामंदी, होर्मुज से जहाजों की आवाजाही का रास्ता साफ, ईरान का वादा परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, संरक्षित यूरेनियम खत्म करने को भी तैयार। फ्रांस में ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा हम ट्रेड डील के बेहद करीब, पीएम ने उठाया नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा, आज विवाटिक समिट में शिरकत का प्लान। उद्धव की पार्टी पर टूट का खतरा जारी, आज संसदीय दल की बैठक में साफ होगी पूरी तस्वीर, पार्टी ने जारी की विप सूत्रों से खबर, अज्ञात स्थान पर भेजे गए बागी सांसद। समाजवादी में बगावत पर दावों की बौछार, राजभर ने फिर से साधा निशाना, बोले बलिया का लाल करेगा टूट की अगुवाई, केशव मौर्य का दावा 25 सांसद टूटने को तैयार, अखिलेश का जवाब, डरा रही है बीजेपी।

आपके साथ पूजा पराशर। इस बुलेटिन में कई अहम खबरें आपको बताएंगे। आपको बताएंगे कि ट्रंप ने एमओयू पर साइन करने के बाद क्या कुछ कहा है। साथ ही ये भी आपको दिखाएंगे कि अब होर्मुज में क्या सस्पेंस बना हुआ है। तेल के गिरते भाव पर भी हमारी नजर है, तो उसका अपडेट भी आपको देंगे। बात पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात की भी करेंगे। खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी भी पूरी आपको दिखाएंगे। साथ ही दिखाएंगे कि बगावत की खबरों के बीच क्या करेगा शिवसेना उद्धव गुट। वहीं आखिर में यूपी में समाजवादी पार्टी को लेकर क्यों सियासत तेज हो गई है, ये भी बताएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे कि चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी की जांच अभी कहां तक पहुंची है। बात बिहार की भी करेंगे, जहां एक एनकाउंटर पर सवाल उठे हैं। तो सीधा रुख करते हैं पहली खबर का। आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर मुहर लग गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अपने फ्रांस दौरे पर उन्होंने डील साइन की। ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि समझौता पूरा हो चुका है और दोनों पक्ष दस्तखत कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप और पिजिश्कियान ने एमओयू पर साइन किए हैं। ट्रंप फ्रांस दौरे पर थे और वहीं पर यह डील हुई। अमेरिका ईरान में 14 पॉइंट्स पर सहमति बनी है, जिसके बाद दस्तखत हुए हैं दोनों पक्षों की ओर से। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान की तस्वीर आप देख रहे हैं और दोनों देशों के बीच अब हस्ताक्षर हो चुके हैं और ये डील साइन हो चुकी है। एमओयू पर पेजिश्कियान ने भी साइन कर दिए हैं। तो फ्रांस में दौरे पर थे राष्ट्रपति ट्रंप और ऐसे में अब 14 पॉइंट्स पर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है।

0: ट्रंप के दस्तखत के साथ ही दुनिया ने राहत की सांस ली है। इस पल का इंतजार अमेरिका और ईरान को था। दुनिया की नजरें दोनों देशों की ओर टिकी हुई थी कि कब शांति समझौते को दोनों देश साइन कर स्वीकार करेंगे। फ्रांस दौरे पर G7 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे ट्रंप ने राष्ट्रपति मैक्रों के साथ वर्साय में डिनर के बाद इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। उनके साइन करते ही मैक्रों ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से हाथ मिलाकर उन्हें इस कामयाबी की बधाई दी। ईरान के साथ MOU पर दस्तखत के बाद ट्रंप ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। वैसे तो दो दिन पहले ही MOU पर अमेरिका और ईरान ने डिजिटली साइन कर दिए थे, पर अब उसकी कॉपी पर ट्रंप ने आधिकारिक रूप से अपने दस्तखत कर दिए। ईरान की ओर से भी शांति समझौते पर हुए हस्ताक्षर की जानकारी दी गई है।
1: متن الان میتونیم بگیم که رسما نهایی شده به خاطر اینکه دو طرف امضا کردن. در مورد توانمندی دفاعی ایران به هیچ عنوان در هیچ روندی و با هیچ طرفی صحبت نخواهد شد.
0: امید ہے حالات تیزی سے سامانی ہوں گے. فرانس کے ایوین سے پرنو پادھیائی کے ساتھ آج تک بیرو.
2: चलिए अब आपको वो 14 पॉइंट्स बता देते हैं जिसके बाद ये डील साइन हुई है, दोनों देशों के बीच सहमति बनी और उसके बाद हस्ताक्षर हुए हैं। वो कौन से 14 पॉइंट्स थे जो रखे गए हैं इस डील से पहले? देखिए, लेबनान समेत सभी मोर्चे पर युद्ध समाप्ति हो, अमेरिका ने ये MOU जारी किया जिसमें दोनों देश एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये अहम फैसले लिए गए हैं। 60 दिनों में अंतिम समझौते के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि फ्रांस में ये डील हुई है, 30 दिन में US नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह से खत्म होगी, ये भी इस डील में कहा गया है। ईरान तय सीमा में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित करेगा। 14 पॉइंट्स हैं जिसके बाद इस MOU पर साइन किया गया। वहीं ईरान के आर्थिक विकास के लिए 300 अरब डॉलर की फंडिंग की जाए, साथ ही ईरान से सभी प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से खत्म होने चाहिए, ये भी कहा गया है इस MOU में। वहीं ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। अमेरिका ने ये MOU जारी किया है जिसमें 14 पॉइंट्स हैं। अमेरिका ईरान अंतिम समझौते तक यथास्थिति बनाए रखेंगे, ये भी कहा गया है। तो अब इस डील पर साइन हो चुका है। वहीं 10वें पॉइंट में ये है कि ईरान को कच्चे तेल पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात में भी छूट दी जाएगी। और साथ ही 11वां पॉइंट कि ईरान के प्रतिबंधित या फिर फ्रीज फंड को जारी किया जाएगा। वहीं अंतिम समझौते के लिए दोनों देश एक मैकेनिज्म बनाएंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ईरान अंतिम डील के लिए बातचीत शुरू करेंगे, ये भी इस डील में कहा गया है। और ये 14 पॉइंट्स जिसके बाद इस पर सहमति बनी और दोनों देशों के बीच साइन किया गया। भाई पूरी दुनिया इस डील पर आधिकारिक रूप से मुहर लगने का इंतजार कर रही थी। हमारे सहयोगी हमारे साथ गौरव सावंत जुड़ गए हैं। गौरव जी बताइएगा, क्योंकि जिसका इंतजार सब कर रहे थे अब उस पर मुहर लग गई है, ऐसे में अब इसराइल का रुख इस पर क्या है? अभी तक उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है?
3: इसराइल खासा निराश भी है और नाराज भी है, क्योंकि इसराइल का कहना है कि उसकी जितनी भी मांगे थी वो मानी नहीं जा रही है, खासतौर पर जब ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें होंगी, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें होंगी। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात इसराइल के लिए है। और वो जो संवर्धित यूरेनियम है उसका क्या होगा? 450 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम, उसको ईरान के अंदर नष्ट किया जाएगा या वहां से हटाया जाएगा या फिर डाउनब्लेंड किया जाएगा, ये अगले 60 दिनों में तय होगा जब नेगोशिएशंस होंगे। लेकिन जब मेरी कल इसराइल के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर शारन हस्कल से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था जब तक वो फाइन प्रिंट नहीं पढ़ लेते तब तक अपने देश की सुरक्षा के लिए वो हर संभव प्रयास करते रहेंगे, हिजबुल्ला के खिलाफ उनके ऑपरेशन जारी रहेंगे।
2: चलिए, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पूरी दुनिया इस डील पर आधिकारिक रूप से मुहर लगने का इंतजार कर रही थी, ऐसे में अमेरिका और ईरान की ओर से हस्ताक्षर के बाद हालात बदलने की पूरी संभावना है। माना जा रहा है कि होर्मुज पूरी तरह से खुल जाएगा, तेल और गैस की सप्लाई में तेजी आएगी और संकट का सामना कर रहे देशों की स्थिति भी सुधरेगी।
0: अमेरिका की ओर से ट्रंप ने हस्ताक्षर किया तो ईरान की ओर से राष्ट्रपति पेजिश्केन ने अपना दस्तखत किया। 14 पॉइंट वाले इस साइन में कई अहम सहमति बनी है जिस पर अमेरिका और ईरान ने आगे बढ़ने का फैसला किया है। सबसे पहला ये कि लेबनन समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होगा। दोनों देश एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। 30 दिनों में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह खत्म होगी। समझौता ये भी हुआ है कि ईरान तय समय में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित करेगा। ईरान के आर्थिक विकास के लिए 300 अरब डॉलर की फंडिंग पर भी समझौता हुआ है। एमओयू के मुताबिक ईरान पर लगाए गए सभी प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से खत्म होंगे और फैसला ये भी हुआ है कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। हालांकि हॉर्मुज को लेकर अभी भी तस्वीर साफ होनी बाकी है। समझौते के बीच ईरान के मुख्य वार्ताकार गालिबाफ ने बयान दिया कि हॉर्मुज युद्ध से पहले वाली स्थिति में नहीं लौटेगा। गालिबाफ के शब्दों में हॉर्मुज में अंतरराष्ट्रीय नियमों या समंदर में आवाजाही के नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। फ्रांस के एवियन से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
2: डील पर दस्तखत करने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा है कि वो लेबनान को लेकर नरम रुख अपनाएं। अल जजीरा के हवाले से ये खबर है। आपको बता दें कि डील के बाद भी इजरायल दक्षिणी लेबनान में लगातार हवाई हमले कर रहा है। ट्रंप ने लेबनान पर नरम रुख अपनाने को कहा, लेकिन लगातार हवाई हमले इजरायल दक्षिणी लेबनान में कर रहा है। वहीं अमेरिका और ईरान में समझौते के बाद से तेल की कीमत में गिरावट का दौर जारी है और आज भी कच्चे तेल के भाव में कमी आई है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव प्रति बैरल करीब $78 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। आज भी सस्ता हुआ है कच्चा तेल, $78.66 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस में द्विपक्षीय मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने पीएम मोदी को सख्त शासक बताया। बैठक में ट्रेड डील से लेकर नाविकों की मौत तक तमाम मुद्दों पर बात हुई है।
4: राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है।
0: फ्रांस में जब पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई तो पिछले 16 महीनों में रिश्तों पर जमी बर्फ कुछ यूं पिघली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब मीडिया के सवालों के जवाब देने लगे तो पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए।
5: इंडिया कैन डू एनीथिंग दे वांट विद अस, वी हैव द बेस्ट रिलेशनशिप, वी कैन नॉट बी क्लोजर देन वी आर। वुड यू से दैट? आई डोंट थिंक वी कैन बी एनी क्लोजर, बोथ हिम एंड आई एंड आवर नेशंस, बट इट रियली स्टार्ट्स विद द टू ऑफ अस, वी कैन नॉट बी क्लोजर।
0: भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर आज तक के सवाल के जवाब में ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि वो हमेशा भारत के साथ खड़े हैं।
6: You said many a times that India has a great friend in United States, in Washington DC, in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India, the leader of India?
5: As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you everyone here, they love India, they have tremendous respect for this man.
0: पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने तीन भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा भी उठाया।
4: एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
0: भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर जब सवाल हुआ तो ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि अगर कभी भारत पर संकट आया तो अमेरिका ढाल बनकर खड़ा रहेगा। वहीं पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया में ट्रंप के शांति के प्रयासों की भी तारीफ की।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पेरिस दौरे पर पहुंच गए हैं। पेरिस के ओर्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। अब आज वो कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे पेरिस में पीएम मोदी बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात करने वाले हैं। उसके बाद शाम 5:30 बजे वो राष्ट्रपति मैक्रों के साथ वीवाटेक समिट में शामिल होंगे। वीवाटेक समिट यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इवेंट है। इसमें भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता दिखेगी। भारत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 120 से ज्यादा डीप टेक स्टार्टअप्स को पेश करेगा। और आज प्रधानमंत्री रात 10 बजे पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित ही करने वाले हैं और फिर रात से ही पेरिस से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे पीएम मोदी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर पूरा हो चुका है। ये हम नहीं बल्कि उन पोस्टर्स ने पर लिखा रखा गया है जो कि मुंबई की सड़कों पर लगे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक उद्धव के बागी सांसदों को अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया। इधर यूबीटी ने संसदीय दल की बैठक को लेकर व्हिप जारी किया है, जो कि बैठक में नहीं पहुंचेगा उस पर एक्शन की तैयारी है। सड़कों पर अलग अलग पोस्टर लगाए गए हैं और उसको लेकर अब यह माना जा रहा है कि ऑपरेशन टाइगर पूरा हो चुका है।
0: ऑपरेशन टाइगर वेट एंड वॉच यानी शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों को लेकर पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है और खुलासे के लिए इंतजार बस सही वक्त का है। शिवसेना सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन टाइगर बिना किसी रुकावट के पूरा हो चुका है, लेकिन यूबीटी के 6 बागी सांसदों को आधिकारिक रूप से शिवसेना में शामिल करने की प्रक्रिया को अभी 2-3 दिन के लिए रोक दिया गया है। शिवसेना पहले ठाकरे गुट की संभावित आपत्तियों का समाधान करना चाहती है। इस मामले में सभी तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उनमें एक बड़ी खबर ये है कि एकनाथ शिंदे दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं और फिलहाल मीडिया से बात नहीं करेंगे। खबर ये भी है कि बागी सांसदों को दिल्ली से किसी अज्ञात जगह भेज दिया गया है, जो अब 20 या 21 जून को औपचारिक घोषणा के वक्त ही सामने आएंगे। सूत्रों के मुताबिक सभी बागी नेताओं ने स्पीकर को चिट्ठी भी सौंप दी है। एक चिट्ठी उद्धव की पार्टी की ओर से भी स्पीकर को सौंपी गई है। 4 पन्ने की इस चिट्ठी में तमाम नियम कानून प्रावधानों का हवाला देते हुए उद्धव की पार्टी के बागी सांसदों की चिट्ठी को संज्ञान में नहीं लेने की अपील की गई है।
7: एक लेटर दिया है स्पीकर साहब को, कैबिनेट, कि अगर कोई आता है शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए तो गैरकानूनी है, हमसे बात करिए, हमारी बात समझ लीजिए और नियम कानून और संविधान 10th शेड्यूल और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसका पालन करें।
0: बगावत को रोकने के लिए उद्धव की पार्टी ने आज होने वाली संसदीय दल की बैठक के लिए व्हिप जारी करके सभी सांसदों को हाजिर रहने को कहा है। बैठक में गैर हाजिर रहने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा जा सकता है।
2: वहीं यूपी में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा सियासी दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। उन्होंने कहा है कि यह टूट महाराष्ट्र और बंगाल से भी बड़ी होगी। इस दावे ने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी है।
8: बंगाल से शुरू हुई बगावत महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में दस्तक दे रही है। टीएमसी टूट चुकी है और उद्धव सेना टूट के कगार पर है। अब दावा यह है कि अखिलेश के सांसद भी उनका साथ छोड़ने को बेकरार हैं। ओपी राज्यभर ने इस दावे के पीछे राम गोपाल यादव के एक खत का हवाला दिया है।
9: राम गोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया, तो चिट्ठी में काली खल हो पता है, और गुमती रिवर फ्रंट में जो परिवार का हमारे लड़के का है और शिवपाल जी का नाम इन लोगों को बचाना है और ये फला फला सांसद हैं, इनको आपके साथ हम भेज देते हैं, हम लोगों का जान बचा।
8: बगावत के इन दावों को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है।
10: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे, जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती, वो साइकिल सैफ ही जा सकती है लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती।
11: समाजवादी पार्टी ने हमें कितने बार हराया है, तो ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं और जब खेल लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी के
8: समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी दूसरे दलों को डरा रही है।
12: गाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना?
8: अगर ये दावा सच होता है तो विपक्ष के लिए बड़ा झटका साबित होगा। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: तो नीट पेपर लीक के बाद देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से एजुकेशन सिस्टम और छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए।
0: कोटा में छात्रों से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने एजुकेशन सिस्टम पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं पर छात्रों का कुल खर्च 5 मंत्रालयों के बजट के बराबर है। सरकार का ध्यान ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन पर है।
13: आपके परिवारों के
0: राहुल ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को वसूली करने वाली मशीन बताया।
13: 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है।
0: प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोटा में छात्र संवाद के दौरान पेश किए गए आंकड़ों को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि मैं इसमें बस एक बात और जोड़ना चाहती हूं, भारत सरकार द्वारा अपने पसंदीदा कारोबारियों के जो लोन माफ किए गए वो 16 लाख करोड़ रुपए का है। नीट पेपर लीक के बाद कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। लगातार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रही कांग्रेस अब शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: और अब खबर अयोध्या से जुड़ी। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में एसआईटी की जांच तेज है। आज जांच का चौथा दिन है और एक दिन पहले एसआईटी अधिकारियों ने टिनू यादव ट्रस्ट के सेवादारों से और सीसीटीवी की निगरानी करने वाले कर्मचारियों से और दानपेटी शिफ्ट करने वाले स्टाफ से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की है। माना जा रहा है कि एसआईटी आगे जांच को और बढ़ाएगी और लगातार चौथे दिन मंदिर परिसर में जाकर तफ्तीश भी करेगी। तो ज्ञान बिंदु संस्थान के निदेशक रोशन आनंद ने पटना के कदम कुआं थाने में खान सर के खिलाफ शिकायत की। उनका आरोप है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। रोशन आनंद ने कहा है कि या तो मुझे मार दो या खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। उधर परिवार ने रोशन आनंद की सुरक्षा की मांग की है। रोशन आनंद के साथ बड़ी संख्या में छात्र भी थाने पहुंचे और प्रदर्शन किया गया।
14: हमारा कोई राजनीतिक आका नहीं है, उसका राजनीतिक आका है। इस वजह से जो है हम पे कार्रवाई हो गई और उन पे कार्रवाई नहीं हुई। ये तो प्रशासन की दोहरी नीति है, इसे प्रशासन की दोहरी नीति ही कहा जाए कि एक के साथ मतलब एक निर्दोष है उसको जो है आप बेवजह का जेल में भेज दे रहे हैं, एक जो दोषी है उसको आप बचा रहे हैं। जब एफआईआर लॉज हुआ, एफआईआर लॉज होने के 48 से 72 घंटा का समय पटना पुलिस को मिला, लेकिन फिर भी पटना पुलिस जो है उसको अरेस्ट क्यों नहीं की, किसके दबाव में आकर के पटना पुलिस ने फैजल खान को अरेस्ट नहीं
15: लेकिन
14: किया।
15: लेकिन आप संजय झा से मिले, आईजी से भी मिलने गए, क्या हुआ? संजय झा ने क्या आश्वासन दिया आपको?
14: माननीय राज्यसभा सांसद महोदय, संजय झा सर हमें यह आश्वासन दिए कि हम आपके साथ हैं, आपको जस्टिस मिलेगा।
2: तो वहीं बिहार के आरा में पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा है। मामला भोजपुर इलाके का है, जहां पर एक गांव में पुलिस की गोली से युवक की मौत हो गई। पुलिस आरोप लगा रही है कि युवक के पास अवैध हथियार था, लेकिन घरवाले कह रहे हैं कि उसे जानबूझकर मारा गया है।
16: आरा में एनकाउंटर को लेकर बिहार पुलिस का ये वीडियो भोजपुर के बिटौली गांव का है। तस्वीरों में नजर आ रहे युवक का नाम भरत तिवारी है, सामने पुलिस फोर्स है। लंबी बहसबाजी के बाद फायरिंग हुई, युवक के दोनों पैरों में गोली लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घर वालों ने पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है।
17: हमारा लड़का एको पैसा का लालच ना हो, एक रुपया का लालच ना कर, दो गज मरले बड़े से फायर को देख के
18: पुलिस से मरले बा गोली नो पुलिस से मरले बा
17: हां वो मरले बड़े से राजेश कुमार आई रला से जैथी वाला
18: एसटीएफ
17: वाला वो मरले बड़े
19: कि वहाँ पे व्यवस्था मतलब बढ़िया किया जाए, माटी भरवा दिया जाए, ऊंचा करवा दिया जाए ताकि पानी ना पहुँचे, वो लोगों को दिक्कत ना हो रहने में।
15: बाढ़ का पानी वहाँ भी आता है?
19: वहाँ भी आता है,
17: दूर से पानी आ जाता
19: वहाँ भी आता है। और ये लोग प्रशासन पर्सनली टारगेट उनको कर लिया है उस पर। बाकी आज देख भी रह रहे लोग आप लोग लाइव, हथियार फेंकने के बाद भी उनको मार दिया गया।
16: दरअसल एनकाउंटर से पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें भरत तिवारी आक्रामक अंदाज में पुलिस को धमकाता नजर आया। पुलिस ने माना है कि वो मानसिक रूप से परेशान था। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: सुपर एट में आ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी खबरें जा रही है।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
20: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
3: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए, वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
5: जहां खबर वहां खबरदार।
9: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: वैभव इंडिया खेलेंगे ये सबको पता था, इतनी जल्दी खेलेंगे ये नहीं पता था।
11: हाँ सर, बहुत खुश हैं सर, और आपको भी प्रणाम करते हैं सर। वैभव के लिए आप जो बोलते हैं का स्पोर्ट्स तक की क्या पर्स पर।
10: जी,
11: हम पूरा सर आपका देखते रहते हैं, तो आपका भी सर आशीर्वाद वैभव को लगा, और हम लोग बहुत खुश हैं सर। इसी के लिए इतना मेहनत बच्चा किया था सर,

0: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
1: नीट पेपर लीक को क्लीन बनाने के लिए भारत सरकार ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया है।
2: बट टेलीग्राम हैज बीन अ चैनल विच हैज बीन मिसयूज्ड अब्यूज्ड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम फॉर सेवरल फैक्टर्स।
1: एनटीए के मुताबिक टेलीग्राम पर लगाई गई रोक 22 जून 2026 तक जारी रहेगा। हालांकि आदेश कब से लागू होगा इसकी तारीख नहीं दी गई है। नीट री एग्जाम 21 जून को होगा। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है। हालांकि एनटीए के इस फैसले पर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। नीट एग्जाम रीटेस्ट के लिए टेलीग्राम को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। मोदी जी को सबसे पहले अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाहिए, जिन्होंने लाखों युवाओं का भविष्य ब्लॉक कर दिया है।
3: टेलीग्राम पर रोक लगाने से क्या होगा? पेपर जो लीक हो रहा है वो तो सिस्टम के अंदर से हो रहा है, टेलीग्राम से नहीं हो रहा है।
1: सूत्रों के मुताबिक नीट यूजी री एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्रों के पैकेट पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। समय पर डिलीवरी और दूर दराज दुर्गम इलाकों में सुरक्षित तरीके से प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए भी MI-17 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी सक्रिय है। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं के साथ स्थानीय पुलिस वाहनों के साथ स्कॉट्स गाड़ियां चलेंगी। नीट परीक्षा केंद्रों पर भी CRPF, CISF समेत दूसरे सुरक्षा बलों की निगरानी रहेगी। सरकार के सामने नीट का री एग्जाम बिना पेपर लीक के कराना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसे लेकर सारी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। आज तक ब्यूरो।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
4: अमेरिका ईरान शांति समझौते पर औपचारिक मुहर, ट्रंप ने पेरिस में साइन किया एमओयू, डील की शर्तों पर दोनों पक्षों की सहमति। अमेरिका ईरान के बीच 14 सूत्रीय समझौता, ट्रंप और पिजिशकियान ने एमओयू पर किए हस्ताक्षर। मैक्रो ने शेयर किया ट्रंप के हस्ताक्षर का वीडियो, कहा अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हुआ। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बाद कच्चे तेल के दाम में गिरावट, ब्रेंट क्रूड $79 से नीचे फिसला। ट्रंप का बड़ा बयान, दूसरे देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं तो ईरान को उनसे वंचित रखना अनुचित। G7 समिट के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई मुलाकात, हॉर्मुज और भारतीय नाविकों पर हुए हमले पर बातचीत। बैठक के दौरान ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों की जमकर तारीफ की, खुद को भारत का दोस्त बताया। राष्ट्रपति ट्रंप बोले, मैं भारत का बहुत सम्मान करता हूं, अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका करेगा मदद। ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि समुद्र में भारतीयों की सुरक्षा जरूरी, उम्मीद है कि ईरान के साथ डील में भारतीयों की सुरक्षा पक्की की जाएगी। आज पेरिस में पीएम मोदी वीवाटेक समिट में शामिल होंगे। इस सम्मेलन के लिए भारत को ऑफिशियल एआई कंट्री पार्टनर का दर्जा दिया गया। कोटा में छात्रों की गूंज, कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, कहा कि छात्रों पर अत्यधिक दबाव डाला जा रहा है। कोटा दौरे पर छात्रों से मिले राहुल गांधी, सरकार को घेरते हुए कहा, स्टूडेंट का गला घोट रही है भारत की शिक्षा प्रणाली, ये देश हित में नहीं। राहुल गांधी बोले, ये राजनीति नहीं, युवाओं की आवाज का मंच। कार्यक्रम में अभिभावकों ने जताई चिंता, बोले बच्चों के तनाव से हर समय डर बना रहता है। नीट री एग्जाम से पहले टेलीग्राम के अस्थायी बैन पर भड़के राहुल गांधी, बोले पीएम मोदी को दिखावा छोड़कर माफिया पर करना चाहिए बात। टेलीग्राम बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, सीईओ बोले पेपर लीक करने वालों की जगह भारत के 15 करोड़ यूजर्स को मिली सजा। राहुल गांधी के बयान का प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया समर्थन, बोली एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी खामियों को ठीक करने की जरूरत। पश्चिम बंगाल में एलओपी विपक्ष के नेता को लेकर विवाद, विधानसभा सत्र के बीच कोलकाता हाईकोर्ट आज एलओपी पर फैसला सुना सकता है। आज से बंगाल में बीजेपी सरकार का पहला बजट सत्र शुरू होगा। सत्र की शुरुआत गवर्नर और एन रवि के उद्घाटन भाषण के साथ होगी। बजट से पहले राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक से मुलाकात की। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। शिवसेना उद्धव गुट में टूट की खबर, सूत्रों के मुताबिक 6 बागी सांसदों ने स्पीकर को सौंपा खत, शिंदे की पार्टी में विलय की तैयारी। उद्धव ने आज दिल्ली में बुलाई संसदीय दल की बैठक, अहम राजनीतिक रणनीति पर हो सकता है मंथन, व्हिप जारी। संजय राउत का बड़ा आरोप, बोले ऑपरेशन टाइगर के नाम पर यूबीटी सांसदों को तोड़ने की साजिश। शिवसेना यूबीटी में सियासी घमासान, राउत ने सांसदों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया, कहा कि दगा करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मुंबई में सियासी घमासान, संजय राउत के बयान पर संजय शिरसाट बोले इस तरह की भाषा उचित नहीं। ओम प्रकाश राजभर का दावा, समाजवादी पार्टी में टूटते बागी बलिया का नेता करेगा बागी सांसदों की अगुवाई। ब्राह्मण सम्मेलन में तिरस्कार का आरोप, ओपी राजभर बोले इससे समाजवादी पार्टी से नाराज सांसद और आहत हुए। समाजवादी पार्टी सांसदों में नाराजगी का दावा, ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को सांसद बचाओ अभियान की सलाह दी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अयोध्या दौरे पर, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन, धार्मिक कार्यक्रमों के बाद लखनऊ वापसी। लखनऊ में कोडिन कफ सिरप मामले में बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल समेत वरुण सिंह और गौरव जायसवाल भगोड़ा घोषित हुए, तीनों पर मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुरकी, कार्रवाई की तैयारी जारी। यूपी में तीसरे मोर्चे की आहट, लखनऊ में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच अहम मुलाकात। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले टीएमसी से बुरा होने वाला है समाजवादी पार्टी का हाल, 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार। अखिलेश यादव का केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार, बोले बीजेपी से मुकाबले के लिए बहादुर टीम चाहिए, जो डर जाएगा वो दल छोड़कर चला जाएगा। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर किया तंज, बोले बीजेपी के लिए धर्म का मतलब सिर्फ धर्म। अखिलेश ने अयोध्या मामले पर सीसीटीवी गायब होने को लेकर सरकार पर साधा निशाना, चुटकी लेते हुए कहा सीसीटीवी से खुलेगा सीसी का राज, सीसी से अखिलेश का मतलब चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी है। जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी वारंट पर अंतरिम रोक हटाई। ट्रायल कोर्ट को आदेश की कॉपी भेजने के निर्देश। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर तीखा हमला, कहा ना पार्टी बची ना कार्यकर्ता, सिर्फ सुर्खियों में बने रहने की कोशिश कर रही है। दिलीप घोष का बयान, हॉकर्स को लेकर राजनीति कर रही है ममता बनर्जी, बोले सरकार सड़कों को सुगम बनाएगी, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार के रेलवे स्टेशन में छात्रों का जनसैलाब, कटिहार में राजधानी ट्रेन में नहीं जाने दिया तो परीक्षार्थियों ने कर दिया है बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। परीक्षा खत्म होते ही कटिहार स्टेशन पर उमड़ी भीड़, परीक्षार्थियों को नियंत्रित करने में पुलिस रेलवे में छूटे पसीने। बिहार पुलिस परीक्षा के बाद गया जंक्शन पर उमड़ा अभ्यर्थियों का सैलाब, सीटों के लिए मची अफरा तफरी। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उमड़ी परीक्षार्थियों की भारी भीड़ और ऐसे में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे प्रशासन अलर्ट हुआ। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर मोतिहारी बापूधाम स्टेशन पर उमड़ी छात्रों की भारी भीड़, खिड़की के सहारे ट्रेन में घुसते दिखे छात्र। द्वारका में मानसून की शुरुआत के साथ समुद्र में 12 से 15 फीट ऊंची लहरें, गोमती घाट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में मानसून सक्रिय, मौसम विभाग का दावा, बिहार झारखंड की ओर बढ़ रहा है मानसून। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन हल्की बारिश की संभावना जताई। दक्षिणी यूपी और एमपी में हीट वेव का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जारी रह सकती है बारिश। दिल्ली में 19 जून तक बारिश की संभावना, पहाड़ी राज्यों में 22 जून तक हो सकती है बारिश। देवभूमि में पूरी आस्था के साथ जारी चारधाम यात्रा, बद्रीधाम में अब तक 11.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किया दर्शन। पवित्र देवताल भी श्रद्धालुओं और साधु संतों का पहुंचना वहां पर जारी हुआ। बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र स्थान, सैलानियों से गुलजार हुई चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, चंद्रकोट का यात्री निवास श्रद्धालुओं के लिए स्वागत के लिए तैयार। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम, गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद पूरे यात्रा मार्ग और हर सुविधा केंद्र में सुरक्षा चाक चौबंद। हरियाणा के संदीप आर्य जांगड़ा के नाम अनोखा कीर्तिमान, लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार करके बनाया विश्व रिकॉर्ड। संदीप ने

ग्रेटर नोएडा पुलिस ने हाईवे पर फायरिंग करने वाले तीन शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। राजस्थान के अलवर में बेसमेंट की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से गिरा जनरेटर, दबने की वजह से मजदूरों की मौत, घटना के विरोध में परिजनों का हंगामा।

हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि,

मिनट तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें। केले का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, वाहन का सुख मिलेगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

अशांति से बचें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर के मामले हल होंगे, कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग

करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें, कोई बड़ा निर्णय ना लें, इस समय संयम से काम लें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, धन लाभ

मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नील।

सामान हो सकता है। केले का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

स्वास्थ्य में सुधार होगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।

बाधा दूर होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन खर्च बढ़ा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, उस शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

जिस राम मंदिर के बनने में दशकों तक सियासत हुई, कई सरकारें बनी और टूटी, अब जब उस राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगा तो तुरंत राजनीति भी शुरू हुई। समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रही है। अखिलेश यादव और उनके सहयोगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इसे सनातन और भगवान राम का अपमान बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज है बीजेपी वाले, खास तौर पर बीजेपी के वो नेता जो राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या बोलना है। जैसे कि विनय कटियार, जो पहले मंदिर में चोरी की खबर पर आग बबूला हो रहे थे, लेकिन अब पलट गए। कांग्रेस तो सीधे कह रही है कि ये पूरी तरह से संगठित लूट है और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और अयोध्या के संतों का मानना है कि गलत करने वालों का फैसला अब राम ही करेंगे। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।

0: हम राम के लिए खून देने वाले मजनू हैं, राम के नाम पर मलाई खाने वाले तो नहीं है भैया।
1: अयोध्या में राम मंदिर के चंदे और दान के पैसों की चोरी किसने की? श्री राम के करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किसने किया? राम मंदिर के चढ़ावे में कितने की चोरी हुई? कुछ लाख की, कुछ करोड़ की या फिर सैकड़ों करोड़ की? हंगामा मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। राम भक्त हैरान है, परेशान है, आक्रोशित है और सवाल पूछ रहे हैं कि उनके चंदे और चढ़ावे के पैसों की चोरी कौन कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम भी बना दी है, जिसने अपनी जांच शुरू भी कर दी। लेकिन सवाल है कि ये चोरी कैसे हुई, किसने की, और सबसे बड़ा सवाल कि कितने की चोरी हुई है। लेकिन ये पूरा मामला खुला कैसे? अयोध्या के लोकल अखबारों में ये खबरें छप रही थी, लेकिन राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की खबरों को बल मिला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की इस पोस्ट से। इसके तुरंत बाद सरकार की तरफ से SIT बनाई गई, जिसने कल से अपनी जांच शुरू भी कर दी है। बताया जा रहा है कि अभी तक करीब 43 कर्मी जांच के दायरे में हैं, जिनसे SIT पूछताछ कर रही है। आरोपों के दायरे में चार नाम आ रहे हैं: राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव और रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, जो चंपत राय का सहयोगी है। और अब वो भी लोग सामने आने लगे हैं जो राम मंदिर आंदोलन में जेल गए, गोली तक खाई, जिनके घरों की कुर्की तक हुई। ये संतोष दुबे हैं, जिन्होंने आज राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के आरोपों की थाने में शिकायत की है। संतोष दुबे 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख कार सेवक रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट बनने के बाद से वो विरोधी गुट के कार सेवक माने जाते रहे हैं। संतोष दुबे का दावा है कि राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपयों की चोरी हुई है और वो सीधा आरोप चंपत राय समेत बाकी तीन लोगों पर लगा रहे हैं। अब राज्य सरकार ने जो SIT बनाई है वो यही जांच कर रही है कि चोरी हुई भी है या नहीं, और अगर हुई है तो फिर वो चोर कौन है। आरोप है कि दान के पैसों को गिनने के दौरान हेराफेरी और चोरी की गई। मंदिर प्रांगण में लगभग 40 दान पेटियां लगी हैं। इन दान पेटियों में ही श्रद्धालु चढ़ावा डालते हैं। रात में मंदिर बंद होने के बाद मंदिर ट्रस्ट के ही एक कमरे में इन्हें खोला जाता है। दान पेटी से निकले नोटों को व्यवस्थित किया जाता है, अलग अलग नोटों की गड्डियां बनाई जाती हैं और फिर उनको SBI के अफसर की मौजूदगी में जमा करवाया जाता है। उस कमरे में जहां दान पेटी खुलती है और नकदी इकट्ठा होती है, वहां CCTV कैमरे लगे हैं। लेकिन आरोप है कि मंदिर के दान के पैसों से जब ये चोरी की गई तो CCTV डिलीट करवा दिया गया। अभी तो SIT मंदिर प्रशासन के कामकाज, श्रद्धालुओं की संख्या और उनके चढ़ावे की पूरी व्यवस्था को देख रही है। जांच इस बात की भी होगी कि मंदिर प्रशासन के पास पूरा CCTV फुटेज मौजूद है या नहीं, क्योंकि आरोप है कि मंदिर का कई महीनों का CCTV फुटेज डिलीट करवाया गया। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि मंदिर में रोजाना आने वाले चढ़ावे को गिनने और फिर बैंक में जमा करवाने की प्रक्रिया क्या है। मंदिर में रोज नोट गिनने की प्रक्रिया में लगभग 50 कर्मचारियों को लगाया जाता है। इन 50 में से 24 कर्मचारी वाराणसी के एक निजी कंपनी के कर्मचारी होते हैं। वो नोटों की गड्डी बनाते हैं। इन 24 कर्मचारियों पर निगरानी रखने के लिए ट्रस्ट के 12 कर्मचारी होते हैं जो इन पर नजर रखते हैं, यानी हर दो निजी कर्मचारी के ऊपर ट्रस्ट का एक कर्मचारी नजर रखता है। इसके बाद TCS और SBI के 14 कर्मचारी मिलकर गड्डी गिनते हैं और ये रकम SBI में जमा करवा दी जाती है। संतोष दुबे सीधा आरोप चंपत राय के सहयोगी और ड्राइवर टिन्नू यादव पर लगा रहे हैं। जिन टिन्नू यादव पर यह आरोप लग रहा है, आज तक ने उन्हें खोज निकाला और उनसे भी बात की। टिन्नू यादव ने अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों से इनकार किया है। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो SIT की जांच के बाद ही पता चलेगा। 15 दिन में SIT को अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। इस जांच के आधार पर यह तय होगा कि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है या नहीं, और गड़बड़ी हुई है तो कितने की हुई है और किसने की है। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

अक्षत यूरेनियम खत्म करने की तय होगी प्रक्रिया। फ्रांस में ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ। आज़ादी के सवाल पर बोले, व्हाइट हाउस में बैठा है भारत का सच्चा दोस्त, पीएम मोदी का सब करते हैं सम्मान, हम ट्रेड डील के बेहद करीब। उद्धव की पार्टी पर टूट का खतरा जारी। आज संसदीय दल की बैठक में साफ होगी पूरी तस्वीर। पार्टी ने जारी की विप सूत्रों से खबर, अज्ञात स्थान पर भेजे गए बागी सांसद। समाजवादी पार्टी में बगावत पर दावों की बौछार, राजभर ने फिर साधा निशाना, बोले बलिया का लाल करेगा टूट की अगुवाई। केशव मौर्य का दावा, 25 सांसद टूटने को तैयार। अखिलेश का जवाब, डरा रही है बीजेपी।

नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बिना ब्रेक के सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। खबरें रफ्तार से और विस्तार से, लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। ट्रंप और ईरान में डील साइन, लेकिन क्या इससे पश्चिम एशिया में आएगी शांति? क्या खामोश रहेगा इजराइल? सबसे पहले इसी पर होगी बात। टीएमसी के बाद कहां कहां हो रही है बगावत, ये आपको दिखाएंगे। शिवसेना यूबीटी में बगावत की अटकलों के बीच अखिलेश की पार्टी को लेकर भी अटकलें तेज। क्या ममता से छिन गई है सुरक्षा? टीएमसी के आरोपों का सच क्या है, ये भी जानेंगे। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत करें आज की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर मोहर लग गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल फ्रांस के शहर वर्साय में एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ डिनर के दौरान अमेरिका ईरान समझौते पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी डील पर साइन करने की तस्वीर जारी कर दी है। एमओयू पर साइन होने के बाद अब दोनों देशों के बीच लगभग 4 महीनों से चला रहा संघर्ष खत्म हो गया है।

0: 28 फरवरी 2026 तेहरान पर पहला अटैक 109 दिन बाद 17 जून 2026 शांति समझौते पर ट्रंप के हस्ताक्षर ट्रंप के दस्तखत के साथ ही दुनिया ने राहत की सांस ली है इस पल का इंतजार अमेरिका और ईरान को था दुनिया की नजरें दोनों देशों की ओर टिकी हुई थी कि कब शांति समझौते को दोनों देश दस्तखत कर स्वीकार करेंगे फ्रांस दौरे पर G7 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे ट्रंप ने राष्ट्रपति मैक्रों के साथ वर्साय में डिनर के बाद इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया उनके साइन करते ही मैक्रों ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से हाथ मिलाकर उन्हें इस कामयाबी की बधाई दी डील पर ट्रंप के हस्ताक्षर की तस्वीर आने के कुछ देर बाद ईरान से भी डील पर साइन करने की तस्वीर आ गई इस तस्वीर में ईरानी राष्ट्रपति पेजिश्कियान की अमेरिका ईरान डील पर दस्तखत के बाद डील की कॉपी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं वैसे तो दो दिन पहले ही एमओयू पर अमेरिका और ईरान ने डिजिटली दस्तखत कर दिए थे पर अब उसकी कॉपी पर ट्रंप ने आधिकारिक रूप से अपने दस्तखत कर दिए ईरान की ओर से भी शांति समझौते पर हुए हस्ताक्षर की जानकारी दी गई
1: ببین متن الان میتونیم بگیم که رسما نهایی شده به خاطر اینکه دو طرف امضا کردن در مورد توانمندی دفاعی ایران به هیچ عنوان در هیچ روندی و با هیچ طرفی صحبت نخواهد شد
0: دونو دیش سمجھوتے پر الگ الگ ہستاکشر کر چکے ہیں لیکن ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ کل ایک ادھکاری ہستاکشر سماروہ ہوگا فرانس کے ایویون سے پرنو پادھیائے کے ساتھ آج تک بیرو
2: और आइए अब आपको दिखाते हैं कि अमेरिका और ईरान में जिन 14 सूत्रीय सहमति पत्र पर दस्तखत हुआ उनमें 14 बिंदु क्या हैं अमेरिका ईरान और उनके सहयोगी देशों ने तत्काल प्रभाव से सभी मोर्चों पर जंग का समापन कर दिया है दोनों देश एक दूसरे की स्वतंत्रता क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाएंगे अमेरिका और ईरान ने अधिकतम 60 दिन के भीतर अंतिम समझौता तैयार करने पर सहमति जता दी है जरूरत पड़ने पर यह अवधि वापस सहमति से बढ़ाई जा सकती है अमेरिका ईरान के खिलाफ लागू नौसैनिक नाकेबंदी और अन्य बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा 30 दिन के भीतर इसे पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है ईरान फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच वाणिज्यिक जहाजों को मुफ्त और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराएगा ईरान के आर्थिक विकास के लिए 300 अरब डॉलर की फंडिंग की जाएगी ईरान के सभी प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से खत्म किए जाएंगे ईरान ने दोहराया कि वह परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा और अंतिम समझौते तक ईरान अपने मौजूदा परमाणु कार्यक्रम में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगा ईरान को कच्चे तेल पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात के लिए छूट दी जाएगी ईरान की फ्रीज या फिर प्रतिबंधित संपत्तियों और धनराशि को जारी कर दिया जाएगा समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कार्यकारी तंत्र स्थापित किया जाएगा एमओयू के शुरुआती प्रावधानों के लागू होने के बाद दोनों देश शेष बिंदुओं पर अंतिम समझौते के लिए औपचारिक बातचीत शुरू करेंगे अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी प्रस्ताव के जरिए वैधता प्रदान की जाएगी मेरे सहयोगी गौरव सावंत जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ गौरव डील पर साइन तो हो गया है लेकिन क्या इससे स्थायी शांति आएगी
3: वर्साय में अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो हस्ताक्षर किए हैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम तो है लेकिन इससे स्थायी शांति आएगी ये एक बड़ा प्रश्न है इससे हॉर्मूज खुल जाएगा दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जो बुरा प्रभाव इस समय पड़ रहा है तेल के दाम कम करने में गैस के दाम कम करने में जो हजारों जहाज वहां फंसे हुए हैं उनकी आवाजाही के लिए तो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है लेकिन क्या इससे स्थायी शांति आएगी ये सबसे बड़ा प्रश्न है क्योंकि इसराइल इस समझौते से प्रसन्न नहीं है खुश नहीं है इसराइल को लगता है उसकी सुरक्षा अभी भी बहुत बुरी तरह प्रभावित होगी क्योंकि हिजबुल्ला के खिलाफ उसके ऑपरेशंस इसराइल के मुताबिक जारी रहेंगे ईरान के पास जो लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उस पर न केवल अंकुश नहीं लगा है अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो कहा है कि अगर और देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं तो फिर ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल्स न रखने की बात करना सही नहीं होगा, यानी ईरान की वो बात मान गए हैं। संवर्धित यूरेनियम का क्या होगा, लगभग जो 450 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है, क्या वो ईरान में नष्ट किया जाएगा, क्या उसे डाउनब्लेंड किया जाएगा, क्या उसे कहीं बाहर ले जाया जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि ईरान का कहना है कि शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम उसका अधिकार है, उस पर वो अंकुश नहीं लगाएगा। दूसरी तरफ इसराइल का कहना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, अगर वो काम करेगा संवर्धित यूरेनियम पर तो वो परमाणु हथियार जरूर बनाएगा, और ऐसे में जो पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा है वो पूरा समीकरण पूरी तरह से अब बदल चुका है। यहां पर कई विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का पलड़ा यहां भारी है, अमेरिका वहां से अपनी सेनाओं को कम करना भी चाहता है, खाड़ी में उसकी सेनाएं तो रहेंगी लेकिन ये जो एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स ओमान की खाड़ी में है शायद उनको और कम किया जाएगा।
2: और अब बात प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात की करेंगे, क्योंकि फ्रांस में 16 महीने बाद दोनों की मुलाकात हुई तो लगा ही नहीं कि दोनों देशों के बीच रिश्ते में कोई तनाव चल रहा था। ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, अमेरिका को भारत का रक्षक तक बता दिया।
4: 16 महीने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई तो रिश्तों पर तनाव की बर्फ कुछ यूं पिघलती हुई नजर आई। एक बार नहीं कई बार दोनों की पर्सनल केमिस्ट्री कैमरे में कैद हुई। भले ही लंबे वक्त के बाद मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई लेकिन जब मीडिया के सवालों का जवाब देने ट्रंप आए तो मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। मोदी से दोस्ती से लेकर भारत से रिश्तों को लेकर अपने दिल की बात दिल से कही। बात दोस्ती से शुरू हुई और दोनों मुल्कों के रिश्तों तक पहुंची। ट्रंप ने दिल खोलकर तारीफ की।
5: India can do anything they want with us. We have the best relationship. We cannot be closer than we are. Would you say that, sir? I don't think we can be any closer. Both him and I and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer. Thank you.
4: भारत और अमेरिका के रिश्तों को ट्रंप ने पीएम मोदी से अपने रिश्तों के साथ जोड़ा। दुनिया के सामने डंके की चोट पर ऐलान किया कि मोदी के भारत पर कभी संकट आया तो ढाल बनकर अमेरिका खड़ा रहेगा।
6: And the United States, sorry, I'm speeding, I won't.
5: That's okay.
6: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
5: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now...
4: प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष ने अपने दिल की बात बताई। ट्रंप ने मोदी की वर्किंग स्टाइल की संपूर्ण व्याख्या की।
5: Very close. We've been there for a little while and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to end. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say, he's such a nice man. I said, no, he's very tough. He's a tough trader.
4: जब पत्रकारों ने ट्रंप से दुनिया में भारत के दबदबे को लेकर सवाल पूछा तो ट्रंप ने दो टूक जवाब देते हुए यही कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा।
5: Plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role.
4: पीएम मोदी की मेजबानी को आज तक ट्रंप नहीं भूले हैं। ट्रंप ने यही कहा कि पीएम मोदी की मेजबानी में हुई मेहमान नवाजी आज भी याद है।
5: Well, we had a great visit last time in India. We opened up that new stadium and I think there were 300,000-400,000 people. It seated like about 150,000 and there were 250,000 outside and there were 100,000 on the grass. That was, I don't know if that record's ever been broken, but we had a great, I had a great time in India.
2: और 16 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने आए तो इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी। ट्रंप की बातें तो आपने सुन ली, अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से क्या कुछ कहा।
7: राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वॉशिंगटन में मिले थे, उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिलकर के आगे चल रहे हैं। एक्सेलेंस से आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
2: जब 16 महीने बाद दोनों आमने सामने आए तो आज तक संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया। आज तक के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि जब तक वो राष्ट्रपति हैं व्हाइट हाउस में भारत का एक सच्चा दोस्त मौजूद रहेगा।
8: You said many a times that India has a great friend in United States, in Washington DC, in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India, the leader of India?
5: As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you everyone here, they love India, they have tremendous respect for this man.
2: और अब आप देश की सियासत की करेंगे, क्या ममता बनर्जी की पार्टी के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी का नंबर आ चुका है। पार्टी के 6 सांसद से शिवसेना शिंदे खेमे में जाने की अटकलों के बीच आज दिल्ली में शिवसेना यूबीटी ने संसद दल की बैठक बुलाई है। यूबीटी ने संसद दल की बैठक को लेकर व्हिप जारी किया है, जो बैठक में नहीं आएगा उस पर एक्शन की तैयारी है। शिवसेना यूबीटी की बैठक क्राइसिस के बीच हो रही है क्योंकि ये अब तय करना है कि कौन इस पाले में है और कौन उधर जा रहा है और ऐसे में आज व्हिप जारी किया गया है, जो एब्सेंट रहेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।
0: ऑपरेशन टाइगर वेट एंड वॉच यानी शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों को लेकर पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है और खुलासे के लिए इंतजार बस सही वक्त का है। शिवसेना सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन टाइगर बिना किसी रुकावट के पूरा हो चुका है, लेकिन यूबीटी के 6 बागी सांसदों को आधिकारिक रूप से शिवसेना में शामिल करने की प्रक्रिया को अभी 2-3 दिन के लिए रोक दिया गया है। शिवसेना पहले ठाकरे गुट की संभावित आपत्तियों का समाधान करना चाहती है। इस मामले में सभी तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उनमें एक बड़ी खबर ये है कि एकनाथ शिंदे दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं और फिलहाल मीडिया से बात नहीं करेंगे। खबर ये भी है कि बागी सांसदों को दिल्ली से किसी अज्ञात जगह भेज दिया गया है, जो अब 20 या 21 जून को औपचारिक घोषणा के वक्त ही सामने आएंगे। सूत्रों के मुताबिक सभी बागी नेताओं ने स्पीकर को चिट्ठी भी सौंप दी है। एक चिट्ठी उद्धव की पार्टी की ओर से भी स्पीकर को सौंपी गई है। 4 पन्ने की इस चिट्ठी में तमाम नियम कानून प्रावधानों का हवाला देते हुए उद्धव की पार्टी के बागी सांसदों की चिट्ठी को संज्ञान में नहीं लेने की अपील की गई है।
9: एक लेटर दिया है स्पीकर साहब को, कैबिनेट, कि अगर कोई आता है शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए, कोई गैरकानूनी है, हमसे बात करिए, हमारी बात समझ लीजिए और नियम कानून और संविधान 10th शेड्यूल और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसका पालन करें।
0: बगावत को रोकने के लिए उद्धव की पार्टी ने आज होने वाली संसदीय दल की बैठक के लिए व्हिप जारी करके सभी सांसदों को हाजिर रहने को कहा है। बैठक में गैर हाजिर रहने वाले सांसदों के खिलाफ कार्यवाही के लिए कहा जा सकता है।
2: और मेरी सहयोगी विद्या इस वक्त जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। विद्या, दूध का दूध पानी का पानी आज इस मीटिंग से हो जाएगा कि कौन इसमें पहुंच रहा है और कौन खुले तौर पर बगावत कर चुका है, क्योंकि संजय राउत चाहे जितना भी मामला ठीक करने की कोशिश करें अपने बयानों से, लेकिन कल तो मामला गाली तक भी पहुंच गया और उन्होंने कहा कि इसे कट मत कीजिएगा।
10: जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि यूबीटी में अभी फिलहाल किसी को पता नहीं है कि कितने लोग बागी हुए हैं। एकनाथ शिंदे गुट का दावा है कि 6 के 6, क्योंकि 2/3 की बहुमत उन्हें चाहिए तोड़ने के लिए, वरना बाकी सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर नहीं आए तो। तो यही वजह है कि जो व्हिप जारी करके बात पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप देखें तो सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इनको अपने पाले में लेके आना है वापस। अगर यूबीटी इसमें सक्सेसफुल हो गई तो 2/3 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाएंगे और वो अलग ग्रुप नहीं बना सकता बागी जो गुट है। और यही वजह है कि वो कोशिश रो के कोशिश, जैसे हमने कल देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजा भाऊ आज रो दिए, वहीं संजय राउत ने गाली दे दी। तो तमाम तरीकों से कोशिश यही की जा रही है बाकी बागी नेताओं तक पहुंचे, उनको कन्विंस करें कि एक अगर वापस आ गया तो ये बाकी के बाकी जो गुट बना के निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो हर तरीके से कोशिश जारी है, आज मीटिंग है, उसी के बाद पता चल पाएगा कि वाकई में 2/3 में ये पार्टी फिर से दूसरी बार टूट रही है कि नहीं।
2: हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, क्या यूबीटी शिवसेना की कोशिश सार्थक होगी कि बागी सांसदों को मान मनोवल करके वापस लाया जाए, या बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है, सभी 6 के 6 राजी हो गए हैं इधर इस पाले में आने के लिए?
11: देखिए, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ग्रुप ये दावा कर रहा है कि 6 के 6 सांसद उनके साथ है और उनकी ये कोशिश है कि 7वां सांसद भी जो है वो साथ में लाया जाए, दूसरी तरफ यूबीटी ने आज जो है पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाई है, उसमें व्हिप जारी किया है, अगर कोई भी सांसद इस मीटिंग में नदारद रहता है और उसकी इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं देगा तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है, स्पीकर को चिट्ठी लिखकर उसकी संसद की सदस्यता को जो है वो खत्म करने की मांग जो है यूबीटी के संसदीय दल की तरफ से की जा सकती है। अब देखना यह है 11 बजे, क्योंकि यूबीटी के संसदीय दल की बैठक है और उस बैठक में कितने सांसद आएंगे। इससे पहले भी उद्धव ठाकरे ने एक बैठक बुलाई थी, उस बैठक के अंदर 4 सांसद पहुंचे थे, 4 का दावा ये था यूबीटी का कि वो वर्चुअली जुड़े थे, लेकिन इस बार क्योंकि ये जो है पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है, इस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में व्हिप जारी किया गया, अगर इसका उल्लंघन किया गया तो संसद सदस्य की जो है सदस्यता जा सकती है। ये एक तरीके का लीगली खेल जो है वो यूबीटी की तरफ से किया जा रहा है। कल स्पीकर को पत्र लिखा गया, ये कहा गया कि अगर कोई गुट बनाने की मांग हमारे ही संसदीय दल से कोई आता है तो हमसे पहले उस पर चर्चा की जाए, हमारा पक्ष जाना जाए, उसके बाद फैसला लिया जाए, और उसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया गया जिसके अंदर जो है संजय देसाई और मुंबई के राज्यपाल को लेकर जो एक फैसला आया था उसका हवाला दिया गया है और शेड्यूल 10 का हवाला दिया गया है। तमाम हवालों के साथ साथ ये भी है उनको ये डर है कि उनका गुट टूट सकता है। दूसरी तरफ लीगली अपने आप को मजबूत करने के लिए संसद सदस्यों के लिए संसदीय समिति की बैठक बुलाई है, उसके अंदर सीधा सीधा
2: संसदीय समिति की बैठक से तस्वीर साफ हो जाएगी कौन यूबीटी के पाले में बचा है और कौन इधर आ रहा है। बहरहाल बागी सांसदों को लेकर उद्धव गुट ने बड़े आरोप लगाए। आज तक से खास बातचीत में संजय राउत ने कहा कि उनके सांसदों को 60-60 करोड़ में खरीदा जा रहा है, 15-15 करोड़ एडवांस दिए जा चुके हैं। संजय राउत से बात की हमारी सहयोगी मारिया शकील ने।
12: स्पीकर ने जब से जब आपने मुलाकात की, आप गए थे, आपके साथ अरविंद सावंत गए थे, आप लोग सब मिल करके गए थे अभी लोकसभा स्पीकर के पास, तो उन्होंने उनको आपने क्या कहा?
13: हमने जाकर स्पीकर साहब से कहा कि हम बोल नहीं सकते सच है या झूठा, लेकिन खबर चल रही है कि हमारे पार्टी से, पार्लियामेंट्री पार्टी से कुछ लोग टूटकर एक अलग गुट बनाना चाहते हैं और आपके पास आने वाले हैं, तो ये मैंने हमने सुना है,
12: ये बोला आपने?
13: हाँ, ये हमने सुना है, हमारे पास अब तक कोई ऑफिशियली किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया है।
12: अपना सपना मनी मनी है ना, और ये भी कहा था कि 15 करोड़ ऑफर किया जा रहा है स्विच करने के लिए,
13: दे दिया पैसा
12: नहीं, लेकिन सवाल है कि आपके सांसद ले रहे हैं, कौन ले रहा है?
13: मैंने कहा, बोला कि मेरे सांसद ले रहे हैं, हमारे सांसद ले रहे
12: हैं। आपने कहा ऑफर किया जा रहा है,
13: आप पूरे अपट्यूट पढ़िए, मैंने महाराष्ट्र के सांसद के बारे में कहा है।
12: हाँ, महाराष्ट्र के
13: कुछ एमपीज को तोड़ने की कोशिश हो रही है, आज रात को उन्हें 15-15 करोड़ रुपया उनके घर में
12: आज दिया जाएगा, बोल
13: कल रात को।
12: अच्छा,
13: जब तक ये पैसा नहीं मिलता है तब तक कोई चार्टर फ्लाइट में नहीं बैठेगा, सबके चुनाव क्षेत्र में चार्टर फ्लाइट खड़े थे कल।
2: तो उद्धव ठाकरे के सांसदों की बगावत की अटकलें तेज हैं, तो अखिलेश की समाजवादी पार्टी को लेकर भी चर्चा गर्म है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि समाजवादी पार्टी में टूट की खबरें क्यों सामने आ रही।
14: टीएमसी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ है, उससे बुरा हस्त समाजवादी पार्टी का 2027 में चुनाव में चारों खाने जब जीत होंगे तो ये सफाई में नजर आएगा।

0: तो क्या ममता और उद्धव के बाद अब बारी अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी की है? यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या का बयान थोड़ा विस्तार से सुनिए।
1: सपा में तो अभी 25-26 साल से टूटने को तैयार बैठे हैं, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। हम लोग तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
0: जो बात केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं वही बात अब यूपी के एक अन्य मंत्री ओपी राजभर भी दोहरा रहे हैं।
2: अपना जान बचाने के लिए जो उनके ऊपर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारा भविष्य नहीं है, आगे चुनाव हम हार जाएंगे, तो ये लोग मन बना लिए हैं कि अब चलो बड़ी संख्या में उधर। जो हश्र ममता के यहाँ टीएमसी का हुआ, उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो हो रहा है वहां से भी साथ चिल्ला रहे हैं ना, अब देखिएगा मियां चिल्लाना शुरू करें कुछ ही दिन में।
0: तो क्या अखिलेश यादव के 37 सांसदों में से भी दो तिहाई सांसद टूट सकते हैं? लोकसभा में इस वक्त समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं, दो तिहाई नंबर इसका 25 सांसद होता है। क्या समाजवादी पार्टी के इतने सांसदों को तोड़ना आसान होगा?
3: भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा? और लालच देकर के, डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए।
4: और बात पश्चिम बंगाल की सियासत की, टीएमसी नेताओं ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा हटाने का आरोप लगाया। डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि ममता बनर्जी के साथ पिछले 20 वर्षों से तैनात निजी सुरक्षा अधिकारी को बुधवार रात उनके कोलकाता स्थित आवास से हटा दिया गया है। तो सत्ता परिवर्तन होते ही ममता की सुरक्षा में कट आया है, ये उनके ही पार्टी के दो दिग्गज नेता बता रहे हैं प्लेटफॉर्म एक्स पर कि निजी सुरक्षा में तैनात गार्डों को हटा दिया गया है। तापस सेन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, क्या सुरक्षा कम हुई है उनके सीएम पद से हटने के बाद?
5: जी देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर कि उनकी सुरक्षा को कम नहीं किया गया है, जेड प्लस सिक्योरिटी उन्हें मिला करता था तो वो जेड प्लस कैटेगरी सिक्योरिटी उन्हें मिलेगा। लेकिन जो मसला कल सामने आया, डेरेक ओब्रायन ने एक तस्वीर बकायदा देते हुए सोशल मीडिया में ये मांग किया कि उनकी सिक्योरिटी को हटा लिया गया। दरअसल जो पता चला है कि उनके साथ लंबे अरसे से कुछ पीएसओज रहे हैं जो तकरीबन 20 साल से अधिक समय से उनके साथ रहे हैं और वो आरपीएफ के थे, बाद में उन्हें कोलकाता पुलिस में जॉब कर लिया गया था। उन्हें हटाकर उनकी जगह नए पीएसओज को रिक्रूट किया गया। ममता बनर्जी उन पीएसओज को अपने साथ रखना नहीं चाहती है, वो पुराने पीएसओज को ही चाहती हैं। हालांकि उन पुराने जो पीएसओज थे उन्हें भेज दिया गया है उनके पेरेंट कार्डर में। तो इसी को लेकर ये पूरा मसला जो है, ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गया, ये विवाद शुरू हो गया। तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि ममता बनर्जी का जो सिक्योरिटी घेरा है वो कम करने की कोशिश, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस बारे में इतना हल्ला करने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ उनके पीएसओ को बदला गया है, वो सरकारी नियम के अनुसार उन पीएसओ को बदला जाता है, समय समय पर उन्हें डेपुटेशन पे भेजा जाता है। तो इसी तरीके से इस बार
4: पीएसओ को बदला गया है, सुरक्षा नहीं हटाई गई है। बात राहुल गांधी की करेंगे। नीट पेपर लीक के बाद देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर एजुकेशन सिस्टम और छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए।
0: कोटा में छात्रों से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने एजुकेशन सिस्टम पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं पर छात्रों का कुल खर्च 5 मंत्रालयों के बजट के बराबर है। सरकार का ध्यान ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन पर है।
6: आपके परिवारों के,
0: राहुल ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को वसूली करने वाली मशीन बताया।
6: 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है।
0: राहुल गांधी ने छात्रों की आत्महत्याओं को लेकर भी चिंता जताई।
7: जिस प्रकार आत्महत्याएं हो रही है, 9 आत्महत्याएं हो चुकी है, आज हुई दिल्ली के अंदर, कल हुई राजस्थान के अंदर, तो ये एक प्रकार से उनकी आवाज बन करके उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, अगर उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं राहुल गांधी, इसके मायने कि वो नौजवानों को विश्वास दिला रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप चिंता मत करो, डिप्रेशन मत जाओ।
0: प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोटा में छात्र संवाद के दौरान पेश किए गए आंकड़ों को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि मैं इसमें बस एक बात और जोड़ना चाहती हूं, भारत सरकार द्वारा अपने पसंदीदा कारोबारियों के जो लोन माफ किए गए वो 16 लाख करोड़ रुपए का है। नीट पेपर लीक के बाद कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। लगातार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रही कांग्रेस अब शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
4: तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज के में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

ईरान अमेरिका युद्ध में बड़ी कामयाबी, शांति समझौते पर फाइनल सहमति पेरिस के वर्साय पैलेस में, ट्रंप ने किए दस्तखत, ईरानी राष्ट्रपति ने भी लगाई मोहर। 14 सूत्रीय समझौते में सीज फायर पर रजामंदी, हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही पर रास्ता साफ, ईरान का वादा, परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, संरक्षित यूरेनियम खत्म करने की तय होगी प्रक्रिया। फ्रांस में ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, आस्था के सवाल पर बोले व्हाइट हाउस में बैठा है भारत का सच्चा दोस्त, पीएम मोदी का सब करते हैं सम्मान, हम ट्रेड डील के बेहद करीब। उद्धव की पार्टी पर टूट का खतरा जारी, आज संसदीय दल की बैठक में साफ होगी तस्वीर, पार्टी ने जारी किया व्हिप, सूत्रों से खबर, अज्ञात स्थान पर भेजे गए बागी सांसद। समाजवादी पार्टी में बगावत पर दावों की बौछार, राजभर ने फिर साधा निशाना, बोले बलिया का लाल करेगा टूट की अगुवाई, केशव मौर्य का दावा, 25 सांसद टूटने को तैयार, अखिलेश का जवाब, डरा रही है बीजेपी।

अमेरिका ईरान शांति समझौते पर औपचारिक मोहर, ट्रंप ने पेरिस में साइन की एमओयू, डील की शर्तों पर दोनों पक्षों की सहमति। अमेरिका ईरान के बीच 14 सूत्रीय समझौता, ट्रंप और पेजेश्किया ने एमओयू पर किए हस्ताक्षर। मैक्रॉन ने शेयर किया ट्रंप के हस्ताक्षर का वीडियो, का अमेरिका ईरान के बीच समझौता हो गया है। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बाद कच्चे तेल के दाम में गिरावट, ब्रेंट क्रूड $79 से नीचे फिसला। ट्रंप का बड़ा बयान, दूसरे देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान को उनसे वंचित रखना अनुचित है। G7 समिट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई मुलाकात, हॉर्मुज और भारतीय नाविकों पर हुए हमले पर बातचीत। ट्रंप बोले, मैं भारत का बहुत बड़ा फैन हूं, अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका करेगा मदद। आज तक ने भारत और अमेरिका की दोस्ती को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड से किए सवाल, ट्रंप ने कहा, हर कोई भारत और पीएम मोदी से करता है प्यार और हमारे रिश्ते मजबूत है। ट्रंप के साथ विपक्षी बैठक में पीएम मोदी ने कहा, समुद्र में भारतीयों की सुरक्षा जरूरी, उम्मीद है कि ईरान के साथ डील में भारतीयों की सुरक्षा पक्की की जाएगी। आज पेरिस में पीएम मोदी वीवा टेक समिट में हिस्सा लेंगे, सम्मेलन के लिए भारत को ऑफिशियल AI कंट्री पार्टनर का दर्जा दिया गया है। कोटा में छात्रों की गूंज, कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, कहा कि छात्रों पर अत्यधिक दबाव डाला जा रहा है। कोटा दौरे पर छात्रों से मिले राहुल गांधी, सरकार को खेत विकास, स्टूडेंट का गला घोट रही है भारत की शिक्षा प्रणाली। राहुल गांधी बोले, ये राजनीति ने युवाओं की आवाज का मंच है। कार्यक्रम में अभिभावकों ने जताई चिंता, बोले बच्चों के तनाव से हर समय डर बना रहता है। नीट री एग्जाम से पहले टेलीग्राम के स्थायी बैन पर भड़के राहुल गांधी, बोले पीएम मोदी को दिखावा छोड़कर माफिया पर करना चाहिए वार। टेलीग्राम बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, सीईओ बोले पेपर लीक करने वालों की जगह भारत के 15 करोड़ यूजर्स को मिली सजा। राहुल गांधी के बयान पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया समर्थन, बोली एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी खामियों को ठीक करने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में LOP विपक्ष के नेता को लेकर विवाद, विधानसभा सत्र के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट आज LOP पर फैसला सुना सकता है। आज से बंगाल में बीजेपी सरकार का पहला बजट सत्र शुरू होगा, सत्र की शुरुआत गवर्नर R N रवि के उद्घाटन भाषण से होगी। बजट से पहले राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दास गुप्ता ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी से मुलाकात की। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शिवसेना UBT में टूट की खबर, सूत्रों के मुताबिक 6 बागी सांसदों ने स्पीकर को सौंपा खत। उद्धव ने आज दिल्ली में बुलाई संसद दल की बैठक, अहम राजनीतिक रणनीति पर हो सकता है मंथन, व्हिप जारी। संजय राउत का बड़ा आरोप, बोले ऑपरेशन टाइगर के नाम पर UBT सांसदों को तोड़ने की साजिश। UBT में सियासी घमासान, राउत ने सांसदों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया, कहा दगा करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मुंबई में सियासी घमासान, संजय राउत के बयान पर संजय शिरसाट बोले इस तरह की भाषा उचित नहीं है। ओम प्रकाश राजभर का दावा, समाजवादी पार्टी में टूट गए बागी, बलिया की नेता करेगा बागी सांसदों की अगुवाई। ब्राह्मण सम्मेलन में तिरस्कार, राजभर का दावा, समाजवादी पार्टी में टूट गए बागी, बलिया की नेता करेगा बागी सांसदों की अगुवाई। ब्राह्मण सम्मेलन में तिरस्कार का आरोप, ओपी राजभर बोले इससे समाजवादी पार्टी के नाराज सांसद और आहत हुए। समाजवादी पार्टी सांसदों में नाराजगी का दावा, ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को सांसद बचाओ अभियान की सलाह दी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अयोध्या दौरे पर, श्री राम जन्मभूमि मंदिर हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन, धार्मिक कार्यक्रमों के बाद लखनऊ वापसी। लखनऊ में कोरीन का सिरप मामले, बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल समेत वरुण सिंह और गौरव जायसवाल भगोड़ा घोषित, 3 पर मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कुर्की कार्रवाई की तैयारी। यूपी में तीसरे मोर्चे की आहट, लखनऊ में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और अपना जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच अहम मुलाकात। यूपी डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले TMC से बुरा होने वाला है समाजवादी पार्टी का हाल, 25 से 26 सांसद टूटने की कगार पर। अखिलेश यादव का केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार, बोले BJP से मुकाबले के लिए बहुत बहादुर टीम चाहिए, जो डर जाएगा वो दल छोड़कर चला जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी मामले में SIT जांच का दायरा बढ़ा, CCTV गेट चेकिंग और सुरक्षा स्टाफ की भूमिका जांच के घेरे में। राम मंदिर फंड घोटाले में नया मोड़, SIT की रडार पर सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी और पास सिस्टम, कई अधिकारियों की जांच तेज। जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने TMC सांसद अभिषेक बैनर्जी की गिरफ्तारी वारंट पर अंतरिम रोक लगाई हटाई, ट्रायल कोर्ट को आदेश की कॉपी भेजने के निर्देश। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बैनर्जी पर टीका हमला, का न पार्टी बची न कार्यकर्ता, सिर्फ सुर्खियों बने रहने की कोशिश कर रही है।
दिलीप घोष का बयान, हॉकर्स को लेकर राजनीति कर रही ममता, बोले सरकार सड़कों पर सुगम बनाएगी, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार के रेलवे स्टेशन में छात्रों का जन सैलाब, कटिहार में राजधानी ट्रेन में नहीं जाने दिया तो परीक्षार्थियों ने कर दिया बवाल। परीक्षा खत्म होती कटिहार रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़, परीक्षार्थियों को नियंत्रित करने में पुलिस रेलवे के छूटे पसीने। बिहार पुलिस परीक्षा के बाद गया जंक्शन पर उमड़ा जन सैलाब, सीटों के लिए मची मारामारी। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उमड़ी परीक्षार्थियों की भारी भीड़, मद्य निषेध, सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे प्रशासन अलर्ट। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर मोतिहारी बापूधाम स्टेशन पर उमड़ी भीड़, खिड़की के सहारे ट्रेन में घुसते दिखाई दिए छात्र। कुल्लू में बारिश से मौसम सुहाना, गर्मी से राहत। लगातार बारिश से कुल्लू घाटी हरी भरी, नजारे मनमोहक, तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन हल्की बारिश की जताई संभावना, दक्षिणी यूपी और एमपी में हीट वेव का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु पुडुचेरी कर्नाटक महाराष्ट्र कुछ हिस्सों में जारी रह सकती है बारिश। खेड़ा में मानसून की पहली बारिश से मौसम में राहत, भीषण गर्मी से मिली राहत। देवभूमि में पूरी आस्था के साथ जारी है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 11.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। पवित्र देवताल भी श्रद्धालुओं और साधु संतों का पहुंचना जारी, बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र स्थान। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, चंदरकोट का यात्री निवास श्रद्धालुओं के लिए स्वागत के तैयार। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम, गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद पूरे यात्रा मार्ग और हर सुविधा केंद्र में सुरक्षा चाक चौबंद। हरियाणा के संदीप आर्य जांगरा के नाम अनोखा कीर्तिमान, 20,000 सूर्य नमस्कार करके बनाया विश्व रिकॉर्ड। संदीप ने गुजरात के मोढ़ेरा में लगातार 37 घंटे 21 मिनट तक सूर्य नमस्कार करके बनाया विश्व रिकॉर्ड। सूरत के सिर्फ 1 साल 8 महीने के मासूम करण मिथुन भाई परमार की आदाश बनी चर्चा का विषय, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आईबीआर अचीवर के खिताब से नवाजा। नेदरलैंड्स के रोटरडैम में भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का शानदार खेल, एफआईएच प्रो लीग में भारत ने विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से दी मात। मैच के 7वें मिनट में मनदीप सिंह ने फिर किया गोल, फिर 13वें मिनट में शिलानंद लाखड़ा ने किया गोल तो नीलकांता शर्मा ने 35वें मिनट में किया गोल। उत्तर प्रदेश के बलिया में भोजपुरी स्टार पवन सिंह और अभिनेता सांसद रवि किशन ने कार्यक्रम के दौरान भीड़ बेकाबू, स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अमरोहा में चोरी के शक में जीजा साले को ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा, 3 ग्रामीणों को पुलिस ने दिया हिरासत में, बाकी फरार ग्रामीणों की तलाश जारी। जम्मू विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, रेलवे स्टेशन के पास 10 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया, 30 से अधिक अवैध ढांचे ध्वस्त। राजस्थान के अलवर में कार और बुलेट की टक्कर के बाद विवाद, घर पर पथराव और तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर इलाके में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने राष्ट्रीय हत्याकांड में शामिल 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नशे की आदत में ड्यूटी कर रहे बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों की जमकर पिटाई, मामला शांत कराने पहुंचे पुलिसकर्मी के साथ झड़प। बदायूं में भीषण सड़क हादसा, ई रिक्शा और ट्रैक्टर की टक्कर में 6 की मौत, 3 घायल। बिहार के समस्तीपुर में पीट पीट कर युवक किया

हत्याकांड बड़ा खुलासा। डिक्की मिला शक्कर, 18 घंटे शहर में घुमाता रहा। 40 लाख रुपए के लेन देन मामले में दोस्त और रिश्तेदार ने की थी हत्या। हापुड़ में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के आरोप में दो युवक पर केस दर्ज। जातिगत टिप्पणी, धार्मिक भावनाएं आहत करने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप। बैंक मैनेजर की सतर्कता से खुला 10 करोड़ की साइबर ठगी का मामला। दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद में आईबी के सब इंस्पेक्टर को दो पतियों को गैंगस्टर से धमकी दिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। लखनऊ वनडे में भारत 170 रन से भारी अंतर से अफगानिस्तान को दी मात। लगातार दूसरा वनडे जीतकर 3 वनडे की सीरीज में अजेय बढ़त हासिल की। टीम इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार ने झटके 3-3 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया लाई रनों की सुनामी। 50 ओवर में खड़ा किया 402 रनों का विशाल का स्कोर। जवाब में 45वें ओवर में 232 रन का स्कोर ही बना सकी अफगानी टीम। कप्तान गिल ने खेली शानदार 154 रन की पारी। 110 गेंदों में जड़े 22 चौके 2 छक्के। ईशान किशन ने 79 गेंदों पर शानदार 125 रन की पारी खेली। 7 छक्के और 14 चौके शामिल। श्रीलंका में चल रही वनडे ट्राई सीरीज में भी इंडिया ए ने अफगानिस्तान ए को 101 रन से दी मात। इंडिया ए के 319 रन के जवाब में 36.5 ओवर में सिर्फ 218 रन पर सिमटी अफगानिस्तान ए की टीम। विमेन सी20 वर्ल्ड कप में भारत ने रचा इतिहास। 95 रन से नेदरलैंड्स को हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल की। साथ ही महिला टी20 विश्व कप में पहली बार बनाया 200 से अधिक रनों का स्कोर। भारतीय महिला टीम ने नेदरलैंड्स के खिलाफ 5 विकेट पर हरा किया 209 रन का स्कोर। महिला टी20 विश्व कप इतिहास का यह तीसरा सबसे बड़ा स्कोर दर्ज। प्रीति बंधाना ने खेली 47 गेंदें बनाए 74 रन। शेफाली वर्मा ने खेली 55 रन की पारी। फिल्म वेलकम टू द जंगल में सितारों की जमघट पर बोले सुनील शेट्टी, है किसी एक इंसान के बारे में नहीं है फिल्म। 25 से 30 धुरंधर एक्टर्स की फिल्म है वेलकम टू जंगल। एक बार फिर हॉरर फिल्म का हिस्सा बनी जैकलीन फर्नांडिस। हॉरर फिल्म साइन करने का दावा। मेकर्स ने शूट किया फिल्म का टीजर और गाना। 19 जून को हैदराबाद में लॉन्च होंगे निर्देशक अभिषेक नामा की पौराणिक फैंटेसी फिल्म नागबंधम का ट्रेलर। मुंबई में होगा फिल्म द ओडिसी का ग्लोबल प्रीमियर। प्रमोशन के लिए भारत आएंगे हॉलीवुड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हत्या, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: आगे आगे करेक्ट करेक्ट
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना,

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
5: किस टूट की चर्चा कर रहे हैं जब 4 महीना रह गया चुनाव को,
6: है ना? अभी आपने देखा होगा कि राम गोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया और उन्होंने चिट्ठी लिया और हाथ जोड़ा, ये भी हाथ जोड़े, मुस्कुराए, अपना चल दिए राम गोपाल जी। तो चिट्ठी में क्या लिखा हो पता है?
5: क्या लिखा?
6: कि सीबीआई ने जो एफआईआर में खनन वाले में नाम अखिलेश जी का डाला है उसको बचाना है, और गुमती रिवर फ्रंट में जो परिवार का हमारे लड़के का और शिवपाल जी का नाम है, लोगों को बचाना है, और ये फला फला सांसद हैं, इनको आपके साथ हम भेज देते हैं, हम लोगों का जान बचा रहे।
5: चिट्ठी आपने पढ़ ली क्या?
6: क्या लिखे बतावें रामगोपाल? रामगोपाल जी बतावें कि क्या लिख रहे हैं वो चिट्ठी में, वो क्यों नहीं खुलासा करते हैं? वो अपना बचे बदे गायत्री प्रजापति जेल में रही हैं, खनन वाले मंत्री जिनके खिलाफ एफआईआर सीबीआई ने किया, उसी में अखिलेश जी का एफआईआर में नाम हो, आई जो तो रात के गुलदस्ता लेके भिड़ जाते हो, योगी जी के इनकी जान बचौली रहा मंचवा पर।
5: तो सांसद किस तरीके से मदद करने वाले हैं जो चिट्ठी में आप?
6: अरे सब टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं, अब यहाँ नहीं रहेंगे, पेट भर गया है। जैसे ममता के यहाँ पेट भर गया, सब चल दिए उधर, वैसे इधर से टूट के अब जाएंगे। आ रहा है बिल न, महिला बिल पास होना है ना, समझ में आ रहा है बात ना?
7: काम आसान बनाने आई टेक्नोलॉजी अब काम छीनने लगी है, और यही बदलाव धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी की तस्वीर बदल दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ने कंपनियों की स्पीड बढ़ाई है, खर्च घटाया है, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा खतरा भी खड़ा हो गया है जो सीधे आम आदमी की जेब से जुड़ा है। एक नई स्टडी में इस खतरे को ऑटोमेशन ट्रैप नाम दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और बोस्टन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के अनुसार कंपनीज AI के जरिए लागत घटा रही हैं, लेकिन छटनी होने पर लोगों की कमाई भी घटती है, जिससे बाजार में कुल खर्च कम होने लगता है। यानी जिस टेक्नोलॉजी से कंपनीज फायदा कमा रही हैं, वही आगे चलकर उनके बिजनेस पर दबाव बना सकती है। रिपोर्ट बताती है कि कंपनीज चाहकर भी इस रेस से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। इसकी वजह है कि एक कंपनी ऑटोमेशन करती है तो बाकी को भी करना पड़ता है। ये ऑटोमेशन आर्म्स रेस बन चुकी है, जिसके असर से जरूरत से ज्यादा ऑटोमेशन हो रहा है। इसका असर धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। कम नौकरियां मतलब कम सैलरी, और कम सैलरी का सीधा असर बाजार की डिमांड पर दिखता है। इसका मतलब साफ है कि शॉर्ट टर्म में मुनाफा बढ़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस पर असर पड़ सकता है। जमीन पर भी इसके संकेत साफ साफ नजर आने लगे हैं। दरअसल 2025 में 1,00,000 से ज्यादा टेक कर्मचारियों की छटनी हुई, इनमें आधे से ज्यादा मामलों में AI नौकरी जाने की वजह रही। 2026 में तो महज 4 महीने में ही 92,000 से ज्यादा लोग नौकरी गंवा चुके हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा ताकतवर होगा और कंपनीज के बीच मुकाबला बढ़ेगा, ये समस्या और गहरा सकती है। इस स्थिति से निपटने के लिए कई तरीके भी सुझाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं UBI, रीस्किलिंग और कर्मचारियों को कंपनी में हिस्सेदारी देना, ऑटोमेशन पर खास टैक्स लगाने का सुझाव जिससे कंपनीज छटनी के असर को भी ध्यान में रखें। रिसर्च में ये भी कहा गया है कि ये कदम पूरी समस्या को सुलझा नहीं पाते, यानी टेक्नोलॉजी की दौड़ में संतुलन बनाए बगैर आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। AI ने काम करने का तरीका तो बदल दिया है, लेकिन अगर यही रफ्तार जारी रही तो इसका असर हर उस इंसान पर पड़ेगा जो कमाता भी है और खर्च भी करता है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: दस लाख कैश, 40 लाख का प्लॉट, 1.5 करोड़ की जमीन, महंगी लग्जरी कार, 3 महंगे आईफोन, 2.98 करोड़ की नकदी, करोड़ों का सोना और न जाने क्या क्या अफवाहें उड़ रही हैं कि संदिग्धों की इतनी संपत्ति का पता चल रहा है। लेकिन अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 2 दिनों की जांच के बाद अभी तक किन संदिग्धों पर शक बढ़ा है, किन आरोपियों की संपत्ति जांच के दायरे में है, इसका आधिकारिक बयान न तो ट्रस्ट की ओर से आया है और न जांच एजेंसियों की ओर से। फिर भी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर रहे टिन्नू यादव का ही नाम आखिर क्यों सबसे ऊपर लिया जा रहा है? आरोप है कि ऑटो चलाने वाले टिन्नू के पास 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, वो टिन्नू अपनी सफाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि जब राम मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावा चोरी मामले में संदिग्धों के अंदर बंसल है, मिश्रा है, दुबे है, पाठक है, तो सबसे ज्यादा चर्चा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की ही क्यों हो रही है? पूनम यादव रुआंसी होकर बताती हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जब बड़े बड़े चेहरे हैं तो सिर्फ टिन्नू यादव पर ही निशाना क्यों? टिन्नू की पत्नी कहती है कि ये कुछ नहीं, सिर्फ उनके पति को मंदिर से निकालने की साजिश हो रही है। मतलब मामला अब पीडीए वाली राजनीति की तरफ बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि जिस राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच को लेकर अखिलेश यादव जोर शोर से मांग कर रहे थे, वो अब एसआईटी गठन पर खुश नहीं है। लगे हाथ अखिलेश ये भी ऑफर करते हैं कि किसी भी जाति के पीड़ित अगर खुद को बीजेपी से जुड़कर अपमानित महसूस कर रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी में आ जाए।
1: उसे कहिए कि क्यों नाराज हो, समाजवादी पार्टी में आइए।
0: टिन्नू यादव के परिवार का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में यादव जाति का होने की वजह से ही उनको अपमानित किया जा रहा है, जबकि पैसा चोरी करते पकड़े गए लड़कों का कोई जिक्र तक नहीं कर रहा। इस पूरे मामले में संदिग्ध तमाम है, नोट गिनने वालों से लेकर जमा करने वालों तक की तफ्तीश चल रही है। फिलहाल एसआईटी की जांच का 3रा दिन है और अगले 4 दिनों में अंतरिम रिपोर्ट आएगी तो संदिग्धों का पता चल जाएगा। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: सोमवार और मंगलवार को 2 दिनों में 19 घंटे तक एसआईटी ने उस मामले की जांच की है जिसे लेकर लगातार सियासी हमले तेज हैं।
3: आज उस चढ़ावे की आस्था को चीजों को आपने लूट लिया। कहां हैं आपके सारे लोग जो बड़ी बड़ी बात करने वाले?
1: एसआईटी के माध्यम से जो जांच होने जा रही है, एसआईटी की जांच कौन करेगा?
2: जिस एसआईटी पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, उस जांच टीम ने अयोध्या के राम मंदिर परिसर में तमाम सुराग तलाशे हैं, जानकारियां जुटाई है, जानने की कोशिश की है कि क्या चढ़ावे का पैसा सीधे दान पेटी से निकाला जा सकता है। जांच की है कि चढ़ावे के पैसे की गिनती से लेकर बैंक में जमा कराने की प्रक्रिया के बीच में कहां से चोरी की गई। चंदा चोरी के आरोपियों में एक नाम है चंपत राय के ड्राइवर रामाशंकर यादव का। एसआईटी की जांच के बीच वो अब सामने आया है और तमाम आरोपों को निराधार बता रहा है।
4: जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार है, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है।
2: मंगलवार को एसआईटी ने मंदिर परिसर में करीब 11 घंटे तक जांच की। 15 जून को भी 8 घंटे की जांच चली थी। अब इस मामले को लेकर पूर्व कार सेवक संतोष दुबे ने पुलिस से शिकायत भी कर दी है। मयंक शुक्ला के साथ संतोष कुमार, अयोध्या आज तक।

0: बढ़ती महंगाई के इस दौर में पेट्रोल डीजल की प्राइस में आई हालिया तेजी पर अब ब्रेक लगने का यकीन बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में महज 4 दिनों के भीतर करीब 16% की भारी गिरावट आई है, जिसके बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब $77 प्रति बैरल पर आ चुकी है। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई इस गिरावट के पीछे एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक वजह सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट को राहत दी है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते के बाद दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से खुल गया है। दुनिया का करीब 20-30% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है, जो युद्ध की वजह से बंद होने की कागार पर था। होर्मुज जल डमरू मध्य के दोबारा खुलने से कच्चे तेल की सप्लाई चेन में आ रही रुकावटें पूरी तरह खत्म हो गई हैं। सप्लाई बहाल होने और कच्चे तेल के रास्ते होने के बाद सभी के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल कब और कितना सस्ता होने जा रहा है। एक्सपर्ट्स और मार्केट रिसर्च के मुताबिक अगर क्रूड ऑयल की कीमतें इसी तरह $80 प्रति बैरल के आसपास स्थिर रहती हैं, तो सरकारी तेल कंपनियां कीमतों में कटौती कर सकती हैं। अनुमान के मुताबिक भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में 5 रुपए से लेकर 7 रुपए प्रति लीटर तक की कमी की गुंजाइश हालात सामान्य होने के बाद बन सकती है। इतना ही नहीं, क्रूड सस्ता होने से आने वाले दिनों में LPG सिलेंडर के प्राइस में भी राहत मिलने के पूरे आसार बन रहे हैं। जाने ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अगर युद्ध के दौरान हुए नुकसान से जल्दी उबर जाती हैं, तो फिर वो आने वाले दिनों में होने वाले मुनाफे का सीधा फायदा आम ग्राहकों को ट्रांसफर कर सकती हैं। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि कंपनियां तुरंत दाम घटाने की जगह कुछ दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिरता को मॉनिटर करेंगी। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो मिडिल ईस्ट के शांत होने से भारतीय रसोई से लेकर सड़क पर चलने वाली गाड़ियों तक हर जगह बड़ी राहत मिलना तय माना जा रहा है। आदित्य केराड़ा, आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
5: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

समझौते पर रजामंदी, हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही का रास्ता साफ। ईरान का वादा, परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। संरक्षित यूरेनियम खत्म करने की तय होगी प्रक्रिया।

पे ट्रंप ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। आज तक के सवाल पर बोले, व्हाइट हाउस में बैठा है भारत का सच्चा दोस्त। पीएम मोदी का सब करते हैं सम्मान, हम ट्रेड डील के बेहद करीब।

पार्टी पर टूट का खतरा जारी। आज संसदीय दल की बैठक में साफ होगी पूरी तस्वीर। पार्टी ने जारी की व्हिप, सूत्रों से खबर, अज्ञात स्थान पर भेजे गए बागी सांसद। समाजवादी पार्टी में बगावत पर दावों की बौछार, राजभर ने फिर सादा निशाना, बोले बलिया का लाल करेगा टूट की अगुवाई। एसपी का पलटवार, बेटे के टिकट के लिए फैला रहे अफवाह।

नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। इस खास पेशकश में वो सारी खबरें लेकर आ रहे हैं जो हेडलाइंस में जगह बना रही हैं या फिर आज दिन भर छाने वाली हैं। आगे बात होगी उस महाडील की जिसके साथ ही अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म हो गया। हम बताएंगे कि ऐतिहासिक वर्साय पैलेस में हुई संधि में क्या खास है और क्या इसे इसराइल मानेगा। साथ ही आपको दिखाएंगे आज तक का वो सॉलिड सवाल जो राष्ट्रपति ट्रंप से भारत को लेकर किया गया, और बताएंगे कि कैसे ममता उद्धव के बाद अब अखिलेश यादव की पार्टी के सांसदों तक ऑपरेशन की कयासबाजी अब शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका ईरान में समझौते की।

0: जाकर आ चुके हैं, हम वापस जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको सबक सिखा के जेल में जाऊंगा। ये देश को, देश की जो प्रतिष्ठा है, देश की डेमोक्रेसी की जो प्रतिष्ठा है, नियम है, संविधान है, उसके
1: और हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, बहुत तल्ख नजर आ रहे हैं यहाँ पर संजय राउत और चेतावनी देते दिख रहे हैं, ये चेतावनी किसको दे रहे हैं?
2: देखिए, मैं बता दूं आपको, कल से हमने देखा किस तरीके से संजय राउत उंगली उठा रहे हैं और चेतावनी भारतीय जनता पार्टी को देते रहे हैं। संजय राउत ने एक्चुअली ये भी बात बोली थी आगे चल के, उन्होंने ये साफ कहा था कि मातृश्री में पिछले कुछ दिनों के अंदर जो बैठकें हुई हैं उसमें से एक बैठक जो आखिरी बैठक थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, और उन्होंने बोला कि जो लोग उस बैठक में नहीं आ पाए थे वीसी के द्वारा जुड़े थे और सभी लोगों ने शपथ खाई थी, कुछ लोगों ने तो अपनी मदर की भी शपथ खाई थी, और ये कहा था कि हम अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं, हम शिवसेना उद्धव जी के साथ है और हमारा जो गुट है उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। और यही कारण है कि 11 बजे आप देखेंगे पार्लियामेंट के अंदर जो बैठक है उसको बुलाया गया है, एक बार फिर से लॉयल्टी का टेस्ट अब अंजलि होने वाला है।
1: जी बिल्कुल, इस संसदीय समिति की बैठक पर रहेगी सबकी नजर। शुक्रिया आपका ऐश्वर्या। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी
5: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला, दैट पेप्सी टेस्ट यू लव विद नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ओनली 30 कैलोरीज, जस्ट 5 ग्राम्स ऑफ शुगर एंड 3 ग्राम्स ऑफ प्रीबायोटिक फाइबर. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
6: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Tune In has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: नीट पेपर लीक को क्लीन बनाने के लिए भारत सरकार ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया है।
2: But Telegram has been a channel which has been misused, abused for a very, very long time for several factors.
1: NTA के मुताबिक टेलीग्राम पर लगाई गई रोक 22 जून 2026 तक जारी रहेगा। हालांकि आदेश कब से लागू होगा इसकी तारीख नहीं दी गई है। नीट री एग्जाम 21 जून को होगा। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है। हालांकि एनटीए के इस फैसले पर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। नीट एग्जाम रीटेस्ट के लिए टेलीग्राम को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। मोदी जी को सबसे पहले अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाहिए, जिन्होंने लाखों युवाओं का भविष्य ब्लॉक कर दिया है।
3: टेलीग्राम पर रोक लगाने से क्या होगा? पेपर जो लीक हो रहा है वो तो सिस्टम के अंदर से हो रहा है, टेलीग्राम से नहीं हो रहा है।
1: सूत्रों के मुताबिक नीट यूजी री एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्रों के पैकेट पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। समय पर डिलीवरी और दूर दराज दुर्गम इलाकों में सुरक्षित तरीके से प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए भी MI-17 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी सक्रिय है। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं के साथ स्थानीय पुलिस वाहनों के साथ स्कॉट्स गाड़ियां चलेंगी। नीट परीक्षा केंद्रों पर भी CRPF, CISF समेत दूसरे सुरक्षा बलों की निगरानी रहेगी। सरकार के सामने नीट का री एग्जाम बिना पेपर लीक के कराना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसे लेकर सारी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। आज तक ब्यूरो।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट्स की रजिस्ट्री की आस लगाए बैठे लोगों के लिए राहत की किरण नजर आने लगी है। दरअसल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आने वाले कुछ हफ्तों में एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है, जिसमें एक नई वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस को लागू किया जाएगा। ओटीएस का मकसद बिल्डर्स से हजारों करोड़ रुपए का बकाया वसूलना है। प्रस्ताव लागू होने पर करीब 2.12 लाख फ्लैट से जुड़े रजिस्ट्री मामलों को राहत मिल सकती है। फिलहाल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 57 डिफॉल्टर प्रोजेक्ट्स पर 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। ओटीएस के तहत अथॉरिटी ब्याज या जुर्माने के कुछ हिस्से में छूट देकर बिल्डर्स को एक मुश्त भुगतान का मौका देगी। इससे सरकार और बिल्डर के बीच फंसा वित्तीय विवाद सुलझ सकेगा। लेकिन ओटीएस आने के बाद भी उन फ्लैट्स की रजिस्ट्री शुरू हो पाएगी जहां बिल्डर के पास भुगतान जुटाने के पर्याप्त संसाधन मौजूद है। ओटीएस का फायदा वही बिल्डर्स उठा पाएंगे जिनके पास पर्याप्त कैश फ्लो मौजूद है, यानी जिनके पास बेचने के लिए अनसोल्ड फ्लैट्स या कमर्शियल स्पेस बचा हुआ है, या ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें गिरवी रखकर या बेचकर वो अथॉरिटी का बकाया चुका सकते हैं। इसके उलट जिन बिल्डर्स की माली हालत पूरी तरह खराब हो चुकी है, जिनके पास ना तो पैसा है और ना ही बेचने लायक इन्वेंट्री, वहाँ इस स्कीम के बाद भी खरीदारों को मालिकाना हक के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। औद्योगिक विकास मंत्रालय ने समीक्षा बैठक में डिफॉल्टर बिल्डरों पर सीधी और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साफ है कि जो बिल्डर्स इस आखिरी मौके के बाद भी बकाए का भुगतान नहीं करेंगे, उन पर सख्त कानूनी हंटर चलना तय है। मौजूद विकल्पों के तहत रिकवरी सर्टिफिकेट यानी RC जारी करके प्रशासन के जरिए सरकारी वसूली की जाएगी। डिफॉल्टर बिल्डर्स की जमीन, दफ्तर और दूसरी संपत्तियों की कुर्की की जा सकती है। रेवेन्यू रिकवरी की तरह बैंक खाते और प्रॉपर्टीज को अटैच किया जाएगा। गंभीर मामलों में बिल्डर्स को ब्लैकलिस्ट करके भविष्य के प्रोजेक्ट से बाहर किया जाएगा। यूपी रेरा के तहत भारी जुर्माना, मुकदमा और दिवाला प्रक्रिया यानी IBC के तहत प्रोजेक्ट नए डेवलपर को सौंपा जा सकता है। लाखों फ्लैट खरीदारों के लिए ओटीएस उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। साफ है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए बिल्डर्स को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। फिलहाल हर किसी की नजर अथॉरिटी के अगले कदम पर टिकी है। आदित्य के राणा, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: ईरान अमेरिका में 14 सूत्री समझौते पर रजामंदी, हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही का रास्ता साफ, ईरान का वादा, परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, संरक्षित यूरेनियम खत्म करने की तय होगी प्रक्रिया। फ्रांस में डोनाल्ड ट्रंप ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, आज तक के सवाल पर बोले, व्हाइट हाउस में बैठा है भारत का सच्चा दोस्त, पीएम मोदी का सब करते हैं सम्मान, हम ट्रेड डील के बेहद करीब। उद्धव ठाकरे की पार्टी पर टूट का खतरा जारी, आज संसदीय दल की बैठक में साफ होगी पूरी तस्वीर, पार्टी ने जारी की व्हिप, सूत्रों से खबर, अज्ञात स्थान पर भेजे गए बागी सांसद। समाजवादी पार्टी में बगावत पर दावों की बौछार, राजभर ने फिर साधा निशाना, बोले बलिया का लाल करेगा टूट की अगुवाई, एसपी का पलटवार, बेटे के टिकट के लिए फैला रहे अफवाह। राम मंदिर चंदा चोरी की जांच में बड़ा खुलासा, सीसीटीवी से छेड़छाड़ के सबूत, रडार पर 200 से ज्यादा चेहरे, बैंक की भूमिका की भी जांच।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

अब बात करते हैं राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के आरोपों की। आज चौथे दिन एसआईटी टीम की जांच और तेज हो गई है। अब मंदिर परिसर के कर्मचारी भी जांच के घेरे में आ गए हैं। जांच के रडार पर सीसीटीवी निगरानी, गेट चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी भी हैं, जिनसे एसआईटी की टीम पूछताछ कर सकती है। वहीं रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर यानी कि आरएमओ से भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं, जो चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव का खास बताया जा रहा है। कल एसआईटी की टीम ने आरोपों के घेरे में आए टिन्नू यादव से पूछताछ भी की थी। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जांच कर रही एसआईटी की टीम को मंदिर के सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही प्रारंभिक जांच में बैंक की भूमिका और संभावित लापरवाही भी सामने आई है, जिसके बाद एसआईटी ने जांच और तेज कर दी है। दान की गिनती प्रक्रिया में बैंक कर्मियों के साथ ट्रस्ट के रुपए गिनने वाले कर्मचारियों की संख्या कम होने को भी संदेहास्पद माना जा रहा है। एसआईटी ने पूछताछ के लिए करीब 200 लोगों की सूची तैयार कर ली है और अब तक 125 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि कुछ लोगों से कई बार पूछताछ हुई है। साथ ही जांच में मिले दस्तावेजों के अनुसार मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर 11 महीनों में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

0: तो चलिए आपको बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या है इस चढ़ावे में। लूट, कथित लूट को लेकर सियासत तो गरमाई है, लेकिन SIT जो है वो इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। CCTV से कहा जा रहा है कि छेड़छाड़ की गई है और ये संकेत SIT को मिले हैं, जिसके बाद चिंताएं बढ़ गई हैं। तो SIT इस वक्त इस पूरे CCTV और उसकी रिकॉर्डिंग की जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर कहां पे छेड़खानी की गई है। साथ में जो वहां चढ़ावा दिया जाता है, दान दिया जाता है, उसकी जो गिनती की जाती है, उसकी प्रक्रिया में जो कर्मचारी लगाए गए थे, कार्यरत थे, उनकी संख्या कम क्यों की गई थी, इस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। जो शुरुआती जांच है उसमें ऐसा लग रहा है SIT को कि बैंक की भूमिका हो सकती है या किसी तरह की लापरवाही भी हो सकती है। इसीलिए SIT अब एक लंबी फहरिस्त बनाकर कई लोगों से पूछताछ कर रही है। करीब 200 लोग ऐसे हैं जिनसे पूछताछ की जाएगी, जिनमें से 125 से अभी पूछताछ की जा चुकी है, कई से तो बार बार पूछताछ की गई है। एक शख्स जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है वो है टिनू यादव। ये चंपत राय का ड्राइवर है और इससे कई घंटे कल पूछताछ की गई है, क्योंकि इसका नाम बार बार सामने आया है। एक जो बात सामने आई है वो ये कि खर्चा कितना हो रहा था। सुरक्षा की बात करें तो 11 महीनों में 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए। तो अलग अलग चीजों को खंगाला जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव का, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। आशीष, जो पॉइंट्स हैं जांच के उनको थोड़ा खुलकर बताएं, और साथ में ये भी जानना चाहेंगे पूछताछ ये जो की जा रही है इनमें से 125 लोगों से हो चुकी है, कौन कौन बचता है और किन पर सबसे ज्यादा नजर है इस वक्त जो SIT की टीम है, खासकर ये देखते हुए कि CCTV से छेड़छाड़ हो सकती है।
1: देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि जब SIT की टीम राम मंदिर परिसर में जाती है तो वो पहले इस प्रक्रिया को समझती कि कैसे दान पेटिका से दान को बाहर ले जाया जाता है या उसकी प्रक्रिया क्या है। उस प्रक्रिया को जब वो पाती है तो उसमें देखती है कि जो कर्मचारी हैं जो नोटों को गिनने का काम अलग से करते हैं वो एक ट्रस्ट के द्वारा रखे जाते कर्मचारी हैं। इसके बाद जब नोटों का बंडल बन जाता है तब उसको SBI के जो कर्मचारी हैं वो उस पर अपना मार्किंग लगाकर उसको आगे बढ़ाते हैं। और यही नहीं, यहां से ये सारा कार्य जो होता है वो एक जो बिल्डिंग बनी हुई है अलग से राम मंदिर के अंदर ही, जिसको अंडरग्राउंड बिल्डिंग बोला जाता है, उस बिल्डिंग में सारा कार्य होता है। तो जिस तरीके से ये कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व थे उसमें जो CCTV लगे हुए हैं, क्योंकि गिनने के दौरान भी CCTV लगे हुए हैं, उन CCTV में ऊपर नीचे हुआ है, क्योंकि वहां पर AI से लेकर HD कैमरे और हजारों CCTV लगे थे। लेकिन जो गिनने के दौरान जिस तरीके के जो CCTV हैं, जिनकी ये अभी आशंका जताई जा रही है शुरुआती जांच में कि वो कुछ CCTV कुछ समय के लिए बंद थे, तो उनकी भी जांच अब की जा रही है। तो कर्मचारियों का यानी कि दान निकलने से लेकर उसको आगे शिफ्ट होने तक जो प्रक्रिया थी उसमें CCTV का अहम रोल होता है, और वो CCTV किस तरीके से टेम्पर्ड किए गए थे या उनको किस टाइम पीरियड के लिए रोका गया था, ये सारी प्रक्रिया उस जांच में SIT की शामिल है। इसी वजह से अभी तक तकरीबन जो 200 के आसपास लोग हैं जिनसे पूछताछ की जानी है और की जा भी चुकी है, क्योंकि लगातार SIT उन लोगों से बात कर रही है जो इस पूरे जो चंदा जिस तरीके से कलेक्ट होता है और उसको आगे बढ़ाया जाता है उसमें, तो उसमें आभूषण भी आते हैं, रुपए भी आते हैं, क्योंकि नोटों को अलग अलग कलेक्शन करना, तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मामला
0: आशीष, है। आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि एक और बड़ी खबर है राम मंदिर के चढ़ावा में जो चोरी हुआ है उसको लेकर अखिलेश यादव पहले ही CCTV पर सवाल खड़े कर चुके हैं, और अखिलेश यादव ने BJP को घेरते हुए कहा है कि CCTV से चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी का राज खुल सकता है। लेकिन चुनावों की तरह यहां भी वही हुआ है, यहां भी CCTV फुटेज खो गया है, गायब है।
2: भाजपा का धर्म का मतलब धन है, और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने, कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां CCTV फुटेज नहीं मिले थे, और CCTV फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं, और CCTV से क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। चौथे दिन एसआईटी की टीम ने जांच अब तेज कर दी है। मंदिर परिसर के रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर आरएमओ की भी अब जांच की जा रही है और वो घेरे में आ चुके हैं, जो टीनू यादव और ट्रस्ट का खास बताया जाता है। और खास होना इस हद तक है कि मंदिर में करीब

0: ये पास निर्गत करते हैं, यानी कि जो निकलना हो सामान या अंदर आना हो बाहर जाना हो उसको लेकर भी एक सुपर अथॉरिटी होती है, उससे भी अब जांच की जा रही है। और इसके अलावा वहां पर मौजूद जो मैनेजमेंट देखते हैं, ये सभी वो कर्मचारी हैं जो सीधा ट्रस्ट को रिपोर्ट करते थे, और जिसमें इनकी मेन मुख्य संलिप्तता ये थी कि वह इनके अलावा कोई और पूछताछ नहीं कर सकता था। तो अगर सीसीटीवी में गड़बड़ी आई है और कोई कर्मचारी इतने समय से कार्य कर रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है, इसको किसकी शह थी, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट है।
1: जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है सबकी जांच। शुक्रिया आपका आशीष। तो राम मंदिर में चोरी की खबरों ने हड़कंप मचाया हुआ है। सवालों के घेरे में एक ड्राइवर है जिसके बारे में दावा है कि उसने करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कई होटल और हॉस्टल चलते हैं। इस बीच उस ड्राइवर की पत्नी भी अपने पति पर लग रहे आरोपों पर सफाई देने के लिए आई है। देखिए पूरी रिपोर्ट।

0: टिन्नू यादव लगभग 30 होटलों में यहाँ के इसका इसकी फ्रेंचाइजी चलती रही बाकायदा। टिन्नू यादव का करेक्टर ही तो ये सकुनी मामा है यहाँ का लोकल, ये चंपत रायचूर का सकुनी मामा है, ये दुर्योधन का तो नाश कराएगा, ये तो कर्ण को भी मरवा डालेगा।
1: 32 साल का सेवा कोई मामूली बात है, हम चोर बेईमान होते तो आज तक टिके रहते वहाँ।
2: राम मंदिर के चढ़ावे के पैसों का चोर कौन, कब टूटेगा मौन? मंदिर के चढ़ावे की चोरी के कितने किरदार, कौन है असली सरदार? रोज जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है, तरह तरह की बातें हो रही हैं, और एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि राम मंदिर के पैसे चुराने वाला वो असली चोर कौन है, कितने हैं और उनका सरगना कौन है? एसआईटी की टीम ने दो दिनों में अब तक 19 घंटों तक पूछताछ की है। राम मंदिर में जो कर्मचारी चढ़ावा गिनते हैं उनसे ये विस्तृत पूछताछ हुई। एसआईटी ने दो दिनों में दानपात्र से नोट निकालने, गड्डी बनाने और गिनने की पूरी प्रक्रिया को अपने सामने खुद करवाया। ये भी देखा कि कर्मचारियों के आने और जाने के दौरान किस तरह से तलाशी ली जाती है। इसके अलावा एसआईटी ने चढ़ावा गिनने वाले कमरे का सीसीटीवी डेटा भी निकलवाया है। ये डेटा करीब एक दर्जन अलग अलग पेन ड्राइव में लिया गया। अब तक की पूछताछ में करीब 9 कर्मचारी ऐसे मिले हैं जिन्होंने महंगे फोन और गाड़ियां ली। अभी तक किसी को आरोपी घोषित नहीं किया गया, लेकिन जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है टिन्नू यादव, जो चंपत राय के ड्राइवर है, अभी मंदिर ट्रस्ट में कई तरह की व्यवस्थाएं देखता है। आरोप है कि टिन्नू यादव ने अपनी कई तरह की संपत्तियां बनाई है, हॉस्टल और होटल बनाए हैं। इन्हीं आरोपों के बीच कल टिन्नू यादव की सफाई आई थी और आज उनकी पत्नी भी आज तक के कैमरे पर सफाई देने के लिए आई।
3: जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार है, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे लोग 50 करोड़ की संपत्ति है वो तो भगवान जान रहे हैं सर। इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा, कि भगवान ही इनका निर्णय करेंगे सर।
4: करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अर्जित कर ली, यहाँ पर बताया गया उन्होंने अपना हॉस्टल बनवा लिया, कमरों का
1: ने मेरे 2008 का मैंने जमीन लिया था, 15 में बनवाया, 12-14 कमरा होंगे, उसमें बच्चे नीचे रहते हैं, ऊपर अपने रहने के लिए बनवाया, लेकिन हमें अयोध्या से ज्यादा वहाँ अच्छा नहीं लगा।
4: आपका घर हम देख रहे हैं, ये तो संकरी गली,
1: पिताजी का ससुर जी का बनवाया हुआ, ये मेरा बनवाया नहीं है, ये मेरा बनवाया नहीं है,
4: ये भी संकरी गलियों में ही है दिख रहा है जैसा।
1: अब वो तो आप जो मीडिया वाले दिखा रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, लग्जरी कार से चलते हैं, इनके पास गाड़ी खड़ी रहती है, 50 करोड़ के मालिक हैं। जिसके पास 50 करोड़ होगा उस सुबह व्यक्ति जाएगा, रात को 11 बजे आएगा, इतना है तो बैठ के खाएगा, आराम से ऐश करेगा। उसका बायोडाटा निकालिए, देखिए कहाँ कहाँ घूम रहा है, कहाँ कहाँ क्या कर रहा है।
4: तो जो ट्रस्ट का चंदा है क्या उसमें भी रोल था इनका?
1: कुछ लेना देना ही नहीं है उसमें, बैंक कर्मचारी हैं जो गिनने वाले हैं वो जाने, हम लोगों क्या लेना देना, उसे मेरा कोई लेना देना नहीं, इनका भी कोई लेना देना नहीं। चंदा कौन आ रहा, कौन गिन रहा, वो बैंक कर्मचारी रहते हैं और लोग उसमें रहते, गिनने वाले ट्रस्ट वाले जानेंगे, हम लोग क्या जानेंगे। नॉर्मल

0: आदमी हम लोग क्या जानेंगे, कुछ नहीं जाने तो इतना बड़ा हो गया, अगर उसमें होते तो क्या क्या बताया जाता।
1: क्या इससे पहले भी कभी इस तरीके की आप लोगों पर कोई
0: बातचीत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
2: टिन्नू यादव की पत्नी ने अपने पति के ऊपर लगे तमाम आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि 32 साल से राम की सेवा करने वालों को चोर कहा जा रहा है। ये भी कहा है कि उनके परिवार पर इन सब का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बिना सबूतों के उनके परिवार के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। टिन्नू यादव पर सबसे ज्यादा आरोप लगाए हैं संतोष दुबे ने, जो बाबरी विध्वंस के आरोपी रहे हैं। जेल गए, कार सेवक रह चुके हैं, लेकिन अब वो खुलकर चंपत राय और टिन्नू यादव पर बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। संतोष दुबे ने इनके खिलाफ अयोध्या में FIR के लिए थाने में शिकायत भी दी है। यहीं पर हमें टिन्नू यादव की पत्नी पूनम यादव भी मिली, जो अपने पति के ऊपर लग रहे आरोपों का बचाव करने के लिए सामने आई।
1: पूनम जी, बहुत सारे संगीन आरोप लगे हैं, उन पर आपका क्या कहना है?
0: सब झूठा निराधार है, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी के पास ठोस सबूत ही नहीं है।
2: अब सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो SIT की जांच के बाद ही पता चलेगा।
1: आरोप लगे हैं, उन पर आपका क्या कहना है?
0: सब झूठा निराधार है, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी के पास ठोस सबूत ही नहीं है।
2: अब सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो SIT की जांच के बाद ही पता चलेगा, जिसे 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
3: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: प्लानिंग फॉर योर फैमिलीज फ्यूचर? पुट इट इन द राइट हैंड्स विद LegalZoom. It's too important to let it fall into the wrong hands. LegalZoom is the simple, affordable online solution for estate planning. If you need a will or trust, LegalZoom guides you through every step to ensure your loved ones and assets are protected. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
7: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
10: Sokudo.

जिस राम मंदिर के बनने में दशकों तक सियासत हुई, कई सरकारें बनी और टूटी, अब जब उस राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगा तो तुरंत राजनीति भी शुरू हुई। समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रही है। अखिलेश यादव और उनके सहयोगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इसे सनातन और भगवान राम का अपमान बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं बीजेपी वाले, खास तौर पर बीजेपी के वो नेता जो राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या बोलना है। जैसे कि विनय कटियार, जो पहले मंदिर में चोरी की खबर पर आग बबूला हो रहे थे, लेकिन अब पलट गए। कांग्रेस तो सीधे कह रही है कि ये पूरी तरह से संगठित लूट है और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और अयोध्या के संतों का मानना है कि गलत करने वालों का फैसला अब राम ही करेंगे। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर
5: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org.
6: Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
7: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.

कॉलेज की डिग्री हासिल करने वाले युवाओं के लिए आने वाला वक्त बड़े इम्तिहान जैसा होगा। जो डिग्रियां कभी शानदार करियर की गारंटी मानी जाती थी, वही आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के दौर में फीकी पड़ने लगी है। जॉब मार्केट के तेजी से बदलते ढांचे के बीच देश में IT, कानून, कॉमर्स, ट्रांसलेशन और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में बड़ा उलटफेर शुरू हो चुका है। ऐसे में युवाओं को पारंपरिक पढ़ाई के साथ कुछ नया सीखना होगा। अनुमान है कि 2030 तक दुनिया भर में करीब 22% नौकरियों पर AI का सीधा असर पड़ सकता है। इसकी वजह है कि 40% कंपनियां जॉब के लिए डिग्री के साथ AI टूल्स की जानकारी होना जरूरी मानती हैं, जबकि देश में 82% BCA और MCA के पास AI टूल्स की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। यानी नौकरियां उन्हीं लोगों के पास सुरक्षित रहेंगी जो इन मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को 40% तक बढ़ा सकते हैं। साफ है कि AI किसी इंसान की जगह तो नहीं लेगा, लेकिन AI का इस्तेमाल करने वाले लोग उन लोगों को रिप्लेस कर देंगे जो इससे दूरी बनाकर रखेंगे। ऐसे में अगर पढ़ाई का तरीका और कंटेंट नहीं बदला गया तो आने वाले दिनों में डिग्रियों की वैल्यू कम हो जाएगी। कंपनियों को औसत एम्प्लॉयज की जगह 10x प्रोफेशनल्स की तलाश है जो अकेला ही कई लोगों के बराबर काम संभाल सके। इसकी वजह DeepL टूल जैसे टूल्स का इस्तेमाल है जो एक पेज को महज 2 सेकंड में ट्रांसलेट कर देता है। वहीं कैनवा AI सोशल मीडिया बैनर 12 सेकंड में बना देता है, जिससे बेसिक लोगों के रेट 70% घटे हैं। GIT हब कैपिटोल 40 सेकंड में कोड लिख देता है, जिससे जूनियर कोडर्स की जरूरत बेहद कम हो गई है। हालांकि शुरुआती दौर में प्रोफेशनल्स की नियुक्तियों पर दबाव दिखाई दे रहा है और इन्फोसिस, विप्रो, TCS जैसी कंपनियों ने फ्रेशर्स हायरिंग को थोड़ा धीमा किया है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है क्योंकि आगे चलकर जॉब मार्केट में नए मौके बनने वाले हैं। भारत में इस समय GCCS की बाढ़ आई हुई है और देश में 4000 से ज्यादा ऐसे सेंटर्स काम कर रहे हैं जो AI स्किल्स वाले युवाओं को भारी भरकम सैलरी पर नौकरियां दे रहे हैं। राहत की बात यह है कि कई काम ऐसे हैं जहां इंसानी दिमाग, फैसले लेने की क्षमता, इमोशनल क्वोशेंट और बातचीत के हुनर की जरूरत होती है। आदित्य राडा, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: ईरान अमेरिका में 14 सूत्रीय समझौते पर रजामंदी। हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही का रास्ता साफ, ईरान का वादा, परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, संरक्षित यूरेनियम खत्म करने की तय होगी प्रक्रिया।
2: फ्रांस में डोनाल्ड ट्रंप ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। आज तक के सवाल पर बोले, व्हाइट हाउस में बैठा है भारत का सच्चा दोस्त, पीएम मोदी का सब करते हैं सम्मान, हम ट्रेड डील के बेहद करीब।
1: उद्धव की पार्टी पर टूट का खतरा जारी। आज संसदीय दल की बैठक में साफ होगी पूरी तस्वीर। पार्टी ने जारी की विप सूत्रों के हवाले से खबर। अज्ञात स्थान पर भेजे गए बागी सांसद।
2: समाजवादी पार्टी में बगावत पर दावों की बौछार। राजभर ने फिर साधा निशाना, बोले बलिया का लाल करेगा टूट की अगुवाई। एसपी का पलटवार, बेटे के टिकट के लिए फैला रहे अफवाह।
1: राम मंदिर चंदा चोरी विवाद में बड़ा खुलासा। सीसीटीवी से छेड़छाड़ के सबूत, रडार पर 200 से ज्यादा चेहरे, बैंक की भूमिका की जांच।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा भट।
2: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोलकाता हाईकोर्ट में ममता बैनर्जी को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने ऋतव्रत बैनर्जी को विधानसभा में विपक्ष के नेता पर मान्यता दे दी है। हाईकोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है।
1: तृणमूल कांग्रेस विधायक शोभन देव ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मना कर दिया है। हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने की बात कही है। हलफनामे पर जवाब 2 हफ्ते में देने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
2: और अब वक्त है शतक आज तक का।

0: अमेरिका ईरान शांति समझौते पर औपचारिक मुहर, डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस में साइन किया एमओयू, डील की शर्तों पर दोनों पक्षों की सहमति। अमेरिका ईरान के बीच 14 सूत्रीय समझौता, ट्रंप और पेजेशकियान ने एमओयू पर किए हस्ताक्षर। मैक्रॉन ने शेयर किया ट्रंप के हस्ताक्षर का वीडियो, कहा अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हुआ। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बाद कच्चे तेल के दाम में गिरावट, ब्रेंट क्रूड $79 से नीचे फिसला। ट्रंप का बड़ा बयान, दूसरे देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं तो ईरान को उनसे वंचित रखना अनुचित। G7 समिट के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई मुलाकात, हॉर्मुज और भारतीय नाविकों पर हुए हमले पर बातचीत। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, मैं भारत का बहुत सम्मान करता हूं, अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका करेगा मदद। आज तक में भारत और अमेरिका की दोस्ती को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल, ट्रंप ने कहा हर कोई भारत और पीएम मोदी से करता है प्यार और हमारे रिश्ते मजबूत हैं। ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि समुद्र में भारतीयों की सुरक्षा जरूरी, उम्मीद है कि ईरान के साथ डील में भारतीयों की सुरक्षा पक्की की जाएगी। आज पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी वीवा टेक समिट में शामिल होंगे। इस सम्मेलन के लिए भारत को ऑफिशियल एआई कंट्री पार्टनर का दर्जा दिया गया है।
1: कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को झटका, हाईकोर्ट ने ऋतुव्रत बनर्जी को विधानसभा में विपक्षी नेता के तौर पर मान्यता दे दी है। हाईकोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार, सोमन देव ने फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी वारंट पर अंतरिम रोक हटाई, ट्रायल कोर्ट को आदेश की कॉपी भेजने के निर्देश। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता

ओम प्रकाश राजभर का दावा, समाजवादी पार्टी में टूट है बागी बलिया का नेता करेगी बागी सांसदों की अगुवाई। ब्राह्मण सम्मेलन में तिरस्कार का आरोप, ओपी राजभर बोले इससे समाजवादी पार्टी के नाराज सांसद राहत हुए हैं। समाजवादी पार्टी सांसदों में नाराजगी का दावा, ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को सांसद बचाओ अभियान की सलाह दी। राजभर के एक्सपोज से सियासी बवाल, दलित उत्पीड़न के मामलों को लेकर विपक्ष को घेरा, कई जोन के आंकड़े साझा किए। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर का बड़ा दावा, कहा समाजवादी पार्टी के 25 से 27 सांसद टूटेंगे।

0: समाजवादी पार्टी नेता के एक्स पोस्ट पर पलटवार करते हुए अरुण राजभर बोले, मैं समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बैठकें कर रहा था, ये लोग आईटी सेल से पोस्ट चिपका कर राजनीति कर रहे हैं। अरुण राजभर बोले, बलिया से होगी शुरुआत, थर्ड या फोर्थ फ्रंट का कोई असर नहीं। अखिलेश यादव का ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा हमला, टिकट और वसूली को लेकर लगाए गंभीर आरोप। अखिलेश यादव बोले, अधिकारियों और ठेकेदारों की पंचायत में फंसे राजभर, सियासत में बयानबाजी तेज। एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान का बयान, बीएसपी प्राथमिकता लेकिन अन्य दलों के साथ भी गठबंधन की संभावना। यूपी में तीसरे मोर्चे की आहट, लखनऊ में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच अहम मुलाकात। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले टीएमसी से बुरा होने वाला है समाजवादी पार्टी का हाल, 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार। अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी जांच का दायरा बढ़ा, सीसीटीवी गेट चेकिंग और सुरक्षा स्टाफ की भूमिका भी जांच के घेरे में। राम मंदिर फंड घोटाले में नया मोड़, एसआईटी की रडार पर सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी और पास सिस्टम, कई अधिकारियों की जांच तेज। लखनऊ में कोडीन कफ सिरप मामले में बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल समेत वरुण सिंह और गौरव जायसवाल भगोड़ा घोषित, तीनों पर मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कुड़की कार्रवाई की तैयारी जारी।
1: झांसी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को शामिल होंगे सीएम योगी, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। झांसी किले में होगा योग कार्यक्रम, सीएम योगी के आगमन को लेकर सुरक्षा के इंतजाम सख्त। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अयोध्या दौरे पर, श्री राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन, धार्मिक कार्यक्रमों के बाद लखनऊ वापसी। मुहर्रम से पहले हापुड़ में सख्ती, संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च, ड्रोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी। झारखंड में आज 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव, सुबह से जारी है मतदान। झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस विधायक एक साथ विधानसभा पहुंचे, मतदान को लेकर रणनीति साफ। रांची हमले मामले में जेएमएम का बयान, पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की, साथ ही बीजेपी शासित राज्यों की तुलना पर कानून व्यवस्था पर सवाल। रांची में राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम नेता

0: कुल्लू में बारिश से मौसम सुहाना, गर्मी से राहत। लगातार बारिश से कुल्लू घाटी की वादियां हरी भरी, नजारे मनमोहक, तापमान में आई गिरावट। गुजरात के कई जिलों में झमाझम बारिश, अरावली से खेड़ा तक मौसम बदला, किसानों के खिले चेहरे। गुजरात में मॉनसून की जोरदार एंट्री, 24 घंटे से हो रही है बारिश, बालासिनौर में सबसे ज्यादा पानी बरसा। खेड़ा में मॉनसून की पहली झमाझम बारिश से मौसम में राहत, भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली बड़ी राहत।
1: देवभूमि में पूरी आस्था के साथ जारी चारधाम यात्रा, बद्रीधाम में अब तक 11.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। पवित्र देवताल भी श्रद्धालुओं और साधु संतों का पहुंचना वहां पर है। जारी बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये पवित्र स्थान। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, चंद्रकोट का यात्री निवास श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम, गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद पूरे यात्रा मार्ग और हर सुविधा केंद्र में सुरक्षा चाक चौबंद। हरियाणा के संदीप आर्य जांगड़ा के नाम अनोखा कीर्तिमान, लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार करके बनाए विश्व रिकॉर्ड। संदीप ने गुजरात के मोढ़ेरा में लगातार 37 घंटे और 21 मिनट तक सूर्य नमस्कार करके बनाया विश्व रिकॉर्ड, पिछले 15 साल के अभ्यास से बनाया ये विश्व कीर्तिमान। सूरत के सिर्फ 1 साल 8 महीने के मासूम करण मिथुन भाई परमार की याददाश्त बनी चर्चा का विषय, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आईबीआर अचीवर के खिताब से नवाजा। नीदरलैंड्स के रोटरडैम में भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का शानदार खेल, FIH प्रो लीग में भारत ने विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से दी मात। मैच के 7वें मिनट में मनदीप सिंह ने किया गोल, फिर 13वें मिनट में शिलानंद लाकड़ा ने किया गोल, तो नीलाकांत शर्मा ने 35वें मिनट में किया गोल।
0: उत्तर प्रदेश के बलिया में भोजपुरी साफ, पवन सिंह और अभिनेता सांसद रवि किशन के कार्यक्रम में भारी भीड़, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठी चार्ज। अमरोहा में चोरी के शक में जीजा साले को ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा, 3 ग्रामीणों को पुलिस ने हिरासत में लिया, मुकदमा दर्ज, बाकी फरार ग्रामीणों की तलाश जारी। जम्मू विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, रेलवे स्टेशन के पास 10 करोड़ रूपये की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया, 30 से अधिक अवैध ढांचे ध्वस्त। राजस्थान के अलवर में कार और बुलेट की टक्कर के बाद विवाद, घर पर पथराव और तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर इलाके में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस ने राष्ट्र हत्याकांड में शामिल 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र कोल्हापुर में नशे की हालत में ड्यूटी कर रहे बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों की लोगों ने जमकर की पिटाई, मामला शांत कराने पहुंचे पुलिसकर्मी के साथ भी झड़प। बदायूं में भीषण सड़क हादसा, ई रिक्शा और ट्रैक्टर की टक्कर में 6 की मौत, 3 घायल। समस्तीपुर में पीट पीट कर युवक की हत्या, गुस्साए लोगों ने NH-28 को किया जाम। महाराष्ट्र के बुलढाणा में कर्ज माफी की मांग को लेकर किसान का जोरदार प्रदर्शन, डीएम ऑफिस के बाहर आत्मदाह की कोशिश। धनबाद में चलती स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग, कार में सवार लोग बाल बाल बचे।
1: ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, डंपर ट्रक की टक्कर के बाद लगी आग, 2 चालकों की जिंदा चलकर मौत। फिरोजाबाद में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर हादसा, गुजरात से असम जा रही मालगाड़ी में लगी भीषण आग, 10 कार जलकर खाक। महाराष्ट्र के जालना में बैंक में फंसी रकम दिलाने का झांसा देकर व्यापारी से 17 लाख रुपए की ठगी, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने हाईवे पर फायरिंग करने वाले 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। राजस्थान के अलवर में बेसमेंट की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से गिरा जनरेटर, दबने से मजदूर की मौत, घटना के विरोध में परिजनों का हंगामा। यूपी के कौशाम्बी में सन की आशिक ने प्रेमिका की बेरहमी से हत्या की, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जयपुर व्यापारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, डिक्की में लाश रखकर 18 घंटे शहर में घुमाते रहे कार, 40 लाख रुपए के लेन देन मामले में दोस्त और रिश्तेदार ने की थी हत्या। हापुड़ में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के आरोप में 2 युवक पर केस दर्ज, जातिगत टिप्पणी, धार्मिक भावनाएं आहत करने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप। बैंक मैनेजर की सतर्कता से खुला 10 करोड़ की साइबर ठगी का नेटवर्क, दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद में आईबी के सब इंस्पेक्टर को उद्योगपतियों को गैंगस्टर से धमकी दिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा।
0: लखनऊ वनडे में भारत 170 रन से अफगानिस्तान को दी करारी शिकस्त। लगातार दूसरे वनडे जीतकर 3 वनडे सीरीज में अजय बढ़त हासिल की। टीम इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार ने झटके 3-3 विकेट। प्रिंस यादव को 2 और वॉशिंगटन सुंदर के खाते में 1 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया लाई रनों की सुनामी। 50 ओवर में खड़ा किया 402 रन का विशालकाय स्कोर। जवाब में 45वें ओवर में 232 रन के स्कोर पर पूरी अफगान टीम धराशायी। कप्तान गिल ने खेली शानदार 154 रन की ताबड़तोड़ पारी। 110 गेंदों में जड़े 22 चौके और 2 छक्के। ईशान किशन ने खेली 79 गेंदों पर शानदार 125 रन की पारी में 7 छक्के और 14 चौके शामिल। श्रीलंका में चल रही वनडे ट्राई सीरीज में इंडिया ए ने अफगानिस्तान ए को 101 रन से हराया। कप्तान तिलक वर्मा, प्रियांश आर्य और कुमार कुशाग्र ने खेली अर्धशतक पारी। इंडिया ए के 319 रन के जवाब में 36.5 ओवर में से 218 रन पर सिमटी अफगानिस्तान ए की टीम। इस जीत के साथ इंडिया ए ने रविवार को होने वाले फाइनल में बनाई जगह। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने रचा इतिहास। 95 रन से नेदरलैंड्स को हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल की। साथ ही महिला टी20 विश्व कप में पहली बार बनाया 200 से अधिक रनों का स्कोर। भारतीय महिला टीम ने नेदरलैंड्स के खिलाफ 5 विकेट पर खड़ा किया 209 रनों का स्कोर। महिला टी20 विश्व कप इतिहास का यह तीसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर दर्ज। स्मृति मंथाना ने खेली 47 गेंद में बनाए शानदार 74 रन। शेफाली वर्मा ने खेली 55 रन की अर्धशतकीय पारी।
1: वेलकम टू जंगल में सितारों की जमघट पर बोले सुनील शेट्टी, ये किसी एक इंसान के बारे में नहीं है। फिल्म 25 से 30 धुरंधर एक्टर्स की फिल्म है वेलकम टू जंगल। एक बार फिर हॉरर फिल्म का हिस्सा बनी जैकलीन फर्नांडिस। उनके एक हॉरर फिल्म साइन करने का दावा। मेकर्स ने शूट किया फिल्म का टीजर और गाना। 19 जून को हैदराबाद में लॉन्च होगा निर्देशक अभिषेक नामा की पौराणिक फैंटेसी फिल्म नागबंधम का ट्रेलर। 3 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी ये फिल्म। मुंबई में होगा फिल्म द ओडिसी का ग्लोबल प्रीमियर। प्रमोशन के लिए भारत आएंगे हॉलीवुड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, टॉम हॉलैंड और मैट डेमन।

0: दिल्ली में उद्धव ठाकरे की पार्टी की संसद दल की बैठक शुरू हो गई है। अभी तक खबर के मुताबिक संसद दल की बैठक में सिर्फ 3 सांसद पहुंचे हैं,
1: अरविंद देसाई और माफ कीजिएगा अनिल देसाई, अरविंद सावंत, राजा भाऊ वाजे ही इस वक्त पहुंचे हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि ये 3 सांसद ही इस संसदीय दल की बैठक में पहुंचे। तीनों लोकसभा के सांसद हैं। संजय राउत भी बैठक में पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर 9 लोकसभा सांसदों में से 3 सांसद बैठक के लिए पहुंच चुके हैं।
0: तो बेहद दिलचस्प, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि 6 बागी सांसद हुए, यानी कि व्हिप जारी होने के बावजूद अगर 6 नदारद हैं तो यही 6 जो है वो बागी हुए हैं और अब जाकर दूसरी पार्टी में मिल जाएंगे। इन खबरों पर मोहर तब लगेगी जब औपचारिक रूप से संजय राउत या फिर कोई अन्य बड़ा नेता यूबीटी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर मीडिया से मुखातिब होकर ये जानकारी साझा करता है। क्योंकि आपको बता दें कि इसी संसद दल की बैठक के लिए व्हिप जारी किया गया है और नहीं पहुंचने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, ये संजय राउत ने साफ कहा था, बड़ा एक्शन लेंगे।
1: तो 3 लोकसभा के सांसद जो इस वक्त पहुंच चुके हैं और साथ में संजय राउत भी हैं, तो 3 लोकसभा सांसद का पहुंचना क्या मायने रखता है इस वक्त, यह हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो नाम सामने आए हैं वो नाम पहले से ही सबको मालूम थे, अनिल देसाई पुराने साथी हैं, साथ ही अरविंद सावंत, इन दोनों के बारे में पहले से ही कहा जा रहा था कि ये साथ में ही टिके रहेंगे। इनके काफी कोशिश की गई थी बात करने की, लेकिन ये उद्धव का साथ नहीं छोड़ना चाह रहे थे।
0: हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, अभी तय माने कि 6 नंबर पर मोहर लग गई है क्योंकि 3 ही पहुंचे हैं, 6 नदारद है।
2: देखिए बिल्कुल, इसमें आपको ये शंका नहीं रही है कि 6 ही सांसद जो हैं वो जो नहीं पहुंचे हैं वो अब उद्धव ठाकरे जो शिवसेना है उससे उनका मोह भंग हो गया है और वो अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जो है वो शामिल होंगे। और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उसमें ये भी साफ है कि कहीं ना कहीं जो है स्पीकर से उनकी जो है वो मुलाकात हो चुकी है, उन्होंने अपना पत्र दे दिया है और ये साफ हो गया है कि अब जल्दी ही जो है ये 6 के 6 सांसद जो है एकनाथ शिंदे ग्रुप की जो शिवसेना है उसमें शामिल हो जाएंगे। और एकनाथ शिंदे का जो उसके बाद संसदीय अगर देखें तो 7 उनके पास सांसद है, 6 लोकसभा सांसद और आने के बाद जो है 13 का उनका जो है आंकड़ा पहुंच जाएगा, लोकसभा के अंदर 13 सांसदों की संख्या उनकी हो जाएगी। इस तरीके से कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ग्रुप की जो ताकत है वो तो बढ़ेगी। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ये जरूर क्लेम करेंगे कि एक कैबिनेट मंत्री के साथ साथ जो है एक राज्य मंत्री उनको मिले, क्योंकि अभी जो केंद्र सरकार में एक मंत्री है वो है प्रताप राव जाधव जो इंडिपेंडेंट चार्ज है। तो ऐसे में वो अपनी ताकत को भी बढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ जो है मंत्रिमंडल के अंदर भी अपनी जगह जो है और ज्यादा पुख्ता कर रहे हैं।
1: हिमांशु, कुछ सांसद ऐसे भी थे जो बड़ी कस्में खा रहे थे और कल तक उनके बयान आ रहे थे कि हम उद्धव के साथ ही हैं, वो सांसद भी नहीं पहुंचे। तो जो सांसद जिन पर पहले से शक था और उद्धव ठाकरे नाराज नजर आ रहे थे, अब उनका साफ हो गया है कि वो नहीं पहुंचने वाले हैं इस बैठक में।
2: देखिए, क्योंकि 11 बजे का समय दिया गया था संसदीय दल की बैठक का, उसमें व्हिप जारी किया गया था, अगर व्हिप की अवहेलना आप करते हैं तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई हो सकती है, आपके संसदीय दल के नेता, आपके पार्टी के नेता जो है स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन को ये पत्र लिख सकते हैं कि इन्होंने जो व्हिप की अवहेलना किया और इसलिए जो है इनकी संसद सदस्यता को जो है वो समाप्त किया जाए। अब देखना यह है कि किस तरीके की कानूनी जो कार्रवाई है वो उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट की तरफ से जो है इन बागी सांसदों के खिलाफ की जाएगी जो अभी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। इसमें स्पीकर के पास कल ही 3 सांसद गए थे यूबीटी के, जिसमें अरविंद सावंत थे, उनके साथ साथ संजय राउत और अनिल देसाई गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी पार्टी में कोई सांसद आता है अलग गुट बनाने के लिए तो पहले हमसे बात की जाए। शेड्यूल 10 का हवाला भी उन्होंने था, उस जजमेंट का भी हवाला दिया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुभाष देसाई वर्सेस महाराष्ट्र राज्यपाल को लेकर एक जजमेंट आया है।
0: तो तमाम जजमेंट के हवाले दिए गए। संजय राव क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं।
3: भाई साहब हेलो सर,
4: देख लेंगे जो आएंगे वो हमारे नहीं आएंगे वो बेईमान गद्दार।
3: सर आपको लगता है कि सारे लोग आएंगे? भाई साहब हेलो सर,
4: देख लेंगे जो आएंगे वो हमारे नहीं आएंगे वो बेईमान गद्दार।
3: सर आपको लगता है कि सारे लोग आएंगे?
1: तो फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
6: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
9: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
11: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
13: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
4: आगे आगे
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: Cool stylish fans enhance home decor with beautiful fans.
0: Hint, बड़े आराम से। विमल बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, the world comes together at शारदा यूनिवर्सिटी, where are you?
4: पत्रकारिता के गुर यहां नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
5: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: हम राम के लिए खून देने वाले मजनू हैं, राम के नाम पर मलाई खाने वाले तो नहीं है भैया।
1: जहां आस्था का सैलाब उमड़ता है, जहां राम नाम की धुन गूंजती है, जहां पुरुषोत्तम राम बसते हैं, वहां राम के दान की लूट हर किसी को हैरान कर रही है। यकीन नहीं हो रहा कि भगवान के घर में चोरी हो गई। अब चोर की तलाश है, चढ़ावा उड़ाने वालों की खोज है। आज SIT जांच का तीसरा दिन है। बस 12 दिन बाद SIT से रिपोर्ट तलब की गई है। जांच के घेरे में वो सब हैं जो व्यवस्था देखते हैं, वो सब हैं जो दान का हिसाब किताब रखते हैं, चढ़ावे की गिनती करते हैं। सूत्रों के मुताबिक SIT ने काउंटिंग रूम के सभी अहम DVR अपने कब्जे में लिए। अब इन रिकॉर्डिंग से ये पता लगाने की कोशिश होगी क्या किसी ने चढ़ावे की रकम के साथ छेड़छाड़ की, या फिर आरोपों के पीछे कोई और कहानी है। जांच सिर्फ कैमरों तक सीमित नहीं है, मंदिर में रकम गिनने वाले SBI कर्मचारियों, सेवादारों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब तक 43 से ज्यादा लोगों से सवाल जवाब हो चुके हैं। अभी तक किसी को आरोपित घोषित नहीं किया गया, लेकिन जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सवाल उन सब पर उठ रहे हैं। पूछताछ में 9 कर्मचारी ऐसे मिले जिन्होंने महंगे मोबाइल लिए, कार खरीदी। घेरे में चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव भी हैं। आरोप है कि उसने हॉस्टल बनवाए, कार खरीदी। टिन्नू यादव की पत्नी ने भी अपने पति पर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि उनके पास जो है वो मंदिर बनने से पहले का है। SIT की नजर उन लोगों पर भी है जिनकी मंदिर की व्यवस्था और चढ़ावे की प्रक्रिया में सीधी भूमिका है। इनमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव का नाम है। जांच के दूसरे दिन कल ही SIT टीम मंदिर के अंदर पहुंची थी। इस टीम में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के IG किरण S और UP सरकार के वित्त विभाग के अफसर नील रतन भी शामिल हैं। कल तीनों अलग अलग कारों से पहुंचे थे। इसी बीच कार सेवक संतोष दुबे की शिकायत भी जांच का हिस्सा बन सकती है। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की मांग की। SIT तीन बड़े सवालों का जवाब तलाश रही है। पहला, क्या सच में चढ़ावे की रकम में कोई गड़बड़ी हुई? दूसरा, अगर हुई तो जिम्मेदार कौन है? और तीसरा, क्या सिस्टम में कोई ऐसी कमी थी जिसका फायदा उठाया गया? संतोष शर्मा के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: ईरान अमेरिका में 14 सूत्री समझौते पर रजामंदी और मुझसे जहाजों की आवाजाही पर रास्ता साफ। ईरान का वादा, परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। संरक्षित यूरेनियम खत्म करने की तय होगी प्रक्रिया।
1: उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत पर मुहर। संसदीय दल की बैठक में 9 में से पहुंचे सिर्फ 3 सांसद। पार्टी व्हिप दरकिनार। राउत बोले, जो नहीं आए वो गद्दार।
0: हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को झटका। स्पीकर के फैसले पर स्टे से फिलहाल इनकार। ऋतुव्रत बनर्जी बने रहेंगे विपक्ष के नेता। 28 जुलाई को अगली सुनवाई।
1: समाजवादी पार्टी में बगावत पर दावों की बौछार। राजभर ने फिर सादा निशाना। बोले, बलिया का लाल करेगा टूट की अगुवाई। एसपी का पलटवार, बेटे के टिकट के लिए फैला रहे अफवाह।
0: राम मंदिर चंदा चोरी की जांच में बड़ा खुलासा। सीसीटीवी से छेड़छाड़ के सबूत। रडार पर 200 से ज्यादा चेहरे। बैंक की भूमिका पर जांच।

0: और अब बात तीन राज्यों की करेंगे जहां तीन दल बगावत की वजह से सियासी संकट गहराता जा रहा है। संकट की सबसे पहली तस्वीर महाराष्ट्र से है जहां ऑपरेशन टाइगर के जरिए शिवसेना यूबीटी के सांसदों के बगावत की खबर है। दिल्ली में शिवसेना यूबीटी की संसद दल की बैठक हो रही है जिसमें अब तक 6 सांसद नहीं पहुंचे हैं।
1: वहीं दूसरी सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश से आ रही है। 2027 चुनाव से पहले खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के सांसद भी नाराज हैं और वो भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। तो तीसरा मोर्चा है बंगाल का जहां ममता दीदी की पार्टी पहले ही अंदरूनी कलह से जूझ रही है। पार्टी के 20 सांसद बगावत कर चुके हैं। करीब 65 टीएमसी विधायकों के टूटने का भी दावा किया जा चुका है। अब आज वहां कोलकाता में हलचल है क्योंकि अब ऋतव्रत बैनर्जी को कोर्ट से भी राहत मिल गई है।
0: इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है जहां यूबीटी शिवसेना की संसद दल की बैठक शुरू हो चुकी है। अभी तक की खबर के मुताबिक संसद दल की बैठक में सिर्फ 3 सांसद पहुंचे हैं। अनिल देसाई, अरविंद सावंत, राजा भाऊ ही पहुंचे हैं। तीनों लोकसभा के सांसद हैं। कुल मिलाकर 9 लोकसभा के सांसद हैं यूबीटी के, जिसमें 3 पहुंचे हैं, 6 ददारद हैं। संजय राउत भी बैठक में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि इस बैठक के लिए शिवसेना यूबीटी ने सांसदों के नाम की सूची तैयार की ताकि सभी की मौजूदगी के लिए सबूत तैयार किए जा सके,
1: लेकिन वो सूची अब खाली ही पड़ी रह गई है क्योंकि सिर्फ 3 सांसद वहां पर पहुंचे लोकसभा के। और ऐसे में जब संजय राउत अंदर घुसे पार्लियामेंट के तो उन्होंने कहा कि जो आए वो हमारे साथ और जो नहीं आए वो गद्दार। लेकिन मीटिंग में सिर्फ 3 सांसदों की मौजूदगी यानी कि 6 सांसद जो कि दावा पहले से हो रहा था शिंदे सेना की तरफ से, वो शायद अब नहीं है साथ। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मीटिंग के लिए पहुंचे संजय राउत ने कहा है कि वो संसद मीटिंग में नहीं पहुंचेंगे। जो भी सांसद वो बेईमान और गद्दार हैं।
2: सर, आपको लगता है कि सारे लोग आएंगे?
3: देख लेंगे, जो आएंगे वो हमारे नहीं आएंगे, वो बेईमान गद्दार।
2: सर, आपको लगता है कि सारे लोग आएंगे?
3: देख लेंगे, जो आएंगे वो हमारे नहीं आएंगे, वो बेईमान गद्दार।
0: हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, संजय राउत तो ये कहकर निकल गए कि वो गद्दार है, लेकिन इन गद्दारों के खिलाफ एक्शन क्या लिया जाएगा? क्या यूबीटी के पास इसका अधिकार है?
4: देखिए, अगर विप की देखा जाए तो विप के आधार पर वो स्पीकर को जरूर पत्र लिखेंगे कि उनके खिलाफ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्होंने विप का उल्लंघन किया है और इस आधार पर उनकी जो है संसद सदस्यता को जो है वो समाप्त किया जाए। लेकिन इसका ये भी एक चीज देखनी होगी, क्या संसद के अंदर अगर संसद की कार्रवाई नहीं चल रही हो तो ऐसे में विप इशू करना क्या संसदीय दल के लिए है और क्या उस संसदीय दल की विप को मानना सांसदों के लिए अनिवार्य है। ये तमाम जो है कानूनी पेचीदगियों को स्पीकर देखने के बाद जो भी फैसला ले, लेकिन इतना जरूर है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप को जो है वो एक बड़ा झटका जो है वो एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से जो है वो दिया गया है। इसमें 6 सांसद अगर नहीं पहुंचे हैं तो एक बड़ा जो है नुकसान जो है उद्धव ठाकरे ग्रुप को है। अब देखना यह है कि इस पर कब फैसला होता है, क्योंकि ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन 6 सांसदों ने कल सुबह जो है वो स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर जो है ये बता दिया था कि वो क्यों अपनी पार्टी से अलग हो रहे हैं और ये भी कहा कि इस तरीके की बातचीत जो है वरिष्ठ नेताओं के द्वारा की जा रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के अंदर शिवसेना को जो है विलय करने का प्रस्ताव लेके आ रहा है।
1: जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार दिखा देते हैं कि कौन कौन से सांसद हैं जो नदारद रहे इस संसदीय दल की बैठक से। तो ये वो नाम है, देख सकते हैं 10 नामों की फहरिस्त है जिसमें से संजय राउत राज्यसभा के सांसद और बाकी के 9 लोग जो है वो सांसद हैं लोकसभा के। और ये जो 6 नाम आप देख रहे हैं, 6 चेहरे, ये वो नाम जो नहीं पहुंचे इस बैठक के लिए विप जारी होने के बावजूद।

0: और इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र की, जहां शिवसेना उद्धव गुट में एक बार फिर से तनाव है। इस बार कई सांसदों के बगावत की खबर है। पार्टी किसी भी बगावत के लिए सांसदों को धमका चुकी है। उन्हें तत्काल बैठक के लिए दिल्ली बुलाया गया, लेकिन इस बैठक में 6 सांसद नदारद हैं।
1: लेकिन उस बैठक का नतीजा क्या होगा? संविधान सदन में शिवसेना उद्धव गुट की ये बैठक चल रही है। माना यह जा रहा है कि गैर हाजिर रहने वाले सांसदों पर पार्टी सख्त कार्रवाई कर सकती है।
2: ये तोड़ेंगे। उनको लगता है एक बार ये कर चुके हैं, अब मैं कहूंगा तोड़ के दिखाइए।
3: ये एक्शन की धमकी गवाही दे रही है कि शिवसेना उद्धव गुट में बेचैनी है। ऑपरेशन टाइगर के बाद पार्टी सांसदों ने बगावत का बिगुल बजा दिया है। लोकसभा में 9 सांसदों वाली पार्टी शिवसेना उद्धव के 6 सांसदों के बागी होने की खबर है। सवाल उठे हैं, शिवसेना ने कुछ नामों पर मुहर भी लगा दी है। शिवसेना यूबीटी के लिए जून महीना भारी रहा है। 2022 में वो जून महीना ही था जब एकनाथ शिंदे ने बगावत का मोर्चा खोल दिया था। 21 जून 2022 को कई विधायकों के साथ शिंदे ने मुंबई टू गुवाहाटी की फ्लाइट पकड़ ली थी। अब एक बार फिर जून महीना डरा रहा है। पहली टूट के 4 साल बाद अब 6 सांसदों के पार्टी से नाराजगी की खबरों ने उद्धव की नींद उड़ा दी है। शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों को लेकर पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है, बस खुलासे के लिए सही वक्त का इंतजार है।
2: और हमारे बाप का नाम बाला साहब ठाकरे है, समझा? हाँ, क्या खेल लगा रखा है क्या डेमोक्रेसी का? उसको तोड़ेंगे क्या? पैसे की इतनी मस्ती आई क्या आपके पास? ये ईडी सीबीआई की धमकी आप किसको दे रहे हैं? हमको? हम जेल में जाकर आ चुके हैं, हम वापस

0: अंदर जो है
1: जी
0: वो अपनी
1: हिमांशु
0: अपना विलय कर रहे हैं।
1: जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सांसदों की बगावत की अटकलें तेज हैं, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में फूट को लेकर भी सियासत तेज है।
2: जी हां, पहले यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी में बगावत को लेकर बयान दिया, उसके बाद बीजेपी ने इस मामले को तूल दे दिया।
3: परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की।
4: मंच समाजवादी पार्टी का था, मौका ब्राह्मण नेताओं की बैठक का था। भगवान परशुराम के नारे के साथ समाजवादी पार्टी अपने मिशन 2027 के लिए ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश में जुटी है। ब्राह्मण समाज के नेताओं को एकजुट होने का संकल्प ले रही है।
3: परशुराम जी की, अखिलेश यादव जिंदाबाद।
4: ऐसे नारों के बीच समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण चेहरे का नाम आगे कर योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश के दल में बगावत की खबर को हवा दे दी है। ओम प्रकाश राजभर ने अपने नए दावे में कहा है कि बागी बलिया का लाल इस टूट का नेतृत्व करेगा। इशारा बलिया से समाजवादी पार्टी सांसद सनातन पांडे की ओर है। राजभर दावा कर रहे हैं कि ब्राह्मणों के तिरस्कार से दुखी होकर सनातन पांडे बगावत का झंडा बुलंद कर सकते हैं। अभी एक दिन पहले ही राजभर ने समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूट की खबरों को हवा दी।
5: अखिलेश यादव जी जो कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी का एक नौजवान ब्राह्मण बूथ एजेंट था, ऊट लुटाई का विरोध किया तो उसका गर्दन काट दिए, ये सनातन पांडे से पूछिएगा।
6: चिट्ठी की आपने जिक्र जो किया है, चिट्ठी में क्या है लिखा है, क्या नाम है?
5: ये राम गोपाल जी से पूछिए, हमारी बात अगर गलत है तो राम गोपाल जी बताओ कि क्या लिखा लो। मन
6: आप बताइए ना सूत्र।
5: अरे हम कहे बताएंगे,
6: कभी तो सूत्र है।
5: नहीं, हमारा सूत्र तो बता तो दिए कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही है।
4: सियासत तेज हुई तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कुछ ऐसी ही बातें दोहराई।
7: पीएमसी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ है, उससे बुरा हश्र समाजवादी पार्टी का 2027 में चुनाव में चारों खाने जब चित होंगे तो ये सैफई में नजर।
8: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। हम तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती।
4: तो क्या ममता और उद्धव के बाद अब बारी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की है? क्या अखिलेश यादव के 37 सांसदों में से भी दो तिहाई सांसद टूट सकते हैं? लोकसभा में इस वक्त समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं, दो तिहाई नंबर इसका 25 सांसद होता है। क्या समाजवादी पार्टी के इतने सांसदों को तोड़ना आसान होगा?
9: भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा? और लालच देकर के, डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है।
4: अखिलेश के इस बयान के बाद ओम प्रकाश राजभर ने चुनौती दे डाली, कहा कि आप अपने सांसदों की बैठक बुलाकर उनके हाथ में गीता कुरान देकर शपथ कराइए, सच्चाई पता लग जाएगी। मंत्री दावा कर रहे हैं कि विभीषण अखिलेश के साथ है, वो लंका में आग लगवा कर रहेगा। ऐसे दावों के बीच समाजवादी पार्टी नेता ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खलबली मचा दी। पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने दावा किया कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर अखिलेश यादव से मिले हैं और उन्होंने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के समाजवादी पार्टी में विलय कर पिछड़ों की राजनीति को बचाने का निवेदन किया है। हालांकि अरुण राजभर ने आज तक से बातचीत में ऐसे दावों को खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अफवाह फैला रही है। कानपुर से सिमर चावला के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: वहीं ओपी राजभर ने अब सनातन पांडे का नाम लेकर समाजवादी पार्टी सांसदों की टूट का दावा किया, लेकिन सनातन पांडे ने आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव से खास बातचीत में साफ किया कि उन्हें दुनिया की कोई ताकत समाजवादी पार्टी से अलग नहीं कर सकती है। तमाम दावे इधर उधर से किए जा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के एमपी कह रहे हैं कि अगर मैं बागी हुआ तो सियासत से ही संन्यास ले लूंगा।
10: सर, इस समय ओपी राजभर के अलग अलग ट्वीट आ रहे हैं, बयान भी उनके आ रहे हैं,
0: उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह

0: तरीके से टूट रही है और इस बार नेतृत्व तो बागी बलिया का सांसद करेगा।
1: उन्होंने ये चीज कहा है
0: जी, ट्वीट किया आज आज,
1: नेतृत्व तो बलिया का बागी सांसद करेगा
0: जी,
1: मतलब मैं टूटने वालों के साथ हूँ
0: जी जी
1: है?
0: जी जी,
1: अरे वाह, हे प्रभु बचाए रखिए। तो हम जनजात समाजवादी हैं, हम बीच में समाजवादी में नहीं आए हैं कि समाजवादी में हम लाभ लेने के लिए आए। हम दो बार निर्दल चुनाव लड़का का अपने हैसियत को बताने काम किया, तब पार्टी ने मुझे स्वीकार करने का काम किया था। तो उनका ये कहना कि अगर बलिया का सांसद प्रतिनिधित्व करेगा, अगर ये उनका कहना सही हो जाएगा तो सनातन अपने जीवन में राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे।
0: बात ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था, उसमें ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हुआ, इस वजह से नाराज हैं और आप इस वजह से जा सकते हैं। क्या टूटने की स्थिति आपको सपा में दिखाई पड़ रही है?
1: देखिए, अब तक तुमको सपा में कोई टूटने की चीज दिखाई दे रही है? ब्राह्मण सम्मेलन 5 अगस्त की तैयारी के लिए हुआ था। 5 अगस्त जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन है, छोटे लोहिया जी का, उसे तैयारी के लिए हुआ था। और किसने सम्मान नहीं किया? हमारे जो है, जो ब्राह्मण प्रदेश से आए थे, वो गदगद होकर गए हैं कि इतना सम्मान अगर कहीं आज तक हम लोगों को कोई हुआ ही नहीं था।
2: साथ रुकेंगे शो से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: वेलकम बैक टू या दैट्स अ पेपर थिंग। फर्स्ट अप वी गॉट हैरिसन रैपिंग हिज डॉक्टर पेपर इन अ टाइनी क्विल्ट सो इट फील्स एट होम। Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
6: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
5: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!
7: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
8: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
7: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
9: Williams keeps it. First down. Touchdown.
7: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
10: సోకుడు

0: दस लाख कैश, 40 लाख का प्लॉट, 1.5 करोड़ की जमीन, महंगी लग्जरी कार, 3 महंगे आईफोन, 2.98 करोड़ की नकदी, करोड़ों का सोना और न जाने क्या क्या अफवाहें उड़ रही हैं कि संदिग्धों की इतनी संपत्ति का पता चल रहा है। लेकिन अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 2 दिनों की जांच के बाद अभी तक किन संदिग्धों पर शक बढ़ा है, किन आरोपियों की संपत्ति जांच के दायरे में है, इसका आधिकारिक बयान ना तो ट्रस्ट की ओर से आया है और ना जांच एजेंसियों की ओर से। फिर भी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर रहे चिन्नू यादव का ही नाम आखिर क्यों सबसे ऊपर लिया जा रहा है? आरोप है कि ऑटो चलाने वाले टिन्नू के पास 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, वो टिन्नू अपनी सफाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि जब राम मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावा चोरी मामले में संदिग्धों के अंदर बंसल है, मिश्रा है, दुबे हैं, पाठक हैं, तो सबसे ज्यादा चर्चा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की ही क्यों हो रही है? पूनम यादव रुआंसी होकर बताती है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जब बड़े बड़े चेहरे हैं तो सिर्फ टिन्नू यादव पर ही निशाना क्यों? टिन्नू की पत्नी कहती है कि ये कुछ नहीं, सिर्फ उनके पति को मंदिर से निकालने की साजिश हो रही है। मतलब मामला अब पीडीए वाली राजनीति की तरफ बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि जिस राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच को लेकर अखिलेश यादव जोर शोर से मांग कर रहे थे, वो अब एसआईटी गठन पर खुश नहीं है। लगे हाथ अखिलेश ये भी ऑफर करते हैं कि किसी भी जाति के पीड़ित अगर खुद को बीजेपी से जुड़कर अपमानित महसूस कर रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी में आ जाए।
1: उसे कहिए कि क्यों नाराज हो, समाजवादी पार्टी में आइए।
0: टिन्नू यादव के परिवार का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में यादव जाति का होने की वजह से ही उनको अपमानित किया जा रहा है, जबकि पैसा चोरी करते पकड़े गए लड़कों का कोई जिक्र तक नहीं कर रहा। इस पूरे मामले में संदिग्ध तमाम है, नोट गिनने वालों से लेकर जमा करने वालों तक की तफ्तीश चल रही है। फिलहाल एसआईटी की जांच का 3रा दिन है और अगले 4 दिनों में अंतरिम रिपोर्ट आएगी तो संदिग्धों का पता चल जाएगा। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: सोमवार और मंगलवार को 2 दिनों में 19 घंटे तक एसआईटी ने उस मामले की जांच की है जिसे लेकर लगातार सियासी हमले तेज हैं।
3: आज उस चढ़ावे की आस्था को चीजों को आपने लूट लिया। कहां हैं आपके सारे लोग जो बड़ी बड़ी बात करने वाले?
1: एसआईटी के माध्यम से जो जांच होने जा रही है, एसआईटी की जांच कौन करेगा?
2: जिस एसआईटी पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, उस जांच टीम ने अयोध्या के राम मंदिर परिसर में तमाम सुराग तलाशे हैं, जानकारियां जुटाई है, जानने की कोशिश की है कि क्या चढ़ावे का पैसा सीधे दान पेटी से निकाला जा सकता है। जांच की है कि चढ़ावे के पैसे की गिनती से लेकर बैंक में जमा कराने की प्रक्रिया के बीच में कहां से चोरी की गई। चंदा चोरी के आरोपियों में एक नाम है चंपत राय के ड्राइवर रामाशंकर यादव का। एसआईटी की जांच के बीच वो अब सामने आया है और तमाम आरोपों को निराधार बता रहा है।
4: जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार है, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है।
2: मंगलवार को एसआईटी ने मंदिर परिसर में करीब 11 घंटे तक जांच की। 15 जून को भी 8 घंटे की जांच चली थी। अब इस मामले को लेकर पूर्व कार सेवक संतोष दुबे ने पुलिस से शिकायत भी कर दी है। मयंक शुक्ला के साथ संतोष कुमार, अयोध्या आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

बढ़ती महंगाई के इस दौर में पेट्रोल डीजल के प्राइस में आई हालिया तेजी पर अब ब्रेक लगने का यकीन बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में महज 4 दिनों के भीतर करीब 16% की भारी गिरावट आई है, जिसके बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब $77 प्रति बैरल पर आ चुकी है। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई इस गिरावट के पीछे एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक वजह सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट को राहत दी है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते के बाद दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से खुल गया है। दुनिया का करीब 20-30% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है, जो युद्ध की वजह से बंद होने की कागार पर था। होर्मुज जल डमरू मध्य के दोबारा खुलने से कच्चे तेल की सप्लाई चेन में आ रही रुकावटें पूरी तरह खत्म हो गई हैं। सप्लाई बहाल होने और कच्चे तेल के रास्ते होने के बाद सभी के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल कब और कितना सस्ता होने जा रहा है। एक्सपर्ट्स और मार्केट रिसर्च के मुताबिक अगर क्रूड ऑयल की कीमतें इसी तरह $80 प्रति बैरल के आसपास स्थिर रहती हैं, तो सरकारी तेल कंपनियां कीमतों में कटौती कर सकती हैं। अनुमान के मुताबिक भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में 5 रुपए से लेकर 7 रुपए प्रति लीटर तक की कमी की गुंजाइश हालात सामान्य होने के बाद बन सकती है। इतना ही नहीं, क्रूड सस्ता होने से आने वाले दिनों में LPG सिलेंडर के प्राइस में भी राहत मिलने के पूरे आसार बन रहे हैं। जाने ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अगर युद्ध के दौरान हुए नुकसान से जल्दी उबर जाती हैं, तो फिर वो आने वाले दिनों में होने वाले मुनाफे का सीधा फायदा आम ग्राहकों को ट्रांसफर कर सकती हैं। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि कंपनियां तुरंत दाम घटाने की जगह कुछ दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिरता को मॉनिटर करेंगी। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो मिडिल ईस्ट के शांत होने से भारतीय रसोई से लेकर सड़क पर चलने वाली गाड़ियों तक हर जगह बड़ी राहत मिलना तय माना जा रहा है। आदित्य केराड़ा, आज तक।

0: दुनिया का बाजार खुला है तो मुकाबला भी खुला है। जहाँ सामान सस्ता मिलता है, खरीदार अक्सर उसी तरफ खिंच जाता है। लेकिन जब सस्ते माल की भरमार किसी देश की फैक्ट्रियों और नौकरियों पर दबाव डालने लगे तो सरकारों की चिंता बढ़ना तय है। यूरोप में इन दिनों ऐसी ही बहस तेज हो गई है। चीन से आने वाले कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स ने कई देशों की इंडस्ट्री के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे में यूरोपीय यूनियन के कई बड़े सदस्य देश सस्ते आयात पर ज्यादा सख्त रुख अपनाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसके तहत स्पेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड और लिथुआनिया ने मिलकर कड़े कदमों की वकालत की है और इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रणनीति की मांग की है। कई यूरोपीय देश मानते हैं कि सस्ते आयात से स्थानीय उद्योगों पर दबाव बढ़ रहा है। यूरोप की चिंता है कि बड़ी उत्पादन क्षमता वाले देशों से आने वाला सस्ता माल स्थानीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर सकता है। यही वजह है कि चर्चा अब किसी एक प्रोडक्ट तक सीमित नहीं रही है और व्यापक व्यापारिक सुरक्षा उपायों की बात होने लगी है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त सामने आया है जब यूरोपीय आयोग चीन को लेकर अपनी रणनीति पर अहम चर्चा करने जा रहा है। कई देशों का मानना है कि मौजूदा एंटी डंपिंग नियम हर चुनौती का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और व्यापार सुरक्षा के लिए नए टूल्स की जरूरत है। ऐसे में ईयू में सेक्टर आधारित सुरक्षा उपायों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। मौजूदा प्रोडक्ट आधारित एंटी डंपिंग मामलों से आगे बढ़ने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके साथ ही घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार को बचाने पर फोकस बढ़ रहा है। इस बहस का सबसे बड़ा असर उन सेक्टर्स पर पड़ सकता है जहां चीन की मौजूदगी तेजी से बढ़ी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और कई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को लेकर यूरोप पहले से सतर्क नजर आ रहा है। दिलचस्प बात है कि ये मामला केवल यूरोप और चीन तक सीमित नहीं है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपने उद्योगों को सुरक्षित रखने और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने पर लगातार जोर दे रही हैं। ऐसे में ग्लोबल ट्रेड का माहौल पहले के मुकाबले ज्यादा प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है। आने वाले दिनों में यूरोप का रुख वैश्विक व्यापार के लिए अहम संकेत दे सकता है। अगर सस्ते आयात पर नई बंदिशें लगती हैं, तो कई उद्योगों की कारोबारी रणनीति बदल सकती है। साथ ही ये भी तय होगा कि दुनिया का बाजार पूरी तरह खुला रहेगा या घरेलू उद्योगों की सुरक्षा को ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। आदित्य के राणा आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

ईरान अमेरिका में 14 सूत्रीय समझौते पर रजामंदी, हॉर्मुज से जहाज की आवाजाही का रास्ता साफ, ईरान का वादा परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, संरक्षित यूरेनियम खत्म करने की तय होगी प्रक्रिया। उद्धव की पार्टी में बगावत पर मोहर, संसदीय दल की बैठक में 9 में से पहुंचे सिर्फ 3 सांसद, पार्टी विप दरकिनार, राउत बोले जो नहीं आए वो गद्दार। हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को झटका, स्पीकर के फैसले पर स्टे से फिलहाल इनकार, रिद्रथ बनर्जी बने रहेंगे विपक्ष के नेता, 28 जुलाई को अगली सुनवाई। समाजवादी पार्टी में बगावत पर दावों की बौछार, राजभर ने फिर साधा निशाना, बोले बलिया का लाल करेगा टूट की अगुवाई, एसपी का पलटवार, बेटे के टिकट के लिए फैला रहे अफवाह। और राम मंदिर चंदा चोरी की जांच में बड़ा खुलासा, सीसीटीवी से छेड़छाड़ के सबूत, रडार पर 200 से ज्यादा चेहरे, बैंक की भूमिका की भी जांच।

0: नमस्कार, 12:12 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली में उद्धव ठाकरे की पार्टी की संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है और अभी तक जो खबर है उसके तहत संसदीय दल की बैठक में सिर्फ 3 सांसद पहुंचे हैं। सिर्फ 3, कुल कितने हैं? 9। 9 में से पहुंचे 3, यानी 6 नहीं पहुंचे। अब कौन कौन पहुंचा है? अनिल देसाई, अरविंद सावंत, राजा भाऊवाजे पहुंचे हैं। तीनों लोकसभा के सांसद हैं और 6 नहीं पहुंचे हैं। बगावत की ओर खबरें चल रही हैं, अब उसकी पुष्टि होती यहां दिखाई दे रही है।
1: भाई साहब, हेलो सर,
2: देख लेंगे जो आएंगे वो हमारे नहीं आएंगे, वो बेईमान गद्दार।
1: सर, आपको लगता है कि सारे लोग आएंगे? भाई साहब, हेलो सर,
2: देख लेंगे जो आएंगे वो हमारे नहीं आएंगे, वो बेईमान गद्दार।
1: सर, आपको लगता है कि सारे लोग आएंगे?
0: हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हिमांशु, संजय राउत तो बोल रहे हैं जो आएंगे वो हमारे, जो नहीं आएंगे वो बेईमान गद्दार। क्या तस्वीर अब दिखाई दे रही है और आगे की क्या संभावना?
3: देखिए, अब तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ हो गई है कि 6 जो बागी सांसद हैं वो एकनाथ शिंदे शिवसेना के साथ जो है वो जुड़ गए हैं। और कल उन्होंने, जो अभी तक हमको जानकारी है, उन्होंने पत्र दे दिया है स्पीकर को और मुलाकात भी की है। ये 6 सांसद जो है वो 20 जून को जो है वो सामने आएंगे, जब वो ये दावा करेंगे कि उन्होंने अपना पार्टी का जो है अलग एक जो है वो गुट बनाया है और वो अलग से जो है वो गुट बनाया है और एकनाथ शिंदे शिवसेना को जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो संसदीय दल की बैठक थी उसमें ये 6 सांसद जो है नदारद है। अब इनके ऊपर क्या कार्रवाई जो है संसदीय दल की तरफ से की जाएगी, इसको लेकर जो है ये विचार विमर्श चल रहा है। जहां तक जानकारी मिल रही है, उद्धव ठाकरे से भी जो है बातचीत की जाएगी और उसके बाद इन सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो भी होनी है, चाहे वो स्पीकर से इनकी संसद सदस्यता को समाप्त करने के लिए पत्र देने की बात हो या अन्य कार्रवाई हो, वो उसको लेकर जो है अंदर जो है बातचीत।
0: मतलब हिमांशु, जो धुंध के बादल छाए हुए थे बहुत हद तक साफ दिखाई दे रहे हैं, छट गए हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उद्धव के सांसद की बगावत लगभग कंफर्म हो गई। मुंबई से शिवसेना सूत्रों से एक बड़ी खबर आ रही है और उसके मुताबिक पार्टी ने तकनीकी कारणों से अभी कोई आधिकारिक घोषणा ना करने का फैसला किया। शिवसेना का प्लान है कि अगले कदम उठाने से पहले ठाकरे गुट की जो कानूनी रणनीतियां हैं उनको ध्यान से देख लिया जाए और कम से कम अगले 2 दिनों तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी उजागर नहीं किया जाएगा। यूबीटी के 6 सांसदों को आधिकारिक तौर पर शामिल करने की प्रक्रिया को कम से कम 2 दिनों के लिए रोक दिया गया, क्योंकि शिवसेना पहले ठाकरे खेमे की संभावित आपत्तियों का समाधान करना चाहती है। अब 20 या 21 जून के आसपास औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद भी है।
4: सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे गुट ने ऑपरेशन टाइगर को थोड़ा विराम दिया है। हालांकि उनका यही मानना है कि ये ऑपरेशन अब तक तो सक्सेसफुल रहा है, लेकिन वो अब ये देखना चाहते हैं कि यूबीटी कैंप में किस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है। दरअसल यूबीटी कैंप ने जिस तरह से अपना व्हिप जारी किया और उसके बाद मीटिंग का दौर शुरू हुआ, तो उनको यही लगा कि एक बार ये देखा जाए कि आखिर इनकी जो लीगल तैयारी है वो कैसी है और उसके बाद उन्हें अपनी भी तैयारी पुख्ता करनी है, क्योंकि ये मामला यहाँ थमने वाला नहीं है। पहले के जैसे ही ये भी अदालत जरूर जाएगा और यही वजह है कि लीगली किसी तरह की कोई परेशानी बाद में ना हो, इसके लिए अपने इस पूरे ऑपरेशन को थोड़ा सा विराम देते हुए अब ये तय किया गया है कि जून 20 या 21 के बाद इस पर पूरी तरह से अमल किया जाएगा।
0: तो महाराष्ट्र देख लिया, अब चलिए झारखंड, जहां राज्यसभा चुनाव की बात करते हैं। 2 सीटों के लिए मतदान जारी है और इन 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में है। 2 सीट, 3 प्रत्याशी। संख्या बल के हिसाब से जेएमएम के बैद्यनाथ राम की जीत करीब तय है। दूसरी सीट के लिए कांग्रेस के प्रणब झा और एनडीए के परिमल नथवानी में मुकाबला है और इसी दूसरी सीट पर पेच फंसा है। क्या है समीकरण, रांची से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सत्यजीत।
5: झारखंड में राज्यसभा के 2 सीटों के लिए चुनाव शुरू हो चुका है। इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों ने अपने कुनबा को संभालने और समेटने की पूरी कोशिश की है, रणनीति बनाया है। अब जाहिर तौर पे इम्तिहान का दिन है आज और कांग्रेस की चुनावी बैतरणी तब पार होगी जब उसे जेएमएम के सरप्लस 6, इसके अलावा आरजेडी के 4 और वाम दल के 2 वोट मिले, यानी कांग्रेस को 12 वोटों की आवश्यकता है जीत के लिए। जबकि एनडीए के जीत का दारमोदार इस बात पे होगा कि क्रॉस वोटिंग हो। उनके पास 24 वोट हैं, 28 वोट जो है जीत का आंकड़ा है। तो जाहिर तौर पे बैटल लाइन जो है वो ड्रॉ हो चुका था, लगातार जो है रणनीति बनाई गई, इम्तिहान का दिन है। अब किसकी रणनीति कामयाब होता है और कौन रांची के रास्ते दिल्ली के अपर हाउस तक पहुंचता है, ये देखना दिलचस्प होगा।
0: अब पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी को जोर का झटका लगा। हाईकोर्ट ने ऋद्धिरथ बनर्जी को विधानसभा में विपक्ष के नेता पर मान्यता दी है। हाईकोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। तृणमूल कांग्रेस विधायक शोभन देव ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने ना कर दिया। हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। हलफनामे पर जवाब 2 हफ्ते में देने को कहा। अब मामले पर अगली सुनवाई होगी 28 जुलाई को।
6: ममता बनर्जी को लगा एक और बड़ा झटका, इस बार कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से। अदालत के पास शोभन देव चट्टोपाध्याय पहुंचे थे एक याचिका लेकर कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय को विधानसभा के स्पीकर ने जिस तरीके से मान्यता दिया है विपक्ष के नेता होने के लिए, उस मान्यता के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी। सुनवाई लंबी चली और कोर्ट का ये कहना है कि फिलहाल इस पूरे मामले में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है और इंटरिम ऑर्डर दिया कि अगला जो सुनवाई है वो 28 जुलाई की होगी। यानी अभी ऋतुव्रत बंदोपाध्याय ही विपक्ष के नेता के तौर पर तृणमूल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे विधानसभा में।
0: तो 12:12 रिपोर्टर में जो अगली खबर है वो भी बंगाल से है। टीएमसी नेताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा हटाने का आरोप लगाया। डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया है कि ममता बनर्जी के साथ पिछले 20 वर्षों से तैनात निजी सुरक्षा अधिकारी को बुधवार रात उनके कोलकाता स्थित आवास से हटा दिया गया।
7: देखिए, टीएमसी ने यह बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि ममता बनर्जी के 2 PSO जो लगभग 20 साल से उनके साथ थे, स्वरूप और द्विवेदी, दोनों को कल रात अचानक से हटा लिया गया है। और डेरेक ओब्रायन ने ममता बनर्जी के घर के सामने से फेसबुक लाइव करते हुए इस बात की जानकारी दी और कहा कि उनकी सुरक्षा को खतरा है, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। काफी सारे आरोप टीएमसी की ओर से लगाए गए हैं। टीएमसी की ओर से कहना है कि अब ममता बनर्जी की सुरक्षा में किसी भी वक्त सेंध हो सकती है और आग्रह भी किया गया है, कुणाल घोष की ओर से आग्रह किया गया है राज्य प्रशासन को कि जो 2 PSO पिछले लगभग 20 साल से उनके साथ थे उनको वापस दे दिया जाए। हालांकि बीजेपी से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी उनकी है और वो कुछ भी नहीं होने देंगे। तो ऐसे में ये मामला फिलहाल दोनों ही पक्षों के बीच आरोप और प्रत्यारोप के बीच घिरा हुआ है।
0: 12:12 रिपोर्टर, खबरें नॉनस्टॉप जारी हैं। अगली रिपोर्ट है लखनऊ से। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने मेगा ब्राह्मण प्लान बनाया। अब खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर वृहद कार्यक्रम की तैयारी में जुट गई है। बहुत बड़ा कार्यक्रम जिसके जरिए यूपी के ब्राह्मण वोट को साधा जा सके। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में कल ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम की बैठक हुई थी 17 तारीख को। अब बैठक में भगवान परशुराम के जय घोष से पूरा दफ्तर गूंज उठा। ब्राह्मण समाज के नेताओं ने एकजुट होने का संकल्प लिया। देखिए,
8: जनेश्वर मिश्र जयंती इस बार समाजवादी पार्टी के लिए सियासी तौर पर बेहद अहम होने वाली है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस जयंती के जरिए समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज में एक बड़ा संदेश पहुंचाना चाहती है। निशाने पर है वो 15% ब्राह्मण वोट जो निर्णायक साबित होता है यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 115 विधानसभा सीटों पर। अब देखना यह है कि कल पार्टी कार्यालय में हुई बैठक जिसमें पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे माता प्रसाद पांडे, सनातन पांडे, अन्य कई मौजूद रहते हैं, उसके बाद क्या जो बूथ स्तर है वहां तक पार्टी का मैसेज जाएगा, क्या जो आरोप विपक्ष लगाता है ब्राह्मणों की नाराजगी का यूपी में, क्या जमीन पर उसका असर दिखाई पड़ेगा या फिर बीजेपी अपने मंदिर मॉडल के साथ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ब्रांड हिंदुत्व नेता की डोर के साथ यूपी चुनाव में एक बार फिर ब्राह्मणों का वोट पाने में सफल होगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है ये भी आपको बता देते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर मोहर लग गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कल फ्रांस के शहर वर्साय में एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ डिनर के दौरान अमेरिका ईरान समझौते पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने भी डील पर साइन करने की तस्वीर जारी की है। एमओयू पर साइन होने के बाद अब दोनों देशों के बीच लगभग चार महीनों से चला आ रहा संघर्ष खत्म हो गया।
9: अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग का खात्मा उस समझौते पर दस्तखत के साथ हुआ जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान ने अपनी मुहर लगाई। साथ ही दुनिया ने राहत की सांस ली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुल जाएगा, लेकिन अभी कई पेंच बाकी थे, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि 60 दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी तरीके का चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद वो नई और बदली हुई व्यवस्था के अंदर जहाजों के ऊपर चार्ज लगाएगा, उनसे टोल वसूल करेगा। यानी इस समझौते में अभी भी कई कड़ियां ऐसी हैं जो आगे इसके भविष्य को लेकर सवाल खड़ा कर सकती हैं। शायद यही वजह है कि अपेक्षाओं का दबाव कम करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉनिकली साइन किया गया, किसी साइनिंग सेरेमनी या किसी बड़े आयोजन को नहीं किया गया।
0: और देखिए, समझौते का पहला पॉइंट है लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध का समापन, लेकिन इसराइल ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप से साफ कह दिया कि हिजबुल्ला के निरस्त्रीकरण के बिना इसराइल दक्षिणी लेबनान नहीं छोड़ेगा। एक्सियोस ने नेतन्याहू के एक सलाहकार के हवाले से यह जानकारी दी और खबरों के मुताबिक नेतन्याहू के बहुत स्पष्ट नेतन्याहू ने कह दिया है कि 14 सूत्रीय समझौते के लेबनान से संबंधित हिस्से से इसराइल खुद को बाध्य नहीं मानता है।
10: अमेरिका और ईरान के बीच में 14 सूत्री एमओयू के ऊपर साइन तो हो गया, लेकिन अभी हिजबुल्ला को लेकर, लेबनन को लेकर सहमति या फिर आप कह सकते हैं क्लियरिटी नहीं आ पाई। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नेतन्याहू ना तो डोनाल्ड ट्रंप को सुनना चाहते हैं और ना ही शांति समझौते पर आगे किसी भी तरीके से समर्थन देना चाहते हैं। दरअसल इस समय IDF यानी इसराइल की फोर्सेज साउथ लेबनन के 14 से 15 किलोमीटर के एरिया में जाकर बैठ चुकी हैं और बड़ी मात्रा में उन्होंने वहां पर अपने एसर्ट्स को या फिर अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को वहां पर डिप्लॉय कर दिया है। नेतन्याहू मानते हैं कि हिजबुल्ला को अगर खत्म करना है और अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स को सिक्योर करना है तो वहां पर इसराइल की मौजूदगी बेहद इंपॉर्टेंट होगी और उसी वजह से लगातार वो लितानी रिवर के दूसरी तरफ तक हिजबुल्ला को धकेल पाएंगे। ऐसा नहीं करने पर लगातार उनके लिए एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न होगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान ये मानता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर उसे इसराइल के खिलाफ कानूनी या फिर आप कह सकते हैं मिलिट्री कार्रवाई करनी पड़ेगी और इसी पेज के बाद ये लग रहा है कि भले ही ये 60 दिन की शांति वार्ता जरूर पूरी हो गई हो, लेकिन अगर इसराइल का रुख इसी तरीके से कड़ा हो नजर आता है तो फिर निश्चित तौर पर ईरान के लिए हिजबुल्ला के खिलाफ या हिजबुल्ला के समर्थन में इसराइल पर रिस्पॉन्ड करना मजबूरी बन जाएगी।
0: 12:12 रिपोर्टर में अगली खबर, मॉस्को की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक से जुड़ी हुई है। समाचार एजेंसी TASS ने मॉस्को के मेयर के हवाले से एक खबर दी है। ड्रोन हमले का वीडियो भी सामने आया, देखिए स्क्रीन पर यह वीडियो वो है, आग की लपटें उठती हुई दिख रही हैं, गहरा काला धुआं भी दिखाई दे रहा है। हमले से कितना नुकसान हुआ इसकी अभी तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई, आकलन किया जा रहा है।
11: यूक्रेन ने एक सप्ताह के भीतर लगातार दूसरी बार रूस की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। राजधानी मॉस्को के भीतर ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमले किए हैं। कीव के मुताबिक 500 किलोमीटर दूरी तय करने वाले इन ड्रोन से रूस की ऊर्जा संसाधनों को निशाना बनाया गया है। उसकी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया जाना कीव की नई रणनीति का हिस्सा है ताकि वो रूस की कमाई को कम कर सके, रूस की कमर तोड़ सके। हालांकि रूस लगातार जवाबी कार्रवाई करता आया है, लेकिन ड्रोन हमलों के चलते उसने एंटी ड्रोन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया, एंटी ड्रोन गन का भी इस्तेमाल किया। यानी एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन 4 सालों से चली आ रही रूस और यूक्रेन के बीच की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।
0: चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ आज सुबह एनकाउंटर से दहल गया। एनकाउंटर के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने शूटर सनी और उसके साथी को गिरफ्तार करने का दावा किया और यह बताया जाता है कि ये दोनों कुछ दिन पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में हुई एक कैशियर की हत्या में शामिल थे।
12: चंडीगढ़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने दो गैंगस्टर्स को अरेस्ट किया जो कि केमिस्ट जो शॉप थी उसमें जिन्होंने फायरिंग की थी उसमें इन्वॉल्व थे। एक मेन शूटर था सन्नी मेहरा और एक उसका साथी था आर्यन जो बाहर इंतजार कर रहा था। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस जब आज सुबह उनको लेके आ रही थी जहां से अरेस्ट किया वहां से लेके आ रही थी तभी यहां पे एक ब्रीफ एनकाउंटर हुआ। अगर पुलिस की मानी जाए तो कहा जा रहा है कि जैसे ही एक ये गाड़ी जो पुलिस की गाड़ी आप देख सकते हैं डैमेज है इस एरिया से निकल रही थी तो किसी न किसी तरह एक्सीडेंट हुआ, ये गाड़ी टकरा गई पेड़ से और ये डैमेज हो गई और उसी को मौका देखते हुए उन लोगों ने जो सस्पेक्ट्स थे सनी मेहरा और आर्यन उन्होंने यहाँ से भागने की कोशिश की। एक पुलिस वाले का जो है पिस्टल निकाल लिया क्योंकि एक्सीडेंट हुआ जोल्ट था तो एक पिस्टल निकाल लिया, दो फायर जो है सस्पेक्ट्स ने ओपन किए लेकिन रिटेलिएशन हुई। चंडीगढ़ पुलिस से उस वक्त अलर्ट हुई, रिटेलिएशन हुई और उसमें दोनों को जो है इंजर किया गया, दोनों के ऊपर गोलियां चलाई गई। सनी मेहरा को कहा जा रहा है दो गोलियां लगी हैं और आर्यन को एक गोली लगी है और दोनों इंजर्ड हैं और हॉस्पिटलाइज हैं।
0: वैसे एक एनकाउंटर बिहार में हुआ लेकिन इस पर कुछ सवाल हैं और वो ये बता रहे हैं आज तक संवाददाता रोहित सिंह।
13: आरा में हुए एनकाउंटर को लेकर अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां पुलिस का दावा है कि उन्होंने एक अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की और उसका एनकाउंटर किया, वहीं दूसरी तरफ परिवार वालों का दावा कुछ और ही है। परिवार वालों का कहना है कि भरत तिवारी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और पुलिस ने उसे फर्जी एनकाउंटर में मार गिराया है। अब ऐसे में आरा पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और जवाब अब आरा पुलिस को देना है कि आखिर किन परिस्थितियों में भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया।
0: और अब बिहार में ही दो कोचिंग संचालकों के बीच जारी जंग की बात करते हैं। ज्ञान बंधु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद ने अपने भाई की हत्या में फैजल खान और खान सर को गिरफ्तार करने की मांग की है। कल देर शाम रोशन आनंद पटना के कदमकुआ थाने पहुंचे और फैजल खान पर FIR दर्ज न होने पर उन्होंने सवाल उठाए हैं।
14: पटना में दो कोचिंग संस्थानों के संचालकों के बीच विवाद और गहरा गया है। दरअसल फैजल खान के खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु अकेडमी के निदेशक रोशन आनंद के बीच अब नई कसमकस और टकराव देखने को मिल रही है। रोशन आनंद जेल से बाहर आने के बाद कल पटना के कदमकुआं थाने पहुंचे थे। 5 घंटे तक थाने में वो बैठे रहे और अपनी तरफ से वो पुलिस में शिकायत दर्ज करने के लिए अड़े हुए थे। रोशन आनंद का आरोप है कि उनके भाई प्रिंस यादव की हत्या की साजिश फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक ने मिलकर रची। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी हत्या की भी साजिश की आशंका जताई है। हालांकि बाद में जब पुलिस ने उनकी शिकायत नहीं ली तो उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।
0: तो ये जंग थम नहीं रही बल्कि और पेचीदा हो रही है। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
17: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
18: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
17: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
19: You're listening to MSNBC.
17: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love anytime you want. Try it now and thank us later.
20: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिझोड़े, मौसम बदले फिर भी हर सपना खड़ा रहे, क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मेक्स TMT बार्स आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।
21: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
22: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
23: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
24: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
5: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
3: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
6: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
3: जहां खबर वहां खबरदार।
7: इन एसोसिएशन विद E3HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: क्या कहती है आपकी राशि, कैसा बीतेगा आपका दिन, किस दिन क्या करें क्या ना करें, क्या है आपके लिए शुभ रंग, कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर, देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।
9: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
10: नीट पेपर लीक को क्लीन बनाने के लिए भारत सरकार ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया है।
11: But Telegram has been a channel which has been misused, abused for a very, very long time for several factors.
10: NTA के मुताबिक टेलीग्राम पर लगाई गई रोक 22 जून 2026 तक जारी रहेगा। हालांकि आदेश कब से लागू होगा इसकी तारीख नहीं दी गई है। नीट री एग्जाम 21 जून को होगा। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है। हालांकि NTA के इस फैसले पर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। नीट एग्जाम रीटेस्ट के लिए टेलीग्राम को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। मोदी जी को सबसे पहले अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाहिए जिन्होंने लाखों युवाओं का भविष्य ब्लॉक कर दिया है।
12: टेलीग्राम पर रोक लगाने से क्या होगा, पेपर जो लीक हो रहा है वो तो सिस्टम के अंदर से हो रहा है, टेलीग्राम से नहीं हो रहा है, टेलीग्राम इज जस्ट अ मीडियम।
10: सूत्रों के मुताबिक नीट UG री एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्रों के पैकेट पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। समय पर डिलीवरी और दूर दराज दुर्गम इलाकों में सुरक्षित तरीके से प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए भी MI-17 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी सक्रिय है। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं के साथ स्थानीय पुलिस वाहनों के साथ स्कॉट्स गाड़ियां चलेंगी। नीट परीक्षा केंद्रों पर भी CRPF, CISF समेत दूसरे सुरक्षा बलों की निगरानी रहेगी। सरकार के सामने नीट का री एग्जाम बिना पेपर लीक के कराना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है जिसे लेकर सारी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत.
3: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Tune In has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
0: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो
5: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं.
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
5: जहां खबर वहां खबरदार.
1: इन एसोसिएशन विद
0: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
9: दुनिया में महंगाई का मीटर कितना भी ऊपर भाग जाए, युद्ध के हालात बन जाए या फिर टैक्स की दरें आसमान छूने लगे, भारतीय ग्राहकों का सोने के लिए प्यार कभी कम नहीं होता. जब बात शादी ब्याह, तीज त्योहार या अक्षय तृतीया और दिवाली की परंपरा निभाने की आती है तो भारत का आम आदमी अपनी जेब ढीली करने से पीछे नहीं हटता. सोने की लगातार ऊंची होती कीमतों के बीच आई एक नई रिसर्च रिपोर्ट देश के इसी गोल्ड मार्केट से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक सालाना आधार पर सोने के भाव में 80% से ज्यादा की भारी भरकम तेजी आ चुकी है. इसके बावजूद जनवरी मार्च में देश के भीतर ज्वेलरी की मांग में मजबूती देखी गई. मार्केट में ये डिमांड तब बनी हुई है जब सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से सीधे बढ़ाकर 15% कर दिया है. बेशक सरकारी टैक्स में इस बड़ी बढ़ोतरी और अधिक मास के चलते अप्रैल जून तिमाही के दौरान बाजार में एक अस्थायी मंदी का खतरा मंडरा रहा है. वजह साफ है कि ऊंची कीमतों का सीधा असर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास परिवारों पर पड़ा है. इस बजट के चलते देश का एक बड़ा कस्टमर बेस अब भारी वजन वाले गहनों को छोड़कर कम वजनी और कम कैरेट वाले सोने की तरफ शिफ्ट होने को मजबूर हुआ है. गहने खरीदने के इस बदलते ट्रेंड के बीच अपर मिडिल क्लास और रईस परिवारों में खरीदारी की रफ्तार बिल्कुल सामान्य बनी हुई है. देश के कमोडिटी बाजार में सोना इस समय आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर जाने की होड़ में लगा है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी भू राजनीतिक बदलावों के चलते कीमतों पर जो नया ट्रेंड दिख रहा है वो हैरान करने वाला है. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खत्म करने की डील फाइनल होने की खबर के बाद सोने चांदी में रिकॉर्ड तेजी आई है. कीमतों के इस रॉकेट बनने की सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया में लंबे समय से बना हुआ भारी तनाव है. इसी उथल पुथल के चलते कच्चे तेल की कीमतें भड़की, जिसने फरवरी के बाद से सोने के भाव पर लगातार दबाव बनाए रखा. लेकिन परंपराओं के आगे ये महंगा सोना भी टिक नहीं पाया. मार्केट के बड़े जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में कमोडिटी बाजार में ऐसी ही बड़ी तेजी बनी रह सकती है. सुरक्षित निवेश के तौर पर सोना और चांदी पिछले 2-3 सालों में उम्मीद से कहीं बेहतर रिटर्न दे चुका है, जिसकी वजह से लोगों ने इसमें अपना इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ा दिया है. आने वाली शादियों की सीजन और त्योहारों पर होने वाली बंपर ग्राहकी बाजार की इस रौनक को और चमकाने के लिए तैयार खड़ी है. आज तक ब्यूरो.
10: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार।
1: ओम प्रकाश राजभर का दावा, समाजवादी पार्टी में टूटता है, बागी बलिया का नेता करेगा बागी सांसदों की अगुवाई। ब्राह्मण सम्मेलन में तिरस्कार का आरोप, ओपी राजभर बोले इससे समाजवादी पार्टी के नाराज सांसद और आहत हुए। समाजवादी पार्टी सांसदों में नाराजगी का दावा, ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को सांसद बचाओ अभियान की सलाह दी। राजभर के एक्सपोस्ट से सियासी बवाल, दलित उत्पीड़न के मामलों को लेकर विपक्ष को घेरा, कई जोन के आंकड़े साझा किए। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर का बड़ा दावा, कहा समाजवादी पार्टी के 25 से 27 सांसद टूटेंगे, 10 से ज्यादा से बातचीत जारी। समाजवादी पार्टी नेता की एक्सपोस्ट पर पलटवार करते हुए अरुण राजभर बोले मैं समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बैठ के कर रहा था, ये लोग आईटी सेल के पोस्ट चिपकाकर राजनीति करते हैं। अरुण राजभर बोले बलिया से होगी शुरुआत, थर्ड या फोर्थ फ्रंट का कोई असर नहीं। अखिलेश यादव का ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा हमला, टिकट और वसूली को लेकर लगाए गंभीर आरोप। अखिलेश यादव बोले अधिकारियों और ठेकेदारों की पंचायत में फंसे राजभर, सियासत में बयानबाजी तेज। AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान का बयान, BSP प्राथमिकता लेकर अन्य दलों के साथ भी गठबंधन की संभावना है। यूपी में तीसरे मोर्चे की आहट, लखनऊ में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच अहम मुलाकात। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले TMC से बुरा होने वाला है समाजवादी पार्टी का हाल, 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार है। अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी मामले में SIT जांच का दायरा बढ़ा, CCTV गेट ट्रैकिंग और सुरक्षा स्टाफ की भूमिका भी जांच के घेरे में। राम मंदिर फंड घोटाले में नया मोड़, SIT के रडार पर सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी और पास सिस्टम, कई अधिकारियों की जांच तेज है। लखनऊ में कोडीन कफ सिरप मामले में बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल समेत वरुण सिंह और गौरव जायसवाल भगोड़ा घोषित, तीनों पर मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी की कुर्की की कार्रवाई की तैयारी तेज। झांसी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। झांसी किले में होगा योग कार्यक्रम, सीएम योगी के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, अधिकारियों ने निरीक्षण किया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अयोध्या दौरे पर, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन, धार्मिक कार्यक्रमों के बाद लखनऊ वापसी। मुहर्रम से पहले हापुड़ में सख्ती, संवेदनशील इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च, ड्रोन और CCTV से होगी निगरानी।

0: अब बात उत्तर प्रदेश में चल रही सियासत की करते हैं। यूपी में चुनावी राजनीति का रंग कुछ ऐसा चल रहा है कि बेसिर पैर की अफवाहों के दावे किए जा रहे हैं, और ऐसा ही एक और नया दावा सामने आया। बड़ी खबर आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसपी में विलय कराना चाहती है, और यह बड़ा दावा समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने दिया है। उनका यह कहना है कि ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने अखिलेश यादव से खुद मुलाकात करके ऐसी पेशकश की। फखरुल का दावा है कि अरुण राजभर ने ओपी राजभर के बयानों को गंभीरता से लिया ही नहीं, गंभीरता से नहीं लेने का अनुरोध भी अब अखिलेश यादव से किया है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का बयान आया है, और अब आपको सुनाते हैं कि समाजवादी पार्टी की ओर से अरुण राजभर की पेशकश को लेकर क्या बयान दिया गया।
1: अरुण राजभर वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे, मिलके उन्हीं ने निवेदन किया कि सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव डाल रही है, बहुत ब्लैकमेल कर रही है। और अरुण राजभर ने इस बात को भी कहा कि पिताजी की किसी बात का बुरा भी ना माना जाए, उनकी लिखी हुई बात, उनकी कही हुई बात को गंभीरता से भी ना लिया जाए, क्योंकि वो बहुत तनाव में है, वो भारतीय जनता पार्टी से दबाव महसूस कर रहे हैं, भाजपा जो कहती है वो लिख देते हैं, बोल देते हैं, इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी के किसी बयान को भी गंभीरता से ना लिया जाए।
0: तो ये सियासी दावों की लड़ाई उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई, और एक दिन पहले ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी में टूट का दावा किया था। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि राजभर के बेटे अपनी पार्टी का ही विलय एसपी यानी समाजवादी पार्टी में कराना चाहते हैं। हालांकि अरुण राजभर ने फखरुल हसन चांद के बयानों का सिरे से खंडन किया।
2: एक पोस्ट है मेरे हाथ में इस वक्त, ये सपा प्रवक्ता हैं, फखरुल हसन चांद हैं, इन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है, ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर जो कि हमारे बगल में इस वक्त हैं, वो कल रात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव से मिले हैं और विलय और पिछड़ों की राजनीति को बचाने का निवेदन किया है। बोले हैं कि पिताजी भाजपा के बहुत दबाव में हैं, उनकी कही लिखी किसी बात को गंभीरता से ना लिया जाए, ब्लैकमेल भी हो रहे हैं, ये इस तरह के दावे उनके प्रवक्ता कर रहे हैं। और
3: उनके दावे सही बात है कि समाजवादी पार्टी मुखिया और इन सभी नेताओं का कोई न कोई यूज तो कर ही रहा, क्योंकि ये बात बताइए जिस दिन की जिक्र ये कर रहे हैं उस दिन मैं समाजवादी पार्टी के गढ़ को समाप्त करने का अभियान चला रहा था आजमगढ़। उठाकर मेरा फेसबुक उठा के देखिए, मेरा ट्विटर उठा के देखिए, मेरा इंस्टाग्राम उठा के देखिए, 1 बजे रात को मैंने 50 ब्राह्मणों के साथ अतरौलिया विधानसभा मीटिंग किया।
0: तो अब समाजवादी पार्टी दावे कर रही है और अरुण राजभर सफाई दे रहे हैं। अब इससे पहले ओपी राजभर दावा कर रहे थे कि 17 जून को लखनऊ में अखिलेश यादव ने जो ब्राह्मण नेताओं की बैठक बुलाई थी उसमें ब्राह्मण सांसद सनातन पांडे का अपमान हुआ, और वही सनातन पांडे अब समाजवादी पार्टी से अलग होने वाले सांसदों की टोली में सबसे आगे होंगे। हालांकि ओपी राजभर ने सोशल मीडिया पर सनातन पांडे का नाम नहीं लिखा है, लेकिन बलिया के बागी टर्म का इस्तेमाल करते हुए सनातन पांडे की ओर इशारा जरूर किया है। अब सनातन पांडे ये कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, और होगा तो वो राजनीति छोड़ देंगे।
4: अगर ये उनका कहना सही हो जाएगा तो सनातन पांडे जीवन में राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे। कभी उनका न मैं कभी उनको मैं अपमानित किया हूँ, न उनके खिलाफ मैं अभी किसी शब्दों का प्रयोग किया हूँ, न मुझे कोई उनको अपमानित करने की भावना है। लेकिन इतना अधिक बोलना हमारे समय से अति जो है सबके लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, वह खराब होती है। अब उनका अति हो गया है।
0: तो पहले पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र, तो क्या अब समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में टूट के रास्ते पर है? उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर चल रही इस पूरी कहानी को डिटेल में समझिए।
5: परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की।
6: मंच समाजवादी पार्टी का था, मौका ब्राह्मण नेताओं की बैठक का था। भगवान परशुराम के नारे के साथ समाजवादी पार्टी अपने मिशन 2027 के लिए ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश में जुटी है। ब्राह्मण समाज के नेताओं को एकजुट होने का संकल्प ले रही है।
5: परशुराम जी की, अखिलेश यादव जिंदाबाद।
6: ऐसे नारों के बीच समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण चेहरे का नाम आगे कर योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश के दल में बगावत की खबर को हवा दे दी है। ओम प्रकाश राजभर ने

0: कि राजभर ने ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर टिकट तक के लिए पैसे ले रखे हैं, जिसके तनाव में ऐसी बयानबाजी हो रही है।
1: वैसे तो आप समझ ही रहे हैं, राजभर जी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है, कि सीटों की बार्गेनिंग करें, ज़्यादा बार्गेनिंग हो जाए और ज़्यादा सीटें मिल जाए, फिर उसमें पैसे कमाएं, यही तो धंधा है इन लोगों का।
2: ये इसलिए बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको सीटें दे देगी। एक तो सीटों के लिए मेरी बातों को लिख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सलूक करेगी वो भी देखेंगे, उसके बाद इस चुनाव में डब्बा गोल हो जाएगा।
3: कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं?
2: 3 सीटें मिल जाए और एक भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी।
0: तो जिस तरह ओपी राजभर समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले से लेकर खनन घोटाले तक के भेद खोलने के दावे कर रहे हैं, उसे समाजवादी पार्टी उनकी बौखलाहट बता रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि 2022 में अखिलेश के साथ चुनाव लड़ चुके ओपी राजभर को इस बार बीजेपी उतनी सीटें भी नहीं देने को तैयार है जितनी सीटें समाजवादी पार्टी ने दी थी। हालांकि ओपी राजभर ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि करीब 3 दर्जन सीटों पर उन्होंने प्रभारी भी तैनात कर रखे हैं और वहां उनकी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है।
3: कितनी सीट्स आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें आप दावा ठोकेंगे?
4: देखिए, अभी तक हम लोगों ने 34 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किया है और वहाँ जो संगठन में कमजोरी रही है उसको पूरा कराने के लिए प्रयास हम लोगों का हो रहा है कि इस बार हम लोग अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल करा लें। अतरौलिया ही नहीं, आजमगढ़ की 200 सीट पर इस समय हम लोगों ने अपना फोकस ठीक ठाक कर लिया है। बीजेपी भी काम कर रही है और पार्टियां भी अपना काम कर रही हैं, लेकिन आज हम लोग आजमगढ़ में टारगेट ये बनाए हुए हैं कि कम से कम हम लोग आज के तारीख में चुनाव हो जाए तो 6 से 7 सीट जीत जाएंगे।
3: आजमगढ़ में कितनी सीट सपा जीतेगी आपके साथ?
4: अभी तक उसका 1 सीट पर लड़ाई खाली है।
0: तो ओपी राजभर दावा कर रहे हैं कि वो खुद अतरौलिया विधानसभा में सक्रिय हैं और वहीं से एनडीए उम्मीदवार बनेंगे। अब इसके अलावा वो आजमगढ़ में मेहनगर, दीदारगंज, अतरौलिया पर भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जबकि खबर है कि अतरौलिया सीट को लेकर निषाद पार्टी भी दावा कर रही है। तो वहीं अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी गलियारे से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी से अलग एक तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद और AIMIM के ओवैसी की पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चा शुरू हो गई। अब खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर के बीच इसे लेकर मुलाकात भी हो चुकी है।
5: चंद्रशेखर रावन अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना दल हो, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने भी इस बीच हुंकार भर दी है। लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर जो कल यूपी की सियासत में आई है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर रावण की वो मुलाकात जो सुगबुगाहट देती है उस खबर को कि क्या यूपी में थर्ड फ्रंट की तैयारी है। बड़ी बात यह भी है, सूत्र बताते हैं कि AIMIM भी इस थर्ड फ्रंट का आने वाले वक्त में हिस्सा बन सकती है अगर ये थर्ड फ्रंट जमीन पर उतरता है, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर रावण और असदुद्दीन ओवैसी की जोड़ी क्या यूपी के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी का वोट काटती नजर आएगी या फिर बसपा के को भी साथ लेकर एक बड़ा चैलेंज बनती, ये वक्त बताएगा। लेकिन कल की तस्वीरों ने यूपी की सियासत में हलचल तो पैदा कर दी है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: अब देखिए, उत्तर प्रदेश में इस तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तभी शुरू हो गई थी जब 14 जून को बहराइच में ओवैसी की रैली हुई थी। तब ओवैसी ने मंच से काशीराम का जिक्र भी किया था और मायावती की पार्टी से गठबंधन की कोशिशों की बात भी कही थी। हालांकि मायावती इस बार मुस्लिम वोट की जगह ओबीसी वोट की ओर और ज्यादा ध्यान दे रही है। अब ऐसे में ओवैसी, चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य दलित मुस्लिम वोटों के गठजोड़ का एक नया मोर्चा बनाने की कोशिश कर सकते हैं।
6: दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है, किस परिप्रेक्ष्य में हुई है? निश्चित 2027 का चुनाव है, इस संबंध में तो जानकारी नहीं, बिल्कुल उनका निजी फैसला है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बात स्पष्ट कही थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकने

0: के लिए हमारे दरवाजे सभी उन लोगों के लिए खुले हैं जो हमारे राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात स्वीकारते हो।
1: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सुनी सुनाई बातों में जैसा प्रतीत होता है उससे ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। 3 दिन की जांच के बाद जो तथ्य सबूत बयान सामने आए हैं उससे इस चढ़ावे चोरी की सुई कई बड़े चेहरों की ओर भी घूमती नजर आ रही है और यही वजह है कि SIT असली चोर और चोरी के जिम्मेदार लोगों की पहचान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सघन जांच अभी भी जारी है। CCTV से लेकर बैंक तक हर जगह जांच पड़ताल इस वक्त तक की जा रही है। यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हैंगिंग आउट एट द पूल इज ग्रेट, रिलैक्सिंग एंड प्लेइंग वेगास स्टाइल गेम्स ऑन माय फोन एट द सेम टाइम, drink in one hand and a blackjack in the other. It's all at SpinQuest. Over 1,000 games, including your favorite slots and table games. Be cool with this summer special. New players get $30 coin packs for 10 at SpinQuest.com.
5: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
6: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: You use AI every day, but what if you built what it runs on? WGU's online software engineering degree helps you turn your coding skills into a future-shaping career. Learn more at wgu.edu.
8: Jack FM, now playing what we want, commercial-free on TuneIn Premium.
9: What you got for me, Jack?
8: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.

जिस राम मंदिर के बनने में दशकों तक सियासत हुई, कई सरकारें बनी और टूटी, अब जब उस राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगा तो तुरंत राजनीति भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रही है। अखिलेश यादव और उनके सहयोगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इसे सनातन और भगवान राम का अपमान बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज है बीजेपी वाले, खास तौर पर बीजेपी के वो नेता जो राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या बोलना है। जैसे कि विनय कटियार, जो पहले मंदिर में चोरी की खबर पर आग बबूला हो रहे थे, लेकिन अब पलट गए। कांग्रेस तो सीधे कह रही है कि ये पूरी तरह से संगठित लूट है और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और अयोध्या के संतों का मानना है कि गलत करने वालों का फैसला अब राम ही करेंगे। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
3: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Buyers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
4: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
3: Experience the buyer's difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
5: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
6: Diehard music fan? Qello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Qello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.

कॉलेज की डिग्री हासिल करने वाले युवाओं के लिए आने वाला वक्त बड़े इम्तिहान जैसा होगा। जो डिग्रियां कभी शानदार करियर की गारंटी मानी जाती थी, वही आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के दौर में फीकी पड़ने लगी है। जॉब मार्केट के तेजी से बदलते ढांचे के बीच देश में आईटी, कानून, कॉमर्स, ट्रांसलेशन और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में बड़ा उलटफेर शुरू हो चुका है। ऐसे में युवाओं को पारंपरिक पढ़ाई के साथ कुछ नया सीखना होगा। अनुमान है कि 2030 तक दुनिया भर में करीब 22% नौकरियों पर एआई का सीधा असर पड़ सकता है। इसकी वजह है कि 40% कंपनियां जॉब के लिए डिग्री के साथ एआई टूल्स की जानकारी होना जरूरी मानती हैं, जबकि देश में 82% बीसीए और एमसीए के पास एआई टूल्स की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। यानी नौकरियां उन्हीं लोगों के पास सुरक्षित रहेंगी जो इन मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को 40% तक बढ़ा सकते हैं। साफ है कि एआई किसी इंसान की जगह तो नहीं लेगा, लेकिन एआई का इस्तेमाल करने वाले लोग उन लोगों को रिप्लेस कर देंगे जो इससे दूरी बनाकर रखेंगे। ऐसे में अगर पढ़ाई का तरीका और कंटेंट नहीं बदला गया तो आने वाले दिनों में डिग्रियों की वैल्यू कम हो जाएगी। कंपनियों को औसत एम्प्लॉयज की जगह 10x प्रोफेशनल्स की तलाश है जो अकेला ही कई लोगों के बराबर काम संभाल सके। इसकी वजह DeepL टूल जैसे टूल्स का इस्तेमाल है जो एक पेज को महज 2 सेकंड में ट्रांसलेट कर देता है। वहीं Canva AI सोशल मीडिया बैनर 12 सेकंड में बना देता है, जिससे बेसिक लोगों के रेट 70% घटे हैं। GIT हब Capitol 40 सेकंड में कोड लिख देता है, जिससे जूनियर कोडर्स की जरूरत बेहद कम हो गई है। हालांकि शुरुआती दौर में प्रोफेशनल्स की नियुक्तियों पर दबाव दिखाई दे रहा है और इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसी कंपनियों ने फ्रेशर्स हायरिंग को थोड़ा धीमा किया है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है क्योंकि आगे चलकर जॉब मार्केट में नए मौके बनने वाले हैं। भारत में इस समय GCCS की बाढ़ आई हुई है और देश में 4000 से ज्यादा ऐसे सेंटर्स काम कर रहे हैं जो AI स्किल्स वाले युवाओं को भारी भरकम सैलरी पर नौकरियां दे रहे हैं। राहत की बात यह है कि कई काम ऐसे हैं जहां इंसानी दिमाग, फैसले लेने की क्षमता, इमोशनल क्वोशेंट और बातचीत के हुनर की जरूरत होती है। आदित्य केराड़ा, आज तक।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
1: Are you ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or just some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. Your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and to get your plans underway.
2: Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
3: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
5: दफ्तर जाने की जल्दी हो या फिर देर रात एयरपोर्ट से घर लौटना हो, ओला उबर जैसी कैब सर्विसेज हमारी लाइफ का खास हिस्सा बन चुकी हैं। आरामदेह सफर और एक क्लिक पर गाड़ी हाजिर होने की सहूलियत ने आम आदमी को इसका आदि बना दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। टैक्स के नए नियमों की वजह से ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाएं काफी महंगी होने वाली हैं। दरअसल एक नए सर्वे से जो जानकारी बाहर आई है वो पैसेंजर्स के साथ साथ ड्राइवरों को भी बड़ी टेंशन देने वाली है, जिसके मुताबिक ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं पर 5% एक्स्ट्रा GST लगाने की तैयारी चल रही है। इस अतिरिक्त टैक्स से पैसेंजर्स पर सीधे किराए का बड़ा बोझ बढ़ने की आशंका है। टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों को डर है कि इस नए बदलाव के बाद उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। ज्यादातर ड्राइवर उन प्लेटफॉर्म्स को चुनना पसंद करते हैं जहां वो फिक्स चार्ज देकर जुड़ते हैं और पूरी कमाई अपने पास रखते हैं। नया टैक्स लागू होने के बाद उनका पूरा गणित गड़बड़ा सकता है। सर्वे में दावा किया गया है कि 75% से ज्यादा ड्राइवर्स को डर है कि नए टैक्स की वजह से उनकी कमाई घट जाएगी। कमाई कम होने के डर से कई ड्राइवरों ने कैब एग्रीगेटर के साथ काम छोड़कर दूसरा काम तलाशने की बात कही है। 2/3 से ज्यादा पैसेंजर्स का कहना है कि किराया बढ़ने पर वो ऐप से कैब बुक करना कम कर देंगे। टैक्स के इस नए बोझ के बाद मार्केट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। महंगे किराए की वजह से बड़ी संख्या में लोग और ड्राइवर दोनों ही दूसरे ऑप्शंस की तलाश में जुट जाएंगे। मौजूदा समय में टैक्स के सिस्टम को समझना बेहद जरूरी है। फिलहाल ओला और उबर जैसी कंपनियां जिस मॉडल पर काम कर रही हैं, उसमें टैक्स का पूरा जिम्मा कंपनियों के पास ही होता है। फिलहाल पैसेंजर्स अपनी कुल राइड वैल्यू पर 5% GST देते हैं। इस स्टैंडर्ड कमीशन बेस्ड मॉडल के तहत कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकती और कानूनी तौर पर ऐप एग्रीगेटर कंपनियां ही पैसेंजर्स से ये टैक्स वसूल कर सरकार को जमा करती हैं। इस पूरे सिस्टम में होने वाले किसी भी बदलाव का सीधा असर आपकी पॉकेट और ड्राइवरों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। ऐसे में देखना होगा कि आम जनता को राहत देने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। आदित्य के राणा आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: उद्धव की पार्टी में बगावत का तूफान, संसद दल की बैठक से 6 सांसद नदारद, दराज नेतृत्व ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, बागियों को पार्टी से बाहर निकालने की तैयारी। हाईकोर्ट से ममता बैनर्जी को झटका, स्पीकर के फैसले पर स्टे से फिलहाल इनकार, ऋतव्रत बैनर्जी बने रहेंगे विपक्ष के नेता, 28 जुलाई को अगली सुनवाई। समाजवादी पार्टी में बगावत पर दावों की झड़ी, अब संजय निषाद का दावा, हमारे संपर्क में समाजवादी सांसद, शिवपाल से लेकर अखिलेश तक का दो टूक इनकार। राम मंदिर चंदा चोरी जांच में बड़ा खुलासा, सीसीटीवी से छेड़छाड़ के सबूत, रडार पर 200 से ज्यादा चेहरे, बैंक की भूमिका की भी जांच। और पेरिस में ईरान अमेरिका के बीच फाइनल डील, फॉक्स न्यूज से खबर, जिनेवा में नहीं होगा कोई कार्यक्रम, 14 सूत्रीय समझौता के बावजूद लेबनान पर इजराइल के हमले जारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में संसद दल की बैठक की, अहम राजनीतिक रणनीति पर किया मंथन। शिवसेना यूपीडी के जो 6 सांसद पार्टी के संसद दल की बैठक में नहीं आए उन्हें पार्टी की तरफ से जारी किया जाएगा कारण बताओ नोटिस। संजय राउत शिवसेना यूपीडी विधायकों को तोड़ने की अफवाहों पर बीजेपी को दी थी चुनौती। राउत बोले हम जेल जाने को तैयार हैं लेकिन डराए धमकाने की राजनीति नहीं चलेगी। ऑपरेशन टाइगर पर महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट का बड़ा बयान, अलग हुए 6 सांसदों के शिवसेना शिंदे गुट में आने पर फैसला लेंगे एकनाथ शिंदे। कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बैनर्जी को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने ऋतुव्रत बैनर्जी को विधानसभा में विपक्ष के नेता पर मान्यता दी। हाईकोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया, सोमन देव ने फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की गिरफ्तारी वारंट पर अंतरिम रोक हटाई, ट्रायल कोर्ट को आदेश की कॉपी भेजने के निर्देश। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बैनर्जी पर तीखा हमला, कहा ना पार्टी बची ना कार्यकर्ता, सिर्फ सुर्खियों बने रहने की कोशिश कर रही है। दिलीप घोष का बयान, हॉकर्स को लेकर राजनीति कर रही है ममता, बोले सरकार सड़कों पर सुगम बनाएगी, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की सियासत में अनबाजी तेज, अरूप विश्वास के बैंक अकाउंट फ्रीज मामले पर हुमायूं कबीर बोले वो विधानसभा में बने नए गुट की मदद कर रहे हैं। सीपीआई नेता मुस्तफिजुर रहमान राणा बोले टीएमसी के सभी बैंक खाते फ्रीज होने चाहिए, पैसा अवैध होने का दावा। कोलकाता में महुआ मोइत्रा ट्रेन पर हमला, का एक दिन की ईद नमाज के लिए रेड रोड बंद नहीं लेकिन योग दिवस के लिए एक हफ्ते तक सड़क बंद है। झारखंड में आज 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव, सुबह से जारी है मतदान, कांग्रेस विधायक एक साथ विधानसभा पहुंचे। रांची में राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम नेता मनोज पांडे का दावा, दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। रांची में बीजेपी प्रवक्ता संदीप वर्मा का दावा, एनडीए के सभी 24 विधायकों के ने डाला वोट, 4 अतिरिक्त वोट मिलने की उम्मीद। रांची आरएसएस कार्यालय हमले मामले में एसआईटी की कार्रवाई तेज, एक और आरोपी गिरफ्तार, कुल गिरफ्तारी की संख्या 3 हुई। रांची हमला मामले पर जेएमएम का बयान, पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की, साथ ही बीजेपी शासित राज्यों से तुलना कर कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। ओम प्रकाश राजभर का दावा, समाजवादी पार्टी में टूट तय, बागी बलिया का नेता करेगा बागी सांसदों की अगुवाई। ब्राह्मण सम्मेलन में तिरस्कार का आरोप, ओपी राजभर बोले इससे समाजवादी पार्टी के नाराज सांसद और आहत हुए। समाजवादी पार्टी सांसदों में नाराजगी का दावा, ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को सांसद बचाओ अभियान की सलाह दी। राजभर के एक्सपोज से सियासी बवाल, दलित उत्पीड़न मामलों को लेकर विपक्ष को घेरा, कई जोन के आंकड़े किए साझा। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर का दावा, कहा समाजवादी पार्टी के 25 से 27 सांसद टूटेंगे। समाजवादी पार्टी नेता के एक्सपोज पर पलटवार करते हुए अरुण राजभर बोले मैं समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बैठकें कर रहा था, ये लोग आईटी सेल के पोस्टर छिपाकर राजनीति करते हैं। अरुण राजभर बोले बलिया से होगी शुरुआत, थर्ड या फोर्थ फ्रंट का कोई असर नहीं होगा। अखिलेश यादव का ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा हमला, टिकट और वसूली को लेकर लगाए गंभीर आरोप। अखिलेश यादव बोले अधिकारियों और ठेकेदारों की पंचायत में फंसे राजभर, सियासत में बयानबाजी तेज। एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान का बयान, बीएसपी प्राथमिकता लेकिन अन्य दलों के साथ गठबंधन की संभावना। संजय निषाद का बड़ा दावा, समाजवादी पार्टी के कई सांसद संपर्क में, कुछ कांग्रेस सांसद एनडीए के आने के साथ आने के लिए इच्छुक। संजय निषाद बोले सरकार नहीं बना पाए, बाहर रहकर वादे पूरे नहीं होंगे, इसीलिए अब हम हमसे कह रहे हैं कि साथ रख लो। अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी जांच का दायरा बढ़ा, सीसीटीवी गेट चेकिंग और सुरक्षा स्टाफ की भूमिका की जांच। राम मंदिर फंड घोटाले में नया मोड़, एसआईटी के रडार पर सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी और पास सिस्टम, कई अधिकारियों की जांच तेज। लखनऊ में कोरीन का सिरप मामले बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल समेत वरुण सिंह और गौरव जायसवाल भगोड़ा घोषित। नाम में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला, बोले परिवारवाद की राजनीति से विकास संभव नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा, डबल इंजन सरकार की योजनाएं लागू करने की क्षमता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में नहीं है। कानपुर में आज सीएम योगी चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कृषि प्रदर्शनी का किया अवलोकन। कृषि उत्पादों और नवाचारों की प्रदर्शनी का सीएम योगी ने लिया जायजा, अधिकारियों के साथ की समीक्षा। लखनऊ में सिंचाई विभाग का जोरदार एक्शन, सिंचाई विभाग की जमीन पर हुए अवैध कब्जा पर चला बुलडोजर। झांसी में राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। झांसी किले में होगा कार्यक्रम, सीएम योगी के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अयोध्या दौरे पर, श्री राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन, धार्मिक कार्यक्रमों के बाद लखनऊ वापसी। मोहर्रम से पहले हापुड़ में सख्ती, संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च, ड्रोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी। श्रम मंत्रालय की योजना, पीएफ पैसे निकालना होगा आसान, यूपीआई एटीएम कार्ड से निकासी सिस्टम शुरू करने की तैयारी। यंत्र इंडिया लिमिटेड में नई पहल, नागपुर में डिफेंस और एरोस्पेस उत्पादन बढ़ाने के लिए बनेगा हाईटेक एल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस।
नागपुर में बड़ा रक्षा प्रोजेक्ट, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे 10,000 टन एल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का भूमि पूजन। आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी मजबूती। देश भर के फूड कारोबारियों के लिए नई गाइडलाइन। एफएसएसएआई ने साफ सफाई और सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने के दिए निर्देश। एफएसएसएआई का बड़ा निर्देश, खाद्य व्यवसायों में सिर्फ फूड ग्रेड और जंग रोधी चाकू और ब्लेड के इस्तेमाल का आदेश। अमेरिका ईरान शांति समझौते पर औपचारिक मोहर, ट्रंप ने पेरिस में साइन किया एमओयू, डील की शर्तों पर दोनों पक्षों में सहमति। अमेरिका ईरान के बीच 14 सूत्री समझौता, ट्रंप और पेजेश्किया ने एमओयू पर किया हस्ताक्षर। मैक्रॉन ने शेयर किया ट्रंप के हस्ताक्षर का वीडियो, कहा अमेरिका ईरान के बीच समझौता हुआ। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बाद कच्चे तेल के दाम में गिरावट, $79 के नीचे फिसला ब्रेंट क्रूड। ट्रंप का बड़ा बयान, दूसरे देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं तो ईरान को उनसे वंचित रखना अनुचित होगा। G7 समिट के तहत प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई मुलाकात, हॉर्मुज और भारतीय नाविकों पर हुए हमले पर बातचीत। राष्ट्रपति ट्रंप बोले, मैं भारत का बहुत सम्मान करता हूं, अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका करेगा मदद। आज तक ने भारत और अमेरिका की दोस्ती को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड से किए सवाल, ट्रंप ने कहा हर कोई भारत और पीएम मोदी से करता है प्यार और हमारे रिश्ते मजबूत हैं। ट्रंप के साथ विपक्षी बैठक में पीएम मोदी ने कहा समुद्र में भारतीयों की सुरक्षा जरूरी, उम्मीद है कि ईरान के साथ डील में भारतीयों की सुरक्षा पक्की की जाएगी। आज पेरिस में पीएम मोदी वीवाटेक समिट में शामिल होंगे, सम्मेलन के लिए भारत को ऑफिशियल AI कंट्री पार्टनर का दर्जा दिया गया। लगातार हो रही बारिश से कुल्लू घाटी हरी भरी, नजारे मनमोहक, तापमान में आई गिरावट। गुजरात के कई जिलों में झमाझम बारिश, अरावली से खेड़ा तक मौसम सुहाना। गुजरात में मानसून की जोरदार एंट्री, 24 घंटे हो रही बारिश, बालासिनौर में सबसे ज्यादा पानी बरसा। खेड़ा में मानसून की पहली झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत। गुजरात के अरावली में झमाझम बारिश, मोड़ासा, मेघराज, बिलोदा और शामला जी में बदला मौसम। देवभूमि में पूरी आस्था के साथ जारी है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 11.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। पवित्र देवताल भी श्रद्धालुओं और साधु संतों का पहुंचना जारी है, बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट ऊंचाई पर मौजूद पवित्र स्थान। सैलानी से गुलजार हुई चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, चंद्र कोट का यात्री निवास श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम, गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद पूरे यात्रा मार्ग और सुरक्षा चाक चौबंद। हरियाणा के संदीप आर्य जांगड़ा के नाम अनोखा कीर्तिमान, लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार करके बनाया विश्व रिकॉर्ड। संदीप ने गुजरात के मुढ़ेरा में लगातार 37 घंटे और 21 मिनट तक सूर्य नमस्कार कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। सूरत के सिर्फ 1 साल 8 महीने के मासूम करण मिथुन भाई परमार की यादाश बनी चर्चा का विषय, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने IBR अचीवर के खिताब से नवाजा। नेदरलैंड्स के रोटरडैम में भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का शानदार खेल, FIH प्रो लीग में भारत ने विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से दी मात। मैच के 7वें मिनट में मनदीप सिंह ने किया गोल, फिर 13वें मिनट में शिलानंद लाखरा ने किया गोल, तो नीलांकन शर्मा ने 35वें मिनट में दागा गोल। बस्ती में पुलिसकर्मी पर बुजुर्ग की पिटाई का आरोप, विवाद सुलझाने पहुंचा जवान, वीडियो वायरल। पश्चिमी बर्धमान में बालू वाहनों से वसूली का विरोध करने पर कर्मचारियों पर हमला, सिर फोड़कर किया घायल, एक आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोरिया में रेत खनन विवाद ने लिया खूनी रूप, फॉर्चूनर में आग लगाने से 3 की मौत, कई घायल। उधमसिंह नगर में मां के शव के पास हाथ जोड़ती 6 साल की बच्ची का वीडियो वायरल, सड़क हादसे ने झकझोर दिया। हैदराबाद में भारी बारिश के बीच निर्माणाधीन दीवार ढही, 2 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत। सहारनपुर के गौकशी के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 6 गौकश गिरफ्तार, 2 पिकअप से 10 जिंदा और 1 मृत गोवंश बरामद। उन्नाव के पारिवारिक कलह में सूबेदार की पत्नी लगाई फांसी, पति ने भी की आत्महत्या, जांच में जुट गई है पुलिस। चंबा में दर्दनाक सड़क हादसा, बुलेरो गहरी खाई में गिरी, 7 की मौत।

लुधियाना में वेतन विवाद में फैक्ट्री मालिक पर गंभीर आरोप, नौकरी छोड़ने वाले मजदूर का अपहरण कर बंधक बनाने का मामला। इटावा में शादी के 3 महीने बाद हंगामा, संदिग्ध हालात में नवविवाहिता की मौत, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। बिजनौर में युवती के कथित दुष्कर्म और धन परिवर्तन के दबाव का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देवरिया में मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही, दाहिने हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजूद बाएं हाथ में चढ़ाया गया प्लास्टर। फिरोजाबाद थाने के पास महिला ने युवक से सरेआम की पिटाई, थप्पड़ों से हमला, कपड़े फाड़े, वीडियो वायरल। रोहतास में नहर में नहाने के दौरान भाई बहन की डूबकर मौत, गांव में बचा कोहराम। कल्याण में शादी के 1.5 महीने बाद नवविवाहिता ने किया आत्महत्या, डॉक्टर पति समेत सास और देवर गिरफ्तार। जयपुर में बारूद का जाल बेनकाब, 1,000 किलो से ज्यादा पटाखों का जखीरा सील। सूरत में 3 से 4 दुकानों में लगी आग, 15 से अधिक वाहन जलकर खाक। जामनगर में जर्जर कस्टम हाउस इमारत तोड़ने के दौरान हादसा, मलबे में दबे 3 मजदूर। गाजियाबाद में पंचायत की बेटी बनी मौत की वजह, युवती की आत्महत्या के बाद मोदीनगर में हंगामा, पुलिस से धक्का मुक्की। नालंदा में डिग्री कॉलेज की मांग पर बवाल, प्रदर्शनकारी का पुलिस पर पथराव, कई जवान घायल। फिल्म वेलकम टू द जंगल के सितारों की जमघट पर बोले सुनील शेट्टी, किसी एक इंसान के बारे में नहीं है फिल्म, 25 से 30 धुरंधर एक्टर्स की फिल्म है वेलकम टू जंगल।

और अब बड़ी खबर झारखंड से, जहां पर रात सुबह चुनाव के दो सीटों के लिए इस वक्त मतदान जारी है। दो सीटों के लिए तीन प्रत्याशी हैं। संख्या बल के हिसाब से जेएमएम के बैद्यनाथ राम की जीत करीब तय है। दूसरी सीट के लिए कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए के परिमल नथमानी में मुकाबला है। इसी दूसरी सीट पर पेंच फंसा हुआ है। क्या है समीकरण, बता रहे हैं आज तक संवाददाता सत्यजीत।

0: दोस्त क्या हुआ लोग, बहुत सारे दोस्त मित्र हैं वो करते हैं दिखाते नहीं हैं, तो ऐसे लोगों के भरोसे जीत का डंका बजेगा ऐसा है।
1: आप सर कितने आश्वस्त हैं?
0: अपने बारे आश्वस्त हैं, एक वोट हमारा जाएगा।
2: तो झारखंड से जेएमएम के बैद्यनाथ राम की जीत लगभग तय है, वन साइडेड ये जीत बताई जा रही है। दूसरी सीट के लिए कांटे का मुकाबला है। राज्यसभा की दो सीटों के लिए तीन प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस के प्रणव झा एनडीए समर्थित परिमल में टक्कर है। तो ये समीकरण हम आपको दिखा रहे हैं, बैद्यनाथ राम जो कि जेएमएम के प्रत्याशी, इनकी जीत तय। वहीं कांग्रेस के प्रणव झा और परिमल नाथवानी के बीच कड़ा मुकाबला है। ये एनडीए समर्थित निर्दलीय हैं। आपको याद होगा कि इनके फॉर्म को लेकर बवाल हुआ था और उसके बाद कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी थी। वहीं जीत के लिए 28 वोट चाहिए। एनडीए के पास 24 विधायक हैं, तो जरूरत से चार कम बताए जा रहे हैं। सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्यजीत, ताजा जानकारी क्या मिल रही है, किस तरह से चल रही है वोटिंग इस वक्त?
3: देखिए, अभी वोटिंग की प्रक्रिया जो है सुबह 9 बजे से ही शुरू हो गई थी, शाम 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगा। सबसे पहले एनडीए के विधायकों ने, जो 24 विधायक हैं, उन लोगों ने अपना वोट कास्ट किया और उसके बाद इंडिया अलायंस के जो विधायक हैं वो एक साथ पहुंचे हैं मतदान करने और उनके मतदान का प्रक्रिया चल रहा है। और यहाँ पे रोमांच और काफी दिलचस्पी बनी हुई है। दो सीटें हैं, तीन उम्मीदवार मैदान में है। एनडीए के पास 24 फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट हैं और जादुई आंकड़ा जो है यहाँ पे वो 28 का है, यानी चार मत वो दूर हैं। तो उनका जो सारा दारमोदार है वो इस बात पे है कि कोई क्रॉस वोटिंग उनके पक्ष में करे। परिमल नाथवानी 2008 और 2014 में झारखंड को रिप्रेजेंट कर चुके हैं अपर हाउस में, तो ऐसे सूरत में वो कह रहे हैं कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, हमने काम किया है इस राज्य के लिए, तो अंतर आत्मा के आधार पे उन्हें वोट मिलेगा, जिसे जो है इंडिया अलायंस के लोग क्रॉस वोटिंग कहते हैं। तो कुनबा संभालने और कुनबा को एकजुट रखने, इसी का खेल चल रहा है। दोनों तरफ से रणनीतियां बनाई गई है और अब वक्त कम रह गया है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। 5 बजे के बाद जब काउंटिंग होगा तो जाहिर तौर पे पता चल जाएगा कि किसकी रणनीति सबसे ज्यादा कारगर रही। होटल पॉलिटिक्स चला, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चला। एनडीए के विधायक जो हैं उनको शिफ्ट किया गया था यहाँ के पंच सितारा होटल में, उसी तरह से कांग्रेस के विधायक जो हैं वो हाजिरी लगाते रहे, चाहे इंडिया अलायंस के विधायक जो हैं वो हाजिरी लगाते रहे सीएम हाउस में। मॉक पोल जो है वो करवाए गए कि वोट बर्बाद ना हो, रद्द ना हो। इस वक्त एक विधायक हमारे साथ हैं, जयराम
2: पास। इस बीच आगे का रुख करेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र में हुए खेला की, क्योंकि ममता बनर्जी के बाद अब उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत हो गई है। दिल्ली में शिवसेना यूबीटी के संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में 9 में से सिर्फ 3 लोकसभा सांसद पहुंचे, अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे पहुंचे। पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी कर दिल्ली में होने वाली बैठक में मौजूद रहने का निर्देश दिया था। बैठक में पहुंचे सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि जो सांसद नहीं आए पार्टी उनके खिलाफ नोटिस जारी करेगी। यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि हमारे सांसदों को किडनैप किया गया है, जो बैठक में आएगा वो हमारे साथ है, जो नहीं आएगा वो गद्दार है।
4: जो सदस्य यहां नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी हित का उल्लंघन है। एकदम पार्टी का आदेश नहीं माना है, तो अभी उस मुताबिक हम उस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है। उनको शोकॉज दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द।
2: हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, नोटिस जारी किया जाएगा, उसका 7 दिन में जवाब दिया जाएगा, लेकिन जवाब क्या होना है तो सबको मालूम है।
5: देखिए, बिल्कुल जवाब सबको मालूम है, लेकिन एक प्रक्रिया है संसदीय प्रक्रिया की, अगर आपने व्हिप का उल्लंघन किया है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो आपको नोटिस जारी किया जाएगा, कारण बताओ, उसका जवाब आपको 7 दिन में देना है। अगर नहीं देंगे तो उसके बाद जो है पार्टी की तरफ से स्पीकर को पत्र लिखा जाएगा कि इन्होंने जो है पार्टी का जो व्हिप था उसका उल्लंघन किया है, संसदीय पार्टी मीटिंग के अंदर नहीं आए हैं और ये एंटी पार्टी एक्टिविटी में शामिल है, इनकी संसद सदस्यता को जो है वो खत्म करा जाए। अब इसके ऊपर स्पीकर को फैसला लेना होगा और ये लड़ाई जो है स्पीकर के यहां से होती हुई जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, जिसका जिक्र संजय राउत कर रहे हैं कि 4 साल से ज्यादा का समय हो गया है और अभी तक जो पहले का केस पेंडिंग है, जो यूबीटी में टूट का केस पेंडिंग है, उसको लेकर अभी तक फैसला नहीं आया। इसलिए उन्होंने ये भी कहा ये जो कुछ चल रहा है इसमें सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो सुप्रीम कोर्ट भी है, और यही कारण है कि आप देखिए कि यूबीटी में लगातार जो है वो टूट भी होती रही है। और 6 के 6 सांसद जो है कल स्पीकर ओम बिरला से उन्होंने मुलाकात की, 1 सांसद जो है ओम प्रकाश निलंबर कर उन्होंने जो है सुबह
2: ठीक है नोटिस जारी हो गया है इन बागी सांसदों को और अब इन्हें नोटिस पर 7 दिन के भीतर जवाब देना होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला है, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: $20 billion of precious metal sold to 1.8 million customers means Atmex knows how to help you find the investment you want, when you want it. Our logistics experts get it to you fast, and our support team is ready to solve any issue by phone, email, or chat. Over 220,000 reviews have one common thread: satisfied customers insisting we're the best precious metals retailer. When you're ready to join them, shop Atmex.com. That's APMEX.com.
9: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing. And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
10: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
9: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing. Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing.
11: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffeehouse, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा,
7: इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
1: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
3: इन एसोसिएशन विद
4: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक
5: कूल स्टाइलिश फैंस एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस
3: हिंट बड़े आराम से विमल बोलो जुबां केसरी
6: शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू

0: हम राम के लिए खून देने वाले मजनू हैं, राम के नाम पर मलाई खाने वाले तो नहीं है भैया।
1: जहां आस्था का सैलाब उमड़ता है, जहां राम नाम की धुन गूंजती है, जहां पुरुषोत्तम राम बसते हैं, वहां राम के दान की लूट हर किसी को हैरान कर रही है। यकीन नहीं हो रहा कि भगवान के घर में चोरी हो गई, अब चोर की तलाश है, चढ़ावा उड़ाने वालों की खोज है। आज SIT जांच का तीसरा दिन है, बस 12 दिन बाद SIT से रिपोर्ट तलब की गई है। जांच के घेरे में वो सब हैं जो व्यवस्था देखते हैं, वो सब हैं जो दान का हिसाब किताब रखते हैं, चढ़ावे की गिनती करते हैं। सूत्रों के मुताबिक SIT ने काउंटिंग रूम के सभी अहम DVR अपने कब्जे में लिए। अब इन रिकॉर्डिंग से ये पता लगाने की कोशिश होगी क्या किसी ने चढ़ावे की रकम के साथ छेड़छाड़ की, या फिर आरोपों के पीछे कोई और कहानी है। जांच सिर्फ कैमरों तक सीमित नहीं है, मंदिर में रकम गिनने वाले SBI कर्मचारियों, सेवादारों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब तक 43 से ज्यादा लोगों से सवाल जवाब हो चुके हैं। अभी तक किसी को आरोपित घोषित नहीं किया गया, लेकिन जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सवाल उन सब पर उठ रहे हैं। पूछताछ में 9 कर्मचारी ऐसे मिले जिन्होंने महंगे मोबाइल लिए, कार खरीदी। घेरे में चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव भी हैं। आरोप है कि उसने हॉस्टल बनवाए, कार खरीदी। टिन्नू यादव की पत्नी ने भी अपने पति पर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि उनके पास जो है वो मंदिर बनने से पहले का है। SIT की नजर उन लोगों पर भी है जिनकी मंदिर की व्यवस्था और चढ़ावे की प्रक्रिया में सीधी भूमिका है। इनमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अरिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव का नाम है। जांच के दूसरे दिन कल ही SIT टीम मंदिर के अंदर पहुंची थी। इस टीम में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के IG किरण S और UP सरकार के वित्त विभाग के अफसर नील रतन भी शामिल हैं। कल तीनों अलग अलग कारों से पहुंचे थे। इसी बीच कार सेवक संतोष दुबे की शिकायत भी जांच का हिस्सा बन सकती है। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की मांग की। SIT तीन बड़े सवालों का जवाब तलाश रही है। पहला, क्या सच में चढ़ावे की रकम में कोई गड़बड़ी हुई? दूसरा, अगर हुई तो जिम्मेदार कौन है? और तीसरा, क्या सिस्टम में कोई ऐसी कमी थी जिसका फायदा उठाया गया? संतोष शर्मा के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

उधर की पार्टी में बगावत का तूफान, संसदीय दल की बैठक से 6 सांसद नाराज, नेतृत्व ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, बागियों को पार्टी से बाहर निकालने की तैयारी। हाईकोर्ट से ममता बैनर्जी को झटका, स्पीकर के फैसले पर स्टे से फिलहाल इनका ऋतव्रत, बैनर्जी बने रहेंगे विपक्ष के नेता, 28 जुलाई को अगली सुनवाई। समाजवादी पार्टी में बगावत पर दावों की झड़ी, अब संजय निषाद का दावा, हमारे संपर्क में समाजवादी सांसद शिवपाल से लेकर अखिलेश तक का दो टूक इनकार। राम मंदिर चंदा चोरी की जांच से बड़ा खुलासा, सीसीटीवी से छेड़छाड़ के सबूत, रडार पर 200 से ज्यादा चेहरे, बैंक की भूमिका की जांच। के बीच फाइनल डील, फॉक्स न्यूज से खबर, जिनीवा में नहीं होगा कोई कार्यक्रम, 14 सूत्र समझौते के बावजूद लेबनान पर इजराइल के हमले जारी।

0: स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर खबर आ रही है कि अयोध्या राम मंदिर में दान राशि की गिनती से जुड़ी जो तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस वीडियो में मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान को टेबल पर रखकर गिनते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में दान राशि की काउंटिंग, उसके संचालन, उसकी प्रक्रिया की व्यवस्था की झलक देखी जा सकती है। तस्वीर ऐसे समय में आई है जब राम मंदिर की दान राशि में कथित गड़बड़ी और चोरी के मामले की जांच एसआईटी की कर रही है। दान की गिनती और उसकी निगरानी व्यवस्था को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं, जिनकी जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं। और इस तस्वीर को जांच से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज साक्ष्यों के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। आशीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, अलग ये फुटेज काफी दूर से है, लेकिन अगर आपने फुटेज देखा हो तो आप समझा सकते हैं किस तरीके से इस दान पेटी को खोला जा रहा है और फिर गिना जा रहा है।
1: देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात है कि दान पेटी को पहले मंदिर परिसर से लाने के बाद एक जो बिल्डिंग के अंडरग्राउंड एरिया है वहां पर रखा जाता है। उस एरिया में रिस्ट्रिक्ट रहता है, किसी को नहीं जाने की इजाजत होती है। और वहां पर जब ये ओपन किया जाता है तो एक टेबल नुमा जो जगह होती है उस पे सारे पैसे जितने भी रुपए होते हैं उनको वहां पर उड़ेला जाता है। उसके बाद जो 500 के नोट है या 200 के नोट है या 100 के नोट है उनको अलग अलग करके फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद उनको SBI के जो कर्मचारी हैं उनको बैंड लगाकर दिया जाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में ये जो वीडियो आया है ये जरूर SIT के लिए जांच के लिए हेल्प करेगा, पहली बात। तो दूसरा, सामने कि जिस तरीके से इसमें पैसों की गिनाई हो रही है या दान की जो गिनाई हो रही है वो काफी अहम हो जाती है कि इतने लोग बैठकर वहां पर दान को गिन रहे हैं या देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये काफी अहम है इस समय, क्योंकि जो ये विवाद पूरा चल रहा है जिस तरीके से, जो उसमें ऐसे समय पर ये आना और कहीं ना कहीं जो ये निकल कर सामने आ रहा है कि इस वीडियो में जिस तरीके से लोग बैठकर कर्मचारी जो उनके तैनात रहते हैं वो दान को काउंट कर रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में CCTV फुटेज और आखिर ये जो बनाया गया वीडियो वो भी किसी ने हिडन तरीके से बनाया है, तो ये भी एक कहा जा सकता है कि ये वीडियो बाहर कैसे आया, उसमें भी कई सवाल और चीजें हैं।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। अब रुक करेंगे हमारे खास कार्यक्रम ट्रंप कार्ड फेल का।

0: Great job.
1: और अब बात अमेरिका ईरान डील की करेंगे। जंग तो खत्म हो गई लेकिन डील में हार जीत का मंथन शुरू हो चुका है। विशेषज्ञों ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका ईरान डील में ट्रंप कार्ड फेल हो गया, ईरान के लिए ऑल इज वेल है। 14 पॉइंट्स वाली डील में वो सब है जो ईरान चाहता था, मसलन ना यूरेनियम अमेरिका को सौंपा, ना ही मिसाइल प्रोग्राम बंद करना होगा, 60 दिन बाद हॉर्मुज से टैक्स वसूली के लिए फॉर्मूला बनाने का मौका होगा। सबसे बड़ी बात यह कि ट्रंप के पुराने दावे के उलट ईरान को $300 अरब का फंड मिलेगा जिससे युद्ध में तबाह ईरान का फिर से पुनर्निर्माण हो सकेगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हर रोज दावा करते थे कि ईरान तबाह हो चुका है, बर्बाद हो गया है, डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है। और अब जब फ्रांस के वर्साय में साइन डील की कॉपी सामने आई तो ट्रंप के सारे दावे धरे के धरे रह गए। ऐसा लगा कि पूरी डील ईरान ने अपनी शर्तों पर लिखवाई।

0: 109 दिन के बाद आखिरकार अमेरिका ईरान ने युद्ध के खात्मे का ऐलान कर दिया। अब ना तो मिसाइलों की गूंज है, ना धमाकों का शोर, ना दुनिया को इस बात का डर है कि जंग की आग सब कुछ खत्म कर देगी। 28 फरवरी को अमेरिकी हमले के साथ शुरू हुई जंग 109 दिन के बाद 17 जून को बातचीत की मेज पर खत्म हुई। 14 पॉइंट्स वाले समझौते पर साइन हुए। फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साय पैलेस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने डील पर हस्ताक्षर किए तो ईरानी राष्ट्रपति पजिश्किन ने फारसी भाषा में लिखी डील की कॉपी पर दस्तखत किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस डील में जीत किसकी है, आखिर समझौता किसके पक्ष में रहा। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ट्रंप कार्ड फेल रहा, ईरान के लिए ऑल इज वेल है। तोलमोल में ईरान अमेरिका पर भारी पड़ा, वो सारी बातें मनवाने में कामयाब रहा जो वो चाहता था। ट्रंप डींग हाँकते थे कि ईरान तबाह हो चुका है, ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है, डील में ईरान की शर्तें नहीं चलेगी, ईरान को सरेंडर करना होगा और मुझ सब के लिए खुलेगा, ईरान का कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन डील में वो सब है जो ईरान चाहता था, मसलन हॉर्मुज 60 दिन टोल फ्री रहेगा और फिर ईरान जॉर्डन मिलकर बनाएगा मैकेनिज्म, यूरेनियम बाहर नहीं जाएगा, ईरान में ही डाउनग्रेड होगा। मिसाइल को लेकर ट्रंप ने रुख बदला, अब वो बोल रहे हैं कि जब पड़ोसी देशों के पास मिसाइल है तो ईरान को कैसे रोक सकते हैं, कहां तो फूटी कौड़ी ना देने की अकड़ थी, अब $300 अरब ईरान को मित्र देश पुनर्निर्माण के लिए देगा। 14 पॉइंट वाले समझौते की तस्वीर कुछ अलग कहानी बता रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या बातचीत की मेज पर ईरान अपनी कई शर्तें बचाने में कामयाब रहा। सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट, वही रास्ता जिसे लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने थे। ट्रंप कहते थे हॉर्मुज सबके लिए फ्री होगा, किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन समझौते के मुताबिक पहले 60 दिन हॉर्मुज टोल फ्री रहेगा और उसके बाद एक नया मैकेनिज्म बनाने की बात है जिसमें ईरान और जॉर्डन की भूमिका बताई जा रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा ईरान का यूरेनियम, ट्रंप की मांग थी कि ईरान यूरेनियम बाहर सौंपे, लेकिन डील की शर्तों के मुताबिक यूरेनियम को ईरान से बाहर भेजने के बजाय उसी जगह डिग्रेड करने का रास्ता सामने आया, यानी ईरान की जमीन पर ही प्रक्रिया।
1: ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते का एक महत्वपूर्ण बिंदु है परमाणु हथियार और संवर्धित यूरेनियम का निपटारा, दोनों देश इसका तंत्र मिलकर तय करेंगे। हालांकि समझौते में इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि वो तंत्र क्या होगा और किस तरह से विकसित किया जाएगा। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि संवर्धित यूरेनियम को डाउनब्लेंड किया जाएगा, यानी उसकी संवर्धन क्षमता को कम किया जाएगा। साथ ही ईरान परमाणु हथियार नहीं रखेगा, ये कमिटमेंट ईरान की तरफ से दिया गया है। जहां तक संवर्धित यूरेनियम का सवाल है, उस मामले में तंत्र में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ये बात ये समझौता कहता है।
0: तीसरा मुद्दा ईरान की मिसाइल ताकत, जिस पर अमेरिका सख्त रुख की बात कर रहा था, लेकिन बातचीत के बाद मिसाइल मुद्दे पर भी भाषा और रुख में बदलाव की बात कही जा रही है। और फिर आया सबसे बड़ा उलटफेर, जहां पहले कहा जा रहा था ईरान को कोई राहत नहीं मिलेगी, वहीं अब पुनर्निर्माण के लिए मदद की बात सामने आई, करीब $300 अरब तक की सहायता की चर्चा है।
2: अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के 14 बिंदुओं में से एक अहम बिंदु के मुताबिक अमेरिका को ईरान के भीतर $300 अरब खर्च करने होंगे, वो भी ईरान की सहमति के साथ। यानी कि अमेरिका एक योजना बनाकर ईरान के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इस पैसे को खर्च करेगा और इसके लिए 60 दिनों के भीतर ईरान के साथ मिलकर एक योजना बनाई जाएगी। और इस फैसले को इस तरह से देखा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के भीतर इन हमलों में जो नुकसान किया, ईरान अब उसकी भरपाई चाहता है।
0: तो क्या ये ट्रंप की जीत है या फिर क्या ईरान बिना पूरी तरह झुके अपनी अहम शर्तें बचाने में कामयाब रहा? 109 दिन की जंग के बाद बंदूकें खामोश हैं, लेकिन असली मुकाबला अब नैरेटिव का है। अमेरिका कहेगा हमने ईरान को बातचीत पर मजबूर किया, ईरान कहेगा हमने दबाव के बावजूद अपनी जमीन नहीं छोड़ी, यानी डील हो गई लेकिन जीत की कहानी दोनों देश अपने अपने हिसाब से लिख रहे हैं।
3: 109 दिन बाद भी अमेरिका ईरान का युद्ध खत्म हुआ है। फ्रांस के वर्साय पैलेस में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए और इस मौके में फ्रांस के राष्ट्रपति मौजूद थे। शांति समझौते पर ट्रंप की मोहर के फौरन बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने फारसी भाषा में लिखी डील की कॉपी पर दस्तखत किया। 14 पॉइंट्स वाले समझौते के साथ ही हॉर्मुज समुद्री रूट खोलने का ऐलान कर चुका है। हथियारों, मिसाइल्स और यूरेनियम पर ईरान की जीत हुई है और यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा। यूरेनियम को ईरान में डाउनग्रेड करने की प्रक्रिया तय की जाएगी। प्रणय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, जब ये एमओयू साइन हो रहा था उस वक्त की प्रक्रिया क्या थी? वो तस्वीरें जब सामने आई और ये कहा गया कि एक तरीके से ट्रंप फेल हुए, जो बातें पहले भी कही जा रही थी कि ट्रंप ये दर्शा रहे थे कि मेरी शर्तों पर हुआ है, सारी शर्तें तो ईरान की हैं।
4: देखिए नेहा, जैसे कि अंग्रेजी में कहा जाता है डेविल लाइज इन द डिटेल, जब उसके जो हर्फ हैं, उसके जो शब्द हैं और उस डील के आप वाक्यों को देखेंगी तो उसके अंदर ये पता चलता है कि किस तरीके से जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक उलझन थी, एक परेशानी थी और साथ ही उनकी जो हड़बड़ाहट थी कि वो 4 जुलाई यानी अमेरिका के और अपने खुद के जन्मदिन से पहले इस डील को क्लोज करना चाहते हैं, अमेरिका फंस गया है और अमेरिका इस जंग से बाहर निकलना चाहता है और उसकी जो बेचैनी थी वो सारी चीजें

0: की कंपनियों में भी वो कौन सी कंपनियां हैं, क्योंकि रियल एस्टेट कारोबारी से राष्ट्रपति बने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसमें से मुनाफा कैसे निकाला जाए। तो क्या वो वाकई में ईरान की रिकंस्ट्रक्शन डील से कोई प्रॉफिट डील निकालने की कोशिश करेंगे, या वाकई में अमेरिका की एक छटपटाहट के में हासिल की गई डील है? क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तेहरान से आ रहे आने वाले जो बयान है वो अमेरिका के लिए उलझन बढ़ा सकते हैं। साथ ही अमेरिका में एक बड़ी कमेंट्री शुरू हो गई है कि क्या जो डील राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत की है, साइन की है, वो 2015 की जेसीपीओए डील से कुछ बेहतर है? क्योंकि जेसीपीओए की 2015 की जो डील थी उसमें भी तो यही था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रखेगा, उसके एवज के अंदर अमेरिका कुछ कॉम्पनसेशन उसे देगा, इसके साथ साथ रिकंस्ट्रक्शन ईरान के अंदर किया जाएगा और ईरान का जो इंटीग्रेशन है उस पर से सैंक्शन खत्म किए जाएंगे। इसको ही तो खारिज किया था राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में, और ये कहते हुए कहा था कि ये सबसे खराब डील हुई है। अमेरिकी टैक्स डॉलर मनी जो है, अमेरिका के टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो ईरान को दिया जा रहा है, जहाज भर भर के पैसे दिए जा रहे हैं और इससे इसमें अमेरिका को नुकसान हुआ है। तो क्या अब जो उन्होंने डील की है उन दोनों का कंपैरिजन यदि किया जाए तो क्या वाकई में एक मुनाफे की डील राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करके आए हैं या जल्दबाजी की डील वो करके लौटे हैं? ये बड़ा सवाल अमेरिका में उभर रहा है।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ईरान अमेरिका जंग में समुद्री रास्ता ऑलमोस्ट बहुत बड़ा फैक्टर था। इस रास्ते को बंद कर ईरान ने पूरी दुनिया को एक तरीके से बंधक बना लिया था। अब डील हो गई है तो हॉर्मुज रूट पर भी ईरान हावी होता दिख रहा है।
2: दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा समुद्री रास्ता जिसकी चौड़ाई भले कम लेकिन ताकत इतनी कि यहाँ हलचल हो तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाए। यह है हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से गुजरती है दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम लाइफलाइन। ओमान और ईरान के बीच सिर्फ करीब 40 किलोमीटर का यह रास्ता दुनिया के लिए तेल की नस जैसा है, क्योंकि खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल और गैस इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। इसी हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा टकराव रहा। ट्रंप का दावा था ईरान को हॉर्मुज पर अपनी मर्जी नहीं चलाने देंगे, दुनिया के इस अहम रास्ते पर किसी एक देश का दबदबा नहीं होगा।
3: We'll have the strait opened up. Now, right now, we have it closed. We have total control of the strait. And the fact that it's closed, you know, they would have opened it up 3 days ago. They came to us and they said, we will agree to open the strait. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. And it'll open when they make a deal or something else happens that's very positive.
2: लेकिन ईरान भी लगातार कहता रहा कि हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा और संप्रभुता का सवाल है। तेहरान का कहना था युद्ध से पहले वाली स्थिति में वापसी आसान नहीं होगी। अमेरिका ईरान समझौते के 14 पॉइंट वाले एमओयू ने हॉर्मुज को फिर चर्चा के केंद्र मिला दिया है, क्योंकि सवाल ये है जिस हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर दुनिया चिंतित थी क्या वहां नई व्यवस्था बनने जा रही है। समझौते के मुताबिक पहले 60 दिन हॉर्मुज को टोल फ्री रखने की बात कही गई है, यानी जहाजों की आवाजाही पुराने तनाव से बाहर लाने की कोशिश होगी, लेकिन असली पेच इसके बाद है, क्योंकि 60 दिन के बाद हॉर्मुज के लिए एक नया मैकेनिज्म बनाने की बात कही गई है, यानी पुराना सिस्टम नहीं एक नया संतुलन। ईरान और जॉर्डन की भूमिका की बात सामने आ रही है, यानी हॉर्मुज का भविष्य सिर्फ वॉशिंगटन से तय नहीं होगा।
4: अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग का खात्मा उस समझौते पर दस्तखत के साथ हुआ जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पजश्कियान ने अपनी मोहर लगाई। साथ ही दुनिया ने राहत की सांस ली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुल जाएगा, लेकिन अभी वो कई पेच बाकी, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि 60 दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी तरीके का चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद वो नई और बती हुई व्यवस्था के अंदर जहाजों के ऊपर चार्ज लगाएगा, उनसे टोल वसूल करेगा। यानी इस समझौते में अभी भी कई कड़ियां ऐसी हैं जो आगे इसके भविष्य को लेकर सवाल खड़ा कर सकती है।
2: दुनिया की नजर इसलिए हॉर्मुज पर है क्योंकि यहाँ तनाव बढ़ा तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, तेल की कीमतें, शिपिंग कॉस्ट और महंगाई तक इसका असर पहुंच सकता है। अगर 60 दिन बाद हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल हो जाएगा, टोल टैक्स लेगा, तो मैरिटाइम फ्रीडम कहां होगी? समुद्री जहाजों की आवाजाही की आजादी कैसी रहेगी? समुद्री सुरक्षा के साथ एनर्जी सिक्योरिटी का मंत्र कैसे काम करेगा? जिनेवा से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
1: रुक रहे हैं एक्चुअली से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
2: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to FinQuest.com, get yourself a $30 coin pack for just $10.
3: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
4: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
5: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
7: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics. The hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
8: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
9: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश.
10: बंगाल से शुरू हुई बगावत महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में दस्तक दे रही है. टीएमसी टूट चुकी है और उद्धव सेना टूट के कगार पर है. अब दावा यह है कि अखिलेश के सांसद भी उनका साथ छोड़ने को बेकरार हैं। ओपी राजभर ने इस दावे के पीछे राम गोपाल यादव के एक खत का हवाला दिया है.
11: राम गोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया तो चिट्ठी में क्या लिखा हो पता है? और गुमती रिवर फंड में जो परिवार का हमारे लड़के का है और शिवपाल जी का नाम है लोगों को बचाना है और ये फला फला सांसद हैं इनको आपके साथ हम भेज देते हैं हम लोगों का जान बचाना.
10: बगावत के इन दावों को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है.
12: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं. हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं. हम लोग तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे. समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती. वो साइकिल सैफ ही जा सकती है लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती.
13: समाजवादी पार्टी ने इन्हें कितने बार हराया है तो ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं.
10: समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी दूसरे दलों को डरा रही है.
14: गाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना?
10: अगर ये दावा सच होता है तो विपक्ष के लिए बड़ा झटका साबित होगा. समर्थ श्रीवास्तव लखनऊ आज तक.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
5: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
6: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
7: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
9: ट्रंप के दस्तखत के साथ ही दुनिया ने राहत की सांस ली है इस पल का इंतजार अमेरिका और ईरान को था दुनिया की नजरें दोनों देशों की ओर टिकी हुई थी कि कब शांति समझौते को दोनों देश साइन कर स्वीकार करेंगे फ्रांस दौरे पर G7 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे ट्रंप ने राष्ट्रपति मैक्रों के साथ वर्साय में डिनर के बाद इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया उनके साइन करते ही मैक्रों ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से हाथ मिलाकर उन्हें इस कामयाबी की बधाई दी ईरान के साथ एमओयू पर दस्तखत के बाद ट्रंप ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया वैसे तो दो दिन पहले ही एमओयू पर अमेरिका और ईरान ने डिजिटली साइन कर दिए थे पर अब उसकी कॉपी पर ट्रंप ने आधिकारिक रूप से अपने दस्तखत कर दिए ईरान की ओर से भी शांति समझौते पर हुए हस्ताक्षर की जानकारी दी गई है
10: به خاطر اینکه دو طرف امضا کرده در مورد توانمندی دفاعی ایران به هیچ عنوان در هیچ روندی و با هیچ طرفی صحبت نخواهد شد
9: امید ہے حالات تیزی سے سامان ہوں گے فرانس کے ایوین سے پرنے اپادھیائی کے ساتھ آج تک بیرو
11: सोमवार और मंगलवार को दो दिनों में 19 घंटे तक एसआईटी ने उस मामले की जांच की है जिसे लेकर लगातार सियासी हमले तेज हैं।
12: आज उस चढ़ावे की आस्था को चीजों को आपने लूट लिया कहां हैं आपके सारे लोग जो बड़ी बड़ी बात करने वाले
13: एसआईटी के माध्यम से जो जांच होने जा रही है एसआईटी की जांच कौन करेगा
11: जिस एसआईटी पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं उस जांच टीम ने अयोध्या के राम मंदिर परिसर में तमाम सुराग तलाशे हैं जानकारियां जुटाई है जानने की कोशिश की है कि क्या चढ़ावे का पैसा सीधे दान पेटी से निकाला जा सकता है जांच की है कि चढ़ावे के पैसे की गिनती से लेकर बैंक में जमा कराने की प्रक्रिया के बीच में कहां से चोरी की गई। चंदा चोरी के आरोपियों में एक नाम है चंपत राय के ड्राइवर रमाशंकर यादव का। एसआईटी की जांच के बीच वो अब सामने आया है और तमाम आरोपों को निराधार बता रहा है।
14: जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार है, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है।
11: मंगलवार को एसआईटी ने मंदिर परिसर में करीब 11 घंटे तक जांच की। 15 जून को भी 8 घंटे की जांच चली थी। अब इस मामले को लेकर पूर्व कार सेवक संतोष दुबे ने पुलिस से शिकायत भी कर दी है। मयंक शुक्ला के साथ संतोष कुमार, अयोध्या आज तक।

उद्धव की पार्टी में बगावत का तूफान, संसदीय दल की बैठक से 6 सांसद नदारद, नाराज नेतृत्व ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, बागियों को पार्टी से बाहर निकालने की तैयारी। हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को झटका, स्पीकर के फैसले पर स्टे से फिलहाल इनकार, विद्रत बनर्जी बने रहेंगे विपक्ष के नेता, 28 जुलाई को अगली सुनवाई। समाजवादी पार्टी में बगावत पर दावों की जड़ी, अब संजय निषाद का दावा, हमारे संपर्क में समाजवादी सांसद, शिवपाल से लेकर अखिलेश तक का दो टूक इनकार। राम मंदिर चंदा चोरी की जांच में बड़ा खुलासा, सीसीटीवी से छेड़छाड़ के सबूत, रडार पर 200 से ज्यादा चेहरे, बैंक की भूमिका की भी जांच। और पेरिस में ईरान अमेरिका के बीच फाइनल डील, फॉक्स न्यूज से खबर, जेनेवा में नहीं होगा कोई कार्यक्रम, 14 सूत्रीय समझौते के बावजूद लेबनान पर इजराइल के हमले जारी।

0: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वांशु दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। जैसा कि आप जानते हैं, 2 बजते हैं और हम न्यूज रूम लाइव में आपके सामने होते हैं। तो सबसे पहले अभी हम आपको ये बता देते हैं कि आज वो कौन सी खबर है जिनके बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे उद्धव ठाकरे की। अब टूट रही है और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी टूट है। 6 सांसद नदारद होते हैं। अब बहुत कुछ खबरें आ रही है, इनसाइड स्टोरी पूरी हम आपको बताएंगे। जो दूसरी बड़ी खबर है वो भी हम आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले क्या होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी में बगावत की अटकलें अब आ रही हैं। हालांकि अखिलेश यादव, शिवपाल यादव कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरी बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे और तीसरी बड़ी खबर वो भी टीएमसी से जुड़ी, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम आपको बता रहे हैं टीएमसी में बिखराव जा रही है। अब ममता बनर्जी को किस तरह का झटका लगा हम आपको बताएंगे। और ठीक 2:30 बजे हम बात करेंगे राम मंदिर में जो चढ़ावे को लेकर खबरें सामने आ रही हैं और उसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं महाराष्ट्र लिए चलते हैं और महाराष्ट्र में आपको बताते हैं कि उद्धव गुट में जो टूट की खबरें आ रही हैं, एक बड़ा झटका लगा। 6 सांसद बागी बताए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि अब इन 6 सांसदों को लेकर उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो काफी सख्त सी अब दिखाई दे रही है। यूबीटी की संसदीय दल की बैठक हुई दिल्ली में। बैठक में 9 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ 3 सांसद, कौन कौन से, अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे पहुंचे, यानी 6 सांसद मीटिंग में हाजिर नहीं थे। अब यही वो सांसद हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत की और जल्दी वो अपना रणनीति का खुलासा भी करेंगे। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक संजय यादव बागी सांसदों का नेतृत्व करेंगे। उधर बागी सांसदों को लेकर शिवसेना यूबीटी ने गहरी नाराजगी जताई और अब से कुछ देर पहले पार्टी नेता संजय राउत और अरविंद सावंत ने मीडिया को संबोधित किया और बताया कि बागी सांसदों से पार्टी ने जवाब मांगा है।
1: नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी हित का उल्लंघन है। पार्टी का आदेश नहीं माना है तो अभी उस मुताबिक हम उस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है। उनको सौंपा दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द। हमने कुछ उपाय, संडे को सब लोग एक साथ थे, कुछ वर्चुअली आए थे, आज लापता है। अब लापता कहाँ है, क्या है, उनको पता है, हमको उनको ढूंढने में आप कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, नेचुरल लोग है, 70-70 साल के लोग है, 2-2 बार 3-3 बार एमपी बने हमारे पार्टी से, तो हम क्या उनको बताएं। लेकिन इस बार उनको महंगा पड़ेगा चाहे कुछ भी। सर मराठा,
0: और पिछले कुछ दिनों से संजय राउत के भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। अब संजय राउत कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जिम्मेदार है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ने वालों में सबसे बड़ी गलती सुप्रीम कोर्ट की है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कर रही होती तो ये नौबत नहीं आती, ये संजय राउत की तरफ से कहा गया है।
2: कभी रुक करेंगे,
1: देखेंगे। अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं।
3: सर जिस दिन
1: उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जिया उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव है।
0: अरविंद सावंत का भी बयान सामने आया और अरविंद सावंत भी ये बात कह रहे हैं कि अगर बागी मिले हैं और वो स्पीकर से मिले हैं तो फिर चिट्ठी आखिर जारी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं अभी तक।
4: अगर चिट्ठी लिखी है तो निर्गत बताओ तो सही है। हमने चिट्ठी अगर आप मुझे सो भी आप जानकारी हमसे लेते हो जो और आपकी उनकी सही बात कर बात करते हो, उनसे एक बार पूछो तो सही, भाई तुम्हारी चिट्ठी का है बताओ।
5: वो तो
4: एक हमारी जो है ना, तो हमने जो नोटिस दी, हमने जो चिट्ठी लिखी
5: सार्वजनिक की है,
4: सभी सार्वजनिक कर दिया ना, तो उनका क्यों नहीं करते। तो चोरी छुपके करने वाले लोग, उनको पता है कि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो उसके लिए डर रहे, तो हम अभी उनकी नोटिस
0: हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, बातचीत उनसे करते हैं। हिमांशु ये बताइए कि अब इस बगावत को लेकर उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या किया जा रहा है और इन बागी सांसदों की तरफ से क्या अभी तक कुछ भी कहा गया इस मामले में, हो क्या राय आगे।
6: 6 बागी सांसद हैं और आज जब पार्टी की संसदीय दल की बैठक बुलाई गई उसमें
3: ये छह सांसद नहीं पहुंचे, तीन सांसद पहुंचे जिनमें अनिल देसाई हैं, अरविंद सावंत हैं, भाऊराज जो है वाजे हैं, ये जो है वो सांसद पहुंचे और छह सांसद नहीं पहुंचे। तो इन छह सांसदों को जो है पार्टी की तरफ से जो है वो कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, एक हफ्ते का समय दिया जाएगा कि आप बताइए आप पार्टी की विप होने के बावजूद जो है संसदीय दल की बैठक में क्यों नहीं आए हैं। उसके बाद जो है पार्टी की तरफ से जो एक्शन लिया जाएगा, अगर वाजिब कारण नहीं बताया गया या जवाब नहीं दिया गया तो पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से जो है वो इनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए जो है स्पीकर को पत्र लिखा जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि इन्होंने पार्टी की जो विप है उसका उल्लंघन किया है। अब देखना ये है कि पार्टी की जो विप है ये संसदीय दल पे लागू होती है या नहीं होती है की बैठक के लिए, या फिर संसद की कार्यवाही जब चल रही हो उसके लिए ही लागू होती है। और विप जो है वन लाइन, टू लाइन और थ्री लाइन का होती है। थ्री लाइन विप अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपकी संसद की सदस्यता जा सकती है, लेकिन सिर्फ विप का मामला है या अन्य मामले हैं, क्योंकि कल जो है इन तीनों
0: मतलब धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ रही है और बहुत सी स्थितियां भी स्पष्ट होंगी, थोड़ा सा वक्त और लग सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, इनसाइड स्टोरी है क्या, ये हुआ क्या पिछले कुछ दिनों में? तो देखिए 16 जून आप याद कीजिए, 16 जून यानी दो दिन पहले सभी बागी सांसद दिल्ली पहुंचते हैं, बताते हैं कि विमानों से आते हैं, है ना, और ये सभी बागी सांसद दिल्ली पहुंचते हैं। ये 16 तारीख की बात की जा रही है। शिवसेना में उद्धव ठाकरे जो यूबीटी है उसमें टूट की इनसाइड स्टोरी हम आपको बता रहे हैं। एमएलए प्रताप सरनाइक वो भी दिल्ली आते हैं इसके साथ, और कौन कौन से नाम है वो भी हम आपको बता देते हैं। एकनाथ शिंदे जयपुर होते हुए मुंबई से दिल्ली पहुंचते हैं। अब यह भी बताया कि श्रीकांत शिंदे और ओम राजे निंबालकर सुबह 7 बजे स्पीकर ओम बिरला से मिलते हैं, यह खबर आती है। मुंबई से दिल्ली पहुंचे और उसके बाद स्पीकर से मिलते हैं। अब ओम प्रकाश राजे निंबालकर, ये देखिए श्रीकांत शिंदे एकनाथ शिंदे के बेटे, वो आते हैं 7 बजे सुबह, मुलाकात होती है, उसके बाद स्पीकर से मुलाकात होती है। ये सारे सीक्वेंस आप जोड़िए तो क्या सामने आता है, ऑपरेशन टाइगर इसको नाम दिया गया था। सुबह 10:20 पर यह बताया जा रहा है कि स्पीकर ओम बिरला से मिलते हैं और इस दौरान 6 सांसदों ने साइन किया हुआ प्रस्ताव स्पीकर को दिया। यही वो 6 सांसद बताए जा रहे हैं जो कि बागी हो गए हैं। सिर्फ तीन सांसद जो अभी उद्धव ठाकरे के साथ में खड़े हुए हैं, जिनका जिक्र हमने आपको पहले किया, जिनके बारे में जानकारी आपको बताई। लेकिन अब आप समझिए, अब ये बात कहा जा रहा है कि ये जितने भी 6 बागी सांसद है ये कहां जाएंगे, ये शिवसेना एकनाथ शिंदे वाले गुट में। लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा है इस बगावत पर, वो आप सुनिए।
5: देखो उपाटा के बैठक में 6 सांसद जो गैर हाजिर हुए इसका मतलब अब उन्होंने अपना अलग सा गुट बना लिया है, वो शायद ओम बिरला के पास उन्होंने राइटिंग में दे भी चुके हैं। उसके बाद अब ओम बिरला उनको लीगली गठ को मान्यता देंगे ऐसा मुझे लगता है, और उसका जब लेटर आएगा वो अधिकृत पने उनका गुट स्थापन करेंगे। उसके बाद उनको कौन से पक्ष में जाना है, कहाँ रहना है, ये वो 6 खासदार वो डिसाइड करेंगे। अगर वो हमारे तरफ आना चाहते हैं तो उसका निर्णय एकनाथ शिंदे साहब लेंगे। एकनाथ शिंदे साहब जो भी निर्णय लेंगे वो हमको सबको मंजूर रहेगा।
0: ऋत्विक भालेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ऋत्विक जरा ये बताइए, शिवसेना दोनों गुट की बात मैं कर रहा हूँ, यूबीटी की तरफ से और शिवसेना की तरफ से, अब आगे की क्या रणनीति बनाई जा रही है?
6: जी देखिए, आज संसदीय दल की बैठक जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने संसद में बुलाई थी वो एक औपचारिकता ही कहा जा सकता है, क्योंकि इसी बैठक में ये तय होना था कि साथ में कौन है और छोड़कर कौन जा चुके हैं। तो आज ये तय हो चुका है कि जो 6 सांसद जिनका नाम कल से चल रहा है वो सभी 6 सांसद जो आज इस संसदीय दल की बैठक में उपस्थित नहीं रहे वो कहीं ना कहीं अब बागी करार दिए गए हैं, जिन्हें संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे के गुट के नेता हो गद्दार कह रहे हैं। हालांकि इन्होंने अधिकृत तौर पर अब तक ये कहीं पर भी नहीं कहा है कि उन्होंने एक अलग से ग्रुप फॉर्म किया है, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर एक पत्र सौंपा है। हालांकि इसकी कुछ तकनीकी प्रक्रिया जो है वो अभी भी शुरू है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में आज कुल 17 विधान परिषद के सीटों के चुनाव भी है और जिसमें से 6 अनपोज चुन के आए हैं, 11 में आज वोटिंग होने वाली है। तो इस सारी प्रक्रिया में चाहे मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, ये सभी व्यस्त है, वो अपने इस चुनाव में ध्यान दे रहे हैं। और बताया ये जा रहा है सूत्रों द्वारा कि एक बार मतलब शाम 5 या 6 बजे तक ये चुनाव जैसे ही खत्म होता है वैसे फिर एक बार इस नए गुट फॉर्मेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। कई सारे वकील, कई सारे जानकार जो लॉ के हैं उनसे लगातार बातचीत शुरू है। एक बार ये प्रक्रिया पूरी तरह से सील हो जाती है तभी जाकर अधिकृत तौर पर इसकी घोषणा की जाएगी। अब ये घोषणा कब होगी इस पर भी कई अटकलें लग रही हैं। कहा जा रहा है कि
7: स्पष्ट हो जाएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अयोध्या की बात कर लेते हैं। अयोध्या में राम मंदिर मामले में जो चंदा का मामला है उसकी SIT की जो जांच हो रही है वो चंपत राय पर भारी पड़ रही है। अब क्यों पड़ रही है, इसके पीछे की वजह हम आपको बता देते हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या की यात्रा है कल, और अयोध्या प्रशासन ने मुख्यमंत्री की कल की अयोध्या यात्रा के प्रोटोकॉल में चंपत राय की जगह उनके प्रतिनिधि को भेजने को कहा। जो प्रोटोकॉल प्रशासन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बनाया है उसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय की जगह उनके प्रतिनिधि को भेजने की बात की गई है। अमूमन मुख्यमंत्री की अयोध्या यात्रा या दर्शन पूजन में गोपाल राय तो मौजूद रहते थे, लेकिन चंपत राय पहले भी कम ही मौकों पर दिखाई दिए हैं। हालांकि इस प्रोटोकॉल को चंपत राय से हो रही पूछताछ SIT की पूछताछ से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम के कार्यक्रम में चंपत राय नहीं होंगे, प्रोटोकॉल प्रशासन की तरफ से ऐसा कहा गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT की जांच चल रही है, SIT जांच कर रही है। समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। समर्थ, ये बताइए कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं लेकिन प्रोटोकॉल प्रशासन ने कहा है कि चंपत राय की जगह उनके प्रतिनिधि पहुंचे, क्या जांच की वजह से ऐसा हुआ? दोबारा जुड़ेंगे हम, दोबारा बात करेंगे कि क्या SIT जांच जो चल रही है जिसमें चंपत राय का नाम आ रहा है, चंपत राय के साथ साथ में जो उनके ड्राइवर हैं टिन्नू यादव उनका नाम आ रहा है, क्या इस वजह से सीएम की यात्रा के प्रोटोकॉल से बाहर किया गया है, उनकी जगह उनके प्रतिनिधि को भेजने को कहा गया है, ये बड़ी बात है और ये समझना होगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि इससे पहले भी बहुत ज्यादा नहीं देखे गए हैं, इससे पहले भी जब आते थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तब गोपाल राव मौजूद रहते थे। देखिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सांसदों की बगावत की खबर आई, उससे पहले तृणमूल कांग्रेस में जो हुआ वो आपने देखा, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है मामला। और उत्तर प्रदेश में क्या कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है उससे कई सारे सांसद बाहर जा सकते हैं और ये दावे अलग अलग जगह से किए जा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी इन सभी का खंडन कर रही है। अब देखिए यूपी में अपने अपने दावे हैं, अब आप इस तस्वीर को समझिए। अब ओम प्रकाश राजभर आते हैं, क्या दावा करते हैं? दावा होता है कि 25 से 27 समाजवादी सांसद टूटेंगे। अब फखरुल चांद वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दावा करते हैं कि अरुण राजभर अखिलेश यादव से मिले और वो तो विलय करना चाहते हैं।
8: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे, हम लोग तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती, वो साइकिल सैफ ही जा सकती है लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती।
9: ये राम गोपाल जी से पूछिए, हमारी बात अगर गलत है तो राम गोपाल जी बताओ कि क्या लिखा लो मन,
10: आप बताइए ना सूत्र के।
9: अरे हम कहे बताएंगे,
10: भी तो सूत्र है।
9: नहीं, हमारा सूत्र तो बता तो दिए कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही है, उन्होंने बताया कि इनसे इनसे संपर्क करा लीजिए, ये सब चले जाएंगे, बात हो गई है।
10: पार्टी अपने हिसाब से तोड़ने को तैयार है,
9: अपन जान बचाओ। बते गोमती रिवर फ्रंट में राम गोपाल जी के बेटे का नाम है, सुपाल जी का नाम है, जानत है ना सब लोग, इन लोगों का नाम है।
11: आए थे सरकार बनाने लोग, सरकार बन नहीं पाई, तो अब बाहर रहेंगे तो जनता उनसे कहती है ना कि साहब कोई हमें आपने वादा किया था, तो सारे ज्यादातर सांसद विधायक उनके पता हमारे पास भी संपर्क में है कि साहब हमको किसी तरीके दिल्ली ले चलो, अब दिल्ली बात कराए।
7: यही कहा जा रहा है कि ये सारी जो तैयारी हो रही है 27 के लिए हो रही है, इसीलिए अपने अपने दावे किए जा रहे हैं माहौल बनाने के लिए, अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए, लेकिन इनका खंडन भी किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी से सनातन पांडे और दूसरी तरफ अरुण राजभर क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको।
12: ब्राह्मण सम्मेलन कराया गया और 10-20 ब्राह्मणों को आगे बैठा करके समाजवादी पार्टी अपने सजातियों को पीछे बैठा कर टोपी पहना के ब्राह्मण बना दिया और बागी बलिया के लाल को तिरस्कृत कर दिया गया, अपमानित कर दिया गया, गेट में घुसने नहीं दिया।
13: किनका जिक्र कर रहे हैं आप यहाँ पर?
12: सांसद हैं बलिया के, वो पहले से प्लानिंग थी
13: क्या?
12: यही प्लानिंग थी कि इस तरीके से करना है और बैठक करना है, इस तरीके से इनको रोकना है, उनको रोकना है और ये सब वहां मैनेज हो रहे हैं।
13: किसकी प्लानिंग थी
12: ये? समाजवादी पार्टी मुखिया की प्लानिंग थी, ये स्वतः ये प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करके ऐसे लोगों को तिरस्कृत करते हैं जो उनके खुद के दल में।
14: हे प्रभु बचाए रखिए। तो हम जनजात समाजवादी हैं, हम बीच में समाजवादी में नहीं आए हैं कि समाजवादी में हम लाभ लेने के लिए आए। हम दो बार निर्दल चुनाव लड़का के अपने हैसियत को बताने काम किया, तब पार्टी ने मुझे स्वीकार करने का काम किया था। तो उनका ये कहना कि अगर बलिया का सांसद प्रतिनिधित्व करेगा, अगर ये उनका कहना सही हो जाएगा तो सनातन पांडे जीवन में राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे।
7: अब देखिए जब इस तरह की दावे, इस तरह की बातें की जाती है तो लगता है कि 27 की तैयारियां होने लगी है। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
16: लुकिंग टू ट्रेड इन योर करंट व्हीकल? वी विल गेट यू द मोस्ट फॉर योर ट्रेड। At Byers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
17: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
16: Experience the Byers difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
17: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
18: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
19: This is the sound of Jack. Buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
20: Oh, ouch.
19: However you make money work, we can work with that.
21: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
22: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
23: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
24: Savaris.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
9: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
6: जहां खबर वहां खबरदार।
10: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
12: राष्ट्रपति जी आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है।
13: फ्रांस में जब पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई तो पिछले 16 महीनों में रिश्तों पर जमी बर्फ कुछ यूं पिघली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब मीडिया के सवालों के जवाब देने लगे तो पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए।
14: India can do anything they want with us. We have the best relationship. We cannot be closer than we are. Would you say that, sir? I don't think we can be any closer. Both him and I and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer.
13: भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर आज तक के सवाल के जवाब में ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि वो हमेशा भारत के साथ खड़े हैं।
15: You said many a times that India has a great friend in United States, in Washington DC, in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India, the leader of India?
14: As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you everyone here, they love India, they have tremendous respect for this man.
13: पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा भी उठाया।
12: एक्सलेंसी, आप जानते हैं कि मैरिटाइम की ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
13: भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर जब सवाल हुआ तो ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि अगर कभी भारत पर संकट आया तो अमेरिका ढाल बनकर खड़ा रहेगा। वहीं पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया में ट्रंप के शांति के प्रयासों की भी तारीफ की।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
1: Drive home a new 2026 Subaru Outback with 0.9% APR financing for up to 48 months.
0: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
2: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
3: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
5: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
6: मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
9: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
6: जहां खबर वहां खबरदार।
10: इन एसोसिएशन विद
11: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: नीट पेपर लीक को क्लीन बनाने के लिए भारत सरकार ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया है।
13: बट टेलीग्राम हैज बीन अ चैनल व्हिच हैज बीन मिसयूज्ड अब्यूज्ड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम फॉर सेवरल फैक्टर्स।
12: एनटीए के मुताबिक टेलीग्राम पर लगाएगी रोक 22 जून 2026 तक जारी रहेगा। हालांकि आदेश कब से लागू होगा इसकी तारीख नहीं दी गई है। नीट री एग्जाम 21 जून को होगा। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है। हालांकि एनटीए के इस फैसले पर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। नीट एग्जाम रीटेस्ट के लिए टेलीग्राम को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। मोदी जी को सबसे पहले अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाहिए जिन्होंने लाखों युवाओं का भविष्य ब्लॉक कर दिया है।
14: टेलीग्राम पर रोक लगाने से क्या होगा? पेपर जो लीक हो रहा है वो तो सिस्टम के अंदर से हो रहा है, टेलीग्राम से नहीं हो रहा है।
12: सूत्रों के मुताबिक नीट यूजी री एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्रों के पैकेट पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। समय पर डिलीवरी और दूर दराज दुर्गम इलाकों में सुरक्षित तरीके से प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए भी MI-17 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी सक्रिय है। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं के साथ स्थानीय पुलिस वाहनों के साथ स्कॉट्स गाड़ियां चलेंगी। नीट परीक्षा केंद्रों पर भी CRPF, CISF समेत दूसरे सुरक्षा बलों की निगरानी रहेगी। सरकार के सामने नीट का री एग्जाम बिना पेपर लीक के कराना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसे लेकर सारी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। आज तक ब्यूरो।
15: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

उद्धव की पार्टी में बगावत का तूफान, संसदीय दल की बैठक से 6 सांसद नदारद, नाराज नेतृत्व ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, बागियों को पार्टी से बाहर निकालने की तैयारी। हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को झटका, स्पीकर के फैसले पर स्टे से फिलहाल इनकार, रिद्वत बनर्जी बने रहेंगे विपक्ष के नेता, 28 जुलाई को अगली सुनवाई। समाजवादी पार्टी में बगावत पर दावों की झड़ी, अब संजय निषाद का दावा, हमारे संपर्क में समाजवादी सांसद शिवपाल से लेकर अखिलेश तक का 2-2 इनकार। राम मंदिर चंदा चोरी की जांच में बड़ा खुलासा, सीसीटीवी से छेड़छाड़ के सबूत, रडार पर 200 से ज्यादा चेहरे, बैंक की भूमिका की भी जांच। और पेरिस में ईरान अमेरिका के बीच फाइनल डील, फॉक्स न्यूज से खबर, जिनेवा में नहीं होगा कोई कार्यक्रम, 14 सूत्रीय समझौते के बावजूद लेबनान पर इसराइल के हमले जारी।

0: और एक बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार की आरा में एक एनकाउंटर को लेकर लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है। सड़कें जाम कर दी गई हैं, हाईवे जाम कर दिया गया है, लोग अब आग बबूला हो गए हैं। एनकाउंटर को फेक बताते हुए लोगों ने हाईवे जाम किया, दोषी पुलिस वालों पर एक्शन की मांग की। बैलोटी गांव के पास आरा बक्सर हाईवे पर भारी संख्या में लोग जमा हो गए, सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। इस सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई, जाम खुलवाने पुलिस को आना पड़ा। पुलिस ने लाठियां भी चलाई और प्रदर्शनकारियों और पुलिस में फिर से झड़प शुरू हो गई। लेकिन ये मां ये कह रही है कि ना बेटे पर कोई उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया, उसकी जान ले ली। और उसके बाद ये तस्वीरें देखिए, जाम लगा हुआ है, गाड़ियों की लंबी कतार है, ट्रक बीच रोड पर है, हाईवे है ये। और पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वो एनकाउंटर की तस्वीर है, जहां पर एनकाउंटर किया गया है। नाटकीय तस्वीरें सामने आती हैं और उसके बाद परिवार के लोग आरोप लगाते हैं कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया है। और एनकाउंटर के खिलाफ लोगों का आप आक्रोश देखिए कि बलोटी गांव के पास बक्सर हाईवे, आरा बक्सर हाईवे जाम हो गया। खेतों तक में आप देखिए कि लोगों हैं और पुलिस लाठीचार्ज करती है, उनको भगाने की कोशिश करती है, भीड़ को तर बितर करती है, लेकिन भीड़ मानती नहीं है। फिर भीड़ और पुलिस का सामना आमना सामना फिर हो जाता है और ये मामला और ज्यादा बढ़ जाता है। रोहित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, अब क्या हो रहा है इस मामले में?
1: हिमांशु, देखिए आज सुबह से ही तकरीबन 5 घंटे तक ये आरा बक्सर का जो हाईवे है वो पूरी तरीके से जाम रहा, क्योंकि कल जिस तरीके से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है उस एनकाउंटर को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, आरा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिसे पुलिस ने अपराधी कहकर जो है जिसका एनकाउंटर कर दिया उसको उसका परिवार वाले बता रहे थे कि वो निर्दोष है और उसका कोई आपराधिक इतिहास तक नहीं है, तो फिर क्यों उसका एनकाउंटर कर दिया गया जब उसने सरेंडर कर ही दिया था, अपनी पिस्तौल जो है पुलिस को दे दी थी। तो सवालों के घेरे में है और इसी को लेकर आज आक्रोशित ग्रामीणों ने भरत तिवारी के शव को लेकर घंटों तक जो है वो सड़क जाम करके रखा और पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों को बुलाने की मांग कर रहे थे कि मौके पर आए, उनसे जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा जांच का तब तक वो शव को लेकर बैठे रहे। और इसी दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा और आखिरकार 5 घंटे के बाद जब पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी डीएम डीआईजी सब वहां पर पहुंचे उसके बाद किसी तरीके से मान मनोवल हुआ। ग्रामीणों को परिपीड़ित परिवार को समझाया गया कि जांच का आश्वासन दिया गया, उसके बाद ही ग्रामीणों ने और परिवार वालों ने वहां से शव को उठाया और अब शव को जो है अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है। लेकिन 5 घंटों तक कहे तो आरा बक्सर जो हाईवे है वो पूरी तरीके से उस पर ट्रैफिक जो है वो ठप रहा।
0: रोहित, एक बात बताइए, क्या अब इस मामले में जांच या कोई कमेटी बिठाई जा रही है तो जो ये बात पता लगा सके कि ये जो एनकाउंटर हुआ ये वाकई एनकाउंटर था या फर्जी एनकाउंटर था?
1: देखिए, 2 दिन पहले जिस तरीके से भरत तिवारी ने बंदूक तान दी थी पुलिस पर और 48 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा, वो बार बार कई जगहों पर जो है पुलिस को जो है वो पिस्तौल तानते हुए नजर आया, वीडियो वायरल हुआ, तो पुलिस ने उसे अपराधी कह के जो है कल उसका एनकाउंटर कर दिया। लेकिन उसके बाद साथ ही साथ उसको विक्षिप्त भी पहले जो है वो करार दे दिया गया था 2 दिन पहले, लेकिन कल जिस तरीके से उसका एनकाउंटर हुआ है उस आदमी ने वायरल वीडियो जब सरेंडर भी उसने कर दिया, उसने अपनी पिस्तौल जो है वो पुलिस को दे दी, उसके बाद भी उसको अगर उसका एनकाउंटर किया गया जिसमें उसकी जान चली गई, इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों, जब उसने अपनी पिस्तौल दे ही दी थी पुलिस को, सरेंडर कर दिया था, तो क्यों उसका एनकाउंटर किया गया, इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब आश्वासन मिला है कि इसकी पूरी जांच कराई जाएगी, लेकिन आरा पुलिस की कार्यशैली पूरे तरीके से इस मामले में जो है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि भरत तिवारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, वो किन कारणों में उसको जो है उसको उसका एनकाउंटर किया गया, क्या परिस्थिति कुछ ऐसी नहीं थी, क्या उसको पकड़ा जा सकता था, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो सवालों के में जो है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि भरत तिवारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, वो किन कारणों में उसको जो है उसको उसका एनकाउंटर किया में जो है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि भरत तिवारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, वो किन कारणों में उसको जो है उसको उसका एनकाउंटर किया गया, क्या परिस्थिति कुछ ऐसी नहीं थी, क्या उसको पकड़ा जा सकता था, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो सवालों के में जो है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि भरत तिवारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, वो किन कारणों में उसको जो है उसको उसका एनकाउंटर किया गया, क्या परिस्थिति कुछ ऐसी नहीं थी, क्या उसको पकड़ा जा सकता था, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो सवालों के घेरे में है।
0: सवालों के घेरे में हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, दूध का दूध और पानी का पानी होने में। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी लूट की खबरों की, यानी चोरी की खबरों की।

और आइए अब बात करते हैं राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी के आरोपों की। देखिए एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है और आज कौन सा चौथा दिन है इस मामले की जांच करते हुए बहुत से लोग इस वक्त जांच के घेरे में हैं। एसआईटी की टीम की जांच तेज है, मंदिर परिसर के कर्मचारी भी जांच के घेरे में हैं। जांच की रडार पर सीसीटीवी निगरानी, गेट चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी भी हैं जिनसे एसआईटी की टीम पूछताछ कर सकती है। वहीं रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर यानी आरएमओ से भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं जो चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव का खास बताया जा रहा है। कल एसआईटी की टीम ने आरोपों के घेरे में आए टिन्नू यादव से पूछताछ की थी। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, बहुत सी तस्वीरें आ रही है, लेकिन एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको बताते हैं जो सिर्फ आज तक पर है, जहां गिनती होती है, जहां व्यवस्था पूरी बनाई गई है, जो राम मंदिर में दान चढ़ाया जाता है, चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उसकी गिनती की वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एक बड़ी खबर है, ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां दान राशि की गिनती होती है, एक व्यवस्था बनाई गई है जहां पर कई लोग होते हैं, टेबल पर राशि रखी रहती है, वो दान की राशि, वो पैसे जो आप यहां पर देख सकते हैं। अब उस टेबल के चारों ओर आप देखेंगे तो वो कर्मचारी हैं जो नोटों की गिनती करते हैं, इसमें एसबीआई के कर्मचारी भी होंगे और भी कई कर्मचारी जो मंदिर से जुड़े हुए हैं वो इसकी काउंटिंग करते हैं और उसके बाद फिर उसे बैंक तक पहुंचाया जाता है। लेकिन ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी से, दान राशि की काउंटिंग की निगरानी कैसे होती है। एक बड़ी खबर आ रही है तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ है और यह बताया जा रहा है खुलासे में जो सामने आया कि सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ के संकेत मिले हैं। शुरुआती जांच में बैंक की भूमिका और संभावित लापरवाही भी सामने आई जिसके बाद एसआईटी ने जांच और तेज कर दी है। दान की गिनती प्रक्रिया में बैंक कर्मियों के साथ ट्रस्ट के रुपए गिनने वाले कर्मचारियों की संख्या कम होने को भी संदेहास्पद माना जा रहा है।

अयोध्या में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बने राम मंदिर में पिछले 4 दिनों से रोज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अफसर जा रहे हैं, घंटों तक जांच पड़ताल पूछताछ कर रहे हैं। और इस पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जांच की सुई वहां जाकर ठहरी।

0: संदेह है कि कम क्यों है, दान बहुत आता है, राशि बहुत आती है, लेकिन लोग कम क्यों है, तो इस पर भी संदेह है। अब शुरुआती जांच में बैंकों की भूमिका में भी लापरवाही पाई गई है, यानी ए टू जेड हर जगह कहीं ना कहीं लापरवाही के संकेत मिल रहे हैं। अब पूछताछ के लिए 200 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है, सूची तैयार की गई है, और उन 200 लोगों से पूछताछ की जाएगी। अब 200 लोगों में सभी है, 125 से ज्यादा लोगों से तो पूछताछ हो गई है और 200 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव से कई घंटों की पूछताछ होती आ रही है। सुरक्षा में 11 महीने में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 10 करोड़ रुपए, उसके बावजूद ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, तो सवाल उठ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी, अब जब चंपत राय की बात की जा रही है तो ये हम आपको एक बड़ी खबर बता दें कि चंपत राय के लिए SIT की पूछताछ, ये उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है। अब क्यों, इसके पीछे की एक वजह है, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं अयोध्या में, लेकिन वहां पर जो प्रोटोकॉल प्रशासन है उन्होंने कह दिया है कि चंपत राय की जगह उनके प्रतिनिधि को भेजें। जो प्रोटोकॉल प्रशासन है उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए उसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय की जगह उनके प्रतिनिधि को भेजने की बात कही है। आमतौर पर मुख्यमंत्री की अयोध्या यात्रा या दर्शन पूजन में गोपाल राव मौजूद रहते थे, लेकिन चंपत राय पहले भी कम ही मौकों पर दिखाई दिए। हालांकि इस प्रोटोकॉल को चंपत राय से हो रही SIT की पूछताछ से जोड़कर देखा जा रहा है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या यात्रा, प्रोटोकॉल ने कहा है कि चंपत राय की जगह उनके प्रतिनिधि को भेजिए। अब लोगों के मन में ये सवाल है कि कहीं जो SIT की जांच चल रही है इसी वजह से चंपत राय की जगह उनके प्रतिनिधि को भेजने के लिए कहा गया है क्या? और यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
1: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
2: Oh, ouch.
1: However you make money work, we can work with that.
3: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.

0: बंगाल से शुरू हुई बगावत महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में दस्तक दे रही है। टीएमसी टूट चुकी है और उद्धव सेना टूट के कगार पर है। अब दावा ये है कि अखिलेश के सांसद भी उनका साथ छोड़ने को बेकरार है। ओपी राजभर ने इस दावे के पीछे राम गोपाल यादव के एक खत का हवाला दिया है।
1: राम गोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया, तो चिट्ठी में काली खल हो पता है, और गुमती रिवर फंड में जो परिवार का हमारे लड़के का है और शिवपाल जी का नाम है, लोगों को बचाना है, और ये फला फला सांसद हैं, इनको आपके साथ हम भेज देते हैं, हम लोगों का जान बचाना।
0: बगावत के इन दावों को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है।
2: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे, तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती, वो साइकिल सैफ ही जा सकती है लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती।
3: समाजवादी पार्टी ने इन्हें कितने बार हराया है, तो ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, और जब खेल लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी के संभावना आपको फिर हरा।
0: समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी दूसरे दलों को डरा रही है।
4: गाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना?
0: अगर ये दावा सच होता है तो विपक्ष के लिए बड़ा झटका साबित होगा। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे।

0: करते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती, वो साइकिल सैकड़ा ही जा सकती है लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं चल सकती।
1: समाजवादी पार्टी के कई विधायक, MLC, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा, और लालच देकर के डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए, और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म हो गया है। शांति समझौते पर दोनों देशों के हस्ताक्षर हो गए हैं। फ्रांस के वर्साई शहर में यह हस्ताक्षर हुए और यह बताया गया कि इस दौरान राष्ट्रपति मौजूद थे, फ्रांस के राष्ट्रपति मौजूद थे। शांति समझौते पर ट्रंप के भी हस्ताक्षर हो गए हैं, यानी इसका मतलब यह है दोनों ओर से शांति छाई रहेगी। साथ ही जो हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो सभी के लिए खोल दिया जाएगा। और इसके साथ ही पुनर्निर्माण के लिए, ईरान के पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब के फंड की योजना पर भी सहमति बनी है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। हम तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती, वो साइकिल सैफ ही जा सकती है लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं चढ़ सकती।
1: समाजवादी पार्टी के कई विधायक, MLC, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा, और लालच दे करके डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर BJP से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है।
2: अरुण राजभर वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे, मिलके उन्हीं ने निवेदन किया कि सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव डाल रही है, बहुत ब्लैकमेल कर रही है। और उन प्रकार अरुण राजभर ने इस बात को भी कहा कि पिताजी की किसी बात का बुरा भी ना माना जाए, उनकी लिखी हुई बात, उनकी कही हुई बात को गंभीरता से भी ना लिया जाए, क्योंकि वो बहुत तनाव में है, वो भारतीय जनता पार्टी से दबाव महसूस कर रहे हैं, भाजपा जो कहती है वो लिख देते हैं, बोल देते हैं, इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी के किसी बयान को भी गंभीरता से ना लिया जाए।
3: उनके दावे और उनके वादे, ये सब लोडर लोग हैं, इनको स्क्रिप्ट दे दी गई कि मोबाइल में इसको डाल दो और बात को घुमा दो।
4: आप कह रहे हैं उनको स्क्रिप्ट दे दी गई, राजीव राय कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का ट्विटर जो है BJP हैंडल कर रही है।
3: नहीं नहीं, कोई हैंडल नहीं करता है, माननीय ओम प्रकाश राजभर स्वतः देखते हैं, स्वतः लिखते हैं, स्वतः समझते हैं। इन लोगों का सही बात है कि समाजवादी पार्टी मुखिया और इन सभी नेताओं का कोई ना कोई यूज तो कर ही रहा है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: का तूफान, संसदीय दल की बैठक में 6 सांसद नदारद, नाराज नेतृत्व ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, बागियों को पार्टी से बाहर निकालने की तैयारी। हाई कोर्ट से ममता बैनर्जी को झटका, स्पीकर के फैसले पर स्टे से फिलहाल इंकार, ऋतव्रत बैनर्जी बने रहेंगे विपक्ष के नेता, 28 जुलाई को अगली सुनवाई। राम मंदिर चंदा चोरी की जांच में बड़ा खुलासा, सीसीटीवी से छेड़छाड़ के सबूत, रेडार पर 200 से ज्यादा चेहरे, बैंक के भूमिका की भी जांच। बिहार के आरा में पुलिस एनकाउंटर पर आक्रोश, सड़क पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन, जाम खुलवाने के लिए पुलिस का एक्शन, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, लाठियां भी भाजी गई। और पेरिस और ईरान अमेरिका के बीच फाइनल डील, फॉक्स न्यूज की खबर, जिनेवा में नहीं होगा कोई कार्यक्रम, 14 सूत्री समझौते के बावजूद लेबनन पर इसराइल के हमले जारी। नमस्कार, 3 बजे की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 100 शहर 100 खबरों के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन।
0: उद्धव ठाकरे ने की दिल्ली में संसदीय दल की बैठक, अहम राजनीतिक रणनीतियों पर चर्चा की गई। शिवसेना यूबीटी के जो 6 सांसद पार्टी की सदस्य दल की बैठक में नहीं हुए शामिल, उन्हें पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संजय राउत ने शिवसेना यूबीटी विधायकों को तोड़ने की अफवाहों पर बीजेपी को चुनौती दी है। संजय राउत बोले हैं कि हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन डरने और धमकाने की राजनीति नहीं चलेगी। ऑपरेशन टाइगर पर महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट का बड़ा बयान, अलग हुए 6 सांसदों के शिवसेना, शिंदे गुट में आने पर फैसला लेंगे एकनाथ शिंदे। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बैनर्जी को लगा झटका, हाईकोर्ट ने ऋतव्रत बैनर्जी को विधानसभा में विपक्ष के नेता पर मान्यता दी। हाईकोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने का किया इंकार, सुवन देव ने फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की गिरफ्तारी का वारंट जारी पर अंतरिम रोक हटा दी है, ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी भेजने के निर्देश दिए गए। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बैनर्जी पर तीखा हमला, कहा कि ना पार्टी बची ना कार्यकर्ता, सिर्फ सुर्खियों में बने रहने की कोशिश कर रही है। दिलीप घोष का बड़ा बयान, हॉकर्स को लेकर राजनीति कर रही है ममता बैनर्जी, बोले सरकार सड़क को सुरगम बनाएगी, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है, अरूप विश्वास ने बैंक अकाउंट फ्रीज मामले पर हुमायूं कबीर बोले हैं कि वो विधानसभा में बने नए गुट की मदद कर रहे हैं। सीपीआईएम नेता मुस्तफिजुर रहमान राणा बोले हैं कि टीएमसी के सभी बैंक खाते फ्रीज होने चाहिए, पैसा अवैध होने का दावा है। योग दिवस के लिए रेड रोड बंदी पर कोलकाता हाई कोर्ट सख्त हो गया है, वैकल्पिक ट्रैफिक व्यवस्था के निर्देश दिए गए। कोलकाता में मौना मित्रा का केंद्र पर हमला, कहा कि एक दिन में ईद नमाज के लिए रोड बंद नहीं होंगे, लेकिन योग दिवस के लिए एक हफ्ते तक सड़क बंद रहेगी। झारखंड में आज 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव है, सुबह से जारी है मतदान, कांग्रेस विधायक एक साथ विधानसभा पहुंचे, मतदान को लेकर रणनीति साफ हो गई है। रांची में राज्यसभा चुनावों को लेकर जेएमएम के नेता मनोज पांडे का दावा है कि दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। रांची में बीजेपी प्रवक्ता संदीप वर्मा का दावा है कि एनडीए के सभी 24 विधायकों ने डाले हैं अपने वोट, 4 अतिरिक्त वोट मिलने की उम्मीद है। रांची आरएसएस कार्यालय हमले में एसआईटी की कार्रवाई तेज हो गई है, एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया, कुल गिरफ्तारी की संख्या 3 हो गई है। रांची हमले मामले में जेएमएम का बयान है, पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है, साथ ही बीजेपी शासित राज्यों में से तुलना कर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि समाजवादी पार्टी में टूट तय है, बागीवाल बलिया का नेता ही करेगा बागी सांसदों की अगुवाई। ब्राह्मण सम्मेलन में तिरस्कार का आरोप लगाए ओपी राजभर ने कहा है कि इससे समाजवादी पार्टी के नाराज सांसद और राह आहत हुए हैं। समाजवादी पार्टी सांसदों ने नाराजगी का दावा किया, ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को सांसद बचाओ अभियान की सलाह दी है। राजभर के एक्स पोस्ट से सियासी बवाल हो गया। दलित उत्पीड़न के मामले को लेकर विपक्ष ने घेरा, कई जोन के आंकड़े किए गए हैं साझा। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर का बड़ा दावा, कहा है कि समाजवादी पार्टी के 25 से 27 सांसद टूटेंगे, 10 से ज्यादा से बातचीत जारी है। समाजवादी पार्टी नेता ने एक्स पोस्ट पर पलटवार करते हुए अरुण राजभर बोले हैं कि मैं समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बैठकें कर रहा था, ये लोग आईटी सेल के पोस्टर चिस्पा करने में राजनीति करते हैं। अरुण राजभर बोले हैं कि बलिया से होगी शुरुआत, थर्ड या फोर्थ फ्रंट का कोई असर नहीं है। अखिलेश यादव का ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा हमला, टिकट और वसूली को लेकर लगाए गंभीर आरोप। अखिलेश यादव बोले हैं अधिकारियों और ठेकेदारों की पंचायत में फंसे हैं राजभर, सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। एआईएमएम प्रवक्ता शादाब चौहान का बड़ा बयान, बीएसपी प्राथमिकता लेकिन अन्य दलों के साथ भी गठबंधन की संभावना है। संजय निषाद का बड़ा दावा, समाजवादी पार्टी के कई सांसद संपर्क में हैं, कुछ कांग्रेस सांसद भी एनडीए के साथ आने की इच्छुक हैं। संजय निषाद बोले हैं सरकार नहीं बना पाए, बाहर रहकर वादे पूरे नहीं होंगे, इसलिए अब हमसे कह रहे हैं कि साथ रख लो। अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में एसआईटी जांच का दायरा बढ़ गया है, सीसीटीवी गेट चेकिंग और सुरक्षा स्टाफ की भूमिका की भी जांच की जा रही है। राम मंदिर फंड घोटाले का नया मोड़ आया, एसआईटी की रडार पर सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी और पास सिस्टम और कई अधिकारियों की जांच तेज कर दी गई है। लखनऊ में कोडिन कफ सिरप मामले में बड़ा एक्शन हो गया, मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल समेत वरुण सिंह और गौरव जायसवाल भगोड़ा घोषित कर दिए गए, तीनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया, गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कुर्की कार्रवाई की भी तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम योगी ने अयोध्या दौरे के प्रोटोकॉल में चंपत राय की जगह प्रतिनिधि शामिल किए हैं, अटकलें तेज हो गई हैं। उन्नाव में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला, बोले परिवारवाद की राजनीति से विकास संभव नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा, डबल इंजन सरकार की योजनाएं लागू करने की क्षमता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में नहीं है। कानपुर में आज सीएम योगी चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कृषि प्रदर्शनी का करेंगे लोकार्पण। कृषि उत्पादों और नवचारों और प्रदर्शनी का सीएम योगी ने लिया है जायजा, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। झांसी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। झांसी किले में होगा योग कार्यक्रम, सीएम योगी के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, अधिकारियों ने किया निरीक्षण। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अयोध्या दौरे पर है, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन, धार्मिक कार्यक्रमों के बाद लखनऊ वापसी करेंगे। अजय राय ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच पर अजय राय ने उठाए हैं सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग की है। मोहर्रम से पहले हापुड़ में सख्ती, संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च, ड्रोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी। श्रम मंत्रालय की योजना, पीएफ पैसे निकालकर होगा आसान, यूपीआई और एटीएम कार्ड से निकासी सिस्टम शुरू करने की है तैयारी। यंग इंडिया लिमिटेड की नई पहल, नागपुर में डिफेंस और एरोस्पेस उत्पादन बढ़ाने के लिए बनेगा हाईटेक एल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस। नागपुर में बड़ा रक्षा प्रोजेक्ट, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे 10,000 टन एल्युमिनियम प्रेस का भूमि पूजन, आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी मजबूती। देशभर के फूड कारोबारियों के लिए नई गाइडलाइन, एफएसएसआई ने साफ सफाई और सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। एफएसएसआई की बड़ा निर्देश, खाद्य व्यवसायियों में सिर्फ फूड ग्रेड और जंग रोधी चाकू और ब्लेड के इस्तेमाल के आदेश है। अमेरिका ईरान शांति समझौते पर औपचारिक मोहर, ट्रंप ने पेरिस में साइन की है एमओयू, डील की शर्तों पर दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। अमेरिका ईरान के बीच 14 सूत्रीय समझौता, ट्रंप और पेजिशकियान ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। मैक्रों ने शेयर किया ट्रंप के हस्ताक्षर का वीडियो, कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हुआ है। अमेरिका और ईरान शांति समझौते के लिए कच्चे तेल के दाम में गिरावट आई है, ब्रेंट क्रूड ऑयल करीबन $79 के नीचे पहुंचा है। ट्रंप का बड़ा बयान, दूसरे देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं तो ईरान को उनसे वंचित रखना अनुचित होगा। G7 समिट के इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई है मुलाकात, हॉर्मुज और भारतीय नाविकों पर हुए हमले पर बातचीत की गई। राष्ट्रपति ट्रंप बोले हैं कि मैं भारत का बहुत सम्मान करता हूं, अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। आज तक ने भारत और अमेरिका की दोस्ती को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने से सवाल पूछा गया। ट्रंप ने कहा कि हर भारत और पीएम मोदी से करता है प्यार और हमारे रिश्ते मजबूत हैं। ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समुद्र में भारतीयों की सुरक्षा जरूरी है। उम्मीद है कि ईरान के साथ डील में भारतीयों की सुरक्षा पक्की की जाएगी। आज पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी और वीवरटेक के समिट में शामिल होंगे। इस सम्मेलन के लिए भारत को ऑफिशियल AI कंट्री पार्टनर का दर्जा मिला गया है। लगातार बारिश से कुल्लू घाटी में वादियां हरी भरी हो गई हैं, नजारे और भी मनमोहक हो गए। तापमान में गिरावट भी आई है। गुजरात के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। अरावली से खेड़ा तक मौसम बदल चुका है, किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। गुजरात में मानसून की जोरदार एंट्री, 24 घंटे में हो रही है बारिश। बालसिनोर में सबसे ज्यादा पानी बरसा है। खेड़ा में मानसून की पहली झमाझम बारिश से मौसम हुआ राहत से राहत हुई है। भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली है बड़ी राहत। गुजरात के अरावली में झमाझम बारिश हुई है। मोटसा और मेघराज, भिलौदा और शामलाजी में भी बदला है मौसम। हरियाणा के संदीप आर्य जागड़ा के नाम अनोखा कीर्तिमान हासिल किया। लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। संदीप ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 37 घंटे 21 मिनट तक सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। पिछले 15 सालों के अभ्यास से बनाए विश्व कीर्तिमान। सूरत के सिर्फ 1 साल 8 महीने के मासूम करण मिथुन भाई परमार ने याददाश्त बनी चर्चा का विषय। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में IBR अचीवर्स के खिताब का नवाजा गया है। नीदरलैंड में रॉटमार्ट में भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का शानदार खेल हुआ है। FIH प्रो लीग में भारत ने विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से मात दी है। मैच के 7वें मिनट में मनदीप सिंह ने किया है गोल। फिर 13वें मिनट में शिलानंद लाकड़ा ने किया है गोल, तो नीलकांता शर्मा ने 35वें मिनट में किया है गोल। बस्ती में पुलिसकर्मियों पर बुजुर्ग की पिटाई का आरोप लगाया। विवाद सुलझाने पहुंचे जवान का वीडियो वायरल हो रहा है। पश्चिम बर्धमान में बालू वाहन की वसूली का विरोध करने पर कर्मचारी पर हमला कर दिया गया। सिर फोड़ कर घायल कर दिया गया। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के कोरिया में रेत खनन विवाद में लिया है खूनी रूप। फॉर्चुनर से आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। उधमसिंह नगर में मां के शव के पास हाथ जोड़ती 6 साल की बच्ची का वीडियो हुआ वायरल। सड़क हादसे में झंझोर दिया है पूरे इलाके को। हैदराबाद में भारी बारिश के बीच निर्माणाधीन दीवार कार पर गिरी है, 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सहारनपुर में गौकशी के खिलाफ पुलिस का आक्ष हादसे में झंझोर दिया है पूरे इलाके को। हैदराबाद में भारी बारिश के बीच निर्माणाधीन दीवार कार पर गिरी है, 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में झंझोर दिया है पूरे इलाके को। हैदराबाद में भारी बारिश के बीच निर्माणाधीन दीवार कार पर गिरी है, 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सहारनपुर में गौकशी के खिलाफ पुलिस का आक्ष हादसे में झंझोर दिया है पूरे इलाके को। हैदराबाद में भारी बारिश के बीच निर्माणाधीन दीवार कार पर गिरी है, 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सहारनपुर में गौकशी के खिलाफ पुलिस का एक्शन है। 6 गौकश गिरफ्तार किए गए। 2 पिकअप में 10 जिंदा और 1 मृत गौवंश बरामद किए गए। उन्नाव में पारिवारिक कलह से सूबेदार की पत्नी ने लगाई फांसी। पति ने भी की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। चंबा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बोलेरो गहरी खाई में गिर गई है, 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। लुधियाना में वेतन विवाद को फैक्ट्री मालिक पर गंभीर आरोप लगाया। नौकरी छोड़ने वाले मजदूर पर अपहरण का और बंधक बनाने का मामला दर्ज किया गया। इटावा में शादी के 3 महीने बाद हंगामा। संदिग्ध हालात में नवनिवाहित मौत हो गई। मायके के पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। बिजनौर में युवती के कथित दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दबाव का मामला भी आया सामने। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही। दाहिने हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजूद बाएं हाथ में चढ़ाया गया प्लास्टर। फिरोजाबाद में थाने में के पास महिला ने युवक की सरेआम पिटाई कर दी। थप्पड़ों से हमला कर और कपड़े फाड़े, वीडियो वायरल हुआ। रोहतास में नहर में नहाने के दौरान भाई बहन की डूबकर हुई मौत। गांव में मचा है कोहराम। कल्याण में शादी के 1.5 महीने बाद नव विवाहित ने की आत्महत्या। डॉक्टर ने पति समेत सास और देवर गिरफ्तार किए गए। जयपुर में बारूद का जाल बेनकाब, 1,000 किलो से ज्यादा पटाखों का जखीरा सील किया गया। सूरत में 3 से 4 दुकानों में लगी आग, आग में 15 से अधिक वाहन जलकर खाक हो गए। जामनगर में जर्जरित हुई कस्टमर हाउस इमारत तोड़ने के दौरान हादसा, मलबे में दबे 3 मजदूर। गाजियाबाद में पंचायत की बेइज्जती बनी मौत की वजह, युवती ने आत्महत्या के बाद मोदी नगर में हंगामा, पुलिस ने धक्का मुक्की भी की गई। नालंदा में डिग्री कॉलेज में की है मांग पर बवाल, प्रदर्शनकारियों का पुलिस पर पथराव, कई जवान घायल। फिल्म वेलकम टू द जंगल में सितारों के जमघट पर बोले सुनील शेट्टी, ये किसी एक इंसान के बारे में नहीं, फिल्म 25 से 30 धुरंधर एक्ट्रेस की फिल्म है वेलकम टू जंगल। एक बार फिर से हॉरर फिल्म का हिस्सा बनी जैकलिन फर्नांडिस ने एक हॉरर फिल्म साइन करने का दावा किया। मेकर्स के शूट किया फिल्म का टीजर और गाना। 19 जून को हैदराबाद में लॉन्च होगा निर्देशक अभिषेक नामा का पौराणिक फैंटेसी की फिल्म नागबंधम का ट्रेलर। 3 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म। मुंबई में होगा फिल्म द ओडिसे का ग्लोबल प्रीमियर। प्रमोशन के लिए भारत आएंगे हॉलीवुड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, टॉम हॉलैंड और मैट डेमन। और चलिए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अमेरिका और ईरान की डील को लेकर। जंग तो खत्म हो गई है लेकिन डील में हार जीत का मंथन अब भी चला हुआ है। विशेषज्ञों ने खुलकर कहना है कि शुरू कर दिया है कि अमेरिका ईरान डील में ट्रंप कार्ड फेल हो गया है। ईरान के लिए ये ऑल इज वेल है। ये हम आपको 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि 14 पॉइंट्स वाली डील में वो सब कुछ है जो ईरान चाहता था। मसलन ना यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा, ना ही मिसाइल प्रोग्राम को बंद करना पड़ेगा। 60 दिन बाद हॉर्मुज में टैक्स वसूली के लिए फॉर्मूला बनने पर भी बातचीत होगी और ये मौका भी ईरान के पास होगा। सबसे बड़ी बात यह कि ट्रंप के पुराने दावों में उलट ईरान को $300 अरब का फंड भी मिल जाएगा, जिससे युद्ध में तबाह किए गए ईरान के कई निर्माणों को या फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इससे मदद मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर रोज दावा करते हैं कि ईरान तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, ईरान डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है। और जब फ्रांस में साइन डील की कॉपी सामने आई तो ट्रंप के सारे दावे धरे के धरे रह गए। ऐसा लगा कि पूरी डील ईरान ने अपने शर्तों पर ही लिखवाई है।

0: 109 दिन के बाद आखिरकार अमेरिका ईरान ने युद्ध के खात्मे का ऐलान कर दिया। अब ना तो मिसाइलों की गूंज है, ना धमाकों का शोर, ना दुनिया को इस बात का डर है कि जंग की आग सब कुछ खत्म कर देगी। 28 फरवरी को अमेरिकी हमले के साथ शुरू हुई जंग 109 दिन के बाद 17 जून को बातचीत की मेज पर खत्म हुई। 14 पॉइंट्स वाले समझौते पर साइन हुए। फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साय पैलेस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने डील पर हस्ताक्षर किए तो ईरानी राष्ट्रपति पजिश्कियन ने फारसी भाषा में लिखी डील की कॉपी पर दस्तखत किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस डील में जीत किसकी है, आखिर समझौता किसके पक्ष में रहा। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ट्रंप कार्ड फेल रहा, ईरान के लिए ऑल इज वेल है। तोलमोल में ईरान अमेरिका पर भारी पड़ा, वो सारी बातें मनवाने में कामयाब रहा जो वो चाहता था। ट्रंप डींग हाँकते थे कि ईरान तबाह हो चुका है, ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है, डील में ईरान की शर्तें नहीं चलेगी, ईरान को सरेंडर करना होगा, हॉर्मुज सब के लिए खुलेगा, ईरान का कंट्रोल नहीं रहेगा।
1: And I would say that's about 99.9% of what I wanted.
0: लेकिन डील में वो सब है जो ईरान चाहता था। मसलन हॉर्मुज 60 दिन टोल फ्री रहेगा और फिर ईरान जॉर्डन मिलकर बनाएगा मैकेनिज्म। यूरेनियम बाहर नहीं जाएगा, ईरान में ही डाउनग्रेड होगा। मिसाइल को लेकर ट्रंप ने रुख बदला, अब वो बोल रहे हैं कि जब पड़ोसी देशों के पास मिसाइल है तो ईरान को कैसे रोक सकते हैं। कहां तो फूटी कौड़ी ना देने की अकड़ थी, अब $300 अरब ईरान को मित्र देश पुनर्निर्माण के लिए देगा।
2: यानी देखिए डील तो हो गई लेकिन अभी भी संभावना ये बनी हुई है कि देखिए अमेरिका को कितनी ज्यादा नुकसान हुआ। अमेरिका जिन जिन शर्तों की बात करता था ईरान ने उन्हें मानने से इनकार करी और अपनी शर्तों पर इस डील को साइन करा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: Welcome back to, yeah, that's a pepper thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing. And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
6: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
5: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing. Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing.
7: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
8: ज़मीन हिलती है, लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिंझोड़े, मौसम बदले, फिर भी हर सपना खड़ा रहे, क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो, आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मेक्स TMT बार्स, आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: आगे आगे करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
6: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
5: जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी व्हिप का उल्लंघन है। एकदम पक्षात पार्टी का आदेश नहीं माना है, तो अभी उस मुताबिक हम उस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है। उनको शोकवा दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द। हमने कुछ उपाया, संडे को सब लोग एक साथ थे, कुछ वर्चुअली आए थे, आज लापता है। अब लापता कहाँ है, क्या है, उनको पता है, हमको उनको ढूंढने में आप कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, नेचुरल लोग हैं, 70-70 साल के लोग हैं, दो दो बार तीन तीन बार एमपी बने हैं हमारे पार्टी से, तो हम क्या उनको बताएं। लेकिन इस बार उनको महंगा पड़ेगा, चाहे कुछ भी।
6: सर मरेठा, सर कोर्ट का भी रुख करेंगे,
7: देखेंगे। कोर्ट चार साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं।
8: सर जिस दिन
7: उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जिया उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included.
1: Oh, yeah.
0: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
3: Lee looks for someone, finds the right someone. Curry knocks it down. Tatum lines up the three and nails it.
2: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
4: Because people who all watch games, they hear the voice.
2: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
5: टिन्नू यादव लगभग 30 होटलों में यहाँ के इसका इसकी फ्रेंचाइजी चलती रही बाकायदा। टिन्नू यादव का करेक्टर ही तो ये सकुनी मामा है यहाँ का लोकल, ये चंपत रायचूर का सकुनी मामा है, ये दुर्योधन का तो नाश कराएगा, ये तो कर्ण को भी मरवा डालेगा।
6: 32 साल का सेवा कोई मामूली बात है, हम चोर बेईमान होते तो आज तक टिके रहते वहाँ।
7: राम मंदिर के चढ़ावे के पैसों का चोर कौन, कब टूटेगा मौन? मंदिर के चढ़ावे की चोरी के कितने किरदार, कौन है असली सरदार? रोज जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है, तरह तरह की बातें हो रही हैं, और एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि राम मंदिर के पैसे चुराने वाला वो असली चोर कौन है, कितने हैं और उनका सरगना कौन है? एसआईटी की टीम ने दो दिनों में अब तक 19 घंटों तक पूछताछ की है। राम मंदिर में जो कर्मचारी चढ़ावा गिनते हैं उनसे ये विस्तृत पूछताछ हुई। एसआईटी ने दो दिनों में दान पात्र से नोट निकालने, गड्डी बनाने और गिनने की पूरी प्रक्रिया को अपने सामने खुद करवाया। ये भी देखा कि कर्मचारियों के आने और जाने के दौरान किस तरह से तलाशी ली जाती है। इसके अलावा एसआईटी ने चढ़ावा गिनने वाले कमरे का सीसीटीवी डेटा भी निकलवाया है। ये डेटा करीब एक दर्जन अलग अलग पेन ड्राइव में लिया गया। अब तक की पूछताछ में करीब 9 कर्मचारी ऐसे मिले हैं जिन्होंने महंगे फोन और गाड़ियां ली। अभी तक किसी को आरोपी घोषित नहीं किया गया, लेकिन जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है टिन्नू यादव, जो चंपत राय के ड्राइवर है, अभी मंदिर ट्रस्ट में कई तरह की व्यवस्थाएं देखता है। आरोप है कि टिन्नू यादव ने अपनी कई तरह की संपत्तियां बनाई, हॉस्टल और होटल बनाए। इन्हीं आरोपों के बीच कल टिन्नू यादव की सफाई आई थी और आज उनकी पत्नी भी आज तक के कैमरे पर सफाई देने के लिए आई। टिन्नू यादव की पत्नी ने अपने पति के ऊपर लगे तमाम आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि 32 साल से राम की सेवा करने वालों को चोर कहा जा रहा है। ये भी कहा है कि उनके परिवार पर इन सब का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बिना सबूतों के उनके परिवार के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। टिन्नू यादव पर सबसे ज्यादा आरोप लगाए हैं संतोष दुबे ने, जो बाबरी विध्वंस के आरोपी रहे हैं, जेल गए, कार सेवक रह चुके हैं, लेकिन अब वो खुलकर चंपत राय और टिन्नू यादव पर बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। संतोष दुबे ने इनके खिलाफ अयोध्या में FIR के लिए थाने में शिकायत भी दी है। यहीं पर हमें टिन्नू यादव की पत्नी पूनम यादव भी मिली, जो अपने पति के ऊपर लग रहे आरोपों का बचाव करने के लिए सामने आई।
8: पूनम जी, बहुत सारे संगीन आरोप लगे हैं, उन पर आपका क्या कहना है?
9: सब झूठ है, निराधार है, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी के पास ठोस सबूत ही नहीं है।
7: अब सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो SIT की जांच के बाद ही पता चलेगा, जिसे 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
10: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

उद्धव की पार्टी में बगावत का तूफान, संसदीय दल की बैठक में 6 सांसद नदारद, नाराज नेतृत्व ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, बागियों को पार्टी से बाहर निकालने की तैयारी। हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को झटका, स्पीकर के फैसले पर स्टे से फिलहाल इनकार, ऋतव्रत बनर्जी रहेंगे विपक्ष के नेता, 28 जुलाई को अगली सुनवाई। श्रीराम मंदिर चंदा मामले की जांच में बड़ा खुलासा, सीसीटीवी से छेड़छाड़ के सबूत, रेडार पर 200 से ज्यादा चेहरे, बैंक की भूमिका की भी जांच। बिहार के आरा में पुलिस एनकाउंटर पर आक्रोश, सड़क पर शव रखकर विरोध, जाम खुलवाने के लिए पुलिस का एक्शन, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, लाठियां चलाई। और पेरिस में ईरान अमेरिका के बीच फाइनल डील, फॉक्स न्यूज से खबर, जिनीवा में नहीं होगा कोई कार्यक्रम, 14 सूत्री समझौते के बावजूद लेबनन पर इजरायल के हमले जारी।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बिहार के आरा में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए युवक को लेकर लोगों में गुस्सा फूटा है। एनकाउंटर को फेक बताते हुए लोगों ने हाईवे जाम किया है। दोषी पुलिस वालों पर एक्शन की मांग की है। बेलौटी गांव के पास आरा बक्सर हाईवे पर भारी संख्या में लोग जमा हो गए। सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। इससे सड़क पर गाड़ियों की लाइन लग गई। जाम खुलवाने के लिए पुलिस को आना पड़ा। यह हंगामे की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प जारी है। एक एनकाउंटर को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा है। लोगों के हिसाब से यह एनकाउंटर सही नहीं है, यह एक फर्जी एनकाउंटर है और इसीलिए उनकी तरफ से हंगामा किया जा रहा है। और अब बात अयोध्या नगरी की। राम मंदिर चढ़ावा मामले के आरोपों की आज चौथे दिन एसआईटी टीम की जांच और तेज हो गई है। अब मंदिर परिसर के कर्मचारी भी जांच के घेरे में आ गए हैं। जांच के रेडार पर सीसीटीवी निगरानी, गेट चेकिंग, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी हैं जिनसे एसआईटी की टीम पूछताछ कर सकती है। वहीं रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर से भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं, जो चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव का खास बताया जा रहा है। कल एसआईटी की टीम ने आरोपों के घेरे में आए टिन्नू यादव से पूछताछ की थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष इस समय सीधे अयोध्या से जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या अपडेट है, किस तरीके से जांच चल रही है? बहुत बड़ी संख्या में लोग अब इसकी जद में आ गए हैं।
1: बिल्कुल श्वेता, देखिए जो ये एसआईटी है वो पिछले चार दिनों से पूरी तरीके से जांच कर रही है। पहले तो इसमें जो मेन फेस थे वो जांच के दायरे में थे, लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है उसमें जो कर्मचारी हैं, फिर चाहे वो गेट के अंदर जाने से लेकर बाहर निकलने की जिसकी जिम्मेदारी रहती है उसके पास भी अब एसआईटी की जांच की रडार है। दूसरा सीसीटीवी मॉनिटरिंग जो सेल करती है उसके जो इंचार्ज हैं, और तीसरा वो जो काफी समय से वहां पर तैनात है यानी कि पुलिसकर्मी, उन सब पर भी अब एसआईटी की जांच है। क्योंकि ये अगर इस तरीके की बात सामने आई है कि वहां पर डोनेशन को लेकर ऐसा चीजें हुई हैं, तो उसमें आखिर लूपहोल कहां पर है, और उन कर्मचारियों से अब तक तकरीबन 200 लोगों से अलग अलग तरीके से ये पूछताछ की जा रही है, और उसमें ये सारे कर्मचारी भी शामिल हैं, ट्रस्ट के लोग हैं, सेवादार हैं वहां के लोग, और जो कर्मचारी हैं वो लोग मौजूद हैं। तो ये सभी लोग एक एक करके इसकी जद में आ रहे हैं, और यही वजह है क्योंकि एक एक चीज की पड़ताल की जा रही है कि आखिर जो डोनेशन का पैसा आया वो कैसे गया, कैसे यहाँ पर जो चंदा चोरी की बात कही जा रही है उसमें कितनी सत्यता है, साथ ही साथ जो टिन्नू का है रोल कितना अहम हो जाता है। हालांकि उसका परिवार लगातार कह रहा है कि वो बेगुनाह है, लेकिन एसआईटी के आने के बाद से ही मंदिर परिसर के अंदर हर उस कर्मचारी से एक एक करके अलग अलग करके पूछताछ की जा रही है और सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। उस सबूतों में फिर चाहे वो पेन ड्राइव्स हो या इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज,
0: और खासकर इस पूरे मामले में जो ड्राइवर से पूछताछ हुई वो चंपत राय पर भारी पड़ रही है। कल सीएम योगी की अयोध्या यात्रा है और अयोध्या प्रशासन ने मुख्यमंत्री की कल की यात्रा के प्रोटोकॉल में चंपत राय की जगह उनके प्रतिनिधि को भेजने को कहा है। जो प्रोटोकॉल प्रशासन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बनाया है उसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय की जगह उनके प्रतिनिधि को भेजने की बात कही गई है। और आशीष, ये सीधे तौर पर दिखाता है कि मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि जांच जब तक पूरी न हो जाए तब तक चंपत राय अलग रहे, हट कर रहे, क्योंकि जांच निष्पक्ष हो जाए, पूरी तरीके से सारी चीजें सामने आ जाए, सत्य क्या है असत्य क्या है वो सब सामने आ जाए।
1: बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या आ रहे हैं, तो इस बीच में क्योंकि जो डोनेशन की बात हो रही है, चोरी की बात हो रही है, ऐसे समय पर अगर यहां पर पहुंचते हैं, इससे पहले हमेशा देखा गया है कि चंपत राय जो ट्रस्ट के हैं वो हमेशा प्रतिनिधि करते आए हैं, लेकिन इस बार प्रशासन ने साफ तौर से कह दिया है कि वो अपने प्रतिनिधि को भेजे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इसमें मेंटेन करना है। इसी वजह से ये भी कहा गया कि अगर जब तक एसआईटी की टीम भी यहीं पर है, चीफ मिनिस्टर भी यहीं रहेंगे, ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों की जो जांच चल रही है, तो वो जांच किसी तरीके से प्रभावित ना हो, चीफ मिनिस्टर के साथ कोई खड़ा होता है तो ऐसा ना हो कि वो जांच पे कोई भी असर पड़े। तो जो भी लोग इसकी जद में आ रहे हैं उन सभी पर ऐसा इसीलिए एसआईटी जांच भी कर रही है, और इसी वजह से चंपत राय को इस तरीके से कहा गया कि वो अपने प्रतिनिधि को सीएम के इस प्रोटोकॉल के तहत भेजें जिससे कि जो अब आगे की प्रक्रिया किया जा सके, यानी कि एसआईटी जरूर चंपत राय से पूछताछ करनी हो या अन्य वो ट्रस्ट के लोग शामिल उनसे पूछताछ करनी हो, सभी को अपनी जद में लिए हुए है, और इसी वजह से सीएम चाहते हैं कि हर उस ट्रांसपेरेंसी में पारदर्शिता आए इसमें, और जिससे कि जो भी चीजें हैं वो क्लियर निकल कर आए। इसी वजह से ये एसआईटी फॉर्म हुई थी, और एसआईटी के जो भी रूल हैं जैसे वो पूछताछ कर रहे हैं वैसे वो सबसे पूछताछ करें, और सीएम के इस दौरे का कोई प्रभाव उस जांच पे ना पड़े जो कि अयोध्या में चल रही है, और कुछ भी उससे प्रभावित ना हो।
0: आशीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता अयोध्या से ये बड़ी जानकारियां इस पूरे मामले में देते हुए। इस मामले को लेकर एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है, जांच कर रही एसआईटी की टीम को मंदिर के सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ के संकेत मिले हैं, साथ ही प्रारंभिक जांच में बैंक की भूमिका और आशंकित लापरवाही भी सामने आई है, जिसके बाद एसआईटी ने जांच और तेज कर दी है। दान की गिनती प्रक्रिया में बैंक कर्मियों के साथ ट्रस्ट के रुपए गिनने वाले कर्मचारियों की संख्या कम होने को भी संदेहास्पद माना जा रहा है। एसआईटी ने पूछताछ के लिए करीब 200 लोगों की सूची तैयार की है, अब तक 125 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि कुछ लोगों से कई बार पूछताछ हुई है। साथ ही जांच में मिले दस्तावेजों के अनुसार मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर 11 महीनों में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। चढ़ावा मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है इसके तार गहरे जुड़ते नजर आ रहे हैं। शुरुआती जांच से लग रहा है कि निगरानी के पूरे सिस्टम में ही खामी थी। ये रिपोर्ट देखिए।

अयोध्या में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बने राम मंदिर में पिछले चार दिनों से रोज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अफसर जा रहे हैं, घंटों तक जांच पड़ताल पूछताछ कर रहे हैं। और इस पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले।

0: सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। सीसीटीवी से फुटेज गायब है, नदारद है।
1: और सबसे ज्यादा कंफ्यूज है बीजेपी वाले, खास तौर पर बीजेपी के जो नेता राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या बोलना है। जैसे कि विनय कटियार, जो पहले मंदिर में चोरी की खबर पर आग बबूला हो रहे थे, लेकिन अब पलट गए हैं।
2: गंभीर मामला है और ये हल्का फुल्का मामला नहीं है। इस बार अरे भाई, ये इस पर बलिदान हुए हैं लोग, हमारे जैसे लोग, कल्याण सिंह जैसे लोग, ये सब जेल गए हैं। इस्तीफा दिए थे कल्याण सिंह जी, तब जाकर के मंदिर का बनना शुरू हुआ। और ये जितने हैं ना, ये जितने इस समय हैं, अरे भाई ये जितने हैं सब चोर हैं, इनकी छुट्टी दो। तो छुट्टी कौन करेगा? विनय कटियार कर देंगे कल।
3: नहीं, हमको तो ये लगता ना, ये कोई चिन्नू पिन्नू है जो वहां उनके साथ यही गड़बड़ कर रहे हैं,
4: नीचे के लोग।
3: क्योंकि इतनी बड़ी घटना ये लोग अचानक नहीं कर सकते। तो अभी हम मिलने जुलने का कार्यक्रम रखेंगे, तो उसके आधार पर फिर चर्चा करेंगे।
1: विनय कटियार को समर्थन मिला है बीजेपी के ही पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का, जो सीधे कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद स्थानीय लोगों की उपेक्षा हुई है, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है।
5: देखिए, विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन के समय प्रमुख व्यक्तियों में से थे और उनको अशोक सिंघल जी का आशीर्वाद प्राप्त था। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। प्रशासन और आंदोलन के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते थे और उनकी एक बहुत बड़ी प्रमुख भूमिका रही है। कार सेवकों पर गोली चलने के पहले, 2 महीने पहले मुझे मुलायम सिंह जी की सरकार ने अरेस्ट किया। और अगर आज वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जो मंदिर आंदोलन से जुड़े थे उनकी उपेक्षा हो रही है, तो ये 100% सही है।
1: बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मुद्दा इतना बड़ा तो नहीं बन जाएगा कि इसका उसे राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। अयोध्या से संतोष कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
6: अब बात प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात की। 16 महीने बाद फ्रांस में दोनों की भेंट हुई तो लगा ही नहीं कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में कोई तनाव चल रहा हो। ट्रंप ने पीएम मोदी और भारत की जमकर तारीफ की, अमेरिका को भारत का रक्षक तक बता दिया। जब 16 महीने बाद पीएम मोदी से डोनाल्ड ट्रंप मिले तो आज तक ने भी डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया। आपको सुनाते हैं वो हिस्सा।
7: You said many a times that India has a great friend in United States, in Washington DC, in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India, the leader of India?
8: As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you everyone here, they love India, they have tremendous respect for this man.
6: खबरें असरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: एवरी सिटी हैज हिडन स्टोरीज, द बिल्डिंग यू पास एवरी डे, द पार्क वेयर हिस्ट्री वाज मेड, the person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.

0: कोटा में छात्रों से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने एजुकेशन सिस्टम पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं पर छात्रों का कुल खर्च 5 मंत्रालयों के बजट के बराबर है। सरकार का ध्यान ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन पर है।
1: आपके परिवारों के
0: राहुल ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को वसूली करने वाली मशीन बताया।
1: 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है।
0: प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोटा में छात्र संवाद के दौरान पेश किए गए आंकड़ों को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि मैं इसमें बस एक बात और जोड़ना चाहती हूं, भारत सरकार द्वारा अपने पसंदीदा कारोबारियों के जो लोन माफ किए गए वो 16 लाख करोड़ रुपए का है। नीट पेपर लीक के बाद कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। लगातार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रही कांग्रेस अब शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है।
0: फ्रांस में जब पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई तो पिछले 16 महीनों में रिश्तों पर जमी बर्फ कुछ यूं पिघली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब मीडिया के सवालों के जवाब देने लगे तो पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए।
3: इंडिया कैन डू एनीथिंग दे वांट विद अस, वी हैव द बेस्ट रिलेशनशिप, वी कैन नॉट बी क्लोजर देन वी आर। वुड यू से दैट? आई डोंट थिंक वी कैन बी एनी क्लोजर, बोथ हिम एंड आई and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer.
0: भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर आज तक के सवाल के जवाब में ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि वो हमेशा भारत के साथ खड़े हैं।
4: You said many a times that India has a great friend in United States, in Washington DC, in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India? The leader of India.
3: As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you, everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man.
0: PM Modi ने ट्रंप के सामने 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा भी उठाया।
2: एक्सलेंसी, आप जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
0: भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर जब सवाल हुआ तो ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि अगर कभी भारत पर संकट आया तो अमेरिका ढाल बनकर खड़ा रहेगा। वहीं पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया में ट्रंप के शांति के प्रयासों की भी तारीफ की।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: तक से बोले डीजीपी, सभी बागी नेताओं को दी गई सुरक्षा। हाईकोर्ट से ममता बैनर्जी को फिर बड़ा झटका, स्पीकर के फैसले पर स्टे से फिलहाल इनकार। ऋतव्रत बैनर्जी बने रहेंगे नेता विपक्ष, 28 जुलाई को अगली सुनवाई। श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच में बड़ा खुलासा, सीसीटीवी से छेड़छाड़ के सबूत, रेडार पर 200 से ज्यादा चेहरे, बैंक की भूमिका की भी होगी जांच। इक्कीस जून को नीट री एग्जाम से पहले धर्मेंद्र प्रधान की हाई लेवल मीटिंग, तैयारियों की समीक्षा बैठक में एनटीए, शिक्षा मंत्रालय और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल। कल फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और शान में कसीदे पढ़ने के बाद आज ट्रंप ने इंडिया टुडे का कवर पेज किया रीशेयर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई साथ में तस्वीर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: घुटनों पर आया सुपर पावर अमेरिका। ईरान की शर्तों के आगे झुके ट्रंप। यूरेनियम भंडार अब भी ईरान के पास। वसूल रहा 300 बिलियन का हर्जाना। पहले मुफ्त मुक्त हॉर्मूज, अब ईरानी टोल के चंगुल में फंसा। चालबाज ईरान ने हिजबुल्ला को बचाया। अब नेतन्याहू करेंगे दक्षिणी लेबनान में हिसाब। ईरान के साथ ट्रंप की डील या सरेंडर।
1: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। अमेरिका और ईरान वर्साय समझौते के तुरंत बाद वॉशिंगटन डीसी और जेरूसलम यानी अमेरिका और इसराइल के बीच एक बड़ी कूटनीतिक दरार सामने आ गई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2-2 कह दिया है कि इसराइल दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना तब तक नहीं हटाएगा जब तक हिजबुल्ला पूरी तरह से हथियार न डाल दे और उसके हथियार पूरी तरह से जब तक खत्म नहीं हो जाते। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल खुद को इस समझौते के लेबनान वाले हिस्से से बिल्कुल बंधा हुआ नहीं मानता। इस बगावती रुख पर राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू को नसीहत देते हुए सार्वजनिक रूप से कहा कि बीबी यानी बेंजामिन नेतन्याहू, बीबी एक अच्छे इंसान है लेकिन कभी कभी वो ज्यादा जोश में आ जाते हैं, उन्हें अब थोड़ा नरम रुख अपनाना चाहिए क्योंकि हिजबुल्ला का अगर कोई व्यक्ति किसी इमारत में घुस जाए तो पूरी की पूरी इमारत को गिरा देने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भी कड़ी बारूदी चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि अगर उसने इस समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया तो अमेरिका उस पर अब से ज्यादा भीषण और अब तक का सबसे भीषण बमबारी उस पर एक बार फिर शुरू कर देगा। और अमेरिका और ईरान की डील के तुरंत बाद हमने भारत में इसराइल के राजदूत एम्बेसडर रूवन अजार के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत में इसराइल के राजदूत ने माना कि अमेरिका ने हॉर्मूज को खुलवाने के लिए और तेल की कीमतों पर काबू पाने के लिए ईरान के साथ ये डील कर दी। उन्होंने ये भी माना कि इसराइल के हितों के साथ समझौता हुआ है। दरअसल पहले ही क्लोज में सीजफायर की जहां बात की गई उसमें लेबनान का नाम भी शामिल है। हालांकि रूवन अजार ने मेरे साथ जब बातचीत की अब से थोड़ी ही देर पहले उन्होंने 2-2 कह दिया कि अगर हिजबुल्ला इसराइल पर हमला करता है तो इसराइल जबरदस्त पलटवार करेगा, यानी इसराइल अमेरिका ईरान डील से बंधा हुआ नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इसराइल बहुत पैनी निगाह रखे हुए है। ये जो $300 बिलियन देने की बात की जा रही है इस समय ईरान को, उस पर भी नजर रहेगी। देखिए रूवन अजार के साथ हुई मेरी एक्सक्लूसिव बातचीत। ईरान और अमेरिका के बीच जो 14 सूत्रीय MOU पर हस्ताक्षर हुआ है उसे लेकर अमेरिका और इसराइल दोनों में जबरदस्त बवाल है, हड़कंप मचा हुआ है। कई लोग तो यह कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं, लेकिन क्या इस बात में सच्चाई है? वो जो 14 बिंदु है क्या उसमें इसराइल की भी अनदेखी की गई है? इसराइल के जितने भी सुरक्षा को लेकर उनके पहलू थे। और इस समय स्टूडियो में हमारे साथ भारत में इसराइल के राजदूत एम्बेसडर रूवन अजार हैं। एम्बेसडर साहब स्वागत है आपका आज तक पर। डील और डायलॉग में सबसे पहले यह बताइए, क्या इसराइल के हितों की अनदेखी हुई है और क्या ये जो 14-point अंडरस्टैंडिंग है ये इसराइल पर बाध्य है?
2: इसराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव हैड एन अमेजिंग मिलिटरी विक्ट्री Gaurav, because we have managed to remove the existential threats on our country and the damage to Iran. Not only that their leadership, their criminal leadership was removed, but also the damage to Iran in military terms is worth more than $1 trillion. Now, when it comes to diplomacy, we are at the point in which the United States, for its own considerations, had to do a kind of a diversion that has to do with immediate interests, like, for example, the energy markets. So what we are seeing here is a situation in which the Strait of Hormuz are going to go back to normal functioning.
1: Okay.
2: And the entire diplomatic negotiation was, you know, it's just beginning.
1: लेकिन एम्बेसडर साहब ये बताइए, जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के खुले होने की आप बात कह रहे हैं, 27 फरवरी तक तो वैसे ही खुला था, उस समय ईरान का कोई वहां पर वर्चस्व नहीं था, कोई टोल लेने की बात नहीं थी, कोई चोखोल नहीं था, उस समय सब खुला था, और अब ईरान ने उस पर बिल्कुल अपनी पकड़ बनाई हुई है कि जिसको वहां क्रॉस करना है उसको पैसे देने होंगे, तो ईरान की शक्ति तो बढ़ी है.
2: At what price? At the end of the day, this is not something you can use on a permanent basis, because all the countries in the region now and in the world are going to find alternatives for the Straits of Hormuz. So the fact that they have been able to use this once, it doesn't mean that necessarily they will be able to use it in the future. Everybody understands now how threatening and unreliable Iran is as a partner and as a friend. Now, yes, they have been might been able to leverage that at this point, but it doesn't diminish from their military defeat, from the fact that Israel now is much safer as a result of this military campaign.
1: लेकिन इस MOU के हस्ताक्षर के बाद क्या आज इसराइल ज्यादा सुरक्षित है? क्योंकि खबरें तो यह भी आ रही थी कि कल भी इसराइल का एक सिपाही मारा गया है, कुछ सिपाही घायल हुए हैं, और यह जो पैराग्राफ वन है यह क्या कहता है कि हर मोर्चे पर युद्ध विराम होगा और परमानेंट युद्ध विराम होगा, अभी से लागू होगा, और उसमें लेबनान का मोर्चा शामिल है.
2: वेल, देयर इज अ कॉल फॉर अ सीजफायर दैट इज नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड, बट देयर इज, अनलाइक व्हाट द इरानियन सेड, देयर इज नॉट अ कॉल फॉर विथड्रॉल. Israel will stay in the south, in Lebanon, until we get guarantees. And we have actually a peace process going on, a negotiation going on between us and the Lebanese government. And after the third round of negotiations that ended on the 3rd of June, we have agreed to launch a pilot program that will see whether the Lebanese army can start taking chunks of the territory free from Hezbollah presence. So unless that happens, Israel will stay in South Lebanon.
1: नहीं, तो इसमें मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर इसराइल पर हमला होता है हिजबुल्ला की तरफ से, तो क्या इसराइल पलटवार करेगा या इस एमओयू की वजह से टोटल सीज फायर होगा हर मोर्चे पर?
2: We will defend ourselves, and our prime minister has stated that, our defense minister has stated that Israel will defend itself if attacked by Hezbollah.
1: जिस तरह की भाषा अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिसका इस्तेमाल किया कि उन्होंने बीबी को कहा, यानी बेंजामिन नेतन्याहू को कहा कि गो इजी ऑन हिजबुल्ला, कि एक हिजबुल्ला का आदमी एक बिल्डिंग में घुसता है, पूरी बिल्डिंग मत गिराओ, हल्के हाथ से काम करो, क्या आज इसराइल अकेला अलग थलग पड़ता जा रहा है? और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इसराइल के लिए या इसराइल के प्रधानमंत्री के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बिना तो इसराइल का या बेंजामिन नेतन्याहू का कोई वजूद ही नहीं है.
2: Well, first of all, there's no doubt that this American president has done for Israel more than any American president in the past. He has recognized Jerusalem as the capital of Israel. He has recognized the sovereignty of Israel over the Golan Heights. It has transferred the American embassy to Jerusalem. It has done many, many things, okay? He has done many, many things. However, on this point, I think that what I understand from what the president is saying is that right now they won't call, okay? So they would like Israel to be less aggressive. Now, we are ready, as I said, to engage in a diplomatic process, but we will not renounce our right for self-defense. And we are going to continue operations in South Lebanon. And if we are attacked, we are going to retaliate.
1: तो आपने सुना कि अगर हिजबुल्ला ने हम पर अटैक किया तो हम पलटवार करेंगे. अब सवाल यह है कि क्या सुपर पावर अमेरिका को आखिरकार ईरान की शर्तों के आगे झुकना पड़ा है? यह समझौता दरअसल शुक्रवार को होना था, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक वीडियो पोस्ट कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ समझौते पर दस्तखत कर रहे हैं और उसकी तस्वीरें उन्होंने साझा की। डोनाल्ड ट्रंप भले ही इसे शांति की शुरुआत भर कह रहे हो, लेकिन ईरान के जो मुख्य वार्ताकार हैं उन्होंने इसे सीधे तौर पर अमेरिका की एक बहुत बड़ी नाकामी और अमेरिका की लाचारी करार दिया है। तेहरान ने साफ कह दिया है कि 60 दिन बाद हॉर्मूज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले हर जहाज को डंके की चोट पर टैक्स देना होगा, वो डंके की चोट पर टैक्स वसूलेगा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के इस समर्पण, इस सरेंडर की ये विस्फोटक रिपोर्ट।

0: 109 दिन के बाद आखिरकार अमेरिका ईरान ने युद्ध के खात्मे का ऐलान कर दिया। अब ना तो मिसाइलों की गूंज है, ना धमाकों का शोर, ना दुनिया को इस बात का डर है कि जंग की आग अब सब कुछ खत्म कर देगी। 28 फरवरी को अमेरिकी हमले के साथ शुरू हुई जंग 109 दिन के बाद 17 जून को बातचीत की मेज पर खत्म हुई। 14 पॉइंट्स वाले समझौते पर साइन हुए। फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साय पैलेस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने डील पर हस्ताक्षर किया तो ईरानी राष्ट्रपति पजिश्कियन ने फारसी भाषा में लिखी डील की कॉपी पर दस्तखत किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस डील में जीत किसकी है, आखिर समझौता किसके पक्ष में रहा। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ट्रंप कार्ड फेल रहा, ईरान के लिए ऑल इज वेल है। तोलमोल में ईरान अमेरिका पर भारी पड़ा, वो सारी बातें मनवाने में कामयाब रहा जो वो चाहता था। ट्रंप डींग हांकते थे कि ईरान तबाह हो चुका है, ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है, डील में ईरान की शर्तें नहीं चलेगी, ईरान को सरेंडर करना होगा, हॉर्मुज सबके लिए खुलेगा, ईरान का कंट्रोल नहीं रहेगा।
1: Iran will never have a nuclear weapon. That's what it says. It won't have one to buy, to develop. They will not have a nuclear weapon. And I would say that's about 99.9% of what I wanted.
0: लेकिन डील में वो सब है जो ईरान चाहता था। मसलन हॉर्मुज से व्यापार 60 दिन तक टोल फ्री, फिर ईरान ओमान का चलेगा निजाम, ईरान का यूरेनियम बाहर नहीं जाएगा, ईरान के मिसाइल पर भी ट्रंप का यूटर्न, ईरान को खाड़ी देशों से दिलाएंगे $500 बिलियन। 14 पॉइंट वाले समझौते की तस्वीर कुछ अलग कहानी बता रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या बातचीत की मेज पर ईरान अपनी कई शर्तें बचाने में कामयाब रहा। सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट, वही रास्ता जिसे लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने थे। ट्रंप कहते थे हॉर्मुज सबके लिए फ्री होगा, किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन समझौते के मुताबिक पहले 60 दिन हॉर्मुज टोल फ्री रहेगा। दूसरा बड़ा मुद्दा ईरान का यूरेनियम, ट्रंप की मांग थी कि ईरान यूरेनियम बाहर सौंपे, लेकिन डील की शर्तों के मुताबिक यूरेनियम को ईरान से बाहर भेजने के बजाय उसी जगह डिग्रेड करने का रास्ता सामने आया, यानी ईरान की जमीन पर ही प्रक्रिया।
2: ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते का एक महत्वपूर्ण बिंदु है परमाणु हथियार और संवर्धित यूरेनियम का निपटारा, दोनों देश इसका तंत्र मिलकर तय करेंगे। हालांकि समझौते में इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि वो तंत्र क्या होगा और किस तरह से विकसित किया जाएगा। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि संवर्धित यूरेनियम को डाउनब्लेंड किया जाएगा, यानी उसकी संवर्धन क्षमता को कम किया जाएगा। साथ ही ईरान परमाणु हथियार नहीं रखेगा, ये कमिटमेंट ईरान की तरफ से दिया गया है। जहां तक संवर्धित यूरेनियम का सवाल है, उस मामले में तंत्र में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ये बात ये समझौता कहता है।
0: तीसरा मुद्दा ईरान की मिसाइल ताकत, जिस पर अमेरिका सख्त रुख की बात कर रहा था, लेकिन बातचीत के बाद मिसाइल मुद्दे पर भी भाषा और रुख में बदलाव की बात कही जा रही है। फिर आया सबसे बड़ा उलटफेर, जहां पहले कहा जा रहा था कि ईरान को कोई राहत नहीं मिलेगी, वहीं अब पुनर्निर्माण के लिए मदद की बात सामने आई, करीब $300 अरब तक की सहायता की चर्चा। तो क्या ये ट्रंप की जीत है, या फिर क्या ईरान बिना पूरी तरह झुके अपनी अहम शर्तें बचाने में सफल रहा। 109 दिन की जंग के बाद बंदूकें खामोश हैं, लेकिन असली मुकाबला अब नैरेटिव का है। अमेरिका कहेगा हमने ईरान को बातचीत पर मजबूर किया, ईरान कहेगा हमने दबाव के बावजूद अपनी जमीन नहीं छोड़ी, यानी डील हो गई, लेकिन जीत की कहानी दोनों देश अपने अपने हिसाब से लिख रहे हैं। जिनेवा से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इंडिया टुडे का कवर शेयर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने 19 जनवरी 2026 के इंडिया टुडे के कवर को ट्रूथ सोशल पर शेयर किया। कल दरअसल एवियो में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। इसके बाद उन्होंने अब से 2 घंटे पहले मूवर्स एंड शेकर्स के शीर्षक वाला इंडिया टुडे का ये कवर शेयर किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दो महाशक्तियों के दो बड़े नेताओं के तौर पर दिख रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना करीबी निजी मित्र बताया। जो बातचीत हुई दोनों के बीच, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आवश्यकता है तो अमेरिका लगातार उनके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही सटीक और तेज अंदाज में उन्होंने समुद्री नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और यह कहा कि भारत की बहुत बड़ी भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भी जो आवाजाही होती है, मरीन मर्चेंट शिपिंग जो है उस पर भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और ऐसे में नाविकों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। ईरान और अमेरिका जंग में समुद्री रास्ता होर्मुज एक बहुत बड़ा फैक्टर था। इस रास्ते के वो बंद करने के बाद ईरान ने पूरी दुनिया को एक तरह से बंधक बना लिया था, गला दबा दिया था। अब डील हुई तो होर्मुज रूट पर ईरान हावी होता दिख रहा है। उसने कहा कि अगले 60 दिन तक तो यह रास्ता खुला रहेगा, लेकिन उसके बाद ओमान के साथ मिलकर वो यहां पर जो सर्विसेज देगा उसके लिए प्रयास ये किया जाएगा, जैसा कि खबरों में आ रहा है, वो इसके लिए पैसा भी वसूलेगा।

0: दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा समुद्री रास्ता जिसकी चौड़ाई भले कम लेकिन ताकत इतनी कि यहाँ हलचल हो तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाए। यह है हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से गुजरती है दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम लाइफलाइन। ओमान और ईरान के बीच सिर्फ करीब 40 किलोमीटर का यह रास्ता दुनिया के लिए तेल की नस जैसा है, क्योंकि खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल और गैस इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। इसी हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा टकराव रहा। ट्रंप का दावा था ईरान को हॉर्मुज पर अपनी मर्जी नहीं चलाने देंगे। दुनिया के इस अहम रास्ते पर किसी एक देश का दबदबा नहीं होगा।
1: We'll have the strait opened up. Now, right now, we have it closed. We have total control of the strait. And the fact that it's closed, you know, they would have opened it up 3 days ago. They came to us and they said, we will agree to open the strait. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. And it'll open when they make a deal or something else happens that's very positive.
0: लेकिन ईरान भी लगातार कहता रहा कि हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा और संप्रभुता का सवाल है। तेहरान का कहना था युद्ध से पहले वाली स्थिति में वापसी आसान नहीं होगी। अमेरिका ईरान समझौते के 14 पॉइंट वाले एमओयू ने हॉर्मुज को फिर चर्चा के केंद्र मिला दिया है, क्योंकि सवाल ये है, जिस हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर दुनिया चिंतित थी, क्या अब वहां नई व्यवस्था बनने जा रही है। समझौते के मुताबिक पहले 60 दिन हॉर्मुज को टोल फ्री रखने की बात कही गई है, यानी जहाजों की आवाजाही पुराने तनाव से बाहर लाने की कोशिश होगी, लेकिन असली पेच इसके बाद है, क्योंकि 60 दिन के बाद हॉर्मुज के लिए एक नया मैकेनिज्म बनाने की बात कही गई है, यानी पुराना सिस्टम नहीं एक नया संतुलन। ईरान और जॉर्डन की भूमिका की बात सामने आ रही है, यानी हॉर्मुज का भविष्य सिर्फ वॉशिंगटन से तय नहीं होगा।
2: अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग का खात्मा उस समझौते पर दस्तखत के साथ हुआ, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पजश्कियान ने अपनी मोहर लगाई। साथ ही दुनिया ने राहत की सांस ली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुल जाएगा, लेकिन अभी वो कई पेच बाकी, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि 60 दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी तरीके का चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद वो नई और बती हुई व्यवस्था के अंदर जहाजों के ऊपर चार्ज लगाएगा, उनसे टोल वसूल करेगा। यानी इस समझौते में अभी भी कई कड़ियां ऐसी हैं जो आगे इसके भविष्य को लेकर सवाल खड़ा कर सकती है।
0: दुनिया की नजर इसलिए हॉर्मुज पर है क्योंकि यहां तनाव बढ़ा तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, तेल की कीमतें, शिपिंग कॉस्ट और महंगाई तक इसका असर पहुंच सकता है। अगर 60 दिन बाद हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल हो जाएगा, टोल टैक्स लेगा, तो मैरीटाइम फ्रीडम कहां होगी? समुद्री जहाजों की आवाजाही की आजादी कैसी रहेगी? समुद्री सुरक्षा के साथ एनर्जी सिक्योरिटी का मंत्र कैसे काम करेगा? जिनेवा से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
3: इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, फिलहाल एक ब्रेक। ब्रेक के बाद दुनिया में एक और जंग हो रही है, वो है रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 वर्षों से, और वो बेहद भीषण होती जा रही है। उस पर हमारी विशेष कवरेज छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Chogan Perfumes, the French edition for him.
7: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
8: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit-disclosures for fees and details.
10: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afrobeats.
11: tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
12: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka har maa ka bharosa, pyar se parosa.
13: In association with
5: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
6: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
1: नीट पेपर लीक को क्लीन बनाने के लिए भारत सरकार ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया है।
2: बट टेलीग्राम हैज बीन अ चैनल विच हैज बीन मिसयूज्ड अब्यूज्ड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम फॉर सेवरल फैक्टर्स।
1: एनटीए के मुताबिक टेलीग्राम पर लगाई गई रोक 22 जून 2026 तक जारी रहेगा। हालांकि आदेश कब से लागू होगा इसकी तारीख नहीं दी गई है। नीट री एग्जाम 21 जून को होगा। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है। हालांकि एनटीए के इस फैसले पर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। नीट एग्जाम रीटेस्ट के लिए टेलीग्राम को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। मोदी जी को सबसे पहले अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाहिए जिन्होंने लाखों युवाओं का भविष्य ब्लॉक कर दिया है।
3: टेलीग्राम पर रोक लगाने से क्या होगा? पेपर जो लीक हो रहा है वो तो सिस्टम के अंदर से हो रहा है, टेलीग्राम से नहीं हो रहा है।
1: सूत्रों के मुताबिक नीट यूजी री एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्रों के पैकेट पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। समय पर डिलीवरी और दूर दराज दुर्गम इलाकों में सुरक्षित तरीके से प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए भी MI-17 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी सक्रिय है। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं के साथ स्थानीय पुलिस वाहनों के साथ स्कॉट्स गाड़ियां चलेंगी। नीट परीक्षा केंद्रों पर भी CRPF, CISF समेत दूसरे सुरक्षा बलों की निगरानी रहेगी। सरकार के सामने नीट का री एग्जाम बिना पेपर लीक के कराना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है जिसे लेकर सारी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। आज तक ब्यूरो।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

छह सांसदों की बगावत के बाद बैकफुट पर उद्धव गुट, संसदीय दल की बैठक में नहीं आने पर कारण बताओ नोटिस जारी। आज तक से बोले डीजीपी, सभी बागी नेताओं को दी गई सुरक्षा। हाईकोर्ट से ममता बैनर्जी को फिर बड़ा झटका, स्पीकर के फैसले पर स्टे से फिलहाल इनकार। ऋतव्रत बैनर्जी बने रहेंगे नेता के विपक्ष। 28 जुलाई को अगली सुनवाई। 21 जून को नीट री एग्जाम से पहले धर्मेंद्र प्रधान की हाई लेवल मीटिंग, तैयारियों की समीक्षा। बैठक में एनटीए, शिक्षा मंत्रालय और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल। रांची में आरएसएस दफ्तर पर हमले का आईएसआई कनेक्शन बेनकाब। 3 गिरफ्तारियों के बाद बड़ा खुलासा, पाकिस्तान खुफिया एजेंसी और उसके हैंडलर्स के संपर्क में था आरोपी अमन अंसारी। कल फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और शान में कसीदे पढ़ने के बाद आज डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया टुडे का कवर पेज किया शेयर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई साथ वाली तस्वीर,

0: पुतिन के गढ़ में यूक्रेन का ऑपरेशन ब्लैकआउट। क्रेमलिन से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर कयामत की रात। अब पुतिन के घर तक पहुंच चुकी है युद्ध की आग। सुबह के सन्नाटे को चीरते हुए आए ड्रोन और मॉस्को का आसमान बारूद के धुएं से काला हो गया। निशाना मॉस्को की लाइफलाइन कहे जाने वाली ऑयल रिफाइनरी। यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोनों ने वो कोहराम मचाया कि हिल गया पूरा रूस।
1: आप देख रहे हैं रणभूमि, आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। इस समय बड़ी खबर रूस की राजधानी मॉस्को से आ रही है। क्रेमलिन से महज 15 किलोमीटर दूर मॉस्को की लाइफलाइन कही जाने वाली एक कप्तोनिया ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने आत्मघाती ड्रोन से अब तक का सबसे घातक प्रहार किया है। इस भीषण हमले के बाद आसमान छूती आग की लपटें और काले धुएं के गुबार के कारण मॉस्को रिंग रोड पर ट्रैफिक को पूरी तरह से इस समय रोक दिया गया है। सालाना 1 करोड़ टन से ज्यादा तेल रिफाइन करने वाली और मॉस्को की आधी ईंधन सप्लाई करने वाली इस रिफाइनरी पर जो ये हमला हुआ है, ये रूस के सैन्य गौरव पर एक बहुत बड़ा आघात है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के जो ड्रोन है उन्होंने मॉस्को के सुरक्षा कवच की धज्जियां उड़ा दी है। ऊंचे टावरों पर तैनात जो पेंसिव मिसाइल सिस्टम है, जो एंटी ड्रोन नेटवर्क है, पूरी की पूरी सुरक्षा 4 मजबूत परतें हैं वो नाकाम रही। उसको भेद कर यूक्रेन के ड्रोन ने सीधे निशाने पर सटीक वार किया। यह हमला कीव पर हुए रूस के हमलों का सीधा और बेहद विनाशकारी पलटवार है। इस डीप स्ट्राइक से घबराए रूस ने अब मॉस्को समेत 6 पड़ोसी राज्यों में कड़े हवाई प्रतिबंध उसके आदेश दे दिए हैं, उसको लागू कर दिया है। छोटे विमानों पर रोक लगा दी गई है। न्यूनतम उड़ान ऊंचाई 5200 मीटर तय कर दी गई है। साफ है कि यूक्रेन की जो लॉन्ग रेंज ड्रोन है अब युद्ध की आंच रूस के पावर सेंटर उसके बेहद करीब, यूं कहें मॉस्को के सुरक्षा कवच के भीतर पहुंच चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग अब एक महाविनाशक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां एक एक पल में खूनी वार और पलटवार हो रहे हैं। 18 जून की तड़के रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और बड़े शहर पोल्टावा पर इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइलों से हाहाकारी हमला किया, जिससे कीव में गैस की पाइपलाइन फट गई और वहां पर आग धधकने लगी। पूरे इलाके में अब ब्लैकआउट है, जबकि पोल्टावा में एक प्रतिबंधित क्लस्टर वॉरहेड से इस्तेमाल किया गया, वहां भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। यह जो भीषण हमला है ठीक उस समय हुआ जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित वैश्विक नेताओं के साथ एक बेहद रणनीतिक बैठक कर रहे थे। दरअसल इस समिट से ठीक पहले भी रूस ने कीव की ऐतिहासिक यूनेस्को साइट्स पर बड़ा हमला किया। 11 बेगुनाहों की उसमें मौत हो गई। ज़ेलेंस्की ने G7 में ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम की भी गुहार लगाई, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या वो कीव पर किए गए हमलों के लिए पुतिन को जिम्मेदार मानते हैं, तो उन्होंने चुप्पी साध ली।
0: रूस की राजधानी मॉस्को का वो इलाका जिसे पुतिन का सबसे सुरक्षित किला कहा जाता था, वो अब धुएं के काले गुबार में तड़प रहा है। आज तड़के यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोनों ने क्रेमलिन से महज 15 किलोमीटर दूर कपोतनिया में वो तबाही मचाई जिसने रूस के घमंड को राख कर दिया। रूसी आंतरिक मंत्रालय खुद मान रहा है कि धमाके इतने भीषण थे कि मॉस्को रिंग रोड पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा। दावे बड़े बड़े थे। कहा गया था कि कपोतनिया रिफाइनरी पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चारों तरफ एंटी ड्रोन नेट की दीवारें थीं, लेकिन यूक्रेनी ड्रोनों के आगे ये लोहे के जाल मकड़ी के जाले की तरह बिखर गए। स्थानीय निवासियों के कैमरे गवाह हैं कि कैसे रूस का एंटी ड्रोन सुरक्षा कवच इस बारूदी बारिश को रोकने में पूरी तरह फेल साबित हुआ। यूक्रेन के 60 से ज्यादा ड्रोन बेरोक टोक मॉस्को में मंडरा रहे थे, एक एक कर बड़ी बड़ी इमारतों से टकरा रहे थे। कई इमारतें तो ऐसी थीं जिन पर यूक्रेनी ड्रोन को रोकने के लिए रूस ने पेंटेसिर एयर डिफेंस मिसाइलों को तैनात कर रखा था। एक के बाद एक यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को में इमारतों से टकरा रहे थे, वहीं दहशत के मारे लोगों की चीख निकल रही थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि रूस के मिलिट्री प्राइड पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। इस रिफाइनरी तक पहुंचने के लिए यूक्रेनी ड्रोनों को सुरक्षा की एक दो या तीन नहीं बल्कि चार अलग अलग परतों को भेदना पड़ा। रास्ते में कम से कम 5 पेंटेसिर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे जो ऊंचे टावरों से आसमान पर नजर रख रहे थे, लेकिन यूक्रेन के लोहे के परिंदों ने इन सब को छकाते हुए सीधे निशाने पर अचूक वार किया। यूक्रेन के निशाने पर यह रिफाइनरी पहले भी रही है। सितंबर 2024, मार्च 2025 और इसी साल मई में भी यहां हमले हुए। रूसी टेलीग्राम चैनल एक्सेल नोवा प्लस का दावा है कि यहां सैकड़ों एयर डिफेंस सिस्टम मुस्तैद हैं, लेकिन यूक्रेन का यह हमला अब तक का सबसे घातक और सफल हमला साबित हुआ है जिसने रूस की राजधानी को हिलाकर रख दिया है। ये रिफाइनरी सालाना 11 मिलियन टन यानी 1.1 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करती है और मॉस्को की 50% डीजल की जरूरत को अकेले पूरा करती है। इस पर चोट का मतलब है रूसी सेना और जनता दोनों पर बड़ा हमला। इस हमले ने रूस को घुटनों पर ला दिया है और इसकी गवाही दे रहा है मॉस्को का ये नया फरमान। घबराए रूस ने 20 जून से मॉस्को और उसके आसपास के 6 से ज्यादा राज्यों में कड़े हवाई प्रतिबंध लागू करने का ऐलान कर दिया है। अब इन इलाकों में छोटे विमान और ड्रोन नहीं उड़ पाएंगे और उड़ानों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5200 मीटर तय कर दी गई है ताकि यूक्रेन के ड्रोनों को पकड़ा जा सके। व्यावसायिक उड़ानें चलती रहेंगी, लेकिन ये पाबंदी चीख चीख कर कह रही है कि पुतिन की नजर में अब मॉस्को का आसमान महफूज नहीं है। आज तक ब्यूरो।
1: रूस यूक्रेन महायुद्ध को 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस बीच फ्रांस की धरती से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जी हां, G7 समिट के बंद कमरों में क्या व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति पर जंग रोकने का दबाव बनाया गया? ये गुप्त दबाव है। क्या इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की लीक हुई बातचीत कोई नया इशारा कर रही है? और इन सब के बीच भारत का वो शांति मंत्र, क्या उससे रास्ता निकलेगा? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के आर पार वाले बयानों के बीच देखिए ये खास रिपोर्ट।

0: 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध आज अपने 1576वें दिन में प्रवेश कर चुका है। 4 साल और 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन तबाही की रफ्तार थमी नहीं है। इसी बारूदी साय के बीच फ्रांस की धरती पर जुटे दुनिया के सबसे ताकतवर G7 देशों के मंच पर पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की का सिर्फ एक ही एजेंडा था, रूस के खिलाफ और घातक हथियार, सख्त आर्थिक पाबंदियां और सर्दियों से पहले अपने तबाह हो चुके पावर ग्रिड को बचाना।
1: We can double. And this is also, I think, good news from our perspective, and that is good news as well from our industry.
0: इस समिट का सबसे बड़ा आकर्षण रही डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात। ट्रंप ने इस बातचीत को शानदार तो बताया और पुतिन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का संकेत भी दिया, लेकिन अमेरिका को इस युद्ध से दूर रखने की उनकी जिद ने यूक्रेन की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इतना ही नहीं, मैक्रों और ज़ेलेंस्की की एक गुप्त बातचीत हॉट माइक यानी ऑन रह गए माइक पर लीक हो गई, जिसने साफ कर दिया कि बंद कमरे के भीतर यूक्रेन पर युद्ध रोकने का भारी दबाव है। इसी समिट के इतर 17 जून को पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात पर। दोनों नेताओं ने युद्ध के चलते टूटे व्यापारिक रिश्तों को फिर से जोड़ने पर सहमति जताई। आपको बता दें कि जो द्विपक्षीय व्यापार कभी $3.39 बिलियन था, वो युद्ध के कारण घटकर महज $783 बिलियन रह गया है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में दुनिया को भारत का स्टैंड समझाते हुए कहा कि भारत हमेशा शांति के पक्ष में खड़ा है और हमारे लिए मानवता की वैल्यू सबसे ऊपर है। लेकिन क्या इस महायुद्ध में शांति संभव है? जून 2026 में ज़ेलेंस्की ने पुतिन को एक खुला पत्र लिखकर तत्काल सीज फायर और युद्ध बंदियों की अदला बदली का प्रस्ताव दिया, लेकिन क्रेमलिन के इरादे कुछ और ही हैं। व्लादिमीर पुतिन ने इस प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि अभी इसका कोई फायदा नहीं। पुतिन की शर्तें साफ हैं, यूक्रेन नाटो की जिद छोड़े, अपनी सेना घटाए और डोनबास समेत कई कब्जे वाले इलाके हमेशा के लिए रूस को सौंप दे।

दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा समुद्री रास्ता जिसकी चौड़ाई भले कम लेकिन ताकत इतनी कि यहाँ हलचल हो तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाए। यह है हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से गुजरती है दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम लाइफलाइन। ओमान और ईरान के बीच सिर्फ करीब 40 किलोमीटर का यह रास्ता दुनिया के लिए तेल की नस जैसा है, क्योंकि खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल और गैस इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। इसी हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा टकराव रहा। ट्रंप का दावा था ईरान को हॉर्मुज पर अपनी मर्जी नहीं चलाने देंगे, दुनिया के इस अहम रास्ते पर किसी एक देश का दबदबा नहीं होगा। लेकिन ईरान भी लगातार कहता रहा कि हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा और संप्रभुता का सवाल है। तेहरान का कहना था युद्ध से पहले वाली स्थिति में वापसी आसान नहीं होगी। अमेरिका ईरान समझौते के 14 पॉइंट वाले एमओयू ने हॉर्मुज को फिर चर्चा के केंद्र मिला दिया है, क्योंकि सवाल ये है जिस हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर दुनिया चिंतित थी, क्या अब वहां नई व्यवस्था बनने जा रही है। समझौते के मुताबिक पहले 60 दिन हॉर्मुज को टोल फ्री रखने की बात कही गई है, यानी जहाजों की आवाजाही पुराने तनाव से बाहर लाने की कोशिश होगी, लेकिन असली पेज इसके बाद है, क्योंकि 60 दिन के बाद हॉर्मुज के लिए एक नया मैकेनिज्म बनाने की बात कही गई है, यानी पुराना सिस्टम नहीं एक नया संतुलन। ईरान और जॉर्डन की भूमिका की बात सामने आ रही है, यानी हॉर्मुज का भविष्य सिर्फ वॉशिंगटन से तय नहीं होगा। दुनिया की नजर इसलिए हॉर्मुज पर है क्योंकि यहाँ तनाव बढ़ा तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, तेल की कीमतें, शिपिंग कॉस्ट और महंगाई तक इसका असर पहुंच सकता है। अगर 60 दिन बाद हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल हो जाएगा, टोल टैक्स लेगा, तो मैरीटाइम फ्रीडम कहां होगी? समुद्री जहाजों की आवाजाही की आजादी कैसी रहेगी? समुद्री सुरक्षा के साथ एनर्जी सिक्योरिटी का मंत्र कैसे काम करेगा? जिनेवा से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।

सपनों की आशियानों की तलाश में निकले घर खरीदारों के लिए चमक धमक वाले विज्ञापनों का माया जाल बिछाया जा रहा है। दिल्ली NCR के रियल एस्टेट मार्केट में इन दिनों लग्जरी और सुपर एरिया के नाम पर बड़े बड़े वादे करने की होड़ सी मची हुई है, लेकिन अक्सर इन सुहाने विज्ञापनों के पीछे की हकीकत वैसी नहीं होती जैसे ब्रोशर में दिखाई देती है। इसीलिए रेरा ने बिल्डर्स को चेतावनी दी है कि विज्ञापनों में बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों की जगह केवल वेरिफाइड फैक्ट्स ही दिखाएं। प्रोजेक्ट की जगह बताने के लिए सुपर एरिया जैसे भ्रामक शब्दों का इस्तेमाल बंद करके कारपेट एरिया की जानकारी दें और अश्योर्ड रिटर्न या गारंटीड रेंटल स्कीम जैसे लुभावने वादों से बिल्डर्स को बचाने की सलाह दी गई है। रियल एस्टेट मार्केट में तेजी का फायदा उठाकर कई बिल्डर्स खरीदारों को जल्द ही पोजेशन और

0: भारी मुनाफे का लालच देकर गुमराह कर रहे हैं। रेरा के नियमों के मुताबिक कोई भी डेवलपर रजिस्टर्ड अग्रीमेंट से पहले खरीदार से कुल कीमत का 10% से ज्यादा भुगतान नहीं ले सकता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहली बार निवेश करने वालों को सावधानी से सौदा करना चाहिए। घर खरीदारों को भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि केवल रेरा रजिस्ट्रेशन होने का मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट पूरी तरह से जोखिम से दूर है। कंस्ट्रक्शन में देरी या कानूनी विवाद जैसी समस्याएं रेरा प्रोजेक्ट्स में भी आ सकती हैं। ऐसे में सलाह दी गई है कि गारंटीड रिटर्न वाले प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने से पहले उनकी लीगल और फाइनेंशियल कंडीशन जरूर चेक कर लें। घर बुक करने से पहले विज्ञापनों पर भरोसा करने की जगह साइट पर जाकर कंस्ट्रक्शन की हालत देखें। बिल्डर का पुराना रिकॉर्ड और पिछले प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी रिकॉर्ड की जांच करना भी जरूरी है। प्रोजेक्ट के अप्रूवल और जमीन के मालिकाना हक से जुड़े लीगल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन खुद करें। अगर कोई बिल्डर वादे से मुकरता है या प्रोजेक्ट में देरी होती है तो घर खरीदार सीधा रेरा पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रेरा की सख्ती का मकसद घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा करना और रियल एस्टेट बाजार से धोखेबाजी को पूरी तरह से खत्म करना है। आदित्य किराणा, आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: 109 दिन के बाद आखिरकार अमेरिका ईरान ने युद्ध के खात्मे का ऐलान कर दिया। अब ना तो मिसाइलों की गूंज है, ना धमाकों का शोर, ना दुनिया को इस बात का डर है कि जंग की आग सब कुछ खत्म कर देगी। 28 फरवरी को अमेरिकी हमले के साथ शुरू हुई जंग 109 दिन के बाद 17 जून को बातचीत की मेज पर खत्म हुई। 14 पॉइंट्स वाले समझौते पर साइन हुए। फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साय पैलेस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने डील पर हस्ताक्षर किए तो ईरानी राष्ट्रपति पजिश्किन ने फारसी भाषा में लिखी डील की कॉपी पर दस्तखत किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस डील में जीत किसकी है, आखिर समझौता किसके पक्ष में रहा। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ट्रंप कार्ड फेल रहा, ईरान के लिए ऑल इज वेल है। तोलमोल में ईरान अमेरिका पर भारी पड़ा, वो सारी बातें मनवाने में कामयाब रहा जो वो चाहता था। ट्रंप डींग हाँकते थे कि ईरान तबाह हो चुका है, ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है, डील में ईरान की शर्तें नहीं चलेगी, ईरान को सरेंडर करना होगा और मुझ सब के लिए खुलेगा, ईरान का कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन डील में वो सब है जो ईरान चाहता था, मसलन हॉर्मुज 60 दिन टोल फ्री रहेगा और फिर ईरान जॉर्डन मिलकर बनाएगा मैकेनिज्म, यूरेनियम बाहर नहीं जाएगा, ईरान में ही डाउनग्रेड होगा। मिसाइल को लेकर ट्रंप ने रुख बदला, अब वो बोल रहे हैं कि जब पड़ोसी देशों के पास मिसाइल है तो ईरान को कैसे रोक सकते हैं, कहां तो फूटी कौड़ी ना देने की अकड़ थी, अब $300 अरब ईरान को मित्र देश पुनर्निर्माण के लिए देगा। 14 पॉइंट वाले समझौते की तस्वीर कुछ अलग कहानी बता रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या बातचीत की मेज पर ईरान अपनी कई शर्तें बचाने में कामयाब रहा। सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट, वही रास्ता जिसे लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने थे। ट्रंप कहते थे हॉर्मुज सबके लिए फ्री होगा, किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन समझौते के मुताबिक पहले 60 दिन हॉर्मुज टोल फ्री रहेगा और उसके बाद एक नया मैकेनिज्म बनाने की बात है जिसमें ईरान और जॉर्डन की भूमिका बताई जा रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा ईरान का यूरेनियम, ट्रंप की मांग थी कि ईरान यूरेनियम बाहर सौंपे, लेकिन डील की शर्तों के मुताबिक यूरेनियम को ईरान से बाहर भेजने के बजाय उसी जगह डिग्रेड करने का रास्ता सामने आया, यानी ईरान की जमीन पर ही प्रक्रिया। तीसरा मुद्दा ईरान की मिसाइल ताकत, जिस पर अमेरिका सख्त रुख की बात कर रहा था, लेकिन बातचीत के बाद मिसाइल मुद्दे पर भी भाषा और रुख में बदलाव की बात कही जा रही है। और फिर आया सबसे बड़ा उलटफेर, जहां पहले कहा जा रहा था ईरान को कोई राहत नहीं मिलेगी, वहीं अब पुनर्निर्माण के लिए मदद की बात सामने आई, करीब $300 अरब तक की सहायता की चर्चा है। तो क्या ये ट्रंप की जीत है या फिर क्या ईरान बिना पूरी तरह झुके अपनी अहम शर्तें बचाने में कामयाब रहा। 109 दिन की जंग के बाद बंदूकें खामोश हैं, लेकिन असली मुकाबला अब नैरेटिव का है। अमेरिका कहेगा हमने ईरान को बातचीत पर मजबूर किया, ईरान कहेगा हमने दबाव के बावजूद अपनी जमीन नहीं छोड़ी, यानी डील हो गई लेकिन जीत की कहानी दोनों देश अपने अपने हिसाब से लिख रहे हैं।
1: कोटा में छात्रों से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने एजुकेशन सिस्टम पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं पर छात्रों का कुल खर्च 5 मंत्रालयों के बजट के बराबर है। सरकार का ध्यान ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन पर है। आपके परिवारों के राहुल ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को वसूली करने वाली मशीन बताया।
2: 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है।
1: प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोटा में छात्र संवाद के दौरान पेश किए गए आंकड़ों को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि मैं इसमें बस एक बात और जोड़ना चाहती हूं, भारत सरकार द्वारा अपने पसंदीदा कारोबारियों के जो लोन माफ किए गए वो 16 लाख करोड़ रुपए का है। नीट पेपर लीक के बाद कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। लगातार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रही कांग्रेस अब शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

छह सांसदों के बगावत के बाद बैकफुट पर उद्धव गुट, संसदीय दल की बैठक में नहीं आने पर कारण बताओ नोटिस जारी। आज तक से बोले डीजीपी, सभी बागियों को दी गई सुरक्षा। हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को फिर झटका, स्पीकर के फैसले पर स्टे से फिलहाल इनकार। ऋतव्रत बनर्जी बने रहेंगे विपक्ष के नेता, 28 जुलाई को अगली सुनवाई।

प्री एग्जाम से पहले धर्मेंद्र प्रधान की हाई लेवल मीटिंग, तैयारियों की समीक्षा। बैठक में एनटीए, शिक्षा मंत्रालय और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल। रांची में आरएसएस दफ्तर पर हमले का आईएसआई कनेक्शन बेनकाब। पाक खुफिया एजेंसी के संपर्क में था आरोपी अमन अंसारी, भागने की

0: शान में कसीदे पढ़ने के बाद आज ट्रंप ने इंडिया टुडे का कवर पेज किया रीशेयर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई साथ वाली तस्वीर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश में नेताओं के दल बदल को लेकर चल रही बहस पर है। क्या नेताओं के दल बदल से लोकतंत्र मजबूत होता है? आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है। और अगर लोकतंत्र मजबूत होता है तो हमारे देश में दल बदल रोकने के लिए कानून क्यों बनाए गए? क्योंकि जिस कानून को सियासी मौका परस्ती को रोकने, सरकारों को स्थिर बनाए रखने, जनादेश का सम्मान कराने और राजनीतिक नैतिकता और शुचिता कायम रखने के लिए बनाया गया था, वो आज पूरी तरीके से मूल्यहीन क्यों नजर आ रहा है? महाराष्ट्र से बंगाल तक आज दल बदल की जो तस्वीर दिखाई दे रही है, मौका परस्त सियासतदानों के बीच दल बदल विरोधी कानून की सुराखें तलाशने का जो नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है, वो कहां जाकर थमेगा? क्या बागी तंत्र से ही अब चलेगा लोकतंत्र? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बंगाल हो या महाराष्ट्र, कहीं भी पार्टी नहीं टूट रही है, सिर्फ वो नेता टूट रहे हैं जिनकी संसद या विधानसभा में भागीदारी है, जिन्होंने एक विचारधारा और दल के नाम पर जनादेश प्राप्त किया है और अब उस जनादेश के खिलाफ ही बगावत कर रहे हैं। ये बागी किसी न किसी वजह से सत्ता में शामिल होना चाहते हैं। हमारे देश के कानून में इस बुराई से लड़ने की कोशिश 1950 से लगातार चल रही है। 45 साल में दो दो बार संविधान संशोधन हो चुका है, लेकिन बगावत के नाम पर मौका परस्ती की बीमारी अब नई महामारी का शक्ल लेती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में तकरीबन तय हो चुका है कि उद्धव ठाकरे के 6 सांसद टूटकर अलग हो जाएंगे। बंगाल में बागी गुट को मान्यता के खिलाफ हाईकोर्ट सुनवाई तो कर रहा है, लेकिन स्पीकर के फैसले पर रोक नहीं लगी है। अब तो जो टूट फूट के पीड़ित पक्ष है, उनमें संजय राउत जैसे नेता सुप्रीम कोर्ट पर ही सारा ठिकरा फोड़ रहे हैं। तो इसी मसले पर और इन्हीं मुद्दों पर दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।
3: बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक, ममता के मानुष से उद्धव के कुनबे तक, एक महीने में दो दल टूटे और कई दल हारे, लेकिन इन दोनों मामलों में बागियों को कहीं नेता का नेतृत्व कबूल नहीं तो कहीं सेकंड इन कमांड कबूल नहीं। बंगाल में ममता कबूल है तो अभिषेक नहीं, महाराष्ट्र में ठाकरे कबूल है, राउत नहीं। अब टूट पीड़ित कह रहे हैं, इस मुल्क में दल बदल के बहाने भले हों हजार, लेकिन फूट के फंसाने के पीछे तो रही है केवल एक सरकार। और अब सरकार से शिकायत लेकर स्पीकर के पास जाएं, चुनाव आयोग जाएं या अदालत, पीड़ितों को राहत नहीं मिल रही तो बौखलाहट सामने आ रही है।
4: जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जिया उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग।
3: उद्धव के नेता सुप्रीम कोर्ट को कोसते हैं, क्योंकि अगर शिंदे वाली बगावत पर फैसला हो गया तो बची खुची उद्धव सेना में टूट नहीं होती। दरअसल 14 दिन की कसम, हलफ, मान मनुहार, अनुरोध, अपील के बावजूद जब 6 सांसद गायब रहे तो सांसदों को व्हिप जारी करके बुलाया गया। संसदीय दल के नेता संजय राउत तय समय पर पहुंचे।
5: सर, आपको लगता है कि सारे लोग आएंगे?
4: देख लेंगे, जो आएंगे हमारे नहीं आएंगे, बेईमान गद्दार।
3: उद्धव के दो सांसद काफी देर तक इंतजार करते रहे, आधे घंटे बाद फिर नासिक वाले राजा भाऊ वाजे भी पहुंचे, लेकिन 6 बागी नजर नहीं आए।
4: एक्शन की शुरुआत हो गई है, उनको सौंपा दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द।
3: लेकिन कार्रवाई फिर स्पीकर के हाथ होगी, चुनाव आयोग के दरबार में होगी या फिर इंसाफ अदालतों की चौकटों से ही निकलेगा, पर वक्त तय नहीं, क्योंकि एक फैसला कोलकाता में भी फंसा है। टीएमसी में टूट के बाद नेता विपक्ष और चीफ विप का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, नोटिस भी दिया, जवाब भी मांगा, लेकिन बागी गुट को नेता विपक्ष बनाने के स्पीकर के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई।
6: The High Court has not passed any interim order, but High Court admitted the petition directions for affidavits have been given and the matter will come up for final hearing.
3: अब अदालती हो या आयोग या फिर स्पीकर की चेयर, दल बदल वाले इन मामलों में हर दल संविधान और कानून के हिसाब से न्याय की उम्मीद करता है, लेकिन सत्ता की सियासत और कुर्सी के लालच का अफसोसनाक पहलू ये कि कानून के दांवपेच का इस्तेमाल लोकतांत्रिक नैतिकता के खिलाफ होता दिखता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
7: तो अब करीब करीब यह तय हो चुका है कि ये छह सांसद शिवसेना में यानी एकता छिंदे की शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। फिलहाल तो उन्होंने अलग गुट बनाने की दरख्वास्त स्पीकर के सामने रखी हुई है, उस पर कब फैसला होता है वो तो देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले महीने भर में अलग अलग पार्टियां टूट रही है, ये किस तरफ इशारा करता है और क्या इसकी जरूरत है, क्या लोकतंत्र इससे मजबूत होता है? कई सारे सवाल इससे जुड़े हुए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ के शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, निखत अब्बास कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रही है, अखिल चित्रे शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं, डॉक्टर राजू वाघमारे जो आज खुश होंगे क्योंकि उनकी पार्टी आज महाराष्ट्र में बीजेपी के से भी ऊपर लोकसभा में उनके नंबर्स हो गए हैं क्योंकि 13 सांसद अब शिवसेना के हो जाएंगे राजू वाघमारे की पार्टी के, जबकि बीजेपी के 9 सांसद है फिलहाल महाराष्ट्र से आते हैं। अमिताभ सिन्हा एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के और विशाल गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, वो भी चर्चा में शामिल होंगे क्योंकि दल बदल कानून क्या आज की स्थिति में पूरी तरीके से बेअसर हो गया है, यह भी इस चर्चा का विषय धीरे धीरे बनता जा रहा है। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या देश में चल रही दल बदल की आंधी से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि जब दल बदल कानून बनाया गया था तो उनके उद्देश्य में यह सबसे बड़ा उद्देश्य रखा हुआ था कि यह कानून क्यों बनाया जा रहा है, क्यों संविधान में संशोधन किया जा रहा है। दूसरा सवाल, क्या दल बदल विरोधी कानून में सदस्यता रद्द करने जैसे प्रावधान जोड़ना अब जरूरी हो गया है? या आप जिस पार्टी से जीत कर आते हैं इस्तीफा दे, चुनाव लड़े और उसके बाद अपनी पार्टी को बदले। तीसरा सवाल, क्या दल बदल विरोधी कानून लोकतंत्र की बजाय दल तंत्र की सुरक्षा करता है? क्या यह लोकतंत्र के जगह उस पार्टी की सुरक्षा करता है जो दल बदल के लिए लोगों को उकसा रहे हैं? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, के शर्मा जी आप ही से करनी होगी क्योंकि कानून के उद्देश्य ढूंढने की मैं कोशिश कर रहा था और जो कानून के 3 उद्देश्य 1985 में संविधान संशोधन के साथ यह कानून बनाया गया था उसमें 3 उद्देश्य मुझे दिखाई दिए। पहला उद्देश्य था राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना, क्योंकि मैं वो कानून जब पढ़ रहा था तब मैंने देखा। दूसरा उद्देश्य था प्रलोभन देकर विधायकों या सांसदों को लुभाने वाले हॉर्स ट्रेडिंग पर रोक लगाना, और सबसे बड़ा उद्देश्य उसमें यह लिखा गया था लोकतंत्र को मजबूत करना। इसमें से कौन सा उद्देश्य आज की स्थिति में ये दल बदल जो हो रहे हैं उसकी वजह से साबित हो रहे हैं या पुख्ता हो रहे हैं?
8: साहिद जी, आपका ये प्रश्न तो है लेकिन इससे भी एक बड़ा प्रश्न आपने इस विमर्श में रखा है। आपने इसमें रखा है कि लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, मजबूत हो रहा है या समाप्त हो रहा है। मैं आपको एक प्रति दिखाना चाहता हूं, डिटेल्स। कांग्रेस स्वतंत्रता के बाद अब तक कितनी बार टूटी? शायद इस पैनल में लोग बैठे हों जो बता पाए। कितनी बार टूटी सर? 62 बार टूटी कांग्रेस पार्टी अकेली, 62 बार टूटी। और किसने तोड़ा कांग्रेस पार्टी को 62 बार? जे कृपलानी साहब, सी राजगोपालाचार्य, के एम जार, चौधरी चरण, कुछ प्रमुख नाम पढ़ रहा हूं मैं, चौधरी चरण सिंह, स्वयं इंदिरा गांधी ने 2 बार तोड़ा, के कामराज, बीजू पटनायक, ए के एंटोनी, शरद पवार, जगजीवन राम, प्रणव मुखर्जी, बंसीलाल, नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, नटवरलाल साथ से, बंगरप्पा,
7: कहना क्या चाह रहे हैं,
8: ममता बनर्जी।
7: आप कहना क्या चाह रहे हैं के शर्मा जी? मेरा सवाल यह है कि जो अभी हो रहा है उससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है क्या?
8: नहीं, आपने जो प्रश्न उठाया और जहां आपका इशारा है मैं उसकी ओर जा रहा हूं। मुझे बताइए, जब 62 बार कांग्रेस टूटी तो क्या भारतीय जनता पार्टी थी? उसमें भारतीय जनता पार्टी थी जब कृपलानी साहब तोड़ रहे थे, राजगोपालाचार्य तोड़ रहे थे, प्रणब मुखर्जी जो तोड़ रहे थे, शरद पवार 2 बार तोड़े, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा?
7: अरे सर, 92 बार नहीं कि भारतीय जनता
8: पार्टी तोड़ रही है। सर
7: शर्मा जी,
8: नहीं,
7: मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। बाकी इतिहास अब हम 200 बार यहां पर अटे रटाए बोल चुके हैं कि कितनी बार कांग्रेस टूटी है, बीजेपी टूटी है, छोटे दल टूटे हैं। दल बदल कानून के जो उद्देश्य रखे गए थे क्या वो पूरे हो रहे हैं? दल बदल के वजह से क्या लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या नहीं हो रहा है? स्पेसिफिक सवाल है सर।
8: उस जो जो कुछ हो रहा है सब कानून के दायरे पे हो रहा है। कानून से अलग क्या हो रहा है साहिल भाई? कानून से अलग क्या हो रहा है? देश में सुप्रीम कोर्ट है, देश में हाई कोर्ट है, स्पीकर की अपनी वो है, जो कुछ हो रहा है कानून के दायरे में हो रहा है। तो दल बदल कानून कहां टूट रहा है? लेकिन आप जो लोकतंत्र का प्रश्न उठा के बैठे हैं, मैं उस पर जवाब पूछ रहा हूं आपसे। जब कांग्रेस पार्टी ने 57 बार
7: पूछ रहा हूं
8: चुनी हुई सरकार,
7: कानून इसीलिए बनाया गया था कि लोकतंत्र मजबूत किया जाए। आज की स्थिति में दल बदल से क्या लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह सवाल है इसमें। और जो आपने उदाहरण दिलवाए, मैं एक बार फिर आपको कहता हूं, ये सारी चीजें हो रही थी इसीलिए दल बदल कानून लाया गया था, इसीलिए दल बदल कानून में संशोधन किया गया था और इसीलिए दल बदल कानून और सख्त बनाया गया था ताकि उस तरीके की चीजें ना हो सके, लोकतंत्र मजबूत हो, इसीलिए दल बदल कानून बनाया गया।
8: साहिल जी, आप अपने प्रश्न को रखने के लिए कई तर्क उतर्क के साथ बातें कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि आज कौन सा कानून टूट रहा है? आज जो दल बन रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रही है, वो भी फैसले दे रही है, हाई कोर्ट भी फैसले दे रहे हैं और स्पीकर के पास जो
7: सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला आ चुका है जरा बताइए मुझे। शर्मा जी जरा बताइए कौन सा फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ने? तीन बड़े फैसले उनके सामने पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तीन केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ी हुई है और इसीलिए तो सवाल उठ रहा है, विपक्ष आज उठा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बना हुआ है इस पूरे मामले में। आज संजय राउत ने सवाल उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है।
8: नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे फैसला उनके पर प्रश्न उठाना तो संजय राउत के लिए जायज है क्योंकि वो तो बहुत सारे प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन जो भी निर्णय है अभी तक आए या जो सुनवाई हुई उसमें कहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है क्या? शिवसेना का ही मैं प्रश्न पूछता हूं, शिवसेना पे रोक लगाई है क्या? और उसको तो शिवसेना को तो उसको उसका चुनाव चिन्ह भी मिल गया, देश की ही जो है संस्थाओं ने दिया उनको, तो इसलिए कहां से गलत हुआ सर? लेकिन मेरे को समझ नहीं आता जब आप अपने हेडिंग में लिखते हैं कि लोकतंत्र जो है एक मिनट मुझे बात पूरी कर लेनी थी। तो इतना ही बताना चाहता हूं सर कि ये जो संजय राउत आज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जिस तरह गुंडागर्दी की भाषा बोल रहे हैं और जिस ढंग से गाली गलौज कर रहे हैं, यदि ये लोकतंत्र नहीं होता ना तो जेल के अंदर होते सर। ये इसीलिए देख पा रहे हैं
7: हमारे साथ में शिवसेना यूपीटी के प्रवक्ता
8: लोगों को, क्यों इसीलिए
7: बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है सब कानून के हिसाब से हो रहा है,
8: जी रहा है,
7: कोई भी कोर्ट इस पूरे दल बदल को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसका मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है और लोकतंत्र इस पूरे मामले में मजबूत हो रहा है, कुल मिलाकर यह कहने की उनकी कोशिश है। अखिल चित्रे, आपका जवाब, उसके बाद निखत अब्बास और दूसरे शिवसेना के प्रवक्ता अभी तक आए नहीं है, उनसे भी पूछ रहे हैं। चलिए अखिल,
9: क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ उन्होंने जिसे तैयार किया है, जन्म दिया है, वो टेस्ट ट्यूब बेबी जो महाराष्ट्र में यहाँ है, शिवसेना शिंदेगढ़, उनको सिर्फ औरंगजेब और हिटलर इनके मार्ग पे ही चलना है, उसे वो सही समझते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सब यंत्रणा अपने हाथ में लेके ईडी सीबीआई और जो भी कोई और यंत्रणा है, सुप्रीम कोर्ट, आपने ही अभी मैं आपके डिबेट में सुन रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निकाल अभी तक आए नहीं है, तीन तीन केसेस में जो मार्गदर्शक हो सकता है सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय अभी तक पेंडिंग रखे हुए हैं, उसके वजह से ये सब हो रहा है। पिछले 4 साल में ये दूसरे बार महाराष्ट्र में ये जो दिल्ली मैन्युफैक्चर्ड एंड इंजीनियर्ड टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये दूसरे बार हॉर्स ट्रेडिंग करके शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ये पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पार्टी तोड़ रहा है। और ये एक चीज हमें समझनी होगी साहिल जी, ये सिर्फ शिवसेना नहीं तोड़ी जा रही है, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, हमारे फंडामेंटल वैल्यूज है, इन पर हमला किया जा रहा है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है ना
7: अखिल चित्रे,
9: ये जो कुछ
7: के शर्मा जी वही बोल रहे हैं कि जो आप आरोप लगा रहे हैं उसमें गैर कानूनी क्या है, कौन सा कानून तोड़ा जा रहा है? दल बदल कानून में जो लिखा गया है उसी हिसाब से सारे डिफेक्शन हो रहे हैं, कानून के दायरे में रहकर डिफेक्शन हो रहे हैं, वही के शर्मा अभी कह रहे थे। आप जरा ये बताइएगा कि कौन से कानून में रहकर ये सारे डिफेक्शन हो रहे हैं। और दूसरी बात, वो ये भी कह रहे हैं, हाँ बोलिए,
10: तो कानून की बात अगर हो रही है ना, तो आई थिंक पैरा 4-10 शेड्यूल का अगर वो पढ़ ले तो 2/3 सिर्फ मैंडेटरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, अगर इफ यू रीड इट इन इट्स ट्रू सेंस एंड ट्रू वैल्यू, यू विल कम टू नो, आपको ये ध्यान में आएगा कि पेरेंट पार्टी अलोंग विथ 2/3 मेजॉरिटी, सिर्फ 2/3 को अंडरलाइन करके जो वो बात कर रहे हैं ना, क्योंकि सब यंत्रणा उनकी है, सुप्रीम कोर्ट उनका है, चाहिए उस तरीके से उनको वो ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो किताबों में लिखा गया है, जो अपने लॉ बुक्स में है, वो रॉन्ग है,
7: इंप्लीमेंटेशन
10: इज रॉन्ग।
8: और जिनको देश के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, देश के न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं, उनको किस पे भरोसा होगा सर? तो वो तो इसी तरह अनर्गल आरोप लगाएंगे। और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इस पूरे टूट फूट में भाजपा कहां है, भाजपा का क्या लेना देना? आपकी पार्टी, आपका नेता, आपके विधायक, आपके सांसद आपस में टूट रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में जा रहे हैं, वहां भाजपा कहां आ गई है भाई? हमें तो ये समझ ही नहीं आता कि भाजपा को, आपको एक सस्ता सा मिल गया कि अपने नेतृत्व की नाकामियों को आपको छुपाना है, इसलिए आपको भाजपा पे आरोप लगाना है। इसमें आपका नेतृत्व निकम्मा बना बैठा हुआ है, उसको अपनी पार्टी के लोगों का नहीं पता। आप अपनी पार्टी के सांसदों को गालियां दे रहे हैं, सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली दे रहे हैं, अंदर तो कमरे में क्या करते होंगे पता नहीं आप। तो आप जिस तरह से निकम्मापन है आपका, आपके लोग टूट रहे, तो आप उसका आरोप आपको भाजपा को लगा देना, जिसका कोई लेना नहीं देना
7: अखिल
8: नहीं।
7: चित्रे
8: मुझे आश्चर्य है। और एक दूसरी गलत फहमी दूर कर लीजिए भैया, अखिल चित्रे जी, आपकी पार्टी पहले भी टूटी,
10: गलत फहमी,
8: आपकी पार्टी पहले भी टूटी, राज ठाकरे ने तोड़ा आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी को राज ठाकरे ने तोड़ा, तब आपकी बोलती बंद थी क्या? कौन सी पार्टी में? इसीलिए कांग्रेस का हिस्ट्री सुना है कि 62 बार
7: शर्मा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अखिल,
8: समाजवादी पार्टी 3 बार टूटी, आप समाजवादी पार्टी
7: के शर्मा दरअसल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पार्टी पहले भी टूट चुकी है, अभी आप इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? आपको तो आदत हो जानी चाहिए, और सवाल उठाना बंद कर दीजिएगा, आदत हो जानी चाहिए आपको पार्टी टूट रही है तो, इसीलिए आप सवाल मत उठाइए, पहले भी टूट चुकी है आपकी पार्टी, कांग्रेस ने तोड़ी है, राज ठाकरे ने
8: बांध दी।
7: चलिए अखिल चित्रे,
10: पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को और देश को यह बता दूं कि निकम्मा कौन है। जो भारतीय जनता पार्टी दिन रात सुबह शाम कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात करती थी, जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस को भ्रष्टवादी कांग्रेस कहती थी, जो उन्हीं कांग्रेस के सब विधायकों को, उन्हीं कांग्रेस के सब खासदारों को, उन्हीं कांग्रेस के सब नेताओं को लेकर साथ में बैठी है। आप अगर देखो ना, भारतीय जनता पार्टी का अभी आप मंत्रिमंडल देख लो, या भारतीय जनता पार्टी के टॉप की लीडरशिप देख लो, अगर उनको लाइन में बिठाए ना, तो आपको दिखाई देगा कि 95% उसमें इन्हीं कांग्रेस के लोग है। तो निकम्मा है ना ये भारतीय, निकम्मा भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुद की लीडरशिप कभी डेवलप ही नहीं की। चोरी मेरा काम, भारतीय जनता पार्टी मेरा नाम, इस तरीके से उन्होंने गवर्न किया है, उनके खुद के भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप।
7: लेकिन वो तो कह रहे हैं आप अपने लोगों को संभाल नहीं सकते अखिल चित्रे, कैसे ऐसा होता है कि 6 सांसद 2 साल के भीतर जीत कर आने के 2 साल के भीतर ही आपके सांसद भाग जाते हैं? ये कैसे हो सकता है अखिल चित्रे? अभी इनके इनके खिलाफ तो कोई ईडी की केसेस थी नहीं, और वो कह रहे हैं कि दल बदल कानून में 2/3 का हिसाब लेकर वो जा रहे हैं।
10: मनी है तो हनी है
8: नहीं साहिल भाई, मुझे एक छोटी
10: तो जाए ना, सीना ठोक के जाए, एथिकली जाए, सामने आके जाए, भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो सामने आके बोले कि हमने ये किया है। तोड़ मरोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी हर स्टेट में, स्टेट स्पॉन्सर्ड, जैसे टेररिज्म होता है ना वैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अटैक, ये भारतीय जनता पार्टी करती है।
8: मैं एक छोटी सी बात कहना,
10: फिर वो चाहे दिल्ली हो, फिर वो चाहे तमिलनाडु हो, फिर वो चाहे वेस्ट बंगाल हो,
8: केवल छोटी सी बात कह रहा हूँ, छोटी सी एक बात मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं हमें तो कांग्रेस से टूटकर या जो भी आए उन्होंने गठबंधन में हमें बाहर से समर्थन दिया। उद्धव ठाकरे तो पूरी पार्टी लेके जो है सोनिया गांधी की गोद पे चले गए, कांग्रेस की गोद पे जा बैठे। किस विचारधारा की बात करते हैं आप? पूज्य बाला साहब ठाकरे की विचारधारा थी क्या है कि कांग्रेस की जो है गोद में जाके बैठ जाओ? ये शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने किया ना,
11: लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं
7: के शर्मा जी
11: कि आप जो है जिस की विचारधारा लेके चले थे आप तो उसके
7: ये बड़ी दिलचस्प बात है
11: तो आप किसको सिखा रहे?
7: ठीक है, ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये बात तो 2022 में भी निकली थी जब कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया था और उसके बाद एकनाथ शिंदे और उनके सहयोगी कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ गए इसके लिए हमें विचारधारा पसंद नहीं है, इसके लिए हम तोड़ रहे हैं। अभी जो सांसद टूटे हैं वो तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़कर वहां पर निकल कर आ गए। अब विचारधारा का सवाल कहां उठता है और ऐसा क्या है कि पिछले एक महीने में एक के बाद एक पार्टियां टूट रही है, ये टाइमिंग क्या है? और इसीलिए दल बदल कानून भी यहां पर खड़ा होता है। शिवसेना के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन निकेत अब्बास आप कुछ ऐड करना चाह रही है वो करिए, उसके बाद मुझे जरा कानूनी राह भी राय भी इसको लेकर जानिए।
11: परिवारवाद और वंशवादी पार्टियां होंगी तो यही हालात होंगे।
12: साहिल जी, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ 200 साल जी साहिल भाई ने प्लीज चुप करा लीजिए, धन्यवाद। साहिल भाई, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि न जाने क्यों हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ 200 साल तक लड़ाई लड़ी, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने इसलिए तो जंग नहीं लड़ी थी आजादी की कि जनता वोट किसी को दे और वो नेता ही बिक जाए। उन्होंने इसीलिए भी आजादी नहीं लड़ी थी कि सरकार किसी और की जनता बनाना चाहे और सरकार किसी और की बना दे, और इसलिए भी जंग नहीं लड़ी गई थी कि सांसद और विधायक अब जनता के प्रतिनिधि नहीं और सरकार के यानी सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि बन जाए। क्योंकि जिस प्रकार अभी जो पैटर्न देखा जा रहा है साहिल भाई, कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है एक पार्टी चुनाव हार जाती है और वो सत्ता पक्ष की तरफ ऐसे दौड़ने लगती है, तो मुझे वो इतिहास की बात याद आ जाती है कि देश को सिर्फ बाहर के दुश्मनों ने गुलाम नहीं बनाया था, देश को उन लोगों ने भी कमजोर किया है। और आज भी वही लोग देश को कमजोर कर रहे हैं जो अपने लालच के चलते जनता का भरोसा तोड़ रहे हैं और छीन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, दल बदलने वाली बात हो रही है साहिल भाई, आज देखना चाहिए कि क्या जो दल बदला जा रहा है वो सिर्फ विचारधारा को लेकर बदला जा रहा है, नहीं, वो डर को मद्देनजर रखते हुए बदला जा रहा है। इन्होंने कहा कि सारे तो नेता विधायक जितने मंत्री सांसद जितने बदले हैं उनके सबके खिलाफ तो ईडी के केसेस नहीं थे, नहीं बिल्कुल नहीं थे, सबके खिलाफ नहीं थे, पर बहुत लोगों के खिलाफ थे। ये जो लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है उसमें सबसे पहले कमजोर कर रही है विपक्ष को, और पहले उनके ऊपर एजेंसियां छोड़ी जाती हैं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के नोटिस फेंके जाते हैं, कुछ नहीं।
7: लेकिन तो वो तो कह रहे थे दल बदल तो कोई नई बात तो है नहीं ना, निखत अब्बास जरा मुझे इस बात का फर्क भी बताइए, ये देश की संस्कृति आज की तो नहीं है, ये देश की संस्कृति आज तो नहीं है। जेएमएम कांड की चर्चा काफी हुई थी, उसी के बाद तो चर्चा हुई थी कि दल बदल कानून को सख्त करना चाहिए, और जो जो सरकार इस दल बदल कानून के वजह से सदमे में आई है, तकलीफ में आई है, उनको लगा है कि दल बदल कानून सख्त करना चाहिए, फिर वो राजीव गांधी प्रधानमंत्री हो या फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में, उन्होंने इस दल बदल कानून को सख्त किया, उसके बावजूद तब का दल बदल और आज के दल बदल में आप कैसे फर्क करेंगे?
12: साहिल भाई, ये आपको लगता होगा, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको देख के पता नहीं चला जिन जिन नेताओं के, सांसदों के, विधायकों की ये जो न्यूज आती है दल बदलने की, अधिकतर लोगों के केसेस होते हैं ईडी के, सीबीआई के। नवीन जिंदल ले लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा ले लीजिए, सुवेंदु अधिकारी ले लीजिए, या तो डिप्टी सीएम किसी को बना देते हैं या मुख्यमंत्री बना देते हैं, पद की लेन देन कर लेते हैं या पैसों की लेन देन कर लेते हैं। प्रॉब्लम वहां है जब लोकतंत्र को, लोकतंत्र का चोला उड़ाकर, कानून का चोला उड़ाकर खरीद होने लगती है और मन की बात में आके प्रधानमंत्री कह देते कि सब हमारे हैं और सब हमारे साथ हैं। अरे जब मन की बात में आके आप जनता को ये बता रहे हो कि सब हमारे तरफ आ रहे हैं,
7: कौन सी चीजें हैं कि जिसके वजह से ये छह सांसद को अचानक लगने लगा दो साल के भीतर कि अभी यूबीटी के जगह पर शिवसेना में जाना चाहिए? जिस बात का जिक्र निखत अब्बास यहां पर कर रही है, ऐसी कौन सी बात हो गई? पहले वाले तो आप लोग कह रहे थे कांग्रेस के साथ गए इसके लिए हम लोग आ रहे हैं, अभी ये लोग तो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़कर जीते हुए हैं, ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि आपके पास आने के लिए तैयार हो गए, और ये आपके पास आ रहे हैं कि अलग गुट बना के रहेंगे, वो भी क्लैरिफाई कर दीजिएगा।
13: बिल्कुल, पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का मैं जवाब देना चाहता हूं। कांग्रेस ने 50 साल में कितने सरकारें तोड़े, कितने जोड़े, और कांग्रेस कितनी बार फूटी,
7: इसीलिए आप कर रहे हैं वो सही है,
13: आपको जवाब दे रहे
7: हैं, इसीलिए आप कर रहे हैं वो सही है,
13: नहीं हम कर रहे हैं सही,
7: आप कर रहे हैं वो सही है,
13: नहीं सुनिए ना, कितना बार कांग्रेस फूटी, कितना बार कांग्रेस
7: उन्होंने वो किया, इसी के वजह से आज उनको सरकार से बाहर निकाल दिया,
13: तो लोगों
7: को वो बात पसंद नहीं आई, इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी को आज विपक्ष में रखा हुआ है, कि सरकार ही तोड़ी वो गलत किया इसीलिए तो आज बाहर रखा हुआ है, लोकतंत्र मजबूत नहीं रखा हुआ है, इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठ रहे थे।
13: आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे, बोले मुझे बोलने दीजिए,
7: बोलिए बोलिए।
13: तो नैतिकता की बात कांग्रेस करे नहीं तो वही ठीक रहेगा। फिर हमारे अखिल भाई ने कहा कि भाई आइडियोलॉजी, सन्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, और उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और दुकान बंद कर दिया। दूसरी बात, आपने कहा कि ये जो खासदार है वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े, कुछ दिन पहले हमारे संजय राउत साहब ने क्या कहा कि भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो लोग हैं और टीएमसी के लोग हैं वो जाके कांग्रेस के साथ विलीन करे। अरे संजय राउत कौन है? संजय राउत ने ठेका लेके रखे है ये छह विधायक का,
7: कि भाई आपके पास तो ये सांसद क्यों आ रहे हैं वो बताइए ना।
13: हाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ,
7: सांसदों को आपने क्या दिया है वो बताइए ना।
13: वापस कांग्रेस के साथ विलीन नहीं होना है उनको, इसके लिए वो बोल रहे हैं कि भाई हमको नहीं पसंद है ये नेतृत्व, जो नेतृत्व जो उनके लिए कैंपेन नहीं करता, जो उनको फंडिंग नहीं करता, जो उनको मिलता नहीं, जो फेसबुक लाइव करता है, जो एरोगेंट है, जो इनएक्सेसिबल है।
7: कांग्रेस के साथ चुनाव लड़कर जीतना पसंद है, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव जीतना पसंद है। आपको याद होगा कि ये सारे सांसद किसके सपोर्ट से चुनाव लड़े थे, तब आपने क्या आरोप लगाया था उन पर?
13: नहीं बिल्कुल, हम तो हमारे आइडियोलॉजी पे कायम है ना, हम हमारे स्टैंड बदली करते हैं क्या? हम कहते हैं कि भाई हम सम्मानित हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, हम मराठी मानुष के लिए काम करते हैं, हम हिंदू मानुष के लिए काम करते हैं, हमने तो हमारी आइडियोलॉजी नहीं बदली। अगर ये छह सांसद जो है वो सम्मानित नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व स्वीकारते हैं, एनडीए को स्वीकारते हैं, एकनाथ शिंदे जी का नेतृत्व स्वीकारते हैं, क्योंकि वो ग्रास रूट लीडर है, ग्राउंड लेवल के लीडर है, वो उनको हर समय मदद करते रहते हैं, तो वो ऐसा लीडर एक्सेप्ट कर रहे हैं जो उनको एक्सेसिबल है, जो उनका काम आए, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी
7: का काम पास आ रहे हैं कि जो कृष्णा हेगड़े अभी तक ये बात पब्लिक डोमेन में आई नहीं है, इसके लिए आपसे पूछ रहा हूं मैं। ये सारे छह लोग जो है वो तृणमूल की तरह कोई एनसीपी या छोटी पार्टी में तो नहीं जाएंगे या आपके पास आएंगे?
13: देखिए, वो छोटी पार्टी में जाए या हमारे पास आए, आ रहे तो हमारे पास ही, क्योंकि बात ये है कि अच्छा, ठीक है। कल हमारा वर्धापन दिन है, वहां पर आपको दिखेगा क्या होगा, हाँ। आगे होता है क्या। दूसरी बात ये है कि
7: चलिए ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि वो सारे के सारे लोग कल शिवसेना के वर्धापन दिन के दिन वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये कृष्णा हेगड़े अधिकृत तौर पर यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं।
13: मैंने ये नहीं कहा कि वो शामिल हो रहे नहीं हो रहे, वो ये बात एकनाथ शिंदे जी खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई सीबीआई लिया, ईडी लिया, मुलायम सिंह जी के ऊपर सीबीआई किसने लगाया? हमने लगाया क्या? कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने जो स्टार्ट किया है, अभी कांग्रेस बोलती है नहीं ये तो नैतिक
7: कंटिन्यू कर रहे हैं।
13: अरे हम कंटिन्यू नहीं कर रहे, इन्होंने जो किया उनको खाली हम आईना दिखा रहे हैं।
7: चलिए ठीक है,
13: हम खाली आईना दिखा रहे हैं,
7: ठीक है,
13: इन्होंने बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, हम आईना दिखा रहे हैं।
7: सुप्रीम कोर्ट का जिक्र इसमें बार बार हो रहा है, एक मिनट निखा जी, एक मिनट, इस पे सुप्रीम कोर्ट का जिक्र बार बार हो रहा है, और यही बात लेकर मुझे आपके पास और विकास गुप्ता जी के पास आना है कि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हो रहा है, कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश हो रही है इन पार्टियों के तरफ से कि अदालत इस पूरे मामले में मुखदर्शक बना हुआ है, दल बदल कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी नहीं हो रही। आप इसे किस तरीके से देखते हैं जो आरोप लगाया जा रहा है इन पार्टियों की तरफ से?
14: धन्यवाद साहिल जी, अंततः मुझे मौका मिला आपके इस कार्यक्रम में बोलने के लिए। सबसे पहले जो आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में एज इंट्रो आपने जो कहा था उसमें दो तीन पॉइंट्स जुड़ाए थे, उसमें सबसे पहला जो विषय था वो ये था कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इतिहास क्या है। तो मैं मुझे थोड़ा सा अनइंटरप्टेड टाइम चाहिएगा, दो मिनट का। देखिए ये जो इसका इतिहास ये है कि ये 1985 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ और राजीव गांधी की सरकार पूर्ण बहुमत की थी, 3/4 बहुमत से वो सरकार चला रहे थे, लेकिन उनको एक भय था कि ये सरकार जो है वो चूंकि उनका नेतृत्व उतना अकुशल था कि शायद वो टूट न जाए दल बदल के कारण, तो उन्होंने ये बनाया। और एक और सब्जी बात है, आंतरिक प्रजातंत्र जो है, चूंकि प्रजातंत्र मूल में कई बार चर्चा में अभी तक मैंने देखा कि आया है विषय, तो ये 10th शेड्यूल में जब इसको लाया गया तो उसका टाइमिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग लॉ में बात करते हैं ना कि इंटेंशन, टाइमिंग, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, तो इसमें जो हुआ वो उसी समय में आप ध्यान रखिए कि शाहबानो केस हुआ। शाहबानो केस में जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का साहसिक था उसको बदलने के लिए मुस्लिम जो वहां के कठमुल्लों के वजह से जो बदला उन्होंने राजीव गांधी ने, उसके लिए दल बादल कानून का उपयोग किया गया ताकि उनकी पार्टी उस पर जो उनका जो जो दल जो बाकी के सांसद हैं वो इस विषय पर टूटे नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक ऐसा कदम था जिसने भारतीय राजनीति के इतिहास को नई दिशा दी थी और वो जो अपीजमेंट की, तुष्टिकरण की एक नई दिशा उस दिन तय हुई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलटने की। और वो 1985 के उस जजमेंट में, इसमें कहीं कोई इतनी कोई सैक्रोसेंट कोई बहुत पवित्र भावना नहीं थी। मैं आपको बता दूं, मैं भी उस समय बहुत जागरूक था, पढ़ाई कर रहा था। ये उसके बाद 2003 में एक दूसरा अमेंडमेंट भी आया, उसमें उसका और लार्जर पर्सपेक्टिव बना कि वाकई में जो 1985 का जो एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल में आया, उसमें थोड़ी सी गुंजाइश ये रखी गई, नहीं रखी गई थी कि किसी तरीके से प्रजातांत्रिक मूल्यों का वहाँ उपयोग किया जाए। तो 2003 में अटल जी की सरकार के समय में इंट्रोड्यूस हुआ और उसमें यह तय हुआ कि यदि 2/3 बहुमत, 2/3 मेजोरिटी से कोई दल उसी में सांसदों की या विधायकों की संख्या चाहे कि नेतृत्व जो है वो अपने दिशा से भटक रहा है, तो वो बहुमत के आधार पे, क्योंकि ये प्रजातंत्र बहुमत से चलता है, बहुमत के आधार पे वो अपना एक नया नेता चुने।
7: तो 2003 में संशोधन किया गया, उसके पीछे क्या कारण था?
14: अभी भी जब
7: उसके पीछे क्या मंशा थी, उसके पीछे भी वही मंशा थी ना कि लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए, दल बदल नहीं होना चाहिए?
14: नहीं नहीं प्रजात बिल्कुल नहीं, आप पढ़िए तो सही। 2003 में ये कहा गया कि जो 2/3 बहुमत से आप चाहें तो दल को पूरे तरीके से मर्ज कर सकते हैं, उसको और ज्यादा लिबरलाइज किया गया टू एंश्योर द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, क्योंकि देखिए ये तानाशाही अधिनायक
7: नहीं होना चाहिए, मर्जर हो, प्रजातांत्रिक पार्टी मर्जर की जाए। और आज की स्थिति में सवाल यही उठ रहा है कि इसी चीज की धज्जियां उड़ाई जा रही है।
14: मैं ये बताने दीजिए, मैं आ रहा हूं उस पर, धैर्य तो रखिए। अब जैसे जो ये 10th शेड्यूल में जो भी प्रोविजंस हैं, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं है, उसमें क्या है, संसदीय पार्टी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो किसी पैनलिस्ट के पास पता नहीं जानकारी नहीं है या चर्चा में नहीं आई। अब जो पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं है, तो जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, चाहे वो पार्लियामेंट्री पार्टी हो या जो विधानसभा की पार्टी हो, वहां पर जो विधायकों की संख्या या सांसदों की संख्या है वो तय करें और वो अपना मर्जर कर दें किसी दल में, यदि उनको ऐसा लगता है कि उनका उनका दल का नेता या नेतृत्व जो है वो उस उन मूल्यों के ऊपर में काम नहीं कर रहा है या अधिनायकवादी हो रहा है, डिक्टेटोरियल फॉर्म में वो काम कर रहा है। और ये प्रजातांत्रिक मूल्यों की मूलतः रक्षा है साहिल जी। और अभी होता ये है, मैंने देखा अभी आपके इस पैनल में भी मैं देख रहा था कि लगातार लोग जो है वो एक दूसरे पे छीछा लेदर कर रहे हैं और बहुत ही निचले स्तर की राजनीतिक चर्चा हो रही है। यहां पर सिर्फ ये पूछना है कि जब प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए कि रक्षा के लिए 2003 में अमेंडमेंट आया और उसके ऊपर में कभी भी कोई चर्चा नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट भी जब भी कुछ इस पर डिस्कशन करता है तो एक रिक्वायर्ड नॉर्म फॉलो हुआ है कि नहीं देखेगा ना वो, और क्या देखेगा उसमें, उसमें और भी दो तीन बार ऐसे
7: जिसका जिक्र आप यहां पर कर रहे हैं, उसी कानून की समीक्षा और उसी कानून की समीक्षा 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का वर्डिक्ट आया, जिसके चंद्रचूड़ जिसके अध्यक्ष थे, उसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा हुआ है और इसीलिए इसका जिक्र बार बार होता है, महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष का जिक्र इसीलिए बार बार होता है कि उस समीक्षा में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि विधायक दल, पार्लियामेंट्री पार्टी किसी भी तरीके से अलग तरीके से नहीं देखी जानी चाहिए, राजनीतिक पार्टी का एक अंग के तौर पर ही इस विधायक दल को देखा जाना चाहिए। और इसीलिए सवाल आज की तारीख में यह खड़ा हो रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के आदेश की धज्जियां उड़ाकर विधायक दल के लोग क्या इस तरीके से अलग जा सकते हैं? विकास गुप्ता, सवाल आज यहीं पर उठाया जा रहा है और इसीलिए जो बार बार उंगली उठाई जा रही है अदालत की तरफ, क्या यह सही है? विकास गुप्ता
15: साहिल जी, आप बहुत बेबाक तरीके से अपने प्रश्नों को रखते हैं और आपने जब पहले वक्ता के साथ रखा तो शायद बात कहीं और गई, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आपकी बात का समर्थन करते हुए जो उद्धव ठाकरे वाली जो जजमेंट 2023 की सुप्रीम कोर्ट की आई जजमेंट, उसमें पेज शायद मेरे पास अभी जजमेंट इस समय हाथ में नहीं है, शायद पेज 82 में इसका विवरण है कि ट्विन कंडीशन जिस तरह से साहिल जी आपने बॉम्बे और क्राइम भी काफी पहले कवर किया है कि आपको पता होगा जिस तरह से PMLA में, जिस तरह से SFIO में, जिस तरह से NDPS में बेल की ट्विन कंडीशन होती है, इसी तरह यहां पे भी ट्विन कंडीशन है कि पार्टी का भी मर्जर होना चाहिए और पार्लियामेंट्री पार्ट जो है नंबर उसका भी 2/3 होना चाहिए। तो एक बात तो यहां स्पष्ट हो गई। दूसरी बात कि हाँ, आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि बात के धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन जो शर्मा जी ने कहा, के शर्मा जी ने कि विपक्ष की जिम्मेवारी है, मुझे लगता है बिल्कुल सही कह रहे हैं। विपक्ष को ये गालियां दे रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष को इस आपदा में एक अवसर ढूंढना चाहिए, उन्हें ये देखना चाहिए कि जिस तरह से संस्थाओं की आड़ में अगर पार्टी विध्वंस कर रही है ऑपोजिशन पार्टीज का, तो एक वक्त आ गया है शायद कि आपको एक साथ होकर के, एकजुट होकर के, अगर कांग्रेस के तले आना पड़े या किसी और दल के तले आना पड़े, मुझे लगता है कि अपने खुद पॉलिटिकल एम्बिशंस को, अपनी बातों को छोड़ करके पार्टियों को संगठित होना पड़ेगा। आज की दौर में आप किसी और संस्था से अपेक्षा रखेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। कई बार
7: जिस बात का जिक्र विकास जी यहां पर यह भी किया गया कि कानून का उल्लंघन कहां हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो इसमें कोई दखल अंदाजी की नहीं है। हमने तृणमूल कांग्रेस के मामले में भी देखा कि हाईकोर्ट ने कहा कि हम इंटरिम स्टे नहीं देंगे, आप केस लड़िएगा, अब इंटरिम स्टे नहीं देंगे। तो ये तो बात कानूनन चल रही है ना पूरी।
15: आप राज्यसभा के सांसदों को देख लीजिए, वहां पे बंगाल में देख लीजिए, अब जो बात महाराष्ट्र में हो रही है। और जो एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर इवेंट होने के बाद अगर जाके वर्डिक्ट दो साल तीन साल बाद आए तो उस वर्डिक्ट का फायदा क्या है? अगर आपको याद होगा साहिल जी, आप उस वक्त बंबई में थे जिस वक्त उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट के लिए कहा गया और उद्धव ठाकरे गए कोर्ट में तो उनको स्टे नहीं दिया और बाद में उन्हीं के फेवर में हुआ, उन्होंने कहा कि अगर आपने रिजाइन नहीं किया होता हम एंटे वापस नहीं घुमा सकते। तो मुझे लगता है कि जिस वक्त जरूरत है, आवश्यकता है, अगर कोर्ट उस वक्त हस्तक्षेप नहीं कर रहे,
7: जुडिशियल डिले की बात हो रही है अमिताभ सिन्हा यहां पर।
15: मैं एक सेकंड, सिर्फ
7: जो विकास गुप्ता उठा रहे जुडिशियल डिले की बात उठा रहे।
14: मैं विकास जी का सम्मान करता हूं, हमारे बहुत ही लर्नड कलीग हैं, लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि आपको अंत में किस पे विश्वास होगा? क्या आपको जुडिशरी पे होगा, लेजिस्लेटिव पे होगा, एग्जीक्यूटिव पे होगा या एनार्किस्ट बनेंगे आप? देखिए कहीं ना कहीं कोई आस्था रखनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में जो 2023 के जजमेंट का, जो जस्टिस चंद्रचूड़ के जजमेंट का जिक्र अभी साहिल जी आपने किया और आपने विकास जी भी ने आपने भी एंडोर्स किया, मैं उस पर कहना चाह रहा था लेकिन साहिल जी आपने उसको शिफ्ट कर दिया। देखिए चंद्रचूड़ जी के ऑब्जर्वेशन और उनके वर्डिक्ट में फर्क है। यदि उनको ऑब्जर्वेशन नहीं करना चाहिए था, यदि उनको ऐसा लगता था तो एक डायरेक्टिव देते और उसमें चेंज करने के लिए कहते सिचुएशन को। देखिए मैं आज भी बोल रहा हूं कि 10th शेड्यूल में कोई चेंज नहीं हुआ है, ना इधर सुप्रीम कोर्ट हैज चेंज इट नॉट द लेजिस्लेटिव हैज चेंज इट। वो आज भी सिर्फ सीएलपी यानी अब जो पार्लियामेंट्री पार्टी है और जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसी को मान्यता देती है। और तीसरी बात जो है कि देखिए जब आप मैंडेट के खिलाफ जाएंगे या ये तानाशाह के खिलाफ जाएंगे और बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज बीइंग डिफीटेड, आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को आप वायलेट कर रहे हैं, तो उस वक्त जो लोग वहां चुन के आए हैं वो किसी एक कारण से तो चुन के आते नहीं है, वहां पर लाखों के।
7: तो क्या ये डेमोक्रेटिक नॉर्म है उसमें सिंबल कि जिस पार्टी के सिंबल पर आप चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं उस पार्टी को आप बीच रास्ते में छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, क्या यह भी डेमोक्रेटिक नॉर्म माना जाएगा अमिताभ सिन्हा जी? क्योंकि इस कानून के पीछे की सबसे बड़ी राय यही थी कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को टिकाना चाहिए।
14: देखिए बहुमत क्या तय कर रहा है कि ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है वो दो तिहाई के हिसाब से बहुमत तय कर रहा है कि इसका बदलना चाहिए, नेतृत्व को बदलना चाहिए, दो तिहाई बहुमत, बहुमत को तो माने हुए आप।
7: ठीक है के शर्मा, कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा ये, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास होने तक चलेगा या उसके बाद भी चलता रहेगा?
8: साहिल जी मैं ये कानून का विषय जो है ये वकील साहब लोग और जजों का विषय है, हम तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक गतिविधियों पे बात करते हैं, हम राजनीतिक नैतिकता पे बात करते हैं। मैं उस पर पूछना चाहता हूँ एक प्रश्न अभी आपसे, अभी तमिलनाडु में जो हुआ उसमें कांग्रेस ने कौन सी नैतिकता दिखाई सर? ये तो अभी घटा ना कि जिस दल के साथ आप मिलके वहां चुनाव लड़े उस दल के हारते ही जीतने वाले दल के पास आप तुरंत अपना समर्थन दे दिए और इस दल के पीठ पे छोरा भोंक दिया, ये डीएमके कह रही है प्रस्ताव पारित करके सर।
7: निखत जी जवाब दीजिएगा,
8: तो क्या नैतिकता है कांग्रेस?
7: अब ये पॉलिटिकल नैतिकता की तरफ चला गया,
8: मैं ये पूछ रहा हूं
7: पॉलिटिकल नैतिकता की तरफ चला गया
8: हमें तो आप नहीं नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कानून पे तो
7: फैसला
12: आएगा। निखत जी साहिल
7: जी मुझे मेरा नाम है, 20 सेकंड है
12: मेरे कानून में इनकी आवाज आ रही है, बोलिए चुप हो जाए। ये पॉलिटिकल नैतिकता की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल नैतिकता की जब बात करते हैं तो पहले भी बताया था दोबारा बता रही हूँ, नाम पढ़ रही हूँ के भाई कान खोल के सुनना, हेमंत बिस्वा शर्मा, अशोक चव्हाण, प्रफुल्ल पटेल, नवीन जिंदल, सुवेंदु अधिकारी, तपस राय, भावना गवली, हसन मुश्री, आनंद सिंह, सबके खिलाफ कोई ना कोई केस थी, भ्रष्टाचार के प्रतीक थे जब तक विपक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, ये सारे नेता पद और इनके मंत्री पद और मुख्यमंत्री के पद पर इन्होंने क्यों बिठाया?
7: नैतिकता की बात आज कोई भी ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि पॉलिटिकल मोरालिटी खत्म होने के बाद ही दल बदल कानून का जन्म हुआ है। क्योंकि पॉलिटिकल नैतिकता नहीं थी भारत की राजनीति में, इसीलिए दल बदल कानून लाना पड़ा था। तो क्या आज की स्थिति में दल बदल कानून खत्म हो रहा है? ये डिबेट ऐसे ही चलता रहेगा। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
6: आगे आगे
7: उधर
6: करेक्ट करेक्ट
8: मिल गया।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
5: सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
6: जो सदस्य यहां नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी हित का उल्लंघन है।
7: एकदम
6: पक्षात पक्ष

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports, so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices. So you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more. With Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
5: किस टूट की चर्चा कर रहे हैं जब चार महीना रह गया है चुनाव को
6: है ना अभी आपने देखा होगा कि राम गोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया और उन्होंने चिट्ठी लिया और हाथ जोड़ा ये भी हाथ जोड़े मुस्कुराए अपना चल दिए राम गोपाल जी तो चिट्ठी में क्या लिखा हो पता हाँ
5: क्या लिखा
6: कि सीबीआई ने जो एफआईआर में खनन वाले में नाम अखिलेश जी का डाला है उसको बचाना है और गुमती रिवर फंड में जो परिवार का हमारे लड़के का है और शिवपाल जी का नाम इन लोगों को बचाना है और ये फला फला सांसद हैं इनको आपके साथ हम भेज देते हैं हम लोगों का जान बचा रहे
5: चिट्ठी आपने पढ़ ली क्या
6: का लिखे बतावें राम गोपाल जी बतावें कि क्या लिख रहे हैं वो चिट्ठी में वो क्यों नहीं खुलासा करते हैं वो अपना बचे बदे गायत्री प्रजापति जेल में रही हैं खनन वाले मंत्री जिनके खिलाफ एफआईआर सीबीआई ने किया उसी में अखिलेश जी का एफआईआर में नाम हो आई जो तो राति के गुलदस्ता लेके भिड़ जाते हो योगी जी के इनकी जान बचौले रहा मंचवा पर
5: तो सांसद किस तरीके से मदद करने वाले हैं जो चिट्ठी में आप
6: अरे सब टूटने जा रहे हैं सपा छोड़ के जा रहे हैं अब यहाँ नहीं रहेंगे पेट भर गया है जैसे ममता के यहाँ पेट भर गए सब चल दिए उधर वैसे इधर से टूट के अब जाएंगे आ रहा है बिल ने महिला बिल पास होना है ना समझ में आ रहा है बात ना

दरअसल देश में इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो गई है। इसके तहत पेट्रोल पंपों पर अलग अलग तरह के इथेनॉल मिक्स पेट्रोल मिल सकते हैं, जिससे लोग अपनी गाड़ी की जरूरत के हिसाब से विकल्प चुन सकें। आने वाले समय में E20, E22, E25 और E30 जैसे फ्यूल ऑप्शन पेट्रोल पंप्स पर मिल सकते हैं। इनमें नाम के हिसाब से 20, 22, 25 और 30 फीसदी इथेनॉल जबकि बाकी पेट्रोल होता है। सरकार की कोशिश है कि पेट्रोल पर निर्भरता कम की जाए और देश में तैयार होने वाले इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। इसी कड़ी में पूरी तरह इथेनॉल से चलने वाले व्हीकल्स को लेकर भी तैयारी चल रही है, लेकिन पेट्रोल पंप्स पर कई तरह के फ्यूल आने की खबर के साथ लोगों के मन में सवाल भी बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी चिंता माइलेज को लेकर है, क्योंकि ज्यादा इथेनॉल मिक्स फ्यूल में माइलेज कम होने का डर रहता है। वहीं पुरानी गाड़ियों के इंजन पार्ट्स पर असर की आशंका बढ़ जाती है, जबकि रबर और प्लास्टिक पार्ट्स के भी जल्दी खराब होने की आशंका जताई गई है। इसकी वजह है कि इथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले अलग तरीके से जलता है। ऐसे में पुराने इंजन वाले व्हीकल्स में परफॉर्मेंस और पार्ट्स की लाइफ को लेकर लोगों में दुविधा बनी हुई है। यही वजह है कि सरकार पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों के हिसाब से जानकारी देने की तैयारी कर रही है, जिससे लोग सही फ्यूल चुन सकेंगे। इस पूरे प्लान में सबसे बड़ा रोल पेट्रोल पंप्स पर लगने वाली उस लिस्ट का होगा, जिसमें बताया जाएगा कि कौन सी गाड़ी के लिए कौन सा इथेनॉल ब्लेंड सही रहेगा। इससे लोगों को अंदाजा रहेगा कि उनकी बाइक, कार या स्कूटर किस फ्यूल के साथ बेहतर चलेगी, यानी पेट्रोल पंप्स पर व्हीकल कंपैटिबिलिटी लिस्ट लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं नई गाड़ियों को हाई इथेनॉल ब्लेंड के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है और पुराने व्हीकल्स के लिए लोअर ब्लेंड फ्यूल ऑप्शन रहने की संभावना है। सरकार की नजर फ्यूल इंपोर्ट बिल घटाने पर भी है, क्योंकि इथेनॉल का बड़ा हिस्सा देश में तैयार होता है। ऐसे में ज्यादा ब्लेंडिंग होने पर कच्चे तेल पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ किसानों के लिए भी इसे बड़े मौके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि गन्ने और दूसरी फसलों से बनने वाले इथेनॉल की डिमांड बढ़ सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बदलाव के साथ लोगों को सही जानकारी देना सबसे जरूरी होगा। इसकी वजह है कि गलत फ्यूल चुनने पर इंजन पर असर पड़ सकता है। फिलहाल तस्वीर यही है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल पंप का पूरा सिस्टम बदलता दिखाई दे सकता है। जहां पहले लोग पेट्रोल और डीजल में फर्क देखते थे, वहीं आगे चलकर फ्यूल का चुनाव इंजन की जरूरत देखकर किया जाएगा। ऐसे में गाड़ी मालिकों के लिए ये समझना जरूरी होगा कि उनकी जेब, माइलेज और इंजन तीनों के लिए कौन सा फ्यूल सबसे सही बैठता है। आदित्य के राणा आज तक।

जल्द ही गाड़ी में पेट्रोल भरवाते वक्त लोगों को पेट्रोल पंप पर खड़े होकर खुद तय करना होगा कि उनकी गाड़ी के लिए कौन सा पेट्रोल सही रहेगा। इसकी वजह है कि सरकार ऐसा सिस्टम लाने की तैयारी में है जहां पेट्रोल भी इंजन के हिसाब से चुना जाएगा।

काम आसान बनाने आई टेक्नोलॉजी अब काम छीनने लगी है और यही बदलाव धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी की तस्वीर बदल दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ने कंपनियों की स्पीड बढ़ाई है, खर्च घटाया है, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा खतरा भी खड़ा हो गया है जो सीधे आम आदमी की जेब से जुड़ा है। एक नई स्टडी में इस खतरे को ऑटोमेशन ट्रैप नाम दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और बोस्टन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के अनुसार कंपनीज AI के जरिए लागत घटा रही हैं, लेकिन छटनी होने पर लोगों की कमाई भी घटती है, जिससे बाजार में कुल खर्च कम होने लगता है। यानी जिस टेक्नोलॉजी से कंपनीज फायदा कमा रही हैं, वही आगे चलकर उनके बिजनेस पर दबाव बना सकती है। रिपोर्ट बताती है कि कंपनीज चाहकर भी इस रेस से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। इसकी वजह है कि एक कंपनी ऑटोमेशन करती है तो बाकी को भी करना पड़ता है। ये ऑटोमेशन आर्म्स रेस बन चुकी है, जिसके असर से जरूरत से ज्यादा ऑटोमेशन हो रहा है। इसका असर धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। कम नौकरियां मतलब कम सैलरी, और कम सैलरी का सीधा असर बाजार की डिमांड पर दिखता है। इसका मतलब साफ है कि शॉर्ट टर्म में मुनाफा बढ़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस पर असर पड़ सकता है। जमीन पर भी इसके संकेत साफ साफ नजर आने लगे हैं। दरअसल 2025 में 1,00,000 से ज्यादा टेक कर्मचारियों की छटनी हुई। इनमें आधे से ज्यादा मामलों में AI नौकरी जाने की वजह रही। 2026 में तो महज 4 महीने में ही 92,000 से ज्यादा लोग नौकरी गंवा चुके हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा ताकतवर होगा और कंपनीज के बीच मुकाबला बढ़ेगा, ये समस्या और गहरा सकती है। इस स्थिति से निपटने के लिए कई तरीके भी सुझाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं UBI, रीस्किलिंग और कर्मचारियों को कंपनी में हिस्सेदारी देना, ऑटोमेशन पर खास टैक्स लगाने का सुझाव जिससे कंपनीज छटनी के असर को भी ध्यान में रखें। रिसर्च में ये भी कहा गया है कि ये कदम पूरी समस्या को सुलझा नहीं पाते, यानी टेक्नोलॉजी की दौड़ में संतुलन बनाए बगैर आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। AI ने काम करने का तरीका तो बदल दिया है, लेकिन अगर यही रफ्तार जारी रही तो इसका असर हर उस इंसान पर पड़ेगा जो कमाता भी है और खर्च भी करता है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, बने रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
3: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
4: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: छह सांसदों के बगावत के बाद बैकफुट पर उद्धव गुट, संसदीय दल की बैठक में नहीं आने पर कारण बताओ नोटिस जारी, आज तक से बोले डीजीपी, सभी बागियों को दी गई सुरक्षा। हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को फिर झटका, स्पीकर के फैसले पर स्टे से फिलहाल इनकार, ऋतव्रत बनर्जी बने रहेंगे विपक्ष के नेता, 28 जुलाई को अगली सुनवाई। 21 जून को नीट री एग्जाम से पहले धर्मेंद्र प्रधान की हाई लेवल मीटिंग, तैयारियों की समीक्षा, बैठक में एनटीए, शिक्षा मंत्रालय और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल। रांची में आरएसएस दफ्तर पर हमले का आईएसआई कनेक्शन बेनकाब, पाक हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी अमन अंसारी, भागने की कोशिश में दूसरे आरोपी सैफ का हाफ एनकाउंटर। कल फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात और शान में कसीदे पढ़ने के बाद आज ट्रंप ने इंडिया टुडे का कवर पेज किया रीशेयर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई साथ वाली तस्वीर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
2: भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की।
3: मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जी जैसे बताएंगे उस रास्ते चलेंगे।
4: हम लोग कुछ मिला नहीं है, जब भी मौका आया तो उनको सीधा अपमान मिला है।
5: किसने सम्मान नहीं किया, वो गदगद होकर गए हैं तो ब्राह्मण नाराज क्या होगा।
6: समाजवादी पार्टी उनके डीएनए में केवल मुस्लिम तुष्टिकरण है, केवल ये मौलाना लोगों की पार्टी है।
7: गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है, गौ माता को कटने नहीं देंगे,

0: नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बार फिर धर्म और जाति का कार्ड सबसे बड़ा बन जाने की संभावनाएं बन गई है। पीडीए की बात करते आ रहे अखिलेश यादव ने अब ब्राह्मण सम्मेलन करने का फैसला किया है। कल इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं की बैठक हुई। 5 अगस्त को बड़ा सम्मेलन होगा। सवाल है कि क्या ये सब योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व की काट के लिए किया जा रहा है। बीते कुछ महीनों में अखिलेश यादव ने खुद कुछ ऐसे कदम उठाए कि कहा जा रहा है कि अब वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है। क्या राजनीतिक तौर पर बदले हुए नजर आ रहे अखिलेश यादव को हिंदू समाज, खासकर ब्राह्मण समाज का समर्थन मिल सकेगा? क्या अखिलेश अपने पीडीए के साथ ब्राह्मण कार्ड चलकर 2027 को अपने नाम कर सकेंगे? क्या योगी छोड़ अखिलेश के होंगे ब्राह्मण? तू धर्म धर्म, मैं जात जात, यही है आज का हल्ला बोल। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत।
1: परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की।
0: ये सिर्फ नारा नहीं, मानो अखिलेश यादव के पीडीए में ब्राह्मण वोट बैंक को साथ जोड़ने का समाजवादी पार्टी का मंत्र है। लखनऊ में बुधवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी के ब्राह्मण समाज के नेताओं की बड़ी बैठक हुई। बैठक का एजेंडा था 5 अगस्त को पड़ने वाली जनेश्वर मिश्र जयंती की तैयारी। छोटे लोहिया के नाम से मशहूर रहे जनेश्वर मिश्र मुलायम सिंह यादव के करीबी ब्राह्मण नेताओं में थे। बैठक में जनेश्वर मिश्र जयंती की रूपरेखा तो बनी ही, साथ ही ब्राह्मण समाज की अनदेखी का तीर बीजेपी पर चलाया गया।
2: ब्राह्मण तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है ना, उसने तो बड़ी उम्मीद से साथ दिया था और बार बार दिया था, पाया क्या है? पाया क्या है? एक छापा मार मंत्री बस, वो भी छापा मारते हैं, अपने विभाग कुछ कर नहीं पाते, वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो उनको ब्राह्मणों कुछ मिला नहीं है। जब भी मौका आया तो उनको सीधा अपमान मिला है, नाम पूछ के, जातियां पूछ के अपमानित किया गया है, इसलिए वो अब की बार बदलाव का मन बना चुका है।
0: इस बीच समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक सनातन पांडेय ने उन दावों को भी बेबुनियाद कहा है जिसमें ब्राह्मणों के पार्टी से नाराज होने का दावा हुआ है।
3: ब्राह्मण सम्मेलन 5 अगस्त की तैयारी के लिए हुआ था। 5 अगस्त जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन है, छोटे लोहिया जी का, उसे तैयारी के लिए हुआ था। और किसने सम्मान नहीं किया? हमारे जो है, जो ब्राह्मण प्रदेश से आए थे, वो गदगद होकर गए हैं कि इतना सम्मान अगर कहीं आज तक हम लोगों को कोई हुआ नहीं था, तो ब्राह्मण नाराज क्या हो गया?
0: ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए अखिलेश यादव का प्रयास बीजेपी के हिंदू कार्ड की काट ढूंढने की अगली कड़ी के तौर पर गिना जा रहा है। अखिलेश यादव बड़े मंगलवार पर हनुमान जी को याद करने से नहीं चूकते। उधर ये अखिलेश ही हैं जिन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा सबसे पहले उठाया है। वैसे अखिलेश ने अब तक राम मंदिर दर्शन से दूरी बरती है, लेकिन वो प्रभु राम के रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं।
4: हम सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं और हमारा धर्म का जो रास्ता है वो सत्य का रास्ता है, दूसरे को सम्मान देने का रास्ता है, दूसरे को साथ लेके चलने का रास्ता है। पीडीए इसीलिए प्रेम दया अपनापन भी है पीडीए में। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जी जैसे बताएंगे उस रास्ते चलेंगे हम लोग, उसमें क्या है।
0: अखिलेश यादव के दाव को बीजेपी बखूबी समझ रही है, इसलिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मण समाज पर अखिलेश के प्रेम को दिखावा कहा है।
5: समाजवादी पार्टी, उनके डीएनए में केवल मुस्लिम तुष्टिकरण है, केवल दिखाने के दांत और है और खाने का और है, इनको कोई भरोसा नहीं करे। केवल ये मौलाना लोगों की पार्टी है, आम जनता इसका कोई लेना देना नहीं रहे। कोई मतलब नहीं के केवल दिखाने के दांत।
0: अखिलेश यादव के पीडीए कार्ड की काट के तौर पर योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व कार्ड भी बेहद मजबूत है।
6: गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है, गौ माता को कटने नहीं देंगे और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे।
0: अखिलेश के पीडीए बनाम योगी के हिंदुत्व के बीच दलित मुस्लिम गठजोड़ के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद की थर्ड फ्रंट की कोशिशें शुरू हुई हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी शामिल हो सकते हैं। उधर मायावती ने ओबीसी समाज की भाईचारा मीटिंग्स की शुरुआत की है। ये अखिलेश के पीडीए की काट हो सकता है। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अनिल दुबे प्रवक्ता आरएलडी के, आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं प्रेम शुक्ला जी, अगर आज अखिलेश यादव, आप लोग हमेशा यही आरोप लगाते थे ना ममता बैनर्जी के लिए, अगर मुख्य वजहों को देखिए कि वो चुनाव क्यों हारी, तो ये माना गया कि आप लोगों ने जो मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाया वो कहीं ना कहीं उनसे चिपक गया। अब जब अखिलेश यादव हर धर्म का उसी तरह से सम्मान कर रहे हैं, तो आप लोग कह रहे हैं कि वो नकल कर रहे हैं, वो सॉफ्ट हिंदुत्व कर रहे हैं, क्यों भाई?
7: नहीं, अभी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं अखिलेश यादव, इसी यही संदर्भ है आज की बहस का मुझे लग रहा है।
0: हाँ,
7: तो अखिलेश यादव कृपा करके बताएं कि राजकुमार भाटी, अभी कुछ दिन पहले ही राजकुमार भाटी जो उनके प्रवक्ता, उन्होंने कहा ब्राह्मण वेश्या से भी गया बीता होता है, तो राजकुमार भाटी के खिलाफ क्या कार्रवाई की उन्होंने? क्या ये वेश्या से गए बीते ब्राह्मणों को जमा किया था उन्होंने? आज जो ब्राह्मण सम्मेलन में श्रीमान अखिलेश यादव के समर्थन में नारे लगा रहे थे, क्या वो जो है वेश्या से गए बीते ब्राह्मण थे?
0: ठीक है प्रेम शुक्ला जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे।
7: और कन्नौज में
0: तो भाटी जी ने जो भी कहा वो, एक सेकंड सर आपको टोक रही हूँ, भाटी जी ने जो कहा वो अपने आप में अपमानजनक है। अब आप भी उसको बार बार दोहरा रहे हैं, आज तक किसी भी धर्म या किसी भी पेशे से जुड़े लोगों का अपमान नहीं करना चाहता है आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको भी टोक रही हूं और आपसे ये कह रही हूं, अनुरोध कर रही हूं कि एक ही बात को बार बार मत रिपीट कीजिए। इन शब्दों को बोलने की जरूरत मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा है। आप इतना कह सकते हैं कि हाँ भाई उन्होंने पहले ही अपमान किया था? ठीक,
7: मैं उद्धृत कर रहा हूं, मैं बिल्कुल उससे असहमत हूं और मुझे अपमानजनक लगता है। दूसरी बात, नीरज मिश्रा का नाम कोई आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं भूला है। कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी था, चुनाव के समय उसने अखिलेश यादव के बूथ कैप्चरिंग का विरोध किया, उसका सिर काट दिया गया, सिर कटी हुई लाश मिली थी। तो नीरज मिश्रा से माफी कब मांगेंगे अखिलेश यादव? कब नीरज मिश्रा के हत्यारों के विरोध में अखिलेश यादव का बयान आएगा? और जो वहां जमा हुए थे वो लोग सारे लोग मिलकर नीरज मिश्रा पर अखिलेश यादव का माफीनामा कब सार्वजनिक तौर पर पेश करेंगे बता दें। और पीडीए में ब्राह्मण क्या क्या स्थान, अभी जनेश्वर मिश्र की जयंती की बात की जा रही है, जनेश्वर मिश्र को भली भांति मैं जानता हूं, एक पत्रकार के तौर पर उनसे मिला भी मैं कई बार। जनेश्वर मिश्र का खुद का बयान था कि मैंने छात्र जीवन में अपनी जनेऊ तोड़कर फेंक दी थी, मैं जाति से ब्राह्मण स्वयं को नहीं मानता। जो स्वयं को जाति से ब्राह्मण मानता ही नहीं उसकी जयंती पर आप ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हो, ये कैसा गजब का विरोधाभासी कृत्य है भाई। स्वयं जनेश्वर मिश्र लोहियावादी थे, समाजवादी थे, उनके विचारों का मैं समर्थन ना करूं तो भी सम्मान करता हूं, लेकिन जब जनेश्वर मिश्र स्वयं, और आप इसको जो है इस मैं जो तथ्य कह रहा हूं इसको पुष्ट कर सकती हैं कि जनेश्वर मिश्र ने यह कहा था कि छात्र जीवन में ही मैंने अपनी जनेऊ तोड़कर फेंक दी थी, मैं जात से ब्राह्मण स्वयं को नहीं मानता, तो उनकी जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन कराने का क्या औचित्य है? इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से बिंदुवार क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दे सकते हैं? बिंदुवार,
0: ठीक है, बिंदुवार की बात नहीं। जितना आपने कहा है, जो पांचवा नंबर का ग्राफिक्स एक बार चला दीजिए, बहुत लोग हैं जो जनेश्वर मिश्र जी को नहीं जानते होंगे, ये मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी थे और एक ब्राह्मण, बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर इनको देखा जाता है समाजवादी पार्टी में। 1960 के दशक में समाजवादी विचारधारा से जुड़े, उसके से पार्टी के जो संस्थापक थे, संस्थापकों में ये शामिल थे, 1960 के दशक में इस विचारधारा से ये जुड़े थे। इन्होंने 60% ओबीसी आरक्षण की मांग उठाई थी। अब पॉइंट वाइज उनका सवाल है अनुराग जी, ये एक तरफ भाटी जी, आप ही की पार्टी के प्रवक्ता जो है राजकुमार भाटी जी, ब्राह्मणों के लिए इतना अपमानित करने के लिए वो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद से फिर आज आते आते आप लोग जनेश्वर मिश्रा के जरिए क्या ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं और उन पर भी वो उंगली उठा रहे हैं? जवाब दीजिएगा।
8: सबसे पहली बात है कि भाटी के शब्दों को पार्टी कतई इंडोर्स नहीं करती है और ऐसे शब्दों की पार्टी में कोई जगह नहीं है, ना ऐसे व्यक्ति जो इस तरह की शब्दों की शब्दावली का उपयोग करते हैं उनका कोई सम्मान होता है, एक बात। दूसरी बात, जो आपने जनेश्वर मिश्र जी के बारे में बोली, पार्टी के जो समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में थे जनेश्वर मिश्र जी, ब्रजभूषण तिवारी जी, माता प्रसाद पांडे जी, रामाशंकर कौशिक जी, अशोक वाजपेयी जी, ये सब समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से थे। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी जाति सभी धर्मों का सम्मान किया है। आदरणीय आदरणीय जोशी जी, जिनको हम लोग रीता बहुना जोशी कहते हैं, उनको मेयर सबसे पहले समाजवादियों ने बनवाया था, और सनातन पांडे जी को सांसद बनाने की जिम्मेदारी भी सनातनियों ने ली थी, इसलिए सनातन पांडे को बलिया से सांसद बनाया है। मनोज पांडे हमारी पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन उसको सम्मान देने का काम समाजवादियों ने किया था। अगर यहाँ पे हमारे शंकराचार्य जी का अपमान हुआ, बटकों का अपमान हुआ, चोटी का अपमान हुआ, तो कौन खड़ा नजर आया? समाजवादी पार्टी डंके की चोट पे खड़े नजर आए। तब कहाँ थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो लंबी लंबी बातें कर रहे थे? तब तो उनकी आवाज नहीं निकली डर के मारे, सरकार के डर के मारे वो बोले तक नहीं। एक बार बड़ी मुश्किल से उन्होंने कुछ बटकों को बुलाया, उसके बाद यहां गायब हो गए। तो सवाल उठता है कि हम तो आवाज उठाते हैं ना, अगर प्रभु के साथ प्रभु के चंदे में चोरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही, तो आवाज किसने उठाई? समाजवादियों पार्टी ने। समाजवादी पार्टी प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाती है, और वहां पे जिस तरह की जमीन में घोटाला हुआ, जिस तरह से वहां पे दान पत्र में गड़बड़ी हुई, चंदे में चोरी, आवाज कौन उठाता है? समाजवादी। क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रभु के आदर्श आचरण पे चलती है। और सुन लीजिए शुक्ला जी, इन्हीं आदर्श आचरण पे चल के 2027 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना के राम राज की स्थापना करेगी। यहाँ सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जात, सभी छात्र, सभी युवा, सभी किसान, सभी महिलाएं, सभी डॉक्टर, सभी पत्रकारों का सम्मान होगा। यह है समाजवादी पार्टी। हेलो,
0: हाँ हाँ, जल्दी से छोटा सा जवाब प्रेम शुक्ला जी, फिर मैं आलोक जी के पास जाऊंगी।
8: मैं अपनी बात
0: हो गया अनुराग जी, हो गया, आपने बोल लिया, जोरदार बोला।
7: नीरज मिश्र की नीरज मिश्र का बिंदु उन्होंने छोड़ दिया, जनेश्वर मिश्र जी का जनेऊ तोड़ने वाला बिंदु उन्होंने छोड़ दिया, दोनों बिंदुओं पर वो नहीं आए। और पीडीए में ब्राह्मण कहाँ आता है मित्र? पिछड़ा दलित आप कहते हो, हालांकि पीडीए का मतलब साफ तौर पर है कि जो लोग जो है पूरी तरह से डकैत और अराजक है, पीडीए का ये अर्थ होता है। लेकिन आप जो है जो पीडीए जातिवाद चलता चक्की बात करते हैं, और जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो थानों में तो एक जात विशेष उन्हीं की जो सजाती थे उन्हीं की तैनाती हो रही थी, कहां था ब्राह्मण? और नीरज मिश्र के हत्यारों पर आपका क्या बयान है? उनकी हत्या अखिलेश यादव के सामने खड़े होने के कारण हुई, ऐसा नीरज मिश्र के परिजन आज दिन तक कहते हैं। अखिलेश यादव नीरज मिश्र के परिवार से तौबा कब करेंगे, कान पकड़कर माफी कब मांगेंगे, इसका उत्तर दीजिए।
0: अनुराग जी, अनुराग
8: जवाब ले लीजिए। देखिए देखिए, इन्होंने जो जिस घटना की बात की है उसी घटना की निंदा की गई, और उसी कन्नौज की जनता ने दोबारा से आशीर्वाद दिया और वहां से सांसद होकर आए। एक बात, दूसरी बात, सुखदा मिश्रा जी एक महिला, सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुखदा मिश्रा जी जिसके जिसका सम्मान देने का, अगर सुखदा, सुनिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, ठीक नहीं है, कम से कम सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। सुखदा मिश्रा जी जो एक महिला थी, उनको सम्मान दिलाने का, लोकसभा में पहुंचाने का काम समाजवादियों ने किया, आपने नहीं किया। सुखदा मिश्रा जी का सम्मान किसने किया? ये समाजवादी लोग हैं, ये सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हैं। आप जाति खोज रहे हो, और हम क्या खोजते हैं? जो कोई भी पीड़ित होगा समाज के अंदर में, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, जो पीड़ित होगा उसको समाजवादी पार्टी न्याय दिलाएगी। हम छत्री सम्मेलन भी करते हैं, तब तो आपने आवाज नहीं उठाई थी। छत्री सम्मेलन हमने 9 मई को किया था। हम छत्री सम्मेलन भी करते हैं, ब्राह्मण सम्मेलन भी करते हैं, दलित सम्मेलन भी करते हैं,
7: ब्राह्मण सम्मेलन भी करते हैं,
8: हम सभी जाति धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन आपका क्या, तो प्रभु का ही सम्मान, आपके प्रभु के दान पत्र में चोरी हो जा रही है।
0: अनुराग जी
8: उठा पा रहे, तो आप
0: अनुराग जी वो कह रहे हैं कि कभी ब्राह्मण को सीएम बनाइएगा, ठीक है, एक छोटा सा जवाब, फिर आलोक जी के पास जाएंगे।
8: देखिए मेरी बात सुनिए, समाजवादी पार्टी में मैं पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी में जात और धर्म देख के कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष और चीफ मिनिस्टर नहीं बनता है। जिसके नाम पे वोट मिलता है, जिसको जनता वोट देती है, जिसको नेता मानती है, उसी को यहाँ चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। एक मिनट, आपके पीछे नहीं बोला, आप आदरणीय मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाते हैं? क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नाम पे बीजेपी को वोट मिलता है, इसलिए आप उनको पीएम बनाते हैं। श्री अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट मिलता है समाजवादी पार्टी को, इसलिए श्री अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इसमें आपके टाई टाई करने से क्या होता है, आप बताइए? आप क्यों नहीं मोदी जी के अलावा किसी को पीएम मानते? इसलिए नहीं बनाते क्योंकि मोदी जी के नाम पे वोट मिलता है बीजेपी को, समाजवादी को वोट मिलता है श्री अखिलेश यादव जी के नाम पे, इसलिए अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। अब बोली नहीं निकलेगी, अब आवाज बंद हो गई, आवाज बंद हो गई। मोदी जी के नाम लिया आवाज बंद हो गई। मोदी जी की पॉपुलरिटी है ना बीजेपी में, इसलिए बीजेपी को प्राइम मिनिस्टर बनाती है ना, इसलिए यहाँ पे अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट मिलता है। प्रभु सभी जाति धर्म के लोग अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट देते हैं क्योंकि उनको विकास पुरुष मानते हैं, उनको बोलते हैं ये विकास पुरुष है, ये समाज का विकास कर सकते हैं, ये युवाओं का कल्याण कर सकते हैं, छात्रों का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप देकर उन्होंने लैपटॉप देकर छात्रों का कल्याण किया था, रोजगार देकर युवाओं का कल्याण किया था और विकास किया। यहाँ पे किस्से से मेट्रो बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, एक्सप्रेस बनाए, पूरे जनता का कल्याण किया, इसलिए जनता उनको वोट देती है। अब आपको आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है बताइए, आपको तो कुछ बनाया नहीं प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी ने आपको कुछ बनाया क्या?
0: ठीक है भदौरिया जी, आपको भी तो एक हारने वाला इस सीट का टिकट हमेशा दिया जाता है, हम लोग भी इस बार कामना करेंगे कि अखिलेश जी आपको जीतने वाली सीट से दें इस बार टिकट कम से कम।
8: आवाज में बोल रहा हूँ ये समाजवादी की देन अंजना जी, आपके सामने इतनी बुलंद आवाज में बोल रहा हूँ ये देन समाजवादी पार्टी की, आपने कुछ दिया ही नहीं।
9: अंजना जी मुझे लगता है
0: आलोक जी तो धर्म धर्म जो है जात जात, आज ये धारणा बनती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर पोलराइजेशन करती है ताकि बहुसंख्यक वोट उसकी तरफ जाए, लेकिन जाति के आधार पर बांटने की उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, बिहार की पॉलिटिक्स में कोशिश विपक्ष करता है और उसी कड़ी में देखा जा रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग जो एक वक्त पर मायावती जी ने भी किया था वही अखिलेश जी करने की कोशिश कर रहे हैं ब्राह्मण कार्ड ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए। आलोक जी
9: नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जो आपका वक्तव्य है वो ठीक है। बीजेपी जाति और धर्म दोनों में काम करती है, जिस तरह से इन्होंने अंग्रेजों से डिवाइड एंड रूल सीखा है, ये जिस राज्य में जाते हैं जैसी सुविधा होती है वैसा करते हैं। हरियाणा में आ जाएंगे तो जाट वर्सेस नॉन जाट कर देंगे, राजस्थान जाएंगे तो गुजरों को मीनों से लड़वा देंगे, महाराष्ट्र जाएंगे तो मराठों को नॉन गैर मराठाओं से लड़वा देंगे, और जब कहीं उत्तर प्रदेश की बात आएगी तो कहीं अपने जो जातिवादी दल हैं, चाहे वो RLD हो चाहे अपना दल हो, तमाम लोग हैं उनको अपने साथ जातिवादियों को ले लेंगे और धर्म का मुलम्मा चढ़ा लेंगे। तो पूरी तरह से ये लोग जाति और धर्म की बात करते हैं। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो 80-20 शमशान कब्रिस्तान मंगलसूत्र और पता नहीं कौन कौन सी बात करके वोट लेते हैं। पहले प्रधानमंत्री हैं जो मंचों से कहते हैं कि मैं OBC हूं। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं मैंने दलित राष्ट्रपति बना दिया, और तमाम बीजेपी के लोग भी बोलते हैं, वो कहते हैं कि साहब हमने ST बना दिया, ये बीजेपी के लोग बोलते हैं। राष्ट्रपति की भी जाति और तमाम चीजें ये निकाल कर ले आते हैं। अब बात आती है ब्राह्मणों की, कि ब्राह्मणों का क्योंकि आज का विषय है, जो तमाम सर्वे आते हैं इंडिया टुडे के और बाकी लोगों के, उसमें यह था कि 80% से ज्यादा ब्राह्मण उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम टाइम खासतौर पर पिछले 15-20 साल से बीजेपी को वोट देता आ रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, पूरे देश में ब्राह्मण पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और वो ठगा हुआ कैसे महसूस कर रहा है, वो चाहे एनकाउंटर के नाम पे मारा जा रहा हो, चाहे UGC बिल के नाम पे मारा जा रहा हो, सरकार ने वापस नहीं लिया UGC बिल, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, चाहे वो शंकराचार्य चारों के चारों बाहर फेंक दियो राम मंदिर के उद्घाटन पे, राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो ST हैं, हम बहुत अच्छा ST करेंगे, लेकिन जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो उनको नहीं लेके जाएंगे, हम शंकराचार्य जी के ऊपर पॉक्सो लगा देंगे इनका प्रशासन, और तमाम लोग कह रहे हैं लगाने वाले क्या इन प्रशासन के दबाव में किया है। कुंभ में क्या हुआ था, कितने सनातनी बह गए गंगा जी में, आज तक लिस्ट नहीं मिली हमें, बटकों की चोटी पकड़ पकड़ के थानों में पीटा गया, शंकराचार्य जी की पालकी कहां है, 40 मिनट का शो है, प्रेम शुक्ला जी जरूर बता के जाएं कौन से थाने में पड़ी हुई है, शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हुआ पूरे देश ने देखा, आपने किस तरह से कॉरिडोर बनाने के नाम पे बनारस में कितनी मूर्तियों को मंदिरों को तोड़ दिया, कितने शिवलिंग उखाड़ दिए और वो थानों में रखे रहे, आज भी रखे होंगे। गाय की बात कर रहे थे अभी, गाय को काटने की परमिशन देने की हिम्मत भाजपाइयों तुम्हारे अंदर कैसे हुई, 14 साल से बड़ी गाय हो गई और नाम चाहिए वोट चाहिए हिंदुत्व के नाम पे ब्राह्मणों का, गंगा की सफाई के नाम पर वोट मांगते हो और गंगा में क्या हो रहा है उसके ऊपर बात नहीं करते हो, और सबसे बड़ा जो विषय है जो डकैती हुई है अभी भाजपाइयों और RSS ने मिलकर की है, राम मंदिर के चंदा तो खाई गए थे ये लोग, अब तो चढ़ावा भी खा गए, चढ़ावा खा रहे हैं ये लोग। अंजना जी गांव में अगर किसी मंदिर में चोरी हो जाए और कोई चोर पकड़ा जाए तो गांव से बहिष्कृत हो जाता है, और ये सारे के सारे भाजपाई लोग चंदा चोरों को बचाने पे लगे हुए, जमीन घोटाला पता नहीं कौन कौन से घोटाले इन्होंने कर मारे, तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण बहुत समझदार लोग हैं और वो समझदारी से चिंतन और मनन के साथ वोट डालेंगे कि बीफ एक्सपोर्ट में जो देश को नंबर वन बनाए, गाय काटने की जो परमिशन दे, राम मंदिर के चंदे को चोरी कर लें, उनको साथ ब्राह्मण इस बार नहीं जाएगा।
0: जी जल्दी से आपसे अब एक रिएक्शन, उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण फैक्टर है एक बार वो बता दीजिए, 10-12% लगभग यहाँ पर ब्राह्मण है। और जैसा आलोक जी ने भी कहा, तमाम सर्वे बताते हैं कि पिछले कुछ चुनावों से वो एक तरफा होकर बीजेपी की तरफ वोट डाल रहे हैं, उसी में 15% से ज्यादा जहां जहां उत्तर प्रदेश में आबादी है ब्राह्मणों की, वो भी हम सीटें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए 60 विधानसभा सीटों पर 20% से अधिक उनकी आबादी है। और जो ब्राह्मण विधायक इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं, उनमें 52 कुल विधायक हैं, जिनमें 46 बीजेपी के हैं। अब आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लंबे वक्त से इलेक्शन को देख रहे हैं, ये क्या पहली बार प्रेसिडेंट या पीएम का की जाति बताई जा रही है इस देश में? दूसरा सवाल, आज आलोक जी ये पूछ रहे हैं कि भाई बीफ के एक्सपोर्ट को लेकर और तमाम अन्य सवाल जिस पर गौ रक्षा पर बीजेपी, लेकिन क्या यह भी एक सच्चाई नहीं है कि जैसे ही ये मुद्दे आते हैं तो उसके ओरिजिनल झंडा बरदार बीजेपी वाले ही दिखते हैं?
10: देखिए इस पूरी जो बहस, आज की पूरी बहस है, उसमें मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर किसी को इस बात की गलतफहमी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज या राजपूत समाज वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी
0: फोन
10: को
0: पे ऑडियो ले लीजिए ना इनका, फोन पे ऑडियो
10: आवाज
0: ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ थोड़ा उठा लीजिए फोन, मुझे लगता है कुछ ऑडियो
10: मैं ये ट्रैकिंग साउंड है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी को इस बारे में गलत फहमी है कि वहां का जो ब्राह्मण समाज है या क्षत्रिय समाज है वो अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी को वोट देगा तो मुझे लगता है कि उनको ये गलत फहमी दूर करनी चाहिए।
0: आशुतोष जी, आपको फिर से रिकनेक्ट करा रहे हैं, आपकी आवाज मतलब बहुत ज्यादा उसमें क्रैकिंग साउंड है, थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। जल्दी से एक बार शामिल कर लेते हैं चूंकि आरएलडी की तरफ से दुबे जी हैं। दुबे जी खास तौर पर आप भी शामिल हुए हैं आज बहस में, हालांकि क्या ही बताया जाए, शुक्ला जी हैं, एक शर्मा जी हैं, एक दुबे जी हैं, एक भदौरिया जी हैं, लेकिन दुबे जी ये बताइए कि ब्राह्मण किस तरफ जाएगा वोट करने के लिए? अब आलोक जी और वो बता रहे हैं कि आजकल ब्राह्मण बड़े नाराज चल रहे हैं बीजेपी से।
11: देखिए अंजना जी,
0: हाँ?
11: रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है कि मन कटवाणी से भीतर तक छलनी हो जाए फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जिस तरह सनातन पर, ब्राह्मण समाज पर, अगर समाजवादी पार्टी की बात ब्राह्मण से जोड़ी जाए तो मैं तो समझता हूँ कि वो तो व्यर्थी है। और इनका भी तो दोहरा जीवन है, एक तरफ जो है उसका विरोध करते हैं, एक तरफ पीडीए की बात करते हैं, दूसरी तरफ सनातन की और ब्राह्मण की बात करते हैं, तिलक और परशुराम की बात करते हैं, तो इनके मुँह से अच्छा नहीं लगता। और एक बात, जनेश्वर मिश्रा जी के जन्म पर, पंडित जनेश्वर मिश्रा जी का हम लोग भी बहुत आदर करते हैं, उनके जन्मदिवस पर जिन्होंने जीवन भर जाति का विरोध किया, अपने जीवन में उन्होंने कभी जाति की बात ही नहीं की, उन्होंने जात तोड़ो समाज जोड़ो का नारा लेकर के वो चले, उनके नाम पर ये ब्राह्मण समाज की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का प्रबुद्ध समाज, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज उनकी इस बात पर कोई विश्वास करेगा? मैं तो ये नहीं समझता कि इनकी इस बात में कहीं कोई दम है। और हम लोग तो हमेशा ही इसके खिलाफ रहे। अच्छा, ब्राह्मण समाज की जो पुरोधा रहे, महर्षि दधीच रहे, चाहे वो चाणक्य रहे, उन्होंने हमेशा जाति को तो के को जोड़ने का काम किया। ब्राह्मण समाज ने कभी जाति की राजनीति कहाँ की? उन्होंने तो सबको जोड़ने का काम किया। और ये ब्राह्मण समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा जातियों को की राजनीति की। अब आज इनको ब्राह्मण समाज याद आ गया, जब चुनाव आया तब आपको ब्राह्मण समाज याद आ रहा, तो ये मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज इस बात को जानता है। और हम लोग तो वैसे भी जात को के खिलाफ चौधरी साहब ने हमेशा राजनीति सबको
8: मुझे लगता है इनकी एक मिनट बात, मैं अपनी बात कर लूं। देखिए सवाल ये है कि समाजवादी लोग तो सभी जात और धर्म का सम्मान कर रहे हैं ना, हमने तो क्षत्रिय सम्मेलन भी किया था, तब आवाज क्यों नहीं निकली थी? हमने ब्राह्मण सम्मेलन भी किया, हमने जाट सम्मेलन भी किया, हम यहाँ बाल्मीकि सम्मेलन भी करते हैं, हम बैकवर्ड लोगों को भी अपनाते हैं, हम तो सभी धर्म और जातियों को अपनाते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम जातियों की राजनीति कर रहे हैं, हम जाति धर्म का सम्मान करते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर में सभी वर्गों का सम्मान करने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि बीजेपी की नहीं है, इसलिए हम सबका सम्मान कर रहे हैं, सबका आदर कर रहे हैं। आदर और सम्मान करना ये समाजवादी लोग कर सकते हैं, बीजेपी नहीं कर सकती। बीजेपी की तो बटुकों का अपमान कर सकती है और तो कुछ नहीं कर सकती, तब तो आवाज निकलती नहीं। आप तो बोले मत, आप तो मुझसे
11: आप,
8: अरे मैंने आपसे बोला ऐसे लोगों की जगह समाजवादी पार्टी में नहीं होती है, समाजवादी पार्टी में ऐसे लोगों का सम्मान नहीं होता है जो किसी दूसरे वर्ग का, किसी जात को अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करेगा। ये बीजेपी में हो सकता है, जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर में इनका एक सांसद जिस तरह की अपमान शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था खड़ा होके, रमेश भिदुड़ी, ये बीजेपी में हो सकता है, बीजेपी में हो सकता है कि आप किसी को भी गाली दे सकते हैं, समाजवादी में नहीं हो सकता।
0: आलोक जी, इसके बाद में प्रेम शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। आलोक जी, अब इसको पर्सपेक्टिव में अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर देखें तो पर्सपेक्टिव में देखना जरूरी है। ममता बनर्जी की इस बार की हार की एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि मुस्लिम अपीजमेंट का जो आरोप उन पर लगा वो चिपक गया। अब 2014 की अगस्त की एके एंटनी साहब की कमिटी की रिपोर्ट, एंटनी कमिटी रिपोर्ट ये कहती है कि जो लोकसभा चुनाव में पार्टी का ये हश्र हुआ उसकी वजह था एक काउंटर प्रोडक्टिव माइनॉरिटी अपीजमेंट परसेप्शन। ठीक है, उन्होंने परसेप्शन शब्द का इस्तेमाल किया कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो छवि बनाई गई वो छवि हमारे लिए उल्टी पड़ी। क्या इस बात का एहसास आज विपक्षी पार्टियों को है? तभी जो पार्टियां समझाती थी कि धर्म निजी आस्था का विषय है, बाहर बताने की जरूरत नहीं है, आज उनको बताना पड़ रहा है। आलोक जी,
9: देखिए मुझे लगता है धर्म हमेशा से निजी आस्था का ही विषय था और राम मंदिर भी जो था वो न्यायालय का विषय था। बीजेपी पहले कहती थी आस्था का विषय है, सत्ता में आने के बाद कहा कि नहीं न्यायालय का विषय है। पहले वोट बटोर लिए आस्था के नाम पर, फिर कहा कि नहीं न्यायालय जो फैसला करेगा वो मानेंगे। तो बीजेपी भी हमारे रास्ते पर धीरे धीरे आ जाती है। एंटनी कमेटी की रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन जिस तरह के उद्धरण उसके तमाम मीडिया के साथियों से पता चलते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की छवि को खराब करने में और उस पर मुस्लिम एक टैग लगाने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और बहुत सारे और भी संगठन उसमें शामिल रहे और आरएसएस सबसे आगे रही, और कुछ रीजनल पार्टीज की गलतियां भी रही, कुछ हमसे भी गलतियां रही होंगी वो सब, लेकिन जो खामियाजा था वो हमें भुगतना पड़ा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उसमें बीजेपी ने उसको बढ़ चढ़कर कांग्रेस के ऊपर चिपकाने का प्रयास किया। लेकिन ब्राह्मण जो है, जहां तक मैं कहता हूं, ब्राह्मण जाति ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर इवन उससे पहले भी हमेशा से, चाहे राजा रहा हो, उनके दरबार में ब्राह्मण राजपुरोहित रहे हो, हमने हमेशा से राजधर्म की बात की है। और स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर और मंडल कमीशन आने तक ब्राह्मणों की एक राजनीति में अग्रणी भूमिका रही। मंडल कमीशन जब वीपी सिंह लेकर आए, जिसका बीजेपी ने सपोर्ट किया, उसके बाद से जातीय समीकरण पूरे समाज के अंदर बदल गए और ब्राह्मण जो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं पर भी अब मुख्यमंत्री देखने को नहीं मिलता है। बीजेपी ने तो कभी भी नहीं बनाया यूपी में, लेकिन आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साहब ब्राह्मण हमारे साथ हैं। ब्राह्मण कांग्रेस के साथ भी रहे, ब्राह्मण बसपा के साथ भी रहे, ब्राह्मण सपा के साथ भी रहे, ब्राह्मण बीजेपी के साथ भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश।
0: एक खबर आ रही है इस वक्त, झारखंड राज्य सभा चुनाव में बड़ी खबर आ रही है, परिमल नाथवानी जीत गए हैं। इसी के साथ जेएमएम की भी तरफ से कैंडिडेट की जीत हुई है, एनडीए समर्थित निर्दलीय हैं परिमल नाथवानी और उनका, वो अपनी राज्यसभा सीट जीत गए हैं। बताया जा रहा है परिमल नाथवानी जो जीते हैं, एनडीए समर्थित ये निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वहां उतारे गए थे और इन्हीं को लेकर एक सस्पेंस बना हुआ था। समर्थन में क्रॉस वोटिंग हुई है, ये बड़ी खबर है क्योंकि परिमल नाथवानी के जीतने की वजह क्रॉस वोटिंग बताई जा रही है और इससे कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। जाहिर तौर पर एक उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से वहां पर खड़े किए गए थे, परिमल नाथवानी की वहां पर जीत हो गई और कांग्रेस के लिए ये बुरी खबर लेकर आई है। लेकिन इस बीच परिमल नाथवानी वहां पर जीते हैं राज्यसभा चुनाव में, ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। चलिए, इस खबर पर तो हमारी नजर बनी ही रहेगी। आशुतोष जी, चूंकि आपने सीएसडीएस के आंकड़ों की चर्चा की, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा पिछले सवाल पर। सीएसडीएस लोक नीति के सारे जो आंकड़े हैं परसेंटेज में, वो हम बता रहे हैं 2017 के, उनका ये असेसमेंट था कि 83% ब्राह्मणों का वोट बीजेपी को गया।
10: जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जब वो 2022 का चुनाव हुआ तो 89% के आसपास वो वोट हो गया। देखिए, आज की तारीख में मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो ब्राह्मण समाज है किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कर ले। और ये आजादी के बाद अगर लंबे समय तक ब्राह्मणों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था, और जब कांग्रेस पार्टी से ब्राह्मण निकले तो कुछ समय तक के लिए वो मायावती के साथ आने की कोशिश हुई, कुछ समय तक मुलायम के साथ आने की कोशिश हुई। ये वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी 14-15-17% की पार्टी हुआ करती, लेकिन जैसे ही पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज 2014 में ये बीजेपी के साथ गया, आपने देखा किस तरीके से बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिली है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी तबके को अपनी तरफ लाने की मजबूती के साथ कोशिश कर रही है। अगर आप देखें पार्टी संगठन में 45 पदों में से 12 पद उन्होंने ओबीसी को दिए हैं, और कैबिनेट में 54 में से 20 यानी 37% ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन आज की तारीख में योगी सरकार के अंदर है। और अगर ये परसेंटेज बढ़ता है, यानी जो 2024 में कैजुअल्टी हुई थी जिसके बारे में कहा जाता था कि ओबीसी तबके का एक बड़ा हिस्सा जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट की भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया हुआ था, वो थोड़ा सा उसमें कमी आई थी जिसकी वजह से दिक्कत पैदा हुई थी। तो ऐसे में अगर कोई ये समझता है कि ब्राह्मण समाज हो या क्षत्रिय समाज हो या वैश्य समाज हो, वो यानी अपर कास्ट उत्तर प्रदेश में बीजेपी को छोड़ के कहीं और जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो गलतफहमी है। कायदे से आज की तारीख में ओबीसी और दलितों में क्षरण ना हो इसकी कोशिश अखिलेश यादव को करनी चाहिए, अन्यथा उनको नुकसान वहां पे होगा।
0: जल्दी से अनुराग जी, जल्दी से अनुराग जी, उनका एकदम एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर वो जो आपको बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण उन्हीं के साथ जाएंगे, ओबीसी पे फोकस कीजिए, ओबीसी का बीजेपी की तरफ जाना आपके लिए सबसे बड़ा चुनावी लॉस है।
8: देखिए पूरी उत्तर प्रदेश की जनता, संपूर्ण जनता, और जिनको ब्राह्मण कह रहे हैं, जो हमारे यहाँ ब्राह्मण है, वो भी सभी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हो सकता है कि आपको अभी दूर से आकलन के, भाई 2012 में भी तो हमारे साथ थे, उसके पहले भी तो हमारे से सभी वर्ग के लोग हमारे साथ थे, तभी तो हम सरकार में थे। बीच में थोड़ा जरूर इधर उधर हुआ, लेकिन फिर से सारे जो क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, ओबीसी और जो पीड़ित लोग जो यहाँ पे दलित समाज, ऐसी सभी समाजवादियों के साथ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उनकी हक की आवाज लगातार उठा रही है। बाद बाकी तो उनके हक की आवाज तो उठा नहीं रहे, आप बताइए कौन आवाज उठा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के तो लोग उठा नहीं रहे, एक भी कोई आवाज उठाता हो तो बताइए। ब्राह्मण पे अन्याय होता तो भी चुप्पी साथ जाते हैं, अगर यहाँ राम वहां पे मंदिर में दान पत्र में चोरी होती तब भी चुप्पी साथ जाते हैं, या अगर जो छात्र आत्महत्या करते हैं वो तो सभी समाज के हैं तब भी चुप्पी साथ जाते हैं, अगर महंगाई बेरोजगारी से लोगों की कमर टूटती है परेशान होते हैं तब भी चुप्पी साथ जाते हैं, जिन महिलाओं के साथ अन्याय हुआ वो किस यहाँ पे वो दलित समाज की भी थी हथरस की बेटी या और दूसरे समाज की भी जो बेटियां थी उन पे अन्याय होता है तो भारतीय जनता पार्टी कब आवाज उठाती है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही बात पे आवाज उठाती है, वो धर्म के नाम पे नफरत फैलाती है, नफरत का विकास करना चाहती है, लेकिन जनता ने उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है संपूर्ण समाज।
0: आप कह रहे हैं आप नफरत फैलाते हैं इसलिए ये जीतने वाले हैं। यहाँ पे चंदा शुक्ला जी,
7: नफरत हम फैलाते हैं और बम कांड के अभियुक्तों का मजहब पूछकर उनको रिहा करने का फैसला अखिलेश यादव करते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट जिसके लिए उनको फटकारता है, मुजफ्फरनगर में मजहब पूछकर दंगा पीड़ितों को राहत राशि बांटने का काम अखिलेश यादव करते हैं, सुप्रीम कोर्ट फटकारता है, तो मजहब के आधार पर लौ जिहादियों को बचाने का काम ये करते हैं, गौ हत्या करने वाले गांव गांव में बाजार बाजार में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश की ऐसी कोई बाजार नहीं थी जहां गौकशी खुल्लम खुल्ला नहीं की जाती थी। तो अखिलेश यादव और नीरज मिश्र के बलिदान को कैसे कोई भूल जाएगा? भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी शौचालय का निर्माण कराती तो किसी जाति और मजहब के लिए नहीं कराती, सड़क का निर्माण कराती तो किसी जाति मजहब के लिए नहीं कराती, हर घर नल जल से जल पहुंचाती है तो किसी जाति और धर्म के लिए नहीं पहुंचाती है, हम प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान देते हैं तो किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं देते, हम जो है मुफ्त का राशन पहुंचाते हैं तो किसी जाति किसी का धर्म नहीं पूछते, लेकिन धर्म और जात पूछकर ही जाति पूछकर ही पीसीएस में परीक्षाएं पास कर रहे थे। पीसीएस की परीक्षाओं में अखिलेश यादव के कार्यकाल में एक जाति विशेष के लोग ही पास हो रहे थे, और अभी आलोक शर्मा कह रहे थे हम पे मुस्लिम तुष्टिकरण जो है वो चश्मा कर दिया। अरे भाई, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाएंगे आप?
12: देख रही है
7: पाकिस्तान का निर्माण करने वाली हमें लगातार मेरे बीच बोल रहे
0: हैं। नहीं ठीक है, ये लगातार मत बोलिए अनुराग जी, गलत बात है ना। फिर आप बोलने लगते हैं, आप चुप रहिए और आप बीच में लगातार बोल रहे हैं। अनुराग जी, शुक्ला जी, दो लाइन में बात पूरी कीजिए, फिर मुझे आलोक जी और आशुतोष जी
7: मुझे 10 सेकंड और दीजिएगा।
0: हाँ,
7: 10 सेकंड और। मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सरकार चलाने वाले कह रहे हैं कि हम मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं करते। असम में से 18 में से 17 एमएलए मुसलमान जीतेंगे, मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं करते। भाई, मुस्लिम तुष्टिकरण का ऐलानिया इस देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये कहने वाले मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं करते। अब इससे अधिक खुल्लम खुल्ला मुस्लिम तुष्टिकरण और क्या हो सकता है अंजना जी?
0: ठीक है आलोक जी, इसका आप जवाब दीजिए क्योंकि उनका इशारा आपकी तरफ है। और इसमें एक सवाल मैं ये भी जोड़ रही हूं कि एक थर्ड फ्रंट, हालांकि आशुतोष जी से भी इस पर बात होगी, थर्ड फ्रंट बनाने की भी कोशिश हो रही है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद की मीटिंग हुई है जो कि सांसद और अध्यक्ष हैं अपनी आजाद समाज पार्टी के, वहीं ओवैसी साहब भी, आप लोग हमेशा उनको रूल आउट करते हैं। और ये सब सच्चाई है कि पिछली बार जितनी सीटों पर लड़े सब जगह जमानत जब्त हुई, लेकिन बिहार में उन्होंने परफॉर्मेंस ठीक की। इस बार आपके बराबर की लगभग सीटें ले आए। वो कह रहे हैं कि वो बीएसपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, ये सब भी फैक्टर है या नहीं है? बोले,
9: देखिये मुझे लगता है कि काफी लोग थे जो थर्ड फ्रंट बनाने के चक्कर में थे, बीजेपी के कहने पे चलते थे, काफी कुछ निपट गए हैं, आगे कुछ और निपट जाएंगे। दुर्भाग्य ये है कि आप मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, अगर वो गैर कानूनी है मुस्लिम लीग पार्टी तो उसको बैन कर दीजिए, आपकी तो सरकार है 12 साल से। मुस्लिम लीग के साथ आपने सरकार बनाई स्वतंत्रता से पहले, हमने तो स्वतंत्रता के बाद केरल में आप जाकर हाथ मिलाया होगा, लेकिन आपने तो स्वतंत्रता से पहले बना ली थी, क्या जनसंघ ने नहीं बनाई थी? खैर, आज का वो विषय नहीं, आज का विषय ब्राह्मणों पर है। देखिए, हमने 7 में से 3 ब्राह्मण कैंडिडेट राज्यसभा में दिए थे अंजना जी, किसी ने नहीं दिए, और 7 में से 2 ब्राह्मण कैंडिडेटों को बीजेपी ने हरवाया। आज प्रणव झा को हरवाया, वो भी ब्राह्मण थे, किससे? एक व्यापारी से, एक व्यापारी के पैसों से एक ब्राह्मण को हरवा दिया जिन्होंने। ये ब्राह्मणों की बात करेंगे। मीनाक्षी नटराजन ब्राह्मण थी, वहां भी हरवा दिया। कैसे हरवाया? वहां पर आरएसएस ने अपना पैर फंसाकर किस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर ने फंसवाया। तीसरा कैंडिडेट केवल बच इसलिए गया तमिलनाडु में, प्रवीण चक्रवर्ती, के वहां पर बीजेपी नहीं थी। अगर वहां भी बीजेपी होती तो तीनों ब्राह्मण कैंडिडेटों को यह हरवा देते।
0: ठीक है,
9: ये ब्राह्मणों के सबसे बड़े दुश्मन है भाजपा।
0: ठीक है, ये वाला कार्ड चलेगा क्या आशुतोष जी? वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को हरवाया कि नहीं हरवाया? ठीक है, प्रणव झा जी को कह रहे हैं हरवा दिया है परिमल नाथवानी से झारखंड में बीजेपी ने, एनडीए ने।
10: देखिए, मैं अनुराग जी से मैं कहना चाहूंगा कि कृपया करके उत्तर प्रदेश के अंदर वो अपर कास्ट के ऊपर फोकस ना करें, अगर करेंगे तो नुकसान ही होगा। उत्तर प्रदेश का अपर कास्ट पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारत जो इंडिया गठबंधन है इसका प्रदर्शन इस पर निर्भर करेगा कि वहां कांग्रेस पार्टी कैसा परफॉर्म करती है। कांग्रेस पार्टी 2022 और 2024 के अगर आंकड़ों को अगर आप निकाल के देखें तो समाजवादी पार्टी 32 से 33% वोट दोनों चुनाव में पाती है, भारतीय जनता पार्टी 41% वोट दोनों चुनाव में पाती है। लेकिन जब यही भारतीय जनता, जब ये कांग्रेस पार्टी जो 3% वोट लेकर आई थी विधानसभा के चुनाव में, जब उसका वोट प्रतिशत 10 हो जाता है, तब वो जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हराने की स्थिति में आ जाती है। वहां पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी का वोट शेयर और बहुजन समाज पार्टी, इन तीनों का वोट शेयर लगभग लगभग स्टेबल हो गया है, 41% 33 से 33% और बहुजन समाज पार्टी का 9 से 10।
0: आशुतोष, ये काउंटर आर्गुमेंट है मेरा, एक काउंटर आर्गुमेंट है। मायावती ने भी मतलब जब ये किया सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने किया तो फिर ब्राह्मणों को अपने साथ बुलाई और उनके पक्ष में गया। किसने कल्पना की होगी कि भाई दलित चेहरे के रूप में वो है और ब्राह्मणों का साथ मिलेगा और उनके लिए सार्थक होगा पॉलिटिकली?
10: देखिए, 2007 की राजनीति तब थी जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी। उत्तर प्रदेश के अंदर, और तीसरे चौथे नंबर के लिए लड़ाई लड़ती थी। पहले नंबर पर या तो बसपा होती थी या समाजवादी पार्टी होती थी। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी ताकत बनकर उभरी, उसके बाद से वो कंसिस्टेंटली 40% से ज्यादा वोट लेकर आ रही है।
0: योगी फैक्टर इनके पक्ष में जा रहा है, योगी फैक्टर पक्ष में जा रहा है
10: निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। न केवल देखिए योगी जी की वजह से अप्रकाश पूरी मजबूती के साथ है, हिंदुत्व के पॉलिटिक्स की वजह से अप्रकाश इनके साथ मजबूती से है। अगर इनको नुकसान होगा, अगर नुकसान होगा जिसकी मुझे उम्मीद कम दिखाई पड़ती है, अगर नुकसान होगा तो राम मंदिर का जो मौजूदा विवाद पैदा हुआ है उसकी वजह से नुकसान होगा।
0: सिर्फ दो लाइन में शुक्ला जी, सिर्फ दो लाइन शुक्ला जी, जल्दी से टाइम खत्म हो गया है। राम मंदिर विवाद और पैसे की हेराफेरी का SIT गठित करनी पड़ी है।
7: राम मंदिर का निर्माण बिल्कुल हेराफेरी के हम विरुद्ध है। राम मंदिर का निर्माण हमने कराया, बाबरवादियों की छाती पर चढ़कर कराया। बाबरवादी आज भी छाती पीट रहे हैं कि राम मंदिर बन क्यों गया और राम मंदिर इतना बेहतर चल क्यों रहा है, 16 करोड़ लोग दर्शन कर रहे कहते।
0: ठीक है, SIT आप ही ने गठित की है ना जांच कराने के लिए कि कौन पैसा उधर मारा है। बहरहाल हम इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको बताएंगे कैसे मुस्लिम देशों ने इस युद्ध में ईरान से मार भी खाई, अब जुर्माना भी देंगे। और इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या इस युद्ध से ईरान का $300 बिलियन का जैकपॉट लग गया है। आप देखते रहिए आज तक।

0: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली।
1: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिझोड़े, मौसम बदले, फिर भी हर सपना खड़ा रहे, क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो, आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मैक्स TMT बार्स, आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
7: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
8: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
9: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
7: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
10: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
8: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
7: जहां खबर वहां खबरदार।
11: इन एसोसिएशन विद
12: E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स 11 बिलियन व्यूज 85 million unique viewers, one-stop solution for your brand, regional or hyper-local reach. Har shahar, har kasbe tak, advertise karne ke liye email karein.
14: 25 saalon se, jahan tiki hai desh ki nazar, mere saath phir se shuru ho raha hai wahi safar. Ye hai khabre saath tak, dekhte rahiye. आज तक।
15: बंगाल से शुरू हुई बगावत महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में दस्तक दे रही है। TMC टूट चुकी है और उद्धव सेना टूट के कगार पर है। अब दावा यह है कि अखिलेश के सांसद भी उनका साथ छोड़ने को बेकरार हैं। ओपी राज्यभर ने इस दावे के पीछे राम गोपाल यादव के एक खत का हवाला दिया है।
16: राम गोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया तो चिट्ठी में काली खल पता है। और गुमती रिवर फंड में जो परिवार का हमारे लड़के का है और शिवपाल जी का नाम है, लोगों को बचाना है और ये फला फला सांसद हैं, इनको आपके साथ हम भेज देते हैं, हम लोगों का जान बचा।
15: बगावत के इन दावों को लेकर BJP और समाजवादी पार्टी आमने सामने है।
17: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हम लोग तो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की।
3: ये सिर्फ नारा नहीं, मानो अखिलेश यादव के पीडीए में ब्राह्मण वोट बैंक को साथ जोड़ने का समाजवादी पार्टी का मंत्र है। लखनऊ में बुधवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी के ब्राह्मण समाज के नेताओं की बड़ी बैठक हुई। बैठक का एजेंडा था 5 अगस्त को पड़ने वाली जनेश्वर मिश्र जयंती की तैयारी। छोटे लोहिया के नाम से मशहूर रहे जनेश्वर मिश्र मुलायम सिंह यादव के करीबी ब्राह्मण नेताओं में थे। बैठक में जनेश्वर मिश्र जयंती की रूपरेखा तो बनी ही, साथ ही ब्राह्मण समाज की अनदेखी का तीर बीजेपी पर चलाया गया।
4: ब्राह्मण तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है ना, उसने तो बड़ी उम्मीद से साथ दिया था और बार बार दिया था, पाया क्या है, पाया क्या है? एक छापामार मंत्री, बस वो भी छापा मारते हैं, अपने विभाग कुछ कर नहीं पाते।

0: वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो उनको ब्राह्मणों कुछ मिला नहीं है। जब भी मौका आया तो उनको सीधा अपमान मिला है, नाम पूछ के जातियां पूछ के अपमानित किया गया है, इसलिए वो अब की बार बदलाव का मन बना चुका है।
1: इस बीच समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक सनातन पांडेय ने उन दावों को भी बेबुनियाद कहा है जिसमें ब्राह्मणों के पार्टी से नाराज होने का दावा हुआ है।
2: ब्राह्मण सम्मेलन 5 अगस्त की तैयारी के लिए हुआ था। 5 अगस्त जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन है, छोटे लोहिया जी का, उसे तैयारी के लिए हुआ था। और किसने सम्मान नहीं किया? हमारे जो है जो ब्राह्मण प्रदेश से आए थे वो गदगद होकर गए हैं कि इतना सम्मान अगर कहीं आज तक हम लोगों को कोई हुआ नहीं था, तो ब्राह्मण नाराज क्या हो गया।
1: ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए अखिलेश यादव का प्रयास बीजेपी के हिंदू कार्ड की काट ढूंढने की अगली कड़ी के तौर पर गिना जा रहा है। अखिलेश यादव बड़े मंगलवार पर हनुमान जी को याद करने से नहीं चूकते। उधर ये अखिलेश ही हैं जिन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा सबसे पहले उठाया है। वैसे अखिलेश ने अब तक राम मंदिर दर्शन से दूरी बरती है, लेकिन वो प्रभु राम के रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं।
3: हम सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं और हमारा धर्म का जो रास्ता है वो सत्य का रास्ता है, दूसरे को सम्मान देने का रास्ता है, दूसरे को साथ लेके चलने का रास्ता है। पीडीए इसीलिए प्रेम दया अपनापन भी है पीडीए में। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जी जैसे बताएंगे उस रास्ते चलेंगे हम लोग, उसमें क्या है।
1: अखिलेश यादव के दाव को बीजेपी बखूबी समझ रही है, इसलिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मण समाज पर अखिलेश के प्रेम को दिखावा कहा है।
4: समाजवादी पार्टी उनके डीएनए में केवल मुस्लिम तुष्टिकरण है, केवल दिखाने के दांत और हैं और खाने का और है, इनको कोई भरोसा नहीं करे। केवल ये मौलाना लोगों की पार्टी है, आम जनता इसका कोई लेना देना नहीं रहे। है कोई मतलब नहीं कि केवल दिखाने के दांत।
1: अखिलेश यादव के पीडीए कार्ड की काट के तौर पर योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व कार्ड भी बेहद मजबूत है।
5: गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है, गौ माता को कटने नहीं देंगे और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे।
1: अखिलेश के पीडीए बनाम योगी के हिंदुत्व के बीच दलित मुस्लिम गठजोड़ के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद की थर्ड फ्रंट की कोशिशें शुरू हुई हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी शामिल हो सकते हैं। उधर मायावती ने ओबीसी समाज की भाईचारा मीटिंग्स की शुरुआत की है। ये अखिलेश के पीडीए की काट हो सकता है। आज तक ब्यूरो
6: अरुण राजभर वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे, मिलके उन्होंने निवेदन किया कि सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव डाल रही है, बहुत ब्लैकमेल कर रही है। और उन प्रकार अरुण राजभर ने इस बात को भी कहा कि पिताजी की किसी बात का बुरा भी ना माना जाए, उनकी लिखी हुई बात और उनकी कही हुई बात को गंभीरता से भी ना लिया जाए, क्योंकि वो बहुत तनाव में है, वो भारतीय जनता पार्टी से दबाव महसूस कर रहे हैं, भाजपा जो कहती है वो लिख देते हैं बोल देते हैं, इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी के किसी बयान को भी गंभीरता से ना लिया जाए।
7: उनके दावे और उनके वादे, ये सब लोडर लोग हैं, इनको स्क्रिप्ट दे दी गई कि मोबाइल में इसको डाल दो और बात को घुमा दो।
8: आप कह रहे हैं उनको स्क्रिप्ट दे दी गई, राजीव राय कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का ट्विटर जो है बीजेपी हैंडल कर रही है।
7: नहीं नहीं, कोई हैंडल नहीं करता है, माननीय ओम प्रकाश राजभर स्वतः देखते हैं, स्वतः लिखते हैं, स्वतः समझते हैं। इन लोगों का सही बात है कि समाजवादी पार्टी मुखिया और इन सभी नेताओं का कोई न कोई यूज तो कर ही रहा।
9: जिस राम मंदिर के बनने में दशकों तक सियासत हुई, कई सरकारें बनी और टूटी, अब जब उस राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगा तो तुरंत राजनीति भी शुरू हुई। समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रही है। अखिलेश यादव और उनके सहयोगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इसे सनातन और भगवान राम का अपमान बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं बीजेपी वाले, खास तौर पर बीजेपी के वो नेता जो राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या बोलना है। जैसे कि विनय कटियार, जो पहले मंदिर में चोरी की खबर पर आग बबूला हो रहे थे लेकिन अब पलट गए। कांग्रेस तो सीधे कह रही है कि ये पूरी तरह से संगठित लूट है और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और अयोध्या के संतों का मानना है कि गलत करने वालों का फैसला अब राम ही करेंगे। संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या, आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
2: हल्ला बोल में उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत पर आप देख रहे थे आज चर्चा। हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, अब देखिए सात तक मारिया के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। प्रेजेंटेड बाय
3: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
1: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: नमस्कार, मैं हूँ मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उसके पहले एक नजर हेडलाइंस पर। झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका। एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी ने प्रणव झा को हराया, क्रॉस वोटिंग से मिली जीत। 6 सांसदों के बगावत से उद्धव गुट में खलबली। संसदीय दल की बैठक में नहीं आने पर कारण बताओ नोटिस जारी। आज तक से बोले डीजीपी महाराष्ट्र, सभी बागियों को दी गई सुरक्षा। 21 जून को नीट री एग्जाम से पहले धर्मेंद्र प्रधान की हाई लेवल मीटिंग, तैयारियों की समीक्षा। कई शहरों में एयरफोर्स ने पहुंचाए प्रश्न पत्र। वाराणसी के दाल मंडी में सड़क चौड़ा करने के क्रम में गिराई जाएंगी 6 मस्जिदें, भारी संख्या में पुलिस जवान तैनात। काशी स्टेशन के विस्तार के लिए भी एक मस्जिद को मिला नोटिस। कल फ्रांस में पीएम मोदी से मुलाकात और शान में कसीदे पढ़ने के बाद आज ट्रंप ने इंडिया टुडे का कवर पेज किया रीशेयर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई साथ वाली तस्वीर। शो की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की बात सामने आ रही है, जिसके बाद एनडीए समर्थित निर्दलीय या इंडिपेंडेंट उम्मीदवार परिमल नथवानी चुने गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के प्रणव झा को हराया है। नथवानी को 28 वोट मिले, जिसके बाद उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। प्रणव झा को 20 वोट मिले हैं। तो क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आ रही है। प्रणव झा जो महागठबंधन के कैंडिडेट थे या इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट थे, उनको 20 वोटें मिली। और सवाल ये उठ रहा है कि जो आरजेडी के एमएलए थे, उन्होंने किस तरफ वोट किया? क्या सीपीआईएमएल का जो एमएलए था, उन्होंने भी किसी और तरफ वोट किया? सो परिमल नथवानी को 28 वोट मिले और इसके वजह से वो राज्यसभा मेंबर के तौर पर अनाउंस हो गए।
1: अभी खुश है कि जो हम लोग कहा था कि ऐसे जीतेंगे तो जीतेंगे। बोले कि कहां से आएगा कि ये गणित कैसे है, तो गणित अंतरात्मा का है, तो अंतरात्मा के अनुसार ऐसे कैसे जीते सो देख लीजिए। हम लोग जीत गए, तीन वोट पता चला कि 3 रिजेक्ट हुआ है, 28 मिला है। अब ये कहा अब ये बीजेपी के उम्मीदवार को और ये 30 ऐसे को ये जेएमएम को और 20 कांग्रेस को, यही है सुखना।
2: एकजुटता का क्या कहेंगे, इतना खूब इंटैक्ट रहने की बात हो रही थी महागठबंधन में, आप लोग तो जीत गए।
1: तो गठबंधन इंटैक्ट में जीते महाराज,
2: गठबंधन आपके साथ भी इंटैक्ट है क्या? इंडिया गठबंधन
1: तभी ना
2: वोट किया है,
1: किया नहीं था क्या? नहीं तो कैसे आया? सब अंतरात्मा की आवाज पर दे दिया वोट,
2: अंतरात्मा की
1: आवाज दे दिया।
0: सत्यजीत कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये क्रॉस वोटिंग जो हुई है, वो किस पार्टी ने वोट नहीं किया प्रणव झा के लिए? क्या आरजेडी के जो एमएलए थे वो प्रणव झा के साथ थे, या उनके उन्होंने विरोध में परिमल नथवानी के पक्ष में उन्होंने वोट किया है?
3: देखिये मारिया, पहले दिन से ही ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस को 12 वोटों का जुगाड़ करना है। यहाँ पे जीत का जादुई आंकड़ा जो है वो 28 है, 81 सदस्य विधानसभा है ये। तो ऐसे में जब 16 सदस्य कांग्रेस के पास थे, यानी 16 वोट कांग्रेस के पास थे, तो वो बाय एंड लार्ज डिपेंड कर रहा था 6 सरप्लस वोट जो जेएमएम के होने थे, यानी 34 उसके पास है, तो 28 प्लस 6 जो 6 सरप्लस थे वो, इसके अलावा आरजेडी के 4 और जो लेफ्ट पार्टीज हैं, लेफ्ट के जो 2 एमएलए थे उनका भी सहारा चाहिए था दिल्ली तक पहुंचने के लिए, और ये हरकुलियन टास्क था उनके लिए। और एनडीए का अगर हम दूसरी तरफ बात करें, तो डे 1 से जो है परिमल नाथवानी ने जब नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, 24 उनके पास ऑलरेडी थे, एक यहाँ पे इंडिपेंडेंट था। इसके अलावा जो है उन्होंने कहा था कि 2008 और 14 में हम यहाँ रह चुके हैं, हमने परफॉर्म किया, झारखंड के लिए काम किया, अंतरात्मा के आवाज पे लोग वोट करेंगे। तो उसी दिन आइए एक्ट क्लियर हो गया था कि क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं अगर एनडीए को भरोसा था, जब उसके पास नंबर नहीं थे तो साफ था डे 1 को ही कि उसे वो अगर उसका चुनावी बैतरनी पार लगेगा तो क्रॉस वोटिंग के बदौलत, और कांग्रेस अगर अगर चुनाव जीतेगी तो वो तब होगा जब लॉयल्टी के साथ इंटैक्ट रहते उसके गठबंधन के साथ ही। जब 56 लोग सपोर्ट कर रहे हैं और 28 का आंकड़ा है जीत का, तो 28 × 2 56 होता है। तो ऐसे सूरत में जाहिर तौर पे गठबंधन के साथियों ने जो है साथ नहीं दिया। अगर कांग्रेस ने 20 वोट पोल किया है तो 16 वोट कांग्रेस के,
0: और क्योंकि 16 कांग्रेस के एमएलए हैं, बाकी के 4 वोट उनको किधर से मिले?
3: देखिए, वो गठबंधन के साथ रह रहे थे, उन्होंने उनका उनका ये हिसाब था कि मुझे जो है जो जेएमएम के सरप्लस 6 वोट हैं वो भी मिलेंगे, आरजेडी के भी 4 मिलेंगे, वाम दल के भी 2 मिलेंगे। तो ऐसा हुआ नहीं, 3 वोट जो है वो इनवैलिड हो गया। स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस 78 रह जाता है, 20 अगर कांग्रेस पोल कर रही है, इसके अलावा जो है अगर नाथवानी को 28 आ रहा है तो 48 ये हो जाते हैं, और 30 वोट जो है वो जेएमएम को मिला। यानी जेएमएम ने भी 6 वोट जो उसको ट्रांसफर करने थे वो नहीं किया, 30 वोट अपना सेफ रहने के लिए।
0: वोट ऑफ कॉन्शियंस की जो बात हुई वो साफ तौर पर वोट ऑफ कॉन्शियंस अब दिख रहा है यहाँ पर, या उसको बोला जाए कि किस तरफ गया, ये मैनेजमेंट की बात होती है राज्यसभा चुनाव में। सत्यजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अब रुख करते हैं दूसरी खबर की तरफ। उद्धव गुट में एक बार फिर बगावत सामने आ गई है। आज उद्धव ठाकरे ने अपनी संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, बाकायदा व्हिप भी जारी किया था, मगर इस बैठक में सिर्फ 3 सांसद पहुंचे। 6 सांसदों ने बैठक से दूरी बनाई। अब शिवसेना UBT ने बैठक में शामिल ना होने पर सांसदों से जवाब मांगा है।
4: उद्धव ठाकरे को जिस बात का डर था वही हुआ। पार्टी ने व्हिप जारी किया था, संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, मगर बैठक में सिर्फ 3 सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे पहुंचे। यानी 6 सांसदों ने मीटिंग में हाजिरी नहीं दी। ये वो सांसद हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत की है। माना जा रहा है कि जल्द ही वे अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजय जाधव बागी सांसदों का नेतृत्व करेंगे। उधर बागी सांसदों को लेकर शिवसेना UBT ने गहरी नाराजगी जताई है। पार्टी ने बागी सांसदों से जवाब मांगा है। शिवसेना UBT को एक बार फिर टूट का डर सता रहा है, इसीलिए शिवसेना UBT का एक दल लोकसभा स्पीकर के पास चिट्ठी लेकर पहुंचा, जिसमें लिखा था कि अगर कोई शिवसेना UBT के नाम से अलग गुट बनाने का दावा करे तो पहले हमसे संपर्क किया जाए।
5: हमने एक लेटर दिया है स्पीकर साहब को, क्या वे अगर कोई आता है शिवसेना UBT के नाम से अलग गुट बनाने के लिए वो गैरकानूनी है।
6: विषय यही रखा है कि भाई अगर कोई इस ग्रुप को लेके कोई आता है आपके पास में, व्यवस्था आपके हाथ में है, RP एक्ट संविधान में जो प्रावधान है उसको लेके हमने लेटर दिया है, अगर कोई पहुँचता है तो हमसे पहले बात करें।
4: राउत ने आरोप लगाया कि सभी बागियों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है, इसके लिए उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
7: मेरा जो स्टैंड है वो क्रिस्टल क्लियर है, मैं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के साथ हूँ।
4: अब शिंदे गुट इसे अपनी जीत बता रहा है और कांग्रेस कह रही है कि ये ऑपरेशन टाइगर नहीं ऑपरेशन गीदड़ है।
8: ऑपरेशन प्रगति यशस्वी। जिस व्यक्ति ने जनता के लिए इतना काम किया है, जनता हमेशा उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है और सबको पता है कि ओरिजिनल टाइगर कौन है।
9: ऑपरेशन टाइगर ने ऑपरेशन गीदड़ है, सत्ता की भूख उसकी एक मर्यादा होती है।
4: खबर है कि TMC के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर को खत लिख चुके हैं। जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए ये दोहरा झटका है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: क्या समाजवादी पार्टी में भी बगावत के आसार हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि OP राजभर के बाद संजय निषाद ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद पार्टी का साथ छोड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही अब यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर के भी समीकरण बिठाए जा रहे हैं।
10: अखिलेश यादव के दल टूट की जो खबर राजभर ने उठाई है वो अब तूल पकड़ रही है। राजभर के बाद यूपी के मंत्री संजय निषाद भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश से किनारा करना चाहते हैं।
11: दिल्ली शीर्ष नेतृत्व को बताऊं कि वो लोग अब जुड़ना चाहते हैं।
12: कितने लोग हैं
11: आपके विचारधारा? मैंने बताया 2000 से अधिक लोग हैं
12: समाजवादी पार्टी के।
11: हाँ, उनके लोग
12: विधायक भी हैं, केवल सांसद
11: के? कांग्रेस के विधायक भी हैं और सांसद भी हैं।
10: लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसे बयानों को बकवास बता रही है।
13: राजभर जी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी TRP बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है का सीटों के बारे में करें।
14: अगर ये उनका कहना सही हो जाएगा तो सनातन प्रणय जीवन में राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे।
10: मामला शुरू हुआ था समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने की खबर से, मगर माहौल बदल गया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि राजभर तो खुद समाजवादी पार्टी में विलय चाहते हैं।
15: मिलके उन्होंने निवेदन किया कि सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव डाल रही है, बहुत ब्लैकमेल कर रही है। और उनका अरुण राजभर ने इस बात को भी कहा कि पिताजी की किसी बात का बुरा भी ना माना जाए, उनकी लिखी हुई बात और उनकी कही हुई बात को गंभीरता से भी ना लिया जाए, क्योंकि वो बहुत तनाव में है।
10: अब राजभर के सुपुत्र समाजवादी पार्टी के इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं।
16: सही बात है कि समाजवादी पार्टी मुखिया और इन सभी नेताओं का कोई न कोई यूज तो कर ही रहा, क्योंकि ये बात बताइए जिस दिन की जिक्र ये कर रहे हैं उस दिन मैं समाजवादी पार्टी के गढ़ को समाप्त करने का अभियान चला रहा था।
10: दरअसल समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि राजभर जानबूझकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं ताकि 27 के चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा कर सकें।
11: ये इसलिए बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको सीटें दे देगी। एक तो सीटों के लिए मेरी बातों को लिख लीजिए।
10: समाजवादी पार्टी के आरोपों को ओपी राजभर सही साबित कर रहे हैं, क्योंकि उनका दावा अभी से 34 सीटों पर है।
17: अभी तक हम लोगों ने 34 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किया है और वहाँ जो संगठन में कमजोरी रही है उसको पूरा कराने के लिए प्रयास हम लोगों का हो रहा है कि इस बार हम लोग अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल करा लें।
10: 27 के चुनाव से पहले मुद्दों को धार दी जा रही है और सीटों के लिए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 के री एग्जामिनेशन को पूरी तरह फूल प्रूफ और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए इस बार प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और देश भर के केंद्रों तक उनकी सुरक्षित डिलीवरी का जिम्मा भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है।
10: देश में नीट के पेपर को सुरक्षित करने के लिए भारतीय वायुसेना ने उड़ान भर दी है। 21 जून को होने वाली डी नीट के पेपर को लेकर सेना का हेलीकॉप्टर अलग अलग जगहों पर पहुंच रहा है, जहां से पेपर को लोड किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस की कड़ी निगरानी में इन्हें स्ट्रांग रूम भेजा जा रहा है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता के मानकों को बनाए रखने पर जोर दिया। उधर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है।
18: पहले बोले कि हम पेपर जो है वो हवाई जहाज से, एयरफोर्स के हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट कराएंगे, अब कह रहे हैं टेलीग्राम बैन कर दिया, इससे कोई पेपर लीक रुकेंगे? पेपर लीक तो रोकने ही नहीं इनको, इनकी नीयत ही खराब है। इतने जो एमपी और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं? आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं।
10: नीट पेपर लीक को लेकर जारी घमासान के बीच टेलीग्राम पर रोक का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, जहां सरकार ने टेलीग्राम को अपराधियों का अड्डा बताया। वही टेलीग्राम की ओर से दलील दी गई कि क्या एक घटना को रोकने के लिए पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर देना सही है। बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज तक ब्यूरो।
0: झारखंड के आरएसएस हेडक्वार्टर्स पर आधी रात को पेट्रोल बम्प से हमला क्यों किया गया, आखिर इस हमले का मकसद क्या था? अब ये मामला लोकल पुलिस से आगे बढ़ गया है। आतंकी साजिश के एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है।
4: रांची में आरएसएस के दफ्तर पर हुए हमले की इन तस्वीरों का कनेक्शन अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है। तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि एक शख्स पेट्रोल बम फेंक रहा है तो वहीं दूसरा शख्स पीछे से वीडियो बना रहा है, ताकि पाकिस्तान में बैठे आकाओं को हमले का सबूत भी भेजा जा सके।
19: जांच में खुलासा हुआ है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की बड़ी भूमिका है।
4: मामले में सियासत बढ़ी तो झारखंड पुलिस एक्शन में आई। तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी दुबई में पाकिस्तान ISI और भट्टी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था, जो कि दुबई की जेल में भी रहा था। तीनों की उम्र 20 से 23 साल के बीच है, जिसमें एक आरोपी सैफ अंसारी का रांची पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया।
20: वेपन छीन के भागने का प्रयास किया, उसमें जवाबी कार्रवाई में और सुरक्षा हेतु जवाबी कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ी और उसको पैर में इंजरी बुलेट इंजरी हुई है।
21: मैं रांची पुलिस को बहुत बहुत बधाई शुभकामना दूंगी और हमारी सरकार को भी कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सबके साथ न्याय होता है और ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम करते हैं।
4: इससे पहले बीजेपी इस हमले को लेकर लगातार झारखंड सरकार पर हमलावर थी।
22: जब कांग्रेस के कुछ लोग आरएसएस के बारे में विष फैलाते हैं और उसके बाद सीधे सीधे ये हमला होता है कांग्रेस शासित प्रदेश में, तो ऐसे डेंजरस प्रोपेगेंडा का डेंजरस परिणाम कैसे होता है ये इसका भी परिचायक है।
4: खबरों की माने तो आरोपियों को सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट किया गया था। आरएसएस दफ्तर पर हमले के लिए आरोपियों ने रेकी की थी, 2 पेट्रोल बम छत पर फेंके थे, 1 पेट्रोल बम गेट के बाहर असेंबल किया था, जिसके पीछे अब पाकिस्तान की साजिश की बात सामने आ रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ सत्यजीत, रांची आज तक।
0: दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बच्चा तस्करी करने वाले इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश किया है, साथ ही इसे इस गिरोह से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा 6 मासूमों को सुरक्षित बचाया गया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है।
4: नकाब के पीछे छिपे इन चेहरों पर मासूम बच्चों को किडनैप करके बेचने का आरोप है। मामले में पुलिस ने 5 बच्चों का रेस्क्यू किया है और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें तस्कर, बिचौलिए, खरीदार और एक अस्पताल का मालिक शामिल है।
23: कभी भी किसी बच्चे को नहीं, मुझे झूठा फंसाया गया है, मुझे मार मार के यहाँ बिठाया हुआ है।
4: सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में बहुत ही छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जा रही थी। जो बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं उनमें 1 बच्चे की उम्र महज 5 दिन है, वहीं 2 बच्चों की उम्र सिर्फ 27 दिन।
24: बहुत ही छोटे बच्चे हुआ करते थे। 1,00,000 रुपए में इन्हें पाली से और राजस्थान के दूसरे गांव से इन्हें खरीदा जाता था, दिल्ली लाया जाता था। दिल्ली के इस हीरा अस्पताल जो कि रोहिणी में स्थित है, यहां लाया जाता था और यहां उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। ट्रीटमेंट करने के बाद जो ऐसे कपल होते थे जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा या जिन्हें बच्चे पाने की अपेक्षा थी, उन्हें ये बच्चे बेच दिए जाते थे। 1,00,000 रुपए में ये बच्चे खरीदे जाते थे राजस्थान से या गुजरात से, और यहां दिल्ली में करीब 8 से 9 लाख रुपए में इन बच्चों को बेच दिया जाता था।
4: इस रैकेट का खुलासा करोलबाग में एक शख्स की जागरूकता की वजह से हुआ, जिसने एक महिला को अलग अलग बच्चों के साथ देखा, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने एक टीम बनाकर गिरोह से बच्चा खरीदने का पूरा जाल बिछाया और फिर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ।
25: उसमें पेरेंट्स से डील सेट होती थी और सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे, बर्थ सर्टिफिकेट्स फोर्ज किए जाते थे, डिलीवरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे और जितने भी इनवॉइसेस, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे फोर्ज किए जाते थे वहीं पर ही उसी हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर विवेक की एक्टिव रोल प्ले करती थी एज द लिंचपिन।
4: इस पूरे खेल का बाकायदा सिस्टम बना हुआ था, जिसमें बच्चा सप्लायर, बिचौलिए, खरीदार को लाने वाले सबका कट होता था। अलग अलग राज्यों से बच्चों को दिल्ली लाया जाता था। बच्चा गोद लेने की चाहत रखने वाले बेऔलाद जोड़ों की पहचान नेटवर्क के जरिए की जाती थी, जहां अस्पताल में बच्चा न पैदा होने की समस्या का इलाज करा रहे पति पत्नी को टारगेट किया जाता था, जिन्हें झांसा देकर इन मासूमों की जिंदगी का सौदा किया जाता था। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: भोजपुर में पुलिस पर पिस्टल तानने और फायरिंग करने के आरोपी भरत तिवारी का एक दिन पहले एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर के बाद आरोपी की अस्पताल में मौत हो गई है। पुलिस के इस एक्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जोरदार हंगामा किया।
10: जबरदस्त हंगामा बरपा है। पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस लोगों को तितर बितर कर रही है और पीछे से चीख पुकार मची है कि पुलिस वाले गोली ना चलाएं। ये बवाल बिहार में आरा के भोजपुर में शाहपुर थाना क्षेत्र के बैलोटी की तस्वीरें हैं। एक दिन पहले यहां पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी नाम का शख्स घायल हो गया था, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन कह रहे हैं कि ये पुलिस का फेक एनकाउंटर था और इसीलिए आरा बक्सर फोर लेन मार्ग पर वो शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे।
26: घोर अन्याय हुआ है। मान लीजिए कि एनकाउंटर है,
1: इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया था, तो प्रशासन को इसको लेकर पकड़ कर जाकर जेल में बंद देना चाहिए। ये नहीं कि एनकाउंटर नहीं करना चाहिए।
10: अब एनकाउंटर की तस्वीर देखिए, ये जो गोली चला रहा है इसी का नाम भरत तिवारी है। करीब 48 घंटे तक पुलिस के लिए ये शख्स चुनौती बना रहा और आखिरकार एनकाउंटर में मारा गया, मगर परिवार कहता है कि उसे जिंदा भी पकड़ा जा सकता था।
1: सुबह में 8 बजे के करीब में धूप गई डायरेक्ट, धूप के हथियार तान दिल सब परिवार पहन के, और छोट लड़का के कालर धोके मोबाइल छीन दिल।
10: अब प्रशासन परिवार और ग्रामीणों को समझा बुझा रहा है, मगर ये एनकाउंटर सवालों के घेरे में जरूर है। सोनू कुमार सिंह, आरा आज तक।
0: अब बात बाजार की।
4: कारोबार के दौरान खरीदारी के पॉजिटिव माहौल के बीच घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 254 अंक मजबूत होकर 77,410 और निफ्टी 82 अंक चढ़कर 24,168 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार की मजबूती के बीच रुपए में भी आज बढ़त देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे मजबूत होकर 94.36 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं सराफा बाजार में आज गिरावट का रुख रहा और सोना 816 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 149,332 रुपए पर आ गया, जबकि चांदी 3,988 रुपए टूटकर 2,43,700 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। आज तक ब्यूरो।
0: ये थी खबरें 7 तक, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: चोगन परफ्यूम्स,
5: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला। That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
6: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
7: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
26: The French edition for him.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबा केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
5: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
6: आगे आगे,
7: अरे उधर
6: उधर,
7: करेक्ट करेक्ट।
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: शेयर बाजार, जहां कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं। आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है, कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिस्तक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव किए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिस्तक पर।
5: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
6: राम गोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया और उन्होंने चिट्ठी लिया और हाथ जोड़ा, ये भी हाथ जोड़े, मुस्कुराए, अपना चल दिए राम गोपाल जी। तो चिट्ठी में क्या लिखा हो पता है?
7: क्या लिखा?
6: कि सीबीआई ने जो एफआईआर में खनन वाले में नाम अखिलेश जी का डाला है उसको बचाना है, और गुमती रिवर फंड में जो परिवार का, हमारे लड़के का है और शिवपाल जी का नाम, इन लोगों को बचाना है, और ये फला फला सांसद हैं, इनको आपके साथ हम भेज देते हैं, हम लोगों का जान बचा रहे हैं।
8: ये सब बकवास है उन्होंने, जबकि जो प्रचार कराया जा रहा है, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है नेताजी से लेकर के अखिलेश से लेकर के, अब सबको खतरा हो गया है समाजवादी पार्टी से।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
2: Jack FM, now playing what we want, commercial free, on TuneIn Premium.
3: What you got for me, Jack?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: 109 दिन के बाद आखिरकार अमेरिका ईरान ने युद्ध के खात्मे का ऐलान कर दिया। अब ना तो मिसाइलों की गूंज है, ना धमाकों का शोर, ना दुनिया को इस बात का डर है कि जंग की आग सब कुछ खत्म कर देगी। 28 फरवरी को अमेरिकी हमले के साथ शुरू हुई जंग 109 दिन के बाद 17 जून को बातचीत की मेज पर खत्म हुई। 14 पॉइंट्स वाले समझौते पर साइन हुए। फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साय पैलेस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने डील पर हस्ताक्षर किए तो ईरानी राष्ट्रपति पजिश्किन ने फारसी भाषा में लिखी डील की कॉपी पर दस्तखत किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस डील में जीत किसकी है, आखिर समझौता किसके पक्ष में रहा। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ट्रंप कार्ड फेल रहा, ईरान के लिए ऑल इज वेल है। तोलमोल में ईरान अमेरिका पर भारी पड़ा, वो सारी बातें मनवाने में कामयाब रहा जो वो चाहता था। ट्रंप डींग हाँकते थे कि ईरान तबाह हो चुका है, ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है, डील में ईरान की शर्तें नहीं चलेगी, ईरान को सरेंडर करना होगा, हॉर्मुज सब के लिए खुलेगा, ईरान का कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन डील में वो सब है जो ईरान चाहता था। मसलन हॉर्मुज 60 दिन टोल फ्री रहेगा और फिर ईरान जॉर्डन मिलकर बनाएगा मैकेनिज्म। यूरेनियम बाहर नहीं जाएगा, ईरान में ही डाउनग्रेड होगा। मिसाइल को लेकर ट्रंप ने रुख बदला, अब वो बोल रहे हैं कि जब पड़ोसी देशों के पास मिसाइल है तो ईरान को कैसे रोक सकते हैं। कहां तो फूटी कौड़ी ना देने की अकड़ थी, अब 300 अरब डॉलर ईरान को मित्र देश पुनर्निर्माण के लिए देगा। 14 पॉइंट वाले समझौते की तस्वीर कुछ अलग कहानी बता रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या बातचीत की मेज पर ईरान अपनी कई शर्तें बचाने में कामयाब रहा। सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट, वही रास्ता जिसे लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने थे। ट्रंप कहते थे हॉर्मुज सबके लिए फ्री होगा, किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन समझौते के मुताबिक पहले 60 दिन हॉर्मुज टोल फ्री रहेगा और उसके बाद एक नया मैकेनिज्म बनाने की बात है जिसमें ईरान और जॉर्डन की भूमिका बताई जा रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा ईरान का यूरेनियम। ट्रंप की मांग थी कि ईरान यूरेनियम बाहर सौंपे, लेकिन डील की शर्तों के मुताबिक यूरेनियम को ईरान से बाहर भेजने के बजाय उसी जगह डिग्रेड करने का रास्ता सामने आया, यानी ईरान की जमीन पर ही प्रक्रिया। तीसरा मुद्दा ईरान की मिसाइल ताकत, जिस पर अमेरिका सख्त रुख की बात कर रहा था, लेकिन बातचीत के बाद मिसाइल मुद्दे पर भी भाषा और रुख में बदलाव की बात कही जा रही है। और फिर आया सबसे बड़ा उलटफेर, जहां पहले कहा जा रहा था ईरान को कोई राहत नहीं मिलेगी, वहीं अब पुनर्निर्माण के लिए मदद की बात सामने आई। करीब 300 अरब डॉलर तक की सहायता की चर्चा है। तो क्या ये ट्रंप की जीत है या फिर क्या ईरान बिना पूरी तरह झुके अपनी अहम शर्तें बचाने में कामयाब रहा। 109 दिन की जंग के बाद बंदूकें खामोश हैं, लेकिन असली मुकाबला अब नैरेटिव का है। अमेरिका कहेगा हमने ईरान को बातचीत पर मजबूर किया, ईरान कहेगा हमने दबाव के बावजूद अपनी जमीन नहीं छोड़ी, यानी डील हो गई लेकिन जीत की कहानी दोनों देश अपने अपने हिसाब से लिख रहे हैं।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
2: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूँ मारिया शकील। आज विशेष में बात करेंगे कि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी की, जिसमें रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब बात जांच पड़ताल में ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं चोरी का खेल बाद में खेला गया, पहले सीसीटीवी फेल किया गया। नहीं तो क्या ये संभव है कि जिस राम मंदिर परिसर में करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 1000 सीसीटीवी कैमरे, जिस कमरे में दान के पैसे गिने जाते हैं वहीं 15 से 20 कैमरे हैं, जिन 40 दान पेटियों में भक्त पैसा डालते हैं वहां भी हाई डेफिनेशन और 360 डिग्री पर रिकॉर्ड करने वाले कैमरे लगे हैं, और इसके बावजूद चोर आसानी से रुपया और जेवर चोरी कर लेता है। क्या ये संभव है? बिना सीसीटीवी को बंद किए क्या ये मुमकिन है? यही जो सरकार ने अब जो एसआईटी बनाई है उसकी जांच का दायरा भी सीसीटीवी के इसी खेल को समझने में लग गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए।

0: राम मंदिर का दान गिनने वाले सीसीटीवी में क्या छिपा है? राम मंदिर में चढ़ावे के पैसे टेबल पर रखकर कौन गिन रहा है? क्या राम मंदिर के चढ़ावे के पैसे चोरी करने का पूरा रहस्य सीसीटीवी में ही छिपा है? क्या राम मंदिर का दान चोरी करने वालों ने सीसीटीवी का मैनेजमेंट देखने वालों को ही सेट कर दिया था? एसआईटी की जांच लगातार चौथे दिन भी जारी है। रोज एसआईटी के अधिकारी राम मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों से घंटों की पूछताछ कर रहे हैं, पूरी जानकारी जुटा रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि राम मंदिर से करोड़ों रुपए के चढ़ावे की चोरी कैसे हो गई और पूरी दुनिया में फैले करोड़ों राम भक्त इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे से चोरी करने वालों का असली सरगना कौन है। इस बीच आज तक के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि राम मंदिर की दान राशि गिनी जा रही है। साफ दिख रहा है कि श्रद्धालुओं के दान को टेबल के ऊपर रखकर गिना जा रहा है। इसमें कुछ कर्मचारी दो टेबलों पर दान राशि को गिनते दिख रहे हैं और कुछ कर्मचारी खड़े दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया क्या है और उसके संचालन की क्या व्यवस्था है। इसी के आधार पर सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी भी जांच कर रही है। लेकिन सवाल है कि मंदिर का दान चोरी करने वालों की मॉडस ऑपरेंडी क्या थी? वो किस तरह से मंदिर में आए करोड़ों रुपए के चढ़ावे को चोरी कर रहे थे? इसी सवाल का जवाब एसआईटी खोज रही है। एसआईटी की पूछताछ का केंद्र बना है राम मंदिर में काम करने वाला रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर यानी आरएमओ। सीसीटीवी के सभी फुटेज की जिम्मेदारी आरएमओ की है। आरएमओ जब चाहे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग बंद कर सकता है या उसे चालू कर सकता है। सीसीटीवी को चेक करना भी इसी आरएमओ के जिम्मे है। ऐसे में ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है। और ये बताया जा रहा है कि ये रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर टिन्नू यादव और ट्रस्ट का खास आदमी है। वही टिन्नू यादव जो चंपत राय का ड्राइवर है और मौजूदा केस में चढ़ावा चोरी का आरोप इसी पर है। रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर पर इतनी बड़ी कृपा है कि वो मंदिर में करीब पिछले 17 वर्षों से तैनात है और इन 17 वर्षों में उसका एक बार भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। इन्हीं सब बिंदुओं पर एसआईटी की जांच चल रही है कि कहीं चढ़ावा चोरी करने वालों ने इस रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर को तो सेट नहीं किया था कि जब चढ़ावे के पैसों की गिनती करनी हो और चोरी करनी हो तो उसी वक्त सीसीटीवी बंद कर दिया जाए। इसीलिए बताया जा रहा है कि इस आरएमओ की संपत्ति का ब्यौरा भी तलब कर लिया गया है।
1: अयोध्या मामले में अब एसआईटी की जांच की रडार अब सीसीटीवी कर्मचारियों, पास दिखाने वाले कर्मचारियों और इसके अलावा मंदिर परिसर में मैनेजमेंट देखने वाले कर्मचारियों की तरफ बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो ये सभी वो कर्मचारी हैं जो सीधा ट्रस्ट को रिपोर्ट करते थे, जिनके बीच में कोई भी धारा नहीं थी। इसमें आरएमओ यानी कि रेडियो जो मेंटेनेंस ऑफिसर है, जो तकरीबन 17 वर्षों से वहां पर तैनात है और सीधे ट्रस्ट को रिपोर्ट करता था, और सीसीटीवी फुटेजेस की कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा वहां पर पास निर्गत करने वाले व्यक्ति की जो जिम्मेदारी थी, जिसमें आने जाने के लिए सारी डिटेलिंग होती थी और कौन सा चीज बाहर जाएगी उसकी, और साथ ही साथ मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी की, तो इन सभी पर अब एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है कि आखिर किस तरीके से इनकी भूमिका है और कैसे इस पूरे मामले पर अब इसमें जांच आगे बढ़ रही है।
0: चढ़ावा चोरी के लिए बनाई गई एसआईटी की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि एसआईटी अपनी जांच में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। अब जांच की रडार में सीसीटीवी निगरानी, गेट चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी भी आ गए। एसआईटी उन कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है जो मंदिर परिसर की निगरानी और चेकिंग व्यवस्था से जुड़े थे। जांच में ये भी देखा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही या मिलीभगत तो नहीं है। गेट चेकिंग और मंदिर की प्रवेश व्यवस्था से जुड़े कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। पास जारी करने का काम देखने वाले मुख्य कर्मचारी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा राम मंदिर चौकी इंचार्ज भी करीब पिछले 5 वर्षों से तैनात बताए जा रहे हैं, उनसे संबंधित जानकारियां भी जुटाई जा रही है।
1: एसआईटी की जांच अयोध्या मामले में अब गेट चेकिंग ऑफिसर से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी तक पहुंच गई है, क्योंकि साफ तौर से गेट से आने जाने वालों की संख्या, इसके अलावा क्या सामान बाहर जाना है, ये जिम्मेदारी इस पर होती थी और ये सीधा ट्रस्ट में चंपत राय और टिन्नू को भी रिपोर्ट करता था। यानी कि इस पूरे मामले पर अब एसआईटी की जांच उस दिशा में भी बढ़ रही है कि कई कर्नाटक से जो लोग आए थे वो किस तरीके से अंदर शामिल हुए। अब इस दिशा में भी जो एसआईटी की जांच है वो आगे बढ़ रही है।
0: चोरी के इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतने भारी सुरक्षा इंतजाम के बावजूद दान के पैसे चोरी कैसे हो गए, और ऐसे कैसे हो सकता है कि राम मंदिर ट्रस्ट में ऊपर बैठे लोगों को इस बात की जानकारी न हो। ये कैसे संभव हो सकता है कि नीचे का कोई कर्मचारी लगातार चढ़ावे के पैसों की और आभूषणों की चोरी करता रहे और ऊपर बैठे ट्रस्ट के वरिष्ठों को कोई जानकारी न हो। एसआईटी को जांच में मिले दस्तावेजों के अनुसार मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर पिछले 11 महीनों में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारी सुरक्षा खर्च के बावजूद दान पेटियों से नकदी और आभूषणों की कथित चोरी सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। एसआईटी की प्रारंभिक जांच में बैंक की भूमिका और संभावित लापरवाही भी जांच के दायरे में आई। दान की गिनती प्रक्रिया में बैंक कर्मियों के साथ ट्रस्ट के रुपए गिनने वाले कर्मचारियों की संख्या कम होने को भी संदेहास्पद माना जा रहा है। एसआईटी ने पूछताछ के लिए करीब 200 लोगों की सूची तैयार की है। अब तक 125 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि कुछ लोगों से कई बार पूछताछ हुई। जांच के सबसे ज्यादा दायरे में है रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, जो चंपत राय का खास है, उनका ड्राइवर भी है और फिलहाल मंदिर में कई तरह के काम देखता है। एसआईटी टिन्नू यादव से कई घंटों की पूछताछ कर चुकी है। फिलहाल तो टिन्नू यादव और उनकी पत्नी खुद को बेगुनाह बता रहे हैं।
2: एसआईटी की अपनी जांच चल रही है, रोज नए किरदारों से घंटों तक पूछताछ भी चल रही है, तो दूसरी तरफ ऐसा भी लग रहा है कि अब राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सीनियर लोगों पर भी गाज गिर सकती है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों ने ट्रस्ट के सीनियर पदाधिकारियों से दूरी बनाना शुरू कर दिया है।
0: शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं, वो राम मंदिर भी जाएंगे। 3 बजे योगी आदित्यनाथ राम मंदिर परिसर में जाएंगे, रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के लिए योगी की तरफ से खास निर्देश भी आ गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या यात्रा में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मुख्यमंत्री के साथ मंच पर नहीं दिखाई देंगे। अयोध्या प्रशासन ने प्रोटोकॉल में चंपत राय की जगह उनके प्रतिनिधि को भेजने को कहा है। अब इसका सीधा मतलब यह हुआ कि योगी आदित्यनाथ चंपत राय के साथ मंच पर दिखने से बचना चाहते हैं, क्योंकि चढ़ावा चोरी के केस में गठित एसआईटी की पूछताछ के रडार में चंपत राय भी हैं। चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं। अगर मंदिर का चढ़ावा चोरी हुआ है तो ये कैसे हो सकता है कि चंपत राय को उसकी जानकारी न रही, वो भी तब जब टिन्नू यादव को चंपत राय का ही खास आदमी माना जाता है। इस केस के विसिल ब्लोअर तो सीधा आरोप चंपत राय पर ही लगा रहे हैं।
3: आखिर कहां से पैसा आ गया? एक ड्राइवर 2200 रुपए मेरे सामने नौकरी की शुरुआत हुई थी।
4: कहां से शुरुआत थी?
3: कार सेवकपुरम से, महेश नारायण
4: किसके ड्राइवर?
3: ये परमहंस जी का ड्राइवर, फिर महेश नारायण सिंह का, फिर विनय कटियार का, इस तरह क्रमशः ये चलते चलते और 22,000 की नौकरी जब 2020 में मिली तो ये अरबपति और करोड़पति कहां से हो गया भैया? आप बता दीजिए शर्मा जी, हमको बताइए कि अगर
4: 22,000 रुपए पर महीने की नौकरी
3: अभी ये अभी 6 साल पहले हुआ था, अभी 6 साल पहले
4: इसका ड्राइवर हुआ था?
3: ये परमहंस जी का ड्राइवर था, अभी तो ये चंपत राय चंपत चालाक का ड्राइवर था, चंपत राय बंसल का, और ड्राइवर के बाद अभी उनका महा मैनेजर हो गया।
4: सबसे संपत्ति इसका हॉस्टल तो सुन रहे हैं, गए भी थे हम लोग, और क्या ज्यादा प्रॉपर्टी बना ली?
3: सब छिपा के है ना, धीरे धीरे खुलेगा, धीरे धीरे खुल जाएगा, बचेगा। इसके बाद लखनऊ में है, अयोध्या जनपद में कई जगह है, बस्ती जनपद में है। अब हम लोग भी खंगलवा रहे हैं, अभी तक निगाह इसलिए नहीं थी कि अभी तो निगाह बड़े चोर पर थी, ये तो साइड विलेन है ना, हम लोग तो मेन विलेन को देख रहे थे।
0: इसी वजह से योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में चंपत राय को आने से मना कर दिया गया है, क्योंकि विपक्ष ने इस चढ़ावा चोरी के केस को पूरी तरह से राजनीतिक बना दिया है। विपक्ष सीधा बीजेपी पर आरोप लगा रहा है।
2: विशेष में वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।

0: समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि राम मंदिर में चंदा चोरी की बात करके वो कुछ राजनीतिक फायदा हासिल कर ले, इसीलिए पिछले 10 दिन से वो लगातार चढ़ावे में चोरी पर नए नए नैरेटिव सेट करते जा रहे हैं।
1: सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। सीसीटीवी से फुटेज गायब हैं, नदारद हैं।
0: और सबसे ज्यादा कंफ्यूज है बीजेपी वाले, खास तौर पर बीजेपी के जो नेता राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या बोलना है। जैसे कि विनय कटियार, जो पहले मंदिर में चोरी की खबर पर आग बबूला हो रहे थे, लेकिन अब पलट गए हैं।
2: गंभीर मामला है और ये हल्का फुल्का मामला नहीं है। एक ईश्वर है, अरे भाई ये इस पर बलिदान हुए हैं लोग, हमारे जैसे लोग, कल्याण सिंह जैसे लोग, ये सब जेल गए हैं, इस्तीफा दिए थे कल्याण सिंह जी, तब जा करके मंदिर का बनना शुरू हुआ। और ये जितने हैं ना, ये जितने इस समय हैं, अरे भाई ये जितने हैं सब चोर हैं, इनकी छुट्टी करो, तो छुट्टी कौन करेगा? विनय कटियार कर देंगे कल।
3: नहीं, हमको तो ये लगता ना, ये कोई चिन्नू पिन्नू है जो वहां उनके साथ यही गड़बड़ कर रहे हैं,
4: नीचे के लोग।
3: क्योंकि इतनी बड़ी घटना ये लोग अचानक नहीं कर सकते। तो अभी हम मिलने जुलने का कार्यक्रम रखेंगे, तो उसके आधार पर फिर चर्चा करेंगे।
0: विनय कटियार को समर्थन मिला है बीजेपी के ही पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का, जो सीधे कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद स्थानीय लोगों की उपेक्षा हुई है, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है।
5: देखिए, विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन के समय प्रमुख व्यक्तियों में से थे और उनको अशोक सिंघल जी का आशीर्वाद प्राप्त था, बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, प्रशासन और आंदोलन के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते थे और उनकी एक बहुत बड़ी प्रमुख भूमिका रही है। कार सेवकों पर गोली चलने के पहले, 2 महीने पहले मुझे मुलायम सिंह जी की सरकार ने अरेस्ट किया। और अगर आज वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जो मंदिर आंदोलन से जुड़े थे उनकी उपेक्षा हो रही है, तो ये 100% सही है।
0: बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मुद्दा इतना बड़ा तो नहीं बन जाएगा कि इसका उसे राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। अयोध्या से संतोष कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Hot Mics with Billy Bush, streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
1: भले हूँ हजार, लेकिन फूट के फसाने के पीछे तो रही है केवल एक सरकार। और अब सरकार से शिकायत लेकर स्पीकर के पास जाएं, चुनाव आयोग जाएं या अदालत, पीड़ितों को राहत नहीं मिल रही तो बौखलाहट सामने आ रही है।
2: जो हो रहा है उसमें गुनेगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जिया उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनेगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग।
1: उद्धव के नेता सुप्रीम कोर्ट को कोसते हैं, क्योंकि अगर शिंदे वाली बगावत पर फैसला हो गया तो बची खुची उद्धव सेना में टूट नहीं होती। दरअसल 14 दिन की कसम, हलफ, मान मनुहार, अनुरोध, अपील के बावजूद जब 6 सांसद गायब रहे तो सांसदों को व्हिप जारी करके बुलाया गया। संसदीय दल के नेता संजय राउत तय समय पर पहुंचे।
3: सर, आपको लगता है कि सारे लोग आएंगे?
2: देख लेंगे, जो आएंगे हमारे नहीं आएंगे वो बेईमान गद्दार।
1: उद्धव के 2 सांसद काफी देर तक इंतजार करते रहे। आधे घंटे बाद फिर नासिक वाले राजा भाऊ वाजे भी पहुंचे, लेकिन 6 बागी नजर नहीं आए।
2: एक्शन की शुरुआत हो गई है, उनको शोपा दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द।
1: लेकिन कार्रवाई फिर स्पीकर के हाथ होगी, चुनाव आयोग के दरबार में होगी या फिर इंसाफ अदालतों की चौखटों से ही निकलेगा, पर वक्त तय नहीं, क्योंकि एक फैसला कोलकाता में भी फंसा है। टीएमसी में टूट के बाद नेता विपक्ष और चीफ व्हिप का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, नोटिस भी दिया, जवाब भी मांगा, लेकिन बागी गुट को नेता विपक्ष बनाने के स्पीकर के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई।
4: The High Court has not passed any interim order, but High Court admitted the petition. Directions for affidavits have been given, and the matter will come up for final hearing.
1: अब अदालती हो या आयोग या फिर स्पीकर की चेयर, दल बदल वाले इन मामलों में हर दल संविधान और कानून के हिसाब से न्याय की उम्मीद करता है, लेकिन सत्ता की सियासत और कुर्सी के लालच का अफसोसनाक पहलू ये है कि कानून के दांवपेच का इस्तेमाल लोकतांत्रिक नैतिकता के खिलाफ होता दिखता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी व्हिप का उल्लंघन है। एकदम पार्टी का आदेश नहीं माना है, तो अभी उस मुताबिक हम उस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है। उनको सौंपा दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द। हमने कुछ उपाया, संडे को सब लोग एक साथ थे, कुछ वर्चुअली आए थे, आज लापता है। अब लापता कहाँ है, क्या है, उनको पता है, हमको उनको ढूंढने में आप कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, मैच्योर लोग हैं, 70-70 साल के लोग है, 2-2 बार 3-3 बार एंट्री बने हमारे पार्टी से, तो हम क्या उनको बताएं। लेकिन इस बार उनको महंगा पड़ेगा, चाहे कुछ भी।
5: सर, सर कोर्ट का भी रुख करेंगे,
2: देखेंगे कोर्ट। चार साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं।
6: सर, जिस दिन
2: उसमें जो हो रहा है उसमें गुनेगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जिया उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनेगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: विशेष में मेरे साथ इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका। एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवाणी ने प्रणव झा को हराया, क्रॉस वोटिंग से मिली जीत। छह सांसदों के बगावत से उद्धव गुट में खलबली, संसदीय दल की बैठक में नहीं आने पर कारण बताओ नोटिस जारी। आज तक से बोले डीजीपी, सभी बागियों को दी गई वाई प्लस सुरक्षा। इक्कीस जून को नीट री एग्जाम से पहले धर्मेंद्र प्रधान की हाई लेवल मीटिंग, तैयारियों की समीक्षा। कई शहरों में एयरफोर्स ने पहुंचाए प्रश्न पत्र। वाराणसी के दाल मंडी में सड़क चौड़ा करने के क्रम में गिराई जाएंगी छह मस्जिदें, भारी संख्या में पुलिस जवान तैनात। काशी स्टेशन के विस्तार के लिए भी एक मस्जिद को मिला नोटिस। कल फ्रांस में पीएम मोदी से मुलाकात और शान में कसीदे पढ़ने के बाद आज ट्रंप ने इंडिया टुडे का कवर पेज किया रीशेयर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई साथ वाली तस्वीर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। अमेरिका ने ईरान के साथ डील कर ली। डील का क्रेडिट लेने का इंतजार करता पाकिस्तान इंतजार ही करता रह गया। देश में उद्धव के 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ डील कर ली। कहीं सरकारी बाबू करप्शन के साथ डील कर रहा है, कहीं पुरुष पुलिस फर्जीवाड़े से डील कर रही है। लेकिन आपको खबरदार होकर यह याद रखना है कि सांसद विधायक टूटते जुड़ते रहेंगे, पार्टियों में बगावत अदावत होती रहेगी, वोटिंग क्रॉस वोटिंग होती आ रही है, चढ़ावे में चोरी और बड़ों तक जांच की आंच से दूरी बनी हुई है, सरकारी बाबू भ्रष्टाचार का कैश बटोरते रहेंगे। इन सब के बीच खड़ा आम आदमी पूछता है, कब तक खड़े रहेंगे किसी लाइन में? धक्का खाते हुए ट्रेन में, धंसती सड़क या गिरते पुल पर, यह हाल बदलना जरूरी है, ये तस्वीर बदलना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के लिए झटके वाली खबर से खबरदार कर दें, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ बार बार कांग्रेस खुद कभी आत्ममंथन करके मजबूती का दावा करती है, कभी इंडिया गठबंधन को ताकतवर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कांग्रेस का कुनबा है कि जितना समेटो उतना बिखरने लगता है। कांग्रेस के कुनबे में कलह है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। पहले इस खबर का अखिल भारतीय रूप आपको दिखा दें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जिस टीएमसी के साथ मजबूती से अब जुड़ रही है, वो टीएमसी बगावत से उबर ही नहीं पाई है, संकट और बढ़ रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश की बारी आई, जहां कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का पर्चा अधूरी जानकारी देने की वजह से खारिज हो गया। कांग्रेस ने बिना लड़े बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार को जीतने का मौका दे दिया। इसके बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए झटके की खबर आ जा गई, जहां उसके साथी उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 में से 6 सांसद बागी हो गए। और अब झारखंड, जहां इंडिया गठबंधन की ही सरकार है, वहां भी राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस अपने उम्मीदवार को जितवा नहीं पाई, क्योंकि दावा है कि आरजेडी और लेफ्ट के विधायकों ने कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ खेल कर दिया। झारखंड से आई इस खबर को समझिए और समझिए कि कांग्रेस जितना अपने साथियों को जोड़ने की कोशिश करती, उससे ज्यादा फिसल जाते हैं। झारखंड राज्यसभा चुनाव में आज बड़ा उलटफेर हुआ है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव में एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम ने जीत दर्ज की है। तो एक सीट पर जेएमएम की जीत तय थी, दूसरी सीट के लिए एनडीए के सपोर्ट वाले नाथवानी और कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा के बीच मुकाबला था। लेकिन यहां इंडिया गठबंधन में क्रॉस वोटिंग की वजह से एनडीए के समर्थन वाले नाथवानी 28 वोट पाकर जीत गए और कांग्रेस उम्मीदवार को 20 वोट मिले और वो हार गए। अब झारखंड के लिए कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन न करने के लिए आरजेडी और लेफ्ट को साफ तौर पर जिम्मेदार ठहराया।
1: जेएमएम और कांग्रेस इंटैक्ट है। जेएमएम का 34 एमएलए से 34 में 30 जेएमएम कैंडिडेट को दिया, 4 हमको दिया, कांग्रेस का 16 एमएलए 16 वोट दिया, उसलिए हमको 20 आया। सो जेएमएम कांग्रेस इंटैक्ट है, उसमें कोई जुड़ाई नहीं।
2: तो कौन आरजेडी या माले, आपको किस पे ज्यादा शक है? ब्लैक सीट कौन है? हु इज द ब्लैक सीट?
3: क्लियर, हम एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करेंगे। आई एम अनहैप्पी बिकॉज़ गठबंधन इज नॉट इंटैक्ट। आई एम अनहैप्पी बिकॉज़
2: कांग्रेस विल टेक एनी एक्शन रिगार्डिंग दिस।
3: दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू सिट डाउन एंड डिस्कस।
0: कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के बयान पर आपने अगर गौर किया हो तो कांग्रेस के प्रभारी कहते हैं कि कम से कम हमारे विधायकों ने क्रॉस वोटिंग नहीं किया। तो क्या कांग्रेस की स्थिति यह है कि उसके अपने विधायक क्रॉस वोटिंग न करें, इसी में वो खैर मनाती है? जो तेजस्वी यादव दिल्ली आकर बैठक में कांग्रेस के साथ होने की बात करते हैं, जो लेफ्ट कहता है कि बीजेपी को हराना है, वही दोनों दल राज्यसभा चुनाव में झारखंड में कांग्रेस को झटका दे देते हैं। सवाल उठता है, क्या एकता की बातें, हाथी का वो दांत इंडिया गठबंधन में है जहां मजबूती और एकता दिखाने की और चुनाव के वक्त कुछ और नजर आती है? क्या 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस की एकता को अगला झटका उत्तर प्रदेश में लग सकता है, जहां 3 ओबीसी नेता दावा करते हैं अखिलेश यादव की पार्टी में बगावत होने वाली है? लेकिन राजनीति के बहुत से जानकार इसको केवल सियासी अटकल कहते हैं, ये तक कहकर खारिज करते हैं कि यूपी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जहां अखिलेश यादव ने कहा है कि उनके सांसद बहादुर हैं तो बीजेपी के सामने टूटेंगे नहीं। इस पूरी खबर पर अलग अलग जगहों पर बहुत कुछ आपने पढ़ा सुना देखा होगा, लेकिन बगावत के दावे और हकीकत के बीच की सियासत से हम आपको एक एक करके खबरदार करेंगे।
4: साल 2012 पार्टी एक परिवार एक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 224 विधानसभा सीट जीती। अखिलेश यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। पांच साल बाद साल 2017 परिवार में फूट, चाचा शिवपाल साथ लेकिन फिर भी दूर। नतीजा समाजवादी पार्टी 47 सीट पर सिमट गई। 2018 में समाजवादी पार्टी में पहली बड़ी बगावत हुई, शिवपाल यादव अलग होकर अपनी पार्टी बनाते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी तब बीएसपी संग गठबंधन करके भी केवल 5 लोकसभा सीट जीत पाती है, जबकि फिरोजाबाद की घर की सीट पर शिवपाल यादव के अलग होकर लड़ने से समाजवादी पार्टी हार जाती है। अब पिछले 4 साल से परिवार फिर एकजुट है। 2024 के चुनाव में पार्टी परिवार ने संगठित होकर 37 सीट उत्तर प्रदेश में जीती, लेकिन अब 2027 के चुनाव से आने पहले समाजवादी पार्टी में टूट के दावे होने लगे। एक एक करके आज हम आपको पहले दावे सुनाएंगे। अखिलेश यादव की पार्टी में जल्द बगावत का दावा नंबर एक, 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार हैं।
5: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे।
4: बगावत का दावा नंबर दो, चुनाव में हारने के डर से समाजवादी पार्टी के सांसद बीजेपी में आएंगे।
6: देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारा भविष्य नहीं है, आगे चुनाव हम हार जाएंगे, तो ये लोग मन बना लिए हैं कि अब चलो बड़ी संख्या में उधर।
4: समाजवादी पार्टी में बगावत पर दावा नंबर तीन, 2 दर्जन सांसद विधायक संपर्क में है।
7: उनके 2 दर्जन जो हिंदुत्व विचारधारा के जितने भी सांसद उनके लोग हमारे पास आते रहे।
8: 2 दर्जन सांसद आपके पास आते रहे?
7: 4 दर्जन सांसदों के लोग, पहले तो स्टेप में लोग ही आएंगे, सांसद तो बाद में फाइनल हो जाता था, अपने फोटो खींच जाएगा, वायरल हो जाएगा।
8: आपकी कितने सांसदों से बातचीत हुई है?
7: हम तो मैक्सिमम ज्यादातर लोगों से बातचीत होती रहती है।
4: दावा नंबर 4, समाजवादी पार्टी के सांसदों में असंतोष है।
9: सपा में एक चीज तो है कि उनके सांसदों में असंतोष है कार्य प्रणाली का।
4: अखिलेश यादव की पार्टी में जल्द बगावत पर दावा नंबर 5, समाजवादी पार्टी के पूर्वांचल के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं।
10: पूर्वांचल के कई सांसद, दलित सांसद, पिछड़े सांसद, ये भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। सिफारिश कर रहे हैं कि हमको ले लीजिए, हमको ले लीजिए, जिसका खुलासा माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी कहा कि 20 से 25 सांसद तो उनके यहाँ संपर्क में हैं।
4: दावा नंबर 6, समाजवादी पार्टी के साथ कोई नहीं रहना चाहता।
11: आज समाजवादी पार्टी के साथ कौन रहना चाहता है? सब जानते हैं कि जब सत्ता आएगी तब आप सबको दूर कर देंगे, जब सत्ता से बाहर रहेंगे तो कहेंगे सब साथ आ जाइए, तो दोहरा व्यवहार, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा।
4: एक उप मुख्यमंत्री, 3 मंत्री, 1 पूर्व डिप्टी सीएम, कुल 5 लोग अभी ये दावा करते हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद टूट सकते हैं, लेकिन क्या ये वाकई उत्तर प्रदेश में संभव है?
12: जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए, और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए, और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं, वो चल सन्यासी मंदिर में।
0: अब कुछ बातों पर गौर करिएगा। ममता बनर्जी से बगावत करने वाले ज्यादातर सांसद अभिषेक बनर्जी के रवैये, बातचीत के तरीके, कार्य प्रणाली से नाराजगी जताते हैं। उद्धव ठाकरे के बागी सांसदों ने सूत्रों के अनुसार जो चिट्ठी स्पीकर को दी, इसमें विचारधारा से भटकने, कांग्रेस में विलय की सोचने वाले बयान को पार्टी छोड़ने के लिए जिम्मेदार बताते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर किस आधार पर बीजेपी के बड़े नेता बगावत की आशंका जताने लगे? बयानों पर गौर करने पर हमने पाया कि इसके पीछे एक रणनीति है। रणनीति ममता उद्धव के बाद अखिलेश के खेमे में भगदड़ की आशंका दिखाने की, ताकि 2027 में आसानी हो। रणनीति पूर्वांचल से बगावत की बात कहकर समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की। लेकिन जानकार पूछते हैं कि कहीं टूटेंगे का दावा बार बार करने की वजह से अखिलेश यादव सहानुभूति तो नहीं पा जाएंगे?
4: उत्तर प्रदेश की इन दो खबरों में क्या एक रिश्ता हो सकता है? जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी को राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में घेरती है, पूछती है कि राम का पैसा भी जो नहीं छोड़ रहे वो जनता को क्या छोड़ेंगे, वहीं बीजेपी की तरफ से तब समाजवादी पार्टी में बगावत की बू वाले दावे किए जाने लगते हैं।
12: समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है और समाजवादी पार्टी कई उतार चढ़ाव दे चुकी है।
5: समाजवादी पार्टी पूरी उम्मीद रखिए, जो हस्त टीएमसी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ है उससे बुरा हस्त।
13: अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव के जीत से उत्साहित होकर लगातार ये कहते आए हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को हराएंगे। अगर 2027 चुनाव तक अखिलेश यादव कमजोर नहीं हुए तो ये मुकाबला कांटे का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी और उनके सहयोगी दल पार्टियों के टूटते इस मौसम में इस तरीके का माहौल बना रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कमजोर हो गई तो उन्हें 27 के चुनाव में हराना आसान हो जाएगा।
12: उत्तर प्रदेश की जनता ने पीड़े के आह्वान की मदद की, पीड़ित दुखी अपमानित लोग एक हो रहे हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई लोग एक हो रहे हैं और आधी आबादी एक हो रही है। महंगाई के कारण, भ्रष्टाचार के कारण और भारतीय जनता पार्टी का काम करने की वजह से, गलत काम करने की वजह से सब एकजुट हो रहे हैं। यही ताकत जो 2024 में इनको हराया था, 2027 में और मिलकर के इनको हराने का काम करेंगे।
6: टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं, अब यहाँ नहीं रहेंगे, पेट भर गया है। जैसे ममता के यहाँ पेट भरी के सब चल दिए उधर, वैसे ही इधर से टूट के जाएंगे, टूट के जा रही है।
13: राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बीजेपी समाजवादी पार्टी या यूं कहें अखिलेश यादव के साथ एक सियासी माइंड गेम खेल रही है। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के टूटने के बाद अब बीजेपी की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी को भी कमजोर और असहाय दिखाया जाए, और अगर पार्टी सचमुच कमजोर हुई या उसका मनोबल ऐसे प्रयासों से टूटा तो बीजेपी के लिए 27 आसान हो जाएगा। लेकिन क्या ये होगा, ये बड़ा सवाल है।
4: इस माइंड गेम को आज आप समझ लें, इसलिए ध्यान दीजिएगा। बगावत वाली खबर फैलाने के पीछे माइंड गेम नंबर 1, समाजवादी पार्टी की पिछड़े और दलित की ताकत में टूट का दावा करना। बगावत की इस पूरी खबर में ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले तीन जिन नेताओं ने समाजवादी पार्टी में टूट का दावा करना शुरू किया है वो तीनों ओबीसी समाज से आते हैं, यानी केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर और अब संजय निषाद।
7: मैंने उनकी बात पहुंचा दी,
8: सांसदों की बात
7: भाई, उनकी बात पहुंचा दी भाई, अब वो अभी
8: पहुंचा दी,
7: अभी दिल्ली शीर्ष नेतृत्व को बात पहुंचा दी कि वो लोग अब जुड़ना चाहते हैं।
8: कितने लोग हैं
7: आपके विचारधारा? मैंने बताया 2000 से अधिक लोग हैं
8: समाजवादी पार्टी के।
7: हाँ, उनके लोग
8: विधायक भी हैं, केवल सांसद
7: के, कांग्रेस के विधायक भी हैं और सांसद भी हैं, क्योंकि भाई आगे चुनाव।
4: तो क्या अखिलेश यादव के पिछड़े दलित वोट, पिछड़े दलित नेता वाली 2024 की ताकत को बीजेपी और उससे जुड़े सहयोगी दल कमजोर करना चाहते हैं? जहां 37 में 19 सांसद ओबीसी समाजवादी पार्टी के जीते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में अगर कुल 17 दलित आरक्षित सीट हैं, तो 8 दलित सांसद समाजवादी पार्टी के जीते हैं। क्या इसीलिए पिछड़े वर्ग के नेता ज्यादातर अखिलेश की पार्टी में टूटने का दावा करने लगे हैं?
14: जितने भी दलित तो पिछड़े हैं सब यादव से दुखी हैं, ये पीडीए की बात करते हैं और पिछड़ों को अपमानित करते हैं, ये दलित की बात करते हैं, दलित सांसदों को सम्मान नहीं देते हैं। तो ये नौजवान हैं और ये अपने सम्मान के भूखे लोग हैं कि हम सांसद बने तो हमें सांसद का सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी में उनको सांसद का सम्मान नहीं मिल रहा है। इस नाते पूर्वांचल के कई सांसद, दलित सांसद, पिछड़े सांसद ये भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं सिफारिश कर रहे हैं कि हमको ले लीजिए, हमको ले लीजिए।
15: राज भर जी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है तो सीटों की बार्गेनिंग करें, ज़्यादा बार्गेनिंग हो जाए और ज़्यादा सीटें मिल जाए, फिर उसमें पैसे कमाएं, यही तो धंधा है इन लोगों का।
4: बगावत वाली खबर फैलाने के पीछे दूसरा माइंड गेम समझिए। पूर्वांचल में मजबूत हुई समाजवादी पार्टी को टूट के नाम पर क्या कमजोर किया जाए? समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मजबूती हासिल की है। 2024 में अखिलेश यादव की 37 में से 15 सांसद पूर्वांचल से जीत कर आए। पूर्वांचल वो इलाका है जहां अखिलेश को बड़ी बढ़त 2022 से 2024 तक मिली। इस आंकड़े को आज आप समझिएगा। बीजेपी 2017 में 130 में से पूर्वांचल की 87 विधानसभा सीट जीतती है, लेकिन फिर 2022 में ये संख्या घटकर 64 हो जाती है, जबकि समाजवादी पार्टी 5 साल में 14 से 42 पहुंची। वहीं लोकसभा में 2014 में पूर्वांचल की 26 में से 23 सीट बीजेपी जीती, 2019 में संख्या 19 हुई और फिर 2024 में घटकर 9 पर आ जाती है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 लोकसभा चुनाव में एक एक सीट जीतकर 15 तक पहुंच जाती है। क्या इसीलिए पूर्वांचल में खासकर टूट की बात बीजेपी या उससे जुड़े सहयोगी दल के नेता करने लगे?
14: पूर्वांचल के बहुत से ऐसे सांसद हैं जो बोल तो रहे हैं कि सपा के बहुत हम हमदर्द हैं, अब देखिएगा वो भाजपा के साथ खड़े नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए धुआं उठा है।
16: अगर वो लिस्ट मिल गई और वो लिस्ट उन तक पहुंच गई और उन्होंने आप तक भी पहुंचा दिया, तो अब इसमें और आगे बचता क्या है?
17: वो तो खुल्लम खुल्ला बयान दे रहे हैं कि आपके यहाँ असंतोष है।
16: जब खुल्लम खुल्ला वो बता ही रहे हैं और हमारे दल के बारे में हमें नहीं पता है या कम पता है, उसके बारे में उनको ज्यादा पता है। राजभर साहब कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं, कल क्या करेंगे, वक्त का इंतजार करिए।
0: अब समाजवादी पार्टी का दावा है कि बीजेपी राम मंदिर चढ़ावा विवाद से ध्यान भटकाने में जुटी हुई है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है।
4: बगावत वाली खबर फैलाने के पीछे माइंड गेम नंबर 3, राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बदले क्या ध्यान भटकाया जा रहा है?
12: धर्म का मतलब धन है और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने, कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा।
4: राम मंदिर से चढ़ावा चोरी का मसला 7 जून से उठना शुरू हुआ।
18: आज ट्रस्ट ने जिस तरह से डकैती की है, जिस तरह से रुपए गायब हुए, आभूषण गायब हुए, मुकुट गायब हुआ, कंगन गायब हुआ, हार गायब हुआ, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है। और ट्रस्ट ने जो लूट की, डकैती की, तो इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विश्वास को तोड़ा है, 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास को तोड़ा है। इसलिए मैं सबसे पहले तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मांग करता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए ट्रस्ट को भंग कर दे।
4: और जब मुख्यमंत्री के कहने पर एसआईटी की जांच होने लगी, तब इस बीच सवाल राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर खुद बीजेपी के ही भीतर से उठने लगे हैं।
19: ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात हो गई, तो उस पर तो कार्रवाई होने ही होना है। इतनी बड़ी घटना ये लोग अचानक नहीं कर सकते।
20: विनय कटियार जी ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है और इसका परिणाम भी भोगा है, इसका परिणाम भी पार्टी ने भोगा है। आप देखिए, अयोध्या हार गए, अंबेडकर नगर हार गए, बस्ती हार गए, बाराबंकी हार गए, देवीपाटन में अब कैसे 3 सीटें मिली है आप जानते हैं, लेकिन 1 सीट हार गए। तो ये जो आम जन लोगों को अयोध्या से काट दिया गया।
19: मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो व्यक्ति एक साइकिल से चलता था, जिस व्यक्ति के रहने के लिए कोई आवास नहीं था, आज उसके 10-10 होटल हो चुके हैं, आज 10-10 गाड़ियों पर वो चल रहा है, कहां से आया? इसका जो है भगवान ही करेंगे निश्चित।
4: इसी के बाद ये दावा किया जाने लगा कि हो सकता है राम मंदिर मामले से ध्यान भटकाने के लिए समाजवादी पार्टी में बगावत की बात कही जाने लगी हो, क्योंकि संत और बीजेपी के ही नेता मंदिर चढ़ावे में चोरी से नाराज हो रहे हैं।
15: अब सबको खतरा हो गया है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी सबको जोड़ करके अब के सरकार बनाने जा रही है, इस तरह से अफवाहें उड़ा रहे हैं लोग।
4: बगावत वाली खबर फैलाने के पीछे चौथा माइंड गेम, हिंदू वोट वाली अखिलेश की रणनीति की क्या काट खोजी जा रही है?
1: परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की।
4: समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जय परशुराम का नारा लगता है।
1: परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की।
4: अखिलेश यादव खुद ज्येष्ठ महीने के मंगल मंगल पूजा करके भंडारे में शामिल होते रहे।
12: मंदिर बहुत जल्दी बनकर के तैयार हो गया है, उसके बाद हम भी दर्शन करेंगे और जैसा प्रभु करेंगे, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जी जैसे बताएंगे उस रास्ते चलेंगे हम लोग, उसमें क्या है।
4: राम के रास्ते पर चलने की बात करते समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और उनके पार्टी दफ्तर में ब्राह्मण समाज के नेताओं की बैठक होती है और तभी बगावत की बात अखिलेश खेमे में करने वाले राजभर दावा करते हैं कि बागी बलिया से बगावत होगी।
14: कहीं न कहीं तो
21: आप एक बलिया की भी बात कर रहे हैं कि बलिया सा कोई
14: भाई, कल ब्राह्मण सम्मेलन में जिस तरह नाराज होकर के बलिया के सांसद चले गए उठ के, आप सम्मान देने की बजाय जो अपमानित कर रहे हो बुला करके, तो क्या करेंगे? वहां से छोड़ करके नाराज होके गए ना, क्यों नाराज हुए?
15: ब्राह्मण सम्मेलन 5 अगस्त की तैयारी के लिए हुआ था। 5 अगस्त जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन है, छोटे लोहिया जी का, उसे तैयारी के लिए हुआ था। और किसने सम्मान नहीं किया? हमारे जो है जो ब्राह्मण प्रदेश से आए थे वो गदगद होकर गए हैं कि
22: समाजवादी पार्टी उनके डीएनए में केवल मुस्लिम तृप्तिकरण है, केवल दिखाने के दांत और है और खाने का और है, इनको कोई भरोसा नहीं करे।
4: माइंड गेम की इस लड़ाई में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में खींचतान जारी है। देखना यह है कि वाकई बगावत आगे बड़ी हो सकती है या फिर 400 पार के नारे की तरह बगावत की बातें उल्टी पड़ेंगी।
0: उद्धव गुट में बगावत की अटकलों पर मुहर लगती दिख रही है। सुबह दिल्ली में शिवसेना यूबीटी की संसदीय दल की बैठक हुई, इसमें 9 में से केवल 3 लोकसभा सांसद पहुंचे। दावा है कि इन सांसदों ने शिंदे की पार्टी में शामिल होने की बात कही है, तो क्या उद्धव के पास 3 सांसद बचेंगे? शिंदे के सांसद 13 हो जाएंगे। अब शिवसेना यूबीटी ने बैठक में शामिल न होने वाले सांसदों से जवाब मांगा है। वहीं संजय राउत गैर हाजिर सांसदों के लिए लगातार दूसरे दिन अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। टूट की अटकलों के बीच पुरानी संसद में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने संसदीय दल की बैठक बुलाई, जिसमें पहुंचते हुए संजय राउत के इस बयान और उनके हाव भाव ने जो कुछ दिखाया उस पर इस तस्वीर ने मुहर लगा दी। अरविंद सावंत, राजा भाव वाजे और अनिल देसाई इस बैठक में पहुंचे।
23: बताया जा रहा है कि सभी को संपर्क किया गया था, किस माध्यम से संपर्क किया गया था? क्या
24: अभी जिन्होंने संपर्क किया था उनसे बात कीजिए आप, मैंने किसी संपर्क, मेरे संपर्क में कोई नहीं है। मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं पार्टी के संपर्क में हूँ, नेतृत्व के संपर्क में हूँ, वो जो बोलेंगे वो मैं करूँगा।
23: जो बैठक है उसमें आप जा रहे हैं?
24: हाँ मैं जा रहा हूँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ मैं जा रहा हूँ।
23: रीना पाटिल तथा
24: वो मुझे बाकी के लोगों के बारे में कुछ मालूम,
23: इनसे कोई संपर्क हुआ?
24: मेरा कुछ संपर्क नहीं हुआ, मैं किसी के साथ बात किया नहीं हूँ।
4: शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों की गैर हाजिरी ने बगावत की खबरों पर औपचारिक मुहर लगा दी, क्योंकि बैठक के लिए शिवसेना यूबीटी के मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने व्हिप जारी कर सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा, लेकिन 9 में से 6 लोकसभा सांसद नहीं आए। संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, ओम राजे निम्बालकर, भाव साहब बागचौरे और संजय जाधव अरविंद सावंत की बुलाई गई ग्रुप लीडर्स की बैठक से गायब हो गए।
25: जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी हित का उल्लंघन है, एकदम पार्टी का आदेश नहीं माना है, तो अभी उस मुताबिक हम उस बारे में जो भी एक्शन लेनी है तो एक्शन की शुरुआत हो गई है, उनको सौंपा दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द।
2: चार साल बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना में एक बार फिर टूट हो गई। ऑपरेशन टाइगर को अंजाम देने का काम 16 जून से शुरू होता है, जब नागेश पाटिल आधी रात 1:30 बजे प्राइवेट जेट से नांदेड़ से दिल्ली आते हैं। इसी दिन नांदेड़ से ही संजय देशमुख और संजय जाधव भी अलग अलग निजी विमान से दिल्ली पहुंचे। भाव साहब वागचूरे हैदराबाद से दिल्ली पहुंचे। जानकारी के मुताबिक संजय दीना पाटिल और विधायक प्रताप सरनायक भी 16 जून की रात को ही दिल्ली पहुंचते हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मुंबई से 17 जून की सुबह करीब 3 बजे दिल्ली आ जाते हैं। सूत्र बताते हैं कि ओमराजे निंबालकर और श्रीकांत शिंदे पुणे से दिल्ली पहुंचे और सुबह करीब 4:30 बजे राजधानी में मौजूद। दिल्ली पहुंचने के बाद बागी सांसदों को नोएडा के एक होटल में ठहराया गया। 17 जून की सुबह घटनाक्रम ने तेजी पकड़ी। सूत्र कहते हैं कि सुबह 7 बजे श्रीकांत शिंदे और ओम राजे निंबालकर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इसके बाद 17 जून की सुबह 10:20 पर ओम राजे निंबालकर समेत 5 दूसरे सांसदों ने भी स्पीकर से मुलाकात की।
3: सूत्रों के अनुसार यूबीटी के 6 सांसदों ने हस्ताक्षर किया हुआ एक प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा है। इस प्रस्ताव में इन बागी सांसदों ने यह कहा है कि पार्टी मूल विचारधारा से भटक गई है और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता यूबीटी का विलय कांग्रेस में कराना चाहते हैं, इसीलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं और एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ पार्टी में शामिल होना चाहते हैं।
2: स्पीकर से मुलाकात के बाद उद्धव के ये बागी सांसद अलग अलग जगहों के लिए रवाना हो गए। सूत्र कहते हैं कि नागेश अष्टिकर चेन्नई होते हुए तिरुपति दर्शन के लिए गए, भावसाहब वागचूरे वाराणसी चले गए, संजय देशमुख और संजय जाधव अयोध्या पहुंचे, जबकि संजय दीना पाटिल मुंबई और ओम राजे निंबालकर पुणे चले गए।
3: सूत्रों के मुताबिक यूबीटी ग्रुप के 6 बागी सांसद 20 जून को एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद वो सार्वजनिक तौर पर ये बताएंगे कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी है और स्पीकर ओम बिरला से मिलकर उन्होंने क्या मांग की है।
25: आज हमने एक मीटिंग जो हमारी थी पार्लियामेंट दल की, उसमें हमारे लोकसभा के 3 सांसद आए थे, राजाबाव वाझे, अनिल देसाई, अरविंद सावंत और बाकी के लोग आए नहीं है। हमने उनको तो पहले शोकाद नोटिस दी है, 7 दिन का उनको जवाब के लिए टाइम दिया है, बाद में देख लेंगे। अभी वो प्रोसेस शुरू हो गया, हम उनको डिस्क्वालीफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे।
2: सामना संपादकीय में छपे एक लेख में कहा गया था कि शिवसेना के कुछ सांसद पार्टी से अलग होकर नया गुट बना सकते हैं। इसी कयास पर विराम लगाने के लिए सभी सांसदों की बैठक दिल्ली में बुलाई गई, लेकिन बागियों ने बैठक में शामिल न होकर अपनी बगावत का संदेश पहुंचा दिया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: उद्धव ठाकरे की शिवसेना में सांसदों की बगावत की खबरें आने के साथ ही पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत भी चर्चा में हैं, जो लगातार बागी सांसदों को गद्दार और बेईमान बता रहे हैं। वहीं बागी सांसद संजय राउत के एक बयान का हवाला देकर दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है और कुछ सीनियर नेता शिवसेना यूबीटी का कांग्रेस में विलय कराना चाहते हैं।
5: कि कांग्रेस पार्टी से जो जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए।
2: कहा जाता है कि बिना मांगे दी गई सलाह अक्सर उल्टी पड़ जाती है। संजय राउत के साथ भी क्या यही हो रहा है, जिनके इस बयान को शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों ने बगावत की दलील बना दी।
9: सभी सांसद विधायकों को ये लगा होगा कि भाई संजय राउत, उद्धव जी, हम कांग्रेस को में ना लेके जाए, पार्टी ना उधर जाके मर्ज करे, इसीलिए ये लोगों में मुझे लगता है कि असंतोष है।
2: तो क्या इसीलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों की आधिकारिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए जो अलग से हाजिरी रजिस्टर तैयार किया गया, उसमें सिर्फ 3 ही सांसदों की उपस्थिति दर्ज हो पाई?
25: पहले लोकसभा का प्रोसेस पूरा होने दो, बाद में आप जाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये लड़ाई आप संसद में भी चलेगी,
6: कोर्ट में भी चलेगी और सड़क पर भी चलेगी। और सड़क पर की लड़ाई शुरू हो गई है मुंबई महाराष्ट्र में। आप देखिए तो सभी जो ये गद्दार लोग है भाई वहाँ उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है, पूरा ताम झाम। अब भारत की फौज भी लेके आई है, भारत की फौज को उतारी है, यही बाकी है गद्दारों की रक्षा के लिए।
4: शिवसेना यूबीटी में बगावत से संजय राउत आग बबूला है और लगातार बागी सांसदों पर तीखे हमले करते हुए अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए खुलेआम धमकी दे रहे हैं।
6: उनको घर में रहना मुश्किल होगा, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए, जाए वो अगर जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा। इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी, इतना शिंदे को भी और ये जो पांच छह जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले, सुबह बताया हम लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश की राजनीति में गंदगी बढ़ाई है, खास करके महाराष्ट्र में, तो उनको भी कीमत चुकानी पड़ेगी।
4: साल 2022 में जब एकनाथ शिंदे 40 विधायक तोड़कर चले गए, तब भी संजय राउत बागियों को धमकाते हुए सुने गए थे, लेकिन इसका कभी कोई असर नहीं हुआ।
6: हे जे 40 लोक तिकडे आहेत ना, हे जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या, हे मृद आहेत, त्यांच्या बॉड्याकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला असेल आणि प्रकाश सुरून ते येऊन दाखवा, माझं चॅलेंज आहे।
4: शिवसेना यूबीटी के लिए सांसदों की बगावत शर्मिंदगी की बात इसलिए भी है क्योंकि कुछ दिन पहले तक संजय राउत तृणमूल कांग्रेस में बगावत पर तंज कसते हुए सुने जा रहे थे।
7: तभी हमारे जो मित्र है तृणमूल कांग्रेस के सब और हम पर हंसते थे और बोलते थे, अरे कैसा भाग के गए तुम्हारे एमपी मिली, तुमने रोका नहीं क्या, तुमने रोका क्या? जब मिलते थे तो हमको बहुत मार्गदर्शन कर देते, अरे कैसा हो गया, इतने ढीले कैसे छोड़ दिए, कैसे भाग गए, तुम लोग क्या करते थे? अभी मैं पूछता हूँ तुम लोग क्या करते थे?
4: बाला साहब ठाकरे के रहते शिवसेना में पहली बार साल 1991 में बगावत हुई थी, जब छगन भुजबल ने 17 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ी थी। भुजबल ने बाला साहब ठाकरे की कार्यशैली और पार्टी में अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए विद्रोह किया था, लेकिन साल 2003 में उद्धव ठाकरे के शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी चार बार टूट चुकी है। 2005 में पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने उद्धव को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाने का विरोध किया और पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। दूसरा विद्रोह 2006 में हुआ जब चचेरे भाई राज ठाकरे अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना लेते हैं। असली झटका जून 2022 में लगा जब एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ बगावत की। इस विद्रोह से उद्धव का सीएम पद, पार्टी का नाम चुनाव निशान तक छिन गया और अब पार्टी के 9 में से 6 सांसद विद्रोह कर चुके हैं, जिसके लिए पुराने शिवसैनिक सत्ता के लिए उद्धव का विचारधारा से समझौता करना मानते हैं।
9: जो कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ हम 30-30 सालों से लड़ रहे थे, जो लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, कि उनके साथ में जाके वो मुख्यमंत्री वहां पर बने, तो मैं बोलता हूं कि तभी से ही जो कट्टर शिवसैनिक है, जो कट्टर बाला साहब की विचारधारा को मानने वाले हैं, वो लोगों के दिल में असंतोष था कि भाई ये ठीक नहीं है।
4: लेकिन उद्धव ठाकरे और उनके करीबी नेता पहले विधायक और अब सांसदों के विद्रोह को डर और लालच से जोड़ते हैं। संजय राउत का दावा है कि उनके सांसदों को बगावत करने के लिए 50 करोड़ रुपए देने का वायदा किया गया।
6: जहाँ जाना है वहाँ जाने दे, डर डर के वो भागते रहेंगे, घूमते रहेंगे। सबके घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है, हाँ, जहाँ जहाँ उनकी प्रॉपर्टी है, और कल वापस 5-5 करोड़ मिले हैं तो वो पैसे को भी सिक्योरिटी दी है लगता है मुझे।
9: लालच दे के कोई अपना पॉलिटिकल करियर, अपना पॉलिटिकल करियर दाव पे नहीं लगाता, ये सब अफवाहें हैं और ये उभाटा की तरफ से ही मीडिया तक वहाँ पर उछाली जाती है।
4: इसी साल की शुरुआत में ठाकरे परिवार को बीएमसी चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। इस एक हार से 30 साल का वर्चस्व टूट गया। उधर एकनाथ शिंदे की बगावत के 4 साल भी पूरे नहीं हुए, अब उद्धव की पार्टी के 2/3 सांसद अलग हो रहे हैं।
0: और अब बात अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की, जो तय समय से एक दिन पहले ही हो गया। इस डील से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया। कहा कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा, लेकिन ईरान को लेकर जो समझौता हुआ है उसमें जिस तरह इसराइल के हितों की अनदेखी की गई वो अमेरिका को लेकर खबरदार करने के लिए काफी है।
8: इस तस्वीर को देखकर दुनिया को राहत मिली जब अमेरिका और ईरान की तरफ से जंग खत्म करने के समझौते के मसौदे पर दस्तखत किए जाते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने बुधवार देर रात डिजिटल हस्ताक्षर किए, जिसके साथ ही समझौता लागू हो गया। ईरान के साथ समझौता करने से पहले ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उनकी तारीफों की झड़ी लगा दी।
10: I want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually.
8: 16 महीनों बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने रिश्तों में आई खटास को कम करने की भरसक कोशिश की। इसी कोशिश में ट्रंप ने वो कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।
11: And the United States, sorry, I'm screaming, I won't.
10: That's okay.
11: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
10: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there.
8: तो ट्रंप ने वादा किया कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा। ट्रंप ये कहकर सबको चौंका देते हैं, लेकिन सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस भरोसे में कितना दम है, क्योंकि ईरान के साथ जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल की अनदेखी की है वो अमेरिका से रिश्तों को लेकर खबरदार करता है।
10: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, baby. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true.
8: फ्रांस में ट्रंप की पीस डील पर साइन करने के बाद ईरानी राष्ट्रपति पेजिशकियान ने जिस समझौते के दस्तावेज पर दस्तखत किए उसमें नौवां पॉइंट अमेरिका पर भरोसे का संकट बढ़ाता है। समझौते के मसौदे में अमेरिका, ईरान और उसके सहयोगी देशों के बीच सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत और स्थायी रूप से बंद करने की बात कही गई है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। अमेरिका के लिए ये मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि ट्रंप को चिंता थी कि हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की सैन्य कार्रवाई शांति समझौते को कमजोर कर सकती है, इसीलिए इसे इसराइल के खिलाफ माना जा रहा है। इसराइल पहले ही कह चुका है कि वो अमेरिका ईरान बातचीत में लेबनान को लेकर हुई किसी भी सहमति को नहीं मानेगा, लेकिन ट्रंप इसराइल की सुनने को तैयार नहीं दिखते।
10: Angry, I guess. I'm allowed to get angry when I watch the Democrats. They talk about it all the time. We had this deal done. You had a deal that was going to give them legally a nuclear weapon. And if that happened, Israel would have been blown away.
8: तो ट्रंप ये कहकर इसराइल पर एहसान जताते हैं कि अगर वो ना होते तो इसराइल का नामो निशान मिट जाता। कुल मिलाकर ईरान से सीधी टक्कर लेने वाला इसराइल खुद को अकेला पा रहा है।
13: What the president is saying is that right now they won't call. Okay, so they would like Israel to be less aggressive. Now we are ready, as I said, to engage in a diplomatic process, but we will not renounce our right for self-defense. And we are going to continue operations in South Lebanon, and if we are attacked, we are going to retaliate.
16: नहीं तो इसमें मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर इसराइल पर हमला होता है हिजबुल्ला की तरफ से तो क्या इसराइल पलटवार करेगा या इस एमओयू की वजह से टोटल सीज फायर होगा हर मोर्चे पर?
13: We will defend ourselves and our prime minister has stated that, our defense minister has stated that Israel will defend itself if attacked by Hezbollah.
8: इसराइल भले ही कहे कि वो लेबनान में किसी की नहीं सुनेगा, लेकिन हकीकत ये कि पिछले रविवार को जिस समझौते का ऐलान ट्रंप ने किया, दावा है कि उसने इसराइल और उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अचंभित कर दिया, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में इजरायली अधिकारियों के हवाले से मंगलवार तक दावा किया गया है कि इसराइल को अब तक समझौते का ड्राफ्ट नहीं दिखाया गया। हालांकि ट्रंप ने इस समझौते पर साइन करने से पहले इसकी एक कॉपी नेतन्याहू को भेजने की बात कही, लेकिन इसने दिखा दिया कि अमेरिका ने अपने सबसे करीबी दोस्त को ईरान से समझौता करने के चक्कर में अकेला छोड़ दिया।
10: Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99%. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
8: ईरान से समझौता करने के लिए ट्रंप पर घरेलू सियासी वजहों से भारी दबाव था। इसी बात का ईरान ने फायदा उठाया और अमेरिका से अपने मिसाइल कार्यक्रम पर छूट हासिल कर ली।
10: No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay.
8: इजराइल ने 28 फरवरी को अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो तेहरान के मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना उसके लिए मुख्य मकसदों में शामिल था। इजराइल ने हमेशा कहा कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम का इस्तेमाल ढाल की तरह कर रहा है ताकि उसे परमाणु हथियार बनाने से ना रोका जा सके। लेकिन ट्रंप ने इजराइल की सुरक्षा से जुड़े इतने अहम मुद्दे की भी समझौता करने की वजह से अनदेखी कर दी।
10: And it's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing.
8: अमेरिका और ईरान में जो समझौता होने जा रहा है उससे ईरान मालामाल होगा, उसके प्रतिबंध हटेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचेगा, कमाई करेगा और इस पैसे का इस्तेमाल अपने मिसाइल कार्यक्रम को खतरनाक करने में लगाएगा ताकि भविष्य में किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अब आप ही सोचिए कि ये काम करने वाले ट्रंप का भारत को किया वायदा कितना भरोसे लायक है, क्योंकि ईरान से होने वाला समझौता बताता है अमेरिका अपने फायदे के लिए इसराइल जैसे सबसे करीबी देश के हितों की भी अनदेखी कर सकता है।
1: वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने बयानबाजी को बदलने के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार उन्होंने सबसे बड़ा धोखा मिडिल ईस्ट में अपने सबसे मजबूत स्ट्रेटजिक पार्टनर यानी इसराइल को ही दे दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस जंग से निकलने की एक विंडो तलाश रहे थे और जब ईरान के साथ उनकी सहमति बन गई तो उन्होंने इसराइल को बिना कॉन्फिडेंस में लिए ही MOU साइन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे थे कि अगर वो इसराइल का साथ लंबे समय तक देते तो ना सिर्फ उनके देश में उनकी नीतियों को लेकर जो मुखालफत हो रही थी वो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती, बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनका धीरे धीरे कर साथ छोड़ रहे थे। यहां तक कि नाटो के देश भी लगातार उन पर सवाल खड़े कर रहे थे और इन्हीं मजबूरियों के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया।
0: आप सुनते होंगे कि हर राज्य में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत करिए, तुरंत निवारण होगा, पर मध्य प्रदेश गजब, जहां जनता की शिकायत को सुलझाने के लिए बनी सीएम हेल्पलाइन को पुलिस वालों ने अपनी रैंकिंग चमकाने का हथियार बना लिया।
12: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूं। पहले ये आपने कोई शिकायत की थी सीएम हेल्पलाइन पे? काय की शिकायत थी?
17: अच्छा, अकाउंट फ्रीज हो चुका है, कोई उस पर रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, चलो मैं देख पाता हूँ, है ना। आपका डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूं, मुख्यमंत्री बोल रहा हूं। ठीक है, बाकी और सब परिवार में ठीक है, मदद करेंगे आपकी, है ना। मैं सडनली देख रहा हूँ कि कंप्लेंट पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही। इसलिए
8: मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक बार फिर सीएम हेल्पलाइन को लेकर खबरदार होना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन पर फर्जी शिकायत के दम पर कुछ पुलिस वाले चेहरा और रैंकिंग चमकाने में जुटे। खबर मध्य प्रदेश की मऊगंज, सवाल मऊगंज की पुलिस पर। जवाब के लिए सीएम हेल्पलाइन में दर्ज इन शिकायतों का स्क्रीनशॉट आज देखिए। 31 मई को सौरभ के नाम से शिकायत हुई कि मऊगंज थाने में उसके भाई को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से संतुष्ट हो गया, शिकायत बंद हो गई। 31 मई को ही सौरभ के नाम से एक और शिकायत हुई, पुलिस से पासपोर्ट और चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से एकदम हैप्पी हो गया, शिकायत बंद हो गई। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत हुई, मऊगंज थाने में उसकी FIR नहीं लिखी जा रही। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से एकदम संतुष्ट, शिकायत बंद। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत होती है कि पुलिस परेशान कर रही है, थाने में बुलाकर मारपीट कर रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से हैप्पी, शिकायत बंद। 31 मई को सौरभ के नाम से शिकायत की उसकी बेटी गुम हो गई, मऊगंज थाना पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से संतुष्ट, शिकायत बंद हो गई। दावा है कि मऊगंज पुलिस ही सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत का खेल खेलती, जहां दावा है 21 मोबाइल नंबर से 233 झूठी शिकायत खुद ही दर्ज करा के आनन फानन में उनका समाधान भी दिखा दिया, ताकि लगे वाह क्या पुलिस है। आगे सुनिए, ये अंकित चौरसिया है, इनके नाम

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर किधर
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाए।
6: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
5: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
7: वेयर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
8: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
9: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
10: ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
11: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
12: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
15: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: आगे आगे करेक्ट
4: करेक्ट मिल गया।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
7: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
6: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
8: जमीन हिलती है लेकिन कुछ है जो कभी नहीं हिलता। आग जलाए या तूफान झिझोड़े, मौसम बदले, फिर भी हर सपना खड़ा रहे। क्योंकि नींव अगर रीजेंसी इस्पात की हो, आपका घर कभी नहीं हिलता। रीजेंसी थर्मेक्स TMT बार्स, आपके निर्माण की सर्वोत्तम बुनियाद।
9: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
10: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
11: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
9: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
12: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
10: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
9: जहां खबर वहां खबरदार।
13: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
15: Please, Bajipa, please do Lalan Talk Show. It's a request. And please to speak truth.
14: April 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
15: ऐसे हरकतें आप करोगे आपके भाई के साथ? आई चैलेंज यू बजीबा, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में।

0: at Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
1: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: Parshuram ji ki, Bhagwan Parshuram ji ki, Bhagwan Parshuram ji ki.
4: ये सिर्फ नारा नहीं, मानो अखिलेश यादव के PDA में ब्राह्मण वोट बैंक को साथ जोड़ने का समाजवादी पार्टी का मंत्र है। लखनऊ में बुधवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी के ब्राह्मण समाज के नेताओं की बड़ी बैठक हुई। बैठक का एजेंडा था 5 अगस्त को पड़ने वाली जनेश्वर मिश्र जयंती की तैयारी। छोटे लोहिया के नाम से मशहूर रहे जनेश्वर मिश्र मुलायम सिंह यादव के करीबी ब्राह्मण नेताओं में थे। बैठक में जनेश्वर मिश्र जयंती की रूपरेखा तो बनी ही, साथ ही ब्राह्मण समाज की अनदेखी का तीर बीजेपी पर चलाया गया।
5: ब्राह्मण तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है ना, उसने तो बड़ी उम्मीद से साथ दिया था और बार बार दिया था, पाया क्या है। एक छापामार मंत्री, बस वो भी छापा मारते हैं, अपने विभाग कुछ कर नहीं पाते, वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो उनको ब्राह्मणों कुछ मिला नहीं है। जब भी मौका आया तो उनको सीधा अपमान मिला है, नाम पूछ के जातियां पूछ के अपमानित किया गया है, इसलिए वो अब की बार बदलाव का मन बना चुका है।
4: इस बीच समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक सनातन पांडेय ने उन दावों को भी बेबुनियाद कहा है जिसमें ब्राह्मणों के पार्टी से नाराज होने का दावा हुआ है।
6: ब्राह्मण सम्मेलन 5 अगस्त की तैयारी के लिए हुआ था। 5 अगस्त जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन है, छोटे लोहिया जी का, उसे तैयारी के लिए हुआ था। और किसने सम्मान नहीं किया? हमारे जो है, जो ब्राह्मण प्रदेश से आए थे, वो गदगद होकर गए हैं कि इतना सम्मान अगर कहीं आज तक हम लोगों को कोई हुआ ही नहीं था, तो ब्राह्मण नाराज क्या हो गया?
4: ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए अखिलेश यादव का प्रयास बीजेपी के हिंदू कार्ड की काट ढूंढने की अगली कड़ी के तौर पर गिना जा रहा है। अखिलेश यादव बड़े मंगलवार पर हनुमान जी को याद करने से नहीं चूकते। उधर ये अखिलेश ही हैं जिन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा सबसे पहले उठाया है। वैसे अखिलेश ने अब तक राम मंदिर दर्शन से दूरी बरती है, लेकिन वो प्रभु राम के रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं।
7: हम सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं और हमारा धर्म का जो रास्ता है वो सत्य का रास्ता है, दूसरे को सम्मान देने का रास्ता है, दूसरे को साथ लेके चलने का रास्ता है। पीडीए इसीलिए प्रेम दया अपनापन भी है पीडीए में। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जी जैसे बताएंगे उस रास्ते चलेंगे हम लोग, उसमें क्या है।
4: अखिलेश यादव के दाव को बीजेपी बखूबी समझ रही है, इसलिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मण समाज पर अखिलेश के प्रेम को दिखावा कहा है।
8: समाजवादी पार्टी, उनके डीएनए में केवल मुस्लिम तुष्टिकरण है, केवल दिखाने के दांत और हैं और खाने का और है, इनको कोई भरोसा नहीं करे। केवल ये मौलाना लोगों की पार्टी है, आम जनता इसका कोई लेना देना नहीं रहे। जी है, कोई मतलब नहीं केवल दिखाने के दांत।
4: अखिलेश यादव के पीडीए कार्ड की काट के तौर पर योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व कार्ड भी बेहद मजबूत है।
9: गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है, गौ माता को कटने नहीं देंगे और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे।
4: अखिलेश के पीडीए बनाम योगी के हिंदुत्व के बीच दलित मुस्लिम गठजोड़ के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद की थर्ड फ्रंट की कोशिशें शुरू हुई हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी शामिल हो सकते हैं। उधर मायावती ने ओबीसी समाज की भाईचारा मीटिंग्स की शुरुआत की है। ये अखिलेश के पीडीए की काट हो सकता है। आज तक ब्यूरो

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: तो खबरदार में आज के लिए इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरें आज तक पर जारी रहेंगी, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि युद्ध में जीत किसकी हुई, उसकी जो ज्यादा बम गिराता है या उसकी जीत होती है जो अंत में अपना राजनीतिक मकसद हासिल कर लेता है। अमेरिका और ईरान के बीच आज जो कुछ भी हुआ उसने युद्ध और कूटनीति की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख दिया है। आज जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक वर्चुअली समझौते पर हस्ताक्षर किए तो दुनिया की नजर सिर्फ दस्तावेज पर नहीं बल्कि पेजेश्कियान के पीछे लगी उस दीवार पर थी। वो दीवार जो चीख चीख कर कह रही थी कि अमेरिका ने भले ही आयतल्ला खमेनी को मार दिया हो लेकिन वो इस्लामी क्रांति की उस विचारधारा को नहीं डिगा पाया जो 1979 से अमेरिका को चुनौती दे रही है। तो आखिर क्या था उस दीवार पर, हम आपको दिखाएंगे। इतिहास की विडंबना देखिए, आज से ठीक 6 साल पहले खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि ईरान ने कभी कोई युद्ध जीता नहीं और कभी कोई बातचीत हारी नहीं। आज इतिहास ने ट्रंप के उसी वाक्य को सच साबित कर दिया। सैन्य मोर्चे पर तबाह होने के बाद भी ईरान बातचीत की टेबल पर महाविजेता बनकर उभरा है। इस डील के तहत ईरान को $300 बिलियन यानी करीब 28,29,000 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा जिसे अमेरिका नहीं बल्कि खाड़ी के मुस्लिम देश चुकाएंगे। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई कोई शांति समझौता है या फिर से खुद को सुपर पार कहने वाले अमेरिका की नैतिक रूप से हार का दस्तावेज है। और इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश की सियासत का बदलता हुआ समीकरण दिखाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा देकर बंपर सीटें जीतने वाले अखिलेश यादव को क्या अब लग रहा है कि यह नारा अधूरा है और उन्हें लग रहा है कि बिना ब्राह्मणों को साधे 2027 को साध पाना मुमकिन नहीं है। आज आपको बताएंगे कि अखिलेश के पीडीए में पी फॉर पिछड़ा है या पी फॉर पंडित। और आखिर में आपको बताएंगे कि आपके बच्चे को लगी सोशल मीडिया की लत के लिए आपकी परवरिश जिम्मेदार है या सोशल मीडिया कंपनीज का खतरनाक एल्गोरिदम। इटली में एक मां ने अपनी 12 साल की बेटी की खुदकुशी के बाद मेटा और टिकटॉक जैसी दिग्गज कंपनीज पर केस ठोक दिया है। आज ये समझना काफी जरूरी है कि सोशल मीडिया के इस डिजिटल ड्रग्स के मामले में कसूरवार सिर्फ बच्चों और माता पिता को क्यों माना जाए, सोशल मीडिया के कंटेंट उसके एल्गोरिदम को क्यों नहीं। लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इस तस्वीर से करना चाहते हैं क्योंकि यह तस्वीर ईरान युद्ध में हार और जीत का नतीजा बता रही है। आज जब राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने वर्चुअली एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए तो दुनिया की नजर सिर्फ इस दस्तावेज पर नहीं थी बल्कि उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये तस्वीर थी जो कैमरे के फ्रेम में एक अलग ही कहानी को बयां कर रही थी। इसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के पीछे दीवार पर लगी ये तस्वीरें देखिए। अमेरिका बार बार ये दम भर रहा था ना कि वो ईरान पर रिजीम चेंज के लिए अटैक कर रहा है लेकिन क्या वो हो पाया। तो देखिए इस तस्वीर को, इसमें इस्लामिक क्रांति के संस्थापक रोहल्ला खमेनी, पूर्व सुप्रीम लीडर अली आयतल्ला खमेनी और वर्तमान सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी नजर आ रहे थे और यह कोई संयोग नहीं था बल्कि एक सोचा समझा संदेश था। अमेरिका ने इस युद्ध में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि आयतल्ला खमेनी की मौत को बताया। वॉशिंगटन डीसी के लिए यह डीकैपिटेशन स्ट्राइक थी यानी नेतृत्व को खत्म करके प्रतिरोध की रीढ़ तोड़ देना, लेकिन ईरान ने उसी क्षण कैमरे के जरिए एक अलग कहानी सुनाई। ईरान इस तस्वीर के जरिए कह रहा था कि आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया लेकिन उस विचार को नहीं मार सके जिसने 1979 की इस्लामी क्रांति को जन्म दिया था। इसमें रोहल्ला खमेनी की तस्वीर इस्लामिक क्रांति का प्रतीक थी, आयतल्ला खमेनी की तस्वीर प्रतिरोध की निरंतरता का प्रतीक थी और मुश्तबा खमेनी की तस्वीर यह बता रही थी कि सत्ता और विचारधारा दोनों का उत्तराधिकारी अब भी जारी है, जिंदा है और रिजीम चेंज का सपना धूमिल हो गया। युद्धों में हमेशा यह सवाल कहा जाता है कि जीत किसकी हुई, क्या कोई जीतता है कोई हारता है, उसकी जिसने ज्यादा बम गिराए उसकी जीत हुई या उसकी जीत हुई जिसने अपना राजनीतिक उद्देश्य हासिल किया। अमेरिका ने सैन्य स्तर पर ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया, उसके परमाणु कार्यक्रम, सैन्य ढांचे, नेतृत्व को निशाना बनाया। लेकिन अंततः उसे उसी ईरानी राज्य के साथ समझौते की मेज पर बैठना पड़ा जिसे वह झुकाना चाहता था। और यही कारण है कि ईरान के लिए यह दीवार सिर्फ तस्वीरों की दीवार नहीं थी, बल्कि यह एक घोषणा थी। ऐसी घोषणा जिसमें ईरान यह बता रहा था कि इस युद्ध को उसने जीत लिया है और नैतिक रूप से खुद को सुपर पार कहने वाले अमेरिका को झुका दिया है। देखिए,
1: Yes.
2: Bravo.
1: How about we'll keep the pen with us? Yeah. We'll keep the other pen. We can
3: keep the other side.
1: Good job.
3: Great
1: job.
3: Thank
1: you. Thank you, everybody.
3: Great job.
2: Bravo.
0: हमारे देश में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी इंसान के मुंह से निकली बात भविष्य की आहट बन जाती है, लेकिन ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हो जाएगा इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वैसे एक मशहूर इंटरव्यू है डोनाल्ड ट्रंप का, जब वो राजनीति में नहीं आए थे तब का इंटरव्यू बता रही हूं। इस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अगर वो एक बिल्डर नहीं होते तो क्या होते। जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अमेरिका का राष्ट्रपति। वो दिन भी आया। उनके इस इंटरव्यू को विश्व में कई लोगों ने देखा, समझा, बार बार वो वायरल भी होता है। जो उन्होंने एक वक्त पर कहा था वो सच हुआ। लेकिन अब देखिए, आज से 6 साल पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 जनवरी 2020 को एक्स पर लिखा था कि ईरान ने कभी कोई युद्ध जीता नहीं और कभी कोई बातचीत हारी नहीं। आज 6 साल बाद ऐसा लगता है कि इतिहास ने जैसे उसी वाक्य को फिर से जीवित कर दिया। आज जिस आपसी समझ के दस्तावेज पर अमेरिका और ईरान ने हस्ताक्षर किए, उसकी 14 शर्तों को पढ़कर ऐसा लगता है कि ईरान बातचीत की टेबल पर इस युद्ध को आसानी से जीत गया। ईरान ने ना सिर्फ अपनी ज्यादातर मांगे मनवा ली हैं, बल्कि समझौते में यह शर्त भी शामिल रही कि ईरान के लिए $300 बिलियन का एक फंड बनाया जाएगा। और यह बात जब बाहर आई तो इस पर खूब सवाल उठे। एक पत्रकार ने तो फ्रांस में राष्ट्रपति ट्रंप से यह सवाल पूछ लिया कि वो कौन सा ज्ञानी पुरुष है जिसने साल 2020 में ही कह दिया था कि ईरान युद्ध हारता है और बातचीत में वो जीत जाता है। और जानते हैं, ये पूछने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को याद ही नहीं था कि ये बात 6 साल पहले उन्होंने खुद ही लिखी थी। तो उन्होंने पूछा जर्नलिस्ट से कि कौन था, तो उन्होंने बोला, महाशय आप ही थे। सुनिए।
4: A wise man once said in January of 2020, Iran never won a war, but never lost a negotiation. That wise man.
1: Who said that?
4: Donald Trump.
1: Oh, that's what I thought you were going
4: to
1: say.
4: So how do you go back to the United States and convince a skeptical American public that this deal is a win?
1: Well, look, here they lost militarily, okay? It's very tough because I know that no matter what, if I would go, by the way, if I'd go another 3 or 4 weeks, those same people that are critical would say, he went too long, he should have done, you know, no matter what. If they raised the white flag of surrender, and if they said, praise be to Allah, Donald Trump is the greatest president ever, we totally concede, we totally give up, this war is over, we have failed, the New York Times and CNN and a couple of others are not all that dishonest. They'd say, Iran had a great victory, okay?
0: अब आप ये देखिए कि इस डील से ईरान को क्या मिला, अमेरिका को क्या मिला और दुनिया को क्या मिला। डोनाल्ड ट्रंप को तो आपने देखा ही, उस सवाल में वो फंस गए। तो ईरान, उसे अब अपना कच्चा तेल बेचने की खुली छूट होगी। अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को निलंबित किया जाएगा, यानी ये युद्ध हुआ और जो बैन पहले से भी लगे हुए थे वो बैन अब अमेरिका हटा रहा है। फायदा किसको? एडवांटेज ईरान। इससे ईरान को हर साल अरबों डॉलर की कमाई होगी। और सबसे बड़ी बात, ईरान को अपना कच्चा तेल चोरी छिपे या सिर्फ चाइना को नहीं बेचना होगा, वो अब किसी को भी बेच सकता है। दूसरा, आर्थिक प्रतिबंध हटने से ईरान में दुनिया की बड़ी कंपनियां निवेश कर पाएंगी और उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल होने का मौका मिलेगा। एडवांटेज ईरान। तीसरा, विदेशों में फंसी ईरान की संपत्तियों को रिलीज किया जाएगा। एडवांटेज ईरान। पूरी दुनिया में ईरान के पास ऐसी 100 बिलियन डॉलर की संपत्ति है जिसे उसने कच्चा तेल बेचकर कमाया था, लेकिन अमेरिका प्रतिबंधों के कारण ये सारी संपत्ति अभी तक फ्रीज कर चुका था, फ्रोजन एसेट्स में उसे तब्दील कर दिया था। फ्रोजन एसेट्स का मतलब होता है जो पैसा, जो संपत्ति जब्त कर ली जाए। लेकिन अब इस डील के बाद ईरान को उसका ये फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। चौथा, ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 300 बिलियन डॉलर का फंड बनाया जाएगा जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। और पांचवा, अमेरिका ईरान को इस बात के लिए बाध्य नहीं करेगा कि वो हिजबुल्ला और हूती जैसे अपने प्रॉक्सी संगठनों की मदद ना करे। कम से कम अगले 60 दिनों तक ईरान पर ऐसा कोई दबाव नहीं होगा और ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। इसराइल अभी लेबनान में हिजबुल्ला से ही लड़ रहा है जो उसका प्रॉक्सी संगठन है। इसके अलावा इस डील के तहत अमेरिका ने अपने नेवल ब्लॉकेड को हॉर्मूज के पास से हटाने का फैसला किया है जिसके लिए 30 दिन का वक्त निर्धारित हुआ। एडवांटेज ईरान। अब ये देखिए कि अमेरिका को क्या मिला। पहला, हॉर्मूज खुलने से वैश्विक तेल बाजार स्थिर होगा और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव कम होने से अमेरिका में लोगों की नाराजगी कम होगी। हालांकि एक बार फिर से याद दिला दें आपको भी और अमेरिका को भी कि ये हॉर्मूज पहले खुला हुआ था, युद्ध के पहले खुला हुआ था, युद्ध की वजह से बंद हुआ और अब खुलने पर बताया जा रहा है कि अमेरिका के लिए जीत है। दूसरा, अगले 60 दिनों में ईरान अमेरिका को यह गारंटी देगा कि वो भविष्य में कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। एडवांटेज अमेरिका। तीसरा, ईरान को अपने यूरेनियम को डाइल्यूट करना होगा जिससे वो इस यूरेनियम से परमाणु हथियार ना बना पाए। चौथा, राष्ट्रपति ट्रंप इस डील को ये कहते हुए अपनी राजनीतिक जीत बता सकते हैं कि उन्होंने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका, शांति स्थापित की। और पांचवा, इससे अमेरिका को ऐसा नया परमाणु समझौता बनाने का मौका मिलेगा जिसे वो 2015 के समझौते से बेहतर बना सकता है और ज्यादा सख्त बना सकता है। ये 2015 का वही समझौता है जो तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ किया था और जिसे 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप ने रद्द कर दिया था। अब ये देखिए कि दुनिया को क्या मिला। तो पहला, हॉर्मूज को उसी स्वरूप में खोला जाएगा जिस स्वरूप में ये युद्ध से पहले था। दूसरा, इससे दुनिया के लिए तेल और गैस का संकट कम होगा, खासकर भारत का जो 35-40% तेल हॉर्मूज से आता था उसमें अब कोई रुकावट नहीं आएगी। हालांकि अभी इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये सप्लाई चेन्स वापस से नहीं शुरू होते हैं। तीसरा, हॉर्मूज में अगर 20% कच्चे तेल की आपूर्ति बहाल होती है तो इससे वैश्विक महंगाई का दबाव कम हो सकता है और इसके आपके लिए भी ये जरूरी है। भारत में थोक महंगाई दर मई महीने में 9.68% रही जो युद्ध से पहले 2.1% थी। और चौथा, इससे हॉर्मूज में नाविकों और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और जहाजों पर अब हमले नहीं किए जाएंगे। अब ये देखिए कि इस डील को लेकर खतरे क्या क्या है। सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि इसमें लेबनान को भी शामिल किया गया है जिसके कारण आशंका ये है कि अगर लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच लड़ाई जारी रहती है तो पूरा समझौता खतरे में पड़ सकता है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू फिलहाल मानने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। दूसरा खतरा यह है कि इसराइल इस समझौते का हिस्सा नहीं है। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था ना, ये युद्ध लड़ रहे थे। अब इसकी वजह से इसराइल के कई नेता आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी जंग अभी खत्म नहीं हुई है, तो फिर इस एमओयू पर खतरा है। तीसरा खतरा यह है कि इस डील को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच गहरे मतभेद दिख रहे हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की ही रिपोर्ट है जिसके मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच तनाव बढ़ा है जिससे इस एमओयू को खतरा हो सकता है। और चौथा खतरा यह है कि अभी फाइनल डील पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं जो कानूनी रूप से अगर आप देखें तो बाध्यकारी होता ही नहीं है, लीगल बाइंडिंग नहीं है। पूरी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अगले 60 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच व्यापक परमाणु समझौता हो पाता है या नहीं हो पाता है। अब इस डील को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान को 300 बिलियन डॉलर मिलेंगे कैसे और यह पैसा देगा कौन। 300 बिलियन डॉलर का मतलब है 28,29,000 करोड़ रुपए, छोटी मोटी रकम नहीं है। मौजूदा वक्त में ईरान की कुल अर्थव्यवस्था 300.29 बिलियन डॉलर की है और कहा जा रहा है कि उतनी ही आपको रकम मिलेगी, यानी जिस ईरान की अर्थव्यवस्था ही 28,32,000 करोड़ रुपए की है उस ईरान को इतना ही पैसा सिर्फ इस डील से मिल सकता है। अगर हम आबादी के हिसाब से भी देखें तो $300 बिलियन का मतलब ये हुआ कि 9 करोड़ की आबादी वाले ईरान में हर व्यक्ति पर 3,14,000 रुपए आने वाले हैं। ये भी तब होगा जब ईरान की प्रति व्यक्ति सालाना आय ही 3,21,000 रुपए। हमें तो समझ, अगर आप देखिए तो ये डील कहा जा रहा है, लेकिन आखिर ये आगे कैसे बढ़ेगा? हकीकत में तो ये ईरान की जीत का एक दस्तावेज लग रहा है, ऐसा दस्तावेज जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद हस्ताक्षर किए हैं। ये सब करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ये पैसा अमेरिका की जेब से नहीं आ रहा है। वो सही भी कह रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक कैच है, और इसीलिए मसूद पेजेशकियान, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो MOU की कॉपी डाली है वो मैं अपने साथ लेकर आई हूं, जिसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है 6 नंबर पर। हम आपको उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान जरा सुन लीजिए।
3: It's been reported that it includes a $300 billion reconstruction fund funded by Gulf allies. That's false?
5: It's false. That people, you can invest if you want. I mean, what am I going to do, say nobody's ever allowed to invest? No, we're not investing. We're not putting up 10 cents. And people can decide to do that, but that's up to them. I mean, do you want me to say nobody's ever allowed to invest in a country? I'll say it with Egypt. Nobody's allowed to invest in Egypt. Am I supposed to say that?
3: I'm asking whether...
5: We are not investing in it, and we do not have a fund. But we are not investing. That's a false story that got picked up incorrectly from a statement that was pretty well made, I think. Maybe a little bit, could have been a little more accurate.
0: तो आखिर ये अलग-अलग बातें क्यों? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इस खबर को गलत बताया गया है, स्टोरी गलत बताई जा रही है कि $300 बिलियन ईरान को मिलेगा। तो इसीलिए मैं ये MOU लेकर आई हूं, जो फिलहाल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की गई है। इसके पॉइंट नंबर 6 पर आते हैं, और इस समझौते की 6 शर्त में शब्दशः ये लिखा है कि अमेरिका अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ, ये जो नीचे वाला 6 लाइन है उसको आप पढ़िए, इसमें साफ साफ लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने रीजनल पार्टनर्स के साथ मिलकर ईरान के पुनः निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम $300 बिलियन की एक ठोस और आपसी सहमति वाली योजना तैयार करेगा। साफ साफ लिखा है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंडरटेक्स विथ रीजनल पार्टनर्स, यानी जो खाड़ी देश में उसके सारे सहयोगी हैं उनके साथ, टू डेवलप अ डेफिनेटिव म्यूचुअली अग्रीड प्लान विथ एटलीस्ट $300 बिलियन फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो फिर अमेरिका यह भी कह रहा है कि इस योजना के लिए एक भी पैसा उसके खजाने से नहीं जाएगा, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। इसकी जगह मिडिल ईस्ट के खाड़ी देश और उनकी कंपनियां ईरान के लिए ये रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाएंगी, और फिर इससे ईरान को युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी और बुनियादी ढांचों का पुनर्निर्माण वहां पर किया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो अमेरिका ईरान के नाम से एक ऐसा खाता खोल रहा है जिसमें वो खुद डायरेक्ट पैसे नहीं डालेगा, वो खाड़ी देशों और खाड़ी देशों की कंपनियों को कहेगा कि वो इस खाते में निवेश के तौर पर एक रकम डाले, ईरान की मदद करने के लिए आगे आए। क्योंकि खुद मसूद पेजेशकियान, ईरान के राष्ट्रपति, ने कहा है, जो पॉइंट डाला है उसमें रीजनल पार्टीज की बात है। तो रीजनल पार्टीज कौन है? खाड़ी देश। खाड़ी देश में ये तमाम सहयोगी, जिसमें सऊदी अरब है, UAE है, ये तमाम खाड़ी देश। ऐसा करके ईरान की मदद भी हो जाएगी और अमेरिका के टैक्स पेयर्स का पैसा भी ईरान को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाएगा। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत यही है कि अल्टीमेटली ईरान यहां जीत गया है, पैसा उसके पास जाएगा। इस युद्ध में ईरान ने सबसे ज्यादा चोट अपने पड़ोसी देशों को ही पहुंचाई, ऐसी चोट कि इस युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट के देशों को $194 बिलियन का नुकसान हुआ, $194 बिलियन उनकी GDP के 3.7% से 6% के बराबर है। इन्हीं मुस्लिम देशों में इस युद्ध से 36 लाख नौकरियां खत्म हुई है, 40 लाख लोग गरीबी रेखा के पास पहुंच गए, और ऊर्जा संपत्तियों को $58 बिलियन का नुकसान हुआ। और इसके बाद भी ये सारे मुस्लिम देश ईरान के हमलों से इतनी बुरी तरह प्रभावित हुए कि ऐसा लग रहा था कि ईरान से युद्ध का मुआवजा मांगेंगे, लेकिन यहां तो कहानी बिल्कुल उल्टी चल रही है। और हो ये रहा है कि यहां मुस्लिम देश ईरान में सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, बुनियादी ढांचे बनाने के लिए पैसा दे सकते हैं, या इनके सहयोग से ईरान में निवेश की एक योजना आ सकती है। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो अब तक अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत पीछे रही। इजिप्ट के साथ पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा आबादी होने के बावजूद ईरान 500 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था नहीं बन पाया, जबकि इसी दौरान सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था 1.39 ट्रिलियन डॉलर की हो गई, इसराइल की 719 बिलियन डॉलर की हो गई और यूएई की अर्थव्यवस्था 621 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई, लेकिन ईरान इन सबसे पीछे रहा। इतना पीछे कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में ईरान के लोग यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन के लोगों से बहुत पीछे रहे, और यह भी तब हुआ जब ईरान के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। सऊदी अरब के साथ कच्चे तेल और नेचुरल गैस के सबसे बड़े भंडार ईरान के पास है। सऊदी अरब के पास 267 बिलियन बैरल कच्चा तेल है और ईरान के पास 209 बिलियन बैरल कच्चा तेल। इराक, यूएई, कतर, ये तो ईरान के आसपास भी नहीं है। आप देखिए, अगर इराक में 145 तो यूएई में 113 और कुवैत में 102 बिलियन बैरल। इससे भी बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट में सबसे पहले तेल के कुएं यूएई और सऊदी अरब में नहीं मिले थे। सबसे पहले साल 1908 में तेल ईरान की धरती पर मिला था और तब कहा गया था कि ईरान दुनिया का अमीर देश बनने वाला है, लेकिन इसके बाद ईरान में इस्लामिक सरकार आई, अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण ईरान पीछे रह गया। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि जब अमेरिका के प्रतिबंध पूरी तरह हट जाएंगे, ईरान को 300 बिलियन डॉलर का डेवलपमेंट फंड मिलेगा, तो मिडिल ईस्ट का शक्ति संतुलन बदल जाएगा। सोचिए, इतने सालों से मिडिल ईस्ट में लड़ाई भी तो यही थी। ईरान खुद को मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सुपर पावर बनाना चाहता था, जबकि सऊदी अरब अमेरिका पर दबाव बनाता था कि वो ऐसा कभी ना होने दे। इन्हीं कारणों से सऊदी अरब मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, लेकिन सोचिए, कल तो जब ईरान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, वहां निवेश आएगा, दुनिया ईरान का कच्चा तेल खरीदेगी, तो मिडिल ईस्ट की पूरी जो कहानी है वो बदल जाएगी। और अब तक ईरान अपनी मिसाइलों से इस क्षेत्र को डोमिनेट करता था, लेकिन आगे वो अपनी आर्थिक ताकत से भी ऐसा कर पाएगा। ये सब इसलिए होगा क्योंकि 28 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी गट फीलिंग पर यह युद्ध शुरू किया था, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ आज ये पूरी दुनिया देख रही है। यहां यह बात सही है कि पहले भी युद्धों में कई देशों को मुआवजा मिला है, जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने उन यहूदियों को 86.8 बिलियन डॉलर का मुआवजा दिया था जो इसराइल या दूसरे देशों में चले गए थे। 1991 के गल्फ वॉर में अमेरिका को जो 61 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था उसकी भरपाई खाड़ी देशों ने की थी। इनमें कुवैत ने 16 बिलियन डॉलर, सऊदी अरब ने 16.8 बिलियन डॉलर, यूएई ने 4 बिलियन डॉलर अमेरिका को दिए थे। आप अफगानिस्तान को याद कीजिए, जहां आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की सेना ने 20 सालों तक युद्ध लड़ा, लेकिन 20 सालों के बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान की सत्ता इसी तालिबान को सौंपकर वापस लौटा, तो इससे पहले अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए 145 बिलियन डॉलर की भारी भरकम रकम उसे चुकाई गई। और आज भी जब आप अफगानिस्तान की करेंसी को देखते हैं तो ये डॉलर के मुकाबले हमारे रुपए से भी मजबूत है। आज अमेरिका का एक डॉलर 63 अफगानी के बराबर है, जबकि हमारा रुपया 94.40 रुपए के बराबर। ऐसा इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की खूब मदद आती है, और क्योंकि यह मदद डॉलर में भेजी जाती है इसलिए डॉलर की वहां कमी नहीं रहती। ऊपर से आयात पर कम खर्च करने के कारण अफगानिस्तान के डॉलर बचे रहते हैं, उसकी करेंसी एशियाई देशों में शानदार प्रदर्शन करती है। जितने भी एशियाई करेंसी है उनमें शानदार प्रदर्शन अफगान का होता है, अफगानी करेंसी। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि अमेरिका दुनिया के सामने अपनी जो छवि बनाकर रखता है वो छवि पूरी तरह सही नहीं है, और एक कड़वा सच तो यह है कि अमेरिका ने आज तक कोई बड़ा युद्ध जीता ही नहीं। 1955 से 75 के बीच अमेरिका ने 20 सालों तक वियतनाम युद्ध लड़ा, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका वियतकांग और उत्तरी वियतनाम को हरा नहीं पाया, अंततः अमेरिकी सेना को वापस लौटना पड़ा। अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने 2001 से 2021 के बीच 20 साल तक युद्ध लड़ा। इस युद्ध का लक्ष्य था अलकायदा का सफाया, तालिबान को सत्ता से हटाना। शुरुआत में सफलता मिली, ओसामा बिन लादेन मारा भी गया, वो भी पाकिस्तान के एबटाबाद में, लेकिन 20 साल बाद तालिबान फिर सत्ता में लौट आया और अमेरिका ने बड़े अच्छे से उनको सत्ता सौंप दी और अफगानिस्तान की जनता को पीठ दिखाकर भाग गए। 2003 से 2011 के बीच इराक युद्ध लड़ा अमेरिका ने। इसका लक्ष्य था सद्दाम हुसैन को हटाना, लोकतांत्रिक इराक बनाना। यहां भी सद्दाम हुसैन को तो हटा दिया, लेकिन इराक गृह युद्ध, सांप्रदायिक हिंसा और बाद में आइसिस के उदय में फंस गया और यहां भी अमेरिका का युद्ध अनजान तक नहीं पहुंच पाया। सीरिया में भी अमेरिका ने कई विद्रोही गुटों अभियानों का समर्थन किया, लेकिन सीरिया के हालात आज तक स्थिर नहीं हुए। यमन में भी अमेरिका ने हूती के खिलाफ जंग छेड़ी। 1993 के सोमालिया युद्ध, 2011 का लिबिया युद्ध, अमेरिका को अपने लक्ष्य हासिल नहीं हो पाए। और सोचिए, इतने सारे युद्ध लड़कर भी अमेरिका विश्व में खुद को शांति का चैंपियन बताता रहा, दुनिया भी इसे स्वीकार करती रही। आप याद कीजिए, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने ईरान युद्ध के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना की थी और इस युद्ध में उनका साथ देने से इनकार कर दिया, तब राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें कायर कहा था। यही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति मैक्रॉन पर निजी हमले किए थे। ये कहा था कि उन्हें उनकी पत्नी ने जो मुक्का मारा है उससे वो अब भी उबरे नहीं। सोचिए, एक राष्ट्रपति एक दूसरे देश के राष्ट्रपति के लिए कह रहा था, राष्ट्रपति मैक्रॉन पर हमला करने के लिए। सोचिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति मैक्रॉन पर हमला करने के लिए इस हद तक वो चले गए कि, लेकिन आज जब ईरान डील पर राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर किए तो यही राष्ट्रपति मैक्रॉन वहां खूब तालियां बजा रहे थे, ये देखिए। जबकि उन्हें तो ये कहना चाहिए था कि ये युद्ध लड़कर राष्ट्रपति ट्रंप ने गलती की, देखिए।

0: How about we'll keep the pen with it?
1: Yeah.
0: We'll keep the other pen.
2: Which we can cross.
3: Good job.
0: Thank you, everybody.
3: Great job. Bravo.
4: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो कोई विंस्टन चर्चिल नहीं है और वो एक कमजोर नेता है। लेकिन G7 देशों की बैठक में कीर स्टार्मर भी खूब राष्ट्रपति ट्रंप के आगे पीछे नजर आ रहे थे, और जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा कि आई एम द बॉस, तो सबसे ज्यादा हंसी कीर स्टार्मर को ही आई थी। देखिए,
3: we have photographs there.
4: कल हमने ये विजुअल्स चलाए थे, अगर हम निकाल के अपने दर्शकों को दिखा सकें, क्योंकि जब कल ये तो खैर एक फोटो ऑप था जिसमें सभी लोग की जगह तय होती है, वो वहां पर जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में दिख रहा है कि जब राउंड टेबल पर सभी नेता, सभी जो कंट्री हेड्स हैं, वो बैठे हुए हैं, तब डोनाल्ड ट्रंप एंट्री मारते हैं। वो कहते हैं आई एम द बॉस, और उस वक्त कीर स्टार्मर काफी हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। चलिए कोशिश करते हैं वो निकाल के आपको दिखा दें। कल लगभग हर बुलेटिन में वो चला है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को भी राष्ट्रपति ट्रंप ने गवर्नर कार्नी कहा था, और ये सीधा अपमान था क्योंकि ट्रंप बार बार मजाक में कह रहे थे कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की जगह उन्हें गवर्नर कहकर बुलाना उनकी संप्रभुता पर कटाक्ष था। लेकिन यही मार्क कार्नी G7 देशों की बैठक में झुककर राष्ट्रपति ट्रंप से बात करते रहे, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप उनके लिए अपनी कुर्सी से एक बार खड़े तक नहीं हुए। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकायची की को भी खूब निशाना बनाया। लेकिन ये सारे नेता जब G7 देशों की बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप के सामने आए तो ये हंस रहे थे और खूब उनके लिए तालियां भी बजा रहे थे। यहाँ ये भी देखिए कि 28 फरवरी को जब ईरान युद्ध शुरू हुआ था, तब उससे पहले ईरान का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर लगातार बात कर रहा था, और अगर उस वक्त ये बातचीत जारी रहती, अमेरिका ईरान पर हमले नहीं करता, तो ये डील तब हो भी जाती, दुनिया को ऊर्जा संकट का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले युद्ध लड़ा, फिर आज डील की, और ये बता दिया कि वो तो शांति के सबसे बड़े समर्थक हैं। आज हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर डील ही करनी थी तो फिर ये युद्ध लड़ा क्यों गया? ना रिजीम चेंज हुआ, इतने बम आपने ईरान पर बरसाए, दुनिया को महंगाई के संकट में डाल दिया, क्या हासिल हुआ? मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी गट फीलिंग पर जो युद्ध लड़ा उसकी दुनिया ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। तो युद्ध से कितना नुकसान किसे हुआ जब आप देखेंगे तो दुनिया का मिडिल ईस्ट में 40 लाख लोग देखिए, उनके लिए गरीबी की स्थिति पैदा हो गई। दुनिया का 1.3 ट्रिलियन यानी 112 लाख करोड़ रुपया जो आप देख रहे हैं, इसको येलो कर लेते हैं, ये देखिए 112 लाख करोड़ रुपया जो है वो बर्बाद हुआ। अमेरिका का लगभग, हम आपको रुपए में ही बता रहे हैं क्योंकि आप देखिए तो कुल मिलाकर 113 बिलियन की बात है, लेकिन 10,64,000 करोड़ रुपया, ये आपके सामने है फिगर। तो ये उन्होंने लूज किया। वैसे ही मिडिल ईस्ट को जो नुकसान हुआ वो भी हम आपको बता रहे हैं, लगभग 1,18,00,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इसी के साथ देखिए ना कि जो शेयर बाजार में लोगों को नुकसान हुआ है, 1,070,00,000 करोड़ की गिरावट आई। तो एक वक्त पर, हालांकि बाद में रिकवरी भी होती है, लेकिन एक वक्त पर तो इतना पैसा लोगों ने बाजार में खोया ना अपना। और इसी के साथ दुनिया में 3.2 करोड़ लोगों पर भुखमरी का संकट, ये कोई छोटा नंबर है। और इसीलिए आज हम पूछ रहे हैं कि अमेरिका जो कि आज विश्व का मसीहा बना हुआ है, वही अमेरिका जो जब चाहे जहां पर जाए जो फैसले लेता है, देशों पर टैरिफ थोपता है, युद्ध थोपता है, आज उसने कैसा नुकसान पूरी दुनिया का किया है। और शायद यही वजह है कि बड़े बड़े नेता जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिन सबके खिलाफ पर्सनल अटैक किया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भी कुछ बोलने को आज तैयार नहीं है। हमने आपको इंग्लैंड के कीर स्टार्मर की बात दिखाई थी, आइए जल्दी से दिखा देते हैं आपको। जब आई एम द बॉस बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने एंटी मारी थी, तो सबसे ज्यादा वही मुस्कुराते हुए दिख रहे थे।
1: Well, hello, I'm the boss. How are you?
2: Good, thank you.
1: Okay, thank you.
4: सोचिए, इस युद्ध के कारण दुनिया ने जो झेला, आपने जो झेला, तेल गैस के लिए जो लाइनें लगी, बिजली का संकट पैदा हुआ, कई जगहों पर गरीबी बढ़ी, उसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप की विवेचना होगी या उनके लिए राष्ट्रपति मैक्रों की तरह सिर्फ तालियां बजाई जाएंगी। अब उस सवाल पर आते हैं जिसका सरोकार आपसे है, और वो सवाल यह है कि क्या ईरान युद्ध समाप्त हुआ और होने के बाद भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी। युद्ध के कारण तेल कंपनियों ने यह कहते हुए 4 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई कि उन्हें घाटा हो रहा है। इस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम प्रति लीटर 7.5 रुपए तक बढ़ाए गए और अभी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 102 रुपए का मिल रहा है। ये दाम इसलिए बढ़े क्योंकि इंडियन क्रूड बास्केट में 1 बैरल कच्चा तेल महंगा हो गया था। इंडियन क्रूड बास्केट का मतलब यह हुआ कि हम दुनिया के अलग अलग देशों से जो कच्चा तेल खरीदते हैं उसे मिलाकर 1 बैरल कच्चा तेल कितने का पड़ता है, एवरेज कॉस्ट क्या निकला। अब अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो युद्ध से पहले फरवरी महीने में इंडियन क्रूड बास्केट 1 बैरल कच्चा तेल $69 का था, 69 जो आप देख रहे हैं शुरू में। युद्ध के बाद ये $113 प्रति बैरल तक हुआ। अप्रैल महीने में ये $114 प्रति बैरल दर्ज हुआ। नोट करने वाली बात यह है कि यह युद्ध 7 अप्रैल को रुक गया था, लेकिन तब तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। इनमें वृद्धि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद की गई, यानी जब इंडियन क्रूड बास्केट में 1 बैरल कच्चा तेल $114 से तब कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन जब ये $106 प्रति बैरल हुआ तब पेट्रोल डीजल महंगा होना शुरू हुआ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जून महीने में 1 बैरल कच्चे तेल की औसतन कीमत $91 पर अब आ गई है, लेकिन 17 जून को इंडिया क्रूड बास्केट में 1 बैरल कच्चा तेल $78 पर पहुंच गया है। 17 जून का डेटा हम आपको नीचे दिखा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब यह लगभग युद्ध से पहले के स्तर पर आ गया है। और इससे सवाल यही है कि जब कच्चा तेल सस्ता हो गया है तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कब कम होंगी और जनता को राहत कब मिलेगी। यहां एक और बड़ा सवाल है उस पेट्रोल का जिसमें एथेनॉल मिलाया जा रहा है। इथेनॉल एक तरह का शराब जैसा एक केमिकल होता है जो चावल, मक्के, गन्ने से बनाया जाता है, और अभी हमारे देश में इसे लेकर कई फैसले हो रहे हैं। जैसे अभी जो पेट्रोल आपको मिल रहा है उसमें 20% इथेनॉल की मिलावट पहले ही हो चुकी है, जबकि 2014 से पहले यही आंकड़ा सिर्फ 1.5% हुआ करता था, 1.5%। 5 जून को सरकार ने E85 पेट्रोल भी बेचना शुरू किया जिसमें 85% इथेनॉल है, सिर्फ 15% पेट्रोल। दिल्ली में कुल 48 पेट्रोल पंप पर अभी ये E85 फ्यूल मिल रहा है जो E20 वाले पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता है। यही नहीं, इसी महीने की 13 तारीख को केंद्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब बाजार में E100 फ्यूल भी आएगा, यानी ऐसा तेल जिसमें 100% इथेनॉल होगा और इसमें पेट्रोल की एक भी बूंद नहीं होगी। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारत में जिस पेट्रोल में 20% एथेनॉल पहले से मिलाया जा रहा है, उसकी कीमतें बिल्कुल कम नहीं की गई हैं। दिल्ली में E20 पेट्रोल प्रति लीटर 102 रुपए का मिल रहा है, जबकि E85 फ्यूल 20 रुपए सस्ता है और ये 82 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ इसकी दूसरे देशों से भी तुलना करना जरूरी है। अमेरिका में एक लीटर E85 फ्यूल लगभग 70 रुपए का है, यानी भारत के E85 फ्यूल से 12 रुपए सस्ता। ब्राजील में E85 फ्यूल 75.79 रुपए का है और वहां भी ये भारत से लगभग 6 रुपए सस्ता है। हालांकि फ्रांस में एक लीटर E85 फ्यूल 94.23 रुपए का है और स्वीडन में यही 144.17 रुपए का है। यानी इन देशों में E85 फ्यूल भारत से महंगा है, लेकिन अमेरिका और ब्राजील में ये भारत से सस्ता है। यहां इस ग्राफिक्स को भी देखिए। हाल ही में मारुति सुजुकी ने एक नई वैगनार गाड़ी लॉन्च की जिसे E85 E100 फ्यूल डाला जा सकता है। अब इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस 7,24,000 रुपए है, जबकि पेट्रोल वेरिएंट में इसी गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 6,39,900। यानी E85 और E100 वाली वैगनार गाड़ी पेट्रोल वाली वैगनार से 75,000 रुपए महंगी है, जिससे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है वो महंगा होगा? अगर महंगा होगा तो क्या लोग प्रति लीटर 20 रुपए की बचत करने के लिए 75,000 देंगे? अब हम उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के बदलते विचारों का विश्लेषण करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में महामंत्र दिया था। अखिलेश यादव हर जनसभा में ये कहते रहे कि उनकी पार्टी पीडीए के लिए काम करेगी। अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले में पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक था। समाजवादी पार्टी खुले तौर पर इनके हित में काम करने का दम भरती थी। ये फॉर्मूला कम से कम लोकसभा चुनाव में उनके बहुत काम आया। यूपी में उन्होंने 37 सीटों पर जीत दर्ज की और यह उनकी पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन अब अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी ने इन चुनावों के लिए अपने फॉर्मूले में एड ऑन एड कर लिया है। अब पीडीए में बी की एंट्री कर दी गई है, बी यानी ब्राह्मण। अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए ब्राह्मण को साधने का मास्टर प्लान बनाया। अब उनका फॉर्मूला पीडीए प्लस बी हो गया है। ब्राह्मणों के साधने के लिए समाजवादी पार्टी अपने सबसे बड़े ब्राह्मण नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाने जा रही है और जयंती को भव्य अंदाज में मनाने की तैयारी है, ताकि इसके जरिए प्रदेश के ब्राह्मणों को साधा जा सके। लेकिन क्या इस वजह से योगी को छोड़कर ब्राह्मण चले जाएंगे अखिलेश के खेमे में? पार्टी के ब्राह्मण नेता कहीं और ना जाए, इसके लिए लखनऊ में एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें ब्राह्मण नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने पर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी अपने ब्राह्मण नेताओं के जरिए प्रदेश के ब्राह्मण समाज को साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि उसके फॉर्मूले में बी फैक्टर की एंट्री हुई क्यों है? तो सुनिए, दो वजह है और दो वजह हो सकती है। पहली है कि ब्राह्मण मतदाताओं को साध कर सत्ता पाने का एक लंबा इतिहास है, और दूसरी वजह यह है कि पीडीए के चक्कर में साइड लाइन किए गए ब्राह्मण नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ भी बनाए रखने का मौका मिलेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजगर ने दावा किया था कि समाजवादी पार्टी से ब्राह्मणों का मोह भंग हो रहा है और बलिया का एक बागी बगावत का नेतृत्व करने वाला है। अब देखिए, बलिया से समाजवादी पार्टी का के सांसद कौन? सनातन पांडे। और लखनऊ में ब्राह्मण नेताओं की जो बैठक हुई उसकी अगुवाई कौन कर रहा है? वही कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, सनातन पांडे की ही अगुवाई में जनेश्वर मिश्र जयंती का आयोजन हो रहा है। जनेश्वर मिश्र भी बलिया से ही थे। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक समाजवादी पार्टी को लगता है कि पीडीए पर बहुत ज्यादा जोर दिया तो ब्राह्मण समाज नाराज हो सकता है। उनका यह मानना है कि अभी एनडीए से ब्राह्मण नाराज हैं और वो उनकी तरफ आ सकते हैं, इसीलिए ताकत झोंकी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 18% सवर्ण है, 42% ओबीसी, 21% दलित और 19% मुस्लिम। सवर्णों में 7-10% तक ब्राह्मण है, प्रदेश की 100 से ज्यादा सीटों पर असर डालते हैं। एक रोचक तथ्य यह भी है कि साल 1993 से 2002 के बीच, यानी गठबंधन सरकारों के दौर में, औसतन 25 ब्राह्मण उम्मीदवार चुने जाते थे, लेकिन 2007 के बाद यानी पूर्ण बहुमत की सरकारों में औसतन ब्राह्मण, जानते हैं कितने विधायक चुने गए हैं? औसतन 52 ब्राह्मण विधायक चुने गए हैं। इसका ये मतलब ये निकाला जा रहा है कि पूर्ण बहुमत के लिए ब्राह्मण मतदाताओं को साधना जरूरी है और देश की आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश में 6 बार ब्राह्मण समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना। साल 1950 से 1989 तक यानी 23 वर्षों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर 90 के दशक से यूपी में गठबंधन राजनीति का बोलबाला शुरू हो गया, ये सिलसिला खत्म हो गया। इसके बाद यूपी पूर्ण बहुमत की सरकार साल 2007 में यूपी में बनी, जिसमें 206 सीटें जीतकर मायावती मुख्यमंत्री चुनी गई। बीएसपी की इस जीत का रास्ता ब्राह्मण मतदाताओं की गलियों से होकर गुजरा था। दरअसल मायावती ने साल 2007 में ब्राह्मण मतदाताओं को एकजुट करने की रणनीति पर काम किया। उस समय बड़ी चर्चा इसकी हुई कि मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग किया है। दलित नेता के तौर पर वो जानी जाती थी और पिछड़ों और अगड़े में ब्राह्मणों को साथ लिया। उन्होंने प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करवाए। इन सम्मेलनों की वजह से उत्तर प्रदेश में मायावती के प्रति ब्राह्मण वोटर्स का झुकाव बढ़ा। इस झुकाव की एक वजह यह भी थी कि उन्होंने पार्टी में महत्वपूर्ण पदों के अलावा टिकट बंटवारे में भी ब्राह्मणों का ध्यान रखा था। बीएसपी इसे सोशल इंजीनियरिंग कहती थी। 2007 में बीएसपी ने 86 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था, 86, जिसमें से 37 विधायक चुने गए थे। सोचिए, एक ऐसी पार्टी जो कि दलित राजनीति पर ही खड़ी हुई, उसने 37 विधायक अपने बना लिए ब्राह्मणों। उस वक्त मायावती के खास नेताओं में सतीश चंद्र मिश्रा का नाम आता था। मायावती ने तब अपनी सरकार में ब्राह्मण समाज से 9 मंत्री बनाए थे और कईयों को राज्य मंत्री पद भी दिया था। मायावती की सोशल इंजीनियरिंग से हर कोई हैरान था, क्योंकि मायावती को मूल रूप से दलितों का, पिछड़ों का नेता माना जाता था। पार्टी ही इसी आधार पर खड़ी हुई थी। मायावती के इस फॉर्मूले से समाजवादी पार्टी को बड़ी सीख मिली। उसे साल 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के ब्राह्मणों को अपने साथ करने में पूरी ताकत झोंक दी। 2012 समाजवादी पार्टी ने 41 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसमें 22 उम्मीदवार जीत गए। उस साल 403 में से 224 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। जीत के बाद कई ब्राह्मण विधायकों को मंत्री पद दिए गए। यूपी में परशुराम जयंती की छुट्टी घोषित की गई। ब्राह्मण नेता जनेश्वर मिश्र के नाम पर पार्क बनवाया गया। देखा जाए तो यूपी में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए एक ब्राह्मण फैक्टर को सबसे पहले कांग्रेस ने पहचान दी, फिर मायावती ने, और इसके बाद समाजवादी पार्टी ने। अब चाहे आप इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, हर बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी भी। आजकल मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की लत इस स्तर तक पहुंच गई है कि लोग इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। फोन छीन लिया तो फांसी लगा ली, इंस्टाग्राम पर रील्स नहीं बनाने दी तो घर छोड़ दिया, फोन चलाने पर टोका तो अपनों पर ही हाथ उठा दिया। जब भी हमारे आसपास ऐसी खौफनाक खबरें आती है तो हमारा समाज क्या कहता है? ये सब सोशल मीडिया और मोबाइल की लत की वजह से हो रहा है। ऐसे में लोग माँ बाप को कोसते हैं, खुद को दोषी मानते हैं, परवरिश पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसके लिए सोशल मीडिया कंपनियां, उनका कंटेंट, उनका एल्गोरिदम भी दोषी हो सकता है। मुमकिन है कि सोशल मीडिया आपके बच्चे के दिमाग को हैक कर रहा हो। इटली में एक ऐसी घटना हुई जहां सोशल मीडिया की लत की वजह से एक 12 साल की बच्ची ने जान दे दी, लेकिन यहां उसकी मां ने बेटी की लत को इसके लिए दोषी नहीं माना, बल्कि घातक सोशल मीडिया कंटेंट और जानलेवा एल्गोरिदम को इसके लिए जिम्मेदार माना। इस मां ने चुपचाप आंसू बहाने के बजाय दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज मेटा और टिकटॉक पर केस ठोक दिया है। अपनी 12 साल की बेटी की मौत को लेकर इस मां ने मेटा और टिकटॉक पर आरोप लगाया कि इन कंपनीज ने जानबूझकर ऐसा एल्गोरिदम बनाया जो बच्चों को अडिक्ट बनाता है। यह लत नहीं बल्कि कंपनियों द्वारा परोसा गया धीमा जहर है, स्लो पॉइजन। इस मां का सीधा आरोप है कि ये कंपनियां सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि शिकारी हैं जो अपने बच्चों को एडिक्शन के जाल में फंसाकर खुद अरबों डॉलर कमा रही हैं। ऐसी दोषी बच्चा नहीं है, असली दोषी वो एल्गोरिदम है जिसे बनाया है इन कंपनीज ने मासूम दिमागों को अपने वश में करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ इटली की कहानी है तो ऐसा नहीं है। भारत में सोशल मीडिया की ये लत अब एक महामारी बन चुकी है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए जो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कंज्यूमर है। हमारे बच्चे दिन के 24 घंटों में से 5 घंटे रील और शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में गवा रहे हैं। ये लत कोई इत्तेफाक नहीं है, इसे बाकायदा डिजाइन किया गया है। हर एक लाइक, हर एक फॉलोअर, हर स्क्रॉल बच्चे के दिमाग में डोपामाइन का ऐसा केमिकल डालता है जिसे बाहर निकलना किसी ड्रग्स की लत से कम नहीं है। एक औसत तौर पर अगर आप देखिए तो टीनेजर दिन में 150 से ज्यादा बार सिर्फ नोटिफिकेशन चेक करता है। सोशल मीडिया की वजह से हर 3 में से एक युवा एंजाइटी, डिप्रेशन और नींद में ना आने की बीमारी से सोच रहा है, जूझ रहा है। सोचिए इस उम्र में नींद ना आना। ICSSR हमारा सोर्स है जिसके हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। सोचिए जब कोई ड्रग्स बेचने वाला पकड़ा जाता है तो सजा पेडलर को मिलती है, तो फिर सोशल मीडिया के इस डिजिटल ड्रग्स के मामले में कसूरवार सिर्फ बच्चा और माता पिता क्यों माने जाएं? इटली से उठी आवाज भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है। अब वक्त आ गया है कि जब हम इन सिलिकॉन वैली के आकाओं से पूछें कि हमारे बच्चों के बचपन और उनकी जान की कीमत पर उनका मुनाफे का धंधा कब तक चलेगा। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मैं करता हूँ ना,
3: मैं करूँगा।
4: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
2: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
4: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
2: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
4: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
5: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
6: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
5: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
7: आगे आगे,
8: अरे उधर उधर,
7: करेक्ट करेक्ट।
9: मिल गया, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का, और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
4: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB मेरा अपना बैंक।
11: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक, ममता के मानुष से उद्धव के कुनबे तक, एक महीने में दो दल टूटे और कई दल हारे, लेकिन इन दोनों मामलों में बागियों को कहीं नेता का नेतृत्व कबूल नहीं तो कहीं सेकंड इन कमांड कबूल नहीं। बंगाल में ममता कबूल है तो अभिषेक नहीं, महाराष्ट्र में ठाकरे कबूल है, राउत नहीं। अब टूट पीड़ित कह रहे हैं, इस मुल्क में दल बदल के बहाने भले हों हजार, लेकिन फूट के फंसाने के पीछे तो रही है केवल एक सरकार। और अब सरकार से शिकायत देकर स्पीकर के पास जाएं, चुनाव आयोग जाएं या अदालत, पीड़ितों को राहत नहीं मिल रही तो बौखलाहट सामने आ रही है।
1: जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जिया उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग।
0: उद्धव के नेता सुप्रीम कोर्ट को कोसते हैं, क्योंकि अगर शिंदे वाली बगावत पर फैसला हो गया तो बची खुची उद्धव सेना में टूट नहीं होती। दरअसल 14 दिन की कसम, हलफ, मान मनुहार, अनुरोध, अपील के बावजूद जब 6 सांसद गायब रहे तो सांसदों को व्हिप जारी करके बुलाया गया। संसदीय दल के नेता संजय राउत तय समय पर पहुंचे।
2: सर, आपको लगता है कि सारे लोग आएंगे?
1: देख लेंगे, जो आएंगे हमारे ले आएंगे, बेईमान गद्दार।
0: उद्धव के दो सांसद काफी देर तक इंतजार करते रहे, आधे घंटे बाद फिर नासिक वाले राजा भाऊ आजे भी पहुंचे, लेकिन 6 बागी नजर नहीं आए।
1: एक्शन की शुरुआत हो गई है, उनको शोपा दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द।
0: लेकिन कार्रवाई फिर स्पीकर के हाथ होगी, चुनाव आयोग के दरबार में होगी या फिर इंसाफ अदालतों की चौखटों से ही निकलेगा, पर वक्त तय नहीं, क्योंकि एक फैसला कोलकाता में भी फंसा है। टीएमसी में टूट के बाद नेता विपक्ष और चीफ व्हिप का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, नोटिस भी दिया, जवाब भी मांगा, लेकिन बागी गुट को नेता विपक्ष बनाने के स्पीकर के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई।
3: The High Court has not passed any interim order, but High Court admitted the petition. Directions for affidavits have been given, and the matter will come up for final hearing.
0: अब अदालती हो या आयोग या फिर स्पीकर की चेयर, दल बदल वाले इन मामलों में हर दल संविधान और कानून के हिसाब से न्याय की उम्मीद करता, लेकिन सत्ता की सियासत और कुर्सी के लालच का अफसोसनाक पहलू ये कि कानून के दांवपेच का इस्तेमाल लोकतांत्रिक नैतिकता के खिलाफ होता दिखता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही. अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. और जो आंधियां दूसरों के वजूद को मिटाने निकलती हैं, वो अक्सर खुद धूल बनकर बैठ जाती. नमस्कार.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका। क्रॉस वोटिंग से एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवाणी की जीत। बीजेपी बोली ये राहुल गांधी की हार।

0: आपको सीधे लिए चलते हैं फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों के बीच संबोधित कर रहे हैं।
1: साथियों, ये पेरिस शहर लाइट्स का शहर है, ये रंगों का शहर है, यहां आर्ट है, आइडियाज हैं और इनोवेशन की प्रेरणा भी है। इस शहर को भारत के अलग अलग राज्यों से आए आप सभी लोग और भी खूबसूरत बनाते हैं, नए नए रंगों से भर देते हैं। कोई तमिल है, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, तो कोई मराठी है और कोई बंगाली है। भारत के हर कोने का प्रतिनिधित्व यहां दिखाई देता है। साथियों, मैं जब 14 जून को नीस पहुंचा था तो सबसे पहले भारत इनोवेट्स इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। आज जब मैं फ्रांस से वापसी की तैयारी में हूं तो लग रहा है जैसे भारत कनेक्ट्स कार्यक्रम में आ गया हूं। फ्रांस में रहने वाले आप लोगों ने 21वीं सदी के भारत फ्रांस रिश्तों को जिस तरह कनेक्ट किया है वो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बहुत बड़ी ताकत बन रही है। मैं आप सभी के लिए भारत से 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं लेकर के आया हूं। इस आत्मीय स्वागत के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज मैं ऐसे समय में फ्रांस आया हूं जब कुछ ही दिन पहले हमारी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए हैं। चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति है जिसने एक चाय वाले को यहां तक पहुंचा दिया। साथियों, बीते 12 वर्ष 140 करोड़ भारतीयों के अद्भुत सामर्थ्य के रहे हैं। 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है। एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है। मैं आपको कुछ और फैक्ट्स दूंगा, इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि भारत किस स्पीड और कितने बड़े स्केल पर काम कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट 35 गुना यानी 35 टाइम्स बढ़ गया है और एक फैक्ट सुनिए, भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में 100 गुना की बढ़ोतरी हुई है, 100 टाइम्स। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। इसी गति, इसी प्रगति का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। साथियों, आज भारत की कहानी सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस की कहानी नहीं है, सिर्फ यहां अटक नहीं जाती है, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की भी कहानी है। पिछले 12 साल में देश में 25 करोड़ लोग, यह आंकड़ा सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यानी एक ऐसी प्रगति जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। फ्रांस में जितने घर हैं, पूरे फ्रांस में टोटल जितने घर हैं, उससे भी अधिक पक्के घर बीते 12 वर्षों में हमने जरूरतमंदों के लिए बनाए हैं। अब हर परिवार के पास, गरीब से गरीब क्यों न हो, बैंक अकाउंट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का अभियान बना है। साथियों, इन 12 वर्षों की उपलब्धियों में एक उपलब्धि ऐसी भी है जिसे किसी आंकड़ों से या अंकों से नहीं मापा जा सकता, वह है 140 करोड़ भारतीयों का आत्मविश्वास। आज का भारत और आज के भारत का युवा बहुत बड़े सपने देख रहा है। भारत का किसान नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की महिलाएं नए नेतृत्व का परिचय दे रही हैं। इसलिए ये सिर्फ अचीवमेंट्स के 12 साल नहीं है, ये भारत की एस्पिरेशंस को नई बुलंदी देने का कालखंड रहा है। साथियों, एक समय था जब दूर दराज के गांवों तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाना वाकई बहुत मुश्किल भरा था, आज उन्हीं गांवों में बिजली भी है, इंटरनेट भी है और डिजिटल सेवाओं की पूरी दुनिया भी है। आज एक क्लिक पर कभी भी कहीं भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध है। आज मोबाइल फोन भारत के नागरिकों को अनेक सुविधाओं से कनेक्ट कर रहा है। हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे डेयरी फार्मर्स, हमारी महिलाएं, हमारे स्टूडेंट्स सभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सशक्त हो रहे हैं और अपने लिए नए अवसर बना रहे हैं। साथियों, आपने 125 करोड़ से अधिक आधार आईडीज के बारे में सुना है, लेकिन आज भारत सिर्फ पहचान को डिजिटल नहीं बना रहा, आज करीब 90 करोड़ भारतीयों की यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जा चुकी है, जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित और एक्सेसिबल बन गए हैं। इससे हेल्थ केयर डिलीवरी और अधिक आसान और एफिशिएंट हो रही है। साथियों, इन उपलब्धियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें से अधिकांश चीजें कुछ वर्ष पहले तक कल्पना जैसी लगती थी। कौन सोच सकता था कि गांव गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा? कौन सोच सकता था कि दूर सुदूर के गांवों में भी क्यूआर कोड जीवन का हिस्सा बन जाएगा? गांव में कोई बहन ड्रोन से खेती करने में मदद करेगी, ये भी असंभव लगता था, लेकिन आज यह सब भारत के करोड़ों लोगों के जीवन का सामान्य हिस्सा बनता जा रहा है। और आपको गर्व होगा साथियों, यही नए भारत की पहचान है। जो कभी सपना था वो आज सच्चाई है, जो कभी नामुमकिन लगता था वो आज मुमकिन हुआ है। और ये करने के पीछे सबसे बड़ी ताकत क्या है, किसकी वजह से सब संभव हुआ है? ये मोदी के कारण नहीं, वो ताकत है भारत का लोकतंत्र, भारत की डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी में सबका साथ है, सबका विकास है। साथियों, आज से 50 या 100 साल बाद जब भारत के इस कालखंड की समीक्षा होगी तो ये बात उभर कर सामने आएगी, इस कालखंड को भारत की एस्पिरेशंस ने ड्राइव किया। यह भारत के एस्पिरेशंस का नया युग है, जहां बिजली पहुंची है वहां लोग सिर्फ बिजली नहीं चाहते, वे स्मार्ट लिविंग चाहते हैं। जहां ट्रेन पहुंची है वहां लोग हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहते हैं। जहां हाईवे बने हैं वहां लोग वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे चाहते हैं। जहां इंटरनेट पहुंचा है वहां लोग एआई और डिजिटल इनोवेशन में नेतृत्व चाहते हैं। यानी आज भारत के लोग अपने जीवन को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और भारत को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना उनका मकसद है, उनका संकल्प है, उनके सपने हैं। और साथियों, यही एस्पिरेशंस आज भारत की विकास यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आपको भारत की स्पेस जर्नी का उदाहरण दूंगा। भारत ने चंद्रयान को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारा। दुनिया ने इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना, लेकिन भारत इसे अपनी मंजिल मानकर रुका नहीं है। बहुत हो गया मोदी जी, अब चलेगा नहीं। आज देश गगनयान की तैयारी कर रहा है। आज भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारे स्पेस स्टार्टअप्स ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में अपनी जगह बनाने के लिए पुरजोश काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत की यही एस्पिरेशन दिखाई देती है। सोलर पावर में भारत की उपलब्धियों की दुनिया भर में लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन भारत अगली छलांग की तैयारी कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन में बड़े निवेश हो रहे हैं, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी पर तेजी से काम हो रहा है। आपने भारत के फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़ी प्रोग्रेस के बारे में भी जरूर सुना होगा। ये भारत के न्यूक्लियर एनर्जी लैंडस्केप में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे साइंटिस्टों ने किया है। साथियों, आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा है, नीस में भारत इनोवेट्स का एक आयोजन किया। ये इवेंट भारत के डीप टेक सामर्थ्य को दुनिया तक पहुंचाने का एक और माध्यम था। इसमें भारत के 120 डीप टेक स्टार्टअप्स उपस्थित थे। भारत इनोवेट्स में करीब 1400 B2B मीटिंग हुई है। कई स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स आगे बढ़ी, कॉमर्शियल ऑर्डर्स के लिए रास्ते खुले। फ्रेंच और यूरोपियन यूनिवर्सिटी तथा इंक्यूबेटर्स के साथ एंगेजमेंट बढ़ रही है। स्टूडेंट एक्सचेंजेस ज्वाइंट रिसर्च और इनोवेशन सपोर्ट के नए रास्ते बने हैं। इसलिए भारत इनोवेट्स सिर्फ एक समिट नहीं रहा, यह इनोवेशन डिप्लोमेसी का एक नया मॉडल बना है। और आज ही पेरिस में वीवा टैग इवेंट के जरिए इस यात्रा को हमने और आगे बढ़ाया। नीस में हमने आइडियाज को कैपिटल से जोड़ा और पेरिस में इंडियन इनोवेशन को ग्लोबल स्केल से जोड़ा। आज दुनिया देख रही है भारत केवल भविष्य के लिए तैयार नहीं हो रहा है, भारत भविष्य को, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, भारत भविष्य को आकार दे रहा है। साथियों, एक समय था जब देशों के बीच रिश्ते केवल व्यापार से तय होते थे। आज व्यापार के साथ साथ ट्रस्ट यानी भरोसा भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है, हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है, हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है। एवियन में G7 बैठक के दौरान मैंने ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप बनाने पर जोर दिया। ग्लोबल साउथ के देशों के साथ इक्वल पार्टनर्स के रूप में आगे बढ़ने का आह्वान किया। भारत का G7 समिट में संदेश था, ग्लोबल गवर्नेंस तभी प्रभावी होगी जब वह इंक्लूसिव होगी, ग्लोबल ग्रोथ तभी सस्टेनेबल होगी जब वह शेयर्ड होगी, और ग्लोबल टेक्नोलॉजी तभी मानवता के लिए उपयोगी होगी जब वह ट्रस्टेड होगी। साथियों, भारत और दुनिया के बीच व्यापारिक रिश्तों में नई ऊर्जा नजर आ रही है। फ्रांस के साथ भारत का ट्रेड लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने दुनिया के अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। यूरोपियन यूनियन हो, यूनाइटेड किंगडम हो, दुनिया के हर देश, हर रीजन के साथ भारत समझौते कर रहा है। अगले महीने से भारत और यूके के बीच ट्रेड एग्रीमेंट भी लागू हो जाएगा। यह एग्रीमेंट भारत के फार्मर्स, वर्कर्स और इनोवेटर्स को अनेक नए अवसर प्रदान करेगा। साथियों, आज दुनिया अनसर्टेनिटी और डिसरप्शन के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और फ्रांस की साझेदारी विश्वास, स्थिरता और सहयोग का एक मजबूत स्तंभ बन रहा है। इस वर्ष हमने भारत और फ्रांस के संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। नीस में मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों और मैंने हमारे संबंधों को फोर्स फॉर ग्लोबल गुड बनाने पर चर्चा की। डिफेंस से लेकर स्पेस और न्यूक्लियर तक, एआई और क्रिटिकल मिनरल से लेकर हाई स्पीड रेलवे तक, हर क्षेत्र में हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। साथियों, सोलर एनर्जी हो या एआई के क्षेत्र में सहयोग हो, भारत और फ्रांस मिलकर ऐसे समाधान विकसित कर रहे हैं जो पूरी मानवता के हित में है। पिछले वर्ष पेरिस में और इस वर्ष दिल्ली में हमने एआई समिट को कोचेयर किया। अब हम साथ मिलकर अगले वर्ष तृष्णा सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहे हैं। ये तृष्णा सैटेलाइट जो विश्व में फूड और वाटर सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में योगदान देगा। और साथियों, यह सभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पहलों में आप सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप हैं जो भारत और यूरोप के बीच सबसे मजबूत सेतु है। आप दोनों समाजों को समझते हैं, दोनों बाजारों को समझते हैं। आने वाले समय में टैलेंट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट के नए अवसरों को आगे बढ़ाने में आप सबकी भूमिका लगातार बढ़ने वाली है। साथियों, भारत और फ्रांस के रिश्तों को साझा इतिहास, साझा मूल्यों और साझा विश्वास ने आगे बढ़ाया है। विश्व युद्धों के दौरान फ्रांस की धरती पर बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृतियां आज भी हमें जोड़ती हैं। मुझे पहले नव शापेल में श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला। पिछले वर्ष प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मार्सेय के वॉर मेमोरियल जाने का अवसर भी मिला। ये हमारी साझी विरासत है। फ्रांस भारतीयों के योगदान को समझौता भी है और सराहता भी है। भारतीय मूल की नूर इनायत खान हो, जिन्होंने फ्रांस की रेजिस्टेंस के लिए अपना जीवन बलिदान दिया, या महाराजा रणजीत सिंह के साथ काम करने वाले जनरल जां फ्रांसवा अलार हो, ये सभी भारत और फ्रांस की साझा विरासत के प्रतीक है। भारत के राज्य पुडुचेरी में भी फ्रेंच विरासत की झलक दिखाई देती है। वहां का आर्किटेक्चर, वहां की कला संस्कृति और खान पान सभी में हमारे संबंधों की महक है। साथियों, इस समय फ्रांस समेत पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे की तैयारियां भी चल रही है। इस अवसर पर मैं फ्रांस में योग को आगे बढ़ाने वाले श्रीमान महेश गात्राडयाल जी को भी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मैं पद्म पुरस्कार से सम्मानित शार्लो शोपा जी को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने 100 वर्ष की आयु में भी योग के माध्यम से फ्रांस को भारत की विरासत से जोड़ा है। उनका जीवन ये सिद्ध करता है, योगा डज नॉट एड इयर्स टू लाइफ, इट एड्स लाइफ टू इयर्स। साथियों, मैं फेद नेगरी जी को भी आज आदरपूर्वक श्रद्धापूर्वक याद करता हूं। भारतीय विरासत को संरक्षित करने में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। साथियों, भारत और फ्रांस को कनेक्ट करने वाली एक और चीज है और वो है फुटबॉल। इस वक्त यहां फुटबॉल फीवर पूरे जोर पर है। फ्रांस में इसकी दीवानगी चप्पे चप्पे पर दिखती है, लेकिन भारत में भी फुटबॉल का क्रेज सिर चढ़ करके बोलता है। खास तौर पर फ्रांस की टीम के फैंस भारत में बहुत अधिक है। फ्रांस ने इस वर्ल्ड कप की शुरुआत एक जोरदार जीत से शुरू की है। मैं फ्रांस की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जाने से पहले आप सभी के लिए कुछ और अच्छी खबरें भी मैं लेकर के आया हूं, वो आपके लिए हैं। पिछले वर्ष मार्सेय में कॉन्सुलेट खोला गया, इससे काफी अधिक सुविधा मिल रही है। कुछ हफ्ते पहले इंडियन नेशनल्स के लिए फ्रेंच एयरपोर्ट्स पर वीजा फ्री ट्रांजिट की व्यवस्था शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी बढ़ाना हो या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की म्यूचुअल रिकग्निशन की बात हो या फिर फ्रेंच यूनिवर्सिटीज के भारत में कैंपस खोलना हो, इन सभी पर हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। अब फ्रांस में यूपीआई के उपयोग का दायरा भी और बढ़ने जा रहा है, यानी भारत फ्रांस कनेक्ट भी इंस्टेंट और आपसी पेमेंट भी इंस्टेंट। साथियों, इन सभी पहलों से हम भारत और फ्रांस को और करीब ला रहे हैं और मैं फिर कहूंगा, इस साझेदारी की नींव, इस रिश्ते की असली ताकत आप सब है। आप सब मेरे देशवासी हैं। आज जब भारत तेजी से विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो मैं आप सभी से भारत के साथ और गहराई से जुड़ने का आग्रह करूंगा। इससे भारत की विकास यात्रा को नई शक्ति मिलेगी और आपको अपने पुरखों की धरती की सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के प्रेम, आपके उत्साह और इस आत्मीय स्वागत के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। आज बात उस युद्ध की जिसके खत्म होने की घोषणा ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपति कर चुके हैं। पीस डील के एमओयू पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पजेशकियन के हस्ताक्षर हो चुके हैं। दुनिया के लिए अमेरिका ईरान पीस डील राहत की खबर लेकर आई, लेकिन अब आगे क्या हो? क्या शांति समझौते पर मोहर लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी साख बचाने की कोशिश की? क्या ट्रंप के लिए ईरान के साथ पीस डील मजबूरी थी, क्योंकि शांति समझौते का दस्तावेज जैसे ही सार्वजनिक हुआ ट्रंप के दावों की पोल खुल गई। ट्रंप ने बार बार यही ऐलान किया कि ईरान शांति समझौते के लिए बेताब था, लेकिन 14 सूत्रीय शांति समझौते की एक एक लाइन यही गवाही दे रही है कि ईरान अपनी शर्तों को मनवाने में कामयाब रहा। ऐसा क्यों, आइए हम आपको इस डिटेल्ड रिपोर्ट में दिखाते हैं।

0: अमेरिका ईरान युद्ध बंद करने पर समझौता। ट्रंप और पेदिशकियन के एमओयू पर साइन। ईरान की शर्तों पर ट्रंप को झुकना पड़ा। एमओयू के मसौदे में ईरान का पलड़ा भारी। ईरान की चली फुल, ट्रंप की हेकड़ी गुल। शांति समझौते का ये वही मसौदा है जिस पर 19 जून को दस्तखत होने थे, लेकिन ईरान का इरादा बदले उससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने आनन फानन में निर्धारित वक्त से पहले ही मसौदे पर साइन कर दिए, वो भी G7 सम्मेलन के दौरान। दुनिया के तमाम बड़े राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में ट्रंप ने साइन किया, तो उधर ईरान के राष्ट्रपति ने भी एमओयू पर दस्तखत करके शांति समझौते पर मोहर लगा दी। सबसे पहले समझिए 14 सूत्रीय शांति समझौते के एमओयू की शर्तें क्या हैं। लेबनान समेत सभी संघर्ष के मोर्चों पर युद्ध बंद। नंबर 2, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। नंबर 3, अगले 60 दिनों में अंतिम समझौते की डेडलाइन। नंबर 4, ईरान की समुद्री नाकेबंदी हटाएगा अमेरिका। नंबर 5, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से ईरान खोलेगा। नंबर 6, ईरान को 28 लाख करोड़ रुपए का हर्जाना मिलेगा। नंबर 7, ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटेंगे। नंबर 8, ईरान परमाणु हथियार न बनाएगा न खरीदेगा। नंबर 9, अंतिम समझौते तक एटमी कार्यक्रम पर रोक नहीं। नंबर 10, ईरान को तेल और गैस के निर्यात पर खुली छूट। नंबर 11, ईरान की जब्त संपत्तियां धीरे धीरे रिलीज होगी। नंबर 12, दोनों देश मिलकर एक निगरानी व्यवस्था बनाएंगे। नंबर 13, मसौदे के अनुच्छेद 1, 4, 5, 10 और 11 तुरंत लागू। नंबर 14, अंतिम समझौते को UNSC मंजूरी देगा।
1: अब हम कह सकते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता आधिकारिक तौर पर पूरा और अंतिम रूप ले चुका है, क्योंकि दोनों पक्षों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। फारसी भाषा का दस्तावेज अंग्रेजी दस्तावेज जैसा ही है जिस पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए हैं। अगले 60 दिनों में अमेरिका को हमारे क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी नहीं बढ़ानी चाहिए और न ही कोई नया प्रतिबंध लगाना चाहिए। किसी भी प्रक्रिया या किसी भी पक्ष के साथ ईरान की रक्षा क्षमताओं पर बातचीत नहीं की जाएगी।
0: जिस शांति समझौते के एमओयू पर दस्तखत हुए हैं, इसमें 2 चरणों के जरिए ईरान और अमेरिका अंतिम समझौते तक पहुंचेंगे, यानी फाइनल डील का रोड मैप तैयार किया गया है। एमओयू पर दस्तखत होते ही समझौते से जुड़ा पहला चरण लागू हो चुका है, जबकि कुछ अहम मुद्दों को दूसरे चरण में आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब जिन मुद्दों पर अभी समाधान नहीं निकला है, उन मुद्दों पर अगले 60 दिन में वार्ताओं के जरिए सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। 60 दिनों की मियाद को दोनों देशों की आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। शांति समझौते में किसका फायदा है और किसका नुकसान, इसकी डिटेल आपको बताएं। उससे पहले पीस डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा दावा सुनिए।
2: Iran will never have a nuclear weapon. That's what it says. It won't have one to buy, to develop. They will not have a nuclear weapon. And I would say that's about 99.9% of what I wanted.
0: Trump ne jo vaada kiya wo us masode se mel nahi khata jo Iran aur America ke beech hua hai. Masode ka ek ek bindu saboot hai ki Iran ke saath shanti samjhote ke liye Trump betaab the, kyunki is deal ke zariye Iran ko wo sab kuch America ne de diya hai जिसे ट्रंप लगातार ठुकराते आए थे। इसका मतलब ये भी है कि ट्रंप बखूबी समझ चुके थे कि ईरान के साथ जंग के मैदान में फैसला मुश्किल है, जबकि सबसे बेहतर विकल्प है ईरान की शर्तों को मानकर शांति समझौते तक पहुंचना। सरल शब्दों में समझें तो ईरान की रणनीति एकदम सफल रही, क्योंकि हॉर्मुज को अपने नियंत्रण में लेकर ईरान ने अमेरिका की उस कमजोर नस को दबा रखा था जिससे पार पाना उसके बस की बात नहीं थी। अगर शांति समझौते के मसौदे को देखें तो इसमें ईरान के लिए अमेरिका की तरफ से रियायतें हैं, अमेरिका की तरफ से कमिटमेंट है, जबकि ईरान की तरफ से कोई बड़ी गारंटी नहीं दी गई है। ना तो ईरान के एटमी प्रोग्राम पर ताला लगा, न ही ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रुकेगा। ना तो ईरान झुका, उल्टा हॉर्मुज को खोलने के बदले में अब ईरान को बहुत कुछ मिल रहा है। जिसमें अरबों डॉलर का हर्जाना और रियायतें शामिल हैं।
3: इस समझौते में 300 अरब डॉलर की राशि अलग रखी गई है। इस राशि का एक हिस्सा हमारे नुकसान की भरपाई और पुनर्निर्माण कार्यों में खर्च किया जाएगा।
0: ईरान को मिलने वाली ये रियायतें एमओयू के दस्तखत होते ही शुरू हो गई हैं। मसौदे का आर्टिकल 4 और 5 कहता है कि दस्तखत होने के बाद ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी अमेरिका हटाना शुरू कर देगा, वहीं ईरान भी होर्मुज को खोल देगा। बड़ी बात यह है कि अगले 30 दिनों के अंदर ईरान होर्मुज में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने का काम करेगा। ईरान की मांग यही थी कि जब नाकेबंदी हटेगी तभी होर्मुज खुलेगा। ईरान ने जो कहा वही किया। आर्टिकल 10 में ईरान को बहुत बड़ी रियायत मिली है, यानी प्रतिबंधों में छूट। समझौते के मुताबिक मसौदे पर दस्तखत होते ही ईरान को अपना तेल और गैस समेत तमाम सेक्टर में निर्यात की खुली छूट मिल जाएगी, यानी ईरानी तेल और गैस के निर्यात पर लगे प्रतिबंध हट चुके हैं। ईरान दुनिया के बाजार में अब तेल और गैस बेच सकता है। वहीं आर्टिकल 11 में अमेरिका ने वचन दिया है कि ईरान की जब्त की हुई संपत्ति और फंड को रिलीज किया जाएगा। शांति समझौते के लिए ईरान की तरफ से रखी गई ये बड़ी शर्त ट्रंप ने मान ली है। आर्टिकल 9 में ईरान को मिलने वाले उस हर्जाने का जिक्र है जिसकी मांग ईरान की तरफ से की गई थी। शांति समझौते में साफ लिखा है कि युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए ईरान को 300 अरब डॉलर का पुनर्निर्माण कोष मिलेगा। आज तक ब्यूरो।
4: ईरान और अमेरिका संघर्ष में युद्ध में स्थायी युद्ध विराम का रोड मैप तैयार हो चुका है, लेकिन होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते ने पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। समझौते के तहत ईरान होर्मुज खोलने को तो तैयार हो गया, होर्मुज अब आवाजाही के लिए खुल जाएगा। सुनने में ये अमेरिका की बड़ी जीत आपको नजर आती है, लेकिन सच्चाई यही है कि सिर्फ 60 दिनों तक होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को कोई टोल या टैक्स नहीं देना होगा। 60 दिन के बाद ईरान यह तय करेगा कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स टोल वसूला जाएगा या नहीं, यह भी ईरान ही तय करेगा, अमेरिका नहीं।
0: होर्मुज पर ईरान के आगे झुक गया अमेरिका। सिर्फ 60 दिनों तक बिना टैक्स के आवाजाही। साठ दिन बाद ईरान लगा सकता है होर्मुज टैक्स। पीस डील में होर्मुज पर ईरान को बड़ी छूट। होर्मुज पर ट्रंप की नहीं मुश्तबा की चलेगी। ये वही होर्मुज है जिसका इस्तेमाल ईरान ने अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के तौर पर किया। होर्मुज को बंद करके ईरान ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को घुटनों के बल ला दिया, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद होर्मुज को खुलवाने में अमेरिकी राष्ट्रपति नाकाम रहे थे। यहां तक कि होर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी की, होर्मुज पर हमला किया, लेकिन ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटा।
5: We've been very nice. We haven't ripped down too many bridges. We did one only because they broke their word, they broke their promise. And remember, their promise was that they were going to open the Hormuz Strait. They didn't do it. They lied. We have a lot of people, as you know, at 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. And that will be a very effective.
0: यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई बार दावा किया कि होर्मुज पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। शांति समझौते के बाद होर्मुज युद्ध से पहले की स्थिति में लौट आएगा।
2: Very happy to say, very signed, the deal's all signed, and the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened.
0: हुर्मुज पर ट्रंप की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच साइन हुए एमओयू में साफ साफ लिखा है कि 60 दिन बाद हुर्मुज पर टैक्स या टोल लगेगा या नहीं, निर्णय अमेरिका नहीं बल्कि ईरान करेगा। सबसे पहले समझिए पीस डील में हुर्मुज को लेकर क्या कहा गया है। नंबर एक, हुर्मुज को ईरान सबके लिए खोल देगा। नंबर दो, 60 दिनों तक बिना टोल के आवाजाही होगी। नंबर तीन, 30 दिनों में बारूदी सुरंगों को हटाया जाएगा। नंबर चार, 60 दिन बाद हुर्मुज पर फैसला लेगा ईरान। नंबर पांच, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ईरान करेगा प्रबंधन। नंबर छह, टोल या टैक्स जैसे प्रावधान पर कोई मना ही नहीं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
5: जहां खबर वहां खबरदार।
9: इन एसोसिएशन विद
10: E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
12: जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री संत का।
13: प्लीज बजीपा, प्लीज डू ललन टॉक शो, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज टू स्पीक ट्रूथ।
14: अप्रैल 2026 में उन्होंने एक रिटेल कंपनी का ऐड किया।
13: ऐसे हरकतें आप करोगे आपकी भाई के साथ, आई चैलेंज यू बजीपा। अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तप्पड़ खांड से और आप इतना कमा रहे हो, हमें भी तो कमाने दो। आओ ना रिंग में, वेट कम।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: to 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
3: You're listening to CNBC.
4: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
5: Keep it on smooth jazz.
6: This is Roots Reggae.
7: Exclusively on TuneIn.
8: This is classic hip-hop.
9: Exclusively on TuneIn.
2: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
10: ये सिर्फ नारा नहीं, मानो अखिलेश यादव के पीडीए में ब्राह्मण वोट बैंक को साथ जोड़ने का समाजवादी पार्टी का मंत्र है। लखनऊ में बुधवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी के ब्राह्मण समाज के नेताओं की बड़ी बैठक हुई। बैठक का एजेंडा था 5 अगस्त को पड़ने वाली जनेश्वर मिश्र जयंती की तैयारी। छोटे लोहिया के नाम से मशहूर रहे जनेश्वर मिश्र मुलायम सिंह यादव के करीबी ब्राह्मण नेताओं में थे। बैठक में जनेश्वर मिश्र जयंती की रूपरेखा तो बनी ही, साथ ही ब्राह्मण समाज की अनदेखी का तीर बीजेपी पर चलाया गया।
11: ब्राह्मण तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है ना, उसने तो बड़ी उम्मीद से साथ दिया था और बार बार दिया था, पाया क्या है? एक छापामार मंत्री बस, वो भी छापा मारते हैं, अपने विभाग कुछ कर नहीं पाते, वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो उनको ब्राह्मणों कुछ मिला नहीं है। जब भी मौका आया तो उनको सीधा अपमान मिला है, नाम पूछ के, जातियां पूछ के अपमानित किया गया है, इसलिए वो अब की बार बदलाव का मन बना चुका है।
10: इस बीच समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक सनातन पांडेय ने उन दावों को भी बेबुनियाद कहा है जिसमें ब्राह्मणों के पार्टी से नाराज होने का दावा हुआ है।
12: ब्राह्मण सम्मेलन 5 अगस्त की तैयारी के लिए हुआ था। 5 अगस्त जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन है, छोटे लोहिया जी का, उसे तैयारी के लिए हुआ था। और किसने सम्मान नहीं किया? हमारे जो है, जो ब्राह्मण प्रदेश से आए थे, वो गदगद होकर गए हैं कि इतना सम्मान अगर कहीं आज तक हम लोगों को कोई हुआ नहीं था, तो ब्राह्मण नाराज क्या हो गया।
10: ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए अखिलेश यादव का प्रयास बीजेपी के हिंदू कार्ड की काट ढूंढने की अगली कड़ी के तौर पर गिना जा रहा है। अखिलेश यादव बड़े मंगलवार पर हनुमान जी को याद करने से नहीं चूकते। उधर ये अखिलेश ही हैं जिन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा सबसे पहले उठाया है। वैसे अखिलेश ने अब तक राम मंदिर दर्शन से दूरी बरती है, लेकिन वो प्रभु राम के रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं।
13: हम सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं और हमारा धर्म का जो रास्ता है वो सत्य का रास्ता है, दूसरे को सम्मान देने का रास्ता है, दूसरे को साथ लेके चलने का रास्ता है। पीडीए इसीलिए प्रेम दया अपनापन भी है पीडीए में। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जी जैसे बताएंगे उस रास्ते चलेंगे हम लोग, उसमें क्या है।
10: अखिलेश यादव के दाव को बीजेपी बखूबी समझ रही है, इसलिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मण समाज पर अखिलेश के प्रेम को दिखावा कहा है।
14: समाजवादी पार्टी, उनके डीएनए में केवल मुस्लिम तुष्टिकरण है, केवल दिखाने के दांत और हैं और खाने का और है, इनको कोई भरोसा नहीं करे। केवल ये मौलाना लोगों की पार्टी है, आम जनता इसका कोई लेना देना नहीं रहे। है कोई मतलब नहीं के, केवल दिखाने के दांत।
10: अखिलेश यादव के पीडीए कार्ड की काट के तौर पर योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व कार्ड भी बेहद मजबूत है।
15: गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है, गौ माता को कटने नहीं देंगे और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे।
10: अखिलेश के पीडीए बनाम योगी के हिंदुत्व के बीच दलित मुस्लिम गठजोड़ के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद की थर्ड फ्रंट की कोशिशें शुरू हुई हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी शामिल हो सकते हैं। उधर मायावती ने ओबीसी समाज की भाईचारा मीटिंग्स की शुरुआत की है। ये अखिलेश के पीडीए की काट हो सकता है। आज तक ब्यूरो।
16: सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे।
6: 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती, वो साइकिल सैफ ही जा सकती है लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं चढ़ सकती।
13: समाजवादी पार्टी के कई विधायक MLC राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा, और लालच दे करके डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
17: आज से बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पेरिस में भारतीयों के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी, भविष्य को आकार दे रहा है भारत। पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुआ विकास, विश्व का भरोसेमंद सहयोगी बना भारत। झारखंड में भी कांग्रेस नहीं संभाल पाई अपना कुनबा, क्रॉस वोटिंग के चलते राज्यसभा चुनाव में मिली हार। एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी विजयी, बीजेपी ने कहा राहुल की हार। उद्धव की सेना में फिर से बड़ी टूट, उनके 6 सांसदों का शिंदे गुट में शामिल होना लगभग तय, बागियों को भेजा गया कारण बताओ नोटिस। जून को नीट री एग्जाम के लिए एयरफोर्स ने कई शहरों में पहुंचाए प्रश्न पत्र, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी हाई लेवल मीटिंग की तैयारियों की समीक्षा की। और रांची में आरएसएस ऑफिस पर हमले का आईएसआई कनेक्शन बेनकाब, पाक हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी अमन अंसारी, एडीएस को सौंपी गई जांच।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दिमागी रूप से बीमार एक लड़का कहीं से एक पिस्टल ले आता है। पुलिस उस लड़के के घर पहुंचती है, 4 घंटे तक उससे बातचीत करती है, फिर पुलिस लौट जाती है बिना उस लड़के के पिस्टल को अपने कब्जे में लिए हुए। फिर अगली सुबह वही लड़का वही पिस्टल लिए खेत में पहुंचता है, सामने पुलिस वाले थे। ये सब कुछ फेसबुक पर लाइव चल रहा था। इसके बाद पुलिस वालों के कहने पर वो लड़का अपनी पिस्टल जमीन पर फेंक देता है। कहानी यहीं से शुरू होती है। पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर भोजपुर जिला का ये शाहपुर इलाका है। सुबह का वक्त है और गांव का खेत। सामने पुलिस की 3 गाड़ियां खड़ी हैं। बहुत सारे पुलिस वाले हैं, कुछ गांव वाले भी हैं, और दूसरी तरफ एक लड़का है जिसके हाथ में तमंचा है। मतलब हाथ में तमंचा लिए लड़का और हथियारों से लैस पुलिस वाले इस वक्त आमने सामने। ये सब कुछ फेसबुक पर लाइव चल रहा है। अब फ्रेम बदल गया है। इस वक्त अब जो भी आप देख रहे हैं वो फेसबुक लाइव की तस्वीर है।
1: तुम सब हमको ढूंढ के आएगा।
0: अब आवाज भी साफ सुनाई दे रहा
1: बोल।
0: तो पहले तमंचा हाथ में लिए इस लड़के की बातें सुनो। ये पुलिस वालों से क्या कहना चाहता है और क्या कह रहा है।
1: हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए।
2: आप बोले ना कि पूरा होगा।
1: अच्छा ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, सुनिए अभी नहीं रखा जाएगा, सुनिए अभी बात खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है। तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं, जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है।
0: और इतना कहते ही अब लड़का अपना तमंचा फेंक चुका है। अब तमंचा सामने पुलिस वालों से चंद कदम की दूरी पर जमीन पर पड़ा है। लड़के के तमंचा फेंकते ही अब पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं, पर इसके बाद क्या होता है वो जानने से पहले ये जान लीजिए कि इससे पहले क्या हुआ था। ये तस्वीर 16 जून की है। कुछ पुलिस वाले एक घर में पहुंचे हैं। ये घर उसी लड़के का है जिसे कुछ देर पहले आपने हाथों में तमंचा लहराते देखा था। असल में इसका नाम भरत भूषण तिवारी है। 16 जून मंगलवार को जब पुलिस भरत के घर पहुंची, तब भी भरत के हाथ में वही तमंचा था। वो तमंचा पकड़े इसी तरह सामने खड़े और बैठे पुलिस वालों से बातें कर रहा है। करीब 4 घंटे तक भरत और पुलिस वालों के बीच ये बातचीत चली और फिर पुलिस लौट गई भरत से बिना उसका तमंचा कब्जे में। ये सब कुछ भी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था क्योंकि तब भी भरत फेसबुक लाइव पर था। अब रात हो चुकी थी। खामोशी से पुलिस की टीम भरत के घर के चारों तरफ घेरा डाल देती है इस उम्मीद में कि भरत घर से बाहर निकले तो वो उसे पकड़ ले या मार दे। लेकिन भरत घर से बाहर निकलता ही नहीं। अब बुधवार की सुबह हो चुकी थी। भरत को पता चल जाता है कि पुलिस वाले उसके घर के इर्द गिर्द घेरा डाले हुए हैं। इसी के बाद वो अपने घर की छत पर जाता है। एक बार फिर से भरत पहले फेसबुक पर लाइव जाता है। तमंचा अब भी उसके हाथ में। तमंचा दिखाकर वो छत पर से ही पुलिस वालों को धमकाता है और फिर गोलियां चलाता है। भरत के गोली चलाते ही पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं। पुलिस वालों के पीछे हटते ही अब भरत अपनी बाइक पर घर से निकलता है और लगभग 1.5 किलोमीटर दूर
3: खेतों के बीच बने इस टेम्परेरी आशियाने के करीब पहुंचता है, जहां कुछ बाढ़ पीड़ित परिवारों को लाकर रखा गया है। पुलिस पहले से भरत के ताक में थी। जैसे ही वो इस जगह पर पहुंचता है, पुलिस उसे सामने खड़ी मिलती है। इसके बाद फिर से भरत फेसबुक पर लाइव हो जाता है। लगभग 5 मिनट तक पुलिस और भरत के बीच बातचीत होती है, सब कुछ लाइव जा रहा था। 5 मिनट बाद आखिरकार भरत अपनी कुछ शर्तें मानने को, पुलिस के आश्वासन देने के बाद तमंचा जमीन पर फेंक देता है और इसी के साथ भरत फेसबुक लाइव भी बंद कर देता है। यानी अब कैमरे पर कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। अब इसके आगे की कहानी। तमंचा फेंकने और फेसबुक लाइव बंद होते ही अचानक गोलियां चलने की आवाज आती है। शायद 3 या 4 गोली चली थी और ये सारी गोलियां भरत के पैरों पर और पेट के निचले हिस्से पर लगी थी। गोली उन पुलिस वालों ने तब चलाई जब भरत तमंचा फेंकने के बाद निहत्ता हो चुका था और शायद सरेंडर करने जा रहा था।
4: जिसको पैर में और एब्डोमेन के नीचे वाले हिस्से में गोली लगा हुआ था, हम लोगों के पास जब आया तो उसका पल्स वगैरह बहुत ही नहीं, शॉक में था मरीज, बचने के हालत में नहीं था। बड़ी मुश्किल से हम लोग उसको जो है रिसाइसेट किए हैं। उसके बाद उसके कंडीशन थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, ब्लड प्रेशर वगैरह मतलब मिलने लगा है। और ये एक्चुअली अंदर वास्कुलर इंजरी है, ब्लड मेजर ब्लड वेसल्स के इंजरी है अंदर में, जिसके वजह से मरीज जो है शॉक में चला गया। और इसको मतलब यहाँ हैंडल करना मुश्किल था, हायर सेंटर पर इसीलिए भेजा गया है।
3: ज्यादा खून बह जाने की वजह से भरत की हालत नाजुक थी, लिहाजा स्थानीय अस्पताल और डॉक्टरों ने उसे पटना ले जाने की सलाह दी। अब भरत को 90 किलोमीटर दूर पटना के एक अस्पताल में लाया जाता है, लेकिन भरत की मौत हो चुकी थी ज्यादा खून बह जाने की वजह से।
5: इस वक्त हम मौजूद हैं आरा सदर अस्पताल में और जो मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक भरत तिवारी था, उसको दो गोली लगी है, पैर में दोनों गोली लगी है और उसे अब इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवक और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी और उसी दौरान जो भरत तिवारी है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, भरत तिवारी को 2 गोली पैर में लगी है और उसे इलाज के लिए पटना रेफर किया जा रहा है। पुलिस अभिरक्षा में उसे पटना भेजा जा रहा है। कल से ही, मैंने अगर बात करें तो 48 घंटे से जो भरत तिवारी युवक जो अभी घायल है, वो सोशल मीडिया पर आकर, लाइव आकर कई बातें बोल रहा था और वो हथियार के साथ जो है वो प्रदर्शन भी कर रहा था। कल भी पुलिस उसे पकड़ने गई थी, लेकिन पुलिस को वो टारगेट करते हुए पिस्टल तान दिया था और वहाँ वो बार बार कई क्रांतिकारी बातें भी बोल रहा था। और हालांकि पुलिस जब उसके पास उसे पकड़ने के लिए गई तो उसके परिवार वालों द्वारा बताया गया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है।
3: पुलिस एनकाउंटर में भरत की मौत की खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोगों को गुस्सा आ गया। गुस्से की वजह ये थी कि भरत मानसिक रूप से एक बीमार नौजवान था और ये बात पूरा इलाका जानता था। ऊपर से सब कुछ फेसबुक पर लाइव चल रहा था, लोगों ने भरत को पिस्टल फेंकते हुए भी देखा था। फिर उनका सवाल था कि एक निहत्ते और मानसिक रूप से बीमार नौजवान को एनकाउंटर के नाम पर क्यों मारा गया। लिहाजा स्थानीय लोगों ने भरत की लाश नेशनल हाईवे पर रखकर SDM और SP के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए।
6: कहा कि हम मारने नहीं आए हैं, तुम हथियार जो लिया है तुम इसको बिक दो। 5 मिनट बात हुआ है उससे, 5 मिनट करीब बात हुआ है। ये लोग कहा कि नहीं, हम लोग तुमको नहीं मारेंगे, अतः नहीं छल मत करिएगा हमारे साथ, कोनो हम उग्रवादी बदमाश नहीं है। तो इसके बाद में हथियार ये लोग बिगवा दिया है, हथियार बिगते हुए बैरल इसका किया है, अपने मोबाइल से किया है, सब दिखाई पड़ रहा है कि अपने हथियार अपने हाथ से बिगवाया है, वहां तक बैरल है। इसके बाद में वो लोग मार दिया है, 3-4 गोली मारा है लोग।
7: घोर अन्याय हुआ है। मान लीजिए कि इनकाउंटर है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया था तो प्रशासन को इसको लेकर पकड़ कर जाकर जेल में बंद देना चाहिए। ये नहीं कि एक काउंटर नहीं करना चाहिए। और ये दूसरी बात कि हम लोग का मांग है कि यहाँ पे एसपी साहब भी आदेश दिए थे कि उनका मानसिक संतुलन थे, एसपी साहब यहाँ आवे और सबसे, इसके बावजूद जो यहाँ पर डीएसपी हैं और थाना प्रभारी उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। वो मानसिक संतुलन किसी को खराब हो तो क्या प्रशासन गोली मार कर किसी का आत्महत्या कर देगी? उसको ले जाकर सुरक्षित जेल में बंद करना चाहिए, न्याय कोर्ट न्याय देगा।
3: अब आखिर भरत की पूरी कहानी क्या है? मानसिक रूप से कमजोर एक नौजवान का पुलिस ने एनकाउंटर क्यों किया और खुद भरत के पास तमंचा कहां से आया? तो पूरी कहानी कुछ यूं है। भरत के पिता बिहार पुलिस में नौकरी कर चुके हैं। खुद भरत ने बीएससी किया है लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। फिर अचानक उसने सब कुछ छोड़कर खुद को समाज सेवा में झोंकने का फैसला किया। 10 साल पहले उसने इसकी शुरुआत अपने पिंडदान से की।
8: आज से तो ये बचपन से हम देखते आ रहे हैं, जब से हम मतलब होश संभाले अपना तब से देखते आ रहे हैं कि समाज से जुड़े हुए इंसान हैं और समाज के भलाई के लिए मतलब आवाज उठाते हैं। ठीक है, इनको दबा दिया जाता है हर एक बार, अगले बार भी ऐसा ही किया गया था। यहाँ प्रभारी आके बैठे थे, वो इनको मतलब घुस देने की कोशिश कर रहे थे, वो तो खुद घुसपुर है, इनको घुस दे रहे थे, आप देख भी सकते हैं वीडियो में।
9: बता दे रहे कि वो पिंडदान भी अपना कर दिए थे।
8: हाँ, 10 साल पहले ही पिंडदान कर दिए समाज के लिए।
9: क्यों किए थे?
8: कि समाज के लिए हम जिएंगे, शादी विवाह कुछ नहीं करने के चक्कर में है। कितना उनका शादी विवाह सेट हुआ सब मना कर दिए कि नहीं हम नहीं करेंगे, समाज सेवा करेंगे, समाज सेवा शादी विवाह नहीं करते, यही बात है जो भी है।
3: असल में भरत से किसी की दिक्कत और परेशानी देखी नहीं जाती थी, ऐसे मजबूर लोगों की वो आवाज बनने की कोशिश कर रहा था।
8: और वो समाज से जुड़े हुए इंसान थे। ठीक है, समाज सेवा में शुरू से ही मतलब उनका देखते आ रहे हैं हम लोग बचपन से ही, मतलब समाज के जुड़े हुए जो भी कार्य हैं वो लगे रहते हैं कि मतलब किसी को भी दिक्कत होता है ना तो वहाँ पहुँच जाते हैं और उनको टारगेट लिया गया है।
3: भरत अब गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने लगा। हाल में बिहार के कई इलाकों में बाढ़ आई, बहुत से बाढ़ पीड़ित परिवारों को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया गया। ऐसे ही कुछ परिवार भरत के घर से करीब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर अपने टेम्परेरी आशियाने में रह रहे थे। लेकिन इस जगह की हालत भी बेहद खराब थी, लोग गड्ढों में रहने को मजबूर थे और यहाँ भी पानी था। इसको लेकर भरत लगातार अपनी आवाज उठा रहा था। इस सिलसिले में वो एसडीएम से भी मिला। भरत के भाई चंदन का इल्जाम है कि बस इसी वजह से एसडीएम भरत से नाराज थे।
8: एसडीएम सर के पास गए थे वो।
9: किस लिए गए थे?
8: ये जवानिया गांव जब बाढ़ में डूब रही थी तो मतलब उनको यहाँ पे बसाया बिलौटी में ठाड़ पे, तो यहाँ भी वही चीज है जो कि वहां से उठाकर उनको फिर गड्ढे से उठाकर गड्ढे में फेंक दिया गया। तो उनको ये चीज लगा कि मतलब गड्ढे से उनको उठा के क्यों गड्ढे में फेंका जा रहा है, तो इस पे वो आवाज उठाए। तो यही चीज लेकर मतलब प्रशासन टारगेट उनको
9: आवाज किस लिए उठा रहे थे
8: कि वहाँ पे व्यवस्था मतलब बढ़िया किया जाए, माटी भरवा दिया जाए, ऊंचा करवा दिया जाए ताकि पानी ना पहुंचे, वो लोगों को दिक्कत ना हो रहने में।
9: बाढ़ का पानी वहाँ भी आता है?
8: वहाँ भी आता है,
10: दूर से पानी आ जाता है,
8: वहाँ भी आता है। और ये लोग प्रशासन पर्सनली टारगेट उनको कर लिया उस पर। बाकी आज देख भी रह रहे लोग आप लोग लाइव, हथियार फेंकने के बाद भी उनको मार दिया गया।
5: एक घटना जो हाई प्रोफाइल ड्रामा था वो पिछले 48 घंटे से चल रहा था। युवक द्वारा जो हथियार दिखाकर सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल किया गया था और उस वीडियो में शासन प्रशासन और सिस्टम के खिलाफ उसकी आवाजें हमेशा बुलंद नजर आ रही थी। पुलिस कल तक दावा कर रही थी कि जो युवक है वो विचिप्त है और उसके चलते जो पुलिस कार्रवाई है वो संयमित तरीके से की जा रही है, लेकिन अचानक आज ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को उसके ऊपर गोली चलानी पड़ी? ये भी एक सवालिया निशान।
3: सोनू कुमार सिंह, भोजपुर, आज तक। एक निहत्ते लड़के को 3 गोली मारने वाली बिहार पुलिस खुद ये कहती है कि वो मानसिक रूप से बीमार है और उसे इलाज की जरूरत है, लेकिन फिर
0: उसी लड़के का खुद ही एनकाउंटर कर देती है। सवाल ये है कि क्या बिहार पुलिस इस सिचुएशन को बेहतर ढंग से हैंडल नहीं कर सकती थी। कमाल ये है कि जिस भरत का खुद पुलिस ने एनकाउंटर किया, उस भरत के बारे में वही पुलिस खुद ही ये दावा भी कर रही है कि वो मानसिक रूप से बीमार है और उसे दिमागी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी है। यहाँ तक कि पुलिस ये भी कहती है कि उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ये देखिए, 16 जून को भोजपुर के एसपी दफ्तर से जारी प्रेस रिलीज है। इस प्रेस रिलीज से साफ होता है कि जिसे खुद पुलिस ने मानसिक रूप से बीमार माना, उसी का एनकाउंटर कर दिया। अब इसी पुलिस का कमाल देखिए, पुलिस को पता है कि भरत की मानसिक हालत ठीक नहीं। इसी 16 जून को पुलिस भरत के घर पर भरत के साथ 4 घंटे तक रहती है। इन 4 घंटों में लगातार भरत हाथ में तमंचा लिए रहता है, लेकिन इस पुलिस से इतना भी नहीं हो पाता कि वो किसी तरह उससे तमंचा वापस ले ले। वो भरत के पास तमंचा छोड़कर ही लौट जाती है। अगर पुलिस 16 जून को ही भरत का तमंचा अपने कब्जे में ले लेती तो शायद इस एनकाउंटर की नौबत ही ना आती। अब एनकाउंटर के बाद जब लोग गुस्से में है, तब पुलिस जांच और कार्रवाई की बात कर रही है।
11: पीड़ित परिवार का जो मांग है, एक लिखित इन लोगों ने आवेदन दिया है, उस पर विधिवत थाना को भेजा जा रहा है और थाना से फिर एंट्री करके वो एसपी महोदय को आवेदन दिया गया है और फिर जैसा उनका आदेश होगा उस पर आवेदन।
12: कर्मियों पर 1000 के बाद दर्जन ने मांग किया है, आवेदन दिया गया है।
11: आवेदन में जो बातें इन्होंने लिखी है, चूंकि पुलिस अधीक्षक के नाम से इंदौर से आवेदन और आवेदन हम लोगों ने दे दिया है विधिवत, इसको थाना को पूरे एसपी महोदय पे जाएगा, इसके बाद से एसपी महोदय उस पर जैसा निर्देश देंगे।
12: सड़क जाम हटा लिया गया आपका आश्वासन।
0: भोजपुर पुलिस का एक और कमाल भी देखिए, एनकाउंटर के फौरन बाद उन्होंने एक दूसरी प्रेस रिलीज जारी की थी। उसमें लिखा कि भरत ने पुलिस वालों के करीब आने पर उन पर गोलियां चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी भरत के पैरों पर गोलियां मारी। हालांकि इस प्रेस रिलीज को कुछ देर बाद ही भोजपुर पुलिस ने डिलीट कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि शायद पुलिस को एहसास हुआ कि सब कुछ फेसबुक पर लाइव चल रहा था और भरत ने फेसबुक लाइव के दौरान अपना तमंचा जमीन पर फेंक दिया था और इस दौरान उसने एक बार भी गोली नहीं चलाई। वो तो शुक्र है कि सारी तस्वीरें फेसबुक लाइव के जरिए कैमरे में कैद हो गई, वरना भरत के एनकाउंटर को लेकर भोजपुर पुलिस न जाने क्या क्या कहानियां गढ़ रही। हालांकि कचोटने वाला सवाल ये कि ये जानते हुए भी कि भरत मानसिक रूप से बीमार है, तो फिर उसका एनकाउंटर क्यों किया गया? क्या भोजपुर के आला पुलिस अफसर या बिहार के डीजीपी और मुख्यमंत्री इसका जवाब देंगे? सोनू कुमार सिंह, भोजपुर आज। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: फ्रांस में जब पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई तो पिछले 16 महीनों में रिश्तों पर जमी बर्फ कुछ यूं पिघली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब मीडिया के सवालों के जवाब देने लगे तो पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए।
5: इंडिया कैन डू एनीथिंग दे वांट विद अस, वी हैव द बेस्ट रिलेशनशिप, वी कैन नॉट बी क्लोजर देन वी आर। वुड यू से दैट? आई डोंट थिंक वी कैन बी एनी क्लोजर, बोथ हिम एंड आई and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer.
4: भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर आज तक के सवाल के जवाब में ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि वो हमेशा भारत के साथ खड़े हैं।
6: You said many a times that India has a great friend in United States, in Washington DC, in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India? The leader of India.
5: As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. And I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man.
4: PM Modi ne Trump ke samne teen Bharatiya navikon ki maut ka mudda bhi uthaya.
7: Excellency, aap jante hain ki maritime ki, trade ki duniya mein Bharat ke lakhon seafarers aaj duniya ke alag alag samundar mein अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
4: भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर जब सवाल हुआ तो ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि अगर कभी भारत पर संकट आया तो अमेरिका ढाल बनकर खड़ा रहेगा। वहीं पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया में ट्रंप के शांति के प्रयासों की भी तारीफ की।
8: राम गोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया और उन्होंने चिट्ठी लिया और हाथ जोड़ा, ये भी हाथ जोड़े, मुस्कुराए, अपना चल दिए राम गोपाल जी। तो चिट्ठी में क्या लिखा हो पता है?
9: क्या लिखा?
8: कि सीबीआई ने जो एफआईआर में खनन वाले में नाम अखिलेश जी का डाला है उसको बचाना है और गुमती रिवर फंड में जो परिवार का हमारे लड़के का है और शिवपाल जी का नाम है, लोगों को बचाना है और ये फला फला सांसद हैं, इनको आपके साथ हम भेज देते हैं, हम लोगों का जान बचा रहे हैं।
10: ये सब बकवास है। उन्होंने जबकि जो प्रचार कराया जा रहा है, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है नेताजी से लेकर के अखिलेश से लेकर के, अब सबको खतरा हो गया है समाजवादी पार्टी से।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: पेरिस में भारतीयों के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी, भविष्य को आकार दे रहा है भारत। पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुआ विकास, विश्व का भरोसेमंद सहयोगी बना भारत। झारखंड में भी कांग्रेस नहीं संभाल पाई अपना कुनबा, क्रॉस वोटिंग के चलते राज्यसभा चुनाव में मिली हार। एनडीए समर्थक परिमल नाथवानी विजयी, बीजेपी ने कहा राहुल की हार। उद्धव की सेना में फिर से बड़ी टूट, उनके 6 सांसदों का शिंदे गुट में शामिल होना लगभग तय। बागियों को भेजा गया कारण बताओ नोटिस। जून को नीट री एग्जाम के लिए एयरफोर्स ने कई शहरों में पहुंचाए प्रश्न पत्र। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी हाई लेवल मीटिंग की, तैयारियों की समीक्षा की। और रांची में आरएसएस ऑफिस पर हमले का आईएसआई कनेक्शन बेनकाब, पाक हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी अमन अंसारी, एडीएस को सौंपी गई जांच।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: छह सांसदों की बगावत से उद्धव गुट में खलबली, संसदीय दल की बैठक में नहीं आने पर कारण बताओ नोटिस जारी। बागी सांसदों को मिली वाई प्लस सुरक्षा, गृह मंत्रालय के निर्देश पर दी गई सुरक्षा, डीजीपी ने दी जानकारी। संजय राउत ने शिवसेना यूबीटी विधायकों को तोड़ने की अफवाह पर बीजेपी को दी चुनौती, कहा दगाबाजी नहीं करेंगे बर्दाश्त। शिवसेना यूबीटी में टूट की अटकलों के बीच संजय राउत, अरविंद सावंत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दल बदल की चर्चाओं पर पार्टी में एकजुटता का दिया संदेश। ऑपरेशन टाइगर पर मंत्री संजय शिरसाट का बयान, बोले अलग हुए 6 सांसदों के शिवसेना शिंदे गुट में आने पर निर्णय शिंदे लेंगे। नागपुर धर्मांतरण में एक और गिरफ्तारी, मदरसे में पढ़ाने वाला मोहम्मद मकसूद गिरफ्तार। मंत्रालय के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा, कर्ज माफी की मांग को लेकर पेड़ पर चढ़ गया किसान। गुजरात के 12 जिलों में प्री योग कार्यक्रम, जामनगर में 3 सेनाओं के साथ पुलिस के जवानों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की प्रार्थना, 3 मजदूर दबे। वडोदरा में 5 वर्ष की मासूम का अपहरण, नर्मदा नहर से मिला शव, आरोपी गिरफ्तार। अमेरिका ईरान ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए, यूएस ने नाकाबंदी हटाने, सैंक्शंस खत्म करने, ईरान को $300 अरब की मदद का वादा किया। S&P ग्लोबल ने चेतावनी दी, हॉर्मुज खुलने के बावजूद क्रूड सप्लाई सामान्य होने में 2 से 6 महीने लगेंगे, स्थिति सुधरने तक भारत में महंगाई बढ़ेगी। हेनली रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष दुनिया भर के लगभग 2.25 लाख करोड़पति अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में बसेंगे। सुरक्षा कम टैक्स यूएई और सिंगापुर पसंदीदा देश। CEEW के अनुसार देश में कुल तेल जरूरत का महज 9-10 दिन का भंडार। IEA ने हॉर्मुज खुलने के बाद 2027 में तेल की अधिक सप्लाई, ग्लोबल स्टॉक फिर से भरने का विश्वास व्यक्त किया। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने आईफोन समेत तमाम एप्पल प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ने की बात कही, मेमोरी चिप की भारी महंगाई के कारण ये बताया। वेलकम टू जंगल की रिलीज से पहले मां वैष्णो देवी के दरबार में दिखे अक्षय, मत्था टेका, आशीर्वाद लिया। वेलकम टू जंगल में सितारों के जमघट पर बोले सुनील शेट्टी, ये किसी एक इंसान के बारे में फिल्म नहीं, 20

इस धुरंधर एक्टर्स हैं फिल्म में। एक बार फिर हॉरर फिल्म का हिस्सा बनी जैकलीन, हॉरर फिल्म साइन करने का दावा। टीजर रिलीज कल हैदराबाद में लॉन्च होगा। अभिषेक नामा की पौराणिक फैंटेसी फिल्म नागबंधम का ट्रेलर 3 जुलाई को आएगी। मुंबई में द ओडिसी का ग्लोबल प्रीमियर, प्रमोशन के लिए हॉलीवुड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है मुंबई मेट्रो में आपका। लाख कोशिशों के बावजूद उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी शिवसेना यूबीटी को टूटने से नहीं बचा पाए। ऑपरेशन टाइगर के तहत 4 वर्ष में उनकी पार्टी 2 बार टूटने लगी। आज उद्धव ठाकरे ने अपने संसदीय दल की बैठक दिल्ली में बुलाई थी, जिसके लिए उन्होंने व्हिप भी जारी किया था, लेकिन इसमें भी 6 बागी सांसद नहीं पहुंचे, सिर्फ 3 सांसद ही बैठक में आए। अब साफ हो गया है कि बागी सांसद अलग गुट बनाकर शिंदे की शिवसेना में शामिल होंगे। अब शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ने बागियों से जवाब मांगा है।

0: अभी तक उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी में टूट की खबरों को किंतु परंतु के साथ कहा जा रहा था, लेकिन आज संसद भवन में शिवसेना यूबीटी के 9 लोकसभा सांसदों की मीटिंग में सिर्फ 3 सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा भाऊ वाजे ही पहुंचे। इससे साफ हो गया कि उद्धव अपनी पार्टी दोबारा टूटने से बचा नहीं पाए। और जैसी चर्चा थी, यूबीटी के 6 बागी सांसदों ने व्हिप जारी होने के बावजूद मीटिंग से दूरी बनाए रखी।
1: उन्होंने सांसदों की बैठक बुलाई थी 11, उसमें लोकसभा के 3 सांसद उपस्थित थे, अरविंद सावंत जी, राजा भाऊ, अनिल देसाई और मैं राज्यसभा से था, लेकिन लोकसभा के लिए महत्वपूर्ण बैठे, तो 3 सदस्य रहे। बाकी जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी हित का उल्लंघन है, एकदम पार्टी का आदेश नहीं माना है, तो अभी उस मुताबिक हम उस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है, उनको सौंपा दिया जाएगा।
0: सूत्रों का दावा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के 6 गैर हाजिर सांसद संजय जाधव, भाऊ साहेब वाकचौरे, ओम राजे निम्बालकर, संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख और नागेश पाटिल अष्टीकर ने एक अलग ग्रुप बना लिया है और स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र सौंपा है।
2: उद्धव बाला साहेब ठाकरे ग्रुप ने अपनी एक मीटिंग बुलाई थी दिल्ली में, लेकिन जहां 9 सांसदों को आना था वहां से पहुंचे 3, और यही वजह है कि 6 सांसदों की जो नदारद रहे हैं उसके बाद सब लोग उन्हें संपर्क करने की जरूर कोशिश कर रहे थे। इस वक्त देख लीजिए, संजय दीना पाटिल जो इस वक्त मातोश्री में दरअसल आए थे रविवार को, ये आप देख लीजिए, उनको हम लोगों ने भी सवेरे से ट्राई किया, यूबीटी के भी लोग जाहिर सी बात है वो भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये फोन नहीं उठा रहे हैं।
0: सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजय जाधव बागी सांसदों का नेतृत्व करेंगे। अब यूबीटी ने बागी सांसदों से जवाब मांगा है।
3: ये जो आज सदस्य उपस्थित नहीं रहे वो हम समझते पक्षद्रोह है, क्योंकि हमारे पार्टी का पक्षादेश निर्गमित हुआ था, उन सभी को मिला था, उसके बावजूद वो आज यहाँ उपस्थित नहीं रहे, तो आज हमने उनको शोकॉज नोटिस जारी करने वाले हैं। नोटिस प्राप्त होते ही 7 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं आया उसके आगे
4: क्या कार्रवाई
3: की जाएगी, तो हमने जो नोटिस दी, हमने जो चिट्ठी लिखी सभी सार्वजनिक कर दिया ना, तो उनका क्यों नहीं करते? तो चोरी छुपके करने वाले लोग, उनको पता है कि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं।
0: शिवसेना यूबीटी ने साफ कर दिया है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर बागी सांसदों को सजा मिलेगी। वहीं उद्धव के करीबी संजय राउत ने बागियों को चेतावनी दी है कि जब गद्दारी करने वाली ये सांसद अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो उन्हें शिवसैनिकों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ेगा।
1: अब जो नहीं आए हैं वो कहाँ है, उनका आता पता क्या है, क्या शिंदे के लोगों ने गुंडे लोग आए, क्या किडनैप किया है, उनके पास सरकार किडनैप करके कहाँ उनको छुपाया है, क्या उनका जिंदगी का जीवन को कोई खतरा है उनके, अब देखना पड़ेगा ना। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, उनको घर में रहना मुश्किल होगा, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए, जाए वो, अगर वो जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा। गुनेगार सुप्रीम कोर्ट भी है देश में, लोकतंत्र का जो धज्जिया उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनेगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग।
0: सुना आपने, पार्टी में टूट से खिसे आए संजय राउत कैसे सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के खिलाफ भड़ास निकाल रहे हैं। इससे पहले 17 जून को राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के खिलाफ अश्लील भाषा का इस्तेमाल भी किया था।
1: ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है।
0: अब शिंदे की शिवसेना संजय राउत को दिमाग का इलाज कराने की नसीहत दे रही है।
5: संजय राउत अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं, मारपीट की बात करते हैं जो महाराष्ट्र की संस्कृति सभ्यता में है ही नहीं। जब आपको इतनी आपत्ति हो रही है तो शायद आपको आत्म परीक्षण करना चाहिए कि आपके आमदार, खासदार, नगर सेवक आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं। ये तो आप खैर करेंगे ही नहीं। जो अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया है आपने, आपके ही कार्यकर्ता के लिए स्वाभाविक है कि वो आपको छोड़ेंगे। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे की जो लोकप्रियता है कि हर दिन पक्ष प्रवेश होता है, हर कार्यकर्ता खुश है उनके काम से, खैर आप ये नहीं समझ पाएंगे। अब आपको एक सलाह है कि आपके मानसिक संतुलन के लिए ठाणे मेंटल हॉस्पिटल में आपके लिए जगह रखा है।
0: गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के डीजीपी को बागी सांसदों और उनके घर की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है।
6: देखो उपाध्याय की बैठक में 6 सांसद जो गैर हाजिर हुए, इसका मतलब अब उन्होंने अपना अलग से गुट बना लिया है। वो शायद ओम बिरला के पास उन्होंने राइटिंग में डीए दे भी चुके हैं। उसके बाद अब ओम बिरला उनको लीगली गट को मान्यता देंगे ऐसा मुझे लगता है, और उसका जब लेटर आएगा वो अधिकृत उनका गुट स्थापन करेंगे। उसके बाद उनको कौन से पक्ष में जाना है, कहाँ रहना है, ये वो 6 खासदार वो डिसाइड करेंगे। अगर वो हमारे तरफ आना चाहते हैं तो उसका निर्णय एकनाथ शिंदे साहब लेंगे। एकनाथ शिंदे साहब जो भी निर्णय लेंगे वो हमको सबको मंजूर रहेगा।
0: इस बीच शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शरद पवार के विधायक रोहित पवार ने आरोप लगाया है कि इन सांसदों को 85 करोड़ में खरीदा गया है।
7: वेस्ट बंगाल में 50 करोड़ के आसपास आंकड़ा वहाँ पे हम सुन रहे हैं और बहुत अच्छे सोर्स के माध्यम से हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आई है। उसी के साथ महाराष्ट्र में 85 करोड़ का वहाँ पे चर्चा है, उसमें से 35-40 करोड़ एडवांस में वहाँ पे दिए गए, इसीलिए लेट थोड़ा सा हो गया, नहीं तो शायद 10 दिन पहले ही इसमें से बहुत सारे खासदार छूट सकते थे।
0: शिवसेना सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन टाइगर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और जल्द ही एकनाथ शिंदे खुद इसका आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं। हालांकि शिंदे दिल्ली में डील डन करके मुंबई लौट गए हैं। ये भी खबर है कि सुरक्षा कारणों से बागी सांसदों को दिल्ली से बाहर भेज दिया गया है और वो 20 या 21 जून को शिंदे कैंप में शामिल हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 19 जून को होने वाली शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस में बागी सांसद शिंदे के मंच पर मौजूद रह सकते हैं। इस पूरे ऑपरेशन टाइगर से शिंदे का कद बीजेपी आला कमान और एनडीए में भी काफी बढ़ गया है।
8: भले ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने ऑपरेशन टाइगर की अधिकृत घोषणा अब तक नहीं की हो, लेकिन आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बुलाई संसदीय दल की बैठक के बाद ये तो तय हो गया है कि उनकी पार्टी से 6 सांसद अब नदारद है। हालांकि इसका बहुत बड़ा झटका महाराष्ट्र के राजनीति में उद्धव की सेना पर पड़ते नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही इसने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी अतिरिक्त ताकत बहाल कर दी है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
9: ऑपरेशन टाइगर के बीच कल यानी 19 जून को शिवसेना के दोनों गुट पार्टी का 60वां स्थापना दिवस मनाएंगे, जहां शिंदे गुट में जीत का जश्न मनाया जाएगा तो उद्धव गुट के बचे खुचे खेमे में मायूसी दिखेगी। शिवसेना ने उद्धव के घर मातोश्री के बाहर बैनर होर्डिंग और पोस्टर्स के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया। कल एकनाथ शिंदे गुट इसे गोरेगांव में मनाएगा, जबकि उद्धव ठाकरे शिवसेना दादर में स्थापना दिवस मनाएगी। मातोश्री के बाहर यूबीटी के कुछ ही पोस्टर दिख रहे हैं, वहीं पूरा इलाका शिंदे के पोस्टर से पटा पड़ा है।
2: 19 जून शिवसेना पार्टी के लिए बेहद अहम दिन है, क्योंकि 60 साल पहले ये पार्टी इसी दिन एग्जिस्टेंस में आई थी और 2022 में जब ये पार्टी स्प्लिट हुई उसके बाद दोनों ही फैक्शंस अपने अपने रूप से इसको मनाते आए हैं। इस वक्त हम हैं मातोश्री के बाहर और यहाँ आप देख लीजिए बड़े बड़े पोस्टर एकनाथ शिंदे गुट ने लगाए हैं। एक तरह से कह लीजिए तो पोस्टरों का शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। यूबीटी ग्रुप ने भी अपने पोस्टर्स लगाए हैं, लेकिन उनके पोस्टर गिने चुने छोटे छोटे बाहर मातोश्री के बाहर लगे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट के देख लीजिए वहां पर बलून लगा हुआ है। ये बड़े होर्डिंग हर फ्लाईओवर पर लगे हैं, एक भी पोल ऐसा नहीं छोड़ा है जहां पर कि उनके पोस्टर नहीं लगे हैं, और यही दर्शाता है कि किस तरह से ऑपरेशन टाइगर के तहत ये जो गुट है वो अपना जो शक्ति प्रदर्शन है उसको और बड़ा करने के लिए, जो एनडीए है उसमें अपने आप को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए ये ऑपरेशन टाइगर कर रहा है। और यही वजह है कि अब अगले कुछ दिन जब पार्टी को अपना एक जो लेटर है उसको साबित करना है कि कैसे उनके गुट में यूबीटी के टूट के लोग आए हैं, ये इनके लिए बहुत अहम है। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
9: महादेव बैटिंग ऐप सिंडिकेट केस से ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने इबिक्स इंक के चेयरमैन विकास गर्ग की 900 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी को प्रोविजनल तौर पर अटैच कर दिया। गर्ग के परिवार की दिल्ली, गोवा, नैनीताल और दूसरी जगहों पर मौजूद 12 संपत्तियों को भी जांच के दायरे में ले लिया।
10: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय का एक बड़ा एक्शन हुआ है महादेव बेटिंग ऐप सिंडिकेट केस में। आपको बता दें 900 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जो कि इबिक्स इंक कंपनी के जो चेयरमैन हैं विकास गर्ग और उनके परिवारजनों की प्रॉपर्टीज अटैच की गई है। आपको बता दें अधिकतर प्रॉपर्टी जो है वो शेयर्स के फॉर्म में है और ये शेयर्स हैं इराया लाइफ स्पेसेस लिमिटेड कंपनी के, जो विकास गर्ग और उनके परिवार की कंपनी है। इराया लाइफ स्पेसेस लिमिटेड ये वही कंपनी है जिसकी इबिक्स इंक एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडियरी कंपनी है, और जो पैसे महादेव इलीगल बेटिंग ऐप सिंडिकेट के थ्रू कमाए जा रहे थे वो पैसे अपनी कंपनियों में लगाकर उसे इन्वेस्ट करते थे विकास गर्ग, ये ईडी को इन्वेस्टिगेशन में पता चला। आपको बता दें कि महादेव बेटिंग ऐप सिंडिकेट के मास्टरमाइंड हरिशंकर टिब्रेवाल वो विकास गर्ग के एसोसिएट हैं, विकास गर्ग उनके साथी हैं और विकास गर्ग को हरिशंकर टिब्रेवाल एफडीआई एफपीआई और बॉन्ड के तहत जो बेटिंग ऐप द्वारा कमाए गए पैसे हैं वो पैसे अपनी कंपनियों में इन्वेस्ट करते थे। फॉरेन से वो पैसे एफपीआई एफडीआई और बॉन्ड के तहत इन्वेस्ट किए जाते थे, भेजे जाते थे और उन पैसों को महादेव ऐप के जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे उसे इन्वेस्ट किया जाता था विकास गर्ग की कंपनियों में। ये भी शक था कि शेयर प्राइस मैनिपुलेशन विकास गर्ग करते थे बहुत से कंपनियों के शेयर में, जिसके लिए सेबी को भी इन्फॉर्म किया गया था, सेबी को अलर्ट किया गया था एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब 12 प्रॉपर्टीज जिसमें विकास गर्ग का घर, बहुत से ऑफिसेज गोवा, दिल्ली और नैनीताल में हैं, उन्हें अटैच किया गया है और इसके अलावा 893 करोड़ रुपए के शेयर्स इराया लाइफ स्पेसेस लिमिटेड के जो शेयर्स हैं इन्हें अटैच कर लिया गया है। कैमरा पर्सन अजय के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
9: मुंबई में पानी की कमी के कारण रियल एस्टेट में लेबर की कमी हो रही है, अल नीनो के कारण से मॉनसून की बारिश में देरी और मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली 7 झीलों में पानी का स्तर कुल क्षमता का 10% तक गिर गया, जिसके कारण बीएमसी ने मुंबई के करीब 10,000 से अधिक कंस्ट्रक्शन साइट्स और स्विमिंग पूल्स को पानी की सप्लाई रोक दी। इसके अलावा स्पोर्ट्स क्लब्स, इंडस्ट्रियल कमर्शियल जगहों को पानी की सप्लाई में 20% की कमी कर दी।
11: बीएमसी ने कंस्ट्रक्शन साइट्स को पानी बंद करने का फैसला लिया है। इस वक्त अंधेरी वेस्ट वर्सोवा में हम कोलते पाटिल की साइट पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो शुरू है, लेकिन किस तरह का इम्पैक्ट बीएमसी के डिसीजन का रहेगा इस पर बात करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर अर्पित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि बीएमसी का पानी जो है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे किस तरह किस वजह से इस्तेमाल किया जाता है, किस पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है और जो पानी रोका गया उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा।
12: जनरली बीएमसी का जो वाटर है वो लेबर्स के लिए ड्रिंकिंग और बेदिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और उसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर ड्रिंकिंग और वाटर उनको हम लोग कंस्ट्रक्शन वाटर जो रहता है बाकी काम कंस्ट्रक्शन वाटर से होता है, अगर हमारा ये बीएमसी पानी रोक देंगे तो ये लेबर्स का इम्पैक्ट आएगा। पहले ही एलपीजी क्राइसिस की वजह से हमारा लेबर्स का ऑलरेडी शॉर्टेज है जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। अगर यहाँ पे अगर ये बीएमसी हम लोगों का पानी अगर रोक देगा तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन रीडेवलपमेंट सोसाइटी है उसका हमारा रीडेवलपमेंट पे भी असर होगा और प्रोजेक्ट डिलेज होंगे। तो हमारा बीएमसी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको कंसिडर करिए क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, हम लोग लेबर्स के लिए मांग रहे हैं, बाकी चीज़ों के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन वाटर यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू।
11: तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में जितना भी पानी लगता है उसका 5% या 10% ही बीएमसी रिलेटेड है, लेकिन वो वर्कर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उस तरह से अगर आपके पास टैंकर का पानी आता है प्रोजेक्ट चालू रखना भी चाहते हैं, अगर वर्कर्स नहीं रुकेंगे तो काम नहीं हो पाए।
12: यस डेफिनेटली, अगर लेबर्स हमारा लेबर्स ही हमारा मेन स्ट्रेंथ रहता है, अगर मशीन्स है उसके साथ साथ भी लेबर्स हमारा यूज होता है और अगर लेबर्स ही नहीं रहेंगे तो उसका ऑब्वियसली हमारा कंस्ट्रक्शन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। इसीलिए बीएमसी से रिक्वेस्ट है प्लीज इसे रिकंसिडर करिए और इस बारे में सोचिए क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी हम लोग चाहते हैं कि जो लेबर्स आ रहे हैं उनको एटलीस्ट बीएमसी का वाटर सप्लाई हो बेदिंग और ड्रिंकिंग पर्पज के लिए।
11: बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बीएमसी के पास 7-10% ही वाटर स्टॉक होने की वजह से कंस्ट्रक्शन साइट पे कंप्लीटली पानी बंद किया गया है और आज से इसका असर कंस्ट्रक्शन साइट पे दिखना शुरू हो गया, लेबर्स को

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: स्वागत आपका एक बार फिर से मुंबई मेट्रो में। पुणे में एक महिला के शोषण का मामला सामने आया। पुलिस ने एक बंगले पर छापा मारा, आरोपी राधा मोहन को गिरफ्तार किया। शिकायत मिली थी कि आरोपी 15 वर्ष से एक महिला का यौन शोषण और उसका मानसिक उत्पीड़न कर रहा था। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 8 अन्य को भी गिरफ्तार किया। इन लोगों को ये आरोपी बताया करता था कि उसके पास मौजूद ईश्वरीय शक्तियों से वो किसी भी समस्या का समाधान करता है। पुलिस ने करीब 6.5 लाख रुपए कैश, 15 लाख रुपए की ज्वेलरी और कई दवाइयां इस ढोंगी बाबा के पास से बरामद की।
2: लगभग 15 साल बाबा ने महिला का उत्पीड़न किया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसे गाली गलौज की, मारपीट होती थी और बाबा के आश्रम में जहां ग्राउंड फ्लोर है वहां भी उसके साथ बार बार संबंध बनाने की कोशिश की है, यही आरोप हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि इस पूरे मामले में लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें से 6 महिलाएं हैं। तो पुलिस अब तहकीकात कर रही है कि एग्जैक्टली वहां बंदूक और गोलियां कैसे आई और अगर आश्रम था तो अलग अलग तरीके की दवाइयां वहां किस तरीके से लाई गई, अब सभी की तहकीकात शुरू है। कैमरा पर्सन गोपाल हादे के साथ ओमकार वाबले, आज तक पुणे।
1: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: दस लाख कैश, 40 लाख का प्लॉट, 1.5 करोड़ की जमीन, महंगी लग्जरी कार, 3 महंगे आईफोन, 2.98 करोड़ की नकदी, करोड़ों का सोना और न जाने क्या क्या अफवाहें उड़ रही हैं कि संदिग्धों की इतनी संपत्ति का पता चल रहा है। लेकिन अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 2 दिनों की जांच के बाद अभी तक किन संदिग्धों पर शक बढ़ा है, किन आरोपियों की संपत्ति जांच के दायरे में है, इसका आधिकारिक बयान न तो ट्रस्ट की ओर से आया है और न जांच एजेंसियों की ओर से। फिर भी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर रहे चिन्नू यादव का ही नाम आखिर क्यों सबसे ऊपर लिया जा रहा है? आरोप है कि ऑटो चलाने वाले टिन्नू के पास 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, वो टिन्नू अपनी सफाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि जब राम मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावा चोरी मामले में संदिग्धों के अंदर बंसल है, मिश्रा है, दुबे हैं, पाठक हैं, तो सबसे ज्यादा चर्चा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की ही क्यों हो रही है? पूनम यादव रुआंसी होकर बताती है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जब बड़े बड़े चेहरे हैं तो सिर्फ टिन्नू यादव पर ही निशाना क्यों? टिन्नू की पत्नी कहती है कि ये कुछ नहीं, सिर्फ उनके पति को मंदिर से निकालने की साजिश हो रही है। मतलब मामला अब पीडीए वाली राजनीति की तरफ बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि जिस राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच को लेकर अखिलेश यादव जोर शोर से मांग कर रहे थे, वो अब एसआईटी गठन पर खुश नहीं है। लगे हाथ अखिलेश ये भी ऑफर करते हैं कि किसी भी जाति के पीड़ित अगर खुद को बीजेपी से जुड़कर अपमानित महसूस कर रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी में आ जाए।
1: उसे कहिए कि क्यों नाराज हो, समाजवादी पार्टी में आइए।
0: टिन्नू यादव के परिवार का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में यादव जाति का होने की वजह से ही उनको अपमानित किया जा रहा है, जबकि पैसा चोरी करते पकड़े गए लड़कों का कोई जिक्र तक नहीं कर रहा। इस पूरे मामले में संदिग्ध तमाम है, नोट गिनने वालों से लेकर जमा करने वालों तक की तफ्तीश चल रही है। फिलहाल एसआईटी की जांच का 3रा दिन है और अगले 4 दिनों में अंतरिम रिपोर्ट आएगी तो संदिग्धों का पता चल जाएगा। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।

0: पेरिस में भारतीयों के बीच बोले पीएम मोदी, भविष्य को आकार दे रहा है भारत। पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुआ विकास, विश्व का भरोसेमंद सहयोगी बना हिंदुस्तान। झारखंड में भी कांग्रेस नहीं संभाल पाई अपना कुनबा, क्रॉस वोटिंग के चलते राज्यसभा चुनाव में मिली हार। एनडीए समर्थित परिमल नाथ वाणी विजयी, बीजेपी ने कहा राहुल की हार। उद्धव की सेना में फिर से बड़ी टूट, उनके 6 सांसदों का शिंदे गुट में शामिल होना तय, बागियों को भेजा गया कारण बताओ नोटिस। 21 जून को नीट री एग्जाम के लिए एयरफोर्स ने कई शहरों में पहुंचाए प्रश्न पत्र, धर्मेंद्र प्रधान ने हाई लेवल मीटिंग की तैयारियों की शिक्षा मंत्री ने समीक्षा। और रांची में आरएसएस ऑफिस पर हमले का आईएसआई कनेक्शन, पाक हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी अमन अंसारी, एटीएस को सौंपी गई जांच।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि युद्ध में जीत किसकी हुई, उसकी जो ज्यादा बम गिराता है या उसकी जीत होती है जो अंत में अपना राजनीतिक मकसद हासिल कर लेता है। अमेरिका और ईरान के बीच आज जो कुछ भी हुआ उसने युद्ध और कूटनीति की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख दिया है। आज जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक वर्चुअली समझौते पर हस्ताक्षर किए तो दुनिया की नजर सिर्फ दस्तावेज पर नहीं बल्कि पेजेश्कियान के पीछे लगी उस दीवार पर थी। वो दीवार जो चीख चीख कर कह रही थी कि अमेरिका ने भले ही आयतल्ला खमेनेई को मार दिया हो लेकिन वो इस्लामी क्रांति की उस विचारधारा को नहीं डिगा पाया जो 1979 से अमेरिका को चुनौती दे रही है। तो आखिर क्या था उस दीवार पर, हम आपको दिखाएंगे। इतिहास की विडंबना देखिए, आज से ठीक 6 साल पहले खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि ईरान ने कभी कोई युद्ध जीता नहीं और कभी कोई बातचीत हारी नहीं। आज इतिहास ने ट्रंप के उसी वाक्य को सच साबित कर दिया। सैन्य मोर्चे पर तबाह होने के बाद भी ईरान बातचीत की टेबल पर महाविजेता बनकर उभरा है। इस डील के तहत ईरान को $300 बिलियन यानी करीब 28,29,000 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा जिसे अमेरिका नहीं बल्कि खाड़ी के मुस्लिम देश चुकाएंगे। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई कोई शांति समझौता है या फिर से खुद को सुपर पार कहने वाले अमेरिका की नैतिक रूप से हार का दस्तावेज है। और इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश की सियासत का बदलता हुआ समीकरण दिखाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा देकर बंपर सीटें जीतने वाले अखिलेश यादव को क्या अब लग रहा है कि यह नारा अधूरा है और उन्हें लग रहा है कि बिना ब्राह्मणों को साधे 2027 को साध पाना मुमकिन नहीं है। आज आपको बताएंगे कि अखिलेश के पीडीए में पी फॉर पिछड़ा है या पी फॉर पंडित। और आखिर में आपको बताएंगे कि आपके बच्चे को लगी सोशल मीडिया की लत के लिए आपकी परवरिश जिम्मेदार है या सोशल मीडिया कंपनीज का खतरनाक एल्गोरिथम। इटली में एक मां ने अपनी 12 साल की बेटी की खुदकुशी के बाद मेटा और टिकटॉक जैसी दिग्गज कंपनीज पर केस ठोक दिया है। आज ये समझना काफी जरूरी है कि सोशल मीडिया के इस डिजिटल ड्रग्स के मामले में कसूरवार सिर्फ बच्चों और माता पिता को क्यों माना जाए, सोशल मीडिया के कंटेंट उसके एल्गोरिदम को क्यों नहीं। लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इस तस्वीर से करना चाहते हैं क्योंकि यह तस्वीर ईरान युद्ध में हार और जीत का नतीजा बता रही है। आज जब राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने वर्चुअली एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए तो दुनिया की नजर सिर्फ इस दस्तावेज पर नहीं थी बल्कि उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये तस्वीर थी जो कैमरे के फ्रेम में एक अलग ही कहानी को बयां कर रही थी। इसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के पीछे दीवार पर लगी ये तस्वीरें देखिए। अमेरिका बार बार ये दम भर रहा था ना कि वो ईरान पर रिजीम चेंज के लिए अटैक कर रहा है लेकिन क्या वो हो पाया। तो देखिए इस तस्वीर को, इसमें इस्लामिक क्रांति के संस्थापक रोहल्ला खमेनेई, पूर्व सुप्रीम लीडर अली आयतल्ला खमेनेई और वर्तमान सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनेई नजर आ रहे थे और यह कोई संयोग नहीं था बल्कि एक सोचा समझा संदेश था। अमेरिका ने इस युद्ध में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि आयतल्ला खमेनेई की मौत को बताया। वॉशिंगटन डीसी के लिए यह डीकैपिटेशन स्ट्राइक थी यानी नेतृत्व को खत्म करके प्रतिरोध की रीढ़ तोड़ देना, लेकिन ईरान ने उसी क्षण कैमरे के जरिए एक अलग कहानी सुनाई। ईरान इस तस्वीर के जरिए कह रहा था कि आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया लेकिन उस विचार को नहीं मार सके जिसने 1979 की इस्लामी क्रांति को जन्म दिया था। इसमें रोहल्ला खमेनेई की तस्वीर इस्लामी क्रांति का प्रतीक थी, आयतल्ला खमेनेई की तस्वीर प्रतिरोध की निरंतरता का प्रतीक थी और मुश्तबा खमेनेई की तस्वीर यह बता रही थी कि सत्ता और विचारधारा दोनों का उत्तराधिकारी अब भी जारी है, जिंदा है और रिजीम चेंज का सपना धूमिल हो गया। युद्धों में हमेशा यह सवाल कहा जाता है कि जीत किसकी हुई, क्या कोई जीतता है कोई हारता है, उसकी जिसने ज्यादा बम गिराए उसकी जीत हुई या उसकी जीत हुई जिसने अपना राजनीतिक उद्देश्य हासिल किया। अमेरिका ने सैन्य स्तर पर ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया, उसके परमाणु कार्यक्रम, सैन्य ढांचे, नेतृत्व को निशाना बनाया। लेकिन अंततः उसे उसी ईरानी राज्य के साथ समझौते की मेज पर बैठना पड़ा जिसे वह झुकाना चाहता था। और यही कारण है कि ईरान के लिए यह दीवार सिर्फ तस्वीरों की दीवार नहीं थी बल्कि यह एक घोषणा थी, ऐसी घोषणा जिसमें ईरान यह बता रहा था कि इस युद्ध को उसने जीत लिया है और नैतिक रूप से खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका को झुका दिया है। देखिए,
1: Yes.
2: Yep. Bravo.
1: How about we'll keep the pen with it? Yeah. We'll keep the other guy. We can
3: push the other side. Good job.
1: Good job.
3: Thank you.
1: Thank you, everybody.
3: Great job.
2: Bravo.
0: हमारे देश में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी इंसान के मुंह से निकली बात भविष्य की आहट बन जाती है, लेकिन ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हो जाएगा इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वैसे एक मशहूर इंटरव्यू है डोनाल्ड ट्रंप का, जब वो राजनीति में नहीं आए थे तब का इंटरव्यू बता रही हूं। इस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अगर वो एक बिल्डर नहीं होते तो क्या होते। जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अमेरिका का राष्ट्रपति। वो दिन भी आया। उनके इस इंटरव्यू को विश्व में कई लोगों ने देखा, समझा, बार बार वो वायरल भी होता है। जो उन्होंने एक वक्त पर कहा था वो सच हुआ। लेकिन अब देखिए, आज से 6 साल पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 जनवरी 2020 को एक्स पर लिखा था कि ईरान ने कभी कोई युद्ध जीता नहीं और कभी कोई बातचीत हारी नहीं। आज 6 साल बाद ऐसा लगता है कि इतिहास ने जैसे उसी वाक्य को फिर से जीवित कर दिया। आज जिस आपसी समझ के दस्तावेज पर अमेरिका और ईरान ने हस्ताक्षर किए उसकी 14 शर्तों को पढ़कर ऐसा लगता है कि ईरान बातचीत की टेबल पर इस युद्ध को आसानी से जीत गया। ईरान ने ना सिर्फ अपनी ज्यादातर मांगे मनवा ली हैं, बल्कि समझौते में यह शर्त भी शामिल रही कि ईरान के लिए $300 बिलियन का एक फंड बनाया जाएगा। और ये बात जब बाहर आई तो इस पर खूब सवाल उठे। एक पत्रकार ने तो फ्रांस में राष्ट्रपति ट्रंप से ये सवाल पूछ लिया कि वो कौन सा ज्ञानी पुरुष है जिसने साल 2020 में ही कह दिया था कि ईरान युद्ध हारता है और बातचीत में वो जीत जाता है। और जानते हैं, ये पूछने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को याद ही नहीं था कि ये बात 6 साल पहले उन्होंने खुद ही लिखी थी। तो उन्होंने पूछा जर्नलिस्ट से कि कौन था, तो उन्होंने बोला महाशय आप ही थे। सुनिए।
4: A wise man once said in January of 2020, Iran never won a war, but never lost a negotiation. That wise man.
5: Who said that?
4: Donald Trump.
5: Oh, that's what I thought you were going to say.
4: So how do you go back to the United States and convince a skeptical American public that this deal
5: well,
4: is a win?
5: Well, look, here they lost militarily, okay? It's very tough because I know that no matter what, if I would go, by the way, if I'd go another 3 or 4 weeks, those same people that are critical would say, he went too long, he should have done, you know, no matter what. If they raised the white flag of surrender, and if they said, praise be to Allah, Donald Trump is the greatest president ever, we totally concede, we totally give up, this war is over, we have failed. The New York Times and CNN and a couple of others are not all that dishonest. They'd say, Iran had a great victory, okay?
0: अब आप ये देखिए कि इस डील से ईरान को क्या मिला, अमेरिका को क्या मिला और दुनिया को क्या मिला। डोनाल्ड ट्रंप को तो आपने देखा ही, उस सवाल में वो फंस गए। तो ईरान, उसे अब अपना कच्चा तेल बेचने की खुली छूट होगी। अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को निलंबित किया जाएगा, यानी ये युद्ध हुआ और जो बैन पहले से भी लगे हुए थे वो बैन अब अमेरिका हटा रहा है। फायदा किसको? एडवांटेज ईरान। इससे ईरान को हर साल अरबों डॉलर की कमाई होगी। और सबसे बड़ी बात, ईरान को अपना कच्चा तेल चोरी छिपे या सिर्फ चाइना को नहीं बेचना होगा, वो अब किसी को भी बेच सकता है। दूसरा, आर्थिक प्रतिबंध हटने से ईरान में दुनिया की बड़ी कंपनियां निवेश कर पाएंगी और उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल होने का मौका मिलेगा। एडवांटेज ईरान। तीसरा, विदेशों में फंसी ईरान की संपत्तियों को रिलीज किया जाएगा। एडवांटेज ईरान। पूरी दुनिया में ईरान के पास ऐसी 100 बिलियन डॉलर की संपत्ति है जिसे उसने कच्चा तेल बेचकर कमाया था, लेकिन अमेरिका प्रतिबंधों के कारण ये सारी संपत्ति अभी तक फ्रीज कर चुका था, फ्रोजन एसेट्स में उसे तब्दील कर दिया था। फ्रोजन एसेट्स का मतलब होता है जो पैसा, जो संपत्ति जब्त कर ली जाए। लेकिन अब इस डील के बाद ईरान को उसका ये फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। चौथा, ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 300 बिलियन डॉलर का फंड बनाया जाएगा जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। और पांचवा, अमेरिका ईरान को इस बात के लिए बाध्य नहीं करेगा कि वो हिजबुल्ला और हूती जैसे अपने प्रॉक्सी संगठनों की मदद ना करे। कम से कम अगले 60 दिनों तक ईरान पर ऐसा कोई दबाव नहीं होगा और ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। इसराइल अभी लेबनान में हिजबुल्ला से ही लड़ रहा है जो उसका प्रॉक्सी संगठन है। इसके अलावा इस डील के तहत अमेरिका ने अपने नेवल ब्लॉकेड को हॉर्मूज के पास से हटाने का फैसला किया है जिसके लिए 30 दिन का वक्त निर्धारित हुआ। एडवांटेज ईरान। अब ये देखिए कि अमेरिका को क्या मिला। पहला, हॉर्मूज खुलने से वैश्विक तेल बाजार स्थिर होगा और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव कम होने से अमेरिका में लोगों की नाराजगी कम होगी। हालांकि एक बार फिर से याद दिला दें आपको भी और अमेरिका को भी कि यह हॉर्मूज पहले खुला हुआ था, युद्ध के पहले खुला हुआ था, युद्ध की वजह से बंद हुआ और अब खुलने पर बताया जा रहा है कि अमेरिका के लिए जीत है। दूसरा, अगले 60 दिनों में ईरान अमेरिका को यह गारंटी देगा कि वो भविष्य में कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। एडवांटेज अमेरिका। तीसरा, ईरान को अपने यूरेनियम को डाइल्यूट करना होगा जिससे वो इस यूरेनियम से परमाणु हथियार ना बना पाए। चौथा, राष्ट्रपति ट्रंप इस डील को यह कहते हुए अपनी राजनीतिक जीत बता सकते हैं कि उन्होंने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका, शांति स्थापित की। और पांचवा, इससे अमेरिका को ऐसा नया परमाणु समझौता बनाने का मौका मिलेगा जिसे वो 2015 के समझौते से बेहतर बना सकता है और ज्यादा सख्त बना सकता है। ये 2015 का वही समझौता है जो तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ किया था और जिसे 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप ने रद्द कर दिया था। अब ये देखिए कि दुनिया को क्या मिला। तो पहला, हॉर्मूज को उसी स्वरूप में खोला जाएगा जिस स्वरूप में ये युद्ध से पहले था। दूसरा, इससे दुनिया के लिए तेल और गैस का संकट कम होगा, खासकर भारत का जो 35-40% तेल हॉर्मूज से आता था उसमें अब कोई रुकावट नहीं आएगी। हालांकि अभी इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये सप्लाई चेन्स वापस से नहीं शुरू होते हैं। तीसरा, हॉर्मूज में अगर 20% कच्चे तेल की आपूर्ति बहाल होती है तो इससे वैश्विक महंगाई का दबाव कम हो सकता है और इसके आपके लिए भी ये जरूरी है। भारत में थोक महंगाई दर मई महीने में 9.68% रही जो युद्ध से पहले 2.1% थी। और चौथा, इससे हॉर्मूज में नाविकों और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और जहाजों पर अब हमले नहीं किए जाएंगे। अब ये देखिए कि इस डील को लेकर खतरे क्या क्या है। सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि इसमें लेबनान को भी शामिल किया गया है जिसके कारण आशंका यह है कि अगर लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच लड़ाई जारी रहती है तो पूरा समझौता खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू फिलहाल मानने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। दूसरा खतरा यह है कि इसराइल इस समझौते का हिस्सा नहीं है। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था ना, ये युद्ध लड़ रहे थे। अब इसकी वजह से इसराइल के कई नेता आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी जंग अभी खत्म नहीं हुई है, तो फिर इस एमओयू पर खतरा है। तीसरा खतरा यह है कि इस डील को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच गहरे मतभेद दिख रहे हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की ही रिपोर्ट है जिसके मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच तनाव बढ़ा है जिससे इस एमओयू को खतरा हो सकता है। और चौथा खतरा यह है कि अभी फाइनल डील पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं जो कानूनी रूप से अगर आप देखें तो बाध्यकारी होता ही नहीं है, लीगल बाइंडिंग नहीं है। पूरी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अगले 60 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच व्यापक परमाणु समझौता हो पाता है या नहीं हो पाता है। अब इस डील को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान को 300 बिलियन डॉलर मिलेंगे कैसे और यह पैसा देगा कौन। 300 बिलियन डॉलर का मतलब है 28,29,000 करोड़ रुपए, छोटी मोटी रकम नहीं है। मौजूदा वक्त में ईरान की कुल अर्थव्यवस्था 300.29 बिलियन डॉलर की है और कहा जा रहा है कि उतनी ही आपको रकम मिलेगी, यानी जिस ईरान की अर्थव्यवस्था ही 28,32,000 करोड़ रुपए की है उस ईरान को इतना ही पैसा सिर्फ इस डील से मिल सकता है। अगर हम आबादी के हिसाब से भी देखें तो $300 बिलियन का मतलब ये हुआ कि 9 करोड़ की आबादी वाले ईरान में हर व्यक्ति पर 3,14,000 रुपए आने वाले हैं। ये भी तब होगा जब ईरान की प्रति व्यक्ति सालाना आय ही 3,21,000 रुपए है। हमें तो समझ, अगर आप देखिए तो ये डील कहा जा रहा है, लेकिन आखिर ये आगे कैसे बढ़ेगा? हकीकत में तो ये ईरान की जीत का एक दस्तावेज लग रहा है, ऐसा दस्तावेज जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद हस्ताक्षर किए हैं। ये सब करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ये पैसा अमेरिका की जेब से नहीं आ रहा है। वो सही भी कह रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक कैच है, और इसीलिए मसूद पेजेशकियान, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो एमओयू की कॉपी डाली है वो मैं अपने साथ लेकर आई हूं, जिसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है 6 नंबर पर। हम आपको उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान जरा सुन लीजिए।
6: It's been reported that it includes a $300 billion construction fund funded by Gulf allies. That's false.
7: It's false. That people, you can invest if you want. I mean, what am I going to do? Say nobody's ever allowed to invest? No, we're not investing. We're not putting up 10 cents. And people can decide to do that, but that's up to them. I mean, do you want me to say nobody's ever allowed to invest in a country? I'll say it with Egypt. Nobody's allowed to invest in Egypt. Am I supposed to say that?
6: I'm asking whether...
7: We are not investing in it, and we do not have a fund. But we are not investing. That's a false story that got picked up incorrectly from a statement that was pretty well made, I think. Maybe a little bit, could have been a little more accurate.
0: तो आखिर ये अलग-अलग बातें क्यों? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इस खबर को गलत बताया गया है, स्टोरी गलत बताई जा रही है कि $300 बिलियन ईरान को मिलेगा। तो इसीलिए मैं ये एमओयू लेकर आई हूं, जो फिलहाल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की गई है। इसके पॉइंट नंबर 6 पर आते हैं, और इस समझौते की 6ठी शर्त में शब्दशः ये लिखा है कि अमेरिका अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ, ये जो नीचे वाला 6ठी लाइन है उसको आप पढ़िए, इसमें साफ साफ लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने रीजनल पार्टनर्स के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम $300 बिलियन की एक ठोस और आपसी सहमति वाली योजना तैयार करेगा। साफ साफ लिखा है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंडरटेक्स विथ रीजनल पार्टनर्स, यानी जो खाड़ी देश में उसके सारे सहयोगी हैं उनके साथ, टू डेवलप अ डेफिनेटिव म्यूचुअली अग्रीड प्लान विथ एटलीस्ट $300 बिलियन फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो फिर अमेरिका यह भी कह रहा है कि इस योजना के लिए एक भी पैसा उसके खजाने से नहीं जाएगा, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। इसकी जगह मिडिल ईस्ट के खाड़ी देश और उनकी कंपनियां ईरान के लिए ये रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाएंगी, और फिर इससे ईरान को युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी और बुनियादी ढांचों का पुनर्निर्माण वहां पर किया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो अमेरिका ईरान के नाम से एक ऐसा खाता खोल रहा है जिसमें वो खुद डायरेक्ट पैसे नहीं डालेगा, वो खाड़ी देशों और खाड़ी देशों की कंपनियों को कहेगा कि वो इस खाते में निवेश के तौर पर एक रकम डाले, ईरान की मदद करने के लिए आगे आए। क्योंकि खुद मसूद पेजेशकियान, ईरान के राष्ट्रपति, ने कहा है, जो पॉइंट डाला है उसमें रीजनल पार्टीज की बात है। तो रीजनल पार्टीज कौन है? खाड़ी देश। खाड़ी देश में ये तमाम सहयोगी, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, ये तमाम खाड़ी देश। ऐसा करके ईरान की मदद भी हो जाएगी और अमेरिका के टैक्स पेयर्स का पैसा भी ईरान को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाएगा। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत यही है कि अल्टीमेटली ईरान यहां जीत गया है, पैसा उसके पास जाएगा। इस युद्ध में ईरान ने सबसे ज्यादा चोट अपने पड़ोसी देशों को ही पहुंचाई, ऐसी चोट कि इस युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट के देशों को $194 बिलियन का नुकसान हुआ, $194 बिलियन उनकी जीडीपी के 3.7% से 6% के बराबर है। इन्हीं मुस्लिम देशों में इस युद्ध से 36 लाख नौकरियां खत्म हुई है, 40 लाख लोग गरीबी रेखा के पास पहुंच गए, और ऊर्जा संपत्तियों को $58 बिलियन का नुकसान हुआ। और इसके बाद भी ये सारे मुस्लिम देश ईरान के हमलों से इतनी बुरी तरह प्रभावित हुए कि ऐसा लग रहा था कि ईरान से युद्ध का मुआवजा मांगेंगे, लेकिन यहां तो कहानी बिल्कुल उल्टी चल रही है। और हो ये रहा है कि यहां मुस्लिम देश ईरान में सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, बुनियादी ढांचे बनाने के लिए पैसा दे सकते हैं, या इनके सहयोग से ईरान में निवेश की एक योजना आ सकती है। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो अब तक अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत पीछे रही, इजिप्ट के साथ पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा आबादी होने के बावजूद ईरान 500 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था नहीं बन पाया, जबकि इसी दौरान सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था 1.39 ट्रिलियन डॉलर की हो गई, इसराइल की 719 बिलियन डॉलर की हो गई और यूएई की अर्थव्यवस्था 621 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई, लेकिन ईरान इन सब से पीछे रहा। इतना पीछे कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में ईरान के लोग यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन के लोगों से बहुत पीछे रहे, और यह भी तब हुआ जब ईरान के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। सऊदी अरब के साथ कच्चे तेल और नेचुरल गैस के सबसे बड़े भंडार ईरान के पास है। सऊदी अरब के पास 267 बिलियन बैरल कच्चा तेल है और ईरान के पास 209 बिलियन बैरल कच्चा थे। इराक, यूएई, कतर, ये तो ईरान के आसपास भी नहीं है। आप देखिए, अगर इराक में 145 तो यूएई में 113 और कुवैत में 102 बिलियन बैरल। इससे भी बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट में सबसे पहले तेल के कुएं यूएई और सऊदी अरब में नहीं मिले थे। सबसे पहले साल 1908 में तेल ईरान की धरती पर मिला था और तब कहा गया था कि ईरान दुनिया का अमीर देश बनने वाला है, लेकिन इसके बाद ईरान में इस्लामिक सरकार आई, अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण ईरान पीछे रह गया। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि जब अमेरिका के प्रतिबंध पूरी तरह हट जाएंगे, ईरान को 300 बिलियन डॉलर का डेवलपमेंट फंड मिलेगा, तो मिडिल ईस्ट का शक्ति संतुलन बदल जाएगा। सोचिए, इतने सालों से मिडिल ईस्ट में लड़ाई भी तो यही थी। ईरान खुद को मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सुपर पावर बनाना चाहता था, जबकि सऊदी अरब अमेरिका पर दबाव बनाता था कि वो ऐसा कभी ना होने दे। इन्हीं कारणों से सऊदी अरब मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, लेकिन सोचिए कल तो जब ईरान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, वहां निवेश आएगा, दुनिया ईरान का कच्चा तेल खरीदेगी, तो मिडिल ईस्ट की पूरी जो कहानी है वो बदल जाएगी। और अब तक ईरान अपनी मिसाइलों से इस क्षेत्र को डोमिनेट करता था, लेकिन आगे वो अपनी आर्थिक ताकत से भी ऐसा कर पाएगा। ये सब इसलिए होगा क्योंकि 28 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी गट फीलिंग पर यह युद्ध शुरू किया था, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ आज ये पूरी दुनिया देख रही है। यहां यह बात सही है कि पहले भी युद्धों में कई देशों को मुआवजा मिला है, जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने उन यहूदियों को 86.8 बिलियन डॉलर का मुआवजा दिया था जो इसराइल या दूसरे देशों में चले गए थे। 1991 के गल्फ वॉर में अमेरिका को जो 61 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था उसकी भरपाई खाड़ी देशों ने की थी। इनमें कुवैत ने 16 बिलियन डॉलर, सऊदी अरब ने 16.8 बिलियन डॉलर, यूएई ने 4 बिलियन डॉलर अमेरिका को दिए थे। आप अफगानिस्तान को याद कीजिए, जहां आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की सेना ने 20 सालों तक युद्ध लड़ा, लेकिन 20 सालों के बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान की सत्ता इसी तालिबान को सौंपकर वापस लौटा, तो इससे पहले अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए 145 बिलियन डॉलर की भारी भरकम रकम उसे चुकाई गई। और आज भी जब आप अफगानिस्तान की करेंसी को देखते हैं तो ये डॉलर के मुकाबले हमारे रुपए से भी मजबूत है। आज अमेरिका का एक डॉलर 63 अफगानी के बराबर है, जबकि हमारा रुपया 94.40 रुपए के बराबर। ऐसा इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की खूब मदद आती है, और क्योंकि यह मदद डॉलर में भेजी जाती है इसलिए डॉलर की वहां कमी नहीं रहती। ऊपर से आयात पर कम खर्च करने के कारण अफगानिस्तान के डॉलर बचे रहते हैं, उसकी करेंसी एशियाई देशों में शानदार प्रदर्शन करती है। जितने भी एशियाई करेंसी है उनमें शानदार प्रदर्शन अफगान का होता है, अफगानी करेंसी। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि अमेरिका दुनिया के सामने अपनी जो छवि बनाकर रखता है वो छवि पूरी तरह सही नहीं है, और एक कड़वा सच तो यह है कि अमेरिका ने आज तक कोई बड़ा युद्ध जीता ही नहीं। 1955 से 75 के बीच अमेरिका ने 20 सालों तक वियतनाम युद्ध लड़ा, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका वियतकांग और उत्तरी वियतनाम को हरा नहीं पाया, अंततः अमेरिकी सेना को वापस लौटना पड़ा। अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने 2001 से 2021 के बीच 20 साल तक युद्ध लड़ा। इस युद्ध का लक्ष्य था अलकायदा का सफाया, तालिबान को सत्ता से हटाना। शुरुआत में सफलता मिली, ओसामा बिन लादेन मारा भी गया, वो भी पाकिस्तान के एबटाबाद में, लेकिन 20 साल बाद तालिबान फिर सत्ता में लौट आया और अमेरिका ने बड़े अच्छे से उनको सत्ता सौंप दी और अफगानिस्तान की जनता को पीठ दिखाकर भाग गए। 2003 से 2011 के बीच इराक युद्ध लड़ा अमेरिका ने। इसका लक्ष्य था सद्दाम हुसैन को हटाना, लोकतांत्रिक इराक बनाना। यहां भी सद्दाम हुसैन को तो हटा दिया, लेकिन इराक गृह युद्ध, सांप्रदायिक हिंसा और बाद में आइसिस के उदय में फंस गया और यहां भी अमेरिका का युद्ध अनजान तक नहीं पहुंच पाया। सीरिया में भी अमेरिका ने कई विद्रोही गुटों अभियानों का समर्थन किया लेकिन सीरिया के हालात आज तक स्थिर नहीं हुए। यमन में भी अमेरिका ने हूती के खिलाफ जंग छेड़ी। 1993 के सोमालिया युद्ध, 2011 का लिबिया युद्ध, अमेरिका को अपने लक्ष्य हासिल नहीं हो पाए। और सोचिए, इतने सारे युद्ध लड़कर भी अमेरिका विश्व में खुद को शांति का चैंपियन बताता रहा, दुनिया भी इसे स्वीकार करती रही। आप याद कीजिए जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईरान युद्ध के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना की थी और इस युद्ध में उनका साथ देने से इनकार कर दिया, तब राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें कायर कहा था। यही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति मैक्रों पर निजी हमले किए थे। ये कहा था कि उन्हें उनकी पत्नी ने जो मुक्का मारा है उससे वो अब भी उबरे नहीं। सोचिए, एक राष्ट्रपति एक दूसरे देश के राष्ट्रपति के लिए कह रहा था, राष्ट्रपति मैक्रों पर हमला करने के लिए। सोचिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति मैक्रों पर हमला करने के लिए इस हद तक वो चले गए कि, लेकिन आज जब ईरान डील पर राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर किए तो यही राष्ट्रपति मैक्रों वहां खूब तालियां बजा रहे थे, ये देखिए। जबकि उन्हें तो ये कहना चाहिए था कि ये युद्ध लड़कर राष्ट्रपति ट्रंप ने गलती की, देखिए।

0: about more beef with the pan with it?
1: Yeah.
0: More beef the other day?
2: Which would you prefer?
3: Good job.
0: Thank you. Thank you, everybody.
3: Great job.
4: Bravo.
5: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो कोई विंस्टन चर्चिल नहीं है और वो एक कमजोर नेता है। लेकिन G7 देशों की बैठक में कीर स्टार्मर भी खूब राष्ट्रपति ट्रंप के आगे पीछे नजर आ रहे थे और जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा कि आई एम द बॉस तो सबसे ज्यादा हंसी कीर स्टार्मर को ही आई थी। देखिए कल हमने ये विजुअल्स चलाए थे अगर हम निकाल के अपने दर्शकों को दिखा सकें, क्योंकि जब कल ये तो खैर एक फोटो ऑप था जिसमें सभी लोग की जगह तय होती है, वो वहां पर जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में दिख रहा है कि जब राउंड टेबल पर सभी नेता, सभी जो कंट्री हेड्स हैं वो बैठे हुए हैं, तब डोनाल्ड ट्रंप एंट्री मारते हैं। वो कहते हैं आई एम द बॉस और उस वक्त कीर स्टार्मर काफी हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। चलिए कोशिश करते हैं वो निकाल के आपको दिखा दें। कल लगभग हर बुलेटिन में वो चला है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को भी राष्ट्रपति ट्रंप ने गवर्नर कार्नी कहा था और यह सीधा अपमान था क्योंकि ट्रंप बार बार मजाक में कह रहे थे कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की जगह उन्हें गवर्नर कहकर बुलाना उनकी संप्रभुता पर कटाक्ष था। लेकिन यही मार्क कार्नी G7 देशों की बैठक में झुककर राष्ट्रपति ट्रंप से बात करते रहे जबकि राष्ट्रपति ट्रंप उनके लिए अपनी कुर्सी से एक बार खड़े तक नहीं हुए। राष्ट्रपति ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकायची को भी खूब निशाना बनाया। लेकिन ये सारे नेता जब G7 देशों की बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप के सामने आए तो ये हंस रहे थे और खूब उनके लिए तालियां भी बजा रहे थे। यहां ये भी देखिए कि 28 फरवरी को जब ईरान युद्ध शुरू हुआ था तब उससे पहले ईरान का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर लगातार बात कर रहा था और अगर उस वक्त ये बातचीत जारी रहती, अमेरिका ईरान पर हमले नहीं करता तो ये डील तब हो भी जाती, दुनिया को ऊर्जा संकट का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले युद्ध लड़ा, फिर आज डील की और ये बता दिया कि वो तो शांति के सबसे बड़े समर्थक हैं। आज हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर डील ही करनी थी तो फिर ये युद्ध लड़ा क्यों गया? ना रिजीम चेंज हुआ, इतने बम आपने ईरान पर बरसाए, दुनिया को महंगाई के संकट में डाल दिया, क्या हासिल हुआ? मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी गट फीलिंग पर जो युद्ध लड़ा उसकी दुनिया ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। तो युद्ध से कितना नुकसान किसे हुआ जब आप देखेंगे तो दुनिया का मिडिल ईस्ट में 40 लाख लोग देखिए उनके लिए गरीबी की स्थिति पैदा हो गई। दुनिया का 1.3 ट्रिलियन यानी 112 लाख करोड़ रुपया जो आप देख रहे हैं, इसको येलो कर लेते हैं, ये देखिए 112 लाख करोड़ रुपया जो है वो बर्बाद हुआ। अमेरिका का लगभग, हम आपको रुपए में ही बता रहे हैं क्योंकि आप देखिए तो कुल मिलाकर 113 बिलियन की बात है लेकिन 10 लाख 64 1,000 करोड़ रुपया, ये आपके सामने है फिगर, तो ये उन्होंने लूज किया। वैसे ही मिडिल ईस्ट को जो नुकसान हुआ वो भी हम आपको बता रहे हैं, लगभग 1,18,00,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इसी के साथ देखिए ना कि जो शेयर बाजार में लोगों को नुकसान हुआ है, 1,070,00,000 करोड़ की गिरावट आई। तो एक वक्त पर, हालांकि बाद में रिकवरी भी होती है, लेकिन एक वक्त पर तो इतना पैसा लोगों ने बाजार में खोया ना अपना। और इसी के साथ दुनिया में 3.2 करोड़ लोगों पर भुखमरी का संकट, ये कोई छोटा नंबर है। और इसीलिए आज हम पूछ रहे हैं कि अमेरिका जो कि आज विश्व का मसीहा बना हुआ है, वही अमेरिका जो जब चाहे जहां पर जाए जो फैसले लेता है, देशों पर टैरिफ थोपता है, युद्ध थोपता है, आज उसने कैसा नुकसान पूरी दुनिया का किया है। और शायद यही वजह है कि बड़े बड़े नेता जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिन सबके खिलाफ पर्सनल अटैक किया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भी कुछ बोलने को आज तैयार नहीं है। हमने आपको इंग्लैंड के कीर स्टार्मर की बात दिखाई थी, आइए जल्दी से दिखा देते हैं आपको। जब आई एम द बॉस बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने, एंटी मारी थी, तो सबसे ज्यादा वही मुस्कुराते हुए दिख रहे थे।
1: Hello,
2: I'm the boss.
1: How are you?
2: Good, thank you.
1: Okay. Thank you.
5: सोचिए इस युद्ध के कारण दुनिया ने जो झेला, आपने जो झेला, तेल गैस के लिए जो लाइनें लगी, बिजली का संकट पैदा हुआ, कई जगहों पर गरीबी बढ़ी, उसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप की विवेचना होगी या उनके लिए राष्ट्रपति मैक्रों की तरह सिर्फ तालियां बजाई जाएंगी। अब उस सवाल पर आते हैं जिसका सरोकार आपसे है, और वो सवाल यह है कि क्या ईरान युद्ध समाप्त हुआ?

तेल $78 पर पहुंच गया है। 17 जून का डेटा हम आपको नीचे दिखा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब यह लगभग युद्ध से पहले के स्तर पर आ गया है। और इससे सवाल यही है कि जब कच्चा तेल सस्ता हो गया है तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कब कम होंगी और जनता को राहत कब मिलेगी। यहां एक और बड़ा सवाल है उस पेट्रोल का जिसमें एथेनॉल मिलाया जा रहा है। इथेनॉल एक तरह का शराब जैसा एक केमिकल होता है जो चावल मक्के गन्ने से बनाया जाता है और अभी हमारे देश में इसे लेकर कई फैसले हो रहे हैं। जैसे अभी जो पेट्रोल आपको मिल रहा है उसमें 20% इथेनॉल की मिलावट पहले ही हो चुकी है जबकि 2014 से पहले यही आंकड़ा सिर्फ 1.5% हुआ करता था 1.5%। 5 जून को सरकार ने E85 पेट्रोल भी बेचना शुरू किया जिसमें 85% इथेनॉल है सिर्फ 15% पेट्रोल। दिल्ली में कुल 48 पेट्रोल पंप पर अभी ये E85 फ्यूल मिल रहा है जो E20 वाले पेट्रोल से ₹20 सस्ता है। यही नहीं इसी महीने की 13 तारीख को केंद्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब बाजार में E100 फ्यूल भी आएगा यानी ऐसा तेल जिसमें 100% इथेनॉल होगा और इसमें पेट्रोल की एक भी बूंद नहीं होगी। अब यहां सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारत में जिस पेट्रोल में 20% इथेनॉल पहले से मिलाया जा रहा है उसकी कीमतें बिल्कुल कम नहीं की गई हैं। दिल्ली में E20 पेट्रोल प्रति लीटर ₹102 का मिल रहा है जबकि E85 फ्यूल ₹20 सस्ता है और ये ₹82 प्रति लीटर मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ इसकी दूसरे देशों से भी तुलना करना जरूरी है। अमेरिका में 1 लीटर E85 फ्यूल लगभग ₹70 का है यानी भारत के E85 फ्यूल से ₹12 सस्ता। ब्राजील में E85 फ्यूल ₹75.79 का है और वहां भी ये भारत से लगभग ₹6 सस्ता है। हालांकि फ्रांस में 1 लीटर E85 फ्यूल ₹94.23 का है और स्वीडन में यही ₹144.17 का है। यानी इन देशों में E85 फ्यूल भारत से महंगा है लेकिन अमेरिका और ब्राजील में ये भारत से सस्ता है। यहां इस ग्राफिक्स को भी देखिए। हाल ही में मारुति सुजुकी ने एक नई वैगनार गाड़ी लॉन्च की जिसे E100 फ्यूल डाला जा सकता है। अब इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस ₹7,24,000 है जबकि पेट्रोल वेरिएंट में इसी गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है ₹6,39,900। यानी E85 और E100 वाली वैगनार गाड़ी पेट्रोल वाली वैगनार से ₹75,000 महंगी है जिससे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है वो महंगा होगा। अगर महंगा होगा तो क्या लोग प्रति लीटर ₹20 की बचत करने के लिए ₹75,000 देंगे। अब हम उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के बदलते विचारों का विश्लेषण करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में महामंत्र दिया था। अखिलेश यादव हर जनसभा में ये कहते रहे कि उनकी पार्टी पीडीए के लिए काम करेगी। अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले में पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक था। समाजवादी पार्टी खुले तौर पर इनके हित में काम करने का दम भरती थी। ये फॉर्मूला कम से कम लोकसभा चुनाव में उनके बहुत काम आया। यूपी में उन्होंने 37 सीटों पर जीत दर्ज की और ये उनकी पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन अब अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी ने इन चुनाव के लिए अपने फॉर्मूले में एड ऑन एड कर लिया है। अब पीडीए में बी की एंट्री कर दी गई है, बी यानी ब्राह्मण। अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए ब्राह्मण को साधने का मास्टर प्लान बनाया। अब उनका फॉर्मूला पीडीए प्लस बी हो गया है। ब्राह्मणों के साधने के लिए समाजवादी पार्टी अपने सबसे बड़े ब्राह्मण नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाने जा रही है और जयंती को भव्य अंदाज में मनाने की तैयारी है ताकि इसके जरिए प्रदेश के ब्राह्मणों को साधा जा सके। लेकिन क्या इस वजह से योगी को छोड़कर ब्राह्मण चले जाएंगे अखिलेश के खेमे में? पार्टी के ब्राह्मण नेता कहीं और ना जाए इसके लिए लखनऊ में एक बैठक भी आयोजित की गई जिसमें ब्राह्मण नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने पर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी अपने ब्राह्मण नेताओं के जरिए प्रदेश के ब्राह्मण समाज को साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन सवाल यह है कि उसके फॉर्मूले में बी फैक्टर की एंट्री हुई क्यों है? तो सुनिए, दो वजह है और दो वजह हो सकती है। पहली है कि ब्राह्मण मतदाताओं को साध कर सत्ता पाने का एक लंबा इतिहास है और दूसरी वजह यह है कि पीडीए के चक्कर में साइड लाइन किए गए ब्राह्मण नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ भी बनाए रखने का मौका मिलेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजगर ने दावा किया था कि समाजवादी पार्टी से ब्राह्मणों का मोह भंग हो रहा है
और बलिया का एक बागी बगावत का

नेतृत्व करने वाला है। अब देखिए, बलिया से समाजवादी पार्टी का के सांसद कौन? सनातन पांडे। और लखनऊ में ब्राह्मण नेताओं की जो बैठक हुई उसकी अगुवाई कौन कर रहा है? वही कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, सनातन पांडे की ही अगुवाई में जनेश्वर मिश्र जयंती का आयोजन हो रहा है। जनेश्वर मिश्र भी बलिया से ही थे। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक समाजवादी पार्टी को लगता है कि पीडीए पर बहुत ज्यादा जोर दिया तो ब्राह्मण समाज नाराज हो सकता है। उनका यह मानना है कि अभी एनडीए से ब्राह्मण नाराज हैं और वो उनकी तरफ आ सकते हैं, इसीलिए ताकत झोंकी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 18% सवर्ण है, 42% ओबीसी, 21% दलित और 19% मुस्लिम। सवर्णों में 7 से 10% तक ब्राह्मण है, प्रदेश की 100 से ज्यादा सीटों पर असर डालते हैं। एक रोचक तथ्य यह भी है कि साल 1993 से 2002 के बीच यानी गठबंधन सरकारों के दौर में औसतन 25 ब्राह्मण उम्मीदवार चुने जाते थे, लेकिन 2007 के बाद यानी पूर्ण बहुमत की सरकारों में औसतन ब्राह्मण, जानते हैं कितने विधायक चुने गए हैं? औसतन 52 ब्राह्मण विधायक चुने गए हैं। इसका यह मतलब है, निकाला जा रहा है कि पूर्ण बहुमत के लिए ब्राह्मण मतदाताओं को साधना जरूरी है। और देश की आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश में 6 बार ब्राह्मण समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना। साल 1950 से 1989 तक यानी 23 वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर 90 के दशक से यूपी में गठबंधन राजनीति का बोलबाला शुरू हो गया, यह सिलसिला खत्म हो गया। इसके बाद यूपी पूर्ण बहुमत की सरकार साल 2007 में यूपी में बनी, जिसमें 206 सीटें जीतकर मायावती मुख्यमंत्री चुनी गई। बीएसपी की इस जीत का रास्ता ब्राह्मण मतदाताओं की गलियों से होकर गुजरा था। दरअसल मायावती ने साल 2007 में ब्राह्मण मतदाताओं को एकजुट करने की रणनीति पर काम किया। उस समय बड़ी चर्चा इसकी हुई कि मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग किया है। दलित नेता के तौर पर वो जानी जाती थी और पिछड़ों और अगड़े में ब्राह्मणों को साथ लिया। उन्होंने प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करवाए। इन सम्मेलनों की वजह से उत्तर प्रदेश में मायावती के प्रति ब्राह्मण वोटर्स का झुकाव बढ़ा। इस झुकाव की एक वजह यह भी थी कि उन्होंने पार्टी में महत्वपूर्ण पदों के अलावा टिकट बंटवारे में भी ब्राह्मणों का ध्यान रखा था। बीएसपी इसे सोशल इंजीनियरिंग कहती थी। 2007 में बीएसपी ने 86 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था, 86, जिसमें से 37 विधायक चुने गए थे। सोचिए, एक ऐसी पार्टी जो कि दलित राजनीति पर ही खड़ी हुई, उसने 37 विधायक अपने बना लिए ब्राह्मणों। उस वक्त मायावती के खास नेताओं में सतीश चंद्र मिश्रा का नाम आता था। मायावती ने तब अपनी सरकार में ब्राह्मण समाज से 9 मंत्री बनाए थे और कईयों को राज्य मंत्री पद भी दिया था। मायावती की सोशल इंजीनियरिंग से हर कोई हैरान था, क्योंकि मायावती को मूल रूप से दलितों का, पिछड़ों का नेता माना जाता था। पार्टी ही इसी आधार पर खड़ी हुई थी। मायावती के इस फॉर्मूले से समाजवादी पार्टी को बड़ी सीख मिली। उसे साल 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के ब्राह्मणों को अपने साथ करने में पूरी ताकत झोंक दी। 2012 समाजवादी पार्टी ने 41 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसमें 22 उम्मीदवार जीत गए। उस साल 403 में से 224 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। जीत के बाद कई ब्राह्मण विधायकों को मंत्री पद दिए गए। यूपी में परशुराम जयंती की छुट्टी घोषित की गई। ब्राह्मण नेता जनेश्वर मिश्र के नाम पर पार्क बनवाया गया। देखा जाए तो यूपी में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए एक ब्राह्मण फैक्टर को सबसे पहले कांग्रेस ने पहचान दी, फिर मायावती ने, और इसके बाद समाजवादी पार्टी ने। अब चाहे आप इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, हर बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी भी। आजकल मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की लत इस स्तर तक पहुंच गई है कि लोग इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। फोन छीन लिया तो फांसी लगा ली, इंस्टाग्राम पर रील्स नहीं बनाने दी तो घर छोड़ दिया, फोन चलाने पर टोका तो अपनों पर ही हाथ उठा दिया। जब भी हमारे आसपास ऐसी खौफनाक खबरें आती है तो हमारा समाज क्या कहता है? ये सब सोशल मीडिया और मोबाइल की लत की वजह से हो रहा है। ऐसे में लोग माँ बाप को कोसते हैं, खुद को दोषी मानते हैं, परवरिश पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसके लिए सोशल मीडिया कंपनियां, उनका कंटेंट, उनका एल्गोरिदम भी दोषी हो सकता है। मुमकिन है कि सोशल मीडिया आपके बच्चे के दिमाग को हैक कर रहा हो। इटली में एक ऐसी घटना हुई जहां सोशल मीडिया की लत की वजह से एक 12 साल की बच्ची ने जान दे दी, लेकिन यहां उसकी मां ने बेटी की लत को इसके लिए दोषी नहीं माना, बल्कि घातक सोशल मीडिया कंटेंट
और जानलेवा एल्गोरिदम को इसके लिए जिम्मेदार माना। इस मां ने चुपचाप आंसू बहाने के बजाय दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज मेटा और टिकटॉक पर केस ठोक दिया है। अपनी 12 साल की बेटी की मौत को लेकर इस मां ने मेटा और टिकटॉक पर आरोप लगाया कि इन कंपनीज ने जानबूझकर ऐसा एल्गोरिदम बनाया जो बच्चों को अडिक्ट बनाता है। ये लत नहीं बल्कि कंपनियों द्वारा परोसा गया धीमा जहर है, स्लो पॉइजन। इस मां का सीधा आरोप है कि ये कंपनियां सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि शिकारी हैं जो अपने बच्चों को एडिक्शन के जाल में फंसाकर खुद अरबों डॉलर कमा रही है। ऐसी दोषी बच्चा नहीं है, असली दोषी वो एल्गोरिदम है जिसे बनाया है इन कंपनीज ने मासूम दिमागों को अपने वश में करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ इटली की कहानी है तो ऐसा नहीं है। भारत में सोशल मीडिया की यह लत अब एक महामारी बन चुकी है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए जो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कंज्यूमर है। हमारे बच्चे दिन के 24 घंटों में से 5 घंटे रील और शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में गंवा रहे हैं। यह लत कोई इत्तेफाक नहीं है, इसे बाकायदा डिजाइन किया गया है। हर एक लाइक, हर एक फॉलोअर, हर स्क्रॉल बच्चे के दिमाग में डोपामाइन का ऐसा केमिकल डालता है जिसे बाहर निकलना किसी ड्रग्स की लत से कम नहीं है। एक औसत तौर पर अगर आप देखिए तो टीनेजर दिन में 150 से ज्यादा बार सिर्फ नोटिफिकेशन चेक करता है। सोशल मीडिया की वजह से हर 3 में से 1 युवा एंग्जाइटी, डिप्रेशन और नींद में ना आने की बीमारी से जूझ रहा है। सोचिए इस उम्र में नींद ना आना। ICSSR हमारा सोर्स है जिसके हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। सोचिए जब कोई ड्रग्स बेचने वाला पकड़ा जाता है तो सजा पेडलर को मिलती है, तो फिर सोशल मीडिया के इस डिजिटल ड्रग्स के मामले में कसूरवार सिर्फ बच्चा और माता पिता क्यों माने जाएं? इटली से उठी आवाज भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है। अब वक्त आ गया है कि जब हम इन सिलिकॉन वैली के आकाओं से पूछें कि हमारे बच्चों के बचपन और उनकी जान की कीमत पर उनका मुनाफे का धंधा कब तक चलेगा। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और जो आंधियां दूसरों के वजूद को मिटाने निकलती हैं वो अक्सर खुद धूल बनकर बैठ जाती है। नमस्कार।

0: उद्धव गुट में एक बार फिर से बगावत हो गई। गुरुवार को उद्धव ठाकरे ने अपनी संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, बाकायदा व्हिप जारी किया था, मगर इस बैठक में सिर्फ 3 सांसद पहुंचे, 6 सांसदों ने बैठक से दूरी बना ली। अब शिवसेना यूबीटी ने बैठक में शामिल न होने वाले सांसदों से जवाब मांगा है।
1: उद्धव ठाकरे को जिस बात का डर था वही हुआ। पार्टी ने व्हिप जारी किया था, संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, मगर बैठक में सिर्फ 3 सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे पहुंचे। यानी 6 सांसदों ने मीटिंग में हाजिरी नहीं दी। ये वो सांसद हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत की है। माना जा रहा है कि जल्द ही वे अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजय जाधव बागी सांसदों का नेतृत्व करेंगे। उधर बागी सांसदों को लेकर शिवसेना यूबीटी ने गहरी नाराजगी जताई है। पार्टी ने बागी सांसदों से जवाब मांगा है। शिवसेना यूबीटी को एक बार फिर टूट का डर सता रहा है, इसीलिए शिवसेना यूबीटी का एक दल लोकसभा स्पीकर के पास चिट्ठी लेकर पहुंचा, जिसमें लिखा था कि अगर कोई शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने का दावा करे तो पहले हमसे संपर्क किया जाए।
2: हमने एक लेटर दिया है स्पीकर साहब को, कैबिनेट, कि अगर कोई आता है शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए, कोई गैरकानूनी है।
3: विषय यही रखा है कि भाई अगर कोई इस ग्रुप को लेके कोई आता है आपके पास में, व्यवस्था आपके हाथ में है, आरपी एक्ट संविधान में जो प्रावधान है उसको लेके हमने लेटर दिया है, अगर कोई पहुँचता है तो हमसे पहले बात करें।
1: राउत ने आरोप लगाया कि सभी बागियों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है, इसके लिए उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
4: मेरा जो स्टैंड है वो क्रिस्टल क्लियर है, मैं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के साथ हूँ।
1: अब शिंदे गुट इसे अपनी जीत बता रहा है और कांग्रेस कह रही है कि ये ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन गीदड़ है।
5: ऑपरेशन प्रगति यशस्वी। जिस व्यक्ति ने जनता के लिए इतना काम किया है, जनता हमेशा उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है और सबको पता है कि ओरिजिनल टाइगर कौन है।
6: ऑपरेशन टाइगर ने ऑपरेशन गीदड़ है, सत्ता की भूख उसकी एक मर्यादा होती है।
1: खबर है कि टीएमसी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर को खत लिख चुके हैं। जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए ये दोहरा झटका है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: क्या समाजवादी पार्टी में भी उत्तर प्रदेश में बगावत होने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ओपी राजभर के बाद संजय निषाद ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद समाजवादी पार्टी छोड़ना चाहते हैं, और इसके साथ ही अब यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर भी समीकरण बिठाए जा रहे हैं।
7: अखिलेश यादव के दल टूट की जो खबर राजभर ने उठाई है वो अब तूल पकड़ रही है। राजभर के बाद यूपी के मंत्री संजय निषाद भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश से किनारा करना चाहते हैं।
8: दिल्ली शीर्ष नेतृत्व को बताऊं कि वो लोग अब जुड़ना चाहते हैं।
9: आप कितने लोग हैं
8: आपके विचारधारा? मैंने बताया 2000 से अधिक लोग हैं
9: समाजवादी पार्टी के।
8: हाँ, उनके लोग
9: विधायक भी हैं, केवल सांसद
8: के? कांग्रेस के विधायक भी हैं और सांसद भी हैं।
7: लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसे बयानों को बकवास बता रही है।
10: राजभर जी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है तो सीटों की बार्गेनिंग करें।
11: अगर ये उनका कहना सही हो जाएगा तो सनातन प्रणय जीवन में राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे।
7: मामला शुरू हुआ था समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने की खबर से, मगर माहौल बदल गया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि राजभर तो खुद समाजवादी पार्टी में विलय चाहते हैं।
12: मिलके उन्होंने निवेदन किया कि सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव डाल रही है, बहुत ब्लैकमेल कर रही है। और उनका अरुण राजभर ने इस बात को भी कहा कि पिताजी की किसी बात का बुरा भी ना माना जाए, उनकी लिखी हुई बात, उनकी कही हुई बात को गंभीरता से भी ना लिया जाए क्योंकि वो बहुत तनाव में है।
7: अब राजभर के सुपुत्र समाजवादी पार्टी के इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं।
13: सही बात है कि समाजवादी पार्टी मुखिया और इन सभी नेताओं का कोई न कोई यूज तो कर ही रहा, क्योंकि ये बात बताइए जिस दिन की जिक्र कर रहे हैं उस दिन मैं समाजवादी पार्टी के गढ़ को समाप्त करने का अभियान चला रहा था।
7: दरअसल समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि राजभर जानबूझकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं ताकि 27 के चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा कर सकें।
14: ये इसलिए बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको सीटें दे देगी। एक तो सीटों के लिए मेरी बातों को लिख लीजिए।
7: समाजवादी पार्टी के आरोपों को ओपी राजभर सही साबित कर रहे हैं क्योंकि उनका दावा अभी से 34 सीटों पर है।
15: अभी तक हम लोगों ने 34 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किया है और वहाँ जो संगठन में कमजोरी रही है उसको पूरा कराने के लिए प्रयास हम लोगों का हो रहा है कि इस बार हम लोग अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल करा लें।
7: 27 के चुनाव से पहले मुद्दों को धार दी जा रही है और सीटों के लिए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 के री एग्जामिनेशन को पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाने और सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार और एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए इस बार प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और देश भर के केंद्रों तक उनकी सुरक्षित डिलीवरी का जिम्मा भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है।
7: देश में नीट के पेपर को सुरक्षित करने के लिए भारतीय वायुसेना ने उड़ान भर दी है। 21 जून को होने वाली डी नीट के पेपर को लेकर सेना का हेलीकॉप्टर अलग अलग जगहों पर पहुंच रहा है जहां से पेपर को लोड किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस की कड़ी निगरानी में इन्हें स्ट्रांग रूम भेजा जा रहा है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता के मानकों को बनाए रखने पर जोर दिया। उधर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है।
16: पहले बोले कि हम पेपर जो है वो हवाई जहाज से, एयरफोर्स के हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट कराएंगे, अब कह रहे हैं टेलीग्राम बैन कर दिया, इससे कोई पेपर लीक रुकेंगे? पेपर लीक तो रोकने ही नहीं इनको, इनकी नीयत ही खराब है। इतने जो एमपी और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं? आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं।
7: नीट पेपर लीक को लेकर जारी घमासान के बीच टेलीग्राम पर रोक का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, जहां सरकार ने टेलीग्राम को अपराधियों का अड्डा बताया। वही टेलीग्राम की ओर से दलील दी गई कि क्या एक घटना को रोकने के लिए पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर देना सही है। बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज तक ब्यूरो।
0: श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसके तार गहरे जुड़ते नजर आ रहे हैं। शुरुआती जांच से लग रहा है कि निगरानी के पूरे सिस्टम में ही खामियां हैं। देखिए एक रिपोर्ट।

0: अयोध्या में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बने राम मंदिर में पिछले 4 दिनों से रोज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अफसर जा रहे हैं, घंटों तक जांच पड़ताल पूछताछ कर रहे हैं। और इस पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जांच की सुई वहां जाकर ठहरी है जहां पता चला है कि चढ़ावा चोरी की प्लानिंग निगरानी के इंतजाम में ही गड़बड़ी से ही शुरू हुई प्रतीत होती है। और मोटे तौर पर SIT की जांच के दायरे में पहले CCTV लगाने, मेंटेन करने और रिकॉर्ड करने वाले लोग हैं, दूसरे मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारी हैं, तीसरे कर्मचारियों को नौकरी पर रखने वाले अधिकारी हैं, चौथे पूरी व्यवस्था की कानूनी जिम्मेदारी रखने वाले पुलिस अधिकारी भी हैं। जांच टीम ने मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरों की स्थिति, उसकी रिकॉर्डिंग और सुरक्षा प्रबंधन की गहन पड़ताल की है। इसी दौरान SIT को CCTV फुटेज से छेड़छाड़ के संकेत भी मिले हैं। SIT को जांच में मिले दस्तावेजों के अनुसार मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर पिछले 11 महीनों में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारी सुरक्षा खर्च के बावजूद दान पेटियों से नकदी और आभूषणों की कथित चोरी सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
1: अयोध्या मामले में अब SIT की जांच की रडार अब CCTV कर्मचारियों, पास दिखाने वाले कर्मचारियों और इसके अलावा मंदिर परिसर में मैनेजमेंट देखने वाले कर्मचारियों की तरफ बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो ये सभी वो कर्मचारी हैं जो सीधा ट्रस्ट को रिपोर्ट करते थे, जिनके बीच में कोई भी धारा नहीं थी। इसमें RMO यानी कि रेडियो जो मेंटेनेंस ऑफिसर है, जो तकरीबन 17 वर्षों से वहां पर तैनात है और सीधे ट्रस्ट को रिपोर्ट करता था, और CCTV फुटेजेस की कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा वहां पर पास निर्गत करने वाले व्यक्ति की जो जिम्मेदारी थी, जिसमें आने जाने के लिए सारी डिटेलिंग होती थी और कौन सा चीज बाहर जाएगी उसकी, और साथ ही साथ मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी की।
0: SIT की टीम की शुरुआती जांच में उस स्टेट बैंक की भूमिका भी संदिग्ध लगी है, जिसे मंदिर में मिले पैसों की गिनती और बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी थी। पता चला है कि पैसों की गिनती पूरी करके जमा करने की जिम्मेदारी स्टेट बैंक की थी, लेकिन उसने इसके लिए आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी रखे हुए थे। इसके अलावा नोटों की गिनती की प्रक्रिया में बेहद कम संख्या में कर्मचारी रखे गए थे, जिसे SIT संदिग्ध मान रही है। SIT ने पूछताछ के लिए करीब 200 लोगों की सूची तैयार की है, जिसमें अब तक 125 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि कुछ लोगों से कई बार पूछताछ हुई है। इसमें ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा मंदिर का ज्यादातर कामकाज देखने वाले रमाशंकर यादव और टिन्नू से भी पूछताछ चल रही है।
1: SIT की जांच अयोध्या मामले में अब गेट चेकिंग ऑफिसर से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी तक पहुंच गई है। चूंकि साफ तौर से गेट से आने जाने वालों की संख्या, इसके अलावा क्या सामान बाहर जाना है, ये जिम्मेदारी इस पर होती थी, और ये सीधा ट्रस्ट में चंपत राय और टिन्नू को भी रिपोर्ट करता था। यानी कि इस पूरे मामले पर अब SIT की जांच उस दिशा में भी बढ़ रही है कि कई कर्नाटक से जो लोग आए थे वो किस तरीके से अंदर शामिल हुए। अब इस दिशा में भी जो SIT की जांच है वो आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर गेट चेकिंग से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी जो 5 वर्षों से वहां पर तैनात हैं, अब उधर भी SIT रुक कर रही है। यानी कि कई कर्मचारियों पर अब रडार SIT की खड़ी हो गई है। अयोध्या से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
2: आप सुनते होंगे कि हर राज्य में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत करिए, तुरंत निवारण भी होगा। मध्य प्रदेश जहां जनता की शिकायत को सुलझाने के लिए बनी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को पुलिस वालों ने अपनी रैंकिंग चमकाने का हथियार बना लिया।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ। पहले ये आपने कोई शिकायत की थी CM हेल्पलाइन पे? काय की शिकायत थी?
4: अच्छा, अकाउंट फ्रीज हो चुका है, कोई उस पर रिजल्ट नहीं आया।
3: अच्छा, चलो मैं देख पाता हूँ, है ना। आपका डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी और सब परिवार में ठीक है, मदद करेंगे आपकी, है ना। मैं सडनली देख रहा हूँ कि कंप्लेंट पर कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही। इसलिए
5: मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक बार फिर CM हेल्पलाइन को लेकर खबरदार होना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में CM हेल्पलाइन पर फर्जी शिकायत के दम पर कुछ पुलिस वाले चेहरा और रैंकिंग चमकाने में जुटे। खबर मध्य प्रदेश की मऊगंज से, सवाल मऊगंज की पुलिस पर, जवाब के लिए सीएम हेल्पलाइन में दर्ज इन शिकायतों का स्क्रीनशॉट आज देखिए। 31 मई को सौरभ के नाम से शिकायत हुई कि मऊगंज थाने में उसके भाई को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से संतुष्ट हो गया, शिकायत बंद हो गई। 31 मई को ही सौरभ के नाम से एक और शिकायत हुई, पुलिस से पासपोर्ट और चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से एकदम हैप्पी हो गया, शिकायत बंद हो गई। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत हुई, मऊगंज थाने में उसकी FIR नहीं लिखी जा रही। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से एकदम संतुष्ट, शिकायत बंद। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत होती है कि पुलिस परेशान कर रही है, थाने में बुलाकर मारपीट कर रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से हैप्पी, शिकायत बंद। 31 मई को सौरभ के नाम से शिकायत कि उसकी बेटी गुम हो गई, मऊगंज थाना पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से संतुष्ट, शिकायत बंद हो गई। दावा है कि मऊगंज पुलिस ही सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत का खेल खेलती है, जहां दावा है 21 मोबाइल नंबर से 233 झूठी शिकायत खुद ही दर्ज करा के आनन फानन में उनका समाधान भी दिखा दिया, ताकि लगे वाह क्या पुलिस है। आगे सुनिए, ये अंकित चौरसिया है, इनके नाम से फर्जी शिकायत दर्ज करा दी कि 20 साल की बेटी गायब है, जबकि अंकित की तो शादी तक नहीं हुई।
6: क्या आपने शिकायत की?
7: नहीं, मैंने।
6: एक शिकायत ऐसी भी है कि आपकी 20 वर्ष की बच्ची स्कूल गई थी और गुम हो गई है।
7: मेरी शादी ही नहीं।
6: तो वो शिकायत फर्जी?
5: मिनट मिनट में ऐसी फर्जी शिकायतें खुद ही मऊगंज की पुलिस दर्ज कराती रही, लगा कि गजब का खेल है। जहां मऊगंज थाना प्रभारी को फिलहाल तबादला करके हटाया गया और दूसरे कांस्टेबल को लाइन हाजिर करके जांच जारी है।
8: व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं, उसकी जांच की गई थी, जिसके प्रधान अक्षर को दोषी पाया गया, उसको लाइन अटैच किया गया।
9: जनता की आवाज सुनने और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए बनाई गई सीएम हेल्पलाइन यदि सरकारी रिकॉर्ड चमकाने का जरिया बन जाए तो सवाल पूरे सिस्टम पर खड़े होंगे। मऊगंज का ये कथित फर्जीवाड़ा बता रहा है कि कैसे रैंकिंग और आंकड़ों की होड़ में जनता के भरोसे को दांव पर लगाया गया। अब बड़ा सवाल ये है कि इस खेल से जुड़े बड़े चेहरे कभी बेनकाब होंगे, या फिर एक मोहरे की कुर्बानी देकर बाकी पूरी कहानी को फाइलों में दबा दिया जाएगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
2: RSS हेडक्वार्टर्स पर आधी रात को पेट्रोल बॉम्ब से हमला क्यों किया गया? आखिर इस हमले का उद्देश्य क्या था? क्या ये मामला लोकल पुलिस से आगे बढ़ चुका है? आतंकवादी साजिश के एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है।
10: रांची में RSS के दफ्तर पर हुए हमले की इन तस्वीरों का कनेक्शन अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है। तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि एक शख्स पेट्रोल बम फेंक रहा है, तो वहीं दूसरा शख्स पीछे से वीडियो बना रहा है, ताकि पाकिस्तान में बैठे आकाओं को हमले का सबूत भी भेजा जा सके।
11: जांच में खुलासा हुआ है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की बड़ी भूमिका है।
10: मामले में सियासत बढ़ी तो झारखंड पुलिस एक्शन में आई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी दुबई में पाकिस्तान ISI और भट्टी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था, जो कि दुबई की जेल में भी रहा था। तीनों की उम्र 20 से 23 साल के बीच है, जिसमें एक आरोपी सैफ अंसारी का रांची पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया।
12: वेपन छीन के भागने का प्रयास किया, उसमें जवाबी कार्रवाई में और सुरक्षा हेतु जवाबी कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ी और उसको पैर में इंजरी, बुलेट इंजरी हुई है।
13: मैं रांची पुलिस को बहुत बहुत बधाई शुभकामना दूंगी और हमारी सरकार को भी कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सबके साथ न्याय होता है और ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम करते हैं।
10: इससे पहले BJP इस हमले को लेकर लगातार झारखंड सरकार पर हमलावर थी।
14: जब कांग्रेस के कुछ लोग RSS के बारे में विष फैलाते हैं और उसके बाद सीधे सीधे ये हमला होता है कांग्रेस शासित प्रदेश में, तो ऐसे डेंजरस प्रोपेगेंडा का डेंजरस परिणाम कैसे होता है, ये इसका भी परिचायक है।
10: खबरों की माने तो आरोपियों को सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट किया गया था। RSS दफ्तर पर हमले के लिए आरोपियों ने रेकी की थी, 2 पेट्रोल बम छत पर फेंके थे, 1 पेट्रोल बम गेट के बाहर असेंबल किया था, जिसके पीछे अब पाकिस्तान की साजिश की बात सामने आ रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ सत्यजीत, रांची आज तक।
2: पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बच्चा तस्करी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया, साथ ही इस गिरोह से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 6 मासूमों को सुरक्षित बचाया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है।
10: नकाब के पीछे छिपे इन चेहरों पर मासूम बच्चों को किडनैप करके बेचने का आरोप है। मामले में पुलिस ने 5 बच्चों का रेस्क्यू किया है और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें तस्कर, बिचौलिए, खरीदार और एक अस्पताल का मालिक भी शामिल है।
15: कभी भी किसी बच्चे को नहीं मुझे झूठा फंसाया गया है, मुझे मार मार के यहाँ बिठाया हुआ है।
10: सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में बहुत ही छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जा रही थी। जो बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं उनमें एक बच्चे की उम्र महज 5 दिन है, वहीं 2 बच्चों की उम्र सिर्फ 27 दिन।
16: बहुत ही छोटे बच्चे हुआ करते थे। 1,00,000 रुपए में इन्हें पाली से और राजस्थान के दूसरे गांवों से इन्हें खरीदा जाता था, दिल्ली लाया जाता था। दिल्ली के इस हीरा अस्पताल जो कि रोहिणी में स्थित है, यहां लाया जाता था और यहां उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। ट्रीटमेंट करने के बाद जो ऐसे कपल होते थे जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा या जिन्हें बच्चे पाने की अपेक्षा थी, उन्हें ये बच्चे बेच दिए जाते थे। 1,00,000 रुपए में ये बच्चे खरीदे जाते थे राजस्थान से या गुजरात से, और यहां दिल्ली में करीब 8 से 9 लाख रुपए में इन बच्चों को बेच दिया जाता था।
10: इस रैकेट का खुलासा करोलबाग में एक शख्स की जागरूकता की वजह से हुआ, जिसने एक महिला को अलग अलग बच्चों के साथ देखा, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने एक टीम बनाकर गिरोह से बच्चा खरीदने का पूरा जाल बिछाया और फिर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ।
17: उसमें पेरेंट्स से डील सेट होती थी और सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे, बर्थ सर्टिफिकेट्स फोर्ज किए जाते थे, डिलीवरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे और जितने भी इनवॉइसेस, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे फोर्ज किए जाते थे वहीं पर ही उसी हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर विवेक की एक एक्टिव रोल प्ले करती थी एज द लिंचमैन।
10: इस पूरे खेल का बाकायदा सिस्टम बना हुआ था, जिसमें बच्चा सप्लायर, बिचौलिए, खरीदार को लाने वाले सबका कट होता था। अलग अलग राज्यों से बच्चों को दिल्ली लाया जाता था। बच्चा गोद लेने की चाहत रखने वाले बेऔलाद जोड़ों की पहचान नेटवर्क के जरिए की जाती थी, जहां अस्पताल में बच्चा न पैदा होने की समस्या का इलाज करा रहे पति पत्नी को टारगेट किया जाता था, जिन्हें झांसा देकर इन मासूमों की जिंदगी का सौदा किया जाता था। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: भोजपुर में पुलिस पर पिस्टल तानने, फायरिंग करने के आरोपी भरत तिवारी का एक दिन पहले एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर के बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई। अब पुलिस के इस एक्शन पर सवाल है। आज ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जोरदार हंगामा किया।
18: जबरदस्त हंगामा बरपा है। पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस लोगों को तितर बितर कर रही है और पीछे से चीख पुकार मची है कि पुलिस वाले गोली ना चलाएं। ये बवाल बिहार में आरा के भोजपुर में शाहपुर थाना क्षेत्र के बैलोटी की तस्वीरें हैं। एक दिन पहले यहां पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी नाम का शख्स घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन कह रहे हैं कि ये पुलिस का फेक एनकाउंटर था और इसीलिए आरा बक्सर फोर लेन मार्ग पर वो शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे।
19: घोर अन्याय हुआ है। मान लीजिए कि एनकाउंटर है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया था, तो प्रशासन को इसको लेकर पकड़ कर जाकर जेल में बंद देना चाहिए। ये नहीं कि एनकाउंटर नहीं करना चाहिए।
18: अब एनकाउंटर की तस्वीर देखिए। ये जो गोली चला रहा है, इसी का नाम भरत तिवारी है। करीब 48 घंटे तक पुलिस के लिए ये शख्स चुनौती बना रहा और आखिरकार एनकाउंटर में मारा गया, मगर परिवार कहता है कि उसे जिंदा भी पकड़ा जा सकता था।
19: सुबह में 8 बजे के करीब में धूप गई, डायरेक्ट धूप के हथियार तान दिला सब परिवार पर हमनी के, और छोट लड़का के कालर धोके मोबाइल छीन ले।
18: अब प्रशासन परिवार और ग्रामीणों को समझा बुझा रहा है, मगर ये एनकाउंटर सवालों के घेरे में जरूर है। सोनू कुमार सिंह, आरा आज तक।
2: अब खबर अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की, जो तय समय से एक दिन पहले ही हो गया। इस डील से पहले ट्रंप ने भारत को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया, कहा कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा। लेकिन ईरान को लेकर जो समझौता हुआ है, उसमें जिस तरह इसराइल के हितों की अनदेखी की गई है, वो अमेरिका को लेकर खबरदार करने के लिए काफी है।
5: इस तस्वीर को देखकर दुनिया को राहत मिली जब अमेरिका और ईरान की तरफ से जंग खत्म करने के समझौते के मसौदे पर दस्तखत किए जाते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने बुधवार देर रात डिजिटल हस्ताक्षर किए, जिसके साथ ही समझौता लागू हो गया। ईरान के साथ समझौता करने से पहले ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उनकी तारीफों की झड़ी लगा दी।
20: I want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually.
5: 16 महीनों बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने रिश्तों में आई खटास को कम करने की भरसक कोशिश की। इसी कोशिश में ट्रंप ने वो कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।
21: And the United States, sorry, I'm speaking, I won't.
20: That's okay.
21: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
20: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there.
5: तो ट्रंप ने वादा किया कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा। ट्रंप ये कहकर सबको चौंका देते हैं, लेकिन सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस भरोसे में कितना दम है, क्योंकि ईरान के साथ जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इजराइल की अनदेखी की है वो अमेरिका से रिश्तों को लेकर खबरदार करता है।
20: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, BB. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true.
5: फ्रांस में ट्रंप की पीस डील पर साइन करने के बाद ईरानी राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने जिस समझौते के दस्तावेज पर दस्तखत किए उसमें नौवां पॉइंट अमेरिका पर भरोसे का संकट बढ़ाता है। समझौते के मसौदे में अमेरिका, ईरान और उसके सहयोगी देशों के बीच सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत और स्थायी रूप से बंद करने की बात कही गई है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। अमेरिका के लिए ये मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि ट्रंप को चिंता थी कि हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की सैन्य कार्रवाई शांति समझौते को कमजोर कर सकती है, इसीलिए इसे इसराइल के खिलाफ माना जा रहा है। इसराइल पहले ही कह चुका है कि वो अमेरिका ईरान बातचीत में लेबनान को लेकर हुई किसी भी सहमति को नहीं मानेगा, लेकिन ट्रंप इसराइल की सुनने को तैयार नहीं दिखते।
20: Angry, I guess. I'm allowed to get angry when I watch these, the Democrats. They talk about it all the time. We had this deal done. You had a deal that was going to give them legally a nuclear weapon. And if that happened, Israel would have been blown away.
5: तो ट्रंप ये कहकर इसराइल पर एहसान जताते हैं कि अगर वो ना होते तो इसराइल का नामो निशान मिट जाता। कुल मिलाकर ईरान से सीधी टक्कर लेने वाला इसराइल खुद को अकेला पा रहा है।
22: What the president is saying is that right now they won't call. Okay, so they would like Israel to be less aggressive. Now we are ready, as I said, to engage in a diplomatic process, but we will not renounce our right for self-defense. And we are going to continue operations in South Lebanon, and if we are attacked, we are going to retaliate.
23: नहीं तो इसमें मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर इसराइल पर हमला होता है हिजबुल्ला की तरफ से तो क्या इसराइल पलटवार करेगा या इस एमओयू की वजह से टोटल सीज फायर होगा हर मोर्चे पर?
22: वी विल डिफेंड आवर सेल्व्स एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज स्टेटेड दैट, आवर डिफेंस मिनिस्टर हैज स्टेटेड दैट इसराइल विल डिफेंड इटसेल्फ इफ अटैक्ड बाय हिजबुल्ला।
5: इसराइल भले ही कहे कि वो लेबनान में किसी की नहीं सुनेगा, लेकिन हकीकत यह कि पिछले रविवार को जिस समझौते का ऐलान ट्रंप ने किया, दावा है कि उसने इसराइल और उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अचंभित कर दिया, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में इजरायली अधिकारियों के हवाले से मंगलवार तक दावा किया गया है कि इसराइल को अब तक समझौते का ड्राफ्ट नहीं दिखाया गया। हालांकि ट्रंप ने इस समझौते पर साइन करने से पहले इसकी एक कॉपी नेतन्याहू को भेजने की बात कही, लेकिन इसने दिखा दिया कि अमेरिका ने अपने सबसे करीबी दोस्त को ईरान से समझौता करने के चक्कर में अकेला छोड़ दिया।
20: एंडिंग द करंट कॉन्फ्लिक्ट, रीओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड प्रिवेंटिंग ईरान फ्रॉम एवर ऑब्टेनिंग ए न्यूक्लियर वेपन, दैट्स व्हाट वाज ऑल अबाउट। दैट वाज अबाउट 99% ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, दे कांट डेवलप इट, बाय इट, दे कैन नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन।
5: अमेरिका और ईरान में जो समझौता होने जा रहा है उससे ईरान मालामाल होगा, उसके प्रतिबंध हटेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचेगा, कमाई करेगा और इस पैसे का इस्तेमाल अपने मिसाइल कार्यक्रम को खतरनाक करने में लगाएगा। ताकि भविष्य में किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अब आप ही सोचिए कि ये काम करने वाले ट्रंप का भारत को किया वायदा कितना भरोसे लायक है, क्योंकि ईरान से होने वाला समझौता बताता है अमेरिका अपने फायदे के लिए इसराइल जैसे सबसे करीबी देश के हितों की भी अनदेखी कर सकता है।
0: दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस जंग से निकलने की एक विंडो तलाश रहे थे, और जब ईरान के साथ उनकी सहमति बन गई तो उन्होंने इसराइल को बिना कॉन्फ्रेंस में लिए ही एमओयू साइन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे थे कि अगर वो इसराइल का साथ लंबे समय तक देते तो ना सिर्फ उनके देश में उनकी नीतियों को लेकर जो मुखालफत हो रही थी वो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती, बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनका धीरे धीरे कर साथ छोड़ रहे थे। यहां तक कि नाटो के देश भी लगातार उन पर सवाल खड़े कर रहे थे, और इन्हीं मजबूरियों के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पेरिस में भारतीयों के बीच बोले पीएम मोदी, भविष्य को आकार दे रहा है भारत। पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुआ विकास, विश्व का भरोसेमंद सहयोगी बना हिंदुस्तान। झारखंड में भी कांग्रेस नहीं संभाल पाई अपना कुनबा, क्रॉस वोटिंग के चलते राज्यसभा चुनाव में मिली हार। एनडीए समर्थित परिमल नाथ वाणी विजयी, बीजेपी ने कहा राहुल की हार। उद्धव की सेना में फिर से बड़ी टूट, उनके 6 सांसदों का शिंदे गुट में शामिल होना तय, बागियों को भेजा गया कारण बताओ नोटिस। 21 जून को नीट री एग्जाम के लिए एयरफोर्स ने कई शहरों में पहुंचाए प्रश्न पत्र, धर्मेंद्र प्रधान ने हाई लेवल मीटिंग की तैयारियों की शिक्षा मंत्री ने समीक्षा। और रांची में आरएसएस ऑफिस पर हमले का आईएसआई कनेक्शन, पाक हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी अमन अंसारी, एटीएस को सौंपी गई जांच। उद्धव गुट में एक बार फिर से बगावत हो गई। गुरुवार को उद्धव ठाकरे ने अपनी संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, बाकायदा व्हिप जारी किया था, मगर इस बैठक में सिर्फ 3 सांसद पहुंचे, 6 सांसदों ने बैठक से दूरी बना ली। अब शिवसेना यूबीटी ने बैठक में शामिल न होने वाले सांसदों से जवाब मांगा है।
1: उद्धव ठाकरे को जिस बात का डर था वही हुआ, पार्टी ने व्हिप जारी किया था, संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, मगर बैठक में सिर्फ 3 सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे पहुंचे, यानी 6 सांसदों ने मीटिंग में हाजिरी नहीं दी। ये वो सांसद हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत की है, माना जा रहा है कि जल्द ही वे अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजय जाधव बागी सांसदों का नेतृत्व करेंगे। उधर बागी सांसदों को लेकर शिवसेना यूबीटी ने गहरी नाराजगी जताई है, पार्टी ने बागी सांसदों से जवाब मांगा है। शिवसेना यूबीटी को एक बार फिर टूट का डर सता रहा है, इसीलिए शिवसेना यूबीटी का एक दल लोकसभा स्पीकर के पास चिट्ठी लेकर पहुंचा, जिसमें लिखा था कि अगर कोई शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने का दावा करे तो पहले हमसे संपर्क किया जाए।
2: हमने एक लेटर दिया है स्पीकर साहब को, कैबिनेट, अगर कोई आता है शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए वो गैरकानूनी है।
3: विषय यही रखा है कि भाई अगर कोई इस ग्रुप को लेके कोई आता है आपके पास में, व्यवस्था आपके हाथ में है, आरपी एक्ट संविधान में जो प्रावधान है उसको लेके हमने लेटर दिया है, अगर कोई पहुँचता है तो हमसे पहले बात।
1: राउत ने आरोप लगाया कि सभी बागियों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है, इसके लिए उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
4: मेरा जो स्टैंड है वो क्रिस्टल क्लियर है, मैं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के साथ हूँ।
1: अब शिंदे गुट इसे अपनी जीत बता रहा है और कांग्रेस कह रही है कि ये ऑपरेशन टाइगर नहीं ऑपरेशन गीदड़ है।
5: ऑपरेशन प्रगति यशस्वी, जिस व्यक्ति ने जनता के लिए इतना काम किया है, जनता हमेशा उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है और सबको पता है कि ओरिजिनल टाइगर कौन है।
6: ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन गीदड़ है। सत्ता की भूख, उसकी एक मर्यादा होती है।
1: खबर है कि टीएमसी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर को खत लिख चुके हैं, जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए ये दोहरा झटका है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: क्या समाजवादी पार्टी में भी उत्तर प्रदेश में बगावत होने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ओपी राजभर के बाद संजय निषाद ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद समाजवादी पार्टी छोड़ना चाहते हैं, और इसके साथ ही अब यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर भी समीकरण बिठाए जा रहे हैं।
7: अखिलेश यादव के दल टूट की जो खबर राजभर ने उठाई है वो अब तूल पकड़ रही है। राजभर के बाद यूपी के मंत्री संजय निषाद भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश से किनारा करना चाहते हैं।
8: दिल्ली शीर्ष नेतृत्व को बताऊं कि वो लोग अब जुड़ना चाहते हैं।
9: आप कितने लोग हैं
8: आपके विचारधारा? मैंने बताया 2000 से अधिक लोग हैं
9: समाजवादी पार्टी के।
8: हाँ, उनके लोग
9: विधायक भी हैं, केवल सांसद
8: के, कांग्रेस के विधायक भी हैं और सांसद भी हैं।
7: लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसे बयानों को बकवास बता रही है।
10: राजभर जी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है तो सीटों की बार्गेनिंग करें।
11: अगर ये उनका कहना सही हो जाएगा तो सनातन प्रणय जीवन में राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे।
7: मामला शुरू हुआ था समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने की खबर से, मगर माहौल बदल गया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि राजभर तो खुद समाजवादी पार्टी में विलय चाहते हैं।
12: मिलके उन्हीं ने निवेदन किया कि सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव डाल रही है, बहुत ब्लैकमेल कर रही है। और उनका अरुण राजभर ने इस बात को भी कहा कि पिताजी की किसी बात का बुरा भी ना माना जाए, उनकी लिखी हुई बात, उनकी कही हुई बात को गंभीरता से भी ना लिया जाए, क्योंकि वो बहुत तनाव में है।
7: अब राजभर के सुपुत्र समाजवादी पार्टी के इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं।
13: सही बात है कि समाजवादी पार्टी मुखिया और इन सभी नेताओं का कोई न कोई यूज तो कर ही रहा, क्योंकि ये बात बताइए जिस दिन की जिक्र कर रहे हैं उस दिन मैं समाजवादी पार्टी के गढ़ को समाप्त करने का अभियान चला रहा था।
7: दरअसल समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि राजभर जानबूझकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं ताकि 27 के चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा कर सकें।
13: मैं समाजवादी पार्टी के गढ़ को समाप्त करने का अभियान चला रहा था।
7: दरअसल समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि राजभर जानबूझकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं ताकि 27 के चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा कर सकें।
14: ये इसलिए बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको सीटें दे देगी, एक तो सीटों के लिए मेरी बातों को लिख लीजिए।
7: समाजवादी पार्टी के आरोपों को ओपी राजभर सही साबित कर रहे हैं, क्योंकि उनका दावा अभी से 34 सीटों पर है।
15: अभी तक हम लोगों ने 34 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किया है और वहाँ जो संगठन में कमजोरी रही है उसको पूरा कराने के लिए प्रयास हम लोगों का हो रहा है कि इस बार हम लोग अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल करा लें।
7: 27 के चुनाव से पहले मुद्दों को धार दी जा रही है और सीटों के लिए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है इसके तार गहरे जुड़ते नजर आ रहे हैं। शुरुआती जांच से ये लग रहा है कि निगरानी के पूरे सिस्टम में ही खामियां हैं। देखिए एक रिपोर्ट।

0: अयोध्या में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बने राम मंदिर में पिछले चार दिन अयोध्या में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बने राम मंदिर में पिछले चार दिनों से रोज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अफसर जा रहे हैं, घंटों तक जांच पड़ताल पूछताछ कर रहे हैं और इस पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जांच की सुई वहां जाकर ठहरी है जहां पता चला है कि चढ़ावा चोरी की प्लानिंग निगरानी के इंतजाम में ही गड़बड़ी से ही शुरू हुई प्रतीत होती है। और मोटे तौर पर एसआईटी की जांच के दायरे में पहले सीसीटीवी लगाने, मेंटेन करने और रिकॉर्ड करने वाले लोग हैं, दूसरे मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारी हैं, तीसरे कर्मचारियों को नौकरी पर रखने वाले अधिकारी हैं, चौथे पूरी व्यवस्था की कानूनी जिम्मेदारी रखने वाले पुलिस अधिकारी भी हैं। जांच टीम ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, उसकी रिकॉर्डिंग और सुरक्षा प्रबंधन की गहन पड़ताल की है। इसी दौरान एसआईटी को सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के संकेत भी मिले हैं। एसआईटी को जांच में मिले दस्तावेजों के अनुसार मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर पिछले 11 महीनों में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारी सुरक्षा खर्च के बावजूद दान पेटियों से नकदी और आभूषणों की कथित चोरी सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
1: अयोध्या मामले में अब एसआईटी की जांच की रडार अब सीसीटीवी कर्मचारियों, पास दिखाने वाले कर्मचारियों और इसके अलावा मंदिर परिसर में मैनेजमेंट देखने वाले कर्मचारियों की तरफ बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो ये सभी वो कर्मचारी हैं जो सीधा ट्रस्ट को रिपोर्ट करते थे, जिनके बीच में कोई भी धारा नहीं थी। इसमें आरएमओ यानी कि रेडियो जो मेंटेनेंस ऑफिसर है, जो तकरीबन 17 वर्षों से वहां पर तैनात है और सीधे ट्रस्ट को रिपोर्ट करता था, और सीसीटीवी फुटेजेस की कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा वहां पर पास निर्गत करने वाले व्यक्ति की जो जिम्मेदारी थी, जिसमें आने जाने के लिए सारी डिटेलिंग होती थी और कौन सा चीज बाहर जाएगी उसकी, और साथ ही साथ मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी की।
0: एसआईटी की टीम की शुरुआती जांच में उस स्टेट बैंक की भूमिका भी संदिग्ध लगी है, जिसे मंदिर में मिले पैसों की गिनती और बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी थी। पता चला है कि पैसों की गिनती पूरी करके जमा करने की जिम्मेदारी स्टेट बैंक की थी, लेकिन उसने इसके लिए आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी रखे हुए थे। इसके अलावा नोटों की गिनती की प्रक्रिया में बेहद कम संख्या में कर्मचारी रखे गए थे, जिसे एसआईटी संदिग्ध मान रही है। एसआईटी ने पूछताछ के लिए करीब 200 लोगों की सूची तैयार की है, जिसमें अब तक 125 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि कुछ लोगों से कई बार पूछताछ हुई है। इसमें ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा मंदिर का ज्यादातर कामकाज देखने वाले रमाशंकर यादव और टिन्नू से भी पूछताछ चल रही है।
1: एसआईटी की जांच अयोध्या मामले में अब गेट चेकिंग ऑफिसर से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी तक पहुंच गई है। चूंकि साफ तौर से गेट से आने जाने वालों की संख्या, इसके अलावा क्या सामान बाहर जाना है, ये जिम्मेदारी इस पर होती थी और ये सीधा ट्रस्ट में चंपत राय और टिन्नू को भी रिपोर्ट करता था। यानी कि इस पूरे मामले पर अब एसआईटी की जांच उस दिशा में भी बढ़ रही है कि कई कर्नाटक से जो लोग आए थे वो किस तरीके से अंदर शामिल हुए। अब इस दिशा में भी जो एसआईटी की जांच है वो आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर गेट चेकिंग से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी जो 5 वर्षों से वहां पर तैनात हैं, अब उधर भी एसआईटी रुक कर रही है। यानी कि कई कर्मचारियों पर अब रडार एसआईटी की खड़ी हो गई है। अयोध्या से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
2: आप सुनते होंगे कि हर राज्य में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत करिए, तुरंत निवारण भी होगा। मध्य प्रदेश जहां जनता की शिकायत को सुलझाने के लिए बनी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को पुलिस वालों ने अपनी रैंकिंग चमकाने का हथियार बना लिया।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ। पहले ये आपने कोई शिकायत की थी सीएम हेल्पलाइन पे? काय की शिकायत थी?
4: अच्छा, अकाउंट फ्रीज हो चुका है, कोई उस पर रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, चलो मैं देख पाता हूँ, है ना। आपका डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी और सब परिवार में ठीक है, मदद करेंगे आपकी, है ना। मैं सडनली देख रहा हूँ कि कंप्लेंट पर कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही, इसलिए।
5: मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक बार फिर सीएम हेल्पलाइन को लेकर खबरदार होना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन पर फर्जी शिकायत के दम पर कुछ पुलिस वाले चेहरा और रैंकिंग चमकाने में जुटे हैं। खबर मध्य प्रदेश की मऊगंज से, सवाल मऊगंज की पुलिस पर। जवाब के लिए सीएम हेल्पलाइन में दर्ज इन शिकायतों का स्क्रीनशॉट आज देखिए। 31 मई को सौरभ के नाम से शिकायत हुई कि मऊगंज थाने में उसके भाई को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से संतुष्ट हो गया, शिकायत बंद हो गई। 31 मई को ही सौरभ के नाम से एक और शिकायत हुई, पुलिस से पासपोर्ट और चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से एकदम हैप्पी हो गया, शिकायत बंद हो गई। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत हुई, मऊगंज थाने में उसकी FIR नहीं लिखी जा रही। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से एकदम संतुष्ट, शिकायत बंद। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत होती है कि पुलिस परेशान कर रही है, थाने में बुलाकर मारपीट कर रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से हैप्पी, शिकायत बंद। 31 मई को सौरभ के नाम से शिकायत कि उसकी बेटी गुम हो गई, मऊगंज थाना पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से संतुष्ट, शिकायत बंद हो गई। दावा है कि मऊगंज पुलिस ही सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत का खेल खेलती है, जहां दावा है 21 मोबाइल नंबर से 233 झूठी शिकायत खुद ही दर्ज करा के आनन फानन में उनका समाधान भी दिखा दिया, ताकि लगे वाह क्या पुलिस है। आगे सुनिए, ये अंकित चौरसिया है, इनके नाम से फर्जी शिकायत दर्ज करा दी कि 20 साल की बेटी गायब है, जबकि अंकित की तो शादी तक नहीं हुई।
6: क्या आपने शिकायत की?
7: नहीं, नहीं।
6: एक शिकायत ऐसी भी है कि आपकी 20 वर्ष की बच्ची स्कूल गई थी और गुम हो गई है।
7: मेरी शादी ही नहीं हुई।
6: तो वो शिकायत फर्जी?
5: मिनट मिनट में ऐसी फर्जी शिकायतें खुद ही मऊगंज की पुलिस दर्ज कराती रही, लगा कि गजब का खेल है। जहां मऊगंज थाना प्रभारी को फिलहाल तबादला करके हटाया गया और दूसरे कांस्टेबल को लाइन हाजिर करके जांच जारी है।
8: व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं, उसकी जांच की गई थी, जिसके प्रधान अक्षर को दोषी पाया गया, उसको लाइन अटैच किया गया।
9: जनता की आवाज सुनने और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए बनाई गई सीएम हेल्पलाइन यदि सरकारी रिकॉर्ड चमकाने का जरिया बन जाए तो सवाल पूरे सिस्टम पर खड़े होंगे। मऊगंज का ये कथित फर्जीवाड़ा बता रहा है कि कैसे रैंकिंग और आंकड़ों की होड़ में जनता के भरोसे को दांव पर लगाया गया। अब बड़ा सवाल ये है कि इस खेल से जुड़े बड़े चेहरे कभी बेनकाब होंगे या फिर एक मोहरे की कुर्बानी देकर बाकी पूरी कहानी को फाइलों में दबा दिया जाएगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
2: RSS हेडक्वार्टर्स पर आधी रात को पेट्रोल बॉम्ब से हमला क्यों किया गया? आखिर इस हमले का उद्देश्य क्या था? क्या ये मामला लोकल पुलिस से आगे बढ़ चुका है? आतंकवादी साजिश के एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है।
10: रांची में RSS के दफ्तर पर हुए हमले की इन तस्वीरों का कनेक्शन अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है। तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि एक शख्स पेट्रोल बम फेंक रहा है, तो वहीं दूसरा शख्स पीछे से वीडियो बना रहा है, ताकि पाकिस्तान में बैठे आकाओं को हमले का सबूत भी भेजा जा सके।
11: जांच में खुलासा हुआ है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की बड़ी भूमिका है।
10: मामले में सियासत बढ़ी तो झारखंड पुलिस एक्शन में आई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी दुबई में पाकिस्तान ISI और भट्टी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था, जो कि दुबई की जेल में भी रहा था। तीनों की उम्र 20 से 23 साल के बीच है, जिसमें एक आरोपी सैफ अंसारी का रांची पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया।
12: वेपन छीन के भागने का प्रयास किया, उसमें जवाबी कार्रवाई में और सुरक्षा हेतु जवाबी कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ी और उसको पैर में इंजरी, बुलेट इंजरी हुई है।
13: मैं रांची पुलिस को बहुत बहुत बधाई शुभकामना दूंगी और हमारी सरकार को भी कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सबके साथ न्याय होता है और ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम करते हैं।
10: इससे पहले BJP इस हमले को लेकर लगातार झारखंड सरकार पर हमलावर थी।
14: जब कांग्रेस के कुछ लोग RSS के बारे में विष फैलाते हैं और उसके बाद सीधे सीधे ये हमला होता है कांग्रेस शासित प्रदेश में, तो ऐसे डेंजरस प्रोपेगेंडा का डेंजरस परिणाम कैसे होता है, ये इसका भी परिचायक है।
10: खबरों की माने तो आरोपियों को सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट किया गया था। RSS दफ्तर पर हमले के लिए आरोपियों ने रेकी की थी, 2 पेट्रोल बम छत पर फेंके थे, 1 पेट्रोल बम गेट के बाहर असेंबल किया था, जिसके पीछे अब पाकिस्तान की साजिश की बात सामने आ रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ सत्यजीत, रांची आज तक।
2: पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बच्चा तस्करी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया, साथ ही इस गिरोह से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 6 मासूमों को सुरक्षित बचाया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है।
10: नकाब के पीछे छिपे इन चेहरों पर मासूम बच्चों को किडनैप करके बेचने का आरोप है। मामले में पुलिस ने 5 बच्चों का रेस्क्यू किया है और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें तस्कर, बिचौलिए, खरीदार और एक अस्पताल का मालिक भी शामिल है।
15: कभी भी किसी बच्चे को नहीं, मुझे झूठा फंसाया गया है, मार मार के यहाँ बिठाया हुआ है।
10: सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में बहुत ही छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जा रही थी। जो बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं उनमें एक बच्चे की उम्र महज 5 दिन है, वहीं 2 बच्चों की उम्र सिर्फ 27 दिन।
16: बहुत ही छोटे बच्चे हुआ करते थे। 1,00,000 रुपए में इन्हें पाली से और राजस्थान के दूसरे गांव से इन्हें खरीदा जाता था, दिल्ली लाया जाता था। दिल्ली के इस हीरा अस्पताल जो कि रोहिणी में स्थित है, यहां लाया जाता था और यहां उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। ट्रीटमेंट करने के बाद जो ऐसे कपल होते थे जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा या जिन्हें बच्चे पाने की अपेक्षा थी, उन्हें ये बच्चे बेच दिए जाते थे। 1,00,000 रुपए में ये बच्चे खरीदे जाते

0: इस पूरे खेल का बाकायदा सिस्टम बना हुआ था, जिसमें बच्चा सप्लायर, बिचौलिए, खरीदार को लाने वाले सबका कट होता था। अलग अलग राज्यों से बच्चों को दिल्ली लाया जाता था। बच्चा गोद लेने की चाहत रखने वाले बेऔलाद जोड़ों की पहचान नेटवर्क के जरिए की जाती थी, जहां अस्पताल में बच्चा न पैदा होने की समस्या का इलाज करा रहे पति पत्नी को टारगेट किया जाता था, जिन्हें झांसा देकर इन मासूमों की जिंदगी का सौदा किया जाता था। अंशुल सिंह, दिल्ली, आज तक।
1: भोजपुर में पुलिस पर पिस्टल तानने फायरिंग करने के आरोपी भरत तिवारी का एक दिन पहले एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर के बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई। अब पुलिस के सेक्शन पर सवाल है। आज ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जोरदार हंगामा किया।
2: जबरदस्त हंगामा बरपा है। पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस लोगों को तितर बितर कर रही है और पीछे से चीख पुकार मची है कि पुलिस वाले गोली न चलाएं। ये बवाल बिहार में आरा के भोजपुर में शाहपुर थाना क्षेत्र के बैलोटी की तस्वीरें हैं। एक दिन पहले यहां पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी नाम का शख्स घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन कह रहे हैं कि ये पुलिस का फेक एनकाउंटर था और इसीलिए आरा बक्सर फोर लेन मार्ग पर वो शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे।
3: बहुत अन्याय हुआ है। मान लीजिए कि एनकाउंटर है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया था, तो प्रशासन को इसको लेकर पकड़ कर जाकर जेल में बंद देना चाहिए। ये नहीं कि एनकाउंटर नहीं करना चाहिए।
2: अब एनकाउंटर की तस्वीर देखिए। ये जो गोली चला रहा है, इसी का नाम भरत तिवारी है। करीब 48 घंटे तक पुलिस के लिए ये शख्स चुनौती बना रहा और आखिरकार एनकाउंटर में मारा गया। मगर परिवार कहता है कि उसे जिंदा भी पकड़ा जा सकता था।
4: सुबह में 8 बजे के करीब में धूप गए, डायरेक्ट धूप के हथियार तान दिल सब परिवार पहन के, और छोट लड़का के कालर धोके मोबाइल छीन ले।
2: अब प्रशासन परिवार और ग्रामीणों को समझा बुझा रहा है, मगर ये एनकाउंटर सवालों के घेरे में जरूर है। सोनू कुमार सिंह, आरा, आज तक।
1: अब खबर अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की, जो तय समय से एक दिन पहले ही हो गया। इस डील से पहले ट्रंप ने भारत को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया, कहा कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा। लेकिन ईरान को लेकर जो समझौता हुआ है, उसमें जिस तरह इसराइल के हितों की अनदेखी की गई है, वो अमेरिका को लेकर खबरदार करने के लिए काफी है।
5: इस तस्वीर को देखकर दुनिया को राहत मिली, जब अमेरिका और ईरान की तरफ से जंग खत्म करने के समझौते के मसौदे पर दस्तखत किए जाते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने बुधवार देर रात डिजिटल हस्ताक्षर किए, जिसके साथ ही समझौता लागू हो गया। ईरान के साथ समझौता करने से पहले ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उनकी तारीफों की झड़ी लगा दी।
6: I want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually.
5: 16 महीनों बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने रिश्तों में आई खटास को कम करने की भरसक कोशिश की। इसी कोशिश में ट्रंप ने वो कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।
7: And the United States, sorry, I'm speaking, I won't.
6: That's okay.
7: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
6: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there.
5: तो ट्रंप ने वादा किया कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा। ट्रंप ये कहकर सबको चौंका देते हैं, लेकिन सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस भरोसे में कितना दम है, क्योंकि ईरान के साथ जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इजराइल की अनदेखी की है, वो अमेरिका से रिश्तों को लेकर खबरदार करता है।
6: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, BB. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he

0: will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true.
1: फ्रांस में ट्रंप की पीस डील पर साइन करने के बाद ईरानी राष्ट्रपति पजिश्कियान ने जिस समझौते के दस्तावेज पर दस्तखत किए उसमें नौवां पॉइंट अमेरिका पर भरोसे का संकट बढ़ाता है। समझौते के मसौदे में अमेरिका, ईरान और उसके सहयोगी देशों के बीच सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत और स्थायी रूप से बंद करने की बात कही गई है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। अमेरिका के लिए ये मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि ट्रंप को चिंता थी कि हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की सैन्य कार्रवाई शांति समझौते को कमजोर कर सकती है, इसीलिए इसे इसराइल के खिलाफ माना जा रहा है। इसराइल पहले ही कह चुका है कि वो अमेरिका ईरान बातचीत में लेबनान को लेकर हुई किसी भी सहमति को नहीं मानेगा, लेकिन ट्रंप इसराइल की सुनने को तैयार नहीं दिखते।
0: Angry, I guess. I'm allowed to get angry when I watch these, the Democrats. They talk about it all the time. We had this deal done. You had a deal that was going to give them legally a nuclear weapon. And if that happened, Israel would have been blown away.
1: तो ट्रंप ये कहकर इसराइल पर एहसान जताते हैं कि अगर वो ना होते तो इसराइल का नामो निशान मिट जाता। कुल मिलाकर ईरान से सीधी टक्कर लेने वाला इसराइल खुद को अकेला पा रहा है।
2: What the president is saying is that right now they won't call. Okay, so they would like Israel to be less aggressive. Now we are ready, as I said, to engage in a diplomatic process, but we will not renounce our right for self-defense. And we are going to continue operations. They won't call. Okay, so they would like Israel to be less aggressive. Now we are ready, as I said, to engage in a diplomatic process, but we will not renounce our right for self-defense. And we are going to continue operations in South Lebanon. And if we are attacked, we are going to retaliate.
3: नहीं तो इसमें मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर इसराइल पर हमला होता है हिजबुल्ला की तरफ से तो क्या इसराइल पलटवार करेगा या इस एमओयू की वजह से टोटल सीज फायर होगा हर मोर्चे पर?
2: We will defend ourselves, and our prime minister has stated that, our defense minister has stated that Israel will defend itself if attacked by Hezbollah.
1: इसराइल भले ही कहे कि वो लेबनान में किसी की नहीं सुनेगा, लेकिन हकीकत ये कि पिछले रविवार को जिस समझौते का ऐलान ट्रंप ने किया, दावा है कि उसने इसराइल और उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अचंभित कर दिया, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में इजरायली अधिकारियों के हवाले से मंगलवार तक दावा किया गया है कि इसराइल को अब तक समझौते का ड्राफ्ट नहीं दिखाया गया। हालांकि ट्रंप ने इस समझौते पर साइन करने से पहले इसकी एक कॉपी नेतन्याहू को भेजने की बात कही, लेकिन इसने दिखा दिया कि अमेरिका ने अपने सबसे करीबी दोस्त को ईरान से समझौता करने के चक्कर में अकेला छोड़ दिया।
0: Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99%. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
1: अमेरिका और ईरान में जो समझौता होने जा रहा है उससे ईरान मालामाल होगा, उसके प्रतिबंध हटेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचेगा, कमाई करेगा और इस पैसे का इस्तेमाल अपने मिसाइल कार्यक्रम को खतरनाक करने में लगाएगा ताकि भविष्य में किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अब आप ही सोचिए कि ये काम करने वाले ट्रंप का भारत को किया वायदा कितना भरोसे लायक है, क्योंकि ईरान से होने वाला समझौता बताता है अमेरिका अपने फायदे के लिए इसराइल जैसे सबसे करीबी देश के हितों की भी अनदेखी कर सकता है।
4: दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस जंग से निकलने की एक विंडो तलाश रहे थे और जब ईरान के साथ उनकी सहमति बन गई तो उन्होंने इसराइल को बिना कॉन्फ्रेंस में लिए ही एमओयू साइन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे थे कि अगर वो इसराइल का साथ लंबे समय तक देते तो ना सिर्फ उनके देश में उनकी नीतियों को लेकर जो मुखालफत हो रही थी वो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती, बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनका धीरे धीरे कर साथ छोड़ रहे थे, यहां तक कि नाटो के देश भी लगातार उन पर सवाल खड़े कर रहे थे और इन्हीं मजबूरियों के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पेरिस में भारतीयों के बीच बोले पीएम मोदी, भविष्य को आकार दे रहा है भारत। पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुआ विकास, विश्व का भरोसेमंद सहयोगी बना हिंदुस्तान। झारखंड में भी कांग्रेस नहीं संभाल पाई अपना कुनबा, क्रॉस वोटिंग के चलते राज्यसभा चुनाव में मिली हार। एनडीए समर्थित परिमल नाथ वाणी विजयी, बीजेपी ने कहा राहुल की हार। उद्धव की सेना में फिर से बड़ी टूट, उनके 6 सांसदों का शिंदे गुट में शामिल होना तय, बागियों को भेजा गया कारण बताओ नोटिस। 21 जून को नीट री एग्जाम के लिए एयरफोर्स ने कई शहरों में पहुंचाए प्रश्न पत्र, धर्मेंद्र प्रधान ने हाई लेवल मीटिंग की तैयारियों की शिक्षा मंत्री ने समीक्षा। और रांची में आरएसएस ऑफिस पर हमले का आईएसआई कनेक्शन, पाक हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी अमन अंसारी, एटीएस को सौंपी गई जांच। उद्धव गुट में एक बार फिर से बगावत हो गई। गुरुवार को उद्धव ठाकरे ने अपनी संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, बाकायदा व्हिप जारी किया था, मगर इस बैठक में सिर्फ 3 सांसद पहुंचे, 6 सांसदों ने बैठक से दूरी बना ली। अब शिवसेना यूबीटी ने बैठक में शामिल न होने वाले सांसदों से जवाब मांगा है।
1: उद्धव ठाकरे को जिस बात का डर था वही हुआ, पार्टी ने व्हिप जारी किया था, संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, मगर बैठक में सिर्फ 3 सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे पहुंचे, यानी 6 सांसदों ने मीटिंग में हाजिरी नहीं दी। ये वो सांसद हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत की है, माना जा रहा है कि जल्द ही वे अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजय जाधव बागी सांसदों का नेतृत्व करेंगे। उधर बागी सांसदों को लेकर शिवसेना यूबीटी ने गहरी नाराजगी जताई है, पार्टी ने बागी सांसदों से जवाब मांगा है। शिवसेना यूबीटी को एक बार फिर टूट का डर सता रहा है, इसीलिए शिवसेना यूबीटी का एक दल लोकसभा स्पीकर के पास चिट्ठी लेकर पहुंचा, जिसमें लिखा था कि अगर कोई शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने का दावा करे तो पहले हमसे संपर्क किया जाए।
2: हमने एक लेटर दिया है स्पीकर साहब को, कैबिनेट, अगर कोई आता है शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए कोई गैरकानूनी है।
3: विषय यही रखा है कि भाई अगर कोई इस ग्रुप को लेके कोई आता है आपके पास में, व्यवस्था आपके हाथ में है, आरपी एक्ट संविधान में जो प्रावधान है उसको लेके हमने लेटर दिया है, अगर कोई पहुँचता है तो हमसे पहले बात करें।
1: राउत ने आरोप लगाया कि सभी बागियों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है, इसके लिए उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
4: मेरा जो स्टैंड है वो क्रिस्टल क्लियर है, मैं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के साथ हूँ।
1: अब शिंदे गुट इसे अपनी जीत बता रहा है और कांग्रेस कह रही है कि ये ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन गीदड़ है।
5: ऑपरेशन प्रगति यशस्वी, जिस व्यक्ति ने जनता के लिए इतना काम किया है, जनता हमेशा उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है और सबको पता है कि ओरिजिनल टाइगर कौन है।
6: ऑपरेशन टाइगर ने, ऑपरेशन गीदड़ है, सत्ता की भूख उसकी एक मर्यादा होती है।
1: खबर है कि टीएमसी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर को खत लिख चुके हैं, जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए ये दोहरा झटका है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: क्या समाजवादी पार्टी में भी उत्तर प्रदेश में बगावत होने वाली है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ओपी राजभर के बाद संजय निषाद ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद समाजवादी पार्टी छोड़ना चाहते हैं, और इसके साथ ही अब यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर भी समीकरण बिठाए जा रहे हैं।
7: अखिलेश यादव के दल टूट की जो खबर राजभर ने उठाई है वो अब तूल पकड़ रही है। राजभर के बाद यूपी के मंत्री संजय निषाद भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश से किनारा करना चाहते हैं।
8: दिल्ली शीर्ष नेतृत्व को बताऊं कि वो लोग अब जुड़ना चाहते हैं।
9: आप कितने लोग हैं
8: आपके विचारधारा? मैंने बताया 2000 से अधिक लोग हैं
9: समाजवादी पार्टी के।
8: हाँ, उनके लोग
9: विधायक भी हैं, केवल सांसद
8: के? कांग्रेस के विधायक भी हैं और सांसद भी हैं।
7: लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसे बयानों को बकवास बता रही है।
10: राजभर जी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अब चुनाव आया है तो सीटों की बार्गेनिंग करें।
11: अगर ये उनका कहना सही हो जाएगा तो सनातन प्रेम जीवन में राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे।
7: मामला शुरू हुआ था समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने की खबर से, मगर माहौल बदल गया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि राजभर तो खुद समाजवादी पार्टी में विलय चाहते हैं।
12: मिलके उन्होंने निवेदन किया कि सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव डाल रही है, बहुत ब्लैकमेल कर रही है। और उनका अरुण राजभर ने इस बात को भी कहा कि पिताजी की किसी बात का बुरा भी ना माना जाए, उनकी लिखी हुई बात और उनकी कही हुई बात को गंभीरता से भी ना लिया जाए, क्योंकि वो बहुत तनाव में है।
7: अब राजभर के सुपुत्र समाजवादी पार्टी के इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं।
13: सही बात है कि समाजवादी पार्टी मुखिया और इन सभी नेताओं का कोई न कोई यूज तो कर ही रहा, क्योंकि ये बात बताइए जिस दिन की जिक्र ये कर रहे हैं उस दिन मैं समाजवादी पार्टी के गढ़ को समाप्त करने का अभियान चला रहा था।
7: दरअसल समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि राजभर जानबूझकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं ताकि 27 के चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा कर सकें।
14: ये इसलिए बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको सीटें दे देगी। एक तो सीटों के लिए मेरी बातों को लिख लीजिए।
7: समाजवादी पार्टी के आरोपों को ओपी राजभर सही साबित कर रहे हैं, क्योंकि उनका दावा अभी से 34 सीटों पर है।
15: अभी तक हम लोगों ने 34 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किया है और वहाँ जो संगठन में कमजोरी रही है उसको पूरा कराने के लिए प्रयास हम लोगों का हो रहा है कि इस बार हम लोग अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल करा लें।
7: 27 के चुनाव से पहले मुद्दों को धार दी जा रही है और सीटों के लिए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 के री एग्जामिनेशन को पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाने और सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार और एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए इस बार प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और देश भर के केंद्रों तक उनकी सुरक्षित डिलीवरी का जिम्मा भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है।
7: देश में नीट के पेपर को सुरक्षित करने के लिए भारतीय वायुसेना ने उड़ान भर दी है। 21 जून को होने वाली डी नीट के पेपर को लेकर सेना का हेलीकॉप्टर अलग अलग जगहों पर पहुंच रहा है, जहां से पेपर को लोड किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस की कड़ी निगरानी में इन्हें स्ट्रांग रूम भेजा जा रहा है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता के मानकों को बनाए रखने पर जोर दिया। उधर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है।
16: पहले बोले कि हम पेपर जो है वो हवाई जहाज से, एयरफोर्स के हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट कराएंगे, अब कह रहे हैं टेलीग्राम बैन कर दिया, इससे कोई पेपर लीक रुकेंगे? पेपर लीक तो रोकने ही नहीं इनको, इनकी नीयत ही खराब है। इतने जो एमपी और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं? आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं।
7: नीट पेपर लीक को लेकर जारी घमासान के बीच टेलीग्राम पर रोक का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, जहां सरकार ने टेलीग्राम को अपराधियों का अड्डा बताया। वहीं टेलीग्राम की ओर से दलील दी गई कि क्या एक घटना को रोकने के लिए पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर देना सही है। बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज तक ब्यूरो।
0: श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसके तार गहरे जुड़ते नजर आ रहे हैं। शुरुआती जांच से यह लग रहा है कि निगरानी के पूरे सिस्टम में ही खामियां हैं। देखिए एक रिपोर्ट।

0: अयोध्या में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बने राम मंदिर में पिछले 4 दिनों से रोज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अफसर जा रहे हैं, घंटों तक जांच पड़ताल पूछताछ कर रहे हैं। और इस पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जांच की सुई वहां जाकर ठहरी है जहां पता चला है कि चढ़ावा चोरी की प्लानिंग निगरानी के इंतजाम में ही गड़बड़ी से ही शुरू हुई प्रतीत होती है। और मोटे तौर पर SIT की जांच के दायरे में पहले CCTV लगाने, मेंटेन करने और रिकॉर्ड करने वाले लोग हैं, दूसरे मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारी हैं, तीसरे कर्मचारियों को नौकरी पर रखने वाले अधिकारी हैं, चौथे पूरी व्यवस्था की कानूनी जिम्मेदारी रखने वाले पुलिस अधिकारी भी हैं। जांच टीम ने मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरों की स्थिति, उसकी रिकॉर्डिंग और सुरक्षा प्रबंधन की गहन पड़ताल की है। इसी दौरान SIT को CCTV फुटेज से छेड़छाड़ के संकेत भी मिले हैं। SIT को जांच में मिले दस्तावेजों के अनुसार मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर पिछले 11 महीनों में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारी सुरक्षा खर्च के बावजूद दान पेटियों से नकदी और आभूषणों की कथित चोरी सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
1: अयोध्या मामले में अब SIT की जांच की रडार अब CCTV कर्मचारियों, पास दिखाने वाले कर्मचारियों और इसके अलावा मंदिर परिसर में मैनेजमेंट देखने वाले कर्मचारियों की तरफ बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो ये सभी वो कर्मचारी हैं जो सीधा ट्रस्ट को रिपोर्ट करते थे, जिनके बीच में कोई भी धारा नहीं थी। इसमें RMO यानी कि रेडियो जो मेंटेनेंस ऑफिसर है, जो तकरीबन 17 वर्षों से वहां पर तैनात है और सीधे ट्रस्ट को रिपोर्ट करता था, और CCTV फुटेजेस की कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा वहां पर पास निर्गत करने वाले व्यक्ति की जो जिम्मेदारी थी, जिसमें आने जाने के लिए सारी डिटेलिंग होती थी और कौन सा चीज बाहर जाएगी उसकी, और साथ ही साथ मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी की।
0: SIT की टीम की शुरुआती जांच में उस स्टेट बैंक की भूमिका भी संदिग्ध लगी है, जिसे मंदिर में मिले पैसों की गिनती और बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी थी। पता चला है कि पैसों की गिनती पूरी करके जमा करने की जिम्मेदारी स्टेट बैंक की थी, लेकिन उसने इसके लिए आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी रखे हुए थे। इसके अलावा नोटों की गिनती की प्रक्रिया में बेहद कम संख्या में कर्मचारी रखे गए थे, जिसे SIT संदिग्ध मान रही है। SIT ने पूछताछ के लिए करीब 200 लोगों की सूची तैयार की है, जिसमें अब तक 125 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि कुछ लोगों से कई बार पूछताछ हुई है। इसमें ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा मंदिर का ज्यादातर कामकाज देखने वाले रमाशंकर यादव और टिन्नू से भी पूछताछ चल रही है।
1: SIT की जांच अयोध्या मामले में अब गेट चेकिंग ऑफिसर से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी तक पहुंच गई है। चूंकि साफ तौर से गेट से आने जाने वालों की संख्या, इसके अलावा क्या सामान बाहर जाना है, ये जिम्मेदारी इस पर होती थी, और ये सीधा ट्रस्ट में चंपत राय और टिन्नू को भी रिपोर्ट करता था। यानी कि इस पूरे मामले पर अब SIT की जांच उस दिशा में भी बढ़ रही है कि कई कर्नाटक से जो लोग आए थे वो किस तरीके से अंदर शामिल हुए। अब इस दिशा में भी जो SIT की जांच है वो आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर गेट चेकिंग से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी जो 5 वर्षों से वहां पर तैनात हैं, अब उधर भी SIT रुक कर रही है। यानी कि कई कर्मचारियों पर अब रडार SIT की खड़ी हो गई है। अयोध्या से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
2: आप सुनते होंगे कि हर राज्य में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत करिए, तुरंत निवारण भी होगा। मध्य प्रदेश जहां जनता की शिकायत को सुलझाने के लिए बनी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को पुलिस वालों ने अपनी रैंकिंग चमकाने का हथियार बना लिया।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूं। पहले ये आपने कोई शिकायत की थी CM हेल्पलाइन पे? काय की शिकायत थी?
4: अच्छा, अकाउंट फ्रीज हो चुका है, कोई उस पर रिजल्ट नहीं आया।
3: अच्छा, चलो मैं देख पाता हूँ, है ना। आपका डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी और सब परिवार में ठीक है, मदद करेंगे आपकी, है ना। मैं सडनली देख रहा हूँ कि कंप्लेंट पर कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही। इसलिए
5: मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक बार फिर CM हेल्पलाइन को लेकर खबरदार होना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में CM हेल्पलाइन पर फर्जी शिकायत के दम पर कुछ पुलिस वाले चेहरा और रैंकिंग चमकाने में जुटे। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज से, सवाल मऊगंज की पुलिस पर, जवाब के लिए सीएम हेल्पलाइन में दर्ज इन शिकायतों का स्क्रीनशॉट आज देखिए। 31 मई को सौरभ के नाम से शिकायत हुई कि मऊगंज थाने में उसके भाई को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से संतुष्ट हो गया, शिकायत बंद हो गई। 31 मई को ही सौरभ के नाम से एक और शिकायत हुई, पुलिस से पासपोर्ट और चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से एकदम हैप्पी हो गया, शिकायत बंद हो गई। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत हुई, मऊगंज थाने में उसकी FIR नहीं लिखी जा रही। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से एकदम संतुष्ट, शिकायत बंद। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत होती है कि पुलिस परेशान कर रही है, थाने में बुलाकर मारपीट कर रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से हैप्पी, शिकायत बंद। 31 मई को सौरभ के नाम से शिकायत कि उसकी बेटी गुम हो गई, मऊगंज थाना पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से संतुष्ट, शिकायत बंद हो गई। दावा है कि मऊगंज पुलिस ही सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत का खेल खेलती है, जहां दावा है 21 मोबाइल नंबर से 233 झूठी शिकायत खुद ही दर्ज करा के आनंद फानंद में उनका समाधान भी दिखा दिया, ताकि लगे वाह क्या पुलिस है। आगे सुनिए, ये अंकित चौरसिया है, इनके नाम से फर्जी शिकायत दर्ज करा दी कि 20 साल की बेटी गायब है, जबकि अंकित की तो शादी तक नहीं हुई।
6: क्या आपने शिकायत की?
7: नहीं, मैंने
6: नहीं। एक शिकायत ऐसी भी है कि आपकी 20 वर्ष की बच्ची स्कूल गई थी और गुम हो गई है।
7: मेरी शादी ही नहीं हुई।
6: तो वो शिकायत फर्जी?
5: मिनट मिनट में ऐसी फर्जी शिकायतें खुद ही मऊगंज की पुलिस दर्ज कराती रही, लगा कि गजब का खेल है। जहां मऊगंज थाना प्रभारी को फिलहाल तबादला करके हटाया गया और दूसरे कांस्टेबल को लाइन हाजिर करके जांच जारी है।
8: व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं, उसकी जांच की गई थी, उसके प्रधान अक्षर को दोषी पाया गया, उसको लाइन अटैच किया गया।
9: जनता की आवाज सुनने और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए बनाई गई सीएम हेल्पलाइन यदि सरकारी रिकॉर्ड चमकाने का जरिया बन जाए तो सवाल पूरे सिस्टम पर खड़े होंगे। मऊगंज का ये कथित फर्जीवाड़ा बता रहा है कि कैसे रैंकिंग और आंकड़ों की होड़ में जनता के भरोसे को दांव पर लगाया गया। अब बड़ा सवाल ये है कि इस खेल से जुड़े बड़े चेहरे कभी बेनकाब होंगे या फिर एक मोहरे की कुर्बानी देकर बाकी पूरी कहानी को फाइलों में दबा दिया जाएगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
2: RSS हेडक्वार्टर्स पर आधी रात को पेट्रोल बॉम्ब से हमला क्यों किया गया? आखिर इस हमले का उद्देश्य क्या था? क्या ये मामला लोकल पुलिस से आगे बढ़ चुका है? आतंकवादी साजिश के एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है।
10: रांची में RSS के दफ्तर पर हुए हमले की इन तस्वीरों का कनेक्शन अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है। तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि एक शख्स पेट्रोल बम फेंक रहा है तो वहीं दूसरा शख्स पीछे से वीडियो बना रहा है, ताकि पाकिस्तान में बैठे आकाओं को हमले का सबूत भी भेजा जा सके।
11: जांच में खुलासा हुआ है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की बड़ी भूमिका है।
10: मामले में सियासत बढ़ी तो झारखंड पुलिस एक्शन में आई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी दुबई में पाकिस्तान ISI और भट्टी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था, जो कि दुबई की जेल में भी रहा था। तीनों की उम्र 20 से 23 साल के बीच है, जिसमें एक आरोपी सैफ अंसारी का रांची पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया।
12: वेपन छीन के भागने का प्रयास किया, उसमें जवाबी कार्रवाई में और सुरक्षा हेतु जवाबी कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ी और उसको पैर में इंजरी, बुलेट इंजरी हुई है।
13: मैं रांची पुलिस को बहुत बहुत बधाई शुभकामना दूंगी और हमारी सरकार को भी कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सबके साथ न्याय होता है और ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम करते हैं।
10: इससे पहले BJP इस हमले को लेकर लगातार झारखंड सरकार पर हमलावर थी।
14: जब कांग्रेस के कुछ लोग RSS के बारे में विष फैलाते हैं और उसके बाद सीधे सीधे ये हमला होता है कांग्रेस शासित प्रदेश में, तो ऐसे डेंजरस प्रोपेगेंडा का डेंजरस परिणाम कैसे होता है, ये इसका भी परिचायक है।
10: खबरों की माने तो आरोपियों को सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट किया गया था। RSS दफ्तर पर हमले के लिए आरोपियों ने रेकी की थी, 2 पेट्रोल बम छत पर फेंके थे, 1 पेट्रोल बम गेट के बाहर असेंबल किया था, जिसके पीछे अब पाकिस्तान की साजिश की बात सामने आ रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ सत्यजीत, रांची आज तक।
2: पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बच्चा तस्करी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया, साथ ही इस गिरोह से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 6 मासूमों को सुरक्षित बचाया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है।
10: नकाब के पीछे छिपे इन चेहरों पर मासूम बच्चों को किडनैप करके बेचने का आरोप है। मामले में पुलिस ने 5 बच्चों का रेस्क्यू किया है और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें तस्कर, बिचौलिए, खरीदार और एक अस्पताल का मालिक भी शामिल है।
15: कभी भी किसी बच्चे को नहीं, मुझे झूठा फंसाया गया है, मार मार के यहाँ बिठाया हुआ।
10: सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में बहुत ही छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जा रही थी। जो बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं उनमें एक बच्चे की उम्र महज 5 दिन है, वहीं 2 बच्चों की उम्र सिर्फ 27 दिन।
16: बहुत ही छोटे बच्चे हुआ करते थे। 1,00,000 रुपए में इन्हें पाली से और राजस्थान के दूसरे गांवों से इन्हें खरीदा जाता था, दिल्ली लाया जाता था। दिल्ली के इस हीरा अस्पताल जो कि रोहिणी में स्थित है, यहां लाया जाता था और यहां उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। ट्रीटमेंट करने के बाद जो ऐसे कपल होते थे जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा या जिन्हें बच्चे पाने की अपेक्षा थी, उन्हें ये बच्चे बेच दिए जाते थे। 1,00,000 रुपए में ये बच्चे खरीदे जाते थे राजस्थान से या गुजरात से, और यहां दिल्ली में करीब 8 से 9 लाख रुपए में इन बच्चों को बेच दिया जाता था।
10: इस रैकेट का खुलासा करोलबाग में एक शख्स की जागरूकता की वजह से हुआ, जिसने एक महिला को अलग अलग बच्चों के साथ देखा, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने एक टीम बनाकर गिरोह से बच्चा खरीदने का पूरा जाल बिछाया और फिर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ।
17: उसमें पेरेंट्स से डील सेट होती थी और सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे, बर्थ सर्टिफिकेट्स फोर्ज किए जाते थे, डिलीवरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे और जितने भी इनवॉइसेस, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे फोर्ज किए जाते थे वहीं पर ही उसी हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर विवेक की एक्टिव रोल प्ले करती थी एज द लिंचपिन।
10: इस पूरे खेल का बाकायदा सिस्टम बना हुआ था, जिसमें बच्चा सप्लायर, बिचौलिए, खरीदार को लाने वाले सबका कट होता था। अलग अलग राज्यों से बच्चों को दिल्ली लाया जाता था। बच्चा गोद लेने की चाहत रखने वाले बेऔलाद जोड़ों की पहचान नेटवर्क के जरिए की जाती थी, जहां अस्पताल में बच्चा न पैदा होने की समस्या का इलाज करा रहे पति पत्नी को टारगेट किया जाता था, जिन्हें झांसा देकर इन मासूमों की जिंदगी का सौदा किया जाता था। अंशुल सिंह, दिल्ली, आज तक।
2: भोजपुर में पुलिस पर पिस्टल तानने, फायरिंग करने के आरोपी भरत तिवारी का एक दिन पहले एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर के बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई। अब पुलिस के सेक्शन पर सवाल है। आज ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जोरदार हंगामा किया।
18: जबरदस्त हंगामा बरपा है। पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस लोगों को तितर बितर कर रही है और पीछे से चीख पुकार मची है कि पुलिस वाले गोली ना चलाएं। ये बवाल बिहार में आरा के भोजपुर में शाहपुर थाना क्षेत्र के बैलोटी की तस्वीरें हैं। एक दिन पहले यहां पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी नाम का शख्स घायल हो गया था, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन कह रहे हैं कि ये पुलिस का फेक एनकाउंटर था और इसीलिए आरा बक्सर फोर लेन मार्ग पर वो शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे।
19: घोर अन्याय हुआ है। मान लीजिए कि एनकाउंटर है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया था, तो प्रशासन को इसको लेकर पकड़ कर जाकर जेल में बंद देना चाहिए। ये नहीं कि एनकाउंटर नहीं करना चाहिए।
18: अब एनकाउंटर की तस्वीर देखिए। ये जो गोली चला रहा है, इसी का नाम भरत तिवारी है। करीब 48 घंटे तक पुलिस के लिए ये शख्स चुनौती बना रहा और आखिरकार एनकाउंटर में मारा गया, मगर परिवार कहता है कि उसे जिंदा भी पकड़ा जा सकता था।
20: सुबह में 8 बजे के करीब में धूप गए, डायरेक्ट धूप के हथियार तान दिल सब परिवार पहन के, और छोट लड़का के कालर धोके मोबाइल छीन ले।
18: अब प्रशासन परिवार और ग्रामीणों को समझा बुझा रहा है, मगर ये एनकाउंटर सवालों के घेरे में जरूर है। सोनू कुमार सिंह, आरा, आज तक।
2: अब खबर अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की, जो तय समय से एक दिन पहले ही हो गया। इस डील से पहले ट्रंप ने भारत को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया, कहा कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा। लेकिन ईरान को लेकर जो समझौता हुआ है, उसमें जिस तरह इसराइल के हितों की अनदेखी की गई है, वो अमेरिका को लेकर खबरदार करने के लिए काफी है।
5: इस तस्वीर को देखकर दुनिया को राहत मिली जब अमेरिका और ईरान की तरफ से जंग खत्म करने के समझौते के मसौदे पर दस्तखत किए जाते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने बुधवार देर रात डिजिटल हस्ताक्षर किए, जिसके साथ ही समझौता लागू हो गया। ईरान के साथ समझौता करने से पहले ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उनकी तारीफों की झड़ी लगा दी। सोलह महीनों बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने रिश्तों में आई खटास को कम करने की भरसक कोशिश की। इसी कोशिश में ट्रंप ने वो कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।
0: And the United States, sorry, I'm speaking, I won't.
21: That's okay.
0: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
21: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there.
5: तो ट्रंप ने वादा किया कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा। ट्रंप ये कहकर सबको चौंका देते हैं, लेकिन सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस भरोसे में कितना दम है, क्योंकि ईरान के साथ जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इजराइल की अनदेखी की है वो अमेरिका से रिश्तों को लेकर खबरदार करता है।
21: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, BB. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true.
5: फ्रांस में ट्रंप की पीस डील पर साइन करने के बाद ईरानी राष्ट्रपति पेजिशकियान ने जिस समझौते के दस्तावेज पर दस्तखत किए उसमें नौवां पॉइंट अमेरिका पर भरोसे का संकट बढ़ाता है। समझौते के मसौदे में अमेरिका, ईरान और उसके सहयोगी देशों के बीच सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत और स्थायी रूप से बंद करने की बात कही गई है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। अमेरिका के लिए ये मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि ट्रंप को चिंता थी कि हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की सैन्य कार्रवाई शांति समझौते को कमजोर कर सकती है, इसीलिए इसे इसराइल के खिलाफ माना जा रहा है। इसराइल पहले ही कह चुका है कि वो अमेरिका ईरान बातचीत में लेबनान को लेकर हुई किसी भी सहमति को नहीं मानेगा, लेकिन ट्रंप इसराइल की सुनने को तैयार नहीं दिखते।
21: Angry, I guess. I'm allowed to get angry when I watch the Democrats. They talk about it all the time. We had this deal done. You had a deal that was going to give them legally a nuclear weapon. And if that happened, Israel would have been blown away.
5: तो ट्रंप ये कहकर इसराइल पर एहसान जताते हैं कि अगर वो ना होते तो इसराइल का नामो निशान मिट जाता। कुल मिलाकर ईरान से सीधी टक्कर लेने वाला इसराइल खुद को अकेला पा रहा है।
22: What the president is saying is that right now they won't call. Okay, so they would like Israel to be less aggressive. Now we are ready, as I said, to engage in a diplomatic process, but we will not renounce our right for self-defense. And we are going to continue operations in South Lebanon, and if we are attacked, we are going to retaliate.
23: नहीं, तो इसमें मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर इसराइल पर हमला होता है हिजबुल्ला की तरफ से तो क्या इसराइल पलटवार करेगा या इस एमओयू की वजह से टोटल सीज फायर होगा हर मोर्चे पर?
22: We will defend ourselves and our prime minister has stated that, our defense minister has stated that Israel will defend itself if attacked by Hezbollah.
5: इसराइल भले ही कहे कि वो लेबनान में किसी की नहीं सुनेगा, लेकिन हकीकत ये कि पिछले रविवार को जिस समझौते का ऐलान ट्रंप ने किया, दावा है कि उसने इसराइल और उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अचंभित कर दिया, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में इजरायली अधिकारियों के हवाले से मंगलवार तक दावा किया गया है कि इसराइल को अब तक समझौते का ड्राफ्ट नहीं दिखाया गया। हालांकि ट्रंप ने इस समझौते पर साइन करने से पहले इसकी एक कॉपी नेतन्याहू को भेजने की बात कही, लेकिन इसने दिखा दिया कि अमेरिका ने अपने सबसे करीबी दोस्त को ईरान से समझौता करने के चक्कर में अकेला छोड़ दिया।
21: Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99%. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
5: अमेरिका और ईरान में जो समझौता होने जा रहा है उससे ईरान मालामाल होगा, उसके प्रतिबंध हटेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचेगा, कमाई करेगा और इस पैसे का इस्तेमाल अपने मिसाइल कार्यक्रम को खतरनाक करने में लगाएगा। ताकि भविष्य में किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अब आप ही सोचिए कि ये काम करने वाले ट्रंप का भारत को किया वायदा कितना भरोसे लायक है, क्योंकि ईरान से होने वाला समझौता बताता है अमेरिका अपने फायदे के लिए इसराइल जैसे सबसे करीबी देश के हितों की भी अनदेखी कर सकता है।
1: दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस जंग से निकलने की एक विंडो तलाश रहे थे, और जब ईरान के साथ उनकी सहमति बन गई तो उन्होंने इसराइल को बिना कॉन्फ्रेंस में लिए ही MOU साइन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे थे कि अगर वो इसराइल का साथ लंबे समय तक देते तो ना सिर्फ उनके देश में उनकी नीतियों को लेकर जो मुखालफत हो रही थी वो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती, बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनका धीरे धीरे कर साथ छोड़ रहे थे। यहां तक कि नाटो के देश भी लगातार उन पर सवाल खड़े कर रहे थे, और इन्हीं मजबूरियों के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पेरिस में भारतीयों के बीच बोले पीएम मोदी, भविष्य को आकार दे रहा है भारत। पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुआ विकास, विश्व का भरोसेमंद सहयोगी बना हिंदुस्तान। झारखंड में भी कांग्रेस नहीं संभाल पाई अपना कुनबा, क्रॉस वोटिंग के चलते राज्यसभा चुनाव में मिली हार। एनडीए समर्थित परिमल नाथ वाणी विजयी, बीजेपी ने कहा राहुल की हार। उद्धव की सेना में फिर से बड़ी टूट, उनके 6 सांसदों का शिंदे गुट में शामिल होना तय, बागियों को भेजा गया कारण बताओ नोटिस। 21 जून को नीट री एग्जाम के लिए एयरफोर्स ने कई शहरों में पहुंचाए प्रश्न पत्र, धर्मेंद्र प्रधान ने हाई लेवल मीटिंग की तैयारियों की शिक्षा मंत्री ने समीक्षा। और रांची में आरएसएस ऑफिस पर हमले का आईएसआई कनेक्शन, पाक हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी अमन अंसारी, एटीएस को सौंपी गई जांच। उद्धव गुट में एक बार फिर से बगावत हो गई। गुरुवार को उद्धव ठाकरे ने अपनी संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, बाकायदा व्हिप जारी किया था, मगर इस बैठक में सिर्फ 3 सांसद पहुंचे, 6 सांसदों ने बैठक से दूरी बना ली। अब शिवसेना यूबीटी ने बैठक में शामिल न होने वाले सांसदों से जवाब मांगा है।
1: उद्धव ठाकरे को जिस बात का डर था वही हुआ, पार्टी ने व्हिप जारी किया था, संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, मगर बैठक में सिर्फ 3 सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे पहुंचे, यानी 6 सांसदों ने मीटिंग में हाजिरी नहीं दी। ये वो सांसद हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत की है, माना जा रहा है कि जल्द ही वे अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजय जाधव बागी सांसदों का नेतृत्व करेंगे। उधर बागी सांसदों को लेकर शिवसेना यूबीटी ने गहरी नाराजगी जताई है, पार्टी ने बागी सांसदों से जवाब मांगा है। शिवसेना यूबीटी को एक बार फिर टूट का डर सता रहा है, इसीलिए शिवसेना यूबीटी का एक दल लोकसभा स्पीकर के पास चिट्ठी लेकर पहुंचा, जिसमें लिखा था कि अगर कोई शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने का दावा करे तो पहले हमसे संपर्क किया जाए।
2: हमें एक लेटर दिया है स्पीकर साहब को कैबिनेट, कि अगर कोई आता है शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए वो गैरकानूनी है।
3: विषय यही रखा है कि भाई अगर कोई इस ग्रुप को लेके कोई आता है आपके पास में, व्यवस्था आपके हाथ में है, आरपी एक्ट संविधान में जो प्रावधान है उसको लेके हमने लेटर दिया है, अगर कोई पहुँचता है तो हमसे पहले बात करें।
1: राउत ने आरोप लगाया कि सभी बागियों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है, इसके लिए उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
4: मेरा जो स्टैंड है वो क्रिस्टल क्लियर है, मैं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के साथ हूँ।
1: अब शिंदे गुट इसे अपनी जीत बता रहा है और कांग्रेस कह रही है कि ये ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन गीदड़ है।
5: ऑपरेशन प्रगति यशस्वी, जिस व्यक्ति ने जनता के लिए इतना काम किया है, जनता हमेशा उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है और सबको पता है कि ओरिजिनल टाइगर कौन है।
6: ऑपरेशन टाइगर ने ऑपरेशन गीदड़ है, सत्ता की भूख उसकी एक मर्यादा होती है।
1: खबर है कि टीएमसी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर को खत लिख चुके हैं, जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए ये दोहरा झटका है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: क्या समाजवादी पार्टी में भी उत्तर प्रदेश में बगावत होने वाली है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ओपी राजभर के बाद संजय निषाद ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद समाजवादी पार्टी छोड़ना चाहते हैं, और इसके साथ ही अब यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर भी समीकरण बिठाए जा रहे हैं।
7: अखिलेश यादव के दल टूट की जो खबर राजभर ने उठाई है वो अब तूल पकड़ रही है। राजभर के बाद यूपी के मंत्री संजय निषाद भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश से किनारा करना चाहते हैं।
8: दिल्ली शीर्ष नेतृत्व को बताऊं क्या भी कि वो लोग अब जुड़ना चाहते हैं।
9: आप कितने लोग हैं
8: आपके विचारधारा? मैंने बताया 2000 से अधिक लोग हैं
9: समाजवादी पार्टी के।
8: हाँ, उनके लोग
9: विधायक भी हैं, केवल सांसद
8: के? कांग्रेस के विधायक भी हैं और सांसद भी हैं।
7: लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसे बयानों को बकवास बता रही है।
10: राजभर जी ऐसे ही बकवास करते रहते हैं और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है तो सीटों की बार्गेनिंग करें।
11: अगर ये उनका कहना सही हो जाएगा तो सनातन अपने जीवन में राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे।
7: मामला शुरू हुआ था समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने की खबर से, मगर माहौल बदल गया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि राजभर तो खुद समाजवादी पार्टी में विलय चाहते हैं।
12: मिलके उन्होंने निवेदन किया कि सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव डाल रही है, बहुत ब्लैकमेल कर रही है। और उनका अरुण राजभर ने इस बात को भी कहा कि पिताजी की किसी बात का बुरा भी ना माना जाए, उनकी लिखी हुई बात और उनकी कही हुई बात को गंभीरता से भी ना लिया जाए, क्योंकि वो बहुत तनाव में है।
7: अब राजभर के सुपुत्र समाजवादी पार्टी के इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं।
13: सही बात है कि समाजवादी पार्टी मुखिया और इन सभी नेताओं का कोई न कोई यूज तो कर ही रहा, क्योंकि ये बात बताइए जिस दिन की जिक्र कर रहे हैं उस दिन मैं समाजवादी पार्टी के गढ़ को समाप्त करने का अभियान चला रहा था।
7: दरअसल समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि राजभर जानबूझकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं ताकि 27 के चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा कर सके।
14: ये इसलिए बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको सीटें दे देगी, एक तो सीटों के लिए मेरी बातों को लिख लीजिए।
7: समाजवादी पार्टी के आरोपों को ओपी राजभर सही साबित कर रहे हैं, क्योंकि उनका दावा अभी से 34 सीटों पर है।
15: अभी तक हम लोगों ने 34 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किया है और वहाँ जो संगठन में कमजोरी रही है उसको पूरा कराने के लिए प्रयास हम लोगों का हो रहा है कि इस बार हम लोग अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल करा लें।
7: 27 के चुनाव से पहले मुद्दों को धार दी जा रही है और सीटों के लिए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है इसके तार गहरे जुड़ते नजर आ रहे हैं। शुरुआती जांच से ये लग रहा है कि निगरानी के पूरे सिस्टम में ही खामियां हैं। देखिए एक रिपोर्ट।

0: अयोध्या में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बने राम मंदिर में पिछले चार दिनों से रोज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अफसर जा रहे हैं, घंटों तक जांच पड़ताल पूछताछ कर रहे हैं। और इस पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जांच की सुई वहां जाकर ठहरी है जहां पता चला है कि चढ़ावा चोरी की प्लानिंग निगरानी के इंतजाम में ही गड़बड़ी से ही शुरू हुई प्रतीत होती है। और मोटे तौर पर एसआईटी की जांच के दायरे में पहले सीसीटीवी लगाने, मेंटेन करने और रिकॉर्ड करने वाले लोग हैं, दूसरे मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारी हैं, तीसरे कर्मचारियों को नौकरी पर रखने वाले अधिकारी हैं, चौथे पूरी व्यवस्था की कानूनी जिम्मेदारी रखने वाले पुलिस अधिकारी भी हैं। जांच टीम ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, उसकी रिकॉर्डिंग और सुरक्षा प्रबंधन की गहन पड़ताल की है। इसी दौरान एसआईटी को सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के संकेत भी मिले हैं। एसआईटी को जांच में मिले दस्तावेजों के अनुसार मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर पिछले 11 महीनों में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारी सुरक्षा खर्च के बावजूद दान पेटियों से नकदी और आभूषणों की कथित चोरी सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
1: अयोध्या मामले में अब एसआईटी की जांच की रडार अब सीसीटीवी कर्मचारियों, पास दिखाने वाले कर्मचारियों और इसके अलावा मंदिर परिसर में मैनेजमेंट देखने वाले कर्मचारियों की तरफ बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो ये सभी वो कर्मचारी हैं जो सीधा ट्रस्ट को रिपोर्ट करते थे, जिनके बीच में कोई भी धारा नहीं थी। इसमें आरएमओ यानी कि रेडियो जो मेंटेनेंस ऑफिसर है, जो तकरीबन 17 वर्षों से वहां पर तैनात है और सीधे ट्रस्ट को रिपोर्ट करता था, और सीसीटीवी फुटेजेस की कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा वहां पर पास निर्गत करने वाले व्यक्ति की जो जिम्मेदारी थी, जिसमें आने जाने के लिए सारी डिटेलिंग होती थी और कौन सा चीज बाहर जाएगी उसकी, और साथ ही साथ मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी की।
0: एसआईटी की टीम की शुरुआती जांच में उस स्टेट बैंक की भूमिका भी संदिग्ध लगी है, जिसे मंदिर में मिले पैसों की गिनती और बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी थी। पता चला है कि पैसों की गिनती पूरी करके जमा करने की जिम्मेदारी स्टेट बैंक की थी, लेकिन उसने इसके लिए आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी रखे हुए थे। इसके अलावा नोटों की गिनती की प्रक्रिया में बेहद कम संख्या में कर्मचारी रखे गए थे, जिसे एसआईटी संदिग्ध मान रही है। एसआईटी ने पूछताछ के लिए करीब 200 लोगों की सूची तैयार की है, जिसमें अब तक 125 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि कुछ लोगों से कई बार पूछताछ हुई है। इसमें ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा मंदिर का ज्यादातर कामकाज देखने वाले रमाशंकर यादव और टिन्नू से भी पूछताछ चल रही है।
1: एसआईटी की जांच अयोध्या मामले में अब गेट चेकिंग ऑफिसर से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी तक पहुंच गई है, क्योंकि साफ तौर से गेट से आने जाने वालों की संख्या, इसके अलावा क्या सामान बाहर जाना है, ये जिम्मेदारी इस पर होती थी और ये सीधा ट्रस्ट में चंपत राय और टिन्नू को भी रिपोर्ट करता था। यानी कि इस पूरे मामले पर अब एसआईटी की जांच उस दिशा में भी बढ़ रही है कि कई कर्नाटक से जो लोग आए थे वो किस तरीके से अंदर शामिल हुए। अब इस दिशा में भी जो एसआईटी की जांच है वो आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर गेट चेकिंग से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी जो 5 वर्षों से वहां पर तैनात हैं, अब उधर भी एसआईटी रुक कर रही है। यानी कि कई कर्मचारियों पर अब रडार एसआईटी की खड़ी हो गई है। अयोध्या से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
2: आप सुनते होंगे कि हर राज्य में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत करिए, तुरंत निवारण भी होगा। मध्य प्रदेश जहां जनता की शिकायत को सुलझाने के लिए बनी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को पुलिस वालों ने अपनी रैंकिंग चमकाने का हथियार बना लिया।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ। पहले ये आपने कोई शिकायत की थी सीएम हेल्पलाइन पे? काय की शिकायत थी?
4: अच्छा, अकाउंट फ्रीज हो चुका है, कोई उस पर रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, चलो मैं देख पाता हूँ, है ना। आपका डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी और सब परिवार में ठीक है, मदद करेंगे आपकी, है ना। मैं सडनली देख रहा हूँ कि कंप्लेंट पर कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही। इसलिए
5: मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक बार फिर सीएम हेल्पलाइन को लेकर खबरदार होना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन पर फर्जी शिकायत के दम पर कुछ पुलिस वाले चेहरा और रैंकिंग चमकाने में जुटे। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज से, सवाल मऊगंज की पुलिस पर। जवाब के लिए सीएम हेल्पलाइन में दर्ज इन शिकायतों का स्क्रीनशॉट आज देखिए। 31 मई को सौरभ के नाम से शिकायत हुई कि मऊगंज थाने में उसके भाई को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से संतुष्ट हो गया, शिकायत बंद हो गई। 31 मई को ही सौरभ के नाम से एक और शिकायत हुई। पुलिस से पासपोर्ट और चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से एकदम हैप्पी हो गया, शिकायत बंद हो गई। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत हुई, मऊगंज थाने में उसकी FIR नहीं लिखी जा रही। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से एकदम संतुष्ट, शिकायत बंद। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत होती है कि पुलिस परेशान कर रही है, थाने में बुलाकर मारपीट कर रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से हैप्पी, शिकायत बंद। 31 मई को सौरभ के नाम से शिकायत कि उसकी बेटी गुम हो गई, मऊगंज थाना पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से संतुष्ट, शिकायत बंद हो गई। दावा है कि मऊगंज पुलिस ही सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत का खेल खेलती है। जहां दावा है 21 मोबाइल नंबर से 233 झूठी शिकायत खुद ही दर्ज करा के आनंद फानन में उनका समाधान भी दिखा दिया, ताकि लगे वाह क्या पुलिस है। आगे सुनिए, ये अंकित चौरसिया है, इनके नाम से फर्जी शिकायत दर्ज करा दी कि 20 साल की बेटी गायब है, जबकि अंकित की तो शादी तक नहीं हुई।
6: क्या आपने शिकायत की?
7: नहीं, मैंने नहीं।
6: एक शिकायत ऐसी भी है कि आपकी 20 वर्ष की बच्ची स्कूल गई थी और गुम हो गई है।
7: मेरी शादी ही नहीं हुई।
6: तो वो शिकायत फर्जी है?
7: जी।
5: मिनट मिनट में ऐसी फर्जी शिकायतें खुद ही मऊगंज की पुलिस दर्ज कराती रही। लगा कि गजब का खेल है। जहां मऊगंज थाना प्रभारी को फिलहाल तबादला करके हटाया गया और दूसरे कांस्टेबल को लाइन हाजिर करके जांच जारी है।
8: व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं, उसकी जांच की गई थी, उसके प्रधान अक्षर को दोषी पाया गया, उसको लाइन अटैच किया गया।
9: जनता की आवाज सुनने और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए बनाई गई सीएम हेल्पलाइन यदि सरकारी रिकॉर्ड चमकाने का जरिया बन जाए तो सवाल पूरे सिस्टम पर खड़े होंगे। मऊगंज का ये कथित फर्जीवाड़ा बता रहा है कि कैसे रैंकिंग और आंकड़ों की होड़ में जनता के भरोसे को दांव पर लगाया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि इस खेल से जुड़े बड़े चेहरे कभी बेनकाब होंगे या फिर एक मोहरे की कुर्बानी देकर बाकी पूरी कहानी को फाइलों में दबा दिया जाएगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
2: RSS हेडक्वार्टर्स पर आधी रात को पेट्रोल बॉम्ब से हमला क्यों किया गया? आखिर इस हमले का उद्देश्य क्या था? क्या यह मामला लोकल पुलिस से आगे बढ़ चुका है? आतंकवादी साजिश के एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है।
10: रांची में RSS के दफ्तर पर हुए हमले की इन तस्वीरों का कनेक्शन अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है। तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि एक शख्स पेट्रोल बम फेंक रहा है तो वहीं दूसरा शख्स पीछे से वीडियो बना रहा है, ताकि पाकिस्तान में बैठे आकाओं को हमले का सबूत भी भेजा जा सके।
11: जांच में खुलासा हुआ है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की बड़ी भूमिका है।
10: मामले में सियासत बढ़ी तो झारखंड पुलिस एक्शन में आई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी दुबई में पाकिस्तान ISI और भट्टी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था, जो कि दुबई की जेल में भी रहा था। तीनों की उम्र 20 से 23 साल के बीच है, जिसमें एक आरोपी सैफ अंसारी का रांची पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया।
12: वेपन छीन के भागने का प्रयास किया, उसमें जवाबी कार्रवाई में और सुरक्षा हेतु जवाबी कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ी और उसको पैर में इंजरी, बुलेट इंजरी हुई है।
13: मैं रांची पुलिस को बहुत बहुत बधाई शुभकामना दूंगी और हमारी सरकार को भी कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सबके साथ न्याय होता है और ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम करते हैं।
10: इससे पहले BJP इस हमले को लेकर लगातार झारखंड सरकार पर हमलावर थी।
14: जब कांग्रेस के कुछ लोग RSS के बारे में विष फैलाते हैं और उसके बाद सीधे सीधे ये हमला होता है कांग्रेस शासित प्रदेश में, तो ऐसे डेंजरस प्रोपेगेंडा का डेंजरस परिणाम कैसे होता है, ये इसका भी परिचायक है।
10: खबरों की माने तो आरोपियों को सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट किया गया था। RSS दफ्तर पर हमले के लिए आरोपियों ने रेकी की थी, 2 पेट्रोल बम छत पर फेंके थे, 1 पेट्रोल बम गेट के बाहर असेंबल किया था, जिसके पीछे अब पाकिस्तान की साजिश की बात सामने आ रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ सत्यजीत, रांची आज तक।
2: पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बच्चा तस्करी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया, साथ ही इस गिरोह से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 6 मासूमों को सुरक्षित बचाया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है।
10: नकाब के पीछे छिपे इन चेहरों पर मासूम बच्चों को किडनैप करके बेचने का आरोप है। मामले में पुलिस ने 5 बच्चों का रेस्क्यू किया है और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें तस्कर, बिचौलिए, खरीदार और एक अस्पताल का मालिक भी शामिल है।
15: कभी भी किसी बच्चे को नहीं, मुझे झूठा फंसाया गया है, मुझे मार मार के यहाँ बिठाया हुआ है।
10: सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में बहुत ही छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जा रही थी। जो बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं उनमें एक बच्चे की उम्र महज 5 दिन है, वहीं 2 बच्चों की उम्र सिर्फ 27 दिन।
16: बहुत ही छोटे बच्चे हुआ करते थे। 1,00,000 रुपए में इन्हें पाली से और राजस्थान के दूसरे गांव से इन्हें खरीदा जाता था, दिल्ली लाया जाता था। दिल्ली के इस हीरा अस्पताल जो कि रोहिणी में स्थित है, यहां लाया जाता था और यहां उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। ट्रीटमेंट करने के बाद जो ऐसे कपल होते थे जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा या जिन्हें बच्चे पाने की अपेक्षा थी, उन्हें ये बच्चे बेच दिए जाते थे। 1,00,000 रुपए में ये बच्चे खरीदे जाते थे राजस्थान से या गुजरात से, और यहां दिल्ली में करीब 8 से 9 लाख रुपए में इन बच्चों को बेच दिया जाता था।
10: इस रैकेट का खुलासा करोल बाग में एक शख्स की जागरूकता की वजह से हुआ, जिसने एक महिला को अलग अलग बच्चों के साथ देखा, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने एक टीम बनाकर गिरोह से बच्चा खरीदने का पूरा जाल बिछाया और फिर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ।
17: उसमें पेरेंट्स से डील सेट होती थी और सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे, बर्थ सर्टिफिकेट्स फोर्ज किए जाते थे, डिलीवरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे और जितने भी इनवॉइसेस, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं वो सारे फोर्ज किए जाते थे वहीं पर ही उसी हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर विवेक की एक्टिव रोल प्ले करती थी एज द लिंचपिन।
10: इस पूरे खेल का बाकायदा सिस्टम बना हुआ था, जिसमें बच्चा सप्लायर, बिचौलिए, खरीदार को लाने वाले सबका कट होता था। अलग अलग राज्यों से बच्चों को दिल्ली लाया जाता था। बच्चा गोद लेने की चाहत रखने वाले बेऔलाद जोड़ों की पहचान नेटवर्क के जरिए की जाती थी, जहां अस्पताल में बच्चा न पैदा होने की समस्या का इलाज करा रहे पति पत्नी को टारगेट किया जाता था, जिन्हें झांसा देकर इन मासूमों की जिंदगी का सौदा किया जाता था। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: भोजपुर में पुलिस पर पिस्टल तानने, फायरिंग करने के आरोपी भरत तिवारी का एक दिन पहले एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर के बाद

0: पुलिस लोगों को तेतर बेतर कर रही है और पीछे से चीख पुकार बची है कि पुलिस वाले गोली न चलाएं। ये बवाल बिहार में आरा के भोजपुर में शाहपुर थाना क्षेत्र के बैलोटी की तस्वीरें हैं। एक दिन पहले यहाँ पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी नाम का शख्स घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन कह रहे हैं कि ये पुलिस का फेक एनकाउंटर था और इसीलिए आरा बक्सर फोर लेन मार्ग पर वो शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे।
1: घोर अन्याय हुआ है, मान लीजिए कि एनकाउंटर है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया था, तो प्रशासन को इसको लेकर पकड़ कर जाकर जेल में बंद देना चाहिए। ये नहीं कि एनकाउंटर नहीं करना चाहिए।
0: अब एनकाउंटर की तस्वीर देखिए, ये जो गोली चला रहा है इसी का नाम भरत तिवारी है। करीब 48 घंटे तक पुलिस के लिए ये शख्स चुनौती बना रहा और आखिरकार एनकाउंटर में मारा गया, मगर परिवार कहता है कि उसे जिंदा भी पकड़ा जा सकता था।
2: सुबह में 8 बजे के करीब में धूप गई डायरेक्ट, धूप के हथियार तान दिल सब परिवार पर हमनी के, और छोट लड़का के कालर धके मोबाइल छीन ले।
0: अब प्रशासन परिवार और ग्रामीणों को समझा बुझा रहा है, मगर ये एनकाउंटर सवालों के घेरे में जरूर है। सोनू कुमार सिंह, आरा आज तक।
3: अब खबर अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की, जो तय समय से एक दिन पहले ही हो गया। इस डील से पहले ट्रंप ने भारत को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया, कहा कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा, लेकिन ईरान को लेकर जो समझौता हुआ है उसमें जिस तरह इसराइल के हितों की अनदेखी की गई है वो अमेरिका को लेकर खबरदार करने के लिए काफी है।
4: इस तस्वीर को देखकर दुनिया को राहत मिली जब अमेरिका और ईरान की तरफ से जंग खत्म करने के समझौते के मसौदे पर दस्तखत किए जाते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने बुधवार देर रात डिजिटल हस्ताक्षर किए, जिसके साथ ही समझौता लागू हो गया। ईरान के साथ समझौता करने से पहले ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उनकी तारीफों की झड़ी लगा दी।
5: I want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually.
4: 16 महीनों बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने रिश्तों में आई खटास को कम करने की भरसक कोशिश की। इसी कोशिश में ट्रंप ने वो कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।
6: And the United States, sorry, I'm speeding, I won't.
5: That's okay.
6: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
5: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there.
4: तो ट्रंप ने वादा किया कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा। ट्रंप ये कहकर सबको चौंका देते हैं, लेकिन सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस भरोसे में कितना दम है, क्योंकि ईरान के साथ जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इजराइल की अनदेखी की है वो अमेरिका से रिश्तों को लेकर खबरदार करता है।
5: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, BB. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say we're the big partner and he's the very small partner, and that's true.
4: फ्रांस में ट्रंप की पीस डील पर साइन करने के बाद ईरानी राष्ट्रपति पेजिशकियान ने जिस समझौते के दस्तावेज पर दस्तखत किए उसमें नवा पॉइंट अमेरिका पर भरोसे का संकट बढ़ाता है। समझौते के मसौदे में अमेरिका, ईरान और उसके सहयोगी देशों के बीच सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत और स्थायी रूप से बंद करने की बात कही गई है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। अमेरिका के लिए ये मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि ट्रंप को चिंता थी कि हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की सैन्य कार्रवाई शांति समझौते को कमजोर कर सकती है, इसीलिए इसे इसराइल के खिलाफ माना जा रहा है। इसराइल पहले ही कह चुका है कि वो अमेरिका ईरान बातचीत में लेबनान को लेकर हुई किसी भी सहमति को नहीं मानेगा, लेकिन ट्रंप इसराइल की सुनने को तैयार नहीं दिखते।
5: Angry, I guess. I'm allowed to get angry when I watch the Democrats. They talk about it all the time. We had this deal done. You had a deal that was going to give them legally a nuclear weapon. And if that happened, Israel would have been blown.

0: तो ट्रंप ये कहकर इसराइल पर एहसान जताते हैं कि अगर वो ना होते तो इसराइल का नामो निशान मिट जाता। कुल मिलाकर ईरान से सीधी टक्कर लेने वाला इसराइल खुद को अकेला पा रहा है।
1: What the president is saying is that right now they won't call. Okay? So they would like Israel to be less aggressive. Now we are ready, as I said, to engage in a diplomatic process, but we will not renounce our right for self-defense. And we are going to continue operations in South Lebanon, and if we are attacked, we are going to retaliate.
2: नहीं तो इसमें मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर इसराइल पर हमला होता है हिजबुल्ला की तरफ से तो क्या इसराइल पलटवार करेगा या इस एमओयू की वजह से टोटल सीज फायर होगा हर मोर्चे पर?
1: We will defend ourselves and our prime minister has stated that, our defense minister has stated that Israel will defend itself if attacked by Hezbollah.
0: इसराइल भले ही कहे कि वो लेबनान में किसी की नहीं सुनेगा, लेकिन हकीकत ये कि पिछले रविवार को जिस समझौते का ऐलान ट्रंप ने किया, दावा है कि उसने इसराइल और उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अचंभित कर दिया, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में इजरायली अधिकारियों के हवाले से मंगलवार तक दावा किया गया है कि इसराइल को अब तक समझौते का ड्राफ्ट नहीं दिखाया गया। हालांकि ट्रंप ने इस समझौते पर साइन करने से पहले इसकी एक कॉपी नेतन्याहू को भेजने की बात कही, लेकिन इसने दिखा दिया कि अमेरिका ने अपने सबसे करीबी दोस्त को ईरान से समझौता करने के चक्कर में अकेला छोड़ दिया।
3: Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99%. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
0: अमेरिका और ईरान में जो समझौता होने जा रहा है उससे ईरान मालामाल होगा, उसके प्रतिबंध हटेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचेगा, कमाई करेगा और इस पैसे का इस्तेमाल अपने मिसाइल कार्यक्रम को खतरनाक करने में लगाएगा ताकि भविष्य में किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अब आप ही सोचिए कि ये काम करने वाले ट्रंप का भारत को किया वायदा कितना भरोसे लायक है, क्योंकि ईरान से होने वाला समझौता बताता है अमेरिका अपने फायदे के लिए इसराइल जैसे सबसे करीबी देश के हितों की भी अनदेखी कर सकता है।
4: दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस जंग से निकलने की एक विंडो तलाश रहे थे और जब ईरान के साथ उनकी सहमति बन गई तो उन्होंने इसराइल को बिना कॉन्फ्रेंस में लिए ही एमओयू साइन कर दिया। मुखालफत हो रही थी वो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती, बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनका धीरे धीरे कर एमओयू साइन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे थे कि अगर वो इसराइल का साथ लंबे समय तक देते तो ना सिर्फ उनके देश में उनकी नीतियों को लेकर जो मुखालफत हो रही थी वो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती, बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनका धीरे धीरे कर एमओयू साइन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे थे कि अगर वो इसराइल का साथ लंबे समय तक देते तो ना सिर्फ उनके देश में उनकी नीतियों को लेकर जो मुखालफत हो रही थी वो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती, बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनका धीरे धीरे कर साथ छोड़ रहे थे। यहां तक कि नाटो के देश भी लगातार उन पर सवाल खड़े कर रहे थे और इन्हीं मजबूरियों के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: पेरिस में भारतीयों के बीच बोले पीएम मोदी, भविष्य को आकार दे रहा है भारत। पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुआ विकास, विश्व का भरोसेमंद सहयोगी बना हिंदुस्तान। झारखंड में भी कांग्रेस नहीं संभाल पाई अपना कुनबा, क्रॉस वोटिंग के चलते राज्यसभा चुनाव में मिली हार। एनडीए समर्थित परिमल नाथ वाणी विजयी, बीजेपी ने कहा राहुल की हार। उद्धव की सेना में फिर से बड़ी टूट, उनके 6 सांसदों का शिंदे गुट में शामिल होना तय, बागियों को भेजा गया कारण बताओ नोटिस। 21 जून को नीट री एग्जाम के लिए एयरफोर्स ने कई शहरों में पहुंचाए प्रश्न पत्र, धर्मेंद्र प्रधान ने हाई लेवल मीटिंग की तैयारियों की शिक्षा मंत्री ने समीक्षा। और रांची में आरएसएस ऑफिस पर हमले का आईएसआई कनेक्शन, पाक हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी अमन अंसारी, एटीएस को सौंपी गई जांच। उद्धव गुट में एक बार फिर से बगावत हो गई। गुरुवार को उद्धव ठाकरे ने अपनी संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, बाकायदा व्हिप जारी किया था, मगर इस बैठक में सिर्फ 3 सांसद पहुंचे, 6 सांसदों ने बैठक से दूरी बना ली। अब शिवसेना यूबीटी ने बैठक में शामिल न होने वाले सांसदों से जवाब मांगा है।
1: उद्धव ठाकरे को जिस बात का डर था वही हुआ, पार्टी ने व्हिप जारी किया था, संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, मगर बैठक में सिर्फ 3 सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे पहुंचे, यानी 6 सांसदों ने मीटिंग में हाजिरी नहीं दी। ये वो सांसद हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत की है, माना जा रहा है कि जल्द ही वे अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजय जाधव बागी सांसदों का नेतृत्व करेंगे। उधर बागी सांसदों को लेकर शिवसेना यूबीटी ने गहरी नाराजगी जताई है, पार्टी ने बागी सांसदों से जवाब मांगा है। शिवसेना यूबीटी को एक बार फिर टूट का डर सता रहा है, इसीलिए शिवसेना यूबीटी का एक दल लोकसभा स्पीकर के पास चिट्ठी लेकर पहुंचा, जिसमें लिखा था कि अगर कोई शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने का दावा करे तो पहले हमसे संपर्क किया जाए।
2: हमने एक लेटर दिया है स्पीकर साहब को, कैबिनेट, अगर कोई आता है शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए वो गैरकानूनी है।
3: विषय यही रखा है कि भाई अगर कोई इस ग्रुप को लेके कोई आता है आपके पास में, व्यवस्था आपके हाथ में है, आरपी एक्ट संविधान में जो प्रावधान है उसको लेके हमने लेटर दिया है, अगर कोई पहुँचता है तो हमसे पहले बात करें।
1: राउत ने आरोप लगाया कि सभी बागियों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है, इसके लिए उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
4: मेरा जो स्टैंड है वो क्रिस्टल क्लियर है, मैं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के साथ हूँ।
1: अब शिंदे गुट इसे अपनी जीत बता रहा है और कांग्रेस कह रही है कि ये ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन गीदड़ है।
5: ऑपरेशन प्रगति यशस्वी, जिस व्यक्ति ने जनता के लिए इतना काम किया है, जनता हमेशा उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है और सबको पता है कि ओरिजिनल टाइगर कौन है।
6: ऑपरेशन टाइगर ने, ऑपरेशन गीदड़ है, सत्ता की भूख उसकी एक मर्यादा होती है।
1: खबर है कि टीएमसी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर को खत लिख चुके हैं, जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए ये दोहरा झटका है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: क्या समाजवादी पार्टी में भी उत्तर प्रदेश में बगावत होने वाली है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ओपी राजभर के बाद संजय निषाद ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद समाजवादी पार्टी छोड़ना चाहते हैं, और इसके साथ ही अब यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर भी समीकरण बिठाए जा रहे हैं।
7: अखिलेश यादव के दल टूट की जो खबर राजभर ने उठाई है वो अब तूल पकड़ रही है। राजभर के बाद यूपी के मंत्री संजय निषाद भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश से किनारा करना चाहते हैं।
8: दिल्ली शीर्ष नेतृत्व को बताऊं कि वो लोग अब जुड़ना चाहते हैं।
9: कितने लोग हैं
8: आपके विचारधारा? मैंने बताया 2000 से अधिक लोग हैं
9: समाजवादी पार्टी के।
8: हाँ, उनके लोग
9: विधायक भी हैं, केवल सांसद
8: के? कांग्रेस के विधायक भी हैं और सांसद भी हैं।
7: लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसे बयानों को बकवास बता रही है।
10: राजभर जी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अब चुनाव आया है तो सीटों की बार्गेनिंग करें।
11: अगर ये उनका कहना सही हो जाएगा तो सनातन प्रणय जीवन में राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे।
7: मामला शुरू हुआ था समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने की खबर से, मगर माहौल बदल गया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि राजभर तो खुद समाजवादी पार्टी में विलय चाहते हैं।
12: मिलके उन्होंने निवेदन किया कि सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव डाल रही है, बहुत ब्लैकमेल कर रही है। और उनका अरुण राजभर ने इस बात को भी कहा कि पिताजी की किसी बात का बुरा भी ना माना जाए, उनकी लिखी हुई बात और उनकी कही हुई बात को गंभीरता से भी ना लिया जाए, क्योंकि वो बहुत तनाव में है।
7: अब राजभर के सुपुत्र समाजवादी पार्टी के इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं।
13: सही बात है कि समाजवादी पार्टी मुखिया और इन सभी नेताओं का कोई न कोई यूज तो कर ही रहा, क्योंकि ये बात बताइए जिस दिन की जिक्र ये कर रहे हैं उस दिन मैं समाजवादी पार्टी के गढ़ को समाप्त करने का अभियान चला रहा था।
7: दरअसल समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि राजभर जानबूझकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं ताकि 27 के चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा कर सकें।
14: ये इसलिए बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको सीटें दे देगी। एक तो सीटों के लिए मेरी बातों को लिख लीजिए।
7: समाजवादी पार्टी के आरोपों को ओपी राजभर सही साबित कर रहे हैं, क्योंकि उनका दावा अभी से 34 सीटों पर है।
15: अभी तक हम लोगों ने 34 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किया है और वहाँ जो संगठन में कमजोरी रही है उसको पूरा कराने के लिए प्रयास हम लोगों का हो रहा है कि इस बार हम लोग अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल करा लें।
7: 27 के चुनाव से पहले मुद्दों को धार दी जा रही है और सीटों के लिए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 के री एग्जामिनेशन को पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाने और सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार और एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए इस बार प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और देश भर के केंद्रों तक उनकी सुरक्षित डिलीवरी का जिम्मा भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है।
7: देश में नीट के पेपर को सुरक्षित करने के लिए भारतीय वायुसेना ने उड़ान भर दी है। 21 जून को होने वाली डी नीट के पेपर को लेकर सेना का हेलीकॉप्टर अलग अलग जगहों पर पहुंच रहा है, जहां से पेपर को लोड किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस की कड़ी निगरानी में इन्हें स्ट्रांग रूम भेजा जा रहा है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता के मानकों को बनाए रखने पर जोर दिया। उधर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है।
16: पहले बोले कि हम पेपर जो है वो हवाई जहाज से, एयरफोर्स के हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट कराएंगे, अब कह रहे हैं टेलीग्राम बैन कर दिया, इससे कोई पेपर लीक रुकेंगे? पेपर लीक तो रोकने ही नहीं इनको, इनकी नीयत ही खराब है। इतने जो एमपी और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं? आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं।
7: नीट पेपर लीक को लेकर जारी घमासान के बीच टेलीग्राम पर रोक का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, जहां सरकार ने टेलीग्राम को अपराधियों का अड्डा बताया। वहीं टेलीग्राम की ओर से दलील दी गई कि क्या एक घटना को रोकने के लिए पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर देना सही है। बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज तक ब्यूरो।
0: श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसके तार गहरे जुड़ते नजर आ रहे हैं। शुरुआती जांच से यह लग रहा है कि निगरानी के पूरे सिस्टम में ही खामियां हैं। देखिए एक रिपोर्ट।

0: अयोध्या में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बने राम मंदिर में पिछले चार दिनों से रोज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अफसर जा रहे हैं, घंटों तक जांच पड़ताल पूछताछ कर रहे हैं। और इस पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जांच की सुई वहां जाकर ठहरी है जहां पता चला है कि चढ़ावा चोरी की प्लानिंग निगरानी के इंतजाम में ही गड़बड़ी से ही शुरू हुई प्रतीत होती है। और मोटे तौर पर एसआईटी की जांच के दायरे में पहले सीसीटीवी लगाने, मेंटेन करने और रिकॉर्ड करने वाले लोग हैं, दूसरे मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारी हैं, तीसरे कर्मचारियों को नौकरी पर रखने वाले अधिकारी हैं, चौथे पूरी व्यवस्था की कानूनी जिम्मेदारी रखने वाले पुलिस अधिकारी भी हैं। जांच टीम ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, उसकी रिकॉर्डिंग और सुरक्षा प्रबंधन की गहन पड़ताल की है। इसी दौरान कानूनी जिम्मेदारी रखने वाले पुलिस अधिकारी भी हैं। जांच टीम ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, उसकी रिकॉर्डिंग और सुरक्षा प्रबंधन की गहन पड़ताल की है। इसी दौरान एसआईटी को सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के संकेत भी मिले हैं। एसआईटी को जांच में मिले दस्तावेजों के अनुसार मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर पिछले 11 महीनों में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारी सुरक्षा खर्च के बावजूद दान पेटियों से नकदी और आभूषणों की कथित चोरी सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
1: अयोध्या मामले में अब एसआईटी की जांच की रडार अब सीसीटीवी कर्मचारियों, पास दिखाने वाले कर्मचारियों और इसके अलावा मंदिर परिसर में मैनेजमेंट देखने वाले कर्मचारियों की तरफ बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो ये सभी वो कर्मचारी हैं जो सीधा ट्रस्ट को रिपोर्ट करते थे, जिनके बीच में कोई भी धारा नहीं थी। इसमें आरएमओ यानी कि रेडियो जो मेंटेनेंस ऑफिसर है, जो तकरीबन 17 वर्षों से वहां पर तैनात है और सीधे ट्रस्ट को रिपोर्ट करता था, और सीसीटीवी फुटेजेस कि कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा वहां पर पास निर्गत करने वाले व्यक्ति की जो जिम्मेदारी थी, जिसमें आने जाने के लिए सारी डिटेलिंग होती थी और कौन सा चीज बाहर जाएगी उसकी, और साथ ही साथ मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी की।
0: एसआईटी की टीम की शुरुआती जांच में उस स्टेट बैंक की भूमिका भी संदिग्ध लगी है, जिसे मंदिर में मिले पैसों की गिनती और बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी थी। पता चला है कि पैसों की गिनती पूरी करके जमा करने की जिम्मेदारी स्टेट बैंक की थी, लेकिन उसने इसके लिए आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी रखे हुए थे। इसके अलावा नोटों की गिनती की प्रक्रिया में बेहद कम संख्या में कर्मचारी रखे गए थे, जिसे एसआईटी संदिग्ध मान रही है। एसआईटी ने पूछताछ के लिए करीब 200 लोगों की सूची तैयार की है, जिसमें अब तक 125 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि कुछ लोगों से कई बार पूछताछ हुई है। इसमें ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा मंदिर का ज्यादातर कामकाज देखने वाले रमाशंकर यादव और टिन्नू से भी पूछताछ चल रही है।
1: एसआईटी की जांच अयोध्या मामले में अब गेट चेकिंग ऑफिसर से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी तक पहुंच गई है। चूंकि साफ तौर से गेट से आने जाने वालों की संख्या, इसके अलावा क्या सामान बाहर जाना है, ये जिम्मेदारी इस पर होती थी, और ये सीधा ट्रस्ट में चंपत राय और टिन्नू को भी रिपोर्ट करता था। यानी कि इस पूरे मामले पर अब एसआईटी की जांच उस दिशा में भी बढ़ रही है कि कई कर्नाटक से जो लोग आए थे वो किस तरीके से अंदर शामिल हुए। अब इस दिशा में भी जो एसआईटी की जांच है वो आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर गेट चेकिंग से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी जो 5 वर्षों से वहां पर तैनात हैं, अब उधर भी एसआईटी रुक कर रही है। यानी कि कई कर्मचारियों पर अब रडार एसआईटी की खड़ी हो गई है। अयोध्या से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
2: आप सुनते होंगे कि हर राज्य में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत करिए, तुरंत निवारण भी होगा। मध्य प्रदेश जहां जनता की शिकायत को सुलझाने के लिए बनी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को पुलिस वालों ने अपनी रैंकिंग चमकाने का हथियार बना लिया।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ। पहले ये आपने कोई शिकायत की थी सीएम हेल्पलाइन पे? काय की शिकायत थी?
4: अच्छा, अकाउंट फ्रीज हो चुका है, कोई उस पर रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, चलो मैं देख पाता हूँ, है ना। आपका डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी और सब परिवार में ठीक है, मदद करेंगे आपकी, है ना। मैं सडनली देख रहा हूँ कि कंप्लेंट पर कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही।
5: मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक बार फिर सीएम हेल्पलाइन को लेकर खबरदार होना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन पर फर्जी शिकायत के दम पर कुछ पुलिस वाले चेहरा और रैंकिंग चमकाने में जुटे हैं। खबर मध्य प्रदेश की मऊगंज से, सवाल मऊगंज की पुलिस पर। जवाब के लिए सीएम हेल्पलाइन में दर्ज इन शिकायतों का स्क्रीनशॉट आज देखिए। 31 मई को सौरभ के नाम से शिकायत हुई कि मऊगंज थाने में उसके भाई को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से संतुष्ट हो गया, शिकायत बंद हो गई। 31 मई को ही सौरभ के नाम से एक और शिकायत हुई, पुलिस से पासपोर्ट और चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से एकदम हैप्पी हो गया, शिकायत बंद हो गई। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत हुई, मऊगंज थाने में उसकी FIR नहीं लिखी जा रही। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से एकदम संतुष्ट, शिकायत बंद। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत होती है कि पुलिस परेशान कर रही है, थाने में बुलाकर मारपीट कर रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से हैप्पी, शिकायत बंद। 31 मई को सौरभ के नाम से शिकायत कि उसकी बेटी गुम हो गई, मऊगंज थाना पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से संतुष्ट, शिकायत बंद हो गई। दावा है कि मऊगंज पुलिस ही सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत का खेल खेलती है, जहां दावा है 21 मोबाइल नंबर से 233 झूठी शिकायत खुद ही दर्ज करा के आनन फानन में उनका समाधान भी दिखा दिया, ताकि लगे वाह क्या पुलिस है। आगे सुनिए, ये अंकित चौरसिया है, इनके नाम से फर्जी शिकायत दर्ज करा दी कि 20 साल की बेटी गायब है, जबकि अंकित की तो शादी तक नहीं हुई।
6: क्या आपने शिकायत की?
7: नहीं, मैंने नहीं।
6: एक शिकायत ऐसी भी है कि आपकी 20 वर्ष की बच्ची स्कूल गई थी और गुम हो गई है।
7: मेरी शादी ही नहीं हुई।
6: तो वो शिकायत फर्जी?
5: मिनट मिनट में ऐसी फर्जी शिकायतें खुद ही मऊगंज की पुलिस दर्ज कराती रही, लगा कि गजब का खेल है। जहां मऊगंज थाना प्रभारी को फिलहाल तबादला करके हटाया गया और दूसरे कांस्टेबल को लाइन हाजिर करके जांच जारी है।
8: व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं, उसकी जांच की गई थी, उसके प्रधान अक्षर को दोषी पाया गया, उसको लाइन अटैच किया गया।
9: जनता की आवाज सुनने और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए बनाई गई सीएम हेल्पलाइन यदि सरकारी रिकॉर्ड चमकाने का जरिया बन जाए तो सवाल पूरे सिस्टम पर खड़े होंगे। मऊगंज का ये कथित फर्जीवाड़ा बता रहा है कि कैसे रैंकिंग और आंकड़ों की होड़ में जनता के भरोसे को दांव पर लगाया गया। अब बड़ा सवाल ये है कि इस खेल से जुड़े बड़े चेहरे कभी बेनकाब होंगे या फिर एक मोहरे की कुर्बानी देकर बाकी पूरी कहानी को फाइलों में दबा दिया जाएगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
2: RSS हेडक्वार्टर्स पर आधी रात को पेट्रोल बॉम्ब से हमला क्यों किया गया? आखिर इस हमले का उद्देश्य क्या था? क्या ये मामला लोकल पुलिस से आगे बढ़ चुका है? आतंकवादी साजिश के एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है।
10: रांची में RSS के दफ्तर पर हुए हमले की इन तस्वीरों का कनेक्शन अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है। तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि एक शख्स पेट्रोल बम फेंक रहा है, तो वहीं दूसरा शख्स पीछे से वीडियो बना रहा है, ताकि पाकिस्तान में बैठे आकाओं को हमले का सबूत भी भेजा जा सके।
11: जांच में खुलासा हुआ है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की बड़ी भूमिका है।
10: मामले में सियासत बढ़ी तो झारखंड पुलिस एक्शन में आई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी दुबई में पाकिस्तान ISI और भट्टी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था, जो कि दुबई की जेल में भी रहा था। तीनों की उम्र 20 से 23 साल के बीच है, जिसमें एक आरोपी सैफ अंसारी का रांची पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया।
12: वेपन छीन के भागने का प्रयास किया, उसमें जवाबी कार्रवाई में और सुरक्षा हेतु जवाबी कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ी और उसको पैर में इंजरी, बुलेट इंजरी हुई है।
13: मैं रांची पुलिस को बहुत बहुत बधाई शुभकामना दूंगी और हमारी सरकार को भी कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सबके साथ न्याय होता है और ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम करते हैं।
10: इससे पहले BJP इस हमले को लेकर लगातार झारखंड सरकार पर हमलावर थी।
14: जब कांग्रेस के कुछ लोग RSS के बारे में विष फैलाते हैं और उसके बाद सीधे सीधे ये हमला होता है कांग्रेस शासित प्रदेश में, तो ऐसे डेंजरस प्रोपेगेंडा का डेंजरस परिणाम कैसे होता है, ये इसका भी परिचायक है।
10: खबरों की माने तो आरोपियों को सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट किया गया था। RSS दफ्तर पर हमले के लिए आरोपियों ने रेकी की थी, 2 पेट्रोल बम छत पर फेंके थे, 1 पेट्रोल बम गेट के बाहर असेंबल किया था, जिसके पीछे अब पाकिस्तान की साजिश की बात सामने आ रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ सत्यजीत, रांची आज तक।
2: दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बच्चा तस्करी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया, साथ ही इस गिरोह से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 6 मासूमों को सुरक्षित बचाया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है।
10: नकाब के पीछे छिपे इन चेहरों पर मासूम बच्चों को किडनैप करके बेचने का आरोप है। मामले में पुलिस ने 5 बच्चों का रेस्क्यू किया है और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें तस्कर, बिचौलिए, खरीदार और एक अस्पताल का मालिक भी शामिल है।
7: कभी भी किसी बच्चे को नहीं, मुझे झूठा फंसाया गया है, मुझे मार मार के यहाँ बिठाया हुआ है।
10: सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में बहुत ही छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जा रही थी। जो बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं उनमें एक बच्चे की उम्र महज 5 दिन है, वहीं 2 बच्चों की उम्र सिर्फ 27 दिन।
15: बहुत ही छोटे बच्चे हुआ करते थे। 1,00,000 रुपए में इन्हें पाली से और राजस्थान के दूसरे गांव से इन्हें खरीदा जाता था, दिल्ली लाया जाता था। दिल्ली के इस हीरा अस्पताल जो कि रोहिणी में स्थित है, यहां लाया जाता था और यहां उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। ट्रीटमेंट करने के बाद जो ऐसे कपल होते थे जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा या जिन्हें बच्चे पाने की अपेक्षा थी, उन्हें ये बच्चे बेच दिए जाते थे। 1,00,000 रुपए में ये बच्चे खरीदे जाते थे राजस्थान से या गुजरात से, और यहां दिल्ली में करीब 8 से 9 लाख रुपए में इन बच्चों को बेच दिया जाता था।
10: इस रैकेट का खुलासा करोलबाग में एक शख्स की जागरूकता की वजह से हुआ, जिसने एक महिला को अलग अलग बच्चों के साथ देखा, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने एक टीम बनाकर गिरोह से बच्चा खरीदने का पूरा जाल बिछाया और फिर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ।
16: उसमें पेरेंट्स से डील सेट होती थी और सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे, बर्थ सर्टिफिकेट्स फोर्ज किए जाते थे, डिलीवरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे और जितने भी इनवॉइसेस, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे फोर्ज किए जाते थे वहीं पर ही उसी हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर विवेक की एक्टिव रोल प्ले करती थी एज द लिंचमैन।
10: इस पूरे खेल का बाकायदा सिस्टम बना हुआ था, जिसमें बच्चा सप्लायर, बिचौलिए, खरीदार को लाने वाले सबका कट होता था। अलग अलग राज्यों से बच्चों को दिल्ली लाया जाता था। बच्चा गोद लेने की चाहत रखने वाले बेऔलाद जोड़ों की पहचान नेटवर्क के जरिए की जाती थी, जहां अस्पताल में बच्चा न पैदा होने की समस्या का इलाज करा रहे पति पत्नी को टारगेट किया जाता था, जिन्हें झांसा देकर इन मासूमों की जिंदगी का सौदा किया जाता था। अंशुल सिंह, दिल्ली, आज तक।
2: भोजपुर में पुलिस पर पिस्टल तानने, फायरिंग करने के आरोपी भरत तिवारी का एक दिन पहले एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर के बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई। अब पुलिस के सेक्शन पर सवाल है। आज ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जोरदार हंगामा किया।
17: जबरदस्त हंगामा बरपा है। पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस लोगों को तितर बितर कर रही है और पीछे से चीख पुकार मची है कि पुलिस वाले गोली ना चलाएं। ये बवाल बिहार में आरा के भोजपुर में शाहपुर थाना क्षेत्र के बैलोटी की तस्वीरें हैं। एक दिन पहले यहां पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी नाम का शख्स घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन कह रहे हैं कि ये पुलिस का फेक एनकाउंटर था और इसीलिए आरा बक्सर फोर लेन मार्ग पर वो शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे।
18: घोर अन्याय हुआ है। मान लीजिए कि एनकाउंटर है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया था, तो प्रशासन को इसको लेकर पकड़ कर जाकर जेल में बंद देना चाहिए। ये नहीं कि एनकाउंटर नहीं करना चाहिए।
17: अब एनकाउंटर की तस्वीर देखिए। ये जो गोली चला रहा है, इसी का नाम भरत तिवारी है। करीब 48 घंटे तक पुलिस के लिए ये शख्स चुनौती बना रहा और आखिरकार एनकाउंटर में मारा गया, मगर परिवार कहता है कि उसे जिंदा भी पकड़ा जा सकता था।
18: सुबह में 8 बजे के करीब में धूप गई डायरेक्ट, धूप के हथियार तान दिला सब परिवार पर हमने के, और छोटे लड़का के कालर धोके मोबाइल छीन ले।
17: अब प्रशासन परिवार और ग्रामीणों को समझा बुझा रहा है, मगर ये एनकाउंटर सवालों के घेरे में जरूर है। सोनू कुमार सिंह, आरा, आज तक।
2: अब खबर अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की, जो तय समय से एक दिन पहले ही हो गया। इस डील से पहले ट्रंप ने भारत को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया, कहा कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा। लेकिन ईरान को लेकर जो समझौता हुआ है, उसमें जिस तरह इसराइल के हितों की अनदेखी की गई है, वो अमेरिका को लेकर खबरदार करने के लिए काफी है।
19: इस तस्वीर को देखकर दुनिया को राहत मिली जब अमेरिका और ईरान की तरफ से जंग खत्म करने के समझौते के मसौदे पर दस्तखत किए जाते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने बुधवार देर रात डिजिटल हस्ताक्षर किए, जिसके साथ ही समझौता लागू हो गया। ईरान के साथ समझौता करने से पहले ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उनकी तारीफों की झड़ी लगा दी।
20: I want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually.
19: 16 महीनों बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने रिश्तों में आई खटास को कम करने की भरसक कोशिश की। इसी कोशिश में ट्रंप ने वो कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।
21: And the United States, sorry, I'm speeding, I won't.
20: That's okay.
21: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
20: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there.
19: तो ट्रंप ने वादा किया कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा। ट्रंप ये कहकर सबको चौंका देते हैं, लेकिन सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस भरोसे में कितना दम है, क्योंकि ईरान के साथ जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इजराइल की अनदेखी की है वो अमेरिका से रिश्तों को लेकर खबरदार करता है।
20: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, baby. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true.
19: फ्रांस में ट्रंप की पीस डील पर साइन करने के बाद ईरानी राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने जिस समझौते के दस्तावेज पर दस्तखत किए उसमें नवा पॉइंट अमेरिका पर भरोसे का संकट बढ़ाता है। समझौते के मसौदे में अमेरिका, ईरान और उसके सहयोगी देशों के बीच सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत और स्थायी रूप से बंद करने की बात कही गई है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। अमेरिका के लिए ये मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि ट्रंप को चिंता थी कि हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की सैन्य कार्रवाई शांति समझौते को कमजोर कर सकती है, इसीलिए इसे इसराइल के खिलाफ माना जा रहा है। इसराइल पहले ही कह चुका है कि वो अमेरिका ईरान बातचीत में लेबनान को लेकर हुई किसी भी सहमति को नहीं मानेगा, लेकिन ट्रंप इसराइल की सुनने को तैयार नहीं दिखते।
20: Angry, I guess. I'm allowed to get angry when I watch these, the Democrats. They talk about it all the time. We had this deal done. You had a deal that was going to give them legally a nuclear weapon. And if that happened, Israel would have been blown away.
19: तो ट्रंप ये कहकर इसराइल पर एहसान जताते हैं कि अगर वो ना होते तो इसराइल का नामो निशान मिट जाता। कुल मिलाकर ईरान से सीधी टक्कर लेने वाला इसराइल खुद को अकेला पा रहा है।
22: What the president is saying is that right now they won't call. Okay, so they would like Israel to be less aggressive. Now we are ready, as I said, to engage in a diplomatic process, but we will not renounce our right for self-defense. And we are going to continue operations in South Lebanon, and if we are attacked, we are going to retaliate.
23: नहीं तो इसमें मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर इसराइल पर हमला होता है हिजबुल्ला की तरफ से तो क्या इसराइल पलटवार करेगा या इस एमओयू की वजह से टोटल सीज फायर होगा हर मोर्चे पर?
22: We will defend ourselves and our prime minister has stated that, our defense minister has stated that Israel will defend itself if attacked by Hezbollah.
19: इसराइल भले ही कहे कि वो लेबनान में किसी की नहीं सुनेगा, लेकिन हकीकत ये कि पिछले रविवार को जिस समझौते का ऐलान ट्रंप ने किया, दावा है कि उसने इसराइल और उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अचंभित कर दिया, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में इजरायली अधिकारियों के हवाले से मंगलवार तक दावा किया गया है कि इसराइल को अब तक समझौते का ड्राफ्ट नहीं दिखाया गया। हालांकि ट्रंप ने इस समझौते पर साइन करने से पहले इसकी एक कॉपी नेतन्याहू को भेजने की बात कही, लेकिन इसने दिखा दिया कि अमेरिका ने अपने सबसे करीबी दोस्त को ईरान से समझौता करने के चक्कर में अकेला छोड़ दिया।
20: Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever... Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
19: अमेरिका और ईरान में जो समझौता होने जा रहा है उससे ईरान मालामाल होगा, उसके प्रतिबंध हटेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचेगा, कमाई करेगा और इस पैसे का इस्तेमाल अपने मिसाइल कार्यक्रम को खतरनाक करने में लगाएगा ताकि भविष्य में किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अब आप ही सोचिए कि ये काम करने वाले ट्रंप का भारत को किया वायदा कितना भरोसे लायक है, क्योंकि ईरान से होने वाला समझौता बताता है अमेरिका अपने फायदे के लिए इसराइल जैसे सबसे करीबी देश के हितों की भी अनदेखी कर सकता है।
0: दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस जंग से निकलने की एक विंडो तलाश रहे थे और जब ईरान के साथ उनकी सहमति बन गई तो उन्होंने इसराइल को बिना कॉन्फ्रेंस में लिए ही MOU साइन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे थे कि अगर वो इसराइल का साथ लंबे समय तक देते तो ना सिर्फ उनके देश में उनकी नीतियों को लेकर जो मुखालफत हो रही थी वो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती, बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनका धीरे धीरे कर साथ छोड़ रहे थे, यहां तक कि नाटो के देश भी लगातार उन पर सवाल खड़े कर रहे थे और इन्हीं मजबूरियों के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पेरिस में भारतीयों के बीच बोले पीएम मोदी, भविष्य को आकार दे रहा है भारत। पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुआ विकास, विश्व का भरोसेमंद सहयोगी बना हिंदुस्तान। झारखंड में भी कांग्रेस नहीं संभाल पाई अपना कुनबा, क्रॉस वोटिंग के चलते राज्यसभा चुनाव में मिली हार। एनडीए समर्थित परिमल नाथ वाणी विजयी, बीजेपी ने कहा राहुल की हार। उद्धव की सेना में फिर से बड़ी टूट, उनके 6 सांसदों का शिंदे गुट में शामिल होना तय, बागियों को भेजा गया कारण बताओ नोटिस। 21 जून को नीट री एग्जाम के लिए एयरफोर्स ने कई शहरों में पहुंचाए प्रश्न पत्र, धर्मेंद्र प्रधान ने हाई लेवल मीटिंग की तैयारियों की शिक्षा मंत्री ने समीक्षा। और रांची में आरएसएस ऑफिस पर हमले का आईएसआई कनेक्शन, पाक हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी अमन अंसारी, एटीएस को सौंपी गई जांच। उद्धव गुट में एक बार फिर से बगावत हो गई। गुरुवार को उद्धव ठाकरे ने अपनी संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, बाकायदा व्हिप जारी किया था, मगर इस बैठक में सिर्फ 3 सांसद पहुंचे, 6 सांसदों ने बैठक से दूरी बना ली। अब शिवसेना यूबीटी ने बैठक में शामिल न होने वाले सांसदों से जवाब मांगा है।
1: उद्धव ठाकरे को जिस बात का डर था वही हुआ, पार्टी ने व्हिप जारी किया था, संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, मगर बैठक में सिर्फ 3 सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे पहुंचे, यानी 6 सांसदों ने मीटिंग में हाजिरी नहीं दी। ये वो सांसद हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत की है, माना जा रहा है कि जल्द ही वे अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजय जाधव बागी सांसदों का नेतृत्व करेंगे। उधर बागी सांसदों को लेकर शिवसेना यूबीटी ने गहरी नाराजगी जताई है, पार्टी ने बागी सांसदों से जवाब मांगा है। शिवसेना यूबीटी को एक बार फिर टूट का डर सता रहा है, इसीलिए शिवसेना यूबीटी का एक दल लोकसभा स्पीकर के पास चिट्ठी लेकर पहुंचा, जिसमें लिखा था कि अगर कोई शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने का दावा करे तो पहले हमसे संपर्क किया जाए।
2: हमने एक लेटर दिया है स्पीकर साहब को, कैबिनेट, कि अगर कोई आता है शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए वो गैरकानूनी है।
3: विषय यही रखा है कि भाई अगर कोई इस ग्रुप को लेके कोई आता है आपके पास में, व्यवस्था आपके हाथ में है, आरपी एक्ट संविधान में जो प्रावधान है उसको लेके हमने लेटर दिया है, अगर कोई पहुँचता है तो हमसे पहले बात।
1: राउत ने आरोप लगाया कि सभी बागियों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है, इसके लिए उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
4: मेरा जो स्टैंड है वो क्रिस्टल क्लियर है, मैं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के साथ हूँ।
1: अब शिंदे गुट इसे अपनी जीत बता रहा है और कांग्रेस कह रही है कि ये ऑपरेशन टाइगर नहीं ऑपरेशन गीदड़ है।
5: ऑपरेशन प्रगति यशस्वी, जिस व्यक्ति ने जनता के लिए इतना काम किया है, जनता हमेशा उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है और सबको पता है कि ओरिजिनल टाइगर कौन है।
6: ऑपरेशन टाइगर ने ऑपरेशन गीदड़ है, सत्ता की भूख उसकी एक मर्यादा होती है।
1: खबर है कि टीएमसी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर को खत लिख चुके हैं, जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए ये दोहरा झटका है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: क्या समाजवादी पार्टी में भी उत्तर प्रदेश में बगावत होने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ओपी राजभर के बाद संजय निषाद ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद समाजवादी पार्टी छोड़ना चाहते हैं, और इसके साथ ही अब यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर भी समीकरण बिठाए जा रहे हैं।
7: अखिलेश यादव के दल टूट की जो खबर राजभर ने उठाई है वो अब तूल पकड़ रही है। राजभर के बाद यूपी के मंत्री संजय निषाद भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश से किनारा करना चाहते हैं।
8: दिल्ली शीर्ष नेतृत्व को बताता है कि वो लोग अब जुड़ना चाहते हैं।
9: आप कितने लोग हैं
8: आपके विचारधारा? मैंने बताया 2000 से अधिक लोग हैं
9: समाजवादी पार्टी के।
8: हाँ, उनके लोग
9: विधायक भी हैं, केवल सांसद
8: के? कांग्रेस के विधायक भी हैं और सांसद भी हैं।
7: लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसे बयानों को बकवास बता रही है।
10: राजभर जी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अब चुनाव आया है तो सीटों की बार्गेनिंग करें।
11: अगर ये उनका कहना सही हो जाएगा तो सनातन जीवन में राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे।
7: मामला शुरू हुआ था समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने की खबर से, मगर माहौल बदल गया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि राजभर तो खुद समाजवादी पार्टी में विलय चाहते हैं।
12: मिलके उन्हीं ने निवेदन किया कि सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव डाल रही है, बहुत ब्लैकमेल कर रही है। और उनका अरुण राजभर ने इस बात को भी कहा कि पिताजी की किसी बात का बुरा भी ना माना जाए, उनकी लिखी हुई बात, उनकी कही हुई बात को गंभीरता से भी ना लिया जाए, क्योंकि वो बहुत तनाव में है।
7: अब राजभर के सुपुत्र समाजवादी पार्टी के इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं।
13: सही बात है कि समाजवादी पार्टी मुखिया और इन सभी नेताओं का कोई न कोई यूज तो कर ही रहा, क्योंकि ये बात बताइए जिस दिन की जिक्र ये कर रहे हैं, उस दिन मैं समाजवादी पार्टी के गढ़ को समाप्त करने का अभियान चला रहा था।
7: दरअसल समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि राजभर जानबूझकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं ताकि 27 के चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा कर सकें।
14: ये इसलिए बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको सीटें दे देगी, एक तो सीटों के लिए मेरी बातों को लिख लीजिए।
7: समाजवादी पार्टी के आरोपों को ओपी राजभर सही साबित कर रहे हैं, क्योंकि उनका दावा अभी से 34 सीटों पर है।
15: अभी तक हम लोगों ने 34 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किया है और वहाँ जो संगठन में कमजोरी रही है उसको पूरा कराने के लिए प्रयास हम लोगों का हो रहा है कि इस बार हम लोग अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल करा लें।
7: 27 के चुनाव से पहले मुद्दों को धार दी जा रही है और सीटों के लिए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसके तार गहरे जुड़ते नजर आ रहे हैं। शुरुआती जांच से यह लग रहा है कि निगरानी के पूरे सिस्टम में ही खामियां हैं। देखिए एक रिपोर्ट।

0: अयोध्या में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बने राम मंदिर में पिछले चार दिनों से रोज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अफसर जा रहे हैं, घंटों तक जांच पड़ताल पूछताछ कर रहे हैं। और इस पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जांच की सुई वहां जाकर ठहरी है जहां पता चला है कि चढ़ावा चोरी की प्लानिंग निगरानी के इंतजाम में ही गड़बड़ी से ही शुरू हुई प्रतीत होती है। और मोटे तौर पर एसआईटी की जांच के दायरे में पहले सीसीटीवी लगाने, मेंटेन करने और रिकॉर्ड करने वाले लोग हैं, दूसरे मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारी हैं, तीसरे कर्मचारियों को नौकरी पर रखने वाले अधिकारी हैं, चौथे पूरी व्यवस्था की कानूनी जिम्मेदारी रखने वाले पुलिस अधिकारी भी हैं। जांच टीम ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, उसकी रिकॉर्डिंग और सुरक्षा प्रबंधन की गहन पड़ताल की है। इसी दौरान एसआईटी को सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के संकेत भी मिले हैं। एसआईटी को जांच में मिले दस्तावेजों के अनुसार मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर पिछले 11 महीनों में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारी सुरक्षा खर्च के बावजूद दान पेटियों से नकदी और आभूषणों की कथित चोरी सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
1: अयोध्या मामले में अब एसआईटी की जाँच की रडार अब सीसीटीवी कर्मचारियों, पास दिखाने वाले कर्मचारियों और इसके अलावा मंदिर परिसर में मैनेजमेंट देखने वाले कर्मचारियों की तरफ बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो ये सभी वो कर्मचारी हैं जो सीधा ट्रस्ट को रिपोर्ट करते थे, जिनके बीच में कोई भी धारा नहीं थी। इसमें आरएमओ यानी कि रेडियो जो मेंटेनेंस ऑफिसर है, जो तकरीबन 17 वर्षों से वहां पर तैनात है और सीधे ट्रस्ट को रिपोर्ट करता था, और ये जो सीधा ट्रस्ट को रिपोर्ट करते थे जिनके बीच में कोई भी धारा नहीं थी इसमें आरएमओ यानी कि रेडियो जो मेंटेनेंस ऑफिसर है जो तकरीबन 17 वर्षों से वहां पर तैनात है और सीधे ट्रस्ट को रिपोर्ट करता था, और सीसीटीवी फुटेजेस की कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा वहां पर पास निर्गत करने वाले व्यक्ति की जो जिम्मेदारी थी, जिसमें आने जाने के लिए सारी डिटेलिंग होती थी और कौन सा चीज बाहर जाएगी उसकी, और साथ ही साथ मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी की।
0: एसआईटी की टीम की शुरुआती जांच में उस स्टेट बैंक की भूमिका भी संदिग्ध लगी है जिसे मंदिर में मिले पैसों की गिनती और बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी थी। पता चला है कि पैसों की गिनती पूरी करके जमा करने की जिम्मेदारी स्टेट बैंक की थी, लेकिन उसने इसके लिए आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी रखे हुए थे। इसके अलावा नोटों की गिनती की प्रक्रिया में बेहद कम संख्या में कर्मचारी रखे गए थे, जिसे एसआईटी संदिग्ध मान रही है। एसआईटी ने पूछताछ के लिए करीब 200 लोगों की सूची तैयार की है, जिसमें अब तक 125 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि कुछ लोगों से कई बार पूछताछ हुई है। इसमें ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा मंदिर का ज्यादातर कामकाज देखने वाले रमाशंकर यादव और टिन्नू से भी पूछताछ चल रही है।
1: एसआईटी की जांच अयोध्या मामले में अब गेट चेकिंग ऑफिसर से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी तक पहुंच गई है, क्योंकि साफ तौर से गेट से आने जाने वालों की संख्या, इसके अलावा क्या सामान बाहर जाना है, ये जिम्मेदारी इस पर होती थी, और ये सीधा ट्रस्ट में चंपत राय और टिन्नू को भी रिपोर्ट करता था। यानी कि इस पूरे मामले पर अब एसआईटी की जांच उस दिशा में भी बढ़ रही है कि कई कर्नाटक से जो लोग आए थे वो किस तरीके से अंदर शामिल हुए। अब इस दिशा में भी जो एसआईटी की जांच है वो आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर गेट चेकिंग से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी जो 5 वर्षों से वहां पर तैनात हैं, अब उधर भी एसआईटी रुक कर रही है। यानी कि कई कर्मचारियों पर अब रडार एसआईटी की खड़ी हो गई है। अयोध्या से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
2: आप सुनते होंगे कि हर राज्य में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत करिए, तुरंत निवारण भी होगा। मध्य प्रदेश जहां जनता की शिकायत को सुलझाने के लिए बनी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को पुलिस वालों ने अपनी रैंकिंग चमकाने का हथियार बना लिया।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ। पहले ये आपने कोई शिकायत की थी सीएम हेल्पलाइन पे? काय की शिकायत थी?
4: अच्छा, अकाउंट फ्रीज हो चुका है, कोई उस पर रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, चलो मैं देख पाता हूँ, है ना। आपका डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी और सब परिवार में ठीक है, मदद करेंगे आपकी, है ना। मैं सडनली देख रहा हूँ कि कंप्लेंट पर कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही, इसलिए।
5: मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक बार फिर सीएम हेल्पलाइन को लेकर खबरदार होना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन पर फर्जी शिकायत के दम पर कुछ पुलिस वाले चेहरा और रैंकिंग चमकाने में जुटे हैं। खबर मध्य प्रदेश की मऊगंज से, सवाल मऊगंज की पुलिस पर। जवाब के लिए सीएम हेल्पलाइन में दर्ज इन शिकायतों का स्क्रीनशॉट आज देखिए। 31 मई को सौरभ के नाम से शिकायत हुई कि मऊगंज थाने में उसके भाई को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से संतुष्ट हो गया, शिकायत बंद हो गई। 31 मई को ही सौरभ के नाम से एक और शिकायत हुई, पुलिस से पासपोर्ट और चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से एकदम हैप्पी हो गया, शिकायत बंद हो गई। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत हुई, मऊगंज थाने में उसकी FIR नहीं लिखी जा रही। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से एकदम संतुष्ट, शिकायत बंद। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत होती है कि पुलिस परेशान कर रही है, थाने में बुलाकर मारपीट कर रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से हैप्पी, शिकायत बंद। 31 मई को सौरभ के नाम से शिकायत कि उसकी बेटी गुम हो गई, मऊगंज थाना पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से संतुष्ट, शिकायत बंद हो गई। दावा है कि मऊगंज पुलिस ही सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत का खेल खेलती है, जहां दावा है 21 मोबाइल नंबर से 233 झूठी शिकायत खुद ही दर्ज करा के आनन फानन में उनका समाधान भी दिखा दिया, ताकि लगे वाह क्या पुलिस है। आगे सुनिए, ये अंकित चौरसिया है, इनके नाम से फर्जी शिकायत दर्ज करा दी कि 20 साल की बेटी गायब है, जबकि अंकित की तो शादी तक नहीं हुई।
6: क्या आपने शिकायत की?
7: नहीं, नहीं।
6: एक शिकायत ऐसी भी है कि आपकी 20 वर्ष की बच्ची स्कूल गई थी और गुम हो गई है।
7: मेरी शादी ही नहीं।
6: तो वो शिकायत फर्जी है?
5: मिनट मिनट में ऐसी फर्जी शिकायतें खुद ही मऊगंज की पुलिस दर्ज कराती रही, लगा कि गजब का खेल है। जहां मऊगंज थाना प्रभारी को फिलहाल तबादला करके हटाया गया और दूसरे कांस्टेबल को लाइन हाजिर करके जांच जारी है।
8: व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं, उसकी जांच की गई थी, जिसके प्रधान अक्षर को दोषी पाया गया, उसको लाइन अटैच किया गया।
9: जनता की आवाज सुनने और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए बनाई गई सीएम हेल्पलाइन यदि सरकारी रिकॉर्ड चमकाने का जरिया बन जाए तो सवाल पूरे सिस्टम पर खड़े होंगे। मऊगंज का ये कथित फर्जीवाड़ा बता रहा है कि कैसे रैंकिंग और आंकड़ों की होड़ में जनता के भरोसे को दांव पर लगाया गया। अब बड़ा सवाल ये है कि इस खेल से जुड़े बड़े चेहरे कभी बेनकाब होंगे, या फिर एक मोहरे की कुर्बानी देकर बाकी पूरी कहानी को फाइलों में दबा दिया जाएगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
2: RSS हेडक्वार्टर्स पर आधी रात को पेट्रोल बॉम्ब से हमला क्यों किया गया? आखिर इस हमले का उद्देश्य क्या था? क्या ये मामला लोकल पुलिस से आगे बढ़ चुका है? आतंकवादी साजिश के एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है।
10: रांची में RSS के दफ्तर पर हुए हमले की इन तस्वीरों का कनेक्शन अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है। तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि एक शख्स पेट्रोल बम फेंक रहा है, तो वहीं दूसरा शख्स पीछे से वीडियो बना रहा है, ताकि पाकिस्तान में बैठे आकाओं को हमले का सबूत भी भेजा जा सके।
11: जांच में खुलासा हुआ है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की बड़ी भूमिका है।
10: मामले में सियासत बढ़ी तो झारखंड पुलिस एक्शन में आई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी दुबई में पाकिस्तान ISI और भट्टी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था, जो कि दुबई की जेल में भी रहा था। तीनों की उम्र 20 से 23 साल के बीच है, जिसमें एक आरोपी सैफ अंसारी का रांची पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया।
12: वेपन छीन के भागने का प्रयास किया, उसमें जवाबी कार्रवाई में और सुरक्षा हेतु जवाबी कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ी और उसको पैर में इंजरी, बुलेट इंजरी हुई है।
13: मैं रांची पुलिस को बहुत बहुत बधाई शुभकामना दूंगी और हमारी सरकार को भी कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सबके साथ न्याय होता है और ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम करते हैं।
10: इससे पहले BJP इस हमले को लेकर लगातार झारखंड सरकार पर हमलावर थी।
14: जब कांग्रेस के कुछ लोग RSS के बारे में विष फैलाते हैं और उसके बाद सीधे सीधे ये हमला होता है कांग्रेस शासित प्रदेश में, तो ऐसे डेंजरस प्रोपेगेंडा का डेंजरस परिणाम कैसे होता है, ये इसका भी परिचायक है।
10: खबरों की माने तो आरोपियों को सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट किया गया था। RSS दफ्तर पर हमले के लिए आरोपियों ने रेकी की थी, 2 पेट्रोल बम छत पर फेंके थे, 1 पेट्रोल बम गेट के बाहर असेंबल किया था, जिसके पीछे अब पाकिस्तान की साजिश की बात सामने आ रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ सत्यजीत, रांची आज तक।
2: पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बच्चा तस्करी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया, साथ ही इस गिरोह से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 6 मासूमों को सुरक्षित बचाया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है।
10: नकाब के पीछे छिपे इन चेहरों पर मासूम बच्चों को किडनैप करके बेचने का आरोप है। मामले में पुलिस ने 5 बच्चों का रेस्क्यू किया है और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें तस्कर, बिचौलिए, खरीदार और एक अस्पताल का मालिक भी शामिल है।
15: कभी भी किसी बच्चे को नहीं, मुझे झूठा फंसाया गया है, मार मार के यहाँ बिठाया हुआ है।
10: सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में बहुत ही छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जा रही थी। जो बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं उनमें एक बच्चे की उम्र महज 5 दिन है, वहीं 2 बच्चों की उम्र सिर्फ 27 दिन।
16: बहुत ही छोटे बच्चे हुआ करते थे। 1,00,000 रुपए में इन्हें पाली से और राजस्थान के दूसरे गांव से इन्हें खरीदा जाता था, दिल्ली लाया जाता था। दिल्ली के इस हीरा अस्पताल जो कि रोहिणी में स्थित है, यहां लाया जाता था और यहां उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। ट्रीटमेंट करने के बाद जो ऐसे कपल होते थे जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा या जिन्हें बच्चे पाने की अपेक्षा थी, उन्हें ये बच्चे बेच दिए जाते थे। 1,00,000 रुपए में ये बच्चे खरीदे जाते थे राजस्थान से या गुजरात से, और यहां दिल्ली में करीब 8 से 9 लाख रुपए में इन बच्चों को बेच दिया जाता था।
10: इस रैकेट का खुलासा करोलबाग में एक शख्स की जागरूकता की वजह से हुआ, जिसने एक महिला को अलग अलग बच्चों के साथ देखा, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने एक टीम बनाकर गिरोह से बच्चा खरीदने का पूरा जाल बिछाया और फिर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ।
17: उसमें पेरेंट्स से डील सेट होती थी और सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे, बर्थ सर्टिफिकेट्स फोर्ज किए जाते थे, डिलीवरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे और जितने भी इनवॉइसेस, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे फोर्ज किए जाते थे वहीं पर ही उसी हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर विवेक की एक्टिव रोल प्ले करती थी एज द लिंचपिन।
10: इस पूरे खेल का बाकायदा सिस्टम बना हुआ था, जिसमें बच्चा सप्लायर, बिचौलिए, खरीदार को लाने वाले सबका कट होता था। अलग अलग राज्यों से बच्चों को दिल्ली लाया जाता था। बच्चा गोद लेने की चाहत रखने वाले बेऔलाद जोड़ों की पहचान नेटवर्क के जरिए की जाती थी, जहां अस्पताल में बच्चा न पैदा होने की समस्या का इलाज करा रहे पति पत्नी को टारगेट किया जाता था, जिन्हें झांसा देकर इन मासूमों की जिंदगी का सौदा किया जाता था। अंशुल सिंह, दिल्ली, आज तक।
2: भोजपुर में पुलिस पर पिस्टल तानने, फायरिंग करने के आरोपी भरत तिवारी का एक दिन पहले एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर के बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई। अब पुलिस के सेक्शन पर सवाल है। आज ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जोरदार हंगामा किया।
18: जबरदस्त हंगामा बरपा है। पत्थरबाजी हो रही है,

0: 40 घंटे तक पुलिस के लिए ये शख्स चुनौती बना रहा और आखिरकार एनकाउंटर में मारा गया, मगर परिवार कहता है कि उसे जिंदा भी पकड़ा जा सकता था।
1: सुबह हमें 8 बजे के करीब में धूप गई डायरेक्ट, धूप के हथियार तान दिला सब परिवार पहन के, और छोट लड़का के कालर धके मोबाइल छीन ले।
0: अब प्रशासन परिवार और ग्रामीणों को समझा बुझा रहा है, मगर ये एनकाउंटर सवालों के घेरे में जरूर है। सोनू कुमार सिंह, आरा आज तक।
2: अब खबर अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की, जो तय समय से एक दिन पहले ही हो गया। इस डील से पहले ट्रंप ने भारत को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया, कहा कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा, लेकिन ईरान को लेकर जो समझौता हुआ है उसमें जिस तरह इसराइल के हितों की अनदेखी की गई है वो अमेरिका को लेकर खबरदार करने के लिए काफी है।
3: इस तस्वीर को देखकर दुनिया को राहत मिली जब अमेरिका और ईरान की तरफ से जंग खत्म करने के समझौते के मसौदे पर दस्तखत किए जाते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने बुधवार देर रात डिजिटल हस्ताक्षर किए, जिसके साथ ही समझौता लागू हो गया। ईरान के साथ समझौता करने से पहले ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उनकी तारीफों की झड़ी लगा दी।
4: I want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually.
3: 16 महीनों बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने रिश्तों में आई खटास को कम करने की भरसक कोशिश की। इसी कोशिश में ट्रंप ने वो कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।
4: You know what? President Trump, can you not the defense relationship between India and the United States? Sorry, I'm speeding, I won't.
5: That's okay.
4: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
5: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there.
3: तो ट्रंप ने वादा किया कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा। ट्रंप ये कहकर सबको चौंका देते हैं, लेकिन सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस भरोसे में कितना दम है, क्योंकि ईरान के साथ जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल की अनदेखी की है वो अमेरिका से रिश्तों को लेकर खबरदार करता है।
5: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, baby. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say we're the big partner and he's the very small partner, and that's true.
3: फ्रांस में ट्रंप की पीस डील पर साइन करने के बाद ईरानी राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने जिस समझौते के दस्तावेज पर दस्तखत किए उसमें नवा पॉइंट अमेरिका पर भरोसे का संकट बढ़ाता है। समझौते के मसौदे में अमेरिका, ईरान और उसके सहयोगी देशों के बीच सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत और स्थायी रूप से बंद करने की बात कही गई है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। अमेरिका के लिए ये मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि ट्रंप को चिंता थी कि हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की सैन्य कार्रवाई शांति समझौते को कमजोर कर सकती है, इसीलिए इसे इसराइल के खिलाफ माना जा रहा है। इसराइल पहले ही कह चुका है कि वो अमेरिका ईरान बातचीत में लेबनान को लेकर हुई किसी भी सहमति को नहीं मानेगा, लेकिन ट्रंप इसराइल की सुनने को तैयार नहीं दिखते।
5: Angry, I guess. I'm allowed to get angry when I watch these, the Democrats. They talk about it all the time. We had this deal done. You had a deal that was going to give them legally a nuclear weapon. And if that happened, Israel would have been blown away.
3: तो ट्रंप ये कहकर इसराइल पर एहसान जताते हैं कि अगर वो ना होते तो इसराइल का नामो निशान मिट जाता। कुल मिलाकर ईरान से सीधी टक्कर लेने वाला इसराइल खुद को अकेला पा रहा है।
6: What the president is saying is that right now they won't call. Okay, so they would like Israel to be less aggressive. Now, we are ready, as I said, to engage in a diplomatic process, but we will not renounce our right for self-defense. And we are going to continue operations in South Lebanon, and if we are attacked, we are going to retaliate.
7: नहीं तो इसमें मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर इसराइल पर हमला होता है हिजबुल्ला की तरफ से तो क्या इसराइल पलटवार करेगा या इस एमओयू की वजह से टोटल सीज फायर होगा हर मोर्चे पर।
6: वी विल डिफेंड आवरसेल्व्स एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज स्टेटेड दैट, आवर डिफेंस मिनिस्टर हैज स्टेटेड दैट इसराइल विल डिफेंड इटसेल्फ इफ अटैक्ड बाय हिजबुल्ला।
3: इसराइल भले ही कहे कि वो लेबनान में किसी की नहीं सुनेगा, लेकिन हकीकत ये कि पिछले रविवार को जिस समझौते का ऐलान

0: ट्रंप ने किया। दावा है कि उसने इसराइल और उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अचंभित कर दिया, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में इजरायली अधिकारियों के हवाले से मंगलवार तक दावा किया गया है कि इसराइल को अब तक समझौते का ड्राफ्ट नहीं दिखाया गया। हालांकि ट्रंप ने इस समझौते पर साइन करने से पहले इसकी एक कॉपी नेतन्याहू को भेजने की बात कही, लेकिन इसने दिखा दिया कि अमेरिका ने अपने सबसे करीबी दोस्त को ईरान से समझौता करने के चक्कर में अकेला छोड़ दिया।
1: Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99%. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
0: अमेरिका और ईरान में जो समझौता होने जा रहा है उससे ईरान मालामाल होगा, उसके प्रतिबंध हटेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचेगा, कमाई करेगा और इस पैसे का इस्तेमाल अपने मिसाइल कार्यक्रम को खतरनाक करने में लगाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अब आप ही सोचिए कि ये काम करने वाले ट्रंप का भारत को किया वायदा कितना भरोसे लायक है, क्योंकि ईरान से होने वाला समझौता बताता है अमेरिका अपने फायदे के लिए इसराइल जैसे सबसे करीबी देश के हितों की भी अनदेखी कर सकता है।
2: दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस जंग से निकलने की एक विंडो तलाश रहे थे और जब ईरान के साथ उनकी सहमति बन गई तो उन्होंने इसराइल को बिना कॉन्फ्रेंस में लिए ही एमओयू साइन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे थे कि अगर वो इसराइल का साथ लंबे समय तक देते तो ना सिर्फ उनके देश में उनकी नीतियों को लेकर जो मुखालफत हो रही थी वो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती, बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनका धीरे धीरे कर साथ छोड़ रहे थे। यहां तक कि नाटो के देश भी लगातार उन पर सवाल खड़े कर रहे थे और इन्हीं मजबूरियों के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पेरिस में भारतीयों के बीच बोले पीएम मोदी, भविष्य को आकार दे रहा है भारत। पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुआ विकास, विश्व का भरोसेमंद सहयोगी बना हिंदुस्तान। झारखंड में भी कांग्रेस नहीं संभाल पाई अपना कुनबा, क्रॉस वोटिंग के चलते राज्यसभा चुनाव में मिली हार। एनडीए समर्थित परिमल नाथ वाणी विजयी, बीजेपी ने कहा राहुल की हार। उद्धव की सेना में फिर से बड़ी टूट, उनके 6 सांसदों का शिंदे गुट में शामिल होना तय, बागियों को भेजा गया कारण बताओ नोटिस। 21 जून को नीट री एग्जाम के लिए एयरफोर्स ने कई शहरों में पहुंचाए प्रश्न पत्र, धर्मेंद्र प्रधान ने हाई लेवल मीटिंग की तैयारियों की शिक्षा मंत्री ने समीक्षा। और रांची में आरएसएस ऑफिस पर हमले का आईएसआई कनेक्शन, पाक हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी अमन अंसारी, एटीएस को सौंपी गई जांच। उद्धव गुट में एक बार फिर से बगावत हो गई। गुरुवार को उद्धव ठाकरे ने अपनी संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, बाकायदा व्हिप जारी किया था, मगर इस बैठक में सिर्फ 3 सांसद पहुंचे, 6 सांसदों ने बैठक से दूरी बना ली। अब शिवसेना यूबीटी ने बैठक में शामिल न होने वाले सांसदों से जवाब मांगा है।
1: उद्धव ठाकरे को जिस बात का डर था वही हुआ, पार्टी ने व्हिप जारी किया था, संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, मगर बैठक में सिर्फ 3 सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे पहुंचे, यानी 6 सांसदों ने मीटिंग में हाजिरी नहीं दी। ये वो सांसद हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत की है, माना जा रहा है कि जल्द ही वे अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजय जाधव बागी सांसदों का नेतृत्व करेंगे। उधर बागी सांसदों को लेकर शिवसेना यूबीटी ने गहरी नाराजगी जताई है, पार्टी ने बागी सांसदों से जवाब मांगा है। शिवसेना यूबीटी को एक बार फिर टूट का डर सता रहा है, इसीलिए शिवसेना यूबीटी का एक दल लोकसभा स्पीकर के पास चिट्ठी लेकर पहुंचा, जिसमें लिखा था कि अगर कोई शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने का दावा करे तो पहले हमसे संपर्क किया जाए।
2: हमने एक लेटर दिया है स्पीकर साहब को, क्या वेट, अगर कोई आता है शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए वो गैरकानूनी है।
3: विषय यही रखा है कि भाई अगर कोई इस ग्रुप को लेके कोई आता है आपके पास में, व्यवस्था आपके हाथ में है, आरपी एक्ट संविधान में जो प्रावधान है उसको लेके हमने लेटर दिया है, अगर कोई पहुँचता है तो हमसे पहले बात करें।
1: राउत ने आरोप लगाया कि सभी बागियों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है, इसके लिए उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
4: मेरा जो स्टैंड है वो क्रिस्टल क्लियर है, मैं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के साथ हूँ।
1: अब शिंदे गुट इसे अपनी जीत बता रहा है और कांग्रेस कह रही है कि ये ऑपरेशन टाइगर नहीं ऑपरेशन गीदड़ है।
5: ऑपरेशन प्रगति यशस्वी, जिस व्यक्ति ने जनता के लिए इतना काम किया है, जनता हमेशा उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है और सबको पता है कि ओरिजिनल टाइगर कौन है।
6: ऑपरेशन टाइगर ने ऑपरेशन गीदड़ है, सत्ता की भूख उसकी एक मर्यादा होती है।
1: खबर है कि टीएमसी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर को खत लिख चुके हैं, जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए ये दोहरा झटका है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: क्या समाजवादी पार्टी में भी उत्तर प्रदेश में बगावत होने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ओपी राजभर के बाद संजय निषाद ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद समाजवादी पार्टी छोड़ना चाहते हैं, और इसके साथ ही अब यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर भी समीकरण बिठाए जा रहे हैं।
7: अखिलेश यादव के दल टूट की जो खबर राजभर ने उठाई है वो अब तूल पकड़ रही है। राजभर के बाद यूपी के मंत्री संजय निषाद भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश से किनारा करना चाहते हैं।
8: दिल्ली शीर्ष नेतृत्व को बताऊं कि वो लोग अब जुड़ना चाहते हैं।
9: आप कितने लोग हैं
8: आपके विचारधारा? मैंने बताया 2000 से अधिक लोग हैं
9: समाजवादी पार्टी के।
8: हाँ, उनके लोग
9: विधायक भी हैं, केवल सांसद
8: के, कांग्रेस के विधायक भी हैं और सांसद भी हैं।
7: लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसे बयानों को बकवास बता रही है।
10: राजभर जी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अब चुनाव आया है तो सीटों की बार्गेनिंग करें।
11: अगर ये उनका कहना सही हो जाएगा तो सनातन प्रणय जीवन में राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे।
7: मामला शुरू हुआ था समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने की खबर से, मगर माहौल बदल गया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि राजभर तो खुद समाजवादी पार्टी में विलय चाहते हैं।
12: मिलके उन्हीं ने निवेदन किया कि सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव डाल रही है, बहुत ब्लैकमेल कर रही है। और उनका अरुण राजभर ने इस बात को भी कहा कि पिताजी की किसी बात का बुरा भी ना माना जाए, उनकी लिखी हुई बात, उनकी कही हुई बात को गंभीरता से भी ना लिया जाए, क्योंकि वो बहुत तनाव में है।
7: अब राजभर के सुपुत्र समाजवादी पार्टी के इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं।
13: सही बात है कि समाजवादी पार्टी मुखिया और इन सभी नेताओं का कोई न कोई यूज तो कर ही रहा, क्योंकि ये बात बताइए जिस दिन की जिक्र कर रहे हैं उस दिन मैं समाजवादी पार्टी के गढ़ को समाप्त करने का अभियान चला रहा था।
7: दरअसल समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि राजभर जानबूझकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं ताकि 27 के चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा कर सकें।
14: ये इसलिए बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको सीटें दे देगी, एक तो सीटों के लिए मेरी बातों को लिख लीजिए।
7: समाजवादी पार्टी के आरोपों को ओपी राजभर सही साबित कर रहे हैं, क्योंकि उनका दावा अभी से 34 सीटों पर है।
15: अभी तक हम लोगों ने 34 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किया है और वहाँ जो संगठन में कमजोरी रही है उसको पूरा कराने के लिए प्रयास हम लोगों का हो रहा है कि इस बार हम लोग अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल करा लें।
7: 27 के चुनाव से पहले मुद्दों को धार दी जा रही है और सीटों के लिए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 के री एग्जामिनेशन को पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाने और सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार और एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए इस बार प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और देश भर के केंद्रों तक उनकी सुरक्षित डिलीवरी का जिम्मा भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है।
7: देश में नीट के पेपर को सुरक्षित करने के लिए भारतीय वायुसेना ने उड़ान भर दी है। 21 जून को होने वाली डी नीट के पेपर को लेकर सेना का हेलीकॉप्टर अलग अलग जगहों पर पहुंच रहा है, जहां से पेपर को लोड किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस की कड़ी निगरानी में इन्हें स्ट्रांग रूम भेजा जा रहा है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता के मानकों को बनाए रखने पर जोर दिया। उधर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है।
16: पहले बोले कि हम पेपर जो है वो हवाई जहाज से, एयरफोर्स के हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट कराएंगे, अब कह रहे हैं टेलीग्राम बैन कर दिया, इससे कोई पेपर लीक रुकेंगे? पेपर लीक तो रोकने ही नहीं इनको, इनकी नीयत ही खराब है। इतने जो एमपी और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं? आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं।
7: नीट पेपर लीक को लेकर जारी घमासान के बीच टेलीग्राम पर रोक का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, जहां सरकार ने टेलीग्राम को अपराधियों का अड्डा बताया। वही टेलीग्राम की ओर से दलील दी गई कि क्या एक घटना को रोकने के लिए पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर देना सही है। बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज तक ब्यूरो।
0: श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसके तार गहरे जुड़ते नजर आ रहे हैं। शुरुआती जांच से ये लग रहा है कि निगरानी के पूरे सिस्टम में ही खामियां हैं। देखिए एक रिपोर्ट।

0: अयोध्या में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बने राम मंदिर में पिछले 4 दिनों से रोज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अफसर जा रहे हैं, घंटों तक जांच पड़ताल पूछताछ कर रहे हैं। और इस पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जांच की सुई वहां जाकर ठहरी है जहां पता चला है कि चढ़ावा चोरी की प्लानिंग निगरानी के इंतजाम में ही गड़बड़ी से ही शुरू हुई प्रतीत होती है। और मोटे तौर पर एसआईटी की जांच के दायरे में पहले सीसीटीवी लगाने, मेंटेन करने और रिकॉर्ड करने वाले लोग हैं, दूसरे मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारी हैं, तीसरे कर्मचारियों को नौकरी पर रखने वाले अधिकारी हैं, चौथे पूरी व्यवस्था की कानूनी जिम्मेदारी रखने वाले पुलिस अधिकारी भी हैं। जांच टीम ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, उसकी रिकॉर्डिंग और सुरक्षा प्रबंधन की गहन पड़ताल की है। इसी दौरान एसआईटी को सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के संकेत भी मिले हैं। एसआईटी को जांच में मिले दस्तावेजों के अनुसार मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर पिछले 11 महीनों में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारी सुरक्षा खर्च के बावजूद दान पेटियों से नकदी और आभूषणों की कथित चोरी सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
1: अयोध्या मामले में अब एसआईटी की जांच की रडार अब सीसीटीवी कर्मचारियों, पास दिखाने वाले कर्मचारियों और इसके अलावा मंदिर परिसर में मैनेजमेंट देखने वाले कर्मचारियों की तरफ बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो ये सभी वो कर्मचारी हैं जो सीधा ट्रस्ट को रिपोर्ट करते थे, जिनके बीच में कोई भी धारा नहीं थी। इसमें आरएमओ यानी कि रेडियो जो मेंटेनेंस ऑफिसर है, जो तकरीबन 17 वर्षों से वहां पर तैनात है और सीधे ट्रस्ट को रिपोर्ट करता था, और सीसीटीवी फुटेजेस की कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा वहां पर पास निर्गत करने वाले व्यक्ति की जो जिम्मेदारी थी, जिसमें आने जाने के लिए सारी डिटेलिंग होती थी और कौन सा चीज बाहर जाएगी उसकी, और साथ ही साथ मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी की।
0: एसआईटी की टीम की शुरुआती जांच में उस स्टेट बैंक की भूमिका भी संदिग्ध लगी है, जिसे मंदिर में मिले पैसों की गिनती और बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी थी। पता चला है कि पैसों की गिनती पूरी करके जमा करने की जिम्मेदारी स्टेट बैंक की थी, लेकिन उसने इसके लिए आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी रखे हुए थे। इसके अलावा नोटों की गिनती की प्रक्रिया में बेहद कम संख्या में कर्मचारी रखे गए थे, जिसे एसआईटी संदिग्ध मान रही है। एसआईटी ने पूछताछ के लिए करीब 200 लोगों की सूची तैयार की है, जिसमें अब तक 125 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि कुछ लोगों से कई बार पूछताछ हुई है। इसमें ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा मंदिर का ज्यादातर कामकाज देखने वाले रमाशंकर यादव और टिन्नू से भी पूछताछ चल रही है।
1: एसआईटी की जांच अयोध्या मामले में अब गेट चेकिंग ऑफिसर से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी तक पहुंच गई है, क्योंकि साफ तौर से गेट से आने जाने वालों की संख्या, इसके अलावा क्या सामान बाहर जाना है, ये जिम्मेदारी इस पर होती थी और ये सीधा ट्रस्ट में चंपत राय और टिन्नू को भी रिपोर्ट करता था। यानी कि इस पूरे मामले पर अब एसआईटी की जांच उस दिशा में भी बढ़ रही है कि कई कर्नाटक से जो लोग आए थे वो किस तरीके से अंदर शामिल हुए। अब इस दिशा में भी जो एसआईटी की जांच है वो आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर गेट चेकिंग से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी जो 5 वर्षों से वहां पर तैनात हैं, अब उधर भी एसआईटी रुक कर रही है। यानी कि कई कर्मचारियों पर अब रडार एसआईटी की खड़ी हो गई है। अयोध्या से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
2: आप सुनते होंगे कि हर राज्य में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत करिए, तुरंत निवारण भी होगा। मध्य प्रदेश जहां जनता की शिकायत को सुलझाने के लिए बनी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को पुलिस वालों ने अपनी रैंकिंग चमकाने का हथियार बना लिया।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ। पहले ये आपने कोई शिकायत की थी सीएम हेल्पलाइन पे? काय की शिकायत थी? अच्छा, अकाउंट फ्रीज हो चुका है, कोई उस पर रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, चलो मैं देख पाता हूँ, है ना। मैं आपका डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी और सब परिवार में ठीक है, मदद करेंगे आपकी, है ना। मैं सडनली देख रहा हूँ कि कंप्लेंट पर कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही। इसलिए
4: मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक बार फिर सीएम हेल्पलाइन को लेकर खबरदार होना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन पर फर्जी शिकायत के दम पर कुछ पुलिस वाले चेहरा और रैंकिंग चमकाने में जुटे। खबर मध्य प्रदेश की मऊगंज, सवाल मऊगंज की पुलिस पर। जवाब के लिए सीएम हेल्पलाइन में दर्ज इन शिकायतों का स्क्रीनशॉट आज देखिए। 31 मई को सौरभ के नाम से शिकायत हुई कि मऊगंज थाने में उसके भाई को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से संतुष्ट हो गया, शिकायत बंद हो गई। 31 मई को ही सौरभ के नाम से एक और शिकायत हुई। पुलिस से पासपोर्ट और चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से एकदम हैप्पी हो गया, शिकायत बंद हो गई। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत हुई, मऊगंज थाने में उसकी FIR नहीं लिखी जा रही। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से एकदम संतुष्ट, शिकायत बंद। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत होती है कि पुलिस परेशान कर रही है, थाने में बुलाकर मारपीट कर रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से हैप्पी, शिकायत बंद। 31 मई को सौरभ के नाम से शिकायत कि उसकी बेटी गुम हो गई, मऊगंज थाना पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से संतुष्ट, शिकायत बंद हो गई। दावा है कि मऊगंज पुलिस ही सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत का खेल खेलती है। जहां दावा है 21 मोबाइल नंबर से 233 झूठी शिकायत खुद ही दर्ज करा के आनंद फानंद में उनका समाधान भी दिखा दिया, ताकि लगे वाह क्या पुलिस है। आगे सुनिए, ये अंकित चौरसिया है, इनके नाम से फर्जी शिकायत दर्ज करा दी कि 20 साल की बेटी गायब है, जबकि अंकित की तो शादी तक नहीं हुई।
5: क्या आपने शिकायत की?
6: नहीं, नहीं।
5: एक शिकायत ऐसी भी है कि आपकी 20 वर्ष की बच्ची स्कूल गई थी और गुम हो गई है।
6: मेरी शादी ही नहीं हुई।
5: तो वो शिकायत फर्जी?
4: मिनट मिनट में ऐसी फर्जी शिकायतें खुद ही मऊगंज की पुलिस दर्ज कराती रही, लगा कि गजब का खेल है। जहां मऊगंज थाना प्रभारी को फिलहाल तबादला करके हटाया गया और दूसरे कांस्टेबल को लाइन हाजिर करके जांच जारी है।
7: व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं, उसकी जांच की गई थी, उसके प्रधान अक्षर को दोषी पाया गया, उसको लाइन अटैच किया गया।
8: जनता की आवाज सुनने और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए बनाई गई सीएम हेल्पलाइन यदि सरकारी रिकॉर्ड चमकाने का जरिया बन जाए तो सवाल पूरे सिस्टम पर खड़े होंगे। मऊगंज का यह कथित फर्जीवाड़ा बता रहा है कि कैसे रैंकिंग और आंकड़ों की होड़ में जनता के भरोसे को दांव पर लगाया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि इस खेल से जुड़े बड़े चेहरे कभी बेनकाब होंगे या फिर एक मोहरे की कुर्बानी देकर बाकी पूरी कहानी को फाइलों में दबा दिया जाएगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
2: RSS हेडक्वार्टर्स पर आधी रात को पेट्रोल बॉम्ब से हमला क्यों किया गया? आखिर इस हमले का उद्देश्य क्या था? क्या ये मामला लोकल पुलिस से आगे बढ़ चुका है? आतंकवादी साजिश के एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है।
9: रांची में RSS के दफ्तर पर हुए हमले की इन तस्वीरों का कनेक्शन अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है। तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि एक शख्स पेट्रोल बम फेंक रहा है तो वहीं दूसरा शख्स पीछे से वीडियो बना रहा है, ताकि पाकिस्तान में बैठे आकाओं को हमले का सबूत भी भेजा जा सके।
10: जांच में खुलासा हुआ है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की बड़ी भूमिका है।
9: मामले में सियासत बढ़ी तो झारखंड पुलिस एक्शन में आई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी दुबई में पाकिस्तान ISI और भट्टी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था, जो कि दुबई की जेल में भी रहा था। तीनों की उम्र 20 से 23 साल के बीच है, जिसमें एक आरोपी सैफ अंसारी का रांची पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया।
11: वेपन छीन के भागने का प्रयास किया, उसमें जवाबी कार्रवाई में और सुरक्षा हेतु जवाबी कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ी और उसको पैर में इंजरी, बुलेट इंजरी हुई है।
12: मैं रांची पुलिस को बहुत बहुत बधाई शुभकामना दूंगी और हमारी सरकार को भी कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सबके साथ न्याय होता है और ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम करते हैं।
9: इससे पहले BJP इस हमले को लेकर लगातार झारखंड सरकार पर हमलावर थी।
13: जब कांग्रेस के कुछ लोग RSS के बारे में विष फैलाते हैं और उसके बाद सीधे सीधे ये हमला होता है कांग्रेस शासित प्रदेश में, तो ऐसे डेंजरस प्रोपेगेंडा का डेंजरस परिणाम कैसे होता है, ये इसका भी परिचायक है।
9: खबरों की माने तो आरोपियों को सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट किया गया था। RSS दफ्तर पर हमले के लिए आरोपियों ने रेकी की थी, 2 पेट्रोल बम छत पर फेंके थे, 1 पेट्रोल बम गेट के बाहर असेंबल किया था, जिसके पीछे अब पाकिस्तान की साजिश की बात सामने आ रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ सत्यजीत, रांची आज तक।
2: पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बच्चा तस्करी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया, साथ ही इस गिरोह से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 6 मासूमों को सुरक्षित बचाया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है।
9: नकाब के पीछे छिपे इन चेहरों पर मासूम बच्चों को किडनैप करके बेचने का आरोप है। मामले में पुलिस ने 5 बच्चों का रेस्क्यू किया है और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें तस्कर, बिचौलिए, खरीदार और एक अस्पताल का मालिक भी शामिल है।
6: कभी भी किसी बच्चे को नहीं, मुझे झूठा फंसाया गया है, मुझे मार मार के यहाँ बिठाया हुआ है।
9: सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में बहुत ही छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जा रही थी। जो बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं उनमें एक बच्चे की उम्र महज 5 दिन है, वहीं 2 बच्चों की उम्र सिर्फ 27 दिन।
14: बहुत ही छोटे बच्चे हुआ करते थे। 1,00,000 रुपए में इन्हें पाली से और राजस्थान के दूसरे गांव से इन्हें खरीदा जाता था, दिल्ली लाया जाता था। दिल्ली के इस हीरा अस्पताल जो कि रोहिणी में स्थित है, यहां लाया जाता था और यहां उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। ट्रीटमेंट करने के बाद जो ऐसे कपल होते थे जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा या जिन्हें बच्चे पाने की अपेक्षा थी, उन्हें ये बच्चे बेच दिए जाते थे। 1,00,000 रुपए में ये बच्चे खरीदे जाते थे राजस्थान से या गुजरात से, और यहां दिल्ली में करीब 8 से 9 लाख रुपए में इन बच्चों को बेच दिया जाता था।
9: इस रैकेट का खुलासा करोलबाग में एक शख्स की जागरूकता की वजह से हुआ, जिसने एक महिला को अलग अलग बच्चों के साथ देखा, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने एक टीम बनाकर गिरोह से बच्चा खरीदने का पूरा जाल बिछाया और फिर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ।
15: उसमें पेरेंट्स से डील सेट होती थी और सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे, बर्थ सर्टिफिकेट्स फोर्ज किए जाते थे, डिलीवरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे और जितने भी इनवॉइसेस, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे फोर्ज किए जाते थे वहीं पर ही उसी हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर विवेक की एक्टिव रोल प्ले करती थी एज द लिंचपिन।
9: इस पूरे खेल का बाकायदा सिस्टम बना हुआ था, जिसमें बच्चा सप्लायर, बिचौलिए, खरीदार को लाने वाले सबका कट होता था। अलग अलग राज्यों से बच्चों को दिल्ली लाया जाता था। बच्चा गोद लेने की चाहत रखने वाले बेऔलाद जोड़ों की पहचान नेटवर्क के जरिए की जाती थी, जहां अस्पताल में बच्चा न पैदा होने की समस्या का इलाज करा रहे पति पत्नी को टारगेट किया जाता था, जिन्हें झांसा देकर इन मासूमों की जिंदगी का सौदा किया जाता था। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: भोजपुर में पुलिस पर पिस्टल तानने, फायरिंग करने के आरोपी भरत तिवारी का एक दिन पहले एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर के बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई। अब पुलिस के इस एक्शन पर सवाल है। आज ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जोरदार हंगामा किया।
16: जबरदस्त हंगामा बरपा है। पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस लोगों को तितर बितर कर रही है और पीछे से चीख पुकार मची है कि पुलिस वाले गोली न चलाएं। ये बवाल बिहार में आरा के भोजपुर में शाहपुर थाना क्षेत्र के बैलोटी की तस्वीरें हैं। एक दिन पहले यहां पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी नाम का शख्स घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन कह रहे हैं कि ये पुलिस का फेक एनकाउंटर था और इसीलिए आरा बक्सर फोर लेन मार्ग पर वो शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे।
17: बहुत अन्याय हुआ है। मान लीजिए कि एनकाउंटर है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया था, तो प्रशासन को इसको लेकर पकड़ कर जाकर जेल में बंद देना चाहिए। ये नहीं कि एनकाउंटर नहीं करना चाहिए।
16: अब एनकाउंटर की तस्वीर देखिए। ये जो गोली चला रहा है, इसी का नाम भरत तिवारी है। करीब 48 घंटे तक पुलिस के लिए ये शख्स चुनौती बना रहा और आखिरकार एनकाउंटर में मारा गया, मगर परिवार कहता है कि उसे जिंदा भी पकड़ा जा सकता था।
17: सुबह हमें 8 बजे के करीब में धूप गई डायरेक्ट, धूप के हथियार तान दिल सब परिवार पहन के, और छोट लड़का के कालर धके मोबाइल छीन ले।
16: अब प्रशासन परिवार और ग्रामीणों को समझा बुझा रहा है, मगर ये एनकाउंटर सवालों के घेरे में जरूर है। सोनू कुमार सिंह, आरा आज तक।
2: अब खबर अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की, जो तय समय से एक दिन पहले ही हो गया। इस डील से पहले ट्रंप ने भारत को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया, कहा कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा। लेकिन ईरान को लेकर जो समझौता हुआ है, उसमें जिस तरह इसराइल के हितों की अनदेखी की गई है, वो अमेरिका को लेकर खबरदार करने के लिए काफी है।
4: इस तस्वीर को देखकर दुनिया को राहत मिली जब अमेरिका और ईरान की तरफ से जंग खत्म करने के समझौते के मसौदे पर दस्तखत किए जाते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने बुधवार देर रात डिजिटल हस्ताक्षर किए, जिसके साथ ही समझौता लागू हो गया। ईरान के साथ समझौता करने से पहले ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उनकी तारीफों की झड़ी लगा दी।
18: I want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually.
4: 16 महीनों बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने रिश्तों में आई खटास को कम करने की भरसक कोशिश की। इसी कोशिश में ट्रंप ने वो कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।
18: But you know what? President Trump, President Trump, can you tell the defense relationship between India and the United States? Sorry, I'm speeding, I won't.
19: That's okay.
18: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
19: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there.
4: तो ट्रंप ने वादा किया कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा। ट्रंप ये कहकर सबको चौंका देते हैं, लेकिन सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस भरोसे में कितना दम है, क्योंकि ईरान के साथ जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इजराइल की अनदेखी की है वो अमेरिका से रिश्तों को लेकर खबरदार करता है।
19: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, BB. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true.
4: फ्रांस में ट्रंप की पीस डील पर साइन करने के बाद ईरानी राष्ट्रपति पेजिशकियान ने जिस समझौते के दस्तावेज पर दस्तखत किए उसमें नवा पॉइंट अमेरिका पर भरोसे का संकट बढ़ाता है। समझौते के मसौदे में अमेरिका, ईरान और उसके सहयोगी देशों के बीच सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत और स्थायी रूप से बंद करने की बात कही गई है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। अमेरिका के लिए ये मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि ट्रंप को चिंता थी कि हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की सैन्य कार्रवाई शांति समझौते को कमजोर कर सकती है, इसीलिए इसे इसराइल के खिलाफ माना जा रहा है। इसराइल पहले ही कह चुका है कि वो अमेरिका ईरान बातचीत में लेबनान को लेकर हुई किसी भी सहमति को नहीं मानेगा, लेकिन ट्रंप इसराइल की सुनने को तैयार नहीं दिखते।
19: Angry, I guess. I'm allowed to get angry when I watch these, the Democrats, they talk about it all the time. We had this deal done. You had a deal that was going to give them legally a nuclear weapon. And if that happened, Israel would have been blown away.
4: तो ट्रंप ये कहकर इसराइल पर एहसान जताते हैं कि अगर वो ना होते तो इसराइल का नामो निशान मिट जाता। कुल मिलाकर ईरान से सीधी टक्कर लेने वाला इसराइल खुद को अकेला पा रहा है।
20: What the president is saying is that right now they won't call. Okay, so they would like Israel to be less aggressive. Now we are ready, as I said, to engage in a diplomatic process, but we will not renounce our right for self-defense. And we are going to continue operations in South Lebanon, and if we are attacked, we are going to retaliate.
21: नहीं तो इसमें मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर इज़राइल पर हमला होता है हिजबुल्ला की तरफ से तो क्या इज़राइल पलटवार करेगा या इस एमओयू की वजह से टोटल सीज फायर होगा हर मोर्चे पर?
20: We will defend ourselves and our prime minister has stated that, our defense minister has stated that Israel will defend itself if attacked by Hezbollah.
4: इज़राइल भले ही कहे कि वो लेबनान में किसी की नहीं सुनेगा, लेकिन हकीकत ये कि पिछले रविवार को जिस समझौते का ऐलान ट्रंप ने किया, दावा है कि उसने इसराइल और उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अचंभित कर दिया, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में इजरायली अधिकारियों के हवाले से मंगलवार तक दावा किया गया है कि इसराइल को अब तक समझौते का ड्राफ्ट नहीं दिखाया गया। हालांकि ट्रंप ने इस समझौते पर साइन करने से पहले इसकी एक कॉपी नेतन्याहू को भेजने की बात कही, लेकिन इसने दिखा दिया कि अमेरिका ने अपने सबसे करीबी दोस्त को ईरान से समझौता करने के चक्कर में अकेला छोड़ दिया।
19: एंडिंग द करंट कॉन्फ्लिक्ट, रीओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, एंड प्रिवेंटिंग ईरान फ्रॉम एवर ऑब्टेनिंग ए न्यूक्लियर वेपन, दैट्स व्हाट वाज ऑल अबाउट। दैट वाज अबाउट 99% ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, दे कांट डेवलप इट, बाय इट, दे कैन नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन।
4: अमेरिका और ईरान में जो समझौता होने जा रहा है उससे ईरान मालामाल होगा, उसके प्रतिबंध हटेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचेगा, कमाई करेगा और इस पैसे का इस्तेमाल अपने मिसाइल कार्यक्रम को खतरनाक करने में लगाएगा। सकता कि भविष्य में किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अब आप ही सोचिए कि ये काम करने वाले ट्रंप का भारत को किया वायदा कितना भरोसे लायक है, क्योंकि ईरान से होने वाला समझौता बताता है अमेरिका अपने फायदे के लिए इसराइल जैसे सबसे करीबी देश के हितों की भी अनदेखी कर सकता है।
0: दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस जंग से निकलने की एक विंडो तलाश रहे थे, और जब ईरान के साथ उनकी सहमति बन गई तो उन्होंने इसराइल को बिना कॉन्फ्रेंस में लिए ही एमओयू साइन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे थे कि अगर वो इसराइल का साथ लंबे समय तक देते तो ना सिर्फ उनके देश में उनकी नीतियों को लेकर जो मुखालफत हो रही थी वो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती, बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनका धीरे धीरे कर साथ छोड़ रहे थे। यहां तक कि नाटो के देश भी लगातार उन पर सवाल खड़े कर रहे थे, और इन्हीं मजबूरियों के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पेरिस में भारतीयों के बीच बोले पीएम मोदी, भविष्य को आकार दे रहा है भारत। पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुआ विकास, विश्व का भरोसेमंद सहयोगी बना हिंदुस्तान। झारखंड में भी कांग्रेस नहीं संभाल पाई अपना कुनबा, क्रॉस वोटिंग के चलते राज्यसभा चुनाव में मिली हार। एनडीए समर्थित परिमल नाथ वाणी विजयी, बीजेपी ने कहा राहुल की हार। उद्धव की सेना में फिर से बड़ी टूट, उनके 6 सांसदों का शिंदे गुट में शामिल होना तय, बागियों को भेजा गया कारण बताओ नोटिस। 21 जून को नीट री एग्जाम के लिए एयरफोर्स ने कई शहरों में पहुंचाए प्रश्न पत्र, धर्मेंद्र प्रधान ने हाई लेवल मीटिंग की तैयारियों की शिक्षा मंत्री ने समीक्षा। और रांची में आरएसएस ऑफिस पर हमले का आईएसआई कनेक्शन, पाक हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी अमन अंसारी, एटीएस को सौंपी गई जांच। उद्धव गुट में एक बार फिर से बगावत हो गई। गुरुवार को उद्धव ठाकरे ने अपनी संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, बाकायदा व्हिप जारी किया था, मगर इस बैठक में सिर्फ 3 सांसद पहुंचे, 6 सांसदों ने बैठक से दूरी बना ली। अब शिवसेना यूबीटी ने बैठक में शामिल न होने वाले सांसदों से जवाब मांगा है।
1: उद्धव ठाकरे को जिस बात का डर था वही हुआ, पार्टी ने व्हिप जारी किया था, संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, मगर बैठक में सिर्फ 3 सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे पहुंचे, यानी 6 सांसदों ने मीटिंग में हाजिरी नहीं दी। ये वो सांसद हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत की है, माना जा रहा है कि जल्द ही वे अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजय जाधव बागी सांसदों का नेतृत्व करेंगे। उधर बागी सांसदों को लेकर शिवसेना यूबीटी ने गहरी नाराजगी जताई है, पार्टी ने बागी सांसदों से जवाब मांगा है। शिवसेना यूबीटी को एक बार फिर टूट का डर सता रहा है, इसीलिए शिवसेना यूबीटी का एक दल लोकसभा स्पीकर के पास चिट्ठी लेकर पहुंचा, जिसमें लिखा था कि अगर कोई शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने का दावा करे तो पहले हमसे संपर्क किया जाए।
2: हमें एक लेटर दिया है स्पीकर साहब को, कैबिनेट, कि अगर कोई आता है शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए वो गैरकानूनी है।
3: विषय यही रखा है कि भाई अगर कोई इस ग्रुप को लेके कोई आता है आपके पास में, व्यवस्था आपके हाथ में है, आरपी एक्ट संविधान में जो प्रावधान है उसको लेके हमने लेटर दिया है, अगर कोई पहुँचता है तो हमसे पहले बात करें।
1: राउत ने आरोप लगाया कि सभी बागियों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है, इसके लिए उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
4: मेरा जो स्टैंड है वो क्रिस्टल क्लियर है, मैं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के साथ हूँ।
1: अब शिंदे गुट इसे अपनी जीत बता रहा है और कांग्रेस कह रही है कि ये ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन गीदड़ है।
5: ऑपरेशन प्रगति यशस्वी, जिस व्यक्ति ने जनता के लिए इतना काम किया है, जनता हमेशा उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है और सबको पता है कि ओरिजिनल टाइगर कौन है।
6: ऑपरेशन टाइगर ने ऑपरेशन गीदड़ है, सत्ता की भूख उसकी एक मर्यादा होती है।
1: खबर है कि टीएमसी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर को खत लिख चुके हैं, जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए ये दोहरा झटका है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: क्या समाजवादी पार्टी में भी उत्तर प्रदेश में बगावत होने वाली है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ओपी राजभर के बाद संजय निषाद ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद समाजवादी पार्टी छोड़ना चाहते हैं, और इसके साथ ही अब यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर भी समीकरण बिठाए जा रहे हैं।
7: अखिलेश यादव के दल टूट की जो खबर राजभर ने उठाई है वो अब तूल पकड़ रही है। राजभर के बाद यूपी के मंत्री संजय निषाद भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश से किनारा करना चाहते हैं।
8: दिल्ली से नेतृत्व को बताऊं कि वो लोग अब जुड़ना चाहते हैं।
9: आप कितने लोग हैं
8: आपके विचारधारा? मैंने बताया 2000 से अधिक लोग हैं
9: समाजवादी पार्टी के।
8: हाँ, उनके लोग
9: विधायक भी हैं, केवल सांसद
8: के? कांग्रेस के विधायक भी हैं और सांसद भी हैं।
7: लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसे बयानों को बकवास बता रही है।
10: राजभर जी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अब चुनाव आया है तो सीटों की बार्गेनिंग करें।
11: अगर ये उनका कहना सही हो जाएगा तो सनातन पर जीवन में राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे।
7: मामला शुरू हुआ था समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने की खबर से, मगर माहौल बदल गया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि राजभर तो खुद समाजवादी पार्टी में विलय चाहते हैं।
12: मिलके उन्होंने निवेदन किया कि सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव डाल रही है, बहुत ब्लैकमेल कर रही है। और उनका अरुण राजभर ने इस बात को भी कहा कि पिताजी की किसी बात का बुरा भी ना माना जाए, उनकी लिखी हुई बात और उनकी कही हुई बात को गंभीरता से भी ना लिया जाए, क्योंकि वो बहुत तनाव में है।
7: अब राजभर के सुपुत्र समाजवादी पार्टी के इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं।
13: सही बात है कि समाजवादी पार्टी मुखिया और इन सभी नेताओं का कोई न कोई यूज तो कर ही रहा, क्योंकि ये बात बताइए जिस दिन की जिक्र ये कर रहे हैं उस दिन मैं समाजवादी पार्टी के गढ़ को समाप्त करने का अभियान चला रहा था।
7: दरअसल समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि राजभर जानबूझकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं ताकि 27 के चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा कर सकें।
14: ये इसलिए बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको सीटें दे देगी, एक तो सीटों के लिए मेरी बातों को लिख लीजिए।
7: समाजवादी पार्टी के आरोपों को ओपी राजभर सही साबित कर रहे हैं, क्योंकि उनका दावा अभी से 34 सीटों पर है।
15: अभी तक हम लोगों ने 34 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किया है और वहाँ जो संगठन में कमजोरी रही है उसको पूरा कराने के लिए प्रयास हम लोगों का हो रहा है कि इस बार हम लोग अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल करा लें।
7: 27 के चुनाव से पहले मुद्दों को धार दी जा रही है और सीटों के लिए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है इसके तार गहरे जुड़ते नजर आ रहे हैं। शुरुआती जांच से ये लग रहा है कि निगरानी के पूरे सिस्टम में ही खामियां हैं। देखिए एक रिपोर्ट।

0: अयोध्या में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बने राम मंदिर में पिछले 4 दिनों से रोज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अफसर जा रहे हैं, घंटों तक जांच पड़ताल पूछताछ कर रहे हैं। और इस पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जांच की सुई वहां जाकर ठहरी है जहां पता चला है कि चढ़ावा चोरी की प्लानिंग निगरानी के इंतजाम में ही गड़बड़ी से ही शुरू हुई प्रतीत होती है। और मोटे तौर पर SIT की जांच के दायरे में पहले CCTV लगाने, मेंटेन करने और रिकॉर्ड करने वाले लोग हैं, दूसरे मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारी हैं, तीसरे कर्मचारियों को नौकरी पर रखने वाले अधिकारी हैं, चौथे पूरी व्यवस्था की कानूनी जिम्मेदारी रखने वाले पुलिस अधिकारी भी हैं। जांच टीम ने मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरों की स्थिति, उसकी रिकॉर्डिंग और सुरक्षा प्रबंधन की गहन पड़ताल की है। इसी दौरान SIT को CCTV फुटेज से छेड़छाड़ के संकेत भी मिले हैं। SIT को जांच में मिले दस्तावेजों के अनुसार मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर पिछले 11 महीनों में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारी सुरक्षा खर्च के बावजूद दान पेटियों से नकदी और आभूषणों की कथित चोरी सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
1: अयोध्या मामले में अब SIT की जांच की रडार अब CCTV कर्मचारियों, पास दिखाने वाले कर्मचारियों और इसके अलावा मंदिर परिसर में मैनेजमेंट देखने वाले कर्मचारियों की तरफ बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो ये सभी वो कर्मचारी हैं जो सीधा ट्रस्ट को रिपोर्ट करते थे, जिनके बीच में कोई भी धारा नहीं थी। इसमें RMO यानी कि रेडियो जो मेंटेनेंस ऑफिसर है, जो तकरीबन 17 वर्षों से वहां पर तैनात है और सीधे ट्रस्ट को रिपोर्ट करता था, और CCTV फुटेजेस की कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा वहां पर पास निर्गत करने वाले व्यक्ति की जो जिम्मेदारी थी, जिसमें आने जाने के लिए सारी डिटेलिंग होती थी और कौन सा चीज बाहर जाएगी उसकी, और साथ ही साथ मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी की।
0: SIT की टीम की शुरुआती जांच में उस स्टेट बैंक की भूमिका भी संदिग्ध लगी है, जिसे मंदिर में मिले पैसों की गिनती और बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी थी। पता चला है कि पैसों की गिनती पूरी करके जमा करने की जिम्मेदारी स्टेट बैंक की थी, लेकिन उसने इसके लिए आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी रखे हुए थे। इसके अलावा नोटों की गिनती की प्रक्रिया में बेहद कम संख्या में कर्मचारी रखे गए थे, जिसे SIT संदिग्ध मान रही है। SIT ने पूछताछ के लिए करीब 200 लोगों की सूची तैयार की है, जिसमें अब तक 125 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि कुछ लोगों से कई बार पूछताछ हुई है। इसमें ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा मंदिर का ज्यादातर कामकाज देखने वाले रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू से भी पूछताछ चल रही है।
1: SIT की जांच अयोध्या मामले में अब गेट चेकिंग ऑफिसर से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी तक पहुंच गई है। चूंकि साफ तौर से गेट से आने जाने वालों की संख्या, इसके अलावा क्या सामान बाहर जाना है, ये जिम्मेदारी इस पर होती थी, और ये सीधा ट्रस्ट में चंपत राय और टिन्नू को भी रिपोर्ट करता था। यानी कि इस पूरे मामले पर अब SIT की जांच उस दिशा में भी बढ़ रही है कि कई कर्नाटक से जो लोग आए थे वो किस तरीके से अंदर शामिल हुए। अब इस दिशा में भी जो SIT की जांच है वो आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर गेट चेकिंग से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी जो 5 वर्षों से वहां पर तैनात हैं, अब उधर भी SIT रुक कर रही है। यानी कि कई कर्मचारियों पर अब रडार SIT की खड़ी हो गई है। अयोध्या से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
2: आप सुनते होंगे कि हर राज्य में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत करिए, तुरंत निवारण भी होगा। मध्य प्रदेश जहां जनता की शिकायत को सुलझाने के लिए बनी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को पुलिस वालों ने अपनी रैंकिंग चमकाने का हथियार बना लिया।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूं। पहले ये आपने कोई शिकायत की थी CM हेल्पलाइन पे? काय की शिकायत थी?
4: अच्छा, अकाउंट फ्रीज हो चुका है, कोई उस पर रिजल्ट नहीं आया।
3: अच्छा, चलो मैं देख पाता हूँ, है ना। आपका डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी और सब परिवार में ठीक है, मदद करेंगे आपकी, है ना। मैं सडनली देख रहा हूँ कि कंप्लेंट पर कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही। इसलिए
5: मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक बार फिर CM हेल्पलाइन को लेकर खबरदार होना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में CM हेल्पलाइन पर फर्जी शिकायत के दम पर कुछ पुलिस वाले चेहरा और रैंकिंग चमकाने में जुटे। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज, सवाल मऊगंज की पुलिस पर। जवाब के लिए सीएम हेल्पलाइन में दर्ज इन शिकायतों का स्क्रीनशॉट आज देखिए। 31 मई को सौरभ के नाम से शिकायत हुई कि मऊगंज थाने में उसके भाई को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से संतुष्ट हो गया, शिकायत बंद हो गई। 31 मई को ही सौरभ के नाम से एक और शिकायत हुई। पुलिस से पासपोर्ट और चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से एकदम हैप्पी हो गया, शिकायत बंद हो गई। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत हुई, मऊगंज थाने में उसकी FIR नहीं लिखी जा रही। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से एकदम संतुष्ट, शिकायत बंद। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत होती है कि पुलिस परेशान कर रही है, थाने में बुलाकर मारपीट कर रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से हैप्पी, शिकायत बंद। 31 मई को सौरभ के नाम से शिकायत कि उसकी बेटी गुम हो गई, मऊगंज थाना पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से संतुष्ट, शिकायत बंद हो गई। दावा है कि मऊगंज पुलिस ही सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत का खेल खेलती है। जहां दावा है 21 मोबाइल नंबर से 233 झूठी शिकायत खुद ही दर्ज करा के आनंद फानंद में उनका समाधान भी दिखा दिया, ताकि लगे वाह क्या पुलिस है। आगे सुनिए, ये अंकित चौरसिया है, इनके नाम से फर्जी शिकायत दर्ज करा दी कि 20 साल की बेटी गायब है, जबकि अंकित की तो शादी तक नहीं हुई।
6: क्या आपने शिकायत की?
7: नहीं, मैंने
6: एक शिकायत ऐसी भी है कि आपकी 20 वर्ष की बच्ची स्कूल गई थी और गुम हो गई है।
7: मेरी शादी ही नहीं हुई।
6: तो वो शिकायत फर्जी?
5: मिनट मिनट में ऐसी फर्जी शिकायतें खुद ही मऊगंज की पुलिस दर्ज कराती रही, लगा कि गजब का खेल है। जहां मऊगंज थाना प्रभारी को फिलहाल तबादला करके हटाया गया और दूसरे कांस्टेबल को लाइन हाजिर करके जांच जारी है।
8: व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं, उसकी जांच की गई थी, उसके प्रधान अक्षर को दोषी पाया गया, उसको लाइन अटैच किया गया।
9: जनता की आवाज सुनने और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए बनाई गई सीएम हेल्पलाइन यदि सरकारी रिकॉर्ड चमकाने का जरिया बन जाए तो सवाल पूरे सिस्टम पर खड़े होंगे। मऊगंज का ये कथित फर्जीवाड़ा बता रहा है कि कैसे रैंकिंग और आंकड़ों की होड़ में जनता के भरोसे को दांव पर लगाया गया। अब बड़ा सवाल ये है कि इस खेल से जुड़े बड़े चेहरे कभी बेनकाब होंगे या फिर एक मोहरे की कुर्बानी देकर बाकी पूरी कहानी को फाइलों में दबा दिया जाएगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
2: RSS हेडक्वार्टर्स पर आधी रात को पेट्रोल बॉम्ब से हमला क्यों किया गया? आखिर इस हमले का उद्देश्य क्या था? क्या ये मामला लोकल पुलिस से आगे बढ़ चुका है? आतंकवादी साजिश के एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है।
10: रांची में RSS के दफ्तर पर हुए हमले की इन तस्वीरों का कनेक्शन अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है। तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि एक शख्स पेट्रोल बम फेंक रहा है, तो वहीं दूसरा शख्स पीछे से वीडियो बना रहा है ताकि पाकिस्तान में बैठे आकाओं को हमले का सबूत भी भेजा जा सके।
11: जांच में खुलासा हुआ है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की बड़ी भूमिका है।
10: मामले में सियासत बढ़ी तो झारखंड पुलिस एक्शन में आई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी दुबई में पाकिस्तान ISI और भट्टी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था, जो कि दुबई की जेल में भी रहा था। तीनों की उम्र 20 से 23 साल के बीच है, जिसमें एक आरोपी सैफ अंसारी का रांची पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया।
12: वेपन छीन के भागने का प्रयास किया, उसमें जवाबी कार्रवाई में और सुरक्षा हेतु जवाबी कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ी और उसको पैर में इंजरी, बुलेट इंजरी हुई है।
13: मैं रांची पुलिस को बहुत बहुत बधाई शुभकामना दूंगी और हमारी सरकार को भी कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सबके साथ न्याय होता है और ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम करते हैं।
10: इससे पहले BJP इस हमले को लेकर लगातार झारखंड सरकार पर हमलावर थी।
14: जब कांग्रेस के कुछ लोग RSS के बारे में विष फैलाते हैं और उसके बाद सीधे सीधे ये हमला होता है कांग्रेस शासित प्रदेश में, तो ऐसे डेंजरस प्रोपेगेंडा का डेंजरस परिणाम कैसे होता है, ये इसका भी परिचायक है।
10: खबरों की माने तो आरोपियों को सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट किया गया था। RSS दफ्तर पर हमले के लिए आरोपियों ने रेकी की थी, 2 पेट्रोल बम छत पर फेंके थे, 1 पेट्रोल बम गेट के बाहर असेंबल किया था, जिसके पीछे अब पाकिस्तान की साजिश की बात सामने आ रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ सत्यजीत, रांची आज तक।
2: पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बच्चा तस्करी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया, साथ ही इस गिरोह से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 6 मासूमों को सुरक्षित बचाया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है।
10: नकाब के पीछे छिपे इन चेहरों पर मासूम बच्चों को किडनैप करके बेचने का आरोप है। मामले में पुलिस ने 5 बच्चों का रेस्क्यू किया है और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें तस्कर, बिचौलिए, खरीदार और एक अस्पताल का मालिक भी शामिल है।
15: कभी भी किसी बच्चे को नहीं, मुझे झूठा फंसाया गया है, मार मार के यहाँ बिठाया हुआ।
10: सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में बहुत ही छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जा रही थी। जो बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं उनमें एक बच्चे की उम्र महज 5 दिन है, वहीं 2 बच्चों की उम्र सिर्फ 27 दिन।
16: बहुत ही छोटे बच्चे हुआ करते थे। 1,00,000 रुपए में इन्हें पाली से और राजस्थान के दूसरे गांवों से इन्हें खरीदा जाता था, दिल्ली लाया जाता था। दिल्ली के इस हीरा अस्पताल जो कि रोहिणी में स्थित है, यहां लाया जाता था और यहां उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। ट्रीटमेंट करने के बाद जो ऐसे कपल होते थे जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा या जिन्हें बच्चे पाने की अपेक्षा थी, उन्हें ये बच्चे बेच दिए जाते थे। 1,00,000 रुपए में ये बच्चे खरीदे जाते थे राजस्थान से या गुजरात से, और यहां दिल्ली में करीब 8 से 9 लाख रुपए में इन बच्चों को बेच दिया जाता था।
10: इस रैकेट का खुलासा करोलबाग में एक शख्स की जागरूकता की वजह से हुआ, जिसने एक महिला को अलग अलग बच्चों के साथ देखा, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने एक टीम बनाकर गिरोह से बच्चा खरीदने का पूरा जाल बिछाया और फिर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ।
17: उसमें पेरेंट्स से डील सेट होती थी और सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे, बर्थ सर्टिफिकेट्स फोर्ज किए जाते थे, डिलीवरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे और जितने भी इनवॉइसेस, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे फोर्ज किए जाते थे वहीं पर ही उसी हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर विवेक की एक एक्टिव रोल प्ले करती थी एज द लिंचपिन।
10: इस पूरे खेल का बाकायदा सिस्टम बना हुआ था, जिसमें बच्चा सप्लायर, बिचौलिए, खरीदार को लाने वाले सबका कट होता था। अलग अलग राज्यों से बच्चों को दिल्ली लाया जाता था। बच्चा गोद लेने की चाहत रखने वाले बेऔलाद जोड़ों की पहचान नेटवर्क के जरिए की जाती थी, जहां अस्पताल में बच्चा न पैदा होने की समस्या का इलाज करा रहे पति पत्नी को टारगेट किया जाता था, जिन्हें झांसा देकर इन मासूमों की जिंदगी का सौदा किया जाता था। अंशुल सिंह, दिल्ली, आज तक।
2: भोजपुर में पुलिस पर पिस्टल तानने, फायरिंग करने के आरोपी भरत तिवारी का एक दिन पहले एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर के बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई। अब पुलिस के सेक्शन पर सवाल है। आज ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जोरदार हंगामा किया।
18: जबरदस्त हंगामा बरपा है। पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस लोगों को तितर बितर कर रही है और पीछे से चीख पुकार मची है कि पुलिस वाले गोली ना चलाएं। ये बवाल बिहार में आरा के भोजपुर में शाहपुर थाना क्षेत्र के बैलोटी की तस्वीरें हैं। एक दिन पहले यहां पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी नाम का शख्स घायल हो गया था, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन कह रहे हैं कि ये पुलिस का फेक एनकाउंटर था और इसीलिए आरा बक्सर फोर लेन मार्ग पर वो शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे।
19: घोर अन्याय हुआ है। मान लीजिए कि एनकाउंटर है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया था, तो प्रशासन को इसको लेकर पकड़ कर जाकर जेल में बंद देना चाहिए। ये नहीं कि एनकाउंटर नहीं करना चाहिए।
18: अब एनकाउंटर की तस्वीर देखिए। ये जो गोली चला रहा है, इसी का नाम भरत तिवारी है। करीब 48 घंटे तक पुलिस के लिए ये शख्स चुनौती बना रहा और आखिरकार एनकाउंटर में मारा गया, मगर परिवार कहता है कि उसे जिंदा भी पकड़ा जा सकता था।
19: सुबह में 8 बजे के करीब में धूप गए, डायरेक्ट धूप के हथियार तान दिल सब परिवार पहन के, और छोट लड़का के कालर धोके मोबाइल छीन ले।
18: अब प्रशासन परिवार और ग्रामीणों को समझा बुझा रहा है, मगर ये एनकाउंटर सवालों के घेरे में जरूर है। सोनू कुमार सिंह, आरा, आज तक।
2: अब खबर अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की, जो तय समय से एक दिन पहले ही हो गया। इस डील से पहले ट्रंप ने भारत को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया, कहा कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा। लेकिन ईरान को लेकर जो समझौता हुआ है, उसमें जिस तरह इसराइल के हितों की अनदेखी की गई है,

0: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने बुधवार देर रात डिजिटल हस्ताक्षर किए, जिसके साथ ही समझौता लागू हो गया। ईरान के साथ समझौता करने से पहले ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उनकी तारीफों की झड़ी लगा दी।
1: He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually.
0: 16 महीनों बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने रिश्तों में आई खटास को कम करने की भरसक कोशिश की। इसी कोशिश में ट्रंप ने वो कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 16 महीनों बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने रिश्तों में आई खटास को कम करने की भरसक कोशिश की। इसी कोशिश में ट्रंप ने वो कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।
1: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there.
0: तो ट्रंप ने वादा किया कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा। ट्रंप ये कहकर सबको चौंका देते हैं, लेकिन सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस भरोसे में कितना दम है, क्योंकि ईरान के साथ जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इजराइल की अनदेखी की है वो अमेरिका से रिश्तों को लेकर खबरदार करता
1: है। But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true.
0: फ्रांस में ट्रंप की पीस डील पर साइन करने के बाद ईरानी राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने जिस समझौते के दस्तावेज पर दस्तखत किए उसमें नौवां पॉइंट अमेरिका पर भरोसे का संकट बढ़ाता है। समझौते के मसौदे में अमेरिका, ईरान और उसके सहयोगी देशों के बीच सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत और स्थायी रूप से बंद करने की बात कही गई है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। अमेरिका के लिए ये मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि ट्रंप को चिंता थी कि हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की सैन्य कार्रवाई शांति समझौते को कमजोर कर सकती है, इसीलिए इसे इसराइल के खिलाफ माना जा रहा है। इसराइल पहले ही कह चुका है कि वो अमेरिका ईरान बातचीत में लेबनान को लेकर हुई किसी भी सहमति को नहीं मानेगा, लेकिन ट्रंप इसराइल की सुनने को तैयार नहीं दिखते।
1: Angry, I guess. I'm allowed to get angry when I watch the Democrats. They talk about it all the time. We had this deal done. You had a deal that was going to give them legally a nuclear weapon. And if that happened, Israel would have been blown away.
0: तो ट्रंप ये कहकर इसराइल पर एहसान जताते हैं कि अगर वो ना होते तो इसराइल का नामो निशान मिट जाता। कुल मिलाकर ईरान से सीधी टक्कर लेने वाला इसराइल खुद को अकेला पा रहा है।
2: What the president is saying is that right now they won't call. Okay, so they would like Israel to be less aggressive. Now we are ready, as I said, to engage in a diplomatic process, but we will not renounce our right for self-defense. And we are going to continue operations in South Lebanon, and if we are attacked, we are going to retaliate.
3: नहीं तो इसमें मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर इसराइल पर हमला होता है हिजबुल्ला की तरफ से तो क्या इसराइल पलटवार करेगा या इस एमओयू की वजह से टोटल सीज फायर होगा हर मोर्चे पर।
2: We will defend ourselves and our prime minister has stated that, our defense minister has stated that Israel will defend itself if attacked by Hezbollah.
0: इसराइल भले ही कहे कि वो लेबनान में किसी की नहीं सुनेगा, लेकिन हकीकत ये कि पिछले रविवार को जिस समझौते का ऐलान ट्रंप ने किया, दावा है कि उसने इसराइल और उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अचंभित कर दिया, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में इजरायली अधिकारियों के हवाले से मंगलवार तक दावा किया गया है कि इसराइल को अब तक समझौते का ड्राफ्ट नहीं दिखाया गया। हालांकि ट्रंप ने इस समझौते पर साइन करने से पहले इसकी एक कॉपी नेतन्याहू को भेजने की बात कही, लेकिन इसने दिखा दिया कि अमेरिका ने अपने सबसे करीबी दोस्त को ईरान से समझौता करने के चक्कर में अकेला छोड़ दिया।
1: Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99%. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
0: अमेरिका और ईरान में जो समझौता होने जा रहा है उससे ईरान मालामाल होगा, उसके प्रतिबंध हटेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचेगा, कमाई करेगा और इस पैसे का इस्तेमाल

0: नेपाल अपने मिसाइल कार्यक्रम को खतरनाक करने में लगाएगा ताकि भविष्य में किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अब आप ही सोचिए कि ये काम करने वाले ट्रंप का भारत को किया वायदा कितना भरोसे लायक है, क्योंकि ईरान से होने वाला समझौता बताता है अमेरिका अपने फायदे के लिए इसराइल जैसे सबसे करीबी देश के हितों की भी अनदेखी कर सकता है।
1: दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस जंग से निकलने की एक विंडो तलाश रहे थे और जब ईरान के साथ उनकी सहमति बन गई तो उन्होंने इसराइल को बिना कॉन्फ्रेंस में लिए ही MOU साइन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे थे कि अगर वो इसराइल का साथ लंबे समय तक देते तो ना सिर्फ उनके देश में उनकी नीतियों को लेकर जो मुखालफत हो रही थी वो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती, बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनका धीरे धीरे कर साथ छोड़ रहे थे। यहां तक कि नाटो के देश भी लगातार उन पर सवाल खड़े कर रहे थे और इन्हीं मजबूरियों के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पेरिस में भारतीयों के बीच बोले पीएम मोदी, भविष्य को आकार दे रहा है भारत। पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुआ विकास, विश्व का भरोसेमंद सहयोगी बना हिंदुस्तान। झारखंड में भी कांग्रेस नहीं संभाल पाई अपना कुनबा, क्रॉस वोटिंग के चलते राज्यसभा चुनाव में मिली हार। एनडीए समर्थित परिमल नाथ वाणी विजयी, बीजेपी ने कहा राहुल की हार। उद्धव की सेना में फिर से बड़ी टूट, उनके 6 सांसदों का शिंदे गुट में शामिल होना तय, बागियों को भेजा गया कारण बताओ नोटिस। 21 जून को नीट री एग्जाम के लिए एयरफोर्स ने कई शहरों में पहुंचाए प्रश्न पत्र, धर्मेंद्र प्रधान ने हाई लेवल मीटिंग की तैयारियों की शिक्षा मंत्री ने समीक्षा। और रांची में आरएसएस ऑफिस पर हमले का आईएसआई कनेक्शन, पाक हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी अमन अंसारी, एटीएस को सौंपी गई जांच। उद्धव गुट में एक बार फिर से बगावत हो गई। गुरुवार को उद्धव ठाकरे ने अपनी संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, बाकायदा व्हिप जारी किया था, मगर इस बैठक में सिर्फ 3 सांसद पहुंचे, 6 सांसदों ने बैठक से दूरी बना ली। अब शिवसेना यूबीटी ने बैठक में शामिल न होने वाले सांसदों से जवाब मांगा है।
1: उद्धव ठाकरे को जिस बात का डर था वही हुआ, पार्टी ने व्हिप जारी किया था, संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, मगर बैठक में सिर्फ 3 सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे पहुंचे, यानी 6 सांसदों ने मीटिंग में हाजिरी नहीं दी। ये वो सांसद हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत की है, माना जा रहा है कि जल्द ही वे अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजय जाधव बागी सांसदों का नेतृत्व करेंगे। उधर बागी सांसदों को लेकर शिवसेना यूबीटी ने गहरी नाराजगी जताई है, पार्टी ने बागी सांसदों से जवाब मांगा है। शिवसेना यूबीटी को एक बार फिर टूट का डर सता रहा है, इसीलिए शिवसेना यूबीटी का एक दल लोकसभा स्पीकर के पास चिट्ठी लेकर पहुंचा, जिसमें लिखा था कि अगर कोई शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने का दावा करे तो पहले हमसे संपर्क किया जाए।
2: हमने एक लेटर दिया है स्पीकर साहब को, कैबिनेट, अगर कोई आता है शिवसेना यूबीटी के नाम से अलग गुट बनाने के लिए कोई गैरकानूनी है।
3: विषय यही रखा है कि भाई अगर कोई इस ग्रुप को लेके कोई आता है आपके पास में, व्यवस्था आपके हाथ में है, आरपी एक्ट संविधान में जो प्रावधान है उसको लेके हमने लेटर दिया है, अगर कोई पहुँचता है तो हमसे पहले बात करें।
1: राउत ने आरोप लगाया कि सभी बागियों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है, इसके लिए उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
4: मेरा जो स्टैंड है वो क्रिस्टल क्लियर है, मैं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के साथ हूँ।
1: अब शिंदे गुट इसे अपनी जीत बता रहा है और कांग्रेस कह रही है कि ये ऑपरेशन टाइगर नहीं ऑपरेशन गीदड़ है।
5: ऑपरेशन प्रगति यशस्वी, जिस व्यक्ति ने जनता के लिए इतना काम किया है, जनता हमेशा उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है और सबको पता है कि ओरिजिनल टाइगर कौन है।
6: ऑपरेशन टाइगर ने ऑपरेशन गीदड़ है, सत्ता की भूख उसकी एक मर्यादा होती है।
1: खबर है कि टीएमसी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर को खत लिख चुके हैं, जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए ये दोहरा झटका है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: क्या समाजवादी पार्टी में भी उत्तर प्रदेश में बगावत होने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ओपी राजभर के बाद संजय निषाद ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद समाजवादी पार्टी छोड़ना चाहते हैं, और इसके साथ ही अब यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर भी समीकरण बिठाए जा रहे हैं।
7: अखिलेश यादव के दल टूट की जो खबर राजभर ने उठाई है वो अब तूल पकड़ रही है। राजभर के बाद यूपी के मंत्री संजय निषाद भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश से किनारा करना चाहते हैं।
8: दिल्ली से नेतृत्व को बताऊं कि वो लोग अब जुड़ना चाहते हैं।
9: आप कितने लोग हैं
8: आपके विचारधारा? मैंने बताया 2000 से अधिक लोग हैं
9: समाजवादी पार्टी के।
8: हाँ, उनके लोग
9: विधायक भी हैं, केवल सांसद
8: के? कांग्रेस के विधायक भी हैं और सांसद भी हैं।
7: लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसे बयानों को बकवास बता रही है।
10: राजभर जी ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अब चुनाव आया है तो सीटों की बार्गेनिंग करें।
11: अगर ये उनका कहना सही हो जाएगा तो सनातन पड़े जीवन में राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे।
7: मामला शुरू हुआ था समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने की खबर से, मगर माहौल बदल गया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि राजभर तो खुद समाजवादी पार्टी में विलय चाहते हैं।
12: मिलके उन्हीं ने निवेदन किया कि सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया जाए, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति को बचाना है और भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव डाल रही है, बहुत ब्लैकमेल कर रही है। और उनका अरुण राजभर ने इस बात को भी कहा कि पिताजी की किसी बात का बुरा भी ना माना जाए, उनकी लिखी हुई बात, उनकी कही हुई बात को गंभीरता से भी ना लिया जाए, क्योंकि वो बहुत तनाव में है।
7: अब राजभर के सुपुत्र समाजवादी पार्टी के इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं।
13: सही बात है कि समाज
12: की किसी बात का बुरा भी ना माना जाए, उनकी लिखी हुई बात, उनकी कही हुई बात को गंभीरता से भी ना लिया जाए, क्योंकि वो बहुत तनाव में है।
7: अब राजभर के सुपुत्र समाजवादी पार्टी के इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं।
13: सही बात है कि समाजवादी पार्टी मुखिया और इन सभी नेताओं का कोई न कोई यूज तो कर ही रहा, क्योंकि ये बात बताइए जिस दिन की जिक्र कर रहे हैं उस दिन मैं समाजवादी पार्टी के गढ़ को समाप्त करने का अभियान चला रहा था।
7: दरअसल समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि राजभर जानबूझकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं ताकि 27 के चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा कर सकें।
14: ये इसलिए बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको सीटें दे देगी। एक तो सीटों के लिए मेरी बातों को लिख लीजिए।
7: समाजवादी पार्टी के आरोपों को ओपी राजभर सही साबित कर रहे हैं, क्योंकि उनका दावा अभी से 34 सीटों पर है।
15: अभी तक हम लोगों ने 34 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किया है और वहाँ जो संगठन में कमजोरी रही है उसको पूरा कराने के लिए प्रयास हम लोगों का हो रहा है कि इस बार हम लोग अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल करा लें।
7: 27 के चुनाव से पहले मुद्दों को धार दी जा रही है और सीटों के लिए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 के री एग्जामिनेशन को पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाने और सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार और एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए इस बार प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और देश भर के केंद्रों तक उनकी सुरक्षित डिलीवरी का जिम्मा भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है।
7: देश में नीट के पेपर को सुरक्षित करने के लिए भारतीय वायुसेना ने उड़ान भर दी है। 21 जून को होने वाली डी नीट के पेपर को लेकर सेना का हेलीकॉप्टर अलग अलग जगहों पर पहुंच रहा है, जहां से पेपर को लोड किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस की कड़ी निगरानी में इन्हें स्ट्रांग रूम भेजा जा रहा है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता के मानकों को बनाए रखने पर जोर दिया। उधर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है।
16: पहले बोले कि हम पेपर जो है वो हवाई जहाज से, एयरफोर्स के हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट कराएंगे, अब कह रहे हैं टेलीग्राम बैन कर दिया, इससे कोई पेपर लीक रुकेंगे? पेपर लीक तो रोकने ही नहीं इनको, इनकी नीयत ही खराब है। इतने जो एमपी और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं? आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं।
7: नीट पेपर लीक को लेकर जारी घमासान के बीच टेलीग्राम पर रोक का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, जहां सरकार ने टेलीग्राम को अपराधियों का अड्डा बताया। वही टेलीग्राम की ओर से दलील दी गई कि क्या एक घटना को रोकने के लिए पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर देना सही है। बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज तक ब्यूरो।
0: श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसके तार गहरे जुड़ते नजर आ रहे हैं। शुरुआती जांच से लग रहा है कि निगरानी के पूरे सिस्टम में ही खामियां हैं। देखिए एक रिपोर्ट।

0: अयोध्या में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बने राम मंदिर में पिछले 4 दिनों से रोज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अफसर जा रहे हैं, घंटों तक जांच पड़ताल पूछताछ कर रहे हैं। और इस पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जांच की सुई वहां जाकर ठहरी है जहां पता चला है कि चढ़ावा चोरी की प्लानिंग निगरानी के इंतजाम में ही गड़बड़ी से ही शुरू हुई प्रतीत होती है। और मोटे तौर पर SIT की जांच के दायरे में पहले CCTV लगाने, मेंटेन करने और रिकॉर्ड करने वाले लोग हैं, दूसरे मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारी हैं, तीसरे कर्मचारियों को नौकरी पर रखने वाले अधिकारी हैं, चौथे पूरी व्यवस्था की कानूनी जिम्मेदारी रखने वाले पुलिस अधिकारी भी हैं। जांच टीम ने मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरों की स्थिति, उसकी रिकॉर्डिंग और सुरक्षा प्रबंधन की गहन पड़ताल की है। इसी दौरान SIT को CCTV फुटेज से छेड़छाड़ के संकेत भी मिले हैं। SIT को जांच में मिले दस्तावेजों के अनुसार मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर पिछले 11 महीनों में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारी सुरक्षा खर्च के बावजूद दान पेटियों से नकदी और आभूषणों की कथित चोरी सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
1: अयोध्या मामले में अब SIT की जांच की रडार अब CCTV कर्मचारियों, पास दिखाने वाले कर्मचारियों और इसके अलावा मंदिर परिसर में मैनेजमेंट देखने वाले कर्मचारियों की तरफ बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो ये सभी वो कर्मचारी हैं जो सीधा ट्रस्ट को रिपोर्ट करते थे, जिनके बीच में कोई भी धारा नहीं थी। इसमें RMO यानी कि रेडियो जो मेंटेनेंस ऑफिसर है, जो तकरीबन 17 वर्षों से वहां पर तैनात है और सीधे ट्रस्ट को रिपोर्ट करता था, और CCTV फुटेजेस की कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा वहां पर पास निर्गत करने वाले व्यक्ति की जो जिम्मेदारी थी, जिसमें आने जाने के लिए सारी डिटेलिंग होती थी और कौन सा चीज बाहर जाएगी उसकी, और साथ ही साथ मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी की।
0: SIT की टीम की शुरुआती जांच में उस स्टेट बैंक की भूमिका भी संदिग्ध लगी है, जिसे मंदिर में मिले पैसों की गिनती और बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी थी। पता चला है कि पैसों की गिनती पूरी करके जमा करने की जिम्मेदारी स्टेट बैंक की थी, लेकिन उसने इसके लिए आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी रखे हुए थे। इसके अलावा नोटों की गिनती की प्रक्रिया में बेहद कम संख्या में कर्मचारी रखे गए थे, जिसे SIT संदिग्ध मान रही है। SIT ने पूछताछ के लिए करीब 200 लोगों की सूची तैयार की है, जिसमें अब तक 125 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि कुछ लोगों से कई बार पूछताछ हुई है। इसमें ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा मंदिर का ज्यादातर कामकाज देखने वाले रमाशंकर यादव और टिन्नू से भी पूछताछ चल रही है।
1: SIT की जांच अयोध्या मामले में अब गेट चेकिंग ऑफिसर से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी तक पहुंच गई है। चूंकि साफ तौर से गेट से आने जाने वालों की संख्या, इसके अलावा क्या सामान बाहर जाना है, ये जिम्मेदारी इस पर होती थी, और ये सीधा ट्रस्ट में चंपत राय और टिन्नू को भी रिपोर्ट करता था। यानी कि इस पूरे मामले पर अब SIT की जांच उस दिशा में भी बढ़ रही है कि कई कर्नाटक से जो लोग आए थे वो किस तरीके से अंदर शामिल हुए। अब इस दिशा में भी जो SIT की जांच है वो आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर गेट चेकिंग से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले रही है कि कई कर्नाटक से जो लोग आए थे वो किस तरीके से अंदर शामिल हुए। अब इस दिशा में भी जो SIT की जांच है वो आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर गेट चेकिंग से लेकर मैनेजमेंट देखने वाले पुलिसकर्मी जो 5 वर्षों से वहां पर तैनात हैं, अब उधर भी SIT रुक कर रही है। यानी कि कई कर्मचारियों पर अब रडार SIT की खड़ी हो गई है। अयोध्या से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
2: आप सुनते होंगे कि हर राज्य में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत करिए, तुरंत निवारण भी होगा। मध्य प्रदेश जहां जनता की शिकायत को सुलझाने के लिए बनी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को पुलिस वालों ने अपनी रैंकिंग चमकाने का हथियार बना लिया।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूं। पहले ये आपने कोई शिकायत की थी CM हेल्पलाइन पे? काय की शिकायत थी?
4: अच्छा, अकाउंट फ्रीज हो चुका है, कोई उस पे रिजल्ट नहीं आया।
3: अच्छा, चलो मैं देख पाता हूँ, है ना। आपका डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी और सब परिवार में ठीक है, मदद करेंगे आपकी, है ना। मैं सडनली देख रहा हूँ कि कंप्लेंट पर कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही, इसलिए।
5: मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक बार फिर सीएम हेल्पलाइन को लेकर खबरदार होना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन पर फर्जी शिकायत के दम पर कुछ पुलिस वाले चेहरा और रैंकिंग चमकाने में जुटे। खबर मध्य प्रदेश की मऊगंज से, सवाल मऊगंज की पुलिस पर। जवाब के लिए सीएम हेल्पलाइन में दर्ज इन शिकायतों का स्क्रीनशॉट आज देखिए। 31 मई को सौरभ के नाम से शिकायत हुई कि मऊगंज थाने में उसके भाई को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से संतुष्ट हो गया, शिकायत बंद हो गई। 31 मई को ही सौरभ के नाम से एक और शिकायत हुई, पुलिस से पासपोर्ट और चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से एकदम हैप्पी हो गया, शिकायत बंद हो गई। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत हुई, मऊगंज थाने में उसकी FIR नहीं लिखी जा रही। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से एकदम संतुष्ट, शिकायत बंद। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत होती है कि पुलिस परेशान कर रही है, थाने में बुलाकर मारपीट कर रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से हैप्पी, शिकायत बंद, एकदम संतुष्ट, शिकायत बंद। 31 मई को ही सौरभ के नाम से शिकायत होती है कि पुलिस परेशान कर रही है, थाने में बुलाकर मारपीट कर रही है। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से हैप्पी, शिकायत बंद। 31 मई को सौरभ के नाम से शिकायत कि उसकी बेटी गुम हो गई, मऊगंज थाना पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। 2 जून को सौरभ कार्रवाई से संतुष्ट, शिकायत बंद हो गई। दावा है कि मऊगंज पुलिस ही सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत का खेल खेलती है, जहां दावा है 21 मोबाइल नंबर से 233 झूठी शिकायत खुद ही दर्ज करा के आनन फानन में उनका समाधान भी दिखा दिया, ताकि लगे वाह क्या पुलिस है। आगे सुनिए, ये अंकित चौरसिया है, इनके नाम से फर्जी शिकायत दर्ज करा दी कि 20 साल की बेटी गायब है, जबकि अंकित की तो शादी तक नहीं हुई।
6: क्या आपने शिकायत की?
7: नहीं, मैंने।
6: एक शिकायत ऐसी भी है कि आपकी 20 वर्ष की बच्ची स्कूल गई थी और गुम हो गई है।
7: मेरी शादी ही नहीं।
6: तो वो शिकायत फर्जी?
5: मिनट मिनट में ऐसी फर्जी शिकायतें खुद ही मऊगंज की पुलिस दर्ज कराती रही, लगा कि गजब का खेल है। जहां मऊगंज थाना प्रभारी को फिलहाल तबादला करके हटाया गया और दूसरे कांस्टेबल को लाइन हाजिर करके जांच जारी है।
8: व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं, उसकी जांच की गई थी, जिसके प्रधान अक्षर को दोषी पाया गया, उसको लाइन अटैच किया गया।
5: कराती रही, लगा कि गजब का खेल है। जहां मऊगंज थाना प्रभारी को फिलहाल तबादला करके हटाया गया और दूसरे कांस्टेबल को लाइन हाजिर करके जांच जारी है।
8: व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं, उसकी जांच की गई थी, जिसके प्रधान अक्षर को दोषी पाया गया, उसको लाइन अटैच किया गया।
9: जनता की आवाज सुनने और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए बनाई गई सीएम हेल्पलाइन यदि सरकारी रिकॉर्ड चमकाने का जरिया बन जाए तो सवाल पूरे सिस्टम पर खड़े होंगे। मऊगंज का ये कथित फर्जीवाड़ा बता रहा है कि कैसे रैंकिंग और आंकड़ों की होड़ में जनता के भरोसे को दांव पर लगाया गया। अब बड़ा सवाल ये है कि इस खेल से जुड़े बड़े चेहरे कभी बेनकाब होंगे या फिर एक मोहरे की कुर्बानी देकर बाकी पूरी कहानी को फाइलों में दबा दिया जाएगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
2: RSS हेडक्वार्टर्स पर आधी रात को पेट्रोल बॉम्ब से हमला क्यों किया गया? आखिर इस हमले का उद्देश्य क्या था? क्या यह मामला लोकल पुलिस से आगे बढ़ चुका है? आतंकवादी साजिश के एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है।
10: रांची में RSS के दफ्तर पर हुए हमले की इन तस्वीरों का कनेक्शन अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है। तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि एक शख्स पेट्रोल बम फेंक रहा है तो वहीं दूसरा शख्स पीछे से वीडियो बना रहा है, ताकि पाकिस्तान में बैठे आकाओं को हमले का सबूत भी भेजा जा सके।
11: जांच में खुलासा हुआ है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की बड़ी भूमिका है।
10: मामले में सियासत बढ़ी तो झारखंड पुलिस एक्शन में आई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी दुबई में पाकिस्तान ISI और भट्टी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था, जो कि दुबई की जेल में भी रहा था। तीनों की उम्र 20 से 23 साल के बीच है, जिसमें एक आरोपी सैफ अंसारी का रांची पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया।
12: वेपन छीन के भागने का प्रयास किया, उसमें जवाबी कार्रवाई में और सुरक्षा हेतु जवाबी कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ी और उसको पैर में इंजरी, बुलेट इंजरी हुई है।
13: मैं रांची पुलिस को बहुत बहुत बधाई शुभकामना दूंगी और हमारी सरकार को भी कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सबके साथ न्याय होता है और ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम करते हैं।
10: इससे पहले BJP इस हमले को लेकर लगातार झारखंड सरकार पर हमलावर थी।
14: जब कांग्रेस के कुछ लोग RSS के बारे में विष फैलाते हैं और उसके बाद सीधे सीधे ये हमला होता है, कांग्रेस शासित प्रदेश में, तो ऐसे डेंजरस प्रोपेगेंडा का डेंजरस परिणाम कैसे होता है, ये इसका भी परिचायक है।
10: खबरों की माने तो आरोपियों को सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूट किया गया था। आरएसएस दफ्तर पर हमले के लिए आरोपियों ने रेकी की थी, दो पेट्रोल बम छत पर फेंके थे, एक पेट्रोल बम गेट के बाहर असेंबल किया था, जिसके पीछे अब पाकिस्तान की साजिश की बात सामने आ रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ सत्यजीत, रांची आज तक।
2: पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बच्चा तस्करी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया, साथ ही इस गिरोह से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 6 मासूमों को सुरक्षित बचाया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है।
10: नकाब के पीछे छिपे इन चेहरों पर मासूम बच्चों को किडनैप करके बेचने का आरोप है। मामले में पुलिस ने 5 बच्चों का रेस्क्यू किया है और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें तस्कर, बिचौलिए, खरीदार और एक अस्पताल का मालिक भी शामिल है।
15: कभी भी किसी बच्चे को नहीं मुझे झूठा फंसाया गया है, मुझे मार मार के यहाँ बिठाया हुआ है।
10: सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में बहुत ही छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जा रही थी। जो बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं उनमें एक बच्चे की उम्र महज 5 दिन है, वहीं 2 बच्चों की उम्र सिर्फ 27 दिन।
16: बहुत ही छोटे बच्चे हुआ करते थे। 1,00,000 रुपए में इन्हें पाली से और राजस्थान के दूसरे गांव से इन्हें खरीदा जाता था, दिल्ली लाया जाता था। दिल्ली के इस हीरा अस्पताल जो कि रोहिणी में स्थित है, यहां लाया जाता था और यहां उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। ट्रीटमेंट करने के बाद जो ऐसे कपल होते थे जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा या जिन्हें बच्चे पाने की अपेक्षा थी, उन्हें ये बच्चे बेच दिए जाते थे। 1,00,000 रुपए में ये बच्चे खरीदे जाते थे राजस्थान से या गुजरात से, और यहां दिल्ली में करीब 8 से 9 लाख रुपए में इन बच्चों को बेच दिया जाता था।
10: इस रैकेट का खुलासा करोलबाग में एक शख्स की जागरूकता की वजह से हुआ, जिसने एक महिला को अलग अलग बच्चों के साथ देखा, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने एक टीम बनाकर गिरोह से बच्चा खरीदने का पूरा जाल बिछाया और फिर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ।
17: उसमें पेरेंट्स से डील सेट होती थी और सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे, बर्थ सर्टिफिकेट्स फोर्ज किए जाते थे, डिलीवरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे और जितने भी इनवॉइसेस, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे फोर्ज किए जाते थे वहीं पर ही उसी हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर विवेक की एक एक्टिव रोल प्ले करती थी एज द लिंचपिन।
10: इस पूरे खेल का बाकायदा सिस्टम बना हुआ था, जिसमें बच्चा सप्लायर, बिचौलिए, खरीदार को लाने वाले सबका कट होता था। अलग अलग राज्यों से बच्चों को दिल्ली लाया जाता था। बच्चा गोद लेने की चाहत रखने वाले बेऔलाद जोड़ों की पहचान नेटवर्क के जरिए की जाती थी, जहां अस्पताल में बच्चा न पैदा होने की समस्या का इलाज करा रहे पति पत्नी को टारगेट किया जाता था, जिन्हें झांसा देकर इन मासूमों की जिंदगी का सौदा किया जाता था। अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: भोजपुर में पुलिस पर पिस्टल तानने, फायरिंग करने के आरोपी भरत तिवारी का एक दिन पहले एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर के बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई। अब पुलिस के सेक्शन पर सवाल है। आज ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जोरदार हंगामा किया।
18: जबरदस्त हंगामा बरपा है। पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस लोगों को तितर बितर कर रही है और पीछे से चीख पुकार मची है कि पुलिस वाले गोली ना चलाएं। ये बवाल बिहार में आरा के भोजपुर में शाहपुर थाना क्षेत्र के बैलोटी की तस्वीरें हैं। एक दिन पहले यहां पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी नाम का शख्स घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन कह रहे हैं कि ये पुलिस का फेक एनकाउंटर था और इसीलिए आरा बक्सर 4-लेन मार्ग पर वो शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे।
19: घोर अन्याय हुआ है। मान लीजिए कि एनकाउंटर है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया था, तो प्रशासन को इसको लेकर पकड़ कर जाकर जेल में बंद देना चाहिए। ये नहीं कि एनकाउंटर नहीं करना चाहिए।
18: अब एनकाउंटर की तस्वीर देखिए। ये जो गोली चला रहा है, इसी का नाम भरत तिवारी है। करीब 48 घंटे तक पुलिस के लिए ये शख्स चुनौती बना रहा और आखिरकार एनकाउंटर में मारा गया, मगर परिवार कहता है कि उसे जिंदा भी पकड़ा जा सकता था।
19: सुबह में 8 बजे के करीब में धूप गई, डायरेक्ट धूप के हथियार तान देला सब परिवार पर हमनी के, और छोट लड़का के कालर धोके मोबाइल छीन ले।
18: अब प्रशासन परिवार और ग्रामीणों को समझा बुझा रहा है मगर ये एनकाउंटर सवालों के घेरे में जरूर है। सोनू कुमार सिंह, आरा आज तक।
2: अब खबर अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की, जो तय समय से एक दिन पहले ही हो गया। इस डील से पहले ट्रंप ने भारत को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया, कहा कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा। लेकिन ईरान को लेकर जो समझौता हुआ है उसमें जिस तरह इसराइल के हितों की अनदेखी की गई है वो अमेरिका को लेकर खबरदार करने के लिए काफी है।
20: इस तस्वीर को देखकर दुनिया को राहत मिली जब अमेरिका और ईरान की तरफ से जंग खत्म करने के समझौते के मसौदे पर दस्तखत किए जाते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने बुधवार देर रात डिजिटल हस्ताक्षर किए, जिसके साथ ही समझौता लागू हो गया। ईरान के साथ समझौता करने से पहले ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उनकी तारीफों की झड़ी लगा दी।
21: I want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually.
20: 16 महीनों बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने रिश्तों में आई खटास को कम करने की भरसक कोशिश की। इसी कोशिश में ट्रंप ने वो कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।
21: You know what?
22: And the United States, sorry, I'm speaking, I won't.
21: That's okay.
22: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
21: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there.
20: तो ट्रंप ने वादा किया कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ देगा। ट्रंप ये कहकर सबको चौंका देते हैं, लेकिन सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस भरोसे में कितना दम है, क्योंकि ईरान के साथ जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इसराइल की अनदेखी की है वो अमेरिका से रिश्तों को लेकर खबरदार करता है।
21: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, BB. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true.
20: फ्रांस में ट्रंप की पीस डील पर साइन करने के बाद ईरानी राष्ट्रपति पेजिशकियान ने जिस समझौते के दस्तावेज पर दस्तखत किए उसमें नौवां पॉइंट अमेरिका पर भरोसे का संकट बढ़ाता है। समझौते के मसौदे में अमेरिका, ईरान और उसके सहयोगी देशों के बीच सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत और स्थायी रूप से बंद करने की बात कही गई है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। अमेरिका के लिए ये मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि ट्रंप को चिंता थी कि हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की सैन्य कार्रवाई शांति समझौते को कमजोर कर सकती है, इसीलिए इसे इसराइल के खिलाफ माना जा रहा है। इसराइल पहले ही कह चुका है कि वो अमेरिका ईरान बातचीत में लेबनान को लेकर हुई किसी भी सहमति को नहीं मानेगा, लेकिन ट्रंप इसराइल की सुनने को तैयार नहीं दिखते।
21: Angry, I guess. I'm allowed to get angry when I watch these, the Democrats. They talk about it all the time. We had this deal done. You had a deal that was going to give them legally a nuclear weapon. And if that happened, Israel would have been blown away.
20: तो ट्रंप ये कहकर इसराइल पर एहसान जताते हैं कि अगर वो ना होते तो इसराइल का नामो निशान मिट जाता। कुल मिलाकर ईरान से सीधी टक्कर लेने वाला इसराइल खुद को अकेला पा रहा है।
23: What the president is saying is that right now they won't call. Okay, so they would like Israel to be less aggressive. Now we are ready, as I said, to engage in a diplomatic process, but we will not renounce our right for self-defense. And we are going to continue operations in South Lebanon, and if we are attacked, we are going to retaliate.
24: नहीं तो इसमें मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर इसराइल पर हमला होता है हिजबुल्ला की तरफ से तो क्या इसराइल पलटवार करेगा या इस एमओयू की वजह से टोटल सीज फायर होगा हर मोर्चे पर।
23: वी विल डिफेंड आवरसेल्व्स एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज स्टेटेड दैट, आवर डिफेंस मिनिस्टर हैज स्टेटेड दैट इसराइल विल डिफेंड इटसेल्फ इफ अटैक्ड बाय हिजबुल्ला।
20: इसराइल भले ही कहे कि वो लेबनान में किसी की नहीं सुनेगा, लेकिन हकीकत यह कि पिछले रविवार को जिस समझौते का ऐलान ट्रंप ने किया, दावा है कि उसने इसराइल और उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अचंभित कर दिया, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में इजरायली अधिकारियों के हवाले से मंगलवार तक दावा किया गया है कि इसराइल को अब तक समझौते का ड्राफ्ट नहीं दिखाया गया। हालांकि ट्रंप ने इस समझौते पर साइन करने से पहले इसकी एक कॉपी नेतन्याहू को भेजने की बात कही, लेकिन इसने दिखा दिया कि अमेरिका ने अपने सबसे करीबी दोस्त को ईरान से समझौता करने के चक्कर में अकेला छोड़ दिया।
21: ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99%. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon.
20: अमेरिका और ईरान में जो समझौता होने जा रहा है उससे ईरान मालामाल होगा, उसके प्रतिबंध हटेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचेगा, कमाई करेगा और इस पैसे का इस्तेमाल अपने मिसाइल कार्यक्रम को खतरनाक करने में लगाएगा ताकि भविष्य में किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अब आप ही सोचिए कि ये काम करने वाले ट्रंप का भारत को किया वायदा कितना भरोसे लायक है, क्योंकि ईरान से होने वाला समझौता बताता है अमेरिका अपने फायदे के लिए इसराइल जैसे सबसे करीबी देश के हितों की भी अनदेखी कर सकता है।
0: दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस जंग से निकलने की एक विंडो तलाश रहे थे और जब ईरान के साथ उनकी सहमति बन गई तो उन्होंने इसराइल को बिना कॉन्फ्रेंस में लिए ही एमओयू साइन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे थे कि अगर वो इसराइल का साथ लंबे समय तक देते तो ना सिर्फ उनके देश में उनकी नीतियों को लेकर जो मुखालफत हो रही थी वो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती, बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनका धीरे धीरे कर साथ छोड़ रहे थे। यहां तक कि नाटो के देश भी लगातार उन पर सवाल खड़े कर रहे थे और इन्हीं मजबूरियों के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

पेरिस में भारतीयों के बीच बोले पीएम मोदी, भविष्य को आकार दे रहा है भारत। पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुआ विकास, विश्व का भरोसेमंद सहयोगी बना हिंदुस्तान। झारखंड में भी कांग्रेस नहीं संभाल पाई अपना कुनबा, क्रॉस वोटिंग के चलते राज्यसभा चुनाव में मिली हार। एनडीए समर्थित परिमल नाथ वाणी विजयी, बीजेपी ने कहा राहुल की हार। उद्धव की सेना में फिर से बड़ी टूट, उनके 6 सांसदों का शिंदे गुट में शामिल होना तय, बागियों को भेजा गया कारण बताओ नोटिस। 21 जून को नीट री एग्जाम के लिए एयरफोर्स ने कई शहरों में पहुंचाए प्रश्न पत्र, धर्मेंद्र प्रधान ने हाई लेवल मीटिंग की तैयारियों की शिक्षा मंत्री ने समीक्षा। और रांची में आरएसएस ऑफिस पर हमले का आईएसआई कनेक्शन, पाक हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी अमन अंसारी, एटीएस को सौंपी गई जांच। उद्धव गुट में एक बार फिर से बगावत हो गई। गुरुवार को उद्धव ठाकरे ने अपनी संसदीय दल की बैठक बुलाई थी, बाकायदा व्हिप जारी किया था, मगर इस बैठक में सिर्फ 3